0: पिछले एक महीने से राहुल गांधी ने इस बार धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर दिया, चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो। राहुल गांधी का एजेंडा एकदम अब क्लियर लग रहा है।
1: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की FIR दर्ज नहीं कर रही है।
2: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
1: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
2: एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
1: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
3: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
1: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जांच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। BJP सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
4: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं?
1: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाप को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: और अब खबर वंदे मातरम को लेकर जारी राजनीति की। जहां केरलम में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रही है तो सरकार विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है।
5: वंदे मातरम पर दो छेक का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं, कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। BJP 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। BJP ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के दो छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर BJP लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
6: और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
7: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
5: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की दो पद यानी कि दो स्टेंजा गाने का समर्थन किया, जिस पर कंगना रनौत भड़क गई।
5: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है।
8: और वंदे मातरम के जो स्टेंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स। आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला टू टैंसा इज वेरी गुड।
5: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रहीं। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रहीं और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनौत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों। कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
0: खबर जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच जनता पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष डांका भी यहां मौजूद थे, जिन्होंने BJP पर इस हमले का आरोप लगाया।
9: यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुके हैं।
5: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूंसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूंसे बरसाए।
9: ग्रामीण एक तरह से कहें कि ओ

0: पर धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं।
1: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
2: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
3: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
1: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
4: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
1: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए, इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
5: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहां पर गेट पर यहां पर कुंटी लगा रखी है और यहां पर अंदर ये आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
1: अब सवाल ये है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
6: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं।
7: जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहां अनशन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दीप के?
1: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो
8: खबर झारखंड की, जहां हाईकोर्ट के निर्णय के बाद नाराजगी का पूरा खेल ही बदल गया। आंदोलन से सरकार को मनवाने वाले छात्र अब सरकार पर कोर्ट में कमजोर पक्ष रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक बार फिर सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं।
9: झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर स्टे लगाकर दो परीक्षाओं से चयनित कर्मचारियों को राहत दी तो दूसरे कर्मचारी भी राहत की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए।
10: हम लोग भी वही रास्ता अख्तियार करेंगे और हम लोग भी स्टे लेके आएंगे।
11: हाँ, क्या लगता है सरकार ने ये फैसला गलत किया?
10: सरकार ने एक तरफा फैसला किया है सरकार ने, मुझे लगता है कि अपने सारे रास्तों को एग्जॉस्ट नहीं किया। ये एक हेस्टी डिसीजन है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस प्रेशर बनाने से उसके दबाव में आके सरकार ने एक हेस्टी डिसीजन।
9: इस बीच हाईकोर्ट के फैसले से वो छात्र भी नाराज जिनकी मांग पर सोरेन सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के बैनर तले प्रदर्शन करने वाले छात्र आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा।
12: आप ये धोखा सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को नहीं दिए हैं, झारखंड के तमाम आम आवाम को दिए हैं, झारखंड के उन तमाम अभिभावक को दिए जिन्होंने अपने बच्चा को अपने बेटा और बेटियों को पिछले 26 दिनों से अपने हक और अधिकार के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजने का काम किया।
9: 16 दिन तक अनशन करने वाले देवेंद्र महतो ने भी चेतावनी दी कि सरकार ने लापरवाही बरती तो बड़ा आंदोलन करेंगे।
13: सरकार अपना पक्ष रखने में, अपना जांच रिपोर्ट रखने में अगर किसी तरीके से लिपापोती करती है, किसी तरीके से कोताही बरतती है तो यहाँ के छात्र बिल्कुल अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब जेपी के तर्क पर, जेपी आंदोलन के तर्क पर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ये हम आज ऐलान करते हैं।
9: सोरेन सरकार के लिए भी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। एक गुट की मांग माने तो दूसरा नाराज और दूसरे की मांग माने तो पहला नाराज। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
8: खबर यूपी की राजनीति की, जहां मुख्यमंत्री योगी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की परिभाषा पर कटाक्ष किया तो अखिलेश यादव पर कल्याण सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया।
14: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे

0: परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जाति अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था, उस हर हिंदू का अपमान था ये।
1: यूपी में एक राजनीति जेनजी और जेन अल्फा को लेकर भी चल रही है। इस बीच सीएम योगी जापान के जेल जेन अल्फा से मिले, जहां उन्होंने भारत और जापान के जेन अल्फा को जोड़ने की कोशिश की।
2: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
3: एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
2: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए थे। आज तक
1: खबर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे की, जहां बॉर्डर सिक्योरिटी पर अमित शाह ने ममता बैनर्जी को घेरा। सिलीगुड़ी में कहा कि हमें घुसपैठ पर अंकुश लगाना था, हम पूरी सीमा पर बाड़ लगाना चाहते थे, लेकिन ममता ने हमें कभी जमीन ही नहीं दी।
4: हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये हर निष्ठ तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि, जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी। बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। हम ममता बैनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी।
1: छात्र और बेरोजगार दोनों पर हर नेता की नजर है, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों की ही मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के 56 नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े छात्र प्रभावित हैं। छात्रों की चार प्रमुख मांगें: लंबित रिजल्ट जारी करना, परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित करना, पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना, कॉलेज की गलती से जिन छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ करना।
2: ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल, कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर मंतर। परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन, 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और GNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी, कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है।
5: जो हॉकी हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें? हमारा जो समय खराब हुआ है, जो हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल? हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाए और रिजल्ट प्राप्त हुए जाए हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है, या हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता है हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।
2: छात्रों का कहना है कि GNM का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा, तो वहीं BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खिंच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। छात्रों ने बताया कि साल 2020, 2021, 2022 के BSc और 2021-2022 के GNM के एग्जाम और रिजल्ट पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनके स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा।
6: इनकी परीक्षाएं पिछले 4 साल से समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं और इसका पूरा दोष ग्वालियर के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, एक एक बिल्डिंग में 3-3 कॉलेज चला रहे हैं और पूर्ण तरह से उनकी जो फैकल्टी लगी हुई है कॉलेज में पूर्ण तरह से फर्जी है और इसका पूरा परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ये बच्चियां हैं जो गरीब परिवारों से आती हैं, इनकी ना तो स्कॉलरशिप मिली, ना इनके समय पर परीक्षाएं हो रही हैं। ये बच्चियां गरीब परिवार से आती हैं, 3-3 साल में अपनी डिग्री करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी करेंगे, कहीं सरकार में नर्स बनने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये 5-6 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर हैं और कॉलेज द्वारा इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपकी बात आगे कर रहे हैं, कॉलेज क्या बात सुनेगा जब कॉलेज खुद फर्जी है, CBI से जाके उन्होंने स्टे लिया।
2: छात्रों की 4 मुख्य मांगे हैं: पहला, सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। दूसरा, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी हो। तीसरा, सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। चौथा, कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ हो। छात्रों ने कहा कि लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शिक्षा अधिकार के लिए। मांगे पूरी होने तक कटोरा ताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर आज तक।
1: छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।
1: B.R. अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
2: अगर अंबेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज। राहुल का तंज, अमित शाह और गृह सचिव ने दी इजाजत, बोले न्याय की दिशा में यह पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा ने कहा वंदे मातरम पर घिरने के बाद कांग्रेस का धरना। स्मृति ईरानी बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके PDA का पी पिछड़ा से पंडित हो गया और एक दिन कर देंगे पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट एक रंगी, क्या जाने PDA के बहुरंग। नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद आज बीजेपी की 3 बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में बड़े छात्र और JMM कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर मचा बवाल। JPSC JSSC रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन।

0: तक मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और सभी खबरें हम आपको दिखाएंगे आज सुबह की। क्या बड़ी खबरें आज रहने वाली है, लेकिन सबसे पहले बात एक FIR की जिसके लिए राहुल गांधी धरने पर बैठे। दिल्ली में एक FIR दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। 1 महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए एक छात्र की FIR करवाने के लिए आज राहुल गांधी ने आंदोलन किया। अब आप देखिए कि कल पूरे दिन राहुल गांधी का आंदोलन भरा रहा। सुबह 12:15 बजे करीब राहुल गांधी दिल्ली के संसद मार्ग के थाने पहुंचते। लगभग 12 बजे का वक्त चल रहा था। उनके साथ में पैलेट गन का पीड़ित साहिल भी था। मांग बस ये थी कि FIR हो जाए, लेकिन पुलिस ने दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि शिकायत हम ले रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए और बैठे रहे। इसके बाद तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पहुंच गए, कार्यकर्ता भी पहुंच गए, भजन शुरू हो गए, थाने के बाहर मंच सज गया था। अब राहुल गांधी के धरना एपिसोड का लाइव प्रसारण हो रहा था। वहीं पर राहुल गांधी ने लंच भी किया। शाम हो गई और फिर खबर आई कि पुलिस FIR दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। शाम को करीब 7:45 बजे पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और इस तरह से करीब 7 घंटे बाद राहुल गांधी का यह धरना सफलतापूर्वक खत्म भी हो गया। सबसे पहले आप ये सुनिए कि FIR दर्ज होने के बाद राहुल गांधी का क्या कहना था।
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए,
2: जब से आपको ये गोली लगी
1: 20 जुलाई को, 1 महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, 3 छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, 3-4 छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके FIR फाइल किए। अब आप इमेजिन कीजिए, इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
0: साहिल की FIR की जानकारी आज तक को लगी है, जिसमें साहिल ने बताया कि नीले कपड़े पहनने वाले शख्स के हाथ में बड़ी बंदूक थी, जिसने उस पर 4-5 बार पैलेट गन चलाई, जिससे उसकी दाई आंख से दिखना बंद हो गया। ये वो FIR है जिसका जिक्र किया जा रहा है और इस पर लिखा गया है कि पैलेट गन से जख्मी होने पर दाई आंख से दिखना बंद हो गया, नीले कपड़े पहनने वालों ने पैलेट गन चलाई।
3: अन्याय की हुई है ये FIR, अन्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। पर मेरे को खुशी से ज्यादा दुख भी है कि LOP के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ, मेरे शरीर में 200 छर रहे, उसके बाद भी मेरी FIR को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर LOP मेरा साथ ना देते। 14 अगस्त से मैं FIR के लिए घूम रहा हूँ ठीक होने के बावजूद भी, लेकिन 7-8 दिन के बाद मेरी FIR ली गई।
4: उम्मीद थी आपकी FIR रजिस्टर्ड होगी जब ये कल बात हुई और आप यहाँ आए सुबह, जो पुलिस ने कहा उसके बाद
3: नहीं, मेरे को विश्वास था जी LOP आगे तो कंप्लेंट तो होनी है, ये विश्वास भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है।
0: राहुल गांधी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आंदोलनों की ये राजनीति लंबे वक्त तक फायदा देती है, इसीलिए पिछले 1 महीने से राहुल गांधी ने धरना पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर भी दिया है। चाहे वो जंतर मंतर के छात्रों का मुद्दा संसद में उठाना हो या फिर इस आंदोलन में पुलिस की हिंसा का मुद्दा हो, राहुल गांधी का एजेंडा एकदम स्पष्ट है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे कल पूरे दिन भर राहुल गांधी के धरने का यह पूरा एपिसोड चला।
5: यह है राहुल गांधी की धरना पॉलिटिक्स का दूसरा एपिसोड। 20 जुलाई को दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन हुआ जिसमें हिंसा हुई, तो 21 जुलाई को राहुल गांधी ने पहले प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया था। अब करीब एक महीने के बाद 21 अगस्त को राहुल गांधी ने आज संसद मार्ग थाने के बाहर धरना दिया। आरोप है कि दिल्ली पुलिस एक पैलेट गन से घायल पीड़ित की FIR दर्ज नहीं कर रही है।
1: हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज FIR दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, FIR नहीं हो सकता है, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे।
5: राहुल गांधी पैलेट पीड़ित 19 साल के साहिब लोचाप के परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं और आरोप लगाया कि पैलेट की चोट से आंख की रोशनी गंवा चुके साहिल के साथ न्याय नहीं हो रहा।
1: एम्स की रिपोर्ट जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे।
5: राहुल गांधी इन्हीं साहिल को लेकर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तब भी उन्होंने दिल्ली पुलिस और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन शायद दिल्ली पुलिस को ये अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी अब उन्हीं के थाने के बाहर इस पीड़ित को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सलमान खुर्शीद और जयराम रमेश भी मौजूद हैं। राहुल का आरोप है कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई लेकिन कुछ नहीं हुआ।
6: साहिल पर जो गैर कानूनी ढंग से पुलिस एक्शन हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उस संदर्भ में FIR दर्ज किया जाए और FIR नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उनको दिया जाए। मांग सिंपल है, FIR दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे।
5: पीड़ित छात्र की शिकायत पर मुकदमा दर्ज नहीं करने के पीछे कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है, लेकिन दलील यह है कि 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता और पुलिस वालों पर हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बनाई। ये कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के इस्तेमाल से लेकर महिलाओं से अभद्रता और पुलिस वालों पर हमले के तथ्यों की जाँच करेगी। इसके लिए कमेटी घटना के दिन के सारे ड्रोन, CCTV, बॉडी कैम रिकॉर्डिंग के सबूतों की मदद भी लेगी और दोनों पक्षों के घायलों को अंतरिम मुआवजा देने पर भी रिपोर्ट देगी। BJP सवाल उठा रही है कि क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है?
7: जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? क्या सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं?
5: दरअसल 20 जुलाई को चली पैलेट गन को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस और सरकार ने इनकार किया, फिर GD एंट्री में 2 राउंड पैलेट फायरिंग की पुष्टि हुई और मरीजों की मेडिकल रिपोर्ट में भी पता चला। RTI में खुलासा हुआ कि लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैलेट गन जैसी चोट से जख्मी 9 घायल पहुंचे थे। इसी तरह सफदरजंग के दस्तावेज में पता चला कि एक मरीज पैलेट गन से जख्मी आया था। पैलेट के पीड़ित साहिब लोचाक को राहुल ने पहले भी मीडिया के सामने पेश किया था और उनके शरीर पर सैकड़ों पैलेट के निशान दिखाए थे, जिसके बाद बाकी पैलेट पीड़ित प्रशांत और इरशाद नाम के 2 छात्रों की ओर से पूर्व IPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: पैलेट गन की सियासत पर आपने रिपोर्ट देख ली और अब बात वंदे मातरम को लेकर जारी सियासत की कर लेते हैं। जहां केरल में विपक्ष वंदे मातरम का विरोध कर रहा है तो वहीं सरकार विपक्ष पर तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है।
8: वंदे मातरम पर 2-6 का विवाद किस मुकाम तक पहुंच गया है, ये तस्वीर उसकी वानगी है। जगह है त्रिवेंद्रम का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और विरोध करते ये छात्र SFI के हैं, कह रहे हैं कि ये केरलम है, यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और यहाँ आप पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। BJP 15 अगस्त के कार्यक्रम में वंदे मातरम न गाए जाने को लेकर आज सड़कों पर है। BJP ने केरलम के सभी जिला मुख्यालयों पर वंदे मातरम कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं कांग्रेस भी वंदे मातरम के 2 छंद गाने पर अड़ी है, जिसे लेकर BJP लगातार कांग्रेस पर हमलावर है।
9: और यदि राष्ट्र गीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था।
10: देश के टुकड़े होने के बाद भी वंदे मातरम को कभी मन से स्वीकारा नहीं गया।
8: बहरहाल वंदे मातरम पर अभी संग्राम खत्म होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: वंदे मातरम पर जारी घमासान का असर बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है। एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम की 2 पद का समर्थन किया, जिस पर कंगना रनौत भड़की नजर आई।
8: वंदे मातरम पर जारी सियासत के बीच शर्मिला टैगोर की एंट्री ने आग में घी का काम किया है।
11: और वंदे मातरम के जो स्टैंजा है वो वंदना करते हैं मेनी गॉड्स, आप पढ़ेंगे उसको तो आपको पता चलेगा उसमें ऑल द गॉड्स आर मेंशन्ड बाय नेम। तो वो जो एक रिलीजन में विश्वास करते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंदे दुर्गा, वंदे, मुश्किल है। तो इसीलिए अगर इंडिया में जितने रिलीजन के लोग हैं उसको अगर हम इकट्ठा साथ लेके चले तो पहला 2 stanzas इज वेरी गुड।
8: शर्मिला टैगोर का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि वो रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही राष्ट्रगान के रचयिता थे। इसके अलावा शर्मिला टैगोर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रही। वो 13 अक्टूबर 2004 से 31 मार्च 2011 तक इस पद पर रही और तब केंद्र में UPA की सरकार थी। खैर, सिर्फ इसलिए शर्मिला टैगोर की दलील को सियासी चश्मे से देखना सही नहीं होगा। बहरहाल शर्मिला टैगोर की मुखालफत में बॉलीवुड की एक और अभिनेत्री सामने आ गई हैं, जिनका नाम कंगना रनौत है। एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी होती है कि कला या कविता के बारे में उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है। किसी भी कविता या गाने में शब्द रूपक यानी मेटाफर्स होते हैं। कवि या कलाकार मनचाहा असर पैदा करने के लिए तरह तरह की कल्पनाओं और अद्भुत तुलनाओं का इस्तेमाल करते हैं। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई की भावना है। बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आप कला की इतनी महान रचना को सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज कैसे कह सकती हैं? इस तरह शर्मिला टैगोर के खिलाफ कंगना रनौत ने मोर्चा खोल दिया और इस मोर्चे से उन्होंने शर्मिला टैगोर पर हमलों की बौछार कर दी। कंगना आगे कहती है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो, हड्डियां स्टील की हो और नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो। वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि वो शक्ति के जागरण का आह्वान कर रहे थे। कृपया हिंदू मुस्लिम वाली सोच से बाहर आइए, भले ही हम एक ईश्वर में विश्वास करते हों। कंगना और शर्मिला के बीच ये लड़ाई बता रही है कि वंदे मातरम के 2 छंद या 6 छंद के सवाल पर बॉलीवुड में भी बेचैनी है। आज तक ब्यूरो।
0: जयपुर से आई हंगामे की तस्वीरों की बात कर लेते हैं, जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया। कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मौजूद थे, जिन्होंने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया है।
12: यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है।
8: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूंसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूंसे बरसाए।
12: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में, और इनको यहां पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है, और रामपुरा में यहां पर ये देखिए लात घूंसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं।
8: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
13: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
14: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
8: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
15: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
8: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए। इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
13: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है, और यहाँ पर अंदर ही आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
8: अब सवाल यह है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
16: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं।
17: जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहां आंदोलन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दीप के?
8: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।
0: अब देखिए उत्तर प्रदेश में एक सियासत जेन जी और जेन अल्फा को लेकर जारी है। अब इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के जेन अल्फा से मिले और उन्होंने भारत और जापान के जेन अल्फा को जोड़ने की कोशिश की।
18: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
19: एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है, और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
18: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए थे। आज तक के।
0: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए डबल मर्डर और सुसाइड के मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। एक बैंक कर्मी ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर घर जाकर अपनी बहन को मार डाला और फिर अंत में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब इस मामले से जुड़े सीसीटीवी की एक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे।
18: ये सीसीटीवी तस्वीर लखनऊ में हुई दो हत्याओं में से एक की है। इसमें दिख रहा है कि बैंक के अंदर जा रही दिव्या मिश्रा नाम की महिला को उसका पति मानस गेट पर ही रोकता है और फिर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट होता देख पहले बैंक का गार्ड बाहर आता है, लेकिन डर कर वो भी लौट जाता है। तब बैंक के अंदर से दूसरे स्टाफ दौड़कर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं गोली चलती है और सभी स्टाफ डरकर बैंक की तरफ भागते हैं। इतनी देर में दिव्या का खून हो जाता है। इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पति मानस कई दिनों से दिव्या की रेखी कर रहा था। 18 अगस्त को भी उसने दिव्या की गाड़ी रुकवाने की कोशिश की थी। तब से दिव्या डरी सहमी थी। उसने अपने करीबियों को बताया था कि मानस उसे मार देगा और दो दिनों के बाद दिव्या का वही अंजाम भी हुआ। लेकिन सवाल यह है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, तो फिर अपनी बहन की हत्या क्यों की?
20: बहन उसके घर में बैठी थी, वो भी डिस्टर्ब थी। बहन के चक्कर बहन को बहुत जान देता था।
21: उसने इसीलिए बहन को मार दिया कि पत्नी को मार दिया? मैं जेल चला
20: नहीं जेल चला। घर में उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा? ये उसको सबसे बड़ा चिंता थी कि हमारे न रहे कोई बात हो गई तो इसका क्या होगा।
18: मानस के परिवार वाले बताते हैं कि माँ की मौत के बाद बहन डिप्रेशन में थी, वहीं बहू भी परिवार का अच्छे से ख्याल रख रही थी।
20: बहू अच्छी थी और हमारे घर आती तो बहू का ही काम करती थी, हमारी वाइफ को काम नहीं करने देती। मेरे बेटे की शादी में एक हफ्ते की छुट्टी लेके हमारे यहाँ रही और पूरी जिम्मेदारी उसने निभाई।
18: परिवार को भरोसा नहीं हो रहा कि मानस ऐसा कर सकता है।
20: लड़का एक नंबर का डरपोक था, पता नहीं कहाँ से
21: डरपोक था।
20: रात में जब देर हो जाती थी हम लोग यहाँ से 10 के बाद जाता था तो खाना खाने के बाद जाता था तो विधानसभा होकर जाता था, या हमारी बहन आशियाना में रहती वहाँ से निकलता था तो हम लोग साथ आता था। तो एक ऐसी होते हुए लाटू रोड होते हुए तब वो जाता था अपने घर, नहीं सन्नाटे के कारण से चला जाए, ऐसा कभी उसने किया ही नहीं।
18: यह हत्याकांड और सुसाइड केस बेहद सनसनीखेज है। सवाल है कि मानस जिसने धोखे का आरोप लगाया उनकी सच्चाई क्या है? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: छात्र और बेरोजगार दोनों पर हर नेता की नजर है, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों की ही मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के 56 नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े छात्र प्रभावित हैं। छात्रों की चार प्रमुख मांगे हैं, लंबित रिजल्ट जारी करना, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित करना, पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना और कॉलेज की गलती से जिन छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ करना।
18: ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल, कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर मंतर। परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन, 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और GNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी, कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है।
22: जो की हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें? हमारा जो समय खराब हुआ है जी, हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल? हमारी यही मांग है जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाए और रिजल्ट प्राप्त हुए जाए हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है, या हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता है हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।
18: छात्रों का कहना है कि GNM का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वहीं BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खिंच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं। छात्रों ने बताया कि साल 2020-2021-2022 के बीएससी और 2021-2022 के जीएनएम के एग्जाम और रिजल्ट पिछले तीन साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर तीन तीन कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनके स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा।
2: इनकी परीक्षाएं पिछले चार साल से समय पर आयोजित नहीं की जा रही है और इसका पूरा दोष ग्वालियर के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, एक एक बिल्डिंग में तीन तीन कॉलेज चला रहे हैं और पूरी तरह से उनकी जो फैकल्टी लगी हुई है कॉलेज में पूरी तरह से फर्जी है और इसका पूरा परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ये बच्चियां हैं जो गरीब परिवारों से आती हैं, इनकी ना तो स्कॉलरशिप मिली ना इनके समय पर परीक्षाएं हो रही हैं। ये बच्चियां गरीब परिवार से आती हैं, तीन तीन साल में अपनी डिग्री करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी करेंगे, कहीं सरकार में नर्स बनने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये 5-6 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर हैं और कॉलेज द्वारा इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपकी बात आगे कर रहे हैं, कॉलेज क्या बात सुनेगा जब कॉलेज खुद फर्जी है, सीबीआई से जाके उन्होंने स्टे लिया।
18: छात्रों की चार मुख्य मांगे हैं। पहला, सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। दूसरा, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी हो। तीसरा, सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। चौथा, कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ हो। छात्रों ने कहा कि लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि अपने शिक्षा अधिकार के लिए। मांगे पूरी होने तक कटोराताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर आज तक।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज। राहुल का तंज, अमित शाह और गृह सचिव ने दी इजाजत, बोले न्याय की दिशा में ये पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा ने कहा वंदे मातरम पर गिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति ईरानी बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया और एक दिन कर देंगे पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट एक रंगी क्या जाने, पीडीए के बहुरंग। नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद आज बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में बड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर मचा बवाल, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। बात करेंगे बारिश बाढ़ से मचे हाहाकार की। प्रयागराज में सैलाब के सितम के आगे व्यवस्था ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण। शहर से 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटे इलाकों में बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, चारों तरफ सिर्फ पानी है। एनडीआरएफ की टीमें दिन रात एक करके लोगों तक पहुंच रही हैं, रेस्क्यू कर रही हैं, जिससे सैलाब के बीच फंसे लोग उन्हें देवदूत कह रहे हैं। इससे पहले ऐसी भीषण बाढ़ साल 1997 में आई थी।

0: प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास पानी का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ निचले इलाके बाढ़ की वजह से डूबने की कगार पर है। लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बनकर आई, तो यूपी सरकार भी लगातार राशन और राहत सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे।
1: यूपी में बाढ़ का सितम है और इस बीच में एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर जल पुलिस हो, वो एक तरीके से देवदूत बने हुए हैं उन लोगों के लिए जो इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। आप अगर तस्वीरों में देखें मेरे पीछे, तो ये पूरा गांव है जो इस वक्त बाढ़ के पानी में समा गया है। अगली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगातार यहाँ मूवमेंट कर रही हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी, सामने पहले दिखाई तस्वीर, जो छत पे लोग खड़े हैं वो इंतजार में है कि कब हमें मदद पहुंचेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही प्रशासन की जो बोट है वो पहुंचती है राशन बांटने के लिए, ये देखिए किस तरीके से सीढ़ियों से निकलकर ये लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिससे इनकी मदद हो पाए, इनको मदद मिल पाए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ हैं, एनडीआरएफ हैं, जल पुलिस हैं, तमाम लोग देवदूत बने हुए हैं इस बाढ़ जैसे हालात में। प्रयागराज में ये जो पीछे का आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा गांव है, ये कोई नदी नहीं है जहां इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा गांव का क्षेत्र है, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको। और काफी घर जो है, मेकशिफ्ट जो खासकर घर है, वो तो इस पहाड़ के पानी में डूब ही चुके हैं।
0: आज तक की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का दर्द देखा। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव के कितने घरों को अपनी जद में ले रखा है। पेड़ों और बिजली के खम्भों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां कभी जमीन थी, अब यहां मानो नदी उफना रही है। प्रयागराज के बारा की एसडीएम शिखा शंकवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद दिखी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा।
1: शिखा जी, आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है समर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके हिसाब से।
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहां पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: वो यहां रहना चाहते, तो उनको आप लोग ये बिस्किट और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गांव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात,
2: पूरे क्षेत्र हमारे 2 नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ इन गांव वालों ने कई बरसों के बाद देखी है। लोग खुद बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आएगा।
1: और ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद तो सोचन ना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आ गया भीतर घुसा है पानी, अब आपको देख ले।
1: आपके गांव में बाढ़ कब आई थी?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचन ना आई तो रात में पहुँच गया।
4: किस तरह की दिक्कतें हो रही है? दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर, जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यह दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है। नहीं
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी?
4: नहीं सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
5: पूरा छत पे ही है।
1: जैसी नाव पहुंच
6: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ है, यहाँ अट्टे वहाँ पे शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीमें दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। इसके अलावा बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी दी जा रही है।
1: तो इस कठिन परिस्थिति में एनडीआरएफ जो है वो देवदूत का काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, राशन सामग्री बांटी जा रही है, इस तरह की जो नावें हैं इनकी सहायता ली जा रही है इस पूरे ऑपरेशन में। हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर एनडीआरएफ हैं, वो उनसे पूछेंगे किस तरह से ये कार्यरत है यहाँ पे। अपना परिचय दीजिएगा, बताइएगा किस तरीके से आप लोग कितने गाँव जा चुके हैं, कितना रेस्क्यू हो चुका, कितना राशन वगैरह बढ़ चुका है।
5: इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी, 11th एनडीआरएफ वाराणसी। हमारी टीम जो है प्रयागराज में पदस्थ है अभी रेस्क्यू कार्य के लिए। जैसे ही हमको रात को लगभग 12 बजे इन्फॉर्मेशन मिला कि अपना इस इलाके में एसडीएम मैडम एडीएम मैडम के थ्रू हमको फोन के द्वारा सूचित किया गया कि लोग फंसे हुए हैं, तो लोनीपार इलाके में तत्काल हमारी टीम आई है और रात को लगभग 120 लोगों को हमने रेस्क्यू किया। साथ ही हर इलाके में घूम करके लोगों को हमने जो है राहत सामग्री प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है उसको भी वितरित करने का कार्य कर रहे हैं।
1: पूरे प्रयागराज में आपकी टीम्स फैली हुई हैं इस वक्त?
5: बेसिकली हमारी एक ही टीम है, जो कहीं भी कुछ भी होता है प्रयागराज में तो हमारी टीम जाती है।
1: कितनी बोट्स हैं टोटल?
5: हमारे पास लगभग 5 बोटें हैं और जिसमें से हम 2 बोट डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं और हमारी अगल बगल भी टीमें, बनारस हमारी रिजर्व टीमें हैं।
0: एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे हैं, आज वही लोग कह रहे हैं कि इंद्रदेव अब बस करो।
1: प्रयागराज की बाढ़ इस वक्त सबसे ज्यादा किसी चीज को सता रही है तो वो है गांव जो प्रयागराज के बॉर्डर पर बने हुए हैं और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर उसी स्थान पर मौजूद हैं। आप सामने देखें कि घर के घर जो हैं ये निचले स्तर पर जितने घर बने हैं वो डूब चुके हैं, जो ऊपर लोग थे वो अभी आए क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वक्त उस जगह पर है जहां पर एनडीआरएफ की टीमें देवदूत बनी है, प्रशासनिक अधिकारी राशन पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखें तो ये सभी वो लोग हैं जहां पर जो अफेक्टेड हैं इस पूरे फ्लड से और इस बाढ़ के चलते अभी इनको राशन सामग्री, जो खाने पीने की चीजें हैं वो बांटी जा रही है। आपको दिखाऊं मैं तस्वीरों में, तो ये देखिए इस तरह की जो लैया के पैकेट्स हैं वो इन्हें दिए जा रहे हैं, बच्चों के हाथ में इस तरह के जो छोटे छोटे बिस्किट्स हैं ये दिए जा रहे हैं। नतीजा क्या है, क्योंकि बाढ़ कब तक ये पानी यहां रहेगा नहीं मालूम है, इस वजह से ये चीजें यहां पर की जा रही हैं।
0: जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाएगा भी तो कहां, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान तो बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे इन लोगों को एनडीआरएफ की नावें डूबते को तिनके का सहारा लग रही हैं।
1: हम इस वक्त प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहां पर नदियां उफान पर हैं। नतीजा क्या है कि घर के घर यहां डूब गए हैं। पेड़ों की तरफ एक बार दिखाइए, ये पेड़ हैं पूरा, इनमें नीचे तक पानी आ गया है, यानी कि पूरा जो पेड़ आपको देखेंगे अगर तो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वहां तक पानी आपको यहां दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह के हालात फिलहाल यहां बने हुए हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से आपको हम एक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। जो ग्रामीण है या तो उनके दरवाजे तक पानी आ गया है या उस क्षेत्र तक पानी आ गया है जहां वो असल में फंसे हुए हैं। कई लोग अपने अपने घरों को छोड़कर यहां से निकल चुके हैं, मवेशियों को छोड़ रखा है, घरों से निकल चुके हैं, लेकिन ऐसे में लगातार जो है ग्राउंड पर काम हो रहा है।
7: जयपुर में जमकर हंगामा हुआ वो तस्वीरों की बात करेंगे जहां प्राथमिक स्कूल जा रही कॉकरोच पार्टी पर गांव वालों ने हमला कर दिया और कॉकरोच पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मौजूद थे जिन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया।
8: जयपुर में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूसे बरसाए।
9: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं, ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं यहाँ पर, गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं।
10: जयपुर के रामपुरा गांव के इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे।
11: आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था, वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं।
12: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा।
10: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए हमले पर कांग्रेस भी सरकार को घेर रही है।
13: वे चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में, व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है।
10: जयपुर के जिस स्कूल के निरीक्षण को लेकर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ उसकी सच्चाई ये है कि गांव का स्कूल जर्जर है। जिस इमारत में क्लास चलती थी उसकी हालत इतनी खराब है कि कभी भी ढह जाए। इसीलिए गांव वालों ने स्कूल के सामने ही एक तबेले में व्यवस्था कर दी जहां कक्षाएं चलती हैं।
14: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर, यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है और यहाँ पर अंदर ये आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा।
10: अब सवाल ये है कि आखिर स्कूल के सुधार से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। गांव वाले कह रहे हैं कि समस्या शिक्षा सुधार से नहीं सीजेपी से है।
15: ऐसे कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं।
16: जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहां अनशन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दिपके?
10: इससे पहले भी जयपुर में रांका के स्कूल जाने पर हंगामा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्कूलों की हालत गंभीर है जहां एक बड़े सुधार की जरूरत है। आज तक ब्यूरो।
7: छात्र और बेरोजगार दोनों पर हर नेता की नजर है, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का निश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के

0: परीक्षा में बैठने की अनुमति देना और कॉलेज की गलती से जिन छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ करना।
1: ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल, कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर मंतर, परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन, 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और JNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी, कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है।
2: जो कि हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें, हमारा जो समय खराब हुआ है जो हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल। हमारी यही मांग है जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाएं और रिजल्ट प्राप्त हुए जाएं हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है, या हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता है हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।
1: छात्रों का कहना है कि GNM का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वहीं BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खींच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। छात्रों ने बताया कि साल 2020-2021, 2022 के BSc और 2021-2022 के GNM के एग्जाम और रिजल्ट पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनके स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा।
3: इनकी परीक्षाएं पिछले 4 साल से समय पर आयोजित नहीं की जा रही हैं और इसका पूरा दोष ग्वालियर के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, एक एक बिल्डिंग में 3-3 कॉलेज चला रहे हैं और पूर्ण तरह से उनकी जो फैकल्टी लगी हुई है कॉलेज में पूर्ण तरह से फर्जी है और इसका पूरा परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ये बच्चियां हैं जो गरीब परिवारों से आती हैं, इनकी ना तो स्कॉलरशिप मिली, ना इनके समय पर परीक्षाएं हो रही हैं। ये बच्चियां गरीब परिवार से आती हैं, 3-3 साल में अपनी डिग्री करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी करेंगे, कहीं सरकार में नर्स बनने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये 5-6 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर हैं और कॉलेज द्वारा इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपकी बात आगे कर रहे हैं, कॉलेज क्या बात सुनेगा जब कॉलेज खुद फर्जी है, CBI से जाके उन्होंने स्टे लिया।
1: छात्रों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहला, सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। दूसरा, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी हो। तीसरा, सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। चौथा, कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ हो। छात्रों ने कहा कि ये लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शिक्षा अधिकार के लिए। मांगे पूरी होने तक कटोराताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर आज तक।
0: संभाजीनगर की जहां लाइव सोसाइटी की तस्वीरें सामने आई, कैमरे के सामने एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि 18 साल का कुणाल आईफोन की मांग को लेकर सुसाइड करने पहुंचा था, जिसके बाद पहले वो उसके पिता पहाड़ी से गिरे तो पीछे से मां ने भी पहाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। देखते ही देखते एक मोबाइल की वजह से पूरा परिवार खत्म हो गया और इस सुसाइड ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी।
4: संभाजीनगर में लाइव सुसाइड, बेटे को बचाने में गिरा पिता, पति बेटे के गिरने के बाद मां ने भी लगाई छलांग। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के संभाजीनगर की हैं, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। किसी बात से नाराज 18 साल का कुणाल चांदवड़े सुसाइड करने इस पहाड़ी पर पहुंचा, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले पहुंच गए और लड़के को समझाते रहे, लड़का मानने को तैयार नहीं था। करीब आने पर वो कूदने की धमकी दे रहा था। गांव वालों ने लड़के की खबर परिवार को दी, मम्मी पापा लड़के को बचाने भागते हुए पहुंचे।

0: देखिए किस तरह माता पिता बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गाँव वाले भी बच्चे को समझा रहे हैं। करीब 3 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कुणाल को समझाते समझाते माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नजदीक के गांव के सरपंच ने भी बच्चे को समझाने के लिए आईफोन देने का लालच दिया, लेकिन कुणाल को सुनने के मूड में नहीं था। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए दमकल कर्मियों ने लड़के को बचाने के लिए पहाड़ की तलहटी में बड़ा सुरक्षा जाल बिछाया था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर खड़ा लड़का लगातार अपनी दिशा बदल रहा था। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अब देखिए, लड़का चट्टान के कोने में खड़ा है। माता पिता तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही पिता करीब पहुंचता है, पिता और बेटे का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों ही चट्टान से गिर जाते हैं। पति और बेटे को गिरता देख माँ भी पहाड़ी से छलांग लगा देती है और चंद सेकेंड में पूरा परिवार खत्म हो जाता है।
1: फिलहाल मैं छत्रपति संभाजी नगर के 30 गांव में हूं और 30 गांव में ये तकरीबन जो पहाड़ दिख रहा है, जिसकी हाइट 200 से 300 फीट के आसपास है। आज सुबह देवली में रहने वाले एक जो 18 वर्षीय युवक था वो गुस्से से घर से निकला और इस पहाड़ के किनारे पर आकर ठहर गया और सुसाइड करने का प्रयत्न किया, जिसके बाद जो गाँव के लोग थे वो इस पहाड़ पर जमा हो गए। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी।
0: गांव वाले भी हैरान हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार को खत्म होते देखा।
2: परंतु मुलगा एक नेचर स्थितीत नव्हता, तो वारंवार जागा बदलत होता आणि आईची संवाद साधत होता। आईने सुद्धा भरपूर त्याला विनंती केली की बाळा असं नको तसं नको, पण त्यांनी काही ऐकण्याच्या तो स्थितीत नव्हता, डिप्रेशन मध्ये गेलेला होता। आईने विनंती केली, जवळपास 3 तास आम्ही त्याची विनंती करत होतो। त्याच्यानंतर त्याचे वडील खाली होते, खाली होऊन त्याचे वडील सुद्धा विनवणी करत होता, परंतु काही क्षणात 15-20 मिनिटात शेवटच्या त्याचे वडील वरती आले। आम्हाला वाटलं तो समजवण्याच्या नादात त्याला थोडं बोलतील, परंतु त्यांना मुलाला धरायला गेला आणि तो मुलगा आणि वडील अगोदर खाली कोसळले आणि नंतर त्याच्या आईने सुद्धा उडी मारून घेतली।
0: हालांकि अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि बच्चे ने सुसाइड क्यों किया। गांव वालों का दावा है कि लड़का आईफोन की मांग कर रहा था, जिसे लेकर झगड़ा हुआ और मामला सुसाइड तक पहुंच गया।
1: जो 18 वर्षीय युवक है उसके पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए पहाड़ के किनारे आते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं। इस दौरान जो 18 वर्षीय युवक और उसके पिता का दोनों का संतुलन बिगड़ता है और वो तकरीबन 300 फीट की हाइट से नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान उनकी जो माँ थी वो भी इसी पहाड़ पर मौजूद थी और जब उन्होंने अपने पति और बेटे को पहाड़ से गिरता देखा तो मां ने भी छलांग लगा दी। फायर ब्रिगेड की तरफ ओर से तीनों को बचाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन तीनों की जगहों पर ही मौत हो गई। इस हादसे की वजह से जो परिसर है ये पूरा शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के जो 3 सदस्य थे, मां, बेटा और पिता, तीनों की सुसाइड से जान चली गई। इसरार चिश्ती, आज तक, छत्रपति संभाजी नगर।
3: बिग राजधानी लखनऊ में हुए डबल मर्डर और सुसाइड के मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। एक बैंक कर्मी ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, फिर घर जाकर अपनी बहन को मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली। इस मामले से जुड़े सीसीटीवी की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिस देखकर आप दंग रह जाएंगे।
0: ये सीसीटीवी तस्वीर लखनऊ में हुई 2 हत्याओं में से एक की है। इसमें दिख रहा है कि बैंक के अंदर जा रही दिव्या मिश्रा नाम की महिला को उसका पति मानस गेट पर ही रोकता है और फिर दिव्या के साथ मारपीट करने लगता है। मारपीट होता देख पहले बैंक का गार्ड बाहर आता है, लेकिन डर कर वो भी लौट जाता है। तब बैंक के अंदर से दूसरे स्टाफ दौड़कर बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचते हैं गोली चलती है और सभी स्टाफ डरकर बैंक की तरफ भागते हैं। इतनी देर में दिव्या का खून हो जाता है। इस मामले में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पति मानस कई दिनों से दिव्या की रेखी कर रहा था। 18 अगस्त को भी उसने दिव्या की गाड़ी रुकवाने की कोशिश की थी। तब से दिव्या डरी सहमी थी। उसने अपने करीबियों को बताया था कि मानस उसे मार देगा और 2 दिनों के बाद दिव्या का वही अंजाम भी हुआ। लेकिन सवाल ये है कि मानस ने पत्नी पर चीटिंग का आरोप लगाया तो पत्नी की हत्या की, खुद को भी मार डाला, तो फिर अपनी बहन की हत्या क्यों की?
4: बहन उसके घर में बैठी थी, वो भी डिस्टर्ब थी। बहन के चक्कर बहन को बहुत जान देता था,
5: उसने इसीलिए बहन को मार दिया कि पत्नी को मार दिया। मैं जेल चला
4: नहीं जेल गया। घर में उसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा? ये उसको सबसे बड़ा चिंता थी कि हमारे न रहे कोई बात हो गई
6: तो इसका क्या होगा।
0: मानस के परिवार वाले बताते हैं कि माँ की मौत के बाद बहन डिप्रेशन में थी, वहीं बहू भी परिवार का अच्छे से ख्याल रख रही थी।
6: बहू अच्छी थी और हमारे घर आती तो बहू का ही काम करती थी, हमारी वाइफ को काम नहीं करने देती। मेरे बेटे की शादी में एक हफ्ते की छुट्टी लेके हमारे यहाँ रही और पूरी जिम्मेदारी उसने निभाई।
0: परिवार को भरोसा नहीं हो रहा कि मानस ऐसा कर सकता है।
6: लड़का एक नंबर का डरपोक था, पता नहीं कहाँ से
7: डरपोक था।
6: 100% रात में जब देर हो जाती थी हम लोग यहाँ से 10 के बाद जाता था तो विधान खाना खाने के बाद जाता था तो विधानसभा होकर जाता था, या हमारी बहन आशियाना में रहती वहाँ से निकलता था तो हम लोग साथ आता था, तो एक ऐसी होते हुए लाटू लोड होते हुए तब वो जाता था अपने घर। नहीं सन्नाटे के कारण से चला जाए ऐसा कभी उसने किया ही नहीं।
0: यह हत्याकांड और सुसाइड केस बेहद सनसनीखेज है। सवाल है कि मानस जिसने धोखे का आरोप लगाया उनकी सच्चाई क्या है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: ये बहुत छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: बीआर अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
10: अगर अंबेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना ऐसे ही दलितिस्तान भी बनता।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

राहुल गांधी के धरने के बाद पैलेट गन केस में दिल्ली के संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज। राहुल का तंज, अमित शाह और गृह सचिव ने दी इजाजत, बोले न्याय की दिशा में यह पहला कदम। राहुल पर बीजेपी का पलटवार, नड्डा ने कहा वंदे मातरम पर गिरने के बाद कांग्रेस का धरना, स्मृति ईरानी बोली विरोध के नाम पर स्वांग। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया और एक दिन कर देंगे पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद आज बीजेपी की तीन बड़ी बैठक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारियों और संगठन की रणनीति पर मंथन। झारखंड में रांची समेत कई शहरों में भिड़े छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता, सीएम सोरेन का पुतला फूंकने पर मचा बवाल, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म फोरम का प्रदर्शन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज आपको बताएंगे आपकी नींद के बारे में। नींद आती क्यों है, कब नींद की समस्या होती है और बेहतर नींद के उपाय क्या हैं, ज्योतिष के अनुसार आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर 2:49 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 2:49 तक राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, नींद जो है वो मानव जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस नींद में ग्रहों की भूमिका क्या है। देखिए, नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यक आवश्यकता है। जीव के 4 लक्षण बताए गए हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसमें निद्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। बिना नींद के या कम नींद के हम कई बीमारियों और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से नींद और शैया सुख यानी नींद और बेड कंफर्ट देखा जाता है। शनि नींद का प्रमुख ग्रह है। आपके मस्तिष्क में हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है। शनि की नींद में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध ये भी नींद से संबंध रखते हैं। जो जल की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, और जो वायु की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये नींद की राशियां हैं। इनका नींद से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो नींद मुख्यतः शनि, चंद्र, शुक्र और बुध से संबंध रखती है। इन ग्रहों को देख करके आप नींद की स्थितियों के बारे में जान सकते हैं। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के महीने में किया जाने वाला एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।
राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं, कौन सी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद आती है। अगर कुंडली शनि प्रधान है, कुंडली में शनि की प्रधानता है तो आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। चंद्रमा, शुक्र या बुध, इसमें से एक भी अगर सही जगह बैठ जाए तो सामान्यतः अच्छी नींद आती है। कुंडली के केंद्र में लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम या अष्टम भाव में केवल अगर शुभ ग्रह हो तो भी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। कुंडली में जल तत्व की मात्रा मजबूत हो तो भी नींद अच्छी आती है। हालांकि जल की मात्रा मजबूत होने पर आलस्य भी बढ़ता है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है। जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, नदी है, तालाब है, ऐसे लोगों को भी अच्छी नींद आती है, क्योंकि जल के पास रहने से चंद्रमा की तरंगें मजबूत होती हैं और निद्रा बेहतर आती है। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, तनाव कम होता जाएगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।
सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

हार होगा, उपहार आपको मिल सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अभिजीत जी ने हमें लिखा है और अभिजीत जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 फरवरी 1979। जन्म का समय रात में 8:40। जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अभिजीत कह रहे हैं कि मैं काफी समय से बेंगलोर में नौकरी कर रहा हूं और अब मैं वापस कोलकाता जाकर के वहां अपना कोई काम या अपना कोई व्यापार करना चाहता हूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा? अभिजीत जी, आपकी कुंडली में आपके स्थान परिवर्तन की संभावना साल 2027 में जून के बाद बनती है। उसके बाद आप कोलकाता वापस जा सकते हैं और वहां जाके टेक्नोलॉजी का या कोई टेक्निकल व्यापार कर सकते हैं। जून 27 के बाद ऐसा करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद आने में समस्या होती है। रात रात भर करवट बदलते बीत जाता है लेकिन नींद नहीं आती। तो कब नींद आने में समस्या होती है? अगर कुंडली में शनि दूषित हो गया, अगर कुंडली में शनि नकारात्मक प्रभाव में है तो इसके दो नुकसान हैं। एक तो गहरी नींद नहीं आएगी, नींद में समस्या होगी। दूसरे, हर समय आलस्य बना रहेगा। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र पीड़ित हो, गड़बड़ स्थिति में हो तो बिना वजह के नींद नहीं आती। आदमी दवाइयां भी खाता है लेकिन नींद नहीं आती। अगर बुध पीड़ित हो गया कुंडली में तो तनाव की वजह से, चिंता की वजह से नींद नहीं आती। आदमी बहुत टेंशन पालता है और उसको नींद नहीं आती। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की प्रधानता हो, फायर एलिमेंट ज्यादा हो या पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो तो आदमी शरीर की समस्याओं की वजह से या दर्द या थकान की वजह से सो नहीं पाता है। अगर मंगल आपके नींद को प्रभावित करे तो शारीरिक तकलीफ से नींद नहीं आएगी। आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है, शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, इस वजह से नींद नहीं आती। यानी नींद ना आने का एक कारण है कि बिना वजह के नहीं आती है, दूसरा है कि चिंता और तनाव से नींद नहीं आती है, और तीसरा कारण है शारीरिक समस्या इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से नींद नहीं आती है। यानी अलग अलग कारण हो सकते हैं जब आपको नींद ना आए। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन हानि से बचाव करें, ऑफिस में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो देखिए, नींद आने और ना आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं और अच्छी नींद आना आपके ग्रहों पर, आपकी कुंडली पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपको गहरी नींद आए, अच्छी नींद आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी रखिएगा। कमरे में लाल, काले और भूरे रंग का प्रयोग मत करिएगा। अगर आपके कमरे में हल्की सुगंध आती रहे, हल्की खुशबू आती रहे तो बहुत अच्छा होगा। जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे कोई भारी सामान मत रखिए, खास तौर से लोहा बिल्कुल मत रखिए। शयन कक्ष को साफ सुथरा रखिए और अपने बेडरूम में गंदे कपड़े भी मत रखिएगा। अगर आपको नींद बार बार टूटने या खुलने की समस्या है कि आप रात में सोए, दो घंटे बाद नींद खुल गई, फिर नींद नहीं आई, या कई कई टुकड़े में नींद आती है, तो गले में चांदी जरूर पहनिए और लाल तिलक का प्रयोग मत करिएगा। लाल तिलक का प्रयोग करने से फायर बढ़ता है, नींद कम होती है। रात में सोते समय अपने सर के नीचे यानी पलंग के पाए के पास अपने सिरहाने लोटे में जल भर करके रख दें और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दें। नियमित रूप से हफ्ता 10 दिन तक ऐसा करेंगे, आपकी नींद बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों, थोड़े समय के लिए भी अगर सूर्य का प्रकाश आता हो
तो उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करिएगा। ज्योतिष के हिसाब से अच्छी नींद आए, गहरी नींद आए, इसके लिए सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर आप धारण करें तो ये आपके मन को निश्चिंत करेगा और इससे आपको बेहतर नींद आनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

भी परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नील।

काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो, गोधूली वेला का समय हो, उस समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्यास्त का जो समय है, जो गोधूली वेला का समय है, वो लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। अगर आप इस समय सोएंगे तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा, आपको धन का अभाव होगा और जीवन में दरिद्रता आ सकती है। गोधूली वेला के समय, सूर्यास्त के समय सोने से आयु कम होती है, ऐसा भी बहुत जगहों पर माना जाता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सूर्यास्त का समय पूजा उपासना का समय है, उस समय सोना नहीं चाहिए। पूजा उपासना नियमित रूप से सूर्यास्त में करनी चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन का लाभ होगा। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग हैं। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे दीपक जला दीजिएगा सरसों के तेल का। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सावित्री जी ने हमें लिखा है और सावित्री जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1967। जन्म का समय सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है बक्सर बिहार। सावित्री जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं और मानसिक रूप से भी चिंता बहुत होती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन ठीक हो जाए। सावित्री जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपनी हड्डियों का और अपनी आंखों का ध्यान दें
कोई चोट चपेट या दुर्घटना ना हो, इस बात की सावधानी आपको बनाए रखना चाहिए। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। लंबे समय तक, साल भर तक राम रक्षा स्तोत्र पढ़िएगा, मोती पहनिएगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रखकर ले जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि के लोगों को, चिंताएं और तनाव आपका बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है, शनिवार की दशमी विशेष अशुभ होती है, इसलिए आज कोई शुभ और मंगल कार्य ना करें। दशमी से लंबी आयु मिलती है, इसलिए आज यम देवता के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए, आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो आइए आपको बताते हैं भाग्य को बेहतर करने के लिए एक सावन सूत्र। अगर आप चाहते हैं कि आपके संतान की उन्नति हो, उसका डेवलपमेंट हो, तो सावन में एक पीपल का या एक बरगद का पौधा किसी भी दिन सार्वजनिक स्थान पर लगाइएगा, निश्चित रूप से संतान की उन्नति होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

पहले टिकट मामले में FIR दर्ज कराने की मांग को लेकर राहुल गांधी के धरने के बाद झुकी दिल्ली पुलिस। करीब 8 घंटे के धरने के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। FIR में किसी व्यक्ति को आरोपित के तौर पर नामित नहीं किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 और 125 के तहत FIR दर्ज की। FIR दर्ज होने में देरी होने पर राहुल गांधी ने सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा, जब देश की राजधानी में यह हाल तो पिछड़े इलाकों में क्या होगा। राहुल गांधी ने शाह पर भी निशाना साधा। कहा, होम सेक्रेटरी और खुद अमित शाह से बात करी, FIR दर्ज हुई तो समझ सकते हैं कि FIR को कौन रोक रहा था। FIR में देरी को लेकर मचा सियासी घमासान। पक्ष विपक्ष ने जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा, आरोप भी लगाए। खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, राष्ट्रवाद पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, असलियत में देश के युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन, आखिर अमित शाह क्या छिपा रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी के झूठ अब सामने आ रहे। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश तानाशाही से नहीं चलाया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद नेता किशोरीलाल शर्मा ने कहा, राहुल गांधी आम आदमी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक हालत को देखते हुए सवाल उठता है, क्या देश में लोकतंत्र जिंदा है। जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के थाने में धरने पर बैठने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। गिरिराज ने राहुल के धरने को लेकर नौटंकी करार दिया। जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी का धरना ना तो न्याय के लिए ना ही बच्चों के लिए, ये सिर्फ राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अराजकता की राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण, वंदे मातरम पर अपने रुख के कारण फंसी हुई है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट खुद कमेटी बना रही है, राहुल गांधी जी सिर्फ नौटंकी ही कर सकते हैं। स्मृति ईरानी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी इस पूरे मामले का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वंदे मातरम विवाद से ध्यान हटाने की कोशिश। नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की आज 3 बड़ी बैठक। तीसरी बैठक में पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारी और संगठन की रणनीति पर मंथन। दिल्ली में शुक्रवार को आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने UGC के 2026 के समानता संबंधी नियमों पर आपत्ति जताई। लोग जंतर मंतर के आसपास जुटे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहां प्रदर्शन की अनुमति से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में सीमित संख्या के साथ प्रदर्शन की अनुमति थी। प्रदर्शनकारियों ने अब स्थगित किए जा चुके UGC इक्विटी नियमों को लेकर भी नारे लगाए और सरकार से इस मुद्दे पर बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला। UGC आरक्षण के खिलाफ जुटे सवर्ण समाज के लोगों को RAF ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी के पुणे दौरे से पहले COEP इंजीनियरिंग कॉलेज में हंगामा। ABP और NSUI कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने NSUI की कुछ छात्राओं को कॉलेज के अंदर रोक कर रखा था। ये खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता वहां इकट्ठा होने लगे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, हालात नियंत्रण में। रांची में पुतला दहन के दौरान भारी बवाल। अल्बर्टा इक्का चौक पर महिला अभ्यर्थियों के साथ मारपीट, आरोपी को दौड़ाकर पीटा गया। परीक्षाओं में अनियमितता और अदालती फैसलों को लेकर विरोध जता रहे छात्र और सत्ताधारी JMM के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस, धक्का मुक्की और मारपीट। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस और सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शांतिपूर्ण मार्च निकालने से रोकने की कोशिश की। ग्वालियर में आज तक की खबर का असर, खराब सड़कों पर गिरे IAS संगप्रिया हटाए गए। अब सिंगरौली जिला पंचायत CEO की जिम्मेदारी दी गई। RSS ने जंतर मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शनों को केवल भ्रष्टाचार का मामला मानने से इनकार किया। कहा, इन प्रदर्शनों के पीछे व्यवस्था की कुछ व्यापक नाकामियां थी। बदलाव की अपील करते हुए संघ के नेता CR मुकुंदा ने कहा, देश की व्यवस्थाओं में कमियां हैं, लेकिन बदलाव अव्यवस्था या विनाश के रास्ते से नहीं लाया जा सकता। RSS नेता ने कहा, व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे और समाज को भी जागरूक होकर अपनी भूमिका निभानी होगी। योगी सरकार 52 नेताओं को देगी बुलेट प्रूफ जैकेट, अखिलेश यादव स्वतंत्र देव का नाम शामिल। जम्मू कश्मीर के लिए मनोज सिन्हा बोले, सिर्फ सुरक्षा बल आतंकवाद नहीं हरा सकते, पूरे समाज की एकजुटता जरूरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश, विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर, बिना पुष्टि की गई पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। संभल शाही जामा मस्जिद के पास छत्तीसगढ़ दुकानों को नोटिस, बिना मंजूर नक्शे के निर्माण का आरोप।
जापानी मेहमानों का आज वाराणसी दौरा, जापानी डेलीगेशन आज काशी की संस्कृति अध्यात्मिकता से रूबरू होंगे, गंगा आरती भी देखेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना, बेटे के आईफोन दिलाने की जिद ने एक ही परिवार के तीन लोगों की जान ले ली। पिता की डांट से नाराज होकर बेटा सुसाइड करने के इरादे से पहाड़ पर चढ़ा, बचाने की कोशिश में पिता भी नीचे गिरे और मां इस सदमे को देख नहीं पाई और छलांग लगा ली। पूरी घटना के बाद 30 गांव इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मुंबई के गोरेगांव के आर कॉलोनी में दर्दनाक हादसा, पानी की टंकी में डूबने से दो छात्रों की मौत हो गई। नागपुर में लव ट्रायंगल बनी हत्या की वजह, हत्या का वीडियो आया सामने, दो आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर सहित देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पंजाब में मौसम रहेगा कूल कूल, मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यूपी में राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से राहत। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा में मानसून दिखाएगा रंग। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर बड़ी सतर्कता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की। दिल्ली के रायसीना रोड पर चलती कार में अचानक लगी आग, सड़क पर अफरा तफरी। कोडरमा में कस्तूरबा स्कूल की 300 छात्राओं का 8 किलोमीटर पैदल मार्च, खराब थाना प्रताड़ना, बदहाल व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खुला, गर्मी में कई छात्राएं बेहोश भी हुई। गिर सोमनाथ में 60 फीट गहरे कुएं में मिला 5 साल के शेर का शव, टूटी जाली से गिरने की आशंका, वन विभाग ने जांच शुरू की। जामताड़ा में पिलर के आसपास बालू उठाव और भारी वाहनों की आवाजाही से नींव कमजोर होने का आरोप। प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, दरोगा पर लगाया आरोप। लखनऊ में बारिश के बाद जलभराव, पार्क रोड पर एमएलए आवास के बाहर पानी भर गया। फरीदकोट में एक छात्र चोर ने महज 1.5 मिनट में 1.5 लाख रुपए उड़ाए, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। हैदराबाद के गोलकोंडा में 400 साल पुराने कुतुब शाही मकबरा परिसर के नीचे मिली विशाल सुरंग। हमीरपुर में अपनी बनाई मिठाई खाने से दुकानदार ने इनकार किया, एसडीएम ने उठाकर नष्ट करवाई सारी मिठाई। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, ओवर स्पीड बुलेरो ने मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत। नोएडा में नाबालिग ने चलाई कार, पीछे से दूसरी कार में मारी टक्कर, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। नासिक में गड्ढों को भरने के लिए आया ट्रक, खुद गड्ढे में फंस गया, वीडियो वायरल हो रहा है। हिंगोली में बिस्किट और पैसे के लालच में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप, 4 लोगों पर केस दर्ज। हैदराबाद में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 26 साल की महिला की मौत हो गई, आंध्र प्रदेश के सांसद के बेटे पर केस। तेलंगाना के वारंगल में कार की डिग्गी से महिला का शव बरामद, सॉफ्टवेयर कर्मचारी ने दौरे के बाद मौत का किया दावा, पुलिस जांच जारी है। रेवाड़ी में 3 युवकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला, 2 छात्रों की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात। उज्जैन में महिलाओं से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर 1.5 करोड़ की ठगी, आरोपित राजस्थान से गिरफ्तार हुआ। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग की ऑडियो वायरल, बदनामी के डर से शादीशुदा महिला ने जहर खाकर जान दी, पति ने 5 लोगों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप। भावनगर में बनी नकली विदेशी शराब पीने से 9 युवकों की मौत, अस्पताल में 39 लोग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कटिहार में 2 महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण हमला, 1 की मौत, दूसरा पश्चिम बंगाल के मालदा में इलाज, कटिहार पुलिस हत्या को बता रही है संदिग्ध। मुंबई में सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स का पुरुषों की ज्वेलरी में नया प्रयोग, GI22 कलेक्शन में टाइटेनियम और साथ सोना और असली हीरे। हर्षवर्धन राणे बने सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स के पुरुषों की नई GI22 ज्वेलरी लाइन का चेहरा, बी बोल्ड बी स्ट्रॉन्ग कैंपेन में दिखेगा अभिनेता का खास अंदाज। दरभंगा में बिहार ग्रामीण बैंक का मुखिया आउटरीच कार्यक्रम संयोजक और शाखा प्रबंधक मेज झा ने गरीब किसान और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया। हैदराबाद के गोलकुंडा में 400 साल पुराने कुतुब शाही मकबरा परिसर के नीचे मिली विशाल सुरंग।
जैसलमेर में सीमा के पास गर्द अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर, हाईवे पर लैंडिंग, टेक ऑफ का बड़ा सैन्य खतरा। नीरज चोपड़ा ने लॉर्ड्स एंड डायमंड लीग में जैवलिन थ्रो में 88.05 मीटर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रूमेश पथिरागी ने 88.14 मीटर का थ्रो जीता खिताब। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर सिनेमाघरों में रिलीज, लोकप्रिय इंसीडियस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू जंगल, जी हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी। अक्षय, जैकलीन, रवीना, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी समेत 30 से ज्यादा सितारों से सजी फिल्म। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी ओटीटी पर उपलब्ध होगी, आज से जी5 पर स्ट्रीम होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन ओटीटी पर स्ट्रीमिंग को तैयार, आज से जी5 पर उपलब्ध। भारत में टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू हुई, दर्शकों में क्रेज, 26 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी यश और कियारा आडवाणी की मच अवेटेड फिल्म। पहली बार महात्मा गांधी का रोल करेंगे एक्टर मनोज वाजपेयी, सुधीर मिश्रा की फिल्म गांधी एंड माय मदर में आएंगे नजर। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका पादुकोण की एंट्री, आलिया भट्ट के साथ निभाएंगे अहम और दमदार रोल।

0: अच्छा उस सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म जेलर 2 ने रिलीज से पहले रचा इतिहास। करीब 160 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ रकम में बिके फिल्म के डिजिटल राइट्स। 3 साल बाद जोरदार कमबैक को तैयार बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। अंतिम चरण में पहुंची उनकी मच अवेटेड फिल्म किंग की शूटिंग। अमेरिका में 25% तक सस्ता होगा ग्राउंड बीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आयात शुल्क में 90 दिनों की छूट का किया ऐलान। बीफ की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया। रूस के पम में रूसी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला। बोलग्राड में मिलिट्री एयरबेस को बनाया निशाना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हमले की पुष्टि की। रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव में ईंधन की भारी किल्लत। तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। ऑस्ट्रेलिया में जासूसी के आरोप में रूसी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक गिरफ्तार। यूक्रेनी सेना से जुड़ी जानकारी रूसी खुफिया एजेंसी को देने का आरोप। 2024 में रूस में ली थी सैन्य ट्रेनिंग। अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर लगाए नए प्रतिबंध। कैश नेटवर्क से जुड़े 10 लोगों को पर बैन लगाया। ये नेटवर्क लेबनान तुर्की यूएई और ईरान के बीच करोड़ों डॉलर की नकदी पहुंचाता था। यमन तट के पास तेल टैंकर अगवा। अदन की खाड़ी में 6 हथियारबंद बदमाशों ने टैंकर को हाईजैक किया। यूके एमटीओ की रिपोर्ट के मुताबिक हथियारबंद बदमाश जहाज को कंट्रोल कर रहे हैं, सोमालिया की ओर ले जा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच चीन और इंडोनेशिया में सैन्य संबंध मजबूत करने पर सहमति। ऊर्जा व्यापार रेल और एआई समेत कई अहम समझौते। स्विट्जरलैंड के थिसिस में एक अपार्टमेंट में भीषण आग। 8 लोग घायल। 14 को रेस्क्यू किया गया। 5 अब भी लापता है। दक्षिण कोरिया में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। लाल पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे हजारों कर्मचारी। एआई और ऑटोमेशन का विरोध किया। कांगो में बिका हुआ इबोला वायरस। 2500 से ज्यादा लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने इबोला से निपटने के लिए फंड की कमी बात कही है। दुनिया भर से तुरंत मदद की अपील की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा से आ रही है। जहां गुरुद्वारे में हमला हुआ है। कनाडा के एडमोंटन में गुरुद्वारे पर हमला हुआ। 2 लोग इस हमले में घायल हुए हैं। धारदार हथियार से हमला हुआ है। पुलिस ने हालांकि एक शख्स को हिरासत में ले लिया है और उसके बाद अब पता चलेगा कि आखिर किस वजह से यह हमला किया गया और उसके पीछे की मंशा क्या थी। कनाडा का एडमोंटन यहां गुरुद्वारे में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी गुरुद्वारे में हमला हुआ और 2 लोग बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं इस हमले में। धारदार हथियार से हमला हुआ है। एक शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। पूछताछ और जांच जारी। छात्र और बेरोजगार दोनों पर हर नेता की नजर है, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों की ही मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग के 56 नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े छात्र प्रभावित हैं। छात्रों की 4 प्रमुख मांगे हैं। लंबित रिजल्ट जारी रखना, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित करना, पात्र छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना और कॉलेज की गलती से जिन छात्रों की स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ कर दें।
2: ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल। कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर मंतर। परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन। 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और GNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी, कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है।
3: जो कि हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें? हमारा जो समय खराब हुआ है, जो हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल? हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाए और रिजल्ट प्राप्त हुए जाए हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है। हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता है हम गरीब घर से आए,

0: पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।
1: छात्रों का कहना है कि जीएनएम का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वहीं बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खिंच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। छात्रों ने बताया कि साल 2020, 2021, 2022 के बीएससी और 2021-2022 के जीएनएम के एग्जाम और रिजल्ट पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनके स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा।
2: इनकी परीक्षाएं पिछले 4 साल से समय पर आयोजित नहीं की जा रही है और इसका पूरा दोष ग्वालियर के जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं, एक एक बिल्डिंग में 3-3 कॉलेज चला रहे हैं और पूर्ण तरह से उनकी जो फैकल्टी लगी हुई है कॉलेज में पूर्ण तरह से फर्जी है और इसका पूरा परेशानी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। ये बच्चियां हैं जो गरीब परिवारों से आती हैं, इनकी ना तो स्कॉलरशिप मिली, ना इनके समय पर परीक्षाएं हो रही हैं। ये बच्चियां गरीब परिवार से आती हैं, 3-3 साल में अपनी डिग्री करने के बाद इन लोगों ने सोचा था कि हम 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी करेंगे, कहीं सरकार में नर्स बनने का काम करेंगे, लेकिन आज तक ये 5-6 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर हैं और कॉलेज द्वारा इनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। कॉलेज वाले बोलते हैं हम आपकी बात आगे कर रहे हैं, कॉलेज क्या बात सुनेगा जब कॉलेज खुद फर्जी है, सीबीआई से जाके उन्होंने स्टे लिया।
1: छात्रों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहला, सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। दूसरा, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी। तीसरा, सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। चौथा, कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ हो। छात्रों ने कहा कि ये लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शिक्षा अधिकार के लिए। मांगे पूरी होने तक कटोराताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक।
3: ये बहुत छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
3: इतना माही वे।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: B.R. अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अंबेडकर जिद पकड़ लेते जिंदा की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: The new BE6 Sportage.
1: सिर पर सिर ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति है, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो।
2: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है न्याय के।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता, पुलिस को करना पड़ा दखल, आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, ड्रोन पर रोक। पैलेट गन पर सियासी रण, धरने के बाद एफआईआर पर बोले राहुल गांधी, अमित शाह और गृह सचिव की इजाजत से एक्शन, बीजेपी बोली विरोध के नाम पर स्वांग। नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक आज, बीजेपी मुख्यालय में 3 सेशन में बैठ के हैं, मोदी @25 कार्यक्रम से लेकर जेन जी और चुनावों की तैयारियों पर चर्चा। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया और एक दिन कर देंगे पाकिस्तान। अखिलेश का पोस्ट, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। और झारखंड में छात्र आंदोलन पर संग्राम, रांची समेत कई शहरों में छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता भिड़े, हेमंत सोरेन राहुल गांधी का पुतला फूंकने पर बवाल, बीजेपी ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को बताया सरकारी गुंडा।

0: नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और इस खास बुलेटिन में सबसे पहले आप ये जानिए कि इस बुलेटिन में हम आपको क्या खास दिखाने वाले। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पैलेट गन किसने चलाई? राहुल गांधी धरना देकर FIR करवा चुके हैं। बात हम पुणे की भी करेंगे। राहुल गांधी की पुणे में छात्रों की गूंज रैली है, लेकिन उससे पहले NSUI और ABVP के छात्र आमने सामने भिड़ गए और बहुत सी शर्तों के साथ राहुल गांधी को अनुमति मिली है। BJP की नई टीम की आज बैठक है, इस बारे में भी बात करेंगे। टारगेट 2027 का विधानसभा चुनाव, और 2027 टारगेट है, 2029 भी है, लेकिन उससे पहले मजबूती देने के लिए बीजेपी की नई टीम की बैठक है। नितिन नवीन का मिशन 2027 और उसके लिए क्या किया जाएगा, ये हम डिटेल में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के पुणे दौरे की बात करते हैं। राहुल गांधी के दौरे से पहले COEP इंजीनियरिंग कॉलेज में जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ ABVP, दूसरी तरफ NSUI कार्यकर्ता। तस्वीरें कुछ ऐसी है, आमने सामने आ गए ये लोग। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने NSUI की छात्राओं को कॉलेज के अंदर रोक कर रखा था। ये आरोप था कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने NSUI की छात्राओं को कॉलेज के अंदर रोक कर रखा। खबर मिली तो कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, कांग्रेस नेता विजय टीवार भी पहुंचे। इसके बाद दोनों छात्र संगठनों के बीच विवाद बढ़ गया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया। NSUI ABVP कार्यकर्ता आमने सामने थे, सियासत तो होनी थी, फिर हंगामा हुआ और माहौल तनावपूर्ण हुआ, तो फिर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। और देखिए कैसे कार्रवाई की, बस में ठूस ठूस कर हिरासत में लिया गया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, ABVP के भी और NSUI के भी छात्रों को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी आ रहे हैं आज पुणे में, छात्रों की गूंज कार्यक्रम करेंगे, छात्रों से मुखातिब होते हैं, उनकी बात पर मंच देते हैं।
1: हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि दो गुट के बीच में किसी तरह का झगड़ा हो गया है आपस में, उसी हिसाब से हमने उसको रिस्पॉन्ड किया। हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराबाजी कर रहे हैं और रास्ता बंद करने की कोशिश की थी, उनको हमने अभी डिटेन किया है, बाकी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक 100% अभी तक हमें बस इतना पता है कि स्टूडेंट्स के आपस में झगड़े हुए हैं, बट एग्जैक्टली क्या है हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा।
0: देखिए अभी आपको बता रहे थे ना कि आज राहुल गांधी जाएंगे पुणे, पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम है और राहुल गांधी उसे संबोधित करेंगे। अब खास बात ये कि पुणे का छात्र गूंज कार्यक्रम छात्राओं को डेडिकेट किया गया है, मतलब इसमें छात्राएं होंगी, छात्राओं को डेडिकेट किया गया है। अब जिस स्थल पर सभा होनी है वहां तैयारियां पूरी हो गई है, सख्त शर्तों के साथ रैली को अनुमति मिली है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला भी किया है रैली को लेकर और निशाना भी साधा गया। इससे पहले भी प्रयागराज में भी हुआ था, प्रयागराज में भी कुछ विवाद देखने को मिला था। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की रैली से BJP डर गई है। जहां पर भी छात्र गुंज कार्यक्रम होता है कांग्रेस की तरफ से यही कहा जाता है। अब आज पुणे में राहुल गांधी की छात्र गुंज रैली है तो वहां पर भी कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि BJP राहुल गांधी से डर गई है।
2: विपक्षी नेता राहुल गांधी इस 22 अगस्त को पुणे के AISSMS कॉलेज के ग्राउंड पर अपनी सभा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अहम बात यह है, छात्रों की गूंज नाम का यह प्रोग्राम होगा जिसमें राहुल गांधी अलग अलग लड़कियों से, स्टूडेंट से उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उन्हें संबोधन करेंगे। मैं भी उसी ग्राउंड पर खड़ा हूं जहां कांग्रेस की तरफ से ये सब जोर शोर से तैयारियां शुरू है। शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और बराबरी का मुद्दा होगा, इसी पर ये छात्रों की गूंज की जाएगी। CJP के आंदोलन से पहले भी राहुल गांधी ने कोटा में एक प्रोग्राम लिया था, वहीं पे भी इंटरेक्शन हुआ था और उसके बाद अब ये पुणे में प्रोग्राम होने जा रहा है जिसकी तैयारियां इस ग्राउंड पर अभी शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले ही पुणे पुलिस ने राहुल गांधी को और उनके यहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स है कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें 30 मुद्दों की एक एडवाइजरी दी है और ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस दी है कि उसी पर अगर ये प्रोग्राम नहीं होता है, उस पर कुछ भी गड़बड़ियां होती है तो पुणे पुलिस इस पूरे मामले में सीधा एक्शन लेगी।
0: जिस जगह पर कार्यक्रम हो रहा है वहां से ओमकार वाबले की आपने रिपोर्ट देखी और ओमकार इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ओमकार, जरा डिटेल में बताइए कि कल कितना हंगामा हुआ, आज राहुल गांधी की जो छात्र गूंज कार्यक्रम है वो क्यों बहुत खास हो जाती है, क्या शर्तें वहां पर पुलिस की तरफ से रखी गई है और क्या हंगामे के आसार है?
3: देखो, प्रोग्राम के पहले पिछले 48 घंटों में अब ये दूसरी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। पहली कंट्रोवर्सी ये थी कि जब कांग्रेस के यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के पास पहुंचे इस कार्यक्रम की परमिशन मांगने के लिए, तो पुलिस ने लगभग 30 अलग अलग कंडीशंस लगा दी, जिसमें प्रोवोकिंग स्टेटमेंट ना हो, ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसे अलग अलग लगभग 30 टर्म्स एंड कंडीशन लगाई और फिर ये परमिशन 2 दिन पहले ग्रांट की गई। दूसरी कंट्रोवर्सी कल रात तक, मतलब वो अभी भी चल रही है। कल सुबह सीओईपी जो कॉलेज है पुणे के, इंजीनियरिंग, वन ऑफ द फेमस गवर्नमेंट कॉलेज, वहां के कुछ छात्रों ने, कुछ लड़कियां थी, उन्होंने वहां के हॉस्टल इश्यूज और जिस तरीके की उनकी फीस स्ट्रक्चर है और ऑर्फन ओबीसी कैटेगरी में जिस तरीके का फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हुआ नहीं, फर्स्ट ईयर को अलग फीस ली गई और सेकंड थर्ड ईयर को ओपन में से ज्यादा फी ली गई, ऐसा कहा। जब मीडिया के साथ उनके इंटरेक्शन हुआ उसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और फिर अब कांग्रेस का जो है उनका कहना है कि उनके एनएसयूआई की कुछ एक दो लड़कियां थी और ये लड़कियां थी, इन्हें हॉस्टल में एबीवीपी वालों ने बंद कर दिया और उसके बाद ये सब और फ्यूअल अप हो गया और फिर कांग्रेस के अलग अलग नेता, यहाँ के विजय वडेट्टीवार हो या फिर यहाँ के जितने भी लोकल नेता है कदम वगैरह, वो सब नेता सीओईपी कॉलेज के बाहर धरने देने बैठ गए, वो पुलिस के साथ बात करने लगे, फिर पुलिस ने तैनाती वहां बढ़ाई और फिर वही एबीवीपी और एनएसयूआई इन कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया। अब रात भर इस पूरा मामला चलता रहा, पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, मतलब शांति बरकरार
0: रखने की शर्तें रखी गई आज के लिए।
3: देखो, आज के लिए जो 30 शर्तें हैं वो 30 शर्तों में से सबसे अहम ये होगा, चलो ये तो बाकी के प्रोग्राम में लाउड स्पीकर वगैरह ये तो सब कॉमन रहता है, लेकिन राहुल गांधी या फिर राहुल गांधी जिस मंच पे होगे उस मंच पे कोई भी नेता इस तरीके की बयानबाजी ना करे जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, ऐसे बैनर्स ना लगाए जाए जिससे प्रोवोकेटिव सिचुएशन आ जाए या फिर जिसे हम डेरोगेटरी रिमार्क कहते हैं, उस तरीके का कोई बयान ना,
0: मतलब प्रशासन की, पुलिस की नजर इस पूरे कार्यक्रम पे होगी कि मंच से क्या होता है क्या नहीं होता है, राहुल गांधी क्या कहते हैं और माहौल खराब ना हो, यह चेतावनी दी गई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करवाने में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 घंटे लग गए। 1 महीने पहले छात्रों के आंदोलन में कथित तौर पर पैलेट गन के घायल हुए एक छात्र की एफआईआर करवाने के लिए कल राहुल गांधी आंदोलन करते दिखाई दिए। शाम को करीब 7:45 बजे पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली।
4: राहुल का धरना, सियासी घमासान, पैलेट गन पर एफआईआर की मांग। धरने के बाद दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली में पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी के धरने से सियासी पारा चढ़ गया। संसद मार्ग थाने के बाहर राहुल गांधी उस युवक को लेकर पहुंचे जिसने पैलेट गन से घायल होने का दावा किया है। राहुल ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की और लंबे धरने के बाद आखिरकार पुलिस ने शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली।
5: अभी कहा शुरुआत हुई है, ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है।
4: दरअसल राहुल गांधी सुबह सबसे पहले कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। उनका सवाल था कि पैलेट गन से जुड़े मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। थाने में राहुल गांधी की ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नूपुर प्रसाद और नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा से मुलाकात हुई। राहुल की मौजूदगी में साहिल लोचाप की शिकायत भी ली गई, लेकिन मामला कोर्ट में होने की बात सामने आने के बाद राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए।
5: फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय की ब्रेक लगी हुई है।
6: राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख।
4: पैलेट गन मामले में राहुल गांधी का धरना ऐसे वक्त में हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। ये समिति सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के कथित जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की भी जांच करेगी।
7: ये अस्वीकार्य बात है, इसको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ गैर संवैधानिक बात है जो BJP की ओर से इस मुद्दे को ध्रुवीकरण के चश्मे से देख रहे हैं।
8: ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। तो ये क्या मतलब है इसका?
4: इस पूरे मामले पर कांग्रेस और BJP आमने सामने है। कांग्रेस इसे कार्रवाई की मांग बता रही है तो BJP राहुल गांधी पर सियासत करने का आरोप लगा रही है। तमाम सियासी बयानबाजी और दिन भर चले धरने के बाद आखिरकार राहुल गांधी की मांग मान ली गई। पैलेट गन मामले में FIR दर्ज कर ली गई। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए बात कर लेते जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले की। कांग्रेस जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले को लेकर थाने में तहरीर दी गई है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में CJP कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दी गई है। जबरिया गांव में घुसे और मारपीट की। देखिए अब ये CJP के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आशुतोष रांका और उनके जो समर्थक गए थे, अब उनके खिलाफ शिकायत दी गई है कि वो जबरदस्ती गांव में घुसे और मारपीट की। जबकि कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें दिख रहा है कि गांव के कुछ लोग CJP कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े थे। ईंट पत्थर लात घूंसे जैसे बना वैसे पिटाई की। CJP ने आरोप लगाया है कि ये BJP के लोग थे जिन्होंने हमला किया।
9: आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं CJP वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और CJP वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा, क्योंकि इनकी पार्टी में सारे गुंडे भरे पड़े हुए। आज देखा हमने किस तरीके से, जब एक भैंस के तबेले में सरकारी स्कूल चल रही थी तब आशुतोष वहां जाने वाला था और इसका खुलासा करने वाला था कि कैसे गरीबों को बच्चों को भैंस के तबेले में बिठाया गया था। और उसी के चलते ये लोग कहीं ना कहीं डर गए और इन लोगों ने, इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की। एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में, इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको जब बच्चों के लिए स्कूल में पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, बाथरूम्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं।
0: जयपुर में कल क्या हुआ था वो आपको बताते हैं। सुबह 8 बजे के आसपास CJP के लोग जयपुर के रामपुरवा गांव पहुंचे थे। स्कूल की पड़ताल करना चाहते थे लेकिन एक समूह ने उन्हें रोका और फिर हमला किया।
10: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुका है, धक्का मुक्की हो रही है आपस में।
11: जयपुर में CJP कार्यकर्ताओं पर हमला,
10: राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी, गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं।
11: सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूंसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूंसे बरसाए।
10: देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं।
11: आखिर स्कूल के निरीक्षण से इतना गुस्सा क्यों है? अगर CJP वाले स्कूल में पहुंच जाते, जांच पड़ताल कर लेते तो स्कूल या गांव वालों का क्या नुकसान हो जाता? सरकारी स्कूलों की हालत खराब है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है। स्कूल वर्ल्ड क्लास है तो निरीक्षण करने आए वॉलंटियर्स पर इस तरह जानलेवा हमला क्यों? पहले तस्वीरों को सीक्वेंस में देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर के रामपुरा गांव का ये प्राथमिक विद्यालय इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ये ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे। गाँव के लोगों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इसी में तू तू मैं हो गयी। पहले गांव वाले सीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से उलझे और फिर गाली गलौज हुई।
12: दूसरी तरफ आशुष और रांका सहित पूरी टीम यहां पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहां पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष रांका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं। यहाँ पर गाँव वाले पीछे भाग रहे हैं
10: और ये देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें देखिए गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर और ये हाथ बिखर चुका है।
11: गांव वाले सीजेपी कार्यकर्ताओं से उलझ गए, पहले धक्का मुक्की और फिर हमला कर दिया। सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा, हाथ में ईंट पत्थर रस्सी बेल्ट जो आया उसी से निहत्ते युवाओं पर ग्रामीण टूट पड़े। अचानक हुए हमले से सीजेपी वॉलंटियर संभल भी नहीं पाए। स्थिति ये हो गई कि कुछ कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक के मारा गया। जिन गाड़ियों से सीजेपी के लोग गांव में घुसे थे उन गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। भागते हुए कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने पीछा करके पीटा। जो भी उनकी पकड़ में आया उसे इतना पीटा कि किसी का हाथ टूट गया, किसी के सिर में चोट लगी तो किसी के कपड़े फट गए। सवाल यह है कि स्कूल का निरीक्षण रोकने के लिए ग्रामीण इतने गुस्से में क्यों आ गए? गांव के सरकारी स्कूलों की हालत सुधरे, सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इससे भला किसी गांव या समाज को क्या दिक्कत हो सकती है? शरद कुमार, जयपुर आज तक।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: विश्राम। भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: बिजली का बिल पेड
5: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
6: कैसे?
5: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
6: वे।
7: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: बी आर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
2: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलेक्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: संभल के बाजार में विवादित जामा मस्जिद के आसपास की सड़कों पर माफी का फीता लेकर घूम रहे प्रशासन के लोग इन इमारतों के आखिरी दिन तय कर रहे हैं। ये उन दुकानों और मकानों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है जो बिना नक्शा पास कराए बनाए गए हैं। ऐसे करीब दो दर्जन दुकान मकानों को स्थानीय प्रशासन ने अवैध और अतिक्रमित मानते हुए आरबी एक्ट की धारा 10 के तहत नोटिस थमाया है।
1: विवाद स्थल के पीछे जो दुकानें हैं जो कि महायोजना में बाजार स्ट्रीट के नाम से दर्ज हैं, उसमें लोगों के द्वारा नक्शे कुछ पास हैं, कई नक्शे पास नहीं है, तो लोगों से उनके नक्शे मांगे गए और जिन लोगों ने नक्शा दिखाया उनको हम नोटिस जारी नहीं किए हैं। जिन लोगों के द्वारा नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया उनको नोटिस जारी की गई है। ये फर्स्ट फेज का सर्वे था, अभी हम और विस्तृत सर्वे में कर रहे हैं। आज भी जेई मौके पर गए हुए हैं, तो जिन लोगों ने नक्शा स्वीकृत भी कराया है उनका मानक के अनुरूप है या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे।
0: दरअसल संभल के डीएम ने मास्टर प्लान 2031 के तहत कार्रवाई शुरू की है, जिसमें संभल के चौधरी सराय से लेकर विवादित धर्मस्थल जामा मस्जिद से होते हुए टंडन तिराहे तक का इलाका मास्टर प्लान के तहत डेवलप होने वाला है। इसी सिलसिले में संभल सदर कोतवाली की जामा मस्जिद के पीछे पश्चिमी हिस्से की दो दर्जन दुकान और मकान प्रशासन के निशाने पर आए, जिनके ध्वस्त होने का समय तय होना अभी बाकी है। लेकिन संभल के डेरा सराय इलाके में समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद के नाम पर बनी इस 3 मंजिला इमारत को बस 15 दिन का मौका मिला है। 5 फरवरी 2026 को ही अवैध घोषित हो चुकी इस इमारत पर अब प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का नोटिस चिपका दिया है। पता चला है कि ये मामला 4 साल से चल रहा था, जब 2022 में जूनियर इंजीनियर की रिपोर्ट के आधार पर मोहम्मद आरिफ, अयूब और मुतवल्ली नवाब इकबाल महमूद के नाम पर दर्ज जमीन पर 56x60 फीट में बने 3 मंजिला मकान को लेकर नोटिस जारी किया गया था। 5 फरवरी 2026 को 3 मंजिला मकान को अवैध मानते हुए अवैध निर्माण घोषित कर दिया था और उत्तर प्रदेश अरबी एक्ट 1958 की धारा 10 के तहत हटाने का आदेश जारी किया गया था। 17 मार्च 2026 को जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल की कोर्ट में अपील दायर हुई और 11 अगस्त 2026 को डीएम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी। अब 15 दिन में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। अभिनव माथुर, संभल आज तक।

डॉक्टर नवीन की नई टीम की पहली बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में तीन सेशन में बैठकें। मोदी एट 25 कार्यक्रम से लेकर जेन जी और चुनावों की तैयारियों पर चर्चा। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता, पुलिस को करना पड़ा दखल। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, ड्रोन पर रोक। झारखंड में छात्र आंदोलन पर संग्राम, रांची समेत कई शहरों में छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता भिड़े। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी का पुतला फूंकने पर बवाल, बीजेपी ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को बताया सरकारी गुंडा। और सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया और एक दिन पाकिस्तान कर देंगे। अखिलेश का पोस्ट एक रंग वाले क्या जाने पीडीए के बहुरंग।

नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की आज तीन बड़ी बैठकें। तीसरी बैठक में पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारी, संगठन रणनीति पर मंथन। पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR, शैक्षणिक परिसर में नियमों के उल्लंघन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने NSUI की कुछ छात्राओं को कॉलेज के अंदर रोक कर रखा था, ये खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होने लगे। कांग्रेस नेता विजय वेड्डीवार भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, हालात नियंत्रण में। रांची में पुतला दहन के दौरान भारी बवाल, अल्बर्ट एक्का चौक पर महिला अभ्यर्थियों के साथ मारपीट, आरोपी को दौड़कर पकड़ा। परीक्षाओं में अनियमितता और अदालती फैसलों को लेकर विरोध जता रहे छात्र और सत्ताधारी, JMM के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस, धक्का मुक्की मारपीट। छात्र नेताओं के आरोप लगाया कि पुलिस और सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण मार्च निकालने से रोकने की कोशिश की। दिल्ली में शुक्रवार को आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने UGC के 2026 समानता संबंधी नियमों पर आपत्ति जताई। लोग जंतर मंतर के आसपास जुटे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहां प्रदर्शन की अनुमति से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में सीमित संख्या के साथ प्रदर्शन की अनुमति थी। प्रदर्शनकारियों ने अब स्थगित हुए UGC इक्विटी नियमों को लेकर भी नारे लगाए और सरकार से इस मुद्दे पर बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला। UGC आरक्षण के खिलाफ जुटे सवर्ण समाज के लोगों को RAF ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी के पुणे दौरे में पहले COEP इंजीनियरिंग कॉलेज में हंगामा हुआ, ABP NSUI कार्यकर्ता आमने सामने। ग्वालियर में आज तक की खबर का असर, खराब सड़कों पर घिरे IAS संघ प्रिय हटाए गए, अब सिंगरौली जिला पंचायत CEO की जिम्मेदारी दी गई। RSS ने जंतर मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शन को केवल भ्रष्टाचार का मामला मानने से इनकार किया, कहा इन प्रदर्शनों के पीछे व्यवस्था की कुछ व्यापक नाकामियां थी। मायावती का अखिलेश यादव पर हमला का 5400 रुपया बना देना, ये कहना अमर्यादित अशोभनीय है, अखिलेश को RLD नेता और जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोली समाजवादी पार्टी की संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहें। योगी सरकार 52 नेताओं को देगी बुलेट प्रूफ जैकेट, अखिलेश यादव सत्यन देव का नाम शामिल। सिलीगुड़ी में अमित शाह ने कहा बीजेपी सरकार पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए कटिबद्ध है, वहीं घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश, विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर, बिना पुष्टि की गई पोस्ट टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। संबल शाही जामा मस्जिद के पास 36 घर दुकानों को नोटिस, बिना मंजूर नक्शे के निर्माण का आरोप। जापानी मेहमानों का आज वाराणसी दौरा, जापानी डेलीगेशन आज काशी की संस्कृति और आध्यात्मिकता से रूबरू होंगे, गंगा आरती भी देखने का कार्यक्रम। मुंबई में FDA की बड़ी कार्रवाई, मैकडोनाल्ड्स ID समेत 7 प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस निलंबित। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में FDA की बड़ी कार्रवाई, होटल में जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां देखी। होटल के किचन में इस्तेमाल के लिए रखा पनीर खराब मिला, टॉयलेट के एंट्री गेट पर काटी जा रही थी सब्जियां। FDA की टीम ने होटल का FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, नियमों के उल्लंघन को लेकर होटल पर पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है। अलीगढ़ के मलखान सिंह चिकित्सालय में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा, खाने की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर कैंटीन को सील किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, बेटे के iPhone दिलाने के जितने की परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। पिता की डांट से नाराज होकर बेटा सुसाइड करने के इरादे से पहाड़ पर पहुंचा था, उसे बचाने की कोशिश में पिता पहाड़ से नीचे गिरे, सदमे में मां ने भी छलांग लगा दी। पूरी घटना के बाद 30 गांव इलाके में शोक की लहर है, जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। मुंबई के गोरेगांव के आर कॉलोनी में दर्दनाक हादसा, पानी की टंकी में डूबने से 2 छात्रों की मौत। नागपुर में लव ट्रायंगल बनी हत्या की वजह, हत्या का वीडियो आया सामने, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली NCR सहित देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। यूपी उत्तराखंड बिहार पंजाब में मौसम रहेगा कूल, मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
लखनऊ में भी झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को मिलेगी राहत। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट, झांसी, जालौन, हमीरपुर और महोबा में मानसून दिखाएगा रंग। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर बड़ी सतर्कता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की। दिल्ली के रायसीना रोड पर चलती कार में अचानक लगी आग, सड़क पर अफरातफरी, धू का जली कार। कोडरमा में कस्तूरबा स्कूल के 300 छात्राओं का 8 किलोमीटर पैदल मार्च, खराब खाना, प्रताड़ना, बदहाल व्यवस्था को लेकर विरोध। गिर सोमनाथ में 60 फीट गहरे कुएं में मिला 5 साल के शेर का शव, जाली टूटने से गिरने की आशंका, जांच शुरू। कंकाड़ा में पिलर के आसपास बालू उठाव और भारी वाहनों की आवाजाही में नींव कमजोर होने का आरोप। प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, दरोगा पर लगाए तमाम आरोप। लखनऊ में बारिश के बाद जलभराव, पार्क रोड पर एमएलए आवास के बाहर पानी भर गया। फरीदकोट में एक छात्र चोर ने 1.5 मिनट में 1.5 लाख रुपए उड़ा दिए, वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हैदराबाद के गोलकुंडा में 400 साल पुराने कुतुबशाही मकबरा परिसर के नीचे विशाल सुरंग मिली। हमीरपुर में अपनी बनाई मिठाई दुकान से दुकानदार ने इनकार कर दिया खाने से, एसडीएम ने सारी मिठाई नष्ट करवा दी। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, ओवर स्पीड बोलेरो ने टक्कर मारी, 4 लोगों की मौत, परिवार की। दिल्ली के हॉस्टल में 19 साल की नर्सिंग छात्रा ने की आत्महत्या, मामले की जांच जारी है। उड़ीसा के बोलंगीर में मानव बलि के शक में 40 साल के व्यक्ति की हत्या, 5 लोग गिरफ्तार। रुड़की में भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, 6 घायल, 4 मोटरसाइकिल आपस में टकराई। नोएडा में नाबालिग ने चलाई कार, पीछे से दूसरी कार में टक्कर मारी, FIR दर्ज हुई। नासिक में गड्ढों को भरने के लिए आया ट्रक खुद गड्ढे में फंस गया, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। रेवाड़ी में 3 युवकों पर लाठी डंडे से जानलेवा हमला, 2 छात्रों की मौत हो गई, गांव में पुलिस बल तैनात है। उज्जैन में महिलाओं से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर 1.5 करोड़ की ठगी, आरोपित राजस्थान से गिरफ्तार। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग की ऑडियो वायरल हुई, बदनामी के डर से शादीशुदा महिला ने जहर खाकर जान दी, पति ने 5 लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। भावनगर में बनी नकली विदेशी शराब पीने से 9 युवकों की मौत हो गई, 39 लोग अभी भी अस्पताल में। कटिहार में 2 महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण हमला, 1 की मौत, तो दूसरा पश्चिम बंगाल के मालदा में इलाज, कटिहार पुलिस हत्या को बता रही है संदिग्ध। मुंबई में सैंको गोल्ड एंड डायमंड का पुरुषों की ज्वेलरी में नया प्रयोग, TiO2 कलेक्शन में टाइटेनियम के साथ सोना और असली हीरे। हर्षवर्धन राणे बने सैंको गोल्ड एंड डायमंड्स के पुरुषों की नई TiO2 ज्वेलरी लाइन का चेहरा, बी बोल्ड बी स्ट्रॉन्ग कैंपेन में दिखेगा अभिनेता का खास अंदाज। दरभंगा में बिहार ग्रामीण बैंक का मुखिया, आउटरीच कार्यक्रम संयोजक और शाखा प्रबंधक मेज झा ने गरीब किसान और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया। हैदराबाद के गोलकुंडा में 400 साल पुराने कुतुबशाही मकबरा परिसर के नीचे विशाल सुरंग मिली। जैसलमेर में सीमा के पास गरजे अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर, हाईवे पर लैंडिंग, टेक ऑफ का बड़ा सैन्य अभ्यास। नीरज चोपड़ा ने लॉर्डन डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो में 88.05 मीटर के साथ दूसरे स्थान हासिल किया, श्रीलंका के रूमेश पतिरागी ने 88.14 मीटर के थ्रो से जीता गोल। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लोकप्रिय इंसीडियस फ्रेंचाइजी की 6 फिल्म। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू जंगल, जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी ओटीटी पर रिलीज, G5 पर स्ट्रीम। तमिलनाडु के सीएम सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन ओटीटी पर स्ट्रीम, G5 पर उपलब्ध। भारत का टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू, दर्शकों में क्रेज, 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहली बार महात्मा गांधी का रोल करेंगे एक्टर मनोज वाजपेयी, सुधीर मिश्रा की फिल्म गांधी एंड माय मदर में आएंगे नजर।
रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका पादुकोण की एंट्री, आलिया भट्ट के साथ निभाएंगे अहम और दमदार रोल। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म ज्वेलर 2 ने रिलीज से पहले रचा इतिहास, करीब 160 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ रकम में बिके डिजिटल राइट्स। 3 साल बाद जोरदार कमबैक को तैयार बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, फिल्म किंग की शूटिंग अंतिम चरण में। अमेरिका में 25% तक सस्ता हुआ ग्राउंड बीफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आयात शुल्क में 90 दिनों की छूट का किया ऐलान, बीफ की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण करने के लिए फैसला। रूस के पंप में रूसी तेल रिफाइनरी का यूक्रेन पर हमला, वॉल्ड रोड में मिलिट्री एयरबेस को बनाया निशाना, जेलेंस्की ने पुष्टि की। रूस के दक्षिणी शहर रोस्तो में ईंधन की भारी किल्लत, तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। ऑस्ट्रेलिया में जासूसी के आरोप में रूसी ऑस्ट्रेलिया नागरिक गिरफ्तार, यूक्रेन सेना ने से जुड़ी जानकारी रूसी खुफिया एजेंसी को देने का आरोप, 2024 में ट्रेनिंग ली थी। अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर लगाए नए प्रतिबंध, कैश नेटवर्क से जुड़े 10 लोगों पर बैन, ये नेटवर्क लेबनान, तुर्की, यूएई, ईरान के बीच करोड़ों डॉलर की नकदी पहुंचाता था। यमनतट के पास तेल टैंकर अगवा, अदन की खाड़ी में 6 हथियारबंद बदमाशों ने टैंकर को हाईजैक किया, यूके एनजीओ रिपोर्ट के मुताबिक हथियारबंद बदमाश जहाज को कंट्रोल कर रहे हैं और उसे सोमालिया ले जा रहे हैं। चीन सागर में तनाव के बीच चीन और इंडोनेशिया में सैन्य संबंध मजबूत करने पर बनी सहमति, ऊर्जा, व्यापार, रेल और एआई समेत कई अहम समझौते, सैन्य अभियान और ट्रेडिंग को लेकर भी सहमति। स्विट्जरलैंड के थेसिस में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, 8 लोग घायल, 14 लोग सुरक्षित, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, 5 लोग लापता है। दक्षिण कोरिया में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, लाल पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे हजारों कर्मचारी, एआई ऑटोमेशन का किया विरोध, कर्मचारियों ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग की। कांगो में बेकाबू हुआ इबोला वायरस, अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत, संयुक्त राष्ट्र ने इबोला से निपटने के लिए फंड की कमी बताई, दुनिया भर से अपील।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज आपको बताएंगे आपकी नींद के बारे में। नींद आती क्यों है, कब नींद की समस्या होती है और बेहतर नींद के उपाय क्या हैं। ज्योतिष के अनुसार आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें।

दिनांक 22 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर 2:49 तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 2:49 तक राहु काल का समय प्रातः काल 9 से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, नींद जो है वो मानव जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस नींद में ग्रहों की भूमिका क्या है। देखिए, नींद व्यक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यक आवश्यकता है। जीव के 4 लक्षण बताए गए हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इसमें निद्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। बिना नींद के या कम नींद के हम कई बीमारियों और समस्याओं के शिकार हो सकते हैं। ज्योतिष में लग्न, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव से नींद और शैया सुख यानी नींद और बेड कंफर्ट देखा जाता है। शनि नींद का प्रमुख ग्रह है। आपके मस्तिष्क में हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है। शनि की नींद में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा चंद्रमा, शुक्र और बुध ये भी नींद से संबंध रखते हैं। जो जल की राशियां हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, और जो वायु की राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये नींद की राशियां हैं। इनका नींद से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो नींद मुख्यतः शनि, चंद्र, शुक्र और बुध से संबंध रखती है। इन ग्रहों को देख करके आप नींद की स्थितियों के बारे में जान सकते हैं। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और सावन के महीने में किया जाने वाला एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन

होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं, कौन सी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति को अच्छी और गहरी नींद आती है। अगर कुंडली शनि प्रधान है, कुंडली में शनि की प्रधानता है, तो आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। चंद्रमा, शुक्र या बुध, इसमें से एक भी अगर सही जगह बैठ जाए तो सामान्यतः अच्छी नींद आती है। कुंडली के केंद्र में लग्न चतुर्थ, सप्तम और दशम या अष्टम भाव में केवल अगर शुभ ग्रह हो तो भी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है। कुंडली में जल तत्व की मात्रा मजबूत हो तो भी नींद अच्छी आती है। हालांकि जल की मात्रा मजबूत होने पर आलस्य भी बढ़ता है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लोगों को सामान्यतः अच्छी नींद आती है। जिनके घर के पास जल का स्रोत होता है, नदी है, तालाब है, ऐसे लोगों को भी अच्छी नींद आती है, क्योंकि जल के पास रहने से चंद्रमा की तरंगें मजबूत होती हैं और निद्रा बेहतर आती है। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, तनाव कम होता जाएगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, काम की अधिकता रहेगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

करियर में सुधार होगा, उपहार आपको मिल सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अभिजीत जी ने हमें लिखा है और अभिजीत जी हमें बेंगलोर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 फरवरी 1979 जन्म का समय रात में 8:40, जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अभिजीत कह रहे हैं कि मैं काफी समय से बेंगलोर में नौकरी कर रहा हूं और अब मैं वापस कोलकाता जा करके वहां अपना कोई काम या अपना कोई व्यापार करना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा? अभिजीत जी, आपकी कुंडली में आपके स्थान परिवर्तन की संभावना साल 2027 में जून के बाद बनती है। उसके बाद आप कोलकाता वापस जा सकते हैं और वहां जाके टेक्नोलॉजी का या कोई टेक्निकल व्यापार कर सकते हैं। जून 27 के बाद ऐसा करिए तो आपके लिए बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद आने में समस्या होती है, रात रात भर करवट बदलते बीत जाता है लेकिन नींद नहीं आती। तो कब नींद आने में समस्या होती है? अगर कुंडली में शनि दूषित हो गया, अगर कुंडली में शनि नकारात्मक प्रभाव में है तो इसके दो नुकसान हैं। एक तो गहरी नींद नहीं आएगी, नींद में समस्या होगी। दूसरे, हर समय आलस्य बना रहेगा। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र पीड़ित हो, गड़बड़ स्थिति में हो तो बिना वजह के नींद नहीं आती। आदमी दवाइयां भी खाता है लेकिन नींद नहीं आती। अगर बुध पीड़ित हो गया कुंडली में तो तनाव की वजह से, चिंता की वजह से नींद नहीं आती। आदमी बहुत टेंशन पालता है और उसको नींद नहीं आती। अगर कुंडली में अग्नि तत्व की प्रधानता हो, फायर एलिमेंट ज्यादा हो या पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो तो आदमी शरीर की समस्याओं की वजह से या दर्द या थकान की वजह से सो नहीं पाता है। अगर मंगल आपके नींद को प्रभावित करे तो शारीरिक तकलीफ से नींद नहीं आएगी। आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है, शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, इस वजह से नींद नहीं आती। यानी नींद ना आने का एक कारण है कि बिना वजह के नहीं आती है, दूसरा है कि चिंता और तनाव से नींद नहीं आती है, और तीसरा कारण है शारीरिक समस्या इतनी ज्यादा है कि उसकी वजह से नींद नहीं आती है। यानी अलग अलग कारण हो सकते हैं जब आपको नींद ना आए। नींद पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे
आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, कोई मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन हानि से बचाव करें, ऑफिस में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो देखिए, नींद आने और ना आने के अलग अलग कारण हो सकते हैं और अच्छी नींद आना आपके ग्रहों पर, आपकी कुंडली पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपको गहरी नींद आए, अच्छी नींद आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे का रंग क्रीम, हल्का हरा या गुलाबी रखिएगा। कमरे में लाल, काले और भूरे रंग का प्रयोग मत करिएगा। अगर आपके कमरे में हल्की सुगंध आती रहे, हल्की खुशबू आती रहे तो बहुत अच्छा होगा। जिस पलंग पर सोते हैं उसके नीचे कोई भारी सामान मत रखिए, खास तौर से लोहा बिल्कुल मत रखिए। शयन कक्ष को साफ सुथरा रखिए और अपने बेडरूम में गंदे कपड़े भी मत रखिएगा। अगर आपको नींद बार बार टूटने या खुलने की समस्या है कि आप रात में सोए, दो घंटे बाद नींद खुल गई, फिर नींद नहीं आई, या कई कई टुकड़े में नींद आती है, तो गले में चांदी जरूर पहनिए और लाल तिलक का प्रयोग मत करिएगा। लाल तिलक का प्रयोग करने से फायर बढ़ता है, नींद कम होती है। रात में सोते समय अपने सर के नीचे यानी पलंग के पाए के पास अपने सिरहाने लोटे में जल भर करके रख दें और सुबह उठकर उस जल को पौधे में डाल दें। नियमित रूप से हफ्ता 10 दिन तक ऐसा करेंगे, आपकी नींद बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जिस कमरे में सूर्य और चंद्रमा की किरणें आती हों, थोड़े समय के लिए भी अगर सूर्य का प्रकाश आता हो
तो उसी कमरे को सोने के लिए प्रयोग करिएगा। ज्योतिष के हिसाब से अच्छी नींद आए, गहरी नींद आए, इसके लिए सलाह लेकर एक मोती या एक ओपल अगर आप धारण करें तो ये आपके मन को निश्चिंत करेगा और इससे आपको बेहतर नींद आनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

ही परास्त होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा नील।

काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो, गोधूली वेला का समय हो, उस समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, सूर्यास्त का जो समय है, जो गोधूली वेला का समय है, वो लक्ष्मी के आगमन का समय होता है। अगर आप इस समय सोएंगे तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होगा, आपको धन का अभाव होगा और जीवन में दरिद्रता आ सकती है। गोधूली वेला के समय, सूर्यास्त के समय सोने से आयु कम होती है, ऐसा भी बहुत जगहों पर माना जाता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि सूर्यास्त का समय पूजा उपासना का समय है, उस समय सोना नहीं चाहिए। पूजा उपासना नियमित रूप से सूर्यास्त में करनी चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, धन का लाभ होगा। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। नंबर 6, धन लाभ के योग हैं। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। और नंबर 9, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे दीपक जला दीजिएगा सरसों के तेल का। ऐसा करने से आपके रोजगार की समस्या में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सावित्री जी ने हमें लिखा है और सावित्री जी हमें पटना बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1967। जन्म का समय सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास और जन्म का स्थान है बक्सर बिहार। सावित्री जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य कुछ दिनों से बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है, तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं और मानसिक रूप से भी चिंता बहुत होती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन ठीक हो जाए। सावित्री जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपनी हड्डियों का और अपनी आंखों का ध्यान दें
कोई चोट चपेट या दुर्घटना ना हो, इस बात की सावधानी आपको बनाए रखना चाहिए। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। लंबे समय तक, साल भर तक राम रक्षा स्तोत्र पढ़िएगा, मोती पहनिएगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ 2 लौंग रखकर ले जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

वृश्चिक राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। सिंह राशि के लोगों को चिंताएं और तनाव आपका बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज दशमी तिथि है, शनिवार की दशमी विशेष अशुभ होती है, इसलिए आज कोई शुभ और मंगल कार्य ना करें। दशमी से लंबी आयु मिलती है, इसलिए आज यम देवता के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए, आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होगी। सावन का पावन महीना चल रहा है, तो आइए आपको बताते हैं भाग्य को बेहतर करने के लिए एक सावन सूत्र।

उन्नति हो, उसका डेवलपमेंट हो, तो सावन में एक पीपल का या एक बरगद का पौधा किसी भी दिन सार्वजनिक स्थान पर लगाइएगा, निश्चित रूप से संतान की उन्नति होगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
1: और आइए अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं तेलंगाना से, जहां भुवनगिरी में फार्मा कंपनी में धमाका हुआ और धमाके में दो लोगों की मौत की खबर है। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कंपनी का रिएक्टर ब्लास्ट कर गया जिसमें कई वर्कर फंस गए। कुछ लोगों को बर्न इंजरी हुई है जबकि दो लोगों की मौत हो गई। और ये देखिए, दवा कंपनी भुवनगिरी में रिएक्टर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद देखिए कैसी जोरदार आग यहां पर धधक रही है। आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर मौजूद है और यह बताया जा रहा है कि 10 लोग घायल हैं, बर्न इंजरी जिनको हुई है। और बर्न इंजरी बहुत खतरनाक होती है, बहुत कष्टदायक होती है। दो लोगों की मौत हो चुकी है और जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाया गया है, उनका इलाज जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कई वर्कर फंसे हुए बताए जा रहे थे, हालांकि सबको रेस्क्यू किया गया या नहीं किया गया अभी ये जानकारी आना बाकी है, लेकिन अभी कोशिश यही की जा रही है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर रेस्क्यू किया जाए और जो घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जाए। अब्दुल बशीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, बताइए क्या लोग अभी भी यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या हालात है इस वक्त मौके पर?
2: ये जो ब्लास्ट हुआ यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक फार्मा कंपनी में ये ब्लास्ट हुआ कल रात लगभग 10:05 पे जो है रिएक्टर ब्लास्ट बताया जा रहा है, जिसके बाद करीब 10 लोग घायल हुए थे और दो लोग 10 लोग घायल के अलावा दो लोग की हालत बहुत क्रिटिकल बताई गई थी। जब ये ब्लास्ट हुआ तो उनकी अस्पताल में मौत हो चुकी है और दो और लोग हैं जिनके जिनको 50% से अधिक बर्न हुए हैं जिनकी हालत अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। टोटल 10 लोग का इलाज अभी चल रहा है अस्पताल में और दो लोग मृतक घोषित किए गए हैं। पुलिस की तरफ से इस ब्लास्ट की वजह अभी तक बताई नहीं गई है, पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर स्पॉट पर पहुंचे और सारी आग को जो चपेट में लिया गया और जितने भी घायल थे उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। जो मृतक है उनको उनका पोस्टमार्टम करते हुए उनके शव को जो है उनके परिवारजनों को दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई जारी की है, जिसमें जो ब्लास्ट हुआ है क्या वजह इस ब्लास्ट की थी और क्या क्या कोई लापरवाही है इसको लेकर जो जांच अभी जारी है।
1: और देखिए 50% से ज्यादा बर्न इंजरी रहती है तो वो बहुत खतरनाक श्रेणी में आती है, बहुत मुश्किल होती है डॉक्टर्स के लिए भी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात झारखंड की करते हैं, जहां रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हो गया। छात्र हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला जलाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि जेएमएम के छात्र विंग और प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई और मामला बिगड़ गया। फिर जेएमएम के छात्रों और प्रदर्शनकारियों में जमकर झड़प हुई। राहुल गांधी और हेमंत सोरेन का पुतला फूंकना चाह रहे थे, लेकिन जेएमएम का राइट विंग आता है, प्रशासन आता है, उनको रोकता है, फिर मामला धक्का मुक्की तक पहुंच जाता। हालात देखिए आप, ये देखिए,
3: आज हम लोग का पुतला दहन कार्यक्रम पहले से तय था, हम लोग आ रहे थे और ये झारखंड सरकार पुलिस के यार ने आज जो माहौल किया है हर एक जिला में अपना गुंडा को भेजा है, यहाँ भी गुंडा भेजा था, हर जिला में लाठीचार्ज किया है, यहाँ भी पुलिस जबरदस्ती कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है और जो हमारे गल साथी को छेड़ रहे
4: हैं। फिराया लाल होते हुए आना था, इन्होंने पुलिस और प्रशासन के द्वारा दिए गए रूट को फॉलो नहीं किया, ये अपने मन से रेडियम चौक होते हुए आए, बिना अनुमति के इन्होंने जेपीएससी कार्यालय के सामने जो है प्रदर्शन किया। भीड़ के कुछ लोगों के द्वारा जो है अन्य जो गुट था उसके दो लोगों के बुरी तरीके से मारपीट कर दी गई है। पुलिस के द्वारा विधि व्यवस्था को संधारित करने हेतु हल्का बल का प्रयोग किया गया है, विधि व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है, भीड़ के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। हॉस्पिटल में सदर हॉस्पिटल में जहाँ पे मरीज बहुत सारे क्रिटिकल अवस्था में है उनको परेशान किया जा रहा है। विधि व्यवस्था की मतलब पुलिस जो है निगरानी में है और विधि व्यवस्था को संधारित किया जा रहा है।
1: और अब आपको लिए चलते हैं जंतर मंतर। शुक्रवार शाम आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। अब प्रदर्शन में सवर्ण समाज के लोगों और युवाओं ने हिस्सा लिया था। प्रदर्शनकारियों ने जाति की बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग उठाई थी। फिर से सुनिए, प्रदर्शनकारियों ने जाति की बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग उठाई। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। शनिवार को भी प्रदर्शन और हंगामे के आसार को देखते हुए जंतर मंतर पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई। उसके बाद प्रदर्शनकारियों को वहां से भगा दिया गया और उनको हिरासत में भी ले लिया गया।
5: आरक्षण की मांग को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जो आज सुबह से जुटे थे, फिलहाल उनको पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से जो है वो हटा दिया है। ये तस्वीरें जंतर मंतर पर ही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल जो है वो इस वक्त तैनात किया गया है। सुबह से ही ये प्रदर्शनकारी आरक्षण की मांग को लेकर के जुटना शुरू हुए थे। दरअसल पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है, लेकिन दोपहर होते होते ये प्रदर्शनकारी काफ़ी बड़ी संख्या में जुटने लगे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इनको रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। लेकिन ये प्रदर्शनकारी रामलीला मैदान नहीं गए, फिलहाल पुलिस ने इनको जो है वो जंतर मंतर से जो है वो हटा दिया है। कई सारे प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन भी किया गया। कई और प्रदर्शनकारी इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिनको दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जंतर मंतर की है। कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, फिलहाल अब उनको धीरे धीरे करके पुलिस जो है वो यहाँ पर डिटेन कर रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जंतर मंतर की, कई सारे प्रदर्शनकारी जो कि जुटे थे आरक्षण की मांग को लेकर के। ये लोग चाह रहे थे कि आर्थिक आधार पर जो है वो आरक्षण हो, ना कि जातिगत आधार पर, इसी को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस इनके जो तमाम अधिकारी है, पैरामिलिट्री की जो फोर्स है, वो उनको धीरे धीरे तमाम प्रदर्शनकारियों को यहाँ पर डिटेन कर रही है। जंतर मंतर और उसके आसपास के तमाम हिस्सों में भारी पुलिस बल जो है वो इस वक्त तैनात है, और जहाँ जहाँ प्रदर्शनकारी थे उनको फिलहाल यहाँ से बसों में भर करके जो है वो पुलिस डिटेन कर रही है। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर टॉलस्टॉय मार्ग की है, जहाँ पर इस वक्त जबरदस्त पुलिस का एक्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान आपको पूरे जंतर मंतर उसके आसपास के हिस्से में इस वक्त जो है वो नजर आएंगे, क्योंकि प्रदर्शनकारी जिस तरीके से सुबह 12 बजे के बाद जुटना शुरू हुए, उसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर जो है वो प्रदर्शनकारी पहुंचे, जिसके कारण पुलिस को दोनों तरफ जंतर मंतर के गेट्स को जो है वो फिलहाल बंद करना पड़ा। उसके बाद पुलिस की तरफ से कहा गया कि आपके पास प्रदर्शन की कोई भी जो है वो परमिशन नहीं है, ऐसे में आप लोग जो है रामलीला मैदान जो है वो प्रदर्शन करें। लेकिन फिलहाल ये प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर ही टिके रहे, जिसके बाद अब इनको पुलिस की तरफ से जो है वो डिटेन किया गया। लगभग 20 से 25 के आसपास जो प्रदर्शनकारी हैं उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया है। सत्या के साथ सुशांत मेरा दिल्ली आज तक।
1: बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक आज दिल्ली में होगी, सबकी नजर इस पर है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में नई टीम का औपचारिक परिचय कराया जाएगा। 17 अगस्त को घोषित नई टीम में अनुभवी नेताओं के साथ युवा और महिला चेहरों को अहम जिम्मेदारी मिली है। वीएल संतोष महासचिव संगठन के पद पर बने हैं, जबकि स्मृति ईरानी को महासचिव बनाया गया है। विप्लव देव, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, सतीश पूनिया समेत कई नेताओं को भी महासचिव की जिम्मेदारी मिली है। नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जिनमें 6 महिलाएं हैं। राष्ट्रीय सचिवों की भी नियुक्ति हुई है। पीयूष गोयल को दोबारा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया है, और तरुण चुग को सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज, हेमंत जोशी को युवा मोर्चा और रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा की जिम्मेदारी मिली है। 2027 मकसद है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 2027 के मद्देनजर ये जो नई टीम के साथ आज नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष की बैठक है, ये कितनी अहम है और क्या खास आज होने वाला है?
6: देखिए, बिल्कुल बहुत अहम बैठक है, क्योंकि 10 बजे से बैठक शुरू होगी और नेताओं का पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले जो नई टीम है उसका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, और उसके बाद जो है 1 बजे से जो है मोदी एट 25 प्रोग्राम, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए जन सेवा है, उसके 25 वर्ष पूरे होने का जो कार्यक्रम है उसको लेकर क्या, किस तरीके से रहेगा, क्या पार्टी का पूरा प्रोग्राम रहने वाला है, उस पर चर्चा होगी। और 6 बजे नितिन नवीन जो है वो पार्टी ऑफिस बेयरर्स और जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरीके से पार्टी जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2027 भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कहें तो चुनावी वर्ष के रूप में सबसे बड़ा वर्ष है, क्योंकि 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव है। पहले 5 राज्यों के हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है, उसके साथ साथ हिमाचल और गुजरात के जो चुनाव है वो 2027 के अंत में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहनी है, और भारतीय जनता पार्टी की ये जो नई युवा और जोश वाली टीम है जिसमें अनुभवी लोग भी हैं, वो किस तरीके से जो है किया जाएगा, उनका समावेश करते हुए कैसे पार्टी के संगठन को और मजबूत करना है, इन सभी पहलुओं पर जो है नितिन नवीन पार्टी के जो नए ऑफिस बेरर और जो सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष है उनको मार्गदर्शन करेंगे
1: और मजबूत करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से यहाँ की जा रही है, और यही उद्देश्य इस बैठक का है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की पीडीए की परिभाषा पर तंज किया, तो वहीं अखिलेश यादव पर कल्याण सिंह का अपमान करने का आरोप भी लगाया।
7: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं, पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहन और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जाति अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था, उस हर हिंदू का अपमान था ये।
1: सीएम योगी की तरफ से वार किया गया तो अखिलेश यादव देर नहीं लगाते हैं पलटवार करने में। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया और जो उनका अंदाज है वैसे ही तंज किया। अखिलेश ने लिखा कि एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। ये देखिए, खबरें लगातार जारी रहेंगी, अभी वक्त उछला हेडलाइंस का।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर मां का भरोसा प्यार से परोसा।

नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में तीन सेशन में बैठ के हैं। मोदी 25 कार्यक्रम से लेकर जेन जी और चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता, पुलिस को करना पड़ा दखल। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, ड्रोन पर रोक। झारखंड में छात्र आंदोलन पर संग्राम, रांची समेत कई शहरों में छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता भिड़े। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी का पुतला फूंकने पर बवाल, बीजेपी ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को बताया सरकारी गुंडा। सीएम योगी ने अखिलेश को फिर घेरा, कहा इनके पीडीए का पी पिछड़ा से पंडित हो गया और आगे जाकर पाकिस्तान हो जाएगा। अखिलेश का पोस्ट एक रंगी किया जा रहा है, पीडीए के बहुरंग। और अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज हो गई। अब मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा आरएलडी को ऐसा कहना अपमानजनक, माफी मांगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष।

बारिश और बादलों के बीच दिल्ली एनसीआर की सुबह हुई रिमझिम बरसात से गर्मी से राहत। सुबह सुबह बारिश की फुहार से मौसम में भी राहत, कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम में भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार, एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में। दिल्ली एनसीआर सहित देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी। 24 अगस्त तक हिमालय से लेकर मध्य भारत तक फुल स्पीड में दिखेगा मानसून, आंधी और तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, सतर्क रहने की अपील। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, बिहार और पंजाब में मौसम रहेगा कूल। मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चल सकती हैं हवाएं। यूपी में राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से लोगों को राहत। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट, झांसी, जालौन, हमीरपुर और महोबा में मानसून दिखाएगा रंग। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर बड़ी सतर्कता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जेपी नड्डा से बैठक की। दिल्ली के रायसीना रोड पर चलती कार में अचानक लगी आग, सड़क पर अफरा तफरी, वीडियो आया सामने। कोडरमा में कस्तूरबा स्कूल के 300 छात्राओं का 8 किलोमीटर पैदल मार्च, खराब खाना, प्रताड़ना, बदहाल व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोला, कई छात्राएं जख्मी। गिर सोमनाथ में 60 फीट गहरे कुएं में मिला 5 साल के शेर का शव, टूटी जाली से गिरने की आशंका, वन विभाग ने जांच शुरू की। जामताड़ा में पिलर के आसपास बालू उठाव और भारी वाहनों की आवाजाही से नींव कमजोर होने का आरोप। प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, दरोगा पर लगाए बहुत से आरोप। लखनऊ में बारिश के बाद जलभराव, पार्क रोड पर एमएलए आवास के बाहर पानी भरा। फरीदकोट में छात्र चोर ने महज 3 मिनट में 1.5 लाख रुपए उड़ा दिए, वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हैदराबाद के गोलकोंडा में 400 साल पुराने कुतुबशाही मकबरा परिसर के नीचे मिली विशाल सुरंग। हमीरपुर में अपनी बनाई मिठाई खाने से दुकानदार ने इनकार किया, एसडीएम ने सारी मिठाई नष्ट करवा दी। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, ओवर स्पीड बुलेरो ने टक्कर मारी, 4 लोगों की मौत हो गई, एक ही परिवार के थे। मुंबई में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, मैकडॉनल्ड्स समेत 7 प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस निलंबित। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, होटल में जांच के दौरान मिली खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां। होटल के किचन में इस्तेमाल के लिए रखा पनीर मिला खराब, टॉयलेट के एंट्री गेट पर काटी जा रही थी सब्जियां। एफडीए की टीम ने होटल का FSSAI लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, नियमों के उल्लंघन को लेकर होटल पर पहले भी लगाया जा चुका है जुर्माना। अलीगढ़ के बलखान सिंह चिकित्सालय में खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा, खाने की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर कैंटीन को सील किया। छत्रपति संभाजीनगर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, गायत्री बेवाड़ प्राइवेट लिमिटेड का FSSAI लाइसेंस निलंबित हुआ। नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की आज 3 बड़ी बैठक, तीसरी बैठक में पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारी और संगठन की रणनीति पर मंथन। जयपुर के रामपुरा स्कूल के निर्माण के लिए 6 लाख रुपए विधायक निधि से जारी किए, कुल लागत 18 लाख रुपए। जयपुर में सीजेपी की टीम से मारपीट मामले में दोनों पक्षों ने देर रात दर्ज कराई FIR। पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR, शैक्षणिक परिसर में नियमों के उल्लंघन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने NSUI की कुछ छात्राओं को कॉलेज के अंदर रोक कर रखा था, यह खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता वहां इकट्ठा होने लगे। कांग्रेस नेता विजय रेड्डीवार भी मौके पर पहुंचे, घटना के बाद परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, फिलहाल हालात नियंत्रण में। रांची में पुतला दहन के दौरान भारी बवाल, अल्बर्ट एक्का चौक पर महिला अभ्यर्थियों के साथ मारपीट, आरोपित को दौड़कर पकड़ा। परीक्षाओं में अनियमितता और अदालती फैसलों को लेकर विरोध जता रहे छात्र और सत्ताधारी JMM के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस, धक्का मुक्की और मारपीट। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस और सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शांतिपूर्ण मार्च निकालने से रोकने की कोशिश की। दिल्ली में शुक्रवार को आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों ने UGC के 2026 के समानता संबंधी नियमों पर आपत्ति जताई। लोग जंतर मंतर के आसपास जुटे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहां प्रदर्शन की अनुमति से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में सीमित संख्या के साथ प्रदर्शन की अनुमति थी। प्रदर्शनकारियों ने अब स्थगित किए जा चुके UGC इक्विटी नियमों को लेकर भी नारे लगाए और सरकार से इस मुद्दे में बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला, UGC आरक्षण के खिलाफ जुटे सवर्ण समाज के लोगों को RAF ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी के पूरे दौरे से पहले COEP इंजीनियरिंग कॉलेज में हंगामा, ABVP और NSUI कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए।
ग्वालियर में आज तक की खबर का असर, खराब सड़कों पर घिरे आईएएस संघ प्रिय हटाए गए, अब सिंगरौली जिला पंचायत सीईओ की जिम्मेदारी। आरएसएस ने जंतर मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शनों को केवल भ्रष्टाचार का मामला मानने से इनकार किया, कहा इन प्रदर्शनों के पीछे व्यवस्था की व्यापक नाकामियां। मायावती का अखिलेश यादव पर हमला, कहा 5400 रुपया बना देना ये कहना अमर्यादित और अशोभनीय है, अखिलेश को आरएलडी नेता और जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोली समाजवादी पार्टी की संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहें। योगी सरकार 52 नेताओं को देगी बुलेट प्रूफ जैकेट, अखिलेश यादव स्वतंत्र देव का नाम शामिल। सिलीगुड़ी में अमित शाह ने कहा बीजेपी सरकार पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए कटिबद्ध, वहीं घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश, विधानसभा सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर कार्रवाई। अधिकारियों कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर अब भी नजर, बिना पुष्टि की गई पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। संबलशाही जामा मस्जिद के पास 36 घर दुकानों को नोटिस, बिना मंजूर नक्शे के निर्माण का आरोप। जापानी मेहमानों का आज वाराणसी दौरा, जापानी डेलीगेशन आज काशी की संस्कृति आध्यात्मिकता से रूबरू होंगे, गंगा आरती भी देखेंगे। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना आई सामने, बेटे के आईफोन दिलाने की जिद ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। पिता की डांट से नाराज होकर बेटा सुसाइड करने के इरादे से पहाड़ पर पहुंचा था, उसे बचाने की कोशिश में पिता पहाड़ से नीचे गिरे, सदमे में मां ने छलांग लगा दी। पूरी घटना के बाद पूरे 30 गांव इलाके में शोक की लहर दौड़ गई, पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी। मुंबई के गोरेगांव के आरे कॉलोनी में दर्दनाक हादसा, पानी की टंकी में डूबने से 2 छात्रों की मौत। नागपुर में लव ट्रायंगल बनी हत्या की वजह, हत्या का वीडियो आया सामने, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के हॉस्टल में 19 साल की नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या की, जांच जारी है। ओडिशा के बुलंदगीर में मानव बलि के शक में 40 साल की व्यक्ति की हत्या, 5 गिरफ्तार। रुड़की में भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, 6 घायल, एक के बाद एक 4 मोटरसाइकिल टकरा गई। नोएडा में नाबालिग ने चलाई कार, पीछे से दूसरी कार में मारी टक्कर, पुलिस ने FIR दर्ज की। नासिक में गड्ढों को भरने के लिए आया ट्रक खुद गड्ढों में गिर गया, वीडियो वायरल हो रहा है। रेवाड़ी में 3 युवकों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला, 2 छात्रों की मौत, पुलिस बल तैनात। उज्जैन में महिलाओं से दोस्ती कर शादी का झांसा देकर 1.5 करोड़ की ठगी, आरोपित गिरफ्तार, राजस्थान से। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग का ऑडियो वायरल, बदनामी के डर से शादीशुदा महिला ने जहर खाकर जान दी, पति ने 5 लोगों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। भावनगर में बनी नकली विदेशी शराब पीने से 9 युवकों की मौत, अस्पतालों में 39 लोग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कटिहार में 2 महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण हमला, 1 की मौत, दूसरा पश्चिम बंगाल के मालदा में इलाज, कटिहार पुलिस हत्या को बता रही संदिग्ध। मुंबई में सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स का पुरुषों की ज्वेलरी बनाया प्रयोग, GI22 कलेक्शन में टाइटेनियम के साथ सोना और असली हीरे। हर्षवर्धन नरवाले बने सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स के पुरुषों की नई GI22 ज्वेलरी लाइन का चेहरा, अभी बोल्ड बी स्ट्रॉन्ग कैंपेन में दिखेगा अभिनेता का खास अंदाज। दरभंगा में बिहार ग्रामीण बैंक का मुखिया, आउटरीच कार्यक्रम संयोजक और शाखा प्रबंधक मेगा झा ने गरीब किसानों और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया। हैदराबाद के गोलकुंडा में 400 साल पुराने कुतुबशाही मकबरे परिसर के नीचे विशाल सुरंग मिली। जैसलमेर में सीमा के पास गर्जे अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टर, हाईवे पर लैंडिंग, टेक ऑफ का बड़ा सैन्य अभ्यास। नीरज चोपड़ा ने लॉर्डन डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो में 88.05 मीटर का साथ दूसरा स्थान हासिल किया। श्रीलंका के रूमेश पथिरागे ने 88.14 मीटर के थ्रो से खिताब जीता, श्रीलंका का शानदार प्रदर्शन। हॉलीवुड की हॉरर फिल्म इंसिडियस आउट ऑफ द फर्दर सिनेमाघरों में रिलीज, लोकप्रिय इंसिडियस फ्रेंचाइजी की 6 फिल्म है। सिनेमाघरों के बाद OTT पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू जंगल, जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी अब OTT पर उपलब्ध, आज से G5 पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सुपर स्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन OTT पर रिलीज, G5 पर उपलब्ध। भारत में टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू, दर्शकों का क्रेज, 26 अगस्त को रिलीज होगी। पहली बार महात्मा गांधी का रोल करेंगे एक्टर मनोज बाजपेयी, सुधीर मिश्रा की फिल्म गांधी एंड माय मदर में नजर आएंगे। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका पादुकोण की एंट्री, आलिया के साथ निभाएंगी अहम किरदार। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म ज्वेलर 2 ने रिलीज से पहले रचा इतिहास, करीब 160 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई।
तीन साल बाद जोरदार कमबैक को तैयार है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। अंतिम चरण में पहुंची फिल्म किंग की शूटिंग। अमेरिका में 25% तक सस्ता होगा ग्राउंड बीफ। ट्रंप ने आयात शुल्क में 90 दिनों की छूट का ऐलान किया। बीफ की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने का फैसला। रूस के पर्म में रूसी तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का हमला। वोल्गोग्राड में मिलिट्री एयरबेस को बनाया निशाना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की रूस ने पिछले 2 महीने में 52 यूक्रेनी जहाजों पर हमला किया। रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव में ईंधन की भारी किल्लत। तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर लगी है लंबी कतारें। लोगों की बड़ी चिंता। ऑस्ट्रेलिया में जासूसी के आरोप में रूसी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक गिरफ्तार। यूक्रेनी सेना से जुड़ी जानकारी रूसी खुफिया एजेंसी को देने का आरोप। 2024 में रूस में ली थी ट्रेनिंग। अमेरिका ने हिजबुल्लाह पर लगाए नए प्रतिबंध। कैश नेटवर्क से जुड़े 10 लोगों पर लगाया बैन। ये नेटवर्क लेबनान तुर्की यूएई और ईरान के बीच करोड़ों डॉलर का नकदी पहुंचाता था। यमन तट के पास तेल टैंकर अगवा। आदन की खाड़ी में 6 हथियारबंद बदमाशों ने टैंकर को किया हाईजैक। यूकेएमजीओ की रिपोर्ट में मुताबिक हथियारबंद बदमाश जहाज को कंट्रोल कर रहे और उसे सोमालिया की ओर ले जा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच चीन और इंडोनेशिया में सैन्य संबंध मजबूत करने पर बनी सहमति। ऊर्जा व्यापार रेल और एआई समेत कई अहम समझौते। स्विट्जरलैंड के थिसिस में एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। 8 लोग घायल। 14 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। 5 अब भी लापता। रेस्क्यू जारी है। दक्षिण कोरिया में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। लाल पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे हजारों कर्मचारी। एआई ऑटोमेशन की विरोध किया कर्मचारियों ने। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की मांग की। कांगो में भी कब हुआ इबोला वायरस। अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र ने इबोला से निपटने के लिए फंड की कमी बताई। दुनिया भर से तुरंत मदद की अपील। WHO ने कहा तेजी से फैल रहा है वायरस।

0: जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में एफआईआर हुई है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। गांव वालों का कहना है कि जबरिया सीजेपी के लोग गांव में घुसे और मारपीट की, जबकि सीजेपी नेताओं का कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में दोनों तरफ से एफआईआर हुई है, दोनों पक्षों की एफआईआर ले ली गई। अब क्यों दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर की गई है, जयपुर में आखिर कल क्या हुआ था जब सीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में।
2: जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला,
1: राके के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी, गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं।
2: सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूंसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूंसे बरसाए।
3: देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं।
2: आखिर स्कूल के निरीक्षण से इतना गुस्सा क्यों है? अगर सीजेपी वाले स्कूल में पहुंच जाते, जांच पड़ताल कर लेते तो स्कूल या गांव वालों का क्या नुकसान हो जाता? सरकारी स्कूलों की हालत खराब है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? स्कूल वर्ल्ड क्लास है तो निरीक्षण करने आए वॉलंटियर्स पर इस

0: पे देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर के रामपुरा गांव का ये प्राथमिक विद्यालय इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ये ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे। गांव के लोगों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इसी में तू तू मैं हो गई। पहले गांव वाले सीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से उलझे और फिर गाली गलौज हुई।
1: दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहां पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहां पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं। आशुतोष रांका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है लेकिन यहाँ पर ग्रामीण एक तरह से कहें कि उग्र हो चुके हैं। धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी। गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं। यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं
2: और ये देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ हाथ भी गिर चुका है।
0: गांव वाले सीजेपी कार्यकर्ताओं से उलझ गए, पहले धक्का मुक्की और फिर हमला कर दिया। सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा, हाथ में ईंट पत्थर रस्सी बेल्ट जो आया उसी से निहत्ते युवाओं पर ग्रामीण टूट पड़े। अचानक हुए हमले से सीजेपी वॉलंटियर संभल भी नहीं पाए। स्थिति ये हो गई कि कुछ कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक के मारा गया। जिन गाड़ियों से सीजेपी के लोग गांव में घुसे थे उन गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। भागते हुए कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने पीछा करके पीटा। जो भी उनकी पकड़ में आया उसे इतना पीटा कि किसी का हाथ टूट गया, किसी के सिर में चोट लगी तो किसी के कपड़े फट गए। सवाल यह है कि स्कूल का निरीक्षण रोकने के लिए ग्रामीण इतने गुस्से में क्यों आ गए? गांव के सरकारी स्कूलों की हालत सुधरे, सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इससे भला किसी गांव या समाज को क्या दिक्कत हो सकती है? शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए आज तक।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
2: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
3: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.
4: बिजली का बिल पेड तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिए।
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
5: पे। इतना माही वे।
6: Hey Maya, let's go.
7: The new BE6 Sportac.
6: Hey Maya, let's go.
7: The new BE6 Sportac.

0: Papá.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ,
3: ला भाई मेरा बैट।
1: वो अभी तो ठीक हुआ, तू
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
3: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही दलितिस्तान भी बनता।

0: वंदे मातरम विवाद की ये केरलम फाइल है। आरोप है कि केरलम के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में SFI ने वंदे मातरम पूरा गाने से रोक दिया। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और आप यहाँ पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद। 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यक्रम से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। सोनिया गांधी पर आरोप लगा कि वो वंदे मातरम पूरा गाने से रोक रही थी। दो दिन गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के दो छंद ही गाए गए और फिर कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी के आयोजनों में दो छंद वाले वंदे मातरम को ही जारी रखने का फैसला लिया। कांग्रेस कार्य समिति के फैसले पर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार किया।
1: वंदे मातरम तो कांग्रेस गा ही रही, ये लोगों ने वो बात के भी और जो लंबा चौड़ा था जिसे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कहा था कितना लंबा ये नहीं होना चाहिए, तो वो उन्होंने जो है रोका था कि इतने बस गाया जाए। तो वो पद वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सच श्यामलम मातरम वंदे मातरम है, मातृभूमि की आराधना है, तो कांग्रेस हमेशा से गाती रही। इन्होंने नया नया वंदे मातरम पकड़ा है, फिर एक भी भाजपा नेता को आप कैमरा लगा दो सामने अगर वो वंदे मातरम पूरा गा दे, नहीं गा सकते। सिर्फ जो है एक राजनीतिक जो है दुष्प्रचार करना सिर्फ वोटों के लिए।
0: इस विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूदी। पार्टी का कहना है कि कानून अपमान को लेकर बना है न कि गाने को लेकर।
2: वंदे मातरम कानून बन चुका है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम गाया जाए इस तरीके का कोई आदेश सदन ने पास नहीं किया है। तो वंदे मातरम जब होगा तो जो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं हम खड़े होकर के सावधान मुद्रा में उसके सम्मान में हम उस कानून का पालन करेंगे और वंदे मातरम जितना आ सकेगा उतना गाएंगे, क्योंकि 6 स्टेंजा याद करना किसी के बस की बात नहीं।
0: वंदे मातरम कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरने वाला गीत था, लेकिन अब उसी वंदे मातरम पर सियासी लड़ाई छिड़ गई है। कहां से कहां आ गए हम। आज तक ब्यूरो।

बीजेपी मुख्यालय में तीन सेशन में बैठ के मोदी 25 कार्यक्रम से लेकर जेन जी और चुनावों की तैयारियों पर चर्चा। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता, पुलिस को करना पड़ा दखल। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, ड्रोन पर रोक। झारखंड में छात्र आंदोलन पर संग्राम, रांची समेत कई शहरों में छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता भिड़े। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी का पुतला फूंकने पर बवाल, बीजेपी ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को बताया सरकारी गुंडे। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज, अब मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा आरएलडी को ऐसा कहना अपमानजनक, माफी मांगी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष।

कॉकरोच जनता पार्टी की पिटाई पर छिड़ी एफआईआर की जंग, सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का केस। दीपके ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम।

0: आज तक मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सुबह के 10 बज गए और 10 बजे के बुलेटिन में बड़ी सियासी खबरों की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम की बात करेंगे और इसको लेकर जबरदस्त बवाल है। आज शाम होने वाली राहुल की सभा से पहले एक तरफ एबीवीपी है, दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता है, आपस में भिड़ गए। साथ ही चर्चा करेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई नवेली टीम के साथ होने वाली 3 अहम बैठकों की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। भविष्य को लेकर कई अहम रणनीति बनेगी, 27 भी 29 भी। हम आपको बताएंगे बीती शाम आरक्षण के विरोध में जंतर मंतर पर किस तरह से हंगामा हुआ, रण छिड़ा, कैसे जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल हुआ। इसके साथ जयपुर में कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के अल्टीमेटम के बारे में भी आपको बताएंगे और गांव वाले क्या कह रहे हैं, गांव वालों का भी पक्ष रखना जरूरी है, उनकी भी बात करेंगे। और इसके साथ बताएंगे कि रांची में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान आखिर हंगामा क्यों हो गया। लेकिन सबसे पहले बात चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ जहां ईटीटी शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा की आवाज के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन जारी। अब देखिए अलग अलग जगहों से आपको ऐसी तस्वीर आएगी, कहीं पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर अभ्यर्थी और कहीं पर शिक्षक। अब ईटीटी शिक्षक, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा की आवाज के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है 180 सीटों को लेकर यहां पर बात की जा रही है।
1: आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद,
0: आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। असीम बस्सी जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। असीम, क्या मांग है इन शिक्षकों की?
2: देखिए अलग अलग डिमांड है, क्योंकि हमने पिछले दिनों से देखा है कि कई जगह पे एक कॉन्ट्रेक्चुअल से कहते हैं हमें रेगुलर किया जाए, और यहाँ हमने देखा है पिछले दिनों एम्प्लॉइज इकट्ठे हुए थे कि उनके जो डीए हैं बकाए वो दिए जाए, तो इनका भी इश्यूज जो है 180 टीचर्स हैं, इनका किसी क्लर्क के खिलाफ भी एक धांधली का आरोप था उस पे एक्शन की मांग कर रहे हैं, सैलरीज का इशू है उसको लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल जो है ये धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है, पुलिस ने इनको यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल सेक्टर है, सीएम हाउस के पास में है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार यही देखा है, चाहे स्कूल के बाहर छात्रों का प्रोटेस्ट हो, चाहे ईटीटी टीचर्स का प्रोटेस्ट हो, चाहे डीए के एम्प्लॉयज का प्रोटेस्ट हो, जो पंजाब में एम्प्लॉयज हों, सफाई कर्मचारी हों या स्टूडेंट्स हों, कई जगह पे इस तरह के प्रोटेस्ट, तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी पे दबाव है कि जो वादे किए थे उनको भी पूरा किया जाए और जो इम्प्लॉयज की डिमांड है उसको भी पूरा किया जाए। तो इस तरह आज ईटीटी टीचर्स जो है हरपाल सिंह चीमा जो कि यूनियन जो कि पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। जी हाँ,
0: देखिए मजबूरी में कुछ लोग तो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर आए हैं, घर पर छोड़ नहीं सकते तो यहीं पर साथ में ले आए, गोद में बिठाकर प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और जो मांगे हैं वो सरकार के समक्ष उन्होंने अपनी रख दी है और कह रहे हैं वादा जो किया है कम से कम वो तो पूरा कर दीजिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, 180 आपका नाम।
0: बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन आज नव नियुक्त टीम के साथ, उनकी खुद की टीम के साथ पहली बैठक करने जा रहे हैं। दिन भर चलने वाली 3 अलग अलग बैठकों में नए पदाधिकारियों का परिचय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम और साथ ही संगठन से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में 2027 में 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छे प्रदर्शन के लिए संगठन को और मजबूत करने पर भी चर्चा की जाएगी। कोर कह सकते हैं आप इसे, बीजेपी का नवनियुक्त टीम है, संतुलन रखा गया इस टीम में, अनुभव, युवा, महिला, सबको जगह दी गई है और लक्ष्य तोते की आंख की तरह बहुत स्पष्ट है, 2027 के बाद 2029 पर फोकस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहली परीक्षा 2027 की है, अब इन 27 की परीक्षा में पार होना है तो नई टीम को अभी से जुटना होगा, जिम्मेदारी सौंपनी होगी और यही आज होने वाला है। 3 बैठकें, अलग अलग बैठकें, और उन बैठकों में सबको जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, बड़ी जिम्मेदारी है, नितिन नवीन भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है जब अध्यक्ष बने हैं, तकरीबन 90-100 दिन उनको हो चुके हैं और अब नई टीम भी उनके पास में, अब नई टीम है, 2027 का लक्ष्य है, तोते की आंख को भेदना है तो जिम्मेदारी भी बांटनी होगी, तो आज का दिन कितना खास और क्या हो सकता है आज बैठक में?
3: देखिए, क्योंकि नितिन नवीन 20 जनवरी को अध्यक्ष बने थे और फिर उन्होंने जो है अपनी नई टीम की जो है वो घोषणा की है और 17 अगस्त को। और अगर आप देखेंगे तो नितिन नवीन की ये जो नई टीम है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, उसकी आज बैठक होगी और सभी जो है इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके साथ। और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के जो 25 वर्ष 7 सितंबर को पूरे होंगे उसको लेकर पूरे देश भर में जो कार्यक्रम होने हैं उसकी क्या रूपरेखा होगी उसको लेकर चर्चा होगी। और इस पूरे कार्यक्रम का संयोजक जो है भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव हैं विनोद तावड़े, उनके जिम्मे होगी। और हर प्रदेश में जो है 5 लोगों की जिम्मेदारी होगी, जिन राज्यों में सरकार है वहां एक प्रदेश सरकार में मंत्री और उनके साथ संगठन मंत्री और संगठन के बाकी 3 लोग जो है वो उस पूरी टीम में प्रदेश में रहेंगे। और पूरी चर्चा होगी किस तरीके के कार्यक्रम जो है पूरे देश में इस 25 वर्ष का जश्न कैसे मनाया जाए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा यानी 13 साल जो है वो उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर, 12 साल जो है प्रधानमंत्री के तौर पर जो है देश के लिए काम किए हैं, उन सभी कामों की जो है वो प्रदर्शनी होंगी। तमाम रक्त दान केंद्र होंगे, इस तरीके से वृक्षारोपण का कार्यक्रम होंगे, तमाम इस तरीके के कार्यक्रम पूरे देश में चलाए जाएंगे। उसके साथ साथ 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 76 वर्ष के हो जाएंगे, तो सेवा पखवाड़ा भी जो है इसी कार्यक्रम के साथ मनाया जाएगा। इन दोनों ही कार्यक्रमों को लेकर जो है पूरी चर्चा होगी और शाम 6 बजे जो है वो नितिन नवीन जो है अपनी नई टीम और सभी राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष है और जो प्रदेश मंत्री आए हैं उनको संबोधित करेंगे और उनको बताएंगे कि 2024-27 में भारतीय जनता पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। ये 7 राज्य जहां उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए दमखम लगाना है, उत्तराखंड में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए दमखम लगाना है, पंजाब में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी चाहती है वहां सरकार बने अकाली दल के साथ, ये सुगबाहट है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर गठबंधन होगा, और मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि तीसरी बार वहां पर उनकी सरकार बने, और हिमाचल में जो पिछली बार सत्ता चली गई थी 2022 में उसको सत्ता में फिर वापस लाना, और 32 साल पूरे होंगे वहां पर गुजरात में सरकार के, और उन 32 सालों को 37 साल के लिए सरकार में कैसे लाना है और वहां की एंटी इनकम्बेंसी को कैसे प्रो इनकम्बेंसी में चेंज करना है, ये तमाम चीजों पे जो है नितिन नवीन अपनी पूरी राष्ट्रीय टीम को जो है वो संबोधित करेंगे और बताएंगे कि संगठन को मजबूत भी करना है और जिन राज्यों में सरकारें हैं वहां सरकार को रिपीट करने के लिए आपको जो है माइक्रो मैनेजमेंट करनी होगी, उसकी शुरुआत अभी से करनी होगी।
0: और देखिए वक्त का पता भी नहीं चलता, आपने बताया जनवरी से तो लगभग 215 दिन हो चुके हैं नितिन नवीन को अध्यक्ष बने हुए और अब नई टीम है तो नई जिम्मेदारियां भी आप आगे देखने को मिलेंगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले बवाल हुआ है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुणे में बीती रात एबीवीपी एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, आमने सामने आ गए तो विवाद होना था, हिंसक झड़प में वो विवाद तब्दील हो गया। कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने एनएसयूआई की छात्राओं को कॉलेज में बंद कर दिया, रोक दिया उनको, रोककर रखा। खबर मिली कांग्रेस के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार भी पहुंच गए, दोनों छात्र संगठनों के बीच विवाद बढ़ गया। एबीवीपी कार्यकर्ता इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं, एबीवीपी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप हैं। हालात संभालने के लिए पुलिस पहुंचती है, प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एबीवीपी के एनएसयूआई के भी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है। हालांकि इस विवाद के बाद राहुल के कार्यक्रम से पहले ही अब तनाव बढ़ गया है, शर्तें रखी गई हैं, खास तौर पर शर्तें, 30 शर्तें कुछ ऐसी रखी गई हैं कि राहुल गांधी जब मंच पर आए तो देखें कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, कुछ ऐसा बयान कुछ ऐसा भाषण ना दिया जाए जिससे माहौल में तनाव हो या फिर कहीं माहौल बिगड़ जाए, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये कुछ शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं। तो देखिए आज राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पुणे में, और खास बात यह है कि पुणे का छात्रों की गूंज कार्यक्रम छात्राओं को डेडिकेट किया गया है, नारी शक्ति, राहुल के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई। अब कहा गया है कि इस बार कार्यक्रम में सिर्फ छात्राएं शामिल होगी, लेकिन मुश्किल है क्योंकि छात्र तो आप परिभाषित नहीं कर सकते अलग अलग, तो हो सकता है कि इसमें छात्र भी हों लेकिन छात्राओं की तादाद यहां पर ज्यादा हो सकती है इस कार्यक्रम में। राहुल गांधी आज पुणे में पूरी तैयारी कर चुके हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो इससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में कर चुके हैं, प्रयागराज में भी आपने देखा होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम हुआ था। तो देखिए उधर सियासी तनाव के बीच पुणे में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अब सवाल उठा दिए।
4: छात्रों की गुंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना इस प्रकार का आदेश दिया गया है। उनका ही रजिस्ट्रेशन करके उनको ही वहां पर एंट्री मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये कार्यक्रम होने वाला है।
0: ओमकार वाबले हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ओमकार, क्या सियासत हो रही है ये भी बता दीजिए, और ये भी बताइए कि आज जो कार्यक्रम जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां सिर्फ छात्राएं मौजूद रहेंगी?
5: जी एग्जैक्टली, छात्रों की गूंज छात्राओं के लिए दी गई है, तो यहाँ युवा महिला सबसे ज्यादा रहेगी, उन्हीं को ये गूंज दी गई है। और राहुल गांधी जिस तरीके की अब सियासत कर रहे हैं उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके एट द एंड पॉलिटिक्स इज अ बैटल ऑफ नैरेटिव, तो जिस तरीके से कल दिल्ली में धरना हुआ, उसके बाद आज पुणे में भी होगा, और उससे पहले पुणे में दो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई तो बताना अहम है। पहली ये कि जब पुणे के कांग्रेस नेता जो पुलिस को परमिशन के मांगने गए थे, उन्हें लगभग 30 अलग अलग उसमें कंडीशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई थी, जिसमें पुलिस का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, तो इसके लिए ये सब कुछ किया गया है, उस पर बवाल उठा। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद कल रात को जब सीओईपी इंजीनियरिंग कॉलेज है पुणे का, वहां एनएसयूआई के छात्राओं का ये कहना है कि दो छात्राएं थी, उन्हें एबीवीपी के स्टूडेंट्स ने रूम में लॉक कर दिया, उन्हें पीटा गया है, क्योंकि उन्होंने परसों हमारे साथ आज तक के साथ बात करते हुए ये कहा था उन्होंने कि किस तरीके से 16 लड़कियां एक हॉल में रह रही है, जो ऑर्फन लड़कियां हैं जिन्हें अभी तक स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, हमारे साथ बात करते उन्होंने ये कहा। तो उसके बाद अब एनएसयूआई के स्टूडेंट्स वहां पहुंचे, उनका कहना है कि एबीवीपी वालों ने उन लड़कियों को अंदर रूम में लॉक करके रखा था हॉस्टल में। उसके बाद एक दूसरे को मारपीट शुरू हो गई, और फाइनली रात भर ये सब कुछ सियासत चलती रही। कांग्रेस के जितने भी नेता अभी पुणे में मौजूद है वे सभी रात को धरने पे बैठ गए और पुलिस स्टेशन पे चले गए, लेकिन पुलिस ने भाजपा वालों की शिकायत दर्ज की है कि कांग्रेस के लोगों ने उन्हें पीटा। तो अब इस तरीके की अलग अलग बयानबाजी शुरू हो चुकी है, और सियासत मतलब प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी इरप्ट हो चुकी है, सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो बार ये सब कुछ हो चुका है। तो राहुल गांधी का प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही जिस तरीके की राहुल गांधी छात्रों को गूंज दे रहा, मतलब उन्हें ये छात्रों की गूंज प्रोग्राम आगे लेकर जा रहे हैं, उससे पहले ही अब ये सियासत के हालात आप देख सकते हैं।
0: मतलब मंच सज गया है, लेकिन उससे पहले ही माहौल बहुत गर्म हो गया है। बारिश वाले मौसम में भी गर्मी, सियासी गर्मी देखी जा रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। झारखंड की बात करते हैं अब। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। छात्र हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला जलाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जेएमएम के छात्र और प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। अब आंदोलनकारी छात्रों का ये कहना है कि जेएमएम के छात्र और प्रशासनिक अधिकारी जो पहुंचे थे उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की।
6: देखिए आज हम लोग का पुतला दहन कार्यक्रम पहले से तय था, हम लोग आ रहे थे और ये झारखंड सरकार पुलिस के यार ने आज जो माहौल किया है, हर एक जिला में अपना गुंडा को भेजा है, यहाँ भी गुंडा भेजा था, हर जिला में लाठीचार्ज किया है, यहाँ भी पुलिस जबरदस्ती कर रही है, लाठिया लाठीचार्ज कर रही है, और जो हमारे दल साथी को छेड़ रहे
7: हैं। होते हुए चढ़ी की फिराया लाल होते हुए आना था, इन्होंने पुलिस और प्रशासन के द्वारा दिए गए रूट को फॉलो नहीं किया, ये अपने मन से रेडियम चौक होते हुए आए, बिना अनुमति के इन्होंने जेपीएससी कार्यालय के सामने जो है प्रदर्शन किया। भीड़ के कुछ लोगों के द्वारा जो है अन्य जो गुट था उसके दो लोगों के बुरी तरीके से मारपीट कर दी गई है। पुलिस के द्वारा विधि व्यवस्था को संधारित करने हेतु हल्का बल्का प्रयोग किया गया है, विधि व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है, भीड़ के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। हॉस्पिटल में सदर हॉस्पिटल में जहाँ पे मरीज बहुत सारे क्रिटिकल अवस्था में है उनको परेशान किया जा रहा है। विधि व्यवस्था की मतलब पुलिस जो है निगरानी में है और विधि व्यवस्था को संधारित किया जा रहा है।
0: सत्यजीत जुड़ गए हमारे साथ, योगी हमारे साथ। सत्यजीत, क्या हो गया रहा है झारखंड में? मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को पीट दिया गया।
8: नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का अगर सिचुएशन था, जो डीएसपी कह रहे हैं उनके मुताबिक, और कल हम लोग स्पॉट पे खड़े थे, डीएसपी का आरोप सीधा है कि जो रूट निर्धारित था उधर से ये पुतला दहन करने के लिए प्रोटेस्टेंट्स नहीं आए। उसके अलावा जो है जेएमएम के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। रामगढ़ के जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू, जेएमएम के नेता है, उनका साफ तौर से कहना है कि अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने अगर स्टे लगाया तो उसमें सरकार की कहां गलती है? आप लोग ही तो मांग कर रहे थे रद्द करो, रिफॉर्म करो और जांच करो, तो जांच जो है वो हो रहा है लगातार, जो है उसमें गिरफ्तारियां हो रही है।
0: मतलब माहौल अभी ऐसा ही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जैसा हमने आपको बताया था कि नितिन नवीन आज अपनी नई टीम के साथ बैठक करेंगे, तो वो तस्वीरें भी आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको बता देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, अब देखिए टीम तो बन चुकी है, नई टीम को नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अब यहां पर ये तस्वीरें भी आ गई हैं। ये मीटिंग शुरू होने से पहले बीजेपी के बड़े नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए, और देखिए तीन बैठकें, भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी, तीन अलग अलग बैठकें। नवीन मिशन इसका नाम दिया गया है, क्योंकि नितिन नवीन है तो नवीन मिशन, नवीन जिम्मेदारी। अब नई टीम के साथ पहली बैठक लगभग आप ये मान के चलिए शुरू हो गई है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और औपचारिक परिचय तो यहाँ पर किया ही जाएगा, क्योंकि देखिए अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से है जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये देखिए वसुंधरा राजे भी यहां पर दिखाई देंगी, और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं जयपुर की खबर की। जयपुर यानी सीजेपी का जो हंगामा हुआ, सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में एफआईआर हुई है, और दोनों तरफ से हुई है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने गांव वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, और गांव वालों ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। गांव वालों का कहना है कि जबरिया सीजेपी के लोग गांव में घुसे, जबरदस्ती मारपीट की। अब सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी नेताओं का कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया, तो दोनों की तरफ से क्रॉस एफआईआर हो चुकी। तो जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी और ग्रामीणों के बीच में जो विवाद हुआ वो हमने आपको बताया, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर एक और विवाद, विरोध प्रदर्शन हुआ, उसकी बात कर लेते हैं। कल शाम आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जाति की बजाय आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मांग उठाई कि जो बेचारे गरीब हैं उनको आप आरक्षण दीजिए ना। अब प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हुई, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इजाजत न होने की बात कहकर प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया, या फिर आप कह सकते हैं खदेड़ दिया। वहीं आज भी प्रदर्शन और हंगामे की आशंका को देखते हुए जंतर मंतर पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किया गया। देखिए जंतर मंतर इस वक्त पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन गया है आंदोलन का। सवर्ण समाज अब वहां पहुंचे हैं, लेकिन उनको हटा दिया गया, वहां से खदेड़ दिया गया।
9: आरक्षण की मांग को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी जो आज सुबह से जुटे थे, फिलहाल उनको पुलिस ने प्रदर्शन स्थल से जो है वो हटा दिया है। ये तस्वीरें जंतर मंतर पर ही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल जो है वो इस वक्त तैनात किया गया है। सुबह से ही ये प्रदर्शनकारी आरक्षण की मांग को लेकर के जुटना शुरू हुए थे। दरअसल पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है, लेकिन दोपहर होते होते ये प्रदर्शनकारी काफ़ी बड़ी संख्या में जुटने लगे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से इनको रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने के लिए कहा गया, लेकिन ये प्रदर्शनकारी रामलीला मैदान नहीं गए। फिलहाल पुलिस ने इनको जो है वो जंतर मंतर से जो है वो हटा दिया है। कई सारे प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन भी किया गया। कई और प्रदर्शनकारी इस वक्त जो है वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिनको दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है वो फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जंतर मंतर की है। कई सारे प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, फिलहाल अब उनको धीरे धीरे करके पुलिस जो है वो यहाँ पर डिटेन कर रही है। आप ये तस्वीरें देख सकते।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: एक दो, एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: बिजली का बिल पेड तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिए।
7: कैसे?
9: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
7: इतना माही वे।

0: बिजली का बिल, पेंट,
1: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इतना माही वे।
3: पापा।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
7: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
1: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
2: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
3: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।
4: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
5: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
6: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पीवा आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद्द से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक।
4: गुलटनिया और कलखनिया,
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: नवीन की नई टीम की पहली बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में तीन सेशन में बैठकें, मोदी एट 25 कार्यक्रम से लेकर जेन जी और चुनावों की तैयारियों पर चर्चा। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता, पुलिस को करना पड़ा दखल। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, ड्रोन पर रोक। झारखंड में छात्र आंदोलन पर संग्राम, रांची समेत कई शहरों में छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता भिड़े। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी का पुतला फूंकने पर बवाल, बीजेपी ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को बताया सरकारी गुंडे। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज, अब मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा आरएलडी को ऐसा कहना अपमानजनक, आरएलडी और जाटों से माफी मांगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। टीम सीजेपी की पिटाई पर छिड़ी एफआईआर की जंग, सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का केस, दीपके ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम।
1: प्रयागराज में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जहां बाइक स्कूटी ई रिक्शे चलते थे वहां अब नाव चल रही हैं। पानी है तो गाड़ी नहीं चल सकती, तो यहां नाव ही चलने शुरू हो गई। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर जल पुलिस हो, वो एक तरीके से देवदूत बने हुए हैं, जो छत पे लोग खड़े हैं वो इंतजार में है कि कब हमें मदद पहुंचेगी।

0: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु दीक्षित। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे हम किस बारे में बात करने वाले हैं। प्रयागराज में सैलाब के सितम और उसके आगे आम लोग सरेंडर कर चुके हैं। शहर से 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटे इलाकों में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात आप देख ही रहे हैं, चारों तरफ आपको क्या दिखेगा, सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। एनडीआरएफ की टीमें दिन रात एक कर चुकी हैं, लोगों तक मदद पहुंचा रही है, रेस्क्यू कर रही है उनका, जिससे सैलाब के बीच फंसे लोग उन्हें देवदूत कह रहे हैं, कहना भी चाहिए। लोग बता रहे हैं कि इससे पहले ऐसी भीषण बाढ़ साल 1997 में आई थी और 1997 से 2026 तक अब देख रहे हैं हम। संगम पर घाट डूब चुके हैं, सड़कों पर पानी, सड़क तो दिख ही नहीं रही है, डांबर आपको दिखेगा ही नहीं,
1: उधर गड्ढा पड़ गया, ये सड़क है पूरा।

0: प्रयागराज से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास पानी का प्रकोप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ निचले इलाके बाढ़ की वजह से डूबने की कगार पर है। लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बनकर आई, तो यूपी सरकार भी लगातार राशन और राहत सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे।
1: यूपी में बाढ़ का सितम है और इस बीच में एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर जल पुलिस हो, वो एक तरीके से देवदूत बने हुए हैं उन लोगों के लिए जो इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। आप अगर तस्वीरों में देखें मेरे पीछे, तो ये पूरा गांव है जो इस वक्त बाढ़ के पानी में समा गया है। अगली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगातार यहाँ मूवमेंट कर रही हैं। सामने की तरफ आप देखेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी, सामने पहले दिखाई तस्वीर, जो छत पे लोग खड़े हैं वो इंतजार में है कि कब हमें मदद पहुंचेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो राहत सामग्री का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही प्रशासन की जो बोट है वो पहुंचती है राशन बांटने के लिए, ये देखिए किस तरीके से सीढ़ियों से निकलकर ये लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिससे इनकी मदद हो पाए, इनको मदद मिल पाए। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ हैं, एनडीआरएफ हैं, जल पुलिस हैं, तमाम लोग देवदूत बने हुए हैं इस बाढ़ जैसे हालात में। प्रयागराज में ये जो पीछे का आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा गांव है, ये कोई नदी नहीं है जहां इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखें तो ये पूरा गांव का क्षेत्र है, कैमरामैन संदीप दिखाएंगे आपको। और काफी घर जो है, मेकशिफ्ट जो खासकर घर है, वो तो इस पहाड़ के पानी में डूब ही चुके हैं।
0: आज तक की टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों का दर्द देखा। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव के कितने घरों को अपनी जद में ले रखा है। पेड़ों और बिजली के खम्भों का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां कभी जमीन थी, अब यहां मानो नदी उफना रही है। प्रयागराज के बारा की एसडीएम शिखा शंकवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद दिखी। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा।
1: शिखा जी, आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है सबमर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके हिसाब से।
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहां पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: मतलब वो यहां रहना चाहते, तो उनको आप लोग ये बिस्किट और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गांव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात,
2: पूरे क्षेत्र हमारे 2 नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ इन गांव वालों ने कई बरसों के बाद देखी है। लोग खुद बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आएगा।
1: और ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद तो सोचा ना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं, तो आ गया भीतर घुसा है पानी, अब आपको देख ले।
1: आपके गांव में बाढ़ कब आई थी?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचा ना आई तो रात में पहुँच गया।
4: दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर, जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में है, धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यह दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है। नहीं
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी?
4: नहीं सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाया, जरा छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है? जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ है, यहाँ अट्टे वहाँ पे शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीमें दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। इसके अलावा बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी दी जा रही है।
1: तो इस कठिन परिस्थिति में एनडीआरएफ जो है वो देवदूत का काम कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, राशन सामग्री बांटी जा रही है, इस तरह की जो नावें हैं इनकी सहायता ली जा रही है इस पूरे ऑपरेशन में। हमारे साथ इस वक्त इंस्पेक्टर एनडीआरएफ हैं, वो उनसे पूछेंगे किस तरह से कार्यरत हैं यहाँ पे। अपना परिचय दीजिएगा, बताइएगा किस तरीके से आप लोग कितने गाँव जा चुके हैं, कितना रेस्क्यू हो चुका, कितना राशन वगैरह बढ़ चुका है।
6: इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी, 11th एनडीआरएफ वाराणसी। हमारी टीम जो है प्रयागराज में पदस्थ है अभी रेस्क्यू कार्य के लिए। जैसे ही हमको रात को लगभग 12 बजे इन्फॉर्मेशन मिला कि अपना इस इलाके में एसडीएम मैडम एडीएम मैडम के थ्रू हमको फोन के द्वारा सूचित किया गया कि लोग फंसे हुए हैं, तो लोनीपार इलाके में तत्काल हमारी टीम आई है और रात को लगभग 120 लोगों को हमने रेस्क्यू किया। साथ ही हर इलाके में घूम करके लोगों को हमने जो है राहत सामग्री प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है उसको भी वितरित करने का कार्य कर रहे हैं।
1: पूरे प्रयागराज में आपकी टीम्स फैली हुई हैं इस वक्त?
6: बेसिकली हमारी एक ही टीम है, जो कहीं भी कुछ भी होता है प्रयागराज में तो हमारी टीम जाती है।
1: कितनी बोट्स हैं टोटल?
6: हमारे पास लगभग 5 बोटें हैं और जिसमें से हम 2 बोट डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं और हमारी अगल बगल भी टीमें, बनारस हमारी रिजर्व टीमें हैं।
0: एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे हैं, आज वही लोग कह रहे हैं कि इंद्रदेव अब बस करो।
1: प्रयागराज की बाढ़ इस वक्त सबसे ज्यादा किसी चीज को सता रही है तो वो है गांव जो प्रयागराज के बॉर्डर पर बने हुए हैं और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर उसी स्थान पर मौजूद हैं। आप सामने देखें कि घर के घर जो हैं ये निचले स्तर पर जितने घर बने हैं वो डूब चुके हैं, जो ऊपर लोग थे वो अभी आए क्योंकि हमारी मौजूदगी इस वक्त उस जगह पर है जहां पर एनडीआरएफ की टीमें देवदूत बनी है, प्रशासनिक अधिकारी राशन पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखें तो ये सभी वो लोग हैं जहां पर जो अफेक्टेड हैं इस पूरे फ्लड से और इस बाढ़ के चलते अभी इनको राशन सामग्री, जो खाने पीने की चीजें हैं वो बांटी जा रही है। आपको दिखाऊं मैं तस्वीरों में, तो ये देखिए इस तरह की जो लैया के पैकेट्स हैं वो इन्हें दिए जा रहे हैं, बच्चों के हाथ में इस तरह के जो छोटे छोटे बिस्किट्स हैं ये दिए जा रहे हैं। नतीजा क्या है, क्योंकि बाढ़ कब तक ये पानी यहां रहेगा नहीं मालूम है, इस वजह से ये चीजें यहां पर की जा रही हैं।
0: जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाएगा भी तो कहां, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान तो बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे इन लोगों को एनडीआरएफ की नावें डूबते को तिनके का सहारा लग रही हैं।
1: हम इस वक्त प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्र में हैं जहां पर नदियां उफान पर हैं। नतीजा क्या है कि घर के घर यहां डूब गए हैं। पेड़ों की तरफ एक बार दिखाइए, ये पेड़ हैं पूरा, इनमें नीचे तक पानी आ गया है, यानी कि पूरा जो पेड़ आपको देखेंगे अगर, तो पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वहां तक पानी आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह के हालात फिलहाल यहाँ बने हुए हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से आपको हम एक तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। जो ग्रामीण है या तो उनके दरवाजे तक पानी आ गया है या उस क्षेत्र तक पानी आ गया है जहां वो असल में फंसे हुए हैं। कई लोग अपने अपने घरों को छोड़कर यहां से निकल चुके हैं, मवेशियों को छोड़ रखा है, घरों से निकल चुके हैं, लेकिन ऐसे में लगातार जो है ग्राउंड पर काम हो रहा है।
7: प्रयागराज के ग्रामीण इलाके तो छोड़िए, शहरी इलाकों में भी सैलाब ने डेरा डाल दिया है, पूरा कुंभ क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें देख लीजिए, ये वही है, गंगा और यमुना खतरे के निशान को पार करने के लिए बेकरार नजर आ रही हैं और श्रद्धालुओं को कई किलोमीटर पहले ही सड़क पर भरे पानी में स्नान करना है, मजबूर हो गए हैं वो, क्योंकि संगम में अरेल घाट से लेकर दशाश्वमेध घाट भी पानी की जद में आ चुका है और पानी का ऐसा प्रकोप शहर में है कि नागवासुकी रोड, मरीन ड्राइव, रिवर फ्रंट तक पानी ही पानी है और कुछ नहीं है।
8: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है, जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा है जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर एक बार फिर दस्तक दे रहा है। जिला चाहे प्रयागराज हो, बनारस हो या लखीमपुर हो, जगह जगह जो गंगा है, यमुना है, उनका पानी उफना रहा है। अगर आप बात प्रयागराज की करें तो यहाँ खतरे के निशान के करीब पानी पहुंच चुका है और अगला एक हफ्ता बहुत क्रूशियल होने वाला है। कल तक हालात इस तरीके के रहे कि शहर के पौश इलाकों में पानी पहुंच गया, हालांकि उसकी वजह बारिश भी थी।
8: गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया है। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरैल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है।
1: इस वक्त हम जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं ये अरैल घाट है। आप अगर मुझे देख लें तो मेरे कमर तक यहां पर पानी दिखाई पड़ रहा है। नहीं, मैं किसी नदी के बीचों बीच नहीं खड़ा हूं, ये एक प्रॉपर घाट है, अरैल घाट इसे बोलते हैं। और महाकुंभ के दौरान यहां पर श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते थे, यहीं से नौकाएं चलती थी जो पूरा यमुना गंगा संगम भ्रमण कराती थी। अब यहां मैं क्यों मौजूद हूं आपको ये दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे तो मेरे ठीक बगल में एक गुंबद आपको दिखाई पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि इतना ही था हमेशा से, इसमें नीचे की जो सतह है, जो टोम्स नीचे लगे हुए हैं, यहां पर बकायदा बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट किया गया था प्रशासन की तरफ से, लेकिन पानी का जलस्तर इतना गंगा का बढ़ा कि जो बैठने का स्थान था वो पूरा पानी में समा गया है। बात केवल इस गुंबद की भी होती तो चलिए ठीक था, लेकिन इसके उस पार भी कहानी ठीक वैसे ही है। अब मेरी तरफ वापस आएं और अब मैं आपको एक बार दिखाऊं, ये मेरा एक जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, कमर तक पानी, और मेरे ठीक पीछे कैमरामैन संदीप प्रेम ले जाएंगे और उस गुंबद को दिखाएंगे। अब आप सकते में आएंगे और शॉक हो जाएंगे कि ये जो दूसरा गुंबद है ये भी इतना ही गहरा नीचे था, यानी कि यहां भी बैठने का स्थान बना था। और अभी अगर आप उस गुंबद को देखें तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि पानी गुंबद की छत तक पहुंच गया है।
8: वहीं लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप बनाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जल स्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्लों के घरों में पानी घुसने लगा है, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेना पड़ा है।
1: यहाँ इस वक्त जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ तक पानी पहुंच चुका है। और हमें बहुत अच्छे से याद है महाकुंभ जब कवरेज में हम आए यहाँ थे तो हम इसी घाट से काफी नीचे, उस गुंबद के भी आगे, काफी आगे, जितना मुझे याद पड़ रहा है उस गुंबद के लगभग नहीं तो 20 25 30 कदम आगे तक हम बहुत आराम से जा सकते थे। सीढ़ियां उतनी डीप थी, इतनी खूबसूरती से इसको बनाया गया था। लेकिन इस वक्त जो है गंगा यमुना का जो प्रवाह है वो देखते बन रहा है, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी फिलहाल अब यहां तक आ पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि यहां थमेगा, असली बाढ़ अभी आनी बाकी है। विशेषज्ञ बताते हैं अगला हफ्ता 10 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है। लेटे हनुमान जी तक पानी पहुंच रहा है धीरे धीरे, और ऐसे में बाढ़ के हालात जो है संशय बनाए हुए हैं। हालांकि सरकार लगातार राहत सामग्री बांट रही है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की फोर्सेस जो हैं जहां जहां लोग फंसे हैं उन्हें भी निकालने का काम कर रही है।
8: अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक

0: इसी तरह बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे शाम को मंदिर की चार दीवारी तक पानी पहुंच गया था,
1: जहां बाइक स्कूटी ई रिक्शे चलते थे वहां अब नाव चल रही हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त संगम क्षेत्र में स्थित लेटे हुए हनुमान जी के पास है। हमें अगर आप देखेंगे जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं तो घुटने तक जो है पानी यहां पहुंच चुका है। और आप यकीन माने ये कोई घाट नहीं है, ये नीचे हमारे ठीक सड़क है और ये पानी जो है वो उधर से आ रहा है। और वहां जो जेटी लगा दी गई है वो नदी की वजह से नहीं लगाई गई है, वो इस वजह से लगाई गई है जैसे कि उसके आगे पानी और ज्यादा गहरा है, यानी कि नदी जो है वो काफी आगे है। अब आपको मैं समझाऊं कैसे, ऐसे समझिए कैमरामैन संदीप जो उधर पैन करिए जहां पिलर लगे हुए हैं, ये जो खंबे आप देख रहे हैं ना, जो आखिरी खंबा है वहां तक सड़क है, वहां तक घाट है, वहां के आगे गंगा शुरू होती है। जितने टोम्ब लगे हैं, जितने ये यहां पर आप वो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक के जो वो लगे हैं, ये सभी जो है अभी जलमग्न हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लें उस पिक्चर को देखकर कि पानी कहां तक आ पहुंचा है। अभी मैं आपको यहां जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं, मुझे अगर देखें तो मैं खुद मेरे घुटने तक यहां पानी है और मेरे नीचे एक सड़क है, प्रॉपर सड़क है, जब मैं पैर रख रहा हूं तो मुझे अंदाजा लग रहा है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा मंदिर की, पहले एक नाव की तस्वीर भी दिखा दें। ये देखिए हमारे ठीक बगल में यहाँ कई सारी नाव खड़ी हुई हैं और यकीन माने ये सड़क जो है ये आवागमन के लिए थी। जैसा कि मैंने खंभों से एस्टैब्लिश करके आपको बताया, यहाँ पर नाव कभी नहीं आती है, लेकिन अब पानी जब आ गया है तो भाई कुछ तो चलेगा। पानी है तो गाड़ी नहीं चल सकती, तो यहाँ नाव ही चलने शुरू हो गई। यानी कि जहां पर कल तक या कुछ दिन पहले तक स्कूटर वगैरह चल रहे थे वहां अब नाव चल रही। अब आपको मैं दिखाता हूं हनुमान जी का मंदिर। ये हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है और ये कहा भी जाता है कि जब ये सीजन आता है उसमें माँ गंगा श्री हनुमान को स्नान करवाती हैं और हनुमान जी लेटे हुए जहां पर स्थापित हैं वहां तक गंगा माँ पहुंचती हैं। तो उस दहलीज के बेहद करीब माँ गंगा आ चुकी है, यानी कि उस आखिरी खंबे से चलती हुई अब माँ गंगा का प्रवाह वहां तक है।
0: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जल स्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नाग वासुकी रोड, मरीन ड्राइव, रिवर फ्रंट तक भी पहुंच गया है। यहां सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर हैं।
1: तो हम इस वक्त दारागंज में हैं, नागवासुकी तक पानी आ पहुंचा है। हालात किस तरीके के हैं आप खुद देखें और जायजा लें। एक बाइकर आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा जो पानी के बीच से यहां से आ रहा है, पीछे आपको एक और बाइकर दिखाई पड़ेगा क्योंकि नागवासुकी मंदिर ठीक इसके आगे है और नागवासुकी मंदिर तक पहुंच पाना अब मुश्किल है। आप देखें तो टायर जो उस बाइक का आपको दिखेगा, उस बाइक का टायर आधे से ज्यादा पानी में डूबा हुआ है। ऐसे कुछ और बाइक्स भी आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए हम यहाँ जस्ट खड़े हुए हैं तो लगातार पानी का प्रवाह जो है वो बढ़ रहा है, सड़क की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। वो देखिए सामने की बाउंड्री दिखा दें, उस जगह पर लोग बैठते थे और वहां पर भी पूरा बाउंड्री को पानी ने कवर कर लिया है। उसके काफी आगे तक जो है सड़क जैसा एरिया था, लेकिन उस पर भी पानी आ गया है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि नाग वासुकी अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं यहाँ प्रयागराज आकर देखने के लिए तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तस्वीरें आपको हम कुछ दिखा रहे हैं यहाँ से, आप देखें तो एक और बाइकर आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगा आता हुआ जो जिसकी बाइक आधे से ज्यादा यहाँ डूबी हुई है।
0: वहीं जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटे भरती थीं, अब वहाँ नाव चल रही है। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने पर मजबूर हैं क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप ही बदल दिया है।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना?
2: ये जी पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में और वन वे भी एक्चुअली सावन की कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटी के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके के दशाश्वमेध घाट के गुंबद पानी में समा गए हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गई हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया है।
1: प्रयागराज में गंगा का प्रवाह जिस तरीके से बढ़ रहा है, एक बात तो साफ है कि दारागंज हो या नागवासुकी हो, उस तक

0: पानी पहुंचने में महज एक हफ्ता लगेगा। हम इस वक्त दशाश्वमेध घाट पर हैं और जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं यहां नीचे सीढ़ियां बनी हुई हैं, यानी कि घाट की जो सतह है वो काफी आगे तक है। अब उसका आपको जीता जाता उदाहरण आपको देखना हो तो पहली तस्वीर आप मुझे ही देख लीजिए। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं मेरे घुटने के ऊपर, घुटने के मैं थाइस तक मेरे पानी पहुंचा हुआ है, और अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तो शायद मेरे यहां तक पानी पहुंच जाएगा। तो यहां तक पानी मेरे पहुंच चुका है और ये पूरी सीढ़ियां हैं नीचे, कोई नदी नहीं है, कोई नदी का वैसा किनारा नहीं है, सीढ़ियां काफी आगे तक यहां पर हैं। उसका उदाहरण आपको दिखाऊंगा तो इस गुंबद से, यहां पर आप देखें तो एक गुंबद बना है और ये केवल गुंबद नहीं है, इसके नीचे बैठने की व्यवस्था थी जो घाटों में आमतौर से आपने देखी होगी, पर वो सब अब एक तरीके से पानी के सैलाब में अंदर जा चुका है। और कुछ अगर दिख रहा है तो केवल आपको एक गुंबद दिख रहा है, उस पे लगे कुछ स्पीकर्स दिखाई पड़ रहे हैं। हालात इस समय इस तरीके के हो गए हैं कि नाव इस एरिया में फिलहाल चलना बंद हो चुकी है, और क्योंकि ऐसे में खतरा जनजीवन पर भी होता है, इस वजह से जल पुलिस ने अपना डेरा यहां डाल रखा है। आप मेरे ठीक पीछे अगर देखेंगे तो आपको यहां पर जल पुलिस के कर्मचारी नजर आएंगे, जो पुलिसकर्मी है वो नजर आएंगे। जल पुलिस चौकी दशाश्वमेध घाट आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है। ये यहां पर डेरा इसलिए कुल मिलाकर डाले हुए हैं जिससे कि कोई अनहोनी ना हो, और अगर कोई इस छोर के आगे निकलता है तो उससे समय रहते बोट्स के जरिए बचाया जा सके। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।
1: तो ऐसे में आप लोग सावधानी जरूर बरतिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस
1: पेश किया है
0: अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
2: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
3: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पीओ आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो गलत से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक।
1: गुलटनिया और कलखनिया।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पीवा आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक
0: नहीं। गुलटनिया और कलखनिया।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में तीन सेशन में बैठ के मोदी एट 25 कार्यक्रम से लेकर जेन जी और चुनावों की तैयारियों पर चर्चा। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता, पुलिस को करना पड़ा दखल, आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, ड्रोन पर रोक। झारखंड में छात्र आंदोलन पर संग्राम, रांची समेत कई शहरों में छात्रों और जेएमएम कार्यकर्ता भिड़े, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी का पुतला फूटने पर बवाल, बीजेपी ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को बताया सरकारी गुंडे। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज, अब मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा आरएलडी को ऐसा कहना अपमानजनक, माफी मांगी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। टीम सीजेपी की पिटाई पर चढ़ी एफआईआर की जंग, सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का केस, दीपके ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ मानश दीक्षित, वक्त चलाए शतक आज तक का।

लातूर के जिला परिषद स्कूल में निकले प्राइवेट स्कूल के बच्चे, स्कूल में संख्या बढ़ाकर दिखाने के चक्कर में स्टाफ का अनोखा कारनामा। बीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जिला परिषद स्कूल का ऑडिट करते वक्त किया खुलासा, इंग्लिश स्कूल के बच्चों को ऑडिट के डर से स्कूल में लाकर बिठाया गया। लातूर में अभिजीत दिपके के स्कूल ऑडिट पर शिवसेना का हमला, का ऑडिट की जांच करने का किसने दिया हक, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बच्चों को तंग ना करें। जयपुर में सीजेपी की टीम से मारपीट मामले में दोनों पक्षों ने देर रात दर्ज कराई FIR। सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जयपुर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर FIR, शैक्षणिक परिसर में नियमों के उल्लंघन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने NSUI की कुछ छात्राओं को कॉलेज के अंदर रोक कर रखा, ये खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। कांग्रेस नेता विजय रेड्डीवार भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, फिलहाल हालात नियंत्रण में, तो वहीं ABVP ने दावों को खारिज किया। रांची में पुतला दहन के दौरान भारी बवाल, अल्बर्टा एक्का चौक पर महिला अभ्यर्थियों के साथ मारपीट, आरोपित को दौड़ाकर पकड़ा। परीक्षाओं में अनियमितताओं और अदालती फैसलों को लेकर विरोध जता रहे छात्रों और सत्ताधारी JMM के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस, धक्का मुक्की और मारपीट। दिल्ली में शुक्रवार को आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शनकारियों ने UGC के 2026 के समानता संबंधी नियमों पर आपत्ति जताई। लोग जंतर मंतर के आसपास जुटे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहां प्रदर्शन की अनुमति से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में सीमित संख्या के साथ प्रदर्शन की अनुमति थी। प्रदर्शनकारियों ने अब स्थगित किए जा चुके UGC एक्ट नियमों को लेकर भी नारे लगाए और सरकार से उस मुद्दे पर बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला। UGC आरक्षण के खिलाफ जुटे सवर्ण समाज के लोगों को RAF ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी के पुणे दौरे से पहले COEP इंजीनियरिंग कॉलेज में हंगामा, ABVP और NSUI कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। मुंबई में FDA की बड़ी कार्रवाई, मैकडॉनल्ड्स समेत 7 प्रतिष्ठानों को फूड लाइसेंस निलंबित। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में FDA की बड़ी कार्रवाई, होटल में जांच के दौरान मिली खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां। होटल के किचन में इस्तेमाल के लिए रखा पनीर मिला खराब, टॉयलेट की एंट्री गेट पर काटी जा रही थी सब्जियां। FDA की टीम ने होटल का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, नियमों के उल्लंघन को लेकर होटल पर पहले भी लगाया जा चुका है जुर्माना। छत्रपति संभाजीनगर में FDA की बड़ी कार्रवाई, गायत्री मेवाड़ प्राइवेट लिमिटेड का FSSAI लाइसेंस निलंबित। अलीगढ़ के मलकान सिंह चिकित्सालय में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा, खाने की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर कैंटीन को किया गया सील। नितिन नवीन की नई टीम बनने के बाद बीजेपी की आज 3 बड़ी बैठक, तीसरी बैठक में पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ चुनावी तैयारी और संगठन की रणनीति पर मंथन। चंडीगढ़ में मांगे पूरी न होने पर वित्त मंत्री हरपाल चीमा के आवास के बाहर ETT शिक्षकों का प्रदर्शन। चंडीगढ़ में अपनी कई मांगों को जैसे वेतन और पद की बहाली विवाद को लेकर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर में लैंडिंग के दौरान टेल इंपैक्ट के बाद इंडिगो विमान कराया गया लैंड, जांच जारी। ग्वालियर में आज तक की खबर का असर, खराब सड़कों पर गिरे IAS संघ प्रिय हटाए गए, अब सिंगरौली जिला पंचायत CEO की जिम्मेदारी दी। RSS ने जंतर मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शनों को केवल भ्रष्टाचार का मामला मानने से इनकार किया, कहा इन प्रदर्शनों के पीछे व्यवस्था की कुछ व्यापक नाकामियां। मायावती का अखिलेश यादव पर हमला, का 5400 रुपया बना देना, यह बयान अमर्यादित अशोभनीय, अखिलेश को RLD नेता और जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोली समाजवादी पार्टी की संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहें। योगी सरकार 52 नेताओं को देगी बुलेटप्रूफ जैकेट, अखिलेश यादव स्वतंत्र देव सिंह का नाम शामिल। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किया निर्देश, विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों कर्मचारियों विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर, बिना पुष्टि की गई पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। संबल हिंसा में दुबई में बैठे शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, भारत लाने की कार्रवाई तेज। जापानी मेहमानों का आज वाराणसी द्वारा, जापानी डेलीगेशन आज काशी की संस्कृति और आध्यात्मिकता से रूबरू होंगे, गंगा आरती भी देखेंगे। सिलीगुड़ी में अमित शाह ने कहा बीजेपी सरकार पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए कटिबद्ध है। बारिश और बादलों के बीच दिल्ली NCR में सुबह
झमाझम बारिश हुई, रिमझिम बरसात से गर्मी से राहत। सुबह सुबह बारिश की फुहार से उमस से भी राहत, कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार देखने को मिली कम। नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम में भी मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर में हवा में सुधार, एक्यूआई नॉर्मल। दिल्ली एनसीआर सहित देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट है, कई इलाकों में भारी बारिश, आंधी की चेतावनी है। 24 अगस्त तक हिमालय से लेकर मध्य भारत तक फुल स्पीड में रखेगा मानसून, आंधी और तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, सतर्क रहने की अपील। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पंजाब में मौसम रहेगा कूल कूल, मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चल सकती हैं हवाएं। यूपी में राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से राहत। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट, झांसी, जालौन, हमीरपुर और महोबा में मानसून दिखाएगा रंग। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर बड़ी सतर्कता, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की। 12 घंटे की बारिश में डूबा रीवा, देवदूत बनी SDRF की टीम, 1000 से ज्यादा लोगों की बचाई गई जान। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हादसा, सीवर निर्माण के दौरान रेत में दबकर 37 साल के मजदूर की मौत। करनाल में मंदिर में चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार, 4 किलो चांदी का मुकुट, नकदी बरामद। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बेगम बाग में 10 से ज्यादा अवैध व्यवसायिक ढांचों पर बुलडोजर कार्रवाई। जयपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, स्कूटी सवार बुजुर्ग को उड़ाया, 50 मीटर तक घसीटा। नोएडा में काम करने वाले IT इंजीनियर की पीट पीट कर हत्या, ससुराल पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मोदी नगर में दिन दहाड़े महिला के कान से झमके छीने, 2 बदमाश CCTV में कैद हुए। लखनऊ में बारिश के बाद जलभराव, पार्क रोड पर MLA आवास के बाहर पानी। फरीदकोट में एक छात्र चोर ने महज 1.5 मिनट में 1.5 लाख रुपए उड़ा दिए। हमीरपुर में अपनी मिठाई खाने से दुकानदार ने इनकार किया, SDM ने नष्ट करवा दी मिठाई। रामगढ़ में फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में लगी भीषण आग, 3 इंजीनियर्स की मौत, 1 घायल। इटावा डेवलपमेंटर केस में मुख्य आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पत्नी सास की थी हत्या। दिल्ली के हॉस्टल में 19 साल की नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या की, जांच जारी है। ओडिशा के बोलंगीर में मानव बलि के शक में 40 साल के व्यक्ति की हत्या, 5 लोग गिरफ्तार। रुकी में भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत, 6 घायल, एक के बाद एक 4 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। मंडी में स्कूटी सहित अनियंत्रित थार खेतों में पलटी, 8 ट्रेनी डॉक्टर घायल हो गए। दिल्ली के रायसीना रोड पर चलती कार में अचानक लगी आग, सड़क पर मची अफरा तफरी। कोडरमा में कस्तूरबा स्कूल की 300 छात्राओं का 8 किलोमीटर पैदल मार्च, खराब खाना प्रताड़ना, बदहाल व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खुला, गर्मी से कई छात्राएं बेहोश। गिर सोमनाथ में 60 फीट गहरे कुएं में मिला 5 साल का नर शेर का शव, टूटी जाली से गिरने की आशंका, वन विभाग जांच कर रहा है। जामताड़ा में पिलर के आसपास बालू उठाव और भारी वाहनों की आवाजाही में नींव कमजोर होने का आरोप। प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, दरोगा पर लगाए आरोप। कल कोलंबो में खेला जाएगा भारत श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, नए रिकॉर्ड का इंतजार। 2 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मौजूदा साइकिल में 53.3 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर। इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरे कर सकते हैं टेस्ट में 3000 रन, 7 रन दूर हैं। इसके अलावा टेस्ट में 50 छक्के भी पूरे कर सकते हैं गिल, कोलंबो में 3 छक्के लगाते ही उपलब्धि हासिल कर लेंगे गिल। टेस्ट 400 चौके पूरे करने से महज 1 कदम दूर रविंद्र जडेजा, अभी उनके नाम 399 चौके हैं। नीरज चोपड़ा ने लॉजेंड डायमंड लीग में जैवलिन थ्रो में 2रा स्थान हासिल किया, पहले स्थान पर श्रीलंका के रूमेश पथिरागे। नीरज ने दूसरे प्रयास में पिछले 1 साल का सबसे बेहतर थ्रो फेंका, यह उनके सीजन का भी बेस्ट थ्रो। सिनेमाघरों के बाद OTT पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू जंगल, जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी अब OTT पर रिलीज, Zee5 पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायगन OTT पर स्ट्रीम, Zee5 पर आज उपलब्ध। भारत में टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग, दर्शकों का क्रेज, 26 अगस्त सिनेमाघरों में।
पहली बार महात्मा गांधी का रोल करेंगे एक्टर मनोज वाजपेयी। सुधीर मिश्रा की फिल्म गांधी एंड माय मदर में नजर आएंगे। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र 2 में दीपिका पादुकोण की एंट्री। आलिया भट्ट के साथ निभाएंगी अहम और दमदार रोल। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म जेलर 2 ने रिलीज से पहले रचा इतिहास। करीब 160 करोड़ रुपए की ताबड़तोड़ कमाई। अभी से कर ली डिजिटल राइट्स बेच के। 3 साल बाद जोरदार कमबैक को तैयार बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। किंग की शूटिंग अंतिम चरण में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रिवी रिह शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए कड़ी निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा उन्हें नहीं लगता कि ईरान सही डील करने के लिए तैयार है। वॉशिंगटन इस टकराव में क्या होता है उस पर नजर रख रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी लागू करने की कोशिशों के तहत अमेरिकी सेना ने 68 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला है। ईरान की नौसेना के कमांडर शहजम ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान के कंट्रोल का दावा किया। कहा ईरानी सेना जल्द ही समुद्र में दुश्मन को तलेड़ देगी। ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की धमकी पर विदेश मंत्री अराची ने कहा ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से दी गई जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी का हश्र होगा। अमेरिका और कनाडा में ट्रेड डील पर जारी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि कनाडा अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा। ट्रंप ने कहा अमेरिका में होने वाली ग्रोथ देश के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज को संभाल लेगी। अमेरिका का कुल कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार। अमेरिकी न्याय विभाग और टिकटॉक के बीच $400 बिलियन का समझौता। ये समझौता उन आरोपों को सुलझाने के लिए हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने अमीर देश कोलंबिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए $148 मिलियन देने की अपील की है। अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट इलाके में तेज बारिश और हवाओं के साथ तूफान ने दस्तक दी। लॉन्ग आइलैंड के एक बीच को बुरी तरह प्रभावित किया।

0: दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के निहाल विहार में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। अब यह आरोप है कि घर के अंदर ही ससुराल पक्ष के लोगों ने विनय कुमार गुप्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। मृतक विनय के ससुराल पक्ष के 6 लोग उसके घर पहुंचे थे। आरोप है कि विनय की मां जब पानी और नाश्ता लेने कमरे से बाहर गई तभी उनके बेटे के साथ मारपीट शुरू हो गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंचे और गंभीर हालत में विनय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की खबर मिली, निहाल थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, मारपीट के बाद मौत हो गई, क्या जानकारी अभी तक आ रही निहाल से जुड़ी हुई?
1: जी हाँ बिल्कुल, परिवार वालों का सीधा आरोप है कि छोटी सी बात पर, बच्चे को दवाई लगाने के बाद पर झगड़ा हुआ। आमतौर पे कोई खास झगड़ा नहीं होता था, झगड़ा हुआ लेकिन उस झगड़े के बाद जो विनय की पत्नी है रेखा वो अपने घर चली जाती है, और घर जाने के बाद वो वापस आती है तो वो पीछे अपनी भाभी के साथ, जो सीसीटीवी में दिख रहा है, और उनके साथ में रहते हैं उनके दो भाई, पिता और एक और शख्स, ये सभी लोग ऊपर जाते हैं। अब ऊपर कमरे के अगर आप स्थिति देखेंगे तो 4 गिलास भी पानी रखे हुए थे, जो बताया जा रहा है कि विनय जब उनके साले और भाभी सब लोग आई तो वो लेकर के आए और पानी रखा, लेकिन उसी दौरान झगड़ा हो गया। जो विनय की माँ है वो नीचे के फ्लोर पे रहती, उन्होंने कहा शोर सुन के वो ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे को पीट रहे हैं। अंदर कमरे में जब हम गए तो हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर बकायदा जो मार्क्स होते हैं, जो पुलिस और फॉरेंसिक टीम के जो जांच के निशान होते हैं, वो वहां पर मौजूद थे। कमरा बिखरा हुआ भी था। उसके बाद जो अगला सीसीटीवी फुटेज है उसमें हिमांशु दिख रहा है कि एक जो पड़ोसी है वो विनय को कंधे पर लेकर के नीचे आ रहा है किसी तरीके से, क्योंकि विनय भी हत्या करता था और वो जो उसको लाना इतना आसान नहीं था। और पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनमें रेखा जो विनय की पत्नी थी, उनके दोनों भाई, वो लोग सब लोग आराम से चल के आ रहे हैं और खड़े हैं। तो यानी इसी दौरान ऊपर मारपीट हुई। फैमिली का ये भी आरोप है कि जो घर के सीसीटीवी थे, जो दोनों ये सामने वाली बिल्डिंग के सीसीटीवी में ये सारी चीजें कैप्चर हुई हैं, उसको उस दौरान बंद कर दिया गया था साजिश के तहत। तो अब पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले में। जो तमाम लोग मौके पे पहुंचे थे उन सबकी क्या भूमिका थी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो अभी स्टेप दर स्टेप पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हिमांशु,
0: अब बेहद गंभीर मामला है कि एक मामूली सी बात, मतलब आप सोचिए कि बच्चे को दवाई लगाने के विवाद पर मारपीट हो गई और अब पिता ही नहीं रहा, सोचिए कितना पल भर का गुस्सा क्या से क्या कर देता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वही कन्नौज में देर रात कांवड़िया और पुलिस आमने सामने आ गए। विवाद डीजे और झंडे की ऊंचाई को लेकर हुआ। कांवड़िया कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में गंगा जल अर्पित करने पहुंचे थे, उनके लिए बोर्डिंग ग्राउंड में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। कांवड़ियों का एक जत्था डीजे के साथ पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांवड़िया भी जिद पर अड़ गए, पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा दिया, धक्का मुक्की हुई। अंत में मामला खत्म कराने के लिए एडीएम को माफी मांगनी पड़ी। मामला तो शांत हो गया लेकिन कांवड़ियों ने मंच से एसएचओ जितेंद्र प्रताप सिंह के इस्तीफे का ऐलान कर दिया।
2: हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, तीन साल हम लोग यहाँ कांवड़ लाए लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है। एक मिनट भाई साहब, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपके हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लेके आए लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवड़ लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवड़ वापिस लेंगे।
3: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है वहाँ
2: भाई साहब, ऐसे जूतों से स्वागत।
4: लेकिन कुछ लोग, एक दो लोग सामने है
2: भाई साहब, हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं।
4: खिलाफ
2: बहुत हो गया 3 साल हम लोग
0: अरे SHO कह रहे हैं कि 11,000 केवी की लाइन ऊपर जा रही है, तो ऐसे में अगर किसी की जान जाती है, कोई कैजुअल्टी होती है, तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियोग्राफी बनवा रहे, देखिए इतना शोर, इतना DJ और उसके बाद ऊंचाई, और इसीलिए पुलिस की तरफ से सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद ADM को माफी मांगनी पड़ रही है। मामला तो शांत हो गया, लेकिन अब कह रहे हैं कि SHO को सस्पेंड किया जाए। जो व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, जो माइक पर अनाउंस करके कह रहे हैं कि कैजुअल्टी हो सकती है तो सावधानी बरते हैं, अब उनके इस्तीफे का ऐलान कर दिया है प्रताप सिंह के, SHO जितेंद्र प्रताप सिंह के इस्तीफे का ऐलान कांवड़ियों ने मंच से। अब आप समझिए, देखिए इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो आए
5: हैं, कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुनिए और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
6: नहीं, आप सनातनी।
5: दूसरी बात सुनिए, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुनिए और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
6: नहीं, आप सनातनी।
5: दूसरी बात सुनिए,
0: व्यवस्थाएं सबके लिए होती है और इनका ध्यान भी रखना चाहिए। चलिए संभाजी नगर की बात करते हैं, जहां लाइव साइड की तस्वीरें सामने आई है, कैमरे के सामने एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये दावा किया जा रहा है कि 18 साल का कुणाल आईफोन मांग रहा था, सुसाइड करने पहुंच गया पहाड़ के ऊपर, खूब मनाया गया उसे, लेकिन जब पिता उसे बचाने गए तो पैर फिसलता है, पिता और बेटा दोनों गिर जाते हैं, मां से सदमा संभला नहीं है और सदमे में मां भी छलांग लगा देती है।
7: संभाजीनगर में लाइव सुसाइड, बेटे को बचाने में गिरा पिता, पति बेटे के गिरने के बाद मां ने भी लगाई छलांग। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के संभाजीनगर की है, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। किसी बात से नाराज 18 साल का कुणाल चांदवड़े सुसाइड करने इस पहाड़ी पर पहुंचा, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले पहुंच गए और लड़के को समझाते रहे, लड़का मानने को तैयार नहीं था, करीब आने पर वो कूदने की धमकी दे रहा था। गांव वालों ने लड़के की खबर परिवार को दी, मम्मी पापा लड़के को बचाने भागते हुए पहुंचे। देखिए किस तरह माता पिता बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव वाले भी बच्चे को समझा रहे हैं। करीब 3 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कुणाल को समझाते समझाते माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नजदीक के गांव के सरपंच ने भी बच्चे को समझाने के लिए आईफोन देने का लालच दिया, लेकिन कुणाल को सुनने के मूड में नहीं था। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए दमकल कर्मियों ने लड़के को बचाने के लिए पहाड़ की तलहटी में बड़ा सुरक्षा जाल बिछाया था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर खड़ा लड़का लगातार अपनी दिशा बदल रहा था। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अब देखिए, लड़का चट्टान के कोने में खड़ा है, माता पिता तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही पिता करीब पहुंचता है, पिता और बेटे का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों ही चट्टान से गिर जाते हैं। पति और बेटे को गिरता देख माँ भी पहाड़ी से छलांग लगा देती है और चंद सेकंड में पूरा परिवार खत्म हो जाता है।
8: फिलहाल मैं छत्रपति संभाजी नगर के 30 गांव में हूं और 30 गांव में ये तकरीबन जो पहाड़ दिख रहा है, जिसकी हाइट 200 से 300 फीट के आसपास है। आज सुबह देवले में रहने वाले एक जो 18 वर्षीय युवक था, वो गुस्से से घर से निकला और इस पहाड़ के किनारे पर आकर ठहर गया और सुसाइड करने का प्रयत्न किया, जिसके बाद जो गाँव के लोग थे वो इस पहाड़ पर जमा हो गए। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी।
7: गांव वाले भी हैरान हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार को खत्म होते देखा।
9: परंतु मुलगा एक नेचर स्थितीत नव्हता, तो वारंवार जागा बदलत होता आणि आईची संवाद साधत होता। आईने सुद्धा भरपूर त्याला विनंती केली की बाळा असं नको तसं नको, पण त्यांनी काही ऐकण्याचे तो स्थितीत नव्हता, डिप्रेशन मध्ये गेलेला होता। आईने विनंती केली, जवळपास 3 तास आम्ही त्याची विनंती करत होतो, त्याच्यानंतर त्याचे वडील खाली होते, खाली होऊन त्याचे वडील सुद्धा विनवणी करत होता, परंतु काही क्षणात 15-20 मिनिटात शेवटच्या त्याचे वडील वरती आले, आम्हाला वाटलं तो समजवण्याच्या नादात त्याला थोडं बोलतील, परंतु त्यांना मुलाला धरायला गेला आणि तो मुलागा आणि वडील अगोदर खाली कोसळले आणि नंतर त्याच्या आईने सुद्धा उडी मारून घेतली।
7: हालांकि अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि बच्चे ने सुसाइड क्यों किया। गांव वालों का दावा है कि लड़का आईफोन की मांग कर रहा था, जिसे लेकर झगड़ा हुआ और मामला सुसाइड तक पहुंच गया।
8: जो 18 वर्षीय युवक है, उसके पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए पहाड़ के किनारे आते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं। इस दौरान जो 18 वर्षीय युवक और उसके पिता का दोनों का संतुलन बिगड़ता है और वो तकरीबन 300 फीट की हाइट से नीचे गिर जाते हैं। इसी दौरान उनकी जो माँ थी वो भी इसी पहाड़ पर मौजूद थी और जब उन्होंने अपने पति और बेटे को पहाड़ से गिरता देखा तो माँ ने भी छलांग लगा दी। फायर ब्रिगेड की तरफ ओर से तीनों को बचाने का प्रयत्न किया गया, लेकिन तीनों की जगहों पर ही मौत हो गई। इस हादसे की वजह से जो परिसर है ये पूरा शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के जो तीन सदस्य थे, माँ, बेटा और पिता, तीनों की सुसाइड से जान चली गई। इसरार चिश्ती, आज तक, छत्रपति संभाजी नगर।
0: ये बहुत छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया है।
10: हाँ,
12: ओले ला भाई मेरा बैट।
10: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
12: अभी तो चार्ज हुआ यार।
13: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नितिन नवीन की रेल टीम की पहली बैठक आज बीजेपी मुख्यालय में तीन सेशन में बैठ के मोदी एट 25 कार्यक्रम से लेकर जेन जी और चुनावों की तैयारियों पर चर्चा। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता, पुलिस को देना पड़ा दखल। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, ड्रोन पर रोक। झारखंड में छात्र आंदोलन पर संग्राम, रांची समेत कई शहरों में छात्र और जेएमएम कार्यकर्ता भिड़े। हेमंत सोरेन, राहुल गांधी का पुतला फूंकने पर बवाल, बीजेपी ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को बताया सरकारी गुंडे। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज, मायावती ने अखिलेश यादव को घेरा, कहा आरएलडी को ऐसा कहना अपमानजनक, जाटों से और आरएलडी से माफी मांगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। टीम सीजेपी की पिटाई पर छिड़ी एफआईआर की जंग, सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का मामला। दीपके ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम।

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद सियासत का फोकस अब जेन ज़ी पर शिफ्ट हो गया। हर पार्टी युवाओं को साथ जोड़ने की कोशिश में लगी और इसके लिए अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है, एजेंडों पर काम किया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ जारी बैठक में जेन ज़ी के असंतोष पर चर्चा की उम्मीद है। वहीं राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं और उधर कॉकरोच जनता पार्टी स्कूल ठीक करो अभियान के जरिए युवाओं से बड़े बदलाव की अपील कर रही है। परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ युवाओं का गुस्सा, प्रतिरोध झारखंड की राजधानी रांची में लगातार दिख रहा है, हम आपको दिखा भी रहे हैं। जहां जेपीएससी जीएसएससी रिफॉर्म्स मंच के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा हुआ क्योंकि वो राहुल गांधी हेमंत सोरेन का पुतला फूंकना चाहते थे। अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कन्नौज में डीजे को लेकर कांवड़ियों और पुलिस के बीच ऐसा विवाद हुआ कि मामला हाथापाई से लेकर माफी और कोतवाल के इस्तीफे के ऐलान तक पहुंच गया। शुक्रवार देर रात हरदोई के बिलग्राम से कांवड़ियों का जत्था कन्नौज के गौरीशंकर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा था। इसी दौरान शहर के अंदर डीजे ले जाने को लेकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसी बात पर कांवड़िये भड़क गए और पुलिस से धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसके बाद कांवड़ियों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। मामला बढ़ता देख प्रशासन बैकफुट पर आया। एडीएम देवेंद्र सिंह ने कांवड़ियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। एसएचओ को मौके पर ही सस्पेंड करने का ऐलान किया, जबकि कांवड़ियों से अभद्र व्यवहार के आरोपों के बीच कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी मैदान में ही नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद डीजे को शहर के अंदर जाने की अनुमति दी गई और कांवड़ियों ने अपना विरोध खत्म कर दिया। मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंचे, आयोजकों से बातचीत भी की। हालांकि एसएचओ की तरफ से न्यायसम्मत बात कही जा रही थी।
1: और उसके बाद जैसे कोई कैजुअल्टी होगी हम वीडियोग्राफी चालू कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। ये देखिए अभी तो हम सूचित कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। नीचे काम थी वो बाइक चलाने के दौरान खोल दी गई है, तो इसलिए 11,000 की लाइन ऊपर से जा रही है। शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर। लेकिन मैं मेरी बात सुनिए और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
2: सामने
3: हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं,
2: खिलाफ
3: साल हम लोग यहाँ कांवर लाए लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है। एक मिनट भाई साहब, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपके हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवर लेके आए लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवर लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे कांवर वापिस लेके।
4: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है वहाँ
3: भाई साहब, ऐसे जूतों से स्वागत।
2: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग
3: निर्णय ले चुके हैं,
2: सामने है
3: भाई साहब, हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं।
2: खिलाफ
3: तीन साल हम लोग यहाँ कांवर लाए लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है। एक मिनट भाई साहब, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपके हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवर लेके आए लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवर लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ पे कांवर वापिस लेके।
4: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है वहाँ
3: भाई साहब, ऐसे जूतों से स्वागत।
2: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग
0: आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज ही बहुत गजब व्यवस्था है यहाँ पर, 11,000 केवी की लाइन ऊपर जा रही है और एसएचओ की तरफ से ये कहा जा रहा था कि सावधानी बरतिए। और हमने देखा है कि शोर की वजह से, डीजे की शोर की वजह से कई जगह अव्यवस्था हुई है, परेशानी हुई है। इतनी सी बात पर एडीएम को माफी मांगनी पड़ी, एसएचओ को सस्पेंड भी करना पड़ा, क्यों?
5: देखिए हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि जब उस शहर में जैसे कि हमेशा से निकलती आई है ये कांवड़ यात्रा, उसके बाद हरदोई से होते हुए कन्नौज तक, लेकिन जो वो रास्ता है जहां पर हाई टेंशन लाइन थी उसके बारे में बताया जा रहा था कि अगर ये जो डीजे है वो टच होता है या किस तरीके का कोई नुकसान होता है तो ओवरऑल वो कांवड़ियों को ही नुकसान होगा। दूसरी तरीके से कि वो रूट जो था वो काफी व्यस्तम रूट था और वहां से जाना भी थोड़ा मुश्किल था, तो इसी बीच ये बहस शुरू हुई। हालांकि उस दौरान एसएचओ और पुलिस और प्रशासन ये मांग कर रहा था कि उनकी बात को समझा जाए, कांवड़िये भी उस बात पर अड़े थे कि हमको उसी रास्ते से जाना है, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो झड़प हुई उसको लेकर यह विवाद देखा जा रहा है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्यों कांवड़िए भी एक तरीके से उन्होंने कहा उस रास्ते से हम वापस ले जाएंगे अगर नहीं होता है। बाकी जब जिस तरीके से एडमिन ने भी कहा, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस बात को बोला कि नहीं ठीक है अगर आपको लगता है तो आप ले जाइए, हालांकि यहां तक बात गई, बट ये वाद विवाद चलता रहा बहुत देर तक और उसके बाद ही फाइनली यहां तक SHO को माफी तक मांगनी पड़ी और इस्तीफे की बात कही गई। तो ये सारी चीजें जब सामने आए उसके बाद कांवरिए कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल मोड में आए, तो ये चीजें जो सामने निकल कर आई, ये क्योंकि कांवड़ चल रहा है पूरे प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ का सीधे संदेश है कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना आए, रूट में उनके लिए ग्रीन रोड बनाया जाए, साथ ही साथ उनको रास्ते में कोई दिक्कत ना आए। मेरठ से लेकर हमने देखा है कि अवध तक यहाँ तक जब भी जो कांवड़ जाती है उसको लेकर खुद प्रशासन पुष्प वर्षा और सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांवड़ियों
0: लेकिन एक व्यवस्था बनाने की बात कही तो महादेव के भक्त नाराज हो गए, जबकि महादेव के भक्तों को समझना चाहिए कि भोले कहा गया है भोले बाबा को, भाव काफी रहता है लेकिन यहां पर हट देखा गया। शुक्रिया खैर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की बात करते हैं, आज अपनी नई टीम के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही सार्वजनिक जीवन में पीएम मोदी के 25 साल पूरे होने पर देश भर में होने वाले कार्यक्रमों पर बात होगी। लेकिन इस बैठक का एक अहम मुद्दा हाल में हुआ जेंजी का आंदोलन और युवाओं का संतोष होगा, जिस पर खासा फोकस रहने की उम्मीद है। इस बैठक का अहम उद्देश्य नई पीढ़ी की प्राथमिकताओं, सोच, राजनीतिक अपेक्षाओं को समझकर उन्हें बूथ और सोशल मीडिया स्तर पर पार्टी से जोड़ना है। हाल के युवा आंदोलनों की भावनाओं को ध्यान में रखकर रणनीति तैयार की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में संगठन को और मजबूती दी जा सके। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष बताइए, आज तीन अलग अलग बैठक बीजेपी का नवीन मिशन, इससे जुड़ी क्या जानकारी आ रही है आपके पास?
6: जी बिल्कुल, ये बीजेपी का नवीनतम मिशन है क्योंकि पहली बैठक हो रही है नितिन नवीन की, जिसमें सभी जो नव नियुक्त अधिकारी हैं बीजेपी के नई टीम के नितिन नवीन के, वो सभी के सभी बीजेपी एक्सटेंशन ऑफिस पहुंच चुके हैं और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये बैठक चल रही है। इस बैठक की शुरुआत तो पूरे वंदे मातरम के साथ हुई, जिसमें स्मृति ईरानी, जय पांडा, तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल जैसे कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे और इन्हीं के साथ साथ जो युवा चेहरे हैं जैसे हिमांग जोशी हो गए या आपको संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी से आए वो हो गए, और इसके अलावा कई जो युवा चेहरे हैं वो भी शामिल हैं। दिन भर ये बैठक होने वाली है, तीन अलग अलग चरणों में बैठक होगी। पहली जो बैठक होगी वो एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, जिसमें कि सभी नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नई टीम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नितिन नवीन अपनी बात रखेंगे, बाकी जो नए निर्वाचित सदस्य है वो अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद दूसरा सेशन जो है वो उसमें बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, आगे किस तरह से बीजेपी काम कर रही है, किन किन रणनीतियों पर काम कर सकती है, उन सभी चीजों को लेकर चर्चा होगी। और एक और जो महत्वपूर्ण बैठक है वो है मोदी एट 25, यानी 25 साल जो पीएम नरेंद्र मोदी को हो गए हैं लोगों की सेवा करते हुए, उसको किस तरह से और आगे बढ़ाना है, किन किन चीजों पर काम करना है, क्या क्या और आगे काम करने हैं, इसको लेके कार्यक्रम की एक रणनीति, एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें ना सिर्फ महासचिव मौजूद हैं बल्कि सभी मोर्चों के अध्यक्ष मौजूद हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष मौजूद हैं और कई सारे नए चेहरे।
0: देखिए, नई जिम्मेदारी है और अब ये माना जाए कि नई तैयारियां हैं, 2027 का लक्ष्य भी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल गांधी की बात करते हैं, राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आज संबोधित करेंगे। खास बात यह कि पुणे का छात्रों की गूंज कार्यक्रम छात्राओं को डेडिकेट किया गया, राहुल के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई। आज पुणे में राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम, हालांकि आज छात्रों की गूंज छात्राओं की गूंज होगा, छात्राएं आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। जैसा कि अभी तक जानकारी आ पा रही है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कुछ शर्तें रखी गई हैं, प्रशासन की सख्ती भी है, ड्रोन पर मनाही है, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हो सकता, कुछ शर्तें 30 शर्तें यहां पर रखी गई हैं, प्रशासन की भी नजर होगी, सिर्फ छात्राओं के शामिल होने की खबर।
7: अभी हम उसी SSPMS के ग्राउंड पर है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बगल में स्कूल है और उसी के मैदान पर राहुल गांधी शाम को पहुंचेंगे, जहां ये तैयारियां अभी शुरू है। पिछले 15 दिन से पुणे में महाराष्ट्र के सभी कांग्रेस के नेता मौजूद थे और सभी यहां आए थे। कल रात से जो राष्ट्रीय नेता है वो भी आएंगे, थोड़ी देर में अलग अलग नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उससे पहले दो कॉन्ट्रोवर्सीज पुणे में हुई। पहली ये थी कि पुणे पुलिस को जब परमिशन के लिए इस प्रोग्राम की परमिशन मांगी गई थी तो 30 अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई जिसके आधार पर राहुल गांधी यहाँ प्रोग्राम कर पाएंगे, दो दिन पहले दी गई थी। और कल रात को एबीवीपी के छात्र और फिर एनएसयूआई, इनके बीच संघर्ष हुआ पुणे में। सीओईपी कॉलेज है इंजीनियरिंग का, वही एनएसयूआई की छात्राओं को रूम में बंद कर दिया गया था, ऐसा एनएसयूआई का आरोप है। और उसी के बाद दोनों ग्रुप है जो आपस में भिड़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अब एनएसयूआई के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट भाजपा के जो नेता है उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है, पुणे पुलिस ने ही एफआईआर दर्ज भी की है। राहुल गांधी आने से पहले पुणे की दो कॉन्ट्रोवर्सी चर्चा में है, आज शाम को प्रोग्राम होने जा रहा है। उससे पहले आपको पता है कि दिल्ली में भी राहुल गांधी खुद धरना देने बैठे थे सीजेपी के आंदोलन के दौरान, जहां पेलेट गन चलाई गई उसी स्टूडेंट को साथ में लेकर राहुल गांधी गए, एफआईआर दर्ज की और बाद में वो आज पुणे आएंगे। पुणे में क्या कहेंगे, छात्रों की गूंज कैसे दीगी और क्या छात्र भी ये सब राहुल गांधी बोल रहे हैं वो से उसकी उन्हें अपील करेंगे, और क्या राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो छात्रों को भी उन तक पहुंचेगी और उनका क्या रिएक्शन, देखना सब देखना अहम रहेगा। क्योंकि सिर्फ पुणे नहीं, यहीं से तो सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद राहुल गांधी देश के अलग अलग शहरों में जाएंगे, वहीं पे भी इसी तरीके की छात्रों की गूंज राहुल गांधी की तरफ से दी जाएगी। ओमकार वाबले, आज तक पुणे।
0: सियासी तनाव के बीच पुणे में होने वाले राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए।
8: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना इस प्रकार का आदेश दिया गया है, उनका ही रजिस्ट्रेशन करके उनको ही वहां पर एंट्री मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये कार्यक्रम होने वाला है।
0: ओमकार वाबले हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। ओमकार, आपकी डिटेल रिपोर्ट ने तो बता ही दिया कि क्या कॉन्ट्रोवर्सीज वहां पर चल रही हैं राहुल की, आज अपनी बात रखने से पहले ये बताइए अभी तैयारियां क्या हो रही हैं वहां पर राहुल के आने की।
9: हम पुणे के उसे एसएसपी वास ग्राउंड पे भी खड़े हैं जहां आप पीछे देख सकते हो बैंड हो या फिर शाम के जो भी यहाँ अलग अलग तरह के परफॉर्मेंसेस होने हैं उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में अलग अलग नेतागण यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। अभी विजय भरे तिवार है कांग्रेस के, वो आ चुके हैं। सतीश पाटिल आ चुके हैं, यशोमती ठाकुर जो पहले महिला बाल कल्याण मंत्री थी वो भी आ चुकी है। तो अलग अलग नेता अभी आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन पिछले 15-20 दिन से पुणे में तैयारियां हो चुकी थी और उसकी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि पुणे एक एजुकेशन हब है महाराष्ट्र नहीं बल्कि इंडिया का, और इसलिए अलग अलग जगहों से देश की या फिर देश के बाहर के भी स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। तो छात्रों की गूंज का बेसिक इसका जो थीम था राहुल गांधी का वो यही था कि इस बार जनरेशन जेड जो है उनके साथ छात्र हो या फिर छात्राएं हो उनके
0: मतलब
9: साथ
0: छात्राएं यहाँ पर शामिल होंगी और इंतजार है बस राहुल गांधी के आने का। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले हुए बवाल की बात भी कर रहे हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई की कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और विवाद हिंसा झड़प में बदल गया था। कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने एनएसयूआई की छात्राओं को कॉलेज के अंदर रोक कर रखा। कार्यकर्ता कांग्रेस के पहुंचे, कांग्रेस के नेता विजय रेड्डीवार भी पहुंचे, दोनों छात्र संगठन में विवाद बढ़ गया। एबीवीपी कार्यकर्ता इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ये एनएसयूआई माहौल बना रही है। अब पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया। हालांकि इस विवाद के बाद राहुल के कार्यक्रम से पहले ही तनाव बढ़ गया। तो आज छात्रों की गूंज है, छात्राओं की गूंज आप कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं इसमें छात्राएं शामिल होंगी ये बात स्पष्ट हो गई है। और दूसरी तरफ एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जो आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिखाइए। तो ये जमकर हंगामा होता हुआ यहां पर नजर आया, हालांकि हिरासत में भी लिया गया। चलिए अब जयपुर ले चलते हैं आपको। सीजेपी कार्यकर्ता पर हुआ हमले में एफआईआर हो रही है, इधर से भी उधर से भी।

0: और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस एफआईआर जिसे कहा जाता है वही हो गई। गांव वालों का कहना है कि जबरिया गांव में घुसने की कोशिश की सीजेपी वालों ने, मारपीट की। अब सीजेपी नेताओं का कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया और दोनों ने एफआईआर दर्ज करा दी। तो सीजेपी की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया कि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कीजिए। झारखंड रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया। हेमंत सोरेन राहुल गांधी का पुतला जलाने की तैयारी कर रहे थे छात्र, लेकिन इस दौरान जेएमएम के कार्यकर्ता आते हैं, प्रशासन आते हैं, धक्का मुक्की शुरू होती है, फिर मारपीट तक मामला पहुंच जाता है, ऐसा प्रदर्शनकारी कह रहे हैं।
1: आज हम लोग का पुतला दहन कार्यक्रम पहले से तय था, हम लोग आ रहे थे और ये झारखंड सरकार पुलिस के यार में आज जो माहौल किया है, हर एक जिला में अपना गुंडा को भेजा है, यहाँ भी गुंडा भेजा था, हर जिला में लाठीचार्ज किया है, यहाँ भी पुलिस जबरदस्ती कर रही है, माफिया लाठीचार्ज कर रही है और जो हमारे दल साथी को छेड़ रहे
2: हैं। जो होते हुए चगड़ी की फिराया लाल होते हुए आना था, इन्होंने पुलिस और प्रशासन के द्वारा दिए गए रूट को फॉलो नहीं किया, ये अपने मन से रेडियम चौक होते हुए आए, बिना अनुमति के इन्होंने जेपीएससी कार्यालय के सामने जो है प्रदर्शन किया। भीड़ के कुछ लोगों के द्वारा जो है अन्य जो गुट था उसके दो लोगों के बुरी तरीके से मारपीट कर दी गई है। पुलिस के द्वारा विधि व्यवस्था को संधारित करने हेतु हल्का बल का प्रयोग किया गया है, विधि व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है, भीड़ के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। हॉस्पिटल में सदर हॉस्पिटल में जहाँ पे मरीज बहुत सारे क्रिटिकल अवस्था में है उनको परेशान किया जा रहा है। विधि व्यवस्था की मतलब पुलिस जो है निगरानी में है और विधि व्यवस्था।
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: वंदे मातरम विवाद की ये केरलम फाइल है। आरोप है कि केरलम के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में SFI ने वंदे मातरम पूरा गाने से रोक दिया। खबरों के मुताबिक त्रिवेंद्रम के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत युवा प्रोफेशनल्स का राउंड टेबल आयोजित किया गया था। राउंड टेबल से पहले वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ तो SFI के छात्रों ने बीच में ही रुकवा दिया। SFI के छात्रों का कहना था कि ये केरलम है और आप यहाँ पूरा वंदे मातरम नहीं गा सकते। वंदे मातरम के दो छंद या छह छंद। 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यक्रम से इस विवाद की शुरुआत हुई थी। सोनिया गांधी पर आरोप लगा कि वो वंदे मातरम पूरा गाने से रोक रही थी। दो दिन गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के दो छंद ही गाए गए और फिर कांग्रेस कार्य समिति ने पार्टी के आयोजनों में दो छंद वाले वंदे मातरम को ही जारी रखने का फैसला लिया। कांग्रेस कार्य समिति के फैसले पर गृह मंत्री ने कांग्रेस पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी तुरंत पलटवार किया।
1: वंदे मातरम तो कांग्रेस गा ही रही, ये लोगों ने वो बात के भी और जो लंबा चौड़ा था जिसे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कहा था कितना लंबा ये नहीं होना चाहिए, तो वो उन्होंने जो है रोका था कि इतने बस गाया जाए। तो वो पद वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम है, मातृभूमि की आराधना है, तो कांग्रेस हमेशा से गाती रही। इन्होंने नया नया वंदे मातरम पकड़ा है, फिर एक भी भाजपा नेता को आप कैमरा लगा दो सामने अगर वो वंदे मातरम पूरा गा दे, नहीं गा सकते। सिर्फ जो है एक राजनीतिक जो है दुष्प्रचार करना सिर्फ वोटों के लिए।
0: इस विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूदी। पार्टी का कहना है कि कानून अपमान को लेकर बना है न कि गाने को लेकर।
2: वंदे मातरम

0: कानून बन चुका है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन वंदे मातरम गाया जाए इस तरीके का कोई आदेश सदन ने पास नहीं किया है। तो वंदे मातरम जब होगा तो जो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम खड़े होकर के सावधान मुद्रा में उसके सम्मान में हम उस कानून का पालन करेंगे और वंदे मातरम जितना आ सकेगा उतना गाएंगे, क्योंकि 6 स्टेंजा याद करना किसी के बस की बात नहीं।
1: वंदे मातरम कभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों में जोश भरने वाला गीत था, लेकिन अब उसी वंदे मातरम पर सियासी लड़ाई छिड़ गई है। कहां से कहां आ गए हम। आज तक ब्यूरो।

0: पागल तो बना दूंगा देश को. अभी तो बस पेश किया है. अभी बहुत बहुत है, बहुत है.
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका.
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो. गांजा पी आदमी नहीं मार सकता. कलखनिया मारे वो लद्द से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक नहीं.
0: गुलटनिया और कलखनिया.

0: सीट पर सीट के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति है, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो।
1: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है न्याय के।
2: घर का सपना हो या गाड़ी की चाहत, जेब पर पड़ने वाला ईएमआई का बोझ हर महीने मध्यम वर्ग की धड़कनें बढ़ा देता है। रेपो रेट कम होने के बाद लोन के किस्तें कम होने का इंतजार महीनों तक चलता रहता है। हालांकि बैंक जितनी तेजी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में करते हैं, उसी स्पीड से ब्याज दरों को घटाते नहीं है, लेकिन अब उम्मीद है कि रेपो रेट घटने के चंद महीनों में ही ईएमआई कम होने की राहत देने का सिस्टम जल्द लागू हो सकता है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नया नियम लाने जा रहा है जिससे ब्याज दरों में कटौती का फायदा आम आदमी को जल्द मिलेगा। आरबीआई के ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक फ्लोटिंग रेट लोन का बेंचमार्क हर 3 महीने में अपडेट करना जरूरी होगा। फिलहाल पुराने MCLR लोन में रेट रिसेट का समय 6 महीने से 1 साल तक का है। राहत देने वाले इस नए फ्रेमवर्क को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने की योजना है और पुराने लोन को 1 अप्रैल 2029 तक बिना एक्स्ट्रा चार्ज नए सिस्टम में शिफ्ट किया जाएगा। नए नियम का सीधा मकसद मॉनेटरी पॉलिसी का फायदा ग्राहकों तक तेजी से पहुंचाना है। इस बदलाव से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 50 लाख रुपए के 20 साल वाले लोन पर अगर ब्याज दर 8.5% से घटकर 8.25% होती है तो हर महीने की ईएमआई करीब 43,391 रुपए से घटकर 42,603 रुपए रह जाएगी, जिससे हर महीने करीब 788 रुपए की बचत होगी और साल में लगभग 9,500 रुपए बचेंगे। बैंकों में अलग अलग लोन सिस्टम के उलझन को खत्म करने के लिए आरबीआई ने ये गाइडलाइंस तैयार की है। नए नियमों में फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों तरह के लोन के लिए गाइडलाइंस तय की गई हैं। इसमें बैंकों को ब्याज दर तय करने के लिए साफ पॉलिसी बनानी होगी जिससे क्रेडिट रिस्क और ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे कंपोनेंट्स 3 साल से पहले नहीं बदले जा सकेंगे। वहीं ब्याज की गणना डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के आधार पर महीने के हिसाब से होगी और 50,000 रुपए तक के स्मॉल वैल्यू लोन पर सालाना ब्याज दर की एक सीमा तय की जाएगी। अगर किसी बैंक का विलय या अधिग्रहण होता है तो भी ग्राहकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। नया बैंक एग्रीमेंट बदलते समय ब्याज दर को मर्जर से पहले वाले रेट से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता। आरबीआई ने इस ड्राफ्ट पर 11 सितंबर 2026 तक जनता और एक्सपर्ट्स से सुझाव मांगे हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद लोन लेने वाले को बैंकों के मौजूदा रवैये से बड़ी राहत मिलेगी। आदित्य के राणा आज तक।

बीजेपी मुख्यालय में मोदी एट 25 कार्यक्रम से लेकर जैन जी वंदे मातरम और चुनावों की तैयारियों पर मंथन। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता, पुलिस को करना पड़ा दखल, आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, ड्रोन पर रोक। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज, मायावती बोली माफी मांगी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमलों की बौछार की। टीम सीजेपी की पिटाई पर चढ़ी एफआईआर की जंग, सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का केस, विवाद के बाद तबेले से शिफ्ट हुआ स्कूल। और यूपी के कन्नौज में डीजे विवाद पर कांवड़िए, पुलिस में झड़प के बाद बैकफुट पर आया प्रशासन, एडीएम ने हाथ जोड़कर मांगी माफी, मौके पर ही एसएचओ को किया सस्पेंड।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज गोलमेज की यह चर्चा यानी राउंड टेबल पर हम आज एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़े हुए हैं। बागेश्वर सरकार, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ हैं। नेहा बाथम, सईद अंसारी, राजीव ढौंडियाल और पूजा शर्मा, हम पांच साथ मिलकर आपसे आज प्रश्न पूछेंगे। असल में प्रधानमंत्री जी ने ही कुछ दिन पहले आईआईटी में एक संबोधन में कह दिया
1: जी
0: कि मैं बाग बाग बागेश्वर नहीं हूं जो आपके मन की बात जानूं।
1: जी
0: युवाओं के बीच बैठे थे वो।
1: जी
0: क्या बाबा बागेश्वर युवाओं के मन की बात जानते हैं, और
1: देखो,
0: जानते हैं तो जेन जी की उस बात को कैसे रखेंगे?
1: देश के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी मन की बात जानते भी हैं, समय परिस्थिति को भी जानते हैं। और ये हमारे लिए और हम सबके लिए विशिष्ट बात ये है कि एक ऐसे वो जननायक हैं, 140 करोड़ लोग हैं, अनेक महापुरुष संत हैं, और वो हमारे जैसे छोटे से व्यक्तित्व को, छोटे से आदमी को स्मरण रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और उनकी असाधारण प्रतिभा के वो धनी है, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी बात, आपको एक बात हम बहुत मजेदार बताएं कि हम 1 साल चूक गए हैं जैन जी होने से।
2: हमारा मेरी दृष्टि में तो आप जैन जी,
1: जी आप जैन जी 1996 में हम आए हैं, और 97 के बाद में जो है जैन जी के लिए कहा गया, तो हम 1 साल
2: चूक चेंज कर देते हैं उसको।
1: ऐसा यदि हो जाए,
2: हो गया हो गया,
1: बहुत धन्यवाद।
0: ये दोनों दोनों मध्य प्रदेश के लोग बैठ के आपस में कोई वो साजिश न बोले।
1: जी जी जी, लेकिन हमें पता है कि हम कितनी भी सांठगांठ कर लें, आप लोगों के अंदर जो भगवत कृपा है, देवी अनुकंपा है, और जो आपका अध्ययन है, जो आपके पास लॉजिक तर्क है, हम लोगों की सांठगांठ चलेगी नहीं। जब देश की सांठगांठ नहीं चलती तो हम लोगों की सांठगांठ कहाँ चलेगी।
2: नहीं, श्वेता ने मुझसे पूछा क्या पूछोगे, मैंने कद्दू पूछेंगे सारा, तो आप जानते हैं मन की बात।
3: बाबा बागेश्वर, ये जो जैन जी का क्योंकि जिक्र चला है, जिस तरीके से प्रदर्शन के जरिए सारी बांगों को मनाया जा रहा है, एक नया ये ट्रेंड शुरू हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये सही है?
1: अपनी बात रखना ठीक है, आंदोलन करना ठीक है, हक के लिए लड़ना ठीक है, पर आंदोलन सबसे अंतिम सीमा अपनी बात रखने का। अनेक माध्यम है, पत्राचार माध्यम है, संवाद माध्यम है, केवल अपने बयान देना एक माध्यम है, सबसे लास्ट में है आंदोलन। लेकिन आंदोलन हो, लेकिन वो उसमें फूहड़ता ना हो, देश में अराजकता ना फैले, देश में हिंसा ना फैले, और हम किसी की भी मां बहन को गाली ना दें। ये इतना ख्याल रखें कि हम अपनी बात रखें लेकिन देश में अराजकता ना हो। दूसरी बात, एक आज तक के इस टेबल राउंड के इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं, विशेष रूप से जैन जी सड़कों पर ही ना आए, हम चाहते हैं सरकार एक नया रास्ता चुने, सरकार ही जैन जी के पास जाए, एक ऐसा दरवाजा चालू किया जाए, एक ऐसा डोर खोला जाए कि जैन जी को आंदोलन करना ही ना पड़े।
0: कुछ मन में है आपके, कैसे होगा ये?
1: अरे ऐसे मन में कुछ है नहीं, बस इतना सा ख्याल है, इस देश में बहुत बौद्धिक लोग हैं, प्रतिभा के धनी लोग हैं, प्रज्ञा मेधा के धनी लोग हैं, वो इस पर कार्य कर सकते हैं। पर हमारे मन में इतना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे देश की जैन जी अपनी बातें सरकार से सीधी कर पाए।
3: बाबा, आप टीवी देखते हैं?
1: बिल्कुल देखते हैं, देखते
3: में,
1: तो
3: न्यूज में आज तक देखते होंगे, तो आज तक में आपने सारे प्रदर्शन देखे होंगे, दिल्ली का प्रदर्शन ठीक था?
1: हमने फिर कहा कि देखो, देश भर में प्रदर्शन आज से चल रहा, कोई ना कोई प्रदर्शन चल रहा, ठीक था, ये कह पाना पूरा सही नहीं होगा। प्रदर्शन होना चाहिए लेकिन प्रदर्शन में देश के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए।
3: झारखंड का प्रदर्शन, पटना,
1: बहुत सारे हो रहे हैं, मतलब लगातार चल रहे हैं।
0: मतलब आपको तरीके पर आपत्ति है कि भाषा अच्छी, हिंसा ना हो,
1: सिस्टम पर, सिस्टम बदलना है, सिस्टम बिगाड़ना नहीं।
0: अच्छा, एक हमारी एंकर जो है वो जेन जी ही है
1: जी,
0: वो सालों से नहीं चुकी बल्कि बीचों बीच है, मध्य में है जेन जी।
4: मैं ये पूछना चाहूंगी, प्रदर्शन का जिक्र हो रहा है कि प्रदर्शन में कट टू कट जेन जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उनके जो कोटेशंस भी हमने देखे, बहुत क्यूटली अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे थे, आप उस भाषा को समझते हैं? जैसे जेन जी क्लैप ऐसे करता है, एग्री करता है, तो ये भाषा आप समझते हैं?
0: एक बार जरा
1: इतनी इतनी भर ही समझते हैं,
0: क्या क्या समझ रहे हैं?
1: बहुत ज्यादा समझ नहीं आती, अभी 2-3 दिन से ही इस पर हम समझ पा रहे हैं, ये चुटकी हमें समझ आती है,
0: ये चुटकी नहीं है,
4: ये हार्ट है,
0: हार्ट है।
1: अच्छा, वो भी विदेशी, कोरियन,
0: सब पता है,
2: सब पता है, बस
4: जेन जी ही
2: कोरियन हार्ट बोल दिया आपने, आपको सब पता है,
1: बस इतना ही
2: पता है, और कुछ
1: बहुत ज्यादा
4: वही कट टू कट जैसे होते हैं ना उनके जवाब, डिल्यूजनल। आजकल जेन जी थोड़ा डिल्यूजनल में भी जी रहा है, एक अपना उनका एक वर्ल्ड है
1: आपने अपने शब्द है, मोए मोए है,
4: हाँ,
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, और ये भी है,
2: और
1: ये भी है
0: ये क्या
4: ये एक तरीके से प्यार जताने
3: की कोशिश की होगा कि रील्स
1: ना ना हमने ये दो दिन में अभी सीखा है जब से दिल्ली आए तब से आप लोगों की ही ये संगत का
3: इंटरव्यूज में ही सीख लिया
1: आप लोगों की संगत का असर पड़ा
3: हम लोगों को भी इतना नहीं पता है जितना बाबा वागीश
1: हमने इंटरव्यू में ही और पत्रकार आपके भाई बहन थे वो हमें सिखा रहे हैं
3: तो रील से जो ये पॉपुलैरिटी मिलती है इसको आप किस तरीके से देखते हैं कहां तक सही मानते हैं क्या ये आज का नजरिया है और इसमें शामिल होना क्या बाबा बागेश्वर के लिए भी एक मजबूरी है
1: वर्तमान के पहले भारत में एक एडिक्शन था एडिक्ट थे लोग ड्रग एडिक्ट अब एक नए एडिक्ट हो गए लोग ड्रग के बाद सोशल मीडिया एडिक्ट हम देश को नेशनल लव एडिक्ट करना चाहते राष्ट्र प्रेमी एडिक्ट
0: महाराज जी आपके भी रील वायरल
1: था एडिक्ट हम भी बनाते रील बनाना बुरा नहीं उसी हाँ। सोशल मीडिया पर सुविचार हैं संदेश हैं टेक्नोलॉजी है जानकारियां हैं बड़े बड़े विचारकों के संवाद हैं लेकिन उसी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के दिमागी कचड़े भी उन्होंने अपने कचड़े उस पर भर रखे उस कचड़े से संस्कारों पर कुप्रभाव पड़ रहा हमें एक बात समझनी होगी इस चैनल पर हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहिए इंस्टाग्राम कहां से हैंडल हो रहा अमेरिका से FB कहां से हैंडल हो रही अमेरिका से यूट्यूब कहां से हैंडल हो रहा अमेरिका से एक्स कहां से हैंडल हो रहा अमेरिका से तो इस देश का एल्गोरिदम किसके हाथ में अमेरिका के हाथ में हमें यह बात समझने से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए कि वो अमेरिका जो भारत पर लगातार दबाव बनाना चाहता है व्यापारिक दबाव मानसिक आर्थिक और लगातार जो है टैक्स भरने के लिए मजबूर करना चाह रहा तो कहीं हो ना कि हम विदेशी हाथों की कठपुतली ना बन जाए
2: क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो जेंजी आंदोलन में हमने युवाओं की भाषा देखी वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर भी अटैक कर रहे हैं
1: कुछ बच्चे
2: नो अमेरिका या विदेशी शक्तियां विदेशी के माध्यम से
1: जी
2: क्या वो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति पर अटैक कर रहे हैं उस पर
1: पूर्ण रूप से इस बात से सहमत निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा हो रहा जिससे विदेशी ताकतें भारत की कुछ ऐसी परंपरा को मानने वाले ऐसी समाज को आगे करके प्रेरित करके हमारे देश में ही दंगा फैलाना चाहे कुछ लोग भारत में बांग्लादेश जैसे हालात करवाना चाहते कुछ लोग भारत में पाकिस्तान जैसे हालात कराना चाहे हम चाहते हैं कि आंदोलन हो पर आंदोलन देश विरोधी ना हो आंदोलन हो आंदोलन तिरंगा विरोधी ना हो आंदोलन किसी मां बहन की गाली से ना हो आंदोलन होना बुरा नहीं हम अपनी बात रख रहे हैं पर हमने आपको गाली थोड़ी बकी
2: जी कॉकरोचेस को लेकर आपका क्या थॉट है क्या विचार
1: पार्टी और राजनेताओं पे हम बयान नहीं देते
3: बाबा जी आपने क्योंकि टैक्स का जिक्र किया मैं छोटा सा एक सवाल बीच में आप टैक्स पे करते हैं आप टैक्स पेयर हैं
1: हाँ हम तो हैं आरटीआई लगाओ
3: नहीं नहीं लेकिन देखिए
1: ना बुरा ना मानना हम ऐसे ही बोलते हैं जी
0: ये कॉकरोच
1: जी
0: आप वो अभी पूरी तरह से पॉलिटिकल है नहीं
2: मैं पूरा पॉलिटिकल नहीं क्योंकि कॉकरोच एक टर्म जो कि न्यायाधीश के मुख से निकला उसके बाद सब लोगों ने कहा कि हम कॉकरोच है एक पॉलिटिकल पार्टी ने
1: जी जी
2: तो सब लोगों का अपने आप को कॉकरोच कहकर सड़कों पर आ जाना
1: ये ट्रेंडिंग का एजेंडा है
2: अच्छा एजेंडे के तहत
1: चीजें आती रहती हैं स्थायी नहीं रहती अनेक नए नाम आते हैं जाते हैं हम इतना कहना चाहेंगे देखो हम पार्टियों पर बयान नहीं देते सबकी अपनी अपनी भावना किसी ने कॉकरोच पार्टी बनाई किसी को यदि दिल मन लगे तो वो डायनासोर पार्टी बना ली और किसी को दिक्कत हो तो हिट बना ली किसी को और दिक्कत हो मॉर्टिन पार्टी बना ली
2: सोशल मीडिया पर तो
1: हमें नहीं लगता कि इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी संविधान की आजादी स्वतंत्रता है तो अपनी अपनी बात रख सकते अलग अलग नामों से अपने आप को संबोधित करा सकते अब हम कैसे कहते हैं मेरे पागलो कई लोगों को भला भी लगता कई लोगों को बुरा भी लगता अपनी अपनी अभिव्यक्ति किया पर हम पार्टियों पर बहुत बयान नहीं देते
0: ये बहुत सारे वीडियोस उसके बाद से वायरल होने लगे हैं जब जेंजी का जो आंदोलन हुआ है और मैं जेंजी हूं करके बहुत सारे लोग धमकियां देते हैं लद्दाख का वो वीडियो जिसमें सेना का काफिला निकलना है जो कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है
1: जी।
0: उसमें एक लड़की खड़ी होती है और
1: अभी हमने कुछ देर पहले वो न्यूज देखी वो सही नहीं आप देश से हमारे यहाँ देश सेना के प्रति नफरत रखने वाला व्यक्ति देशद्रोही कहलाता है हम लोग हमारे देश के जवान वेतन के लिए देश की आर्मी को ज्वाइन नहीं करते वतन के लिए ज्वाइन करते वतन के लिए ज्वाइन करते पैसों के लिए थोड़ी करते पैसे तो यहां ज्यादा मिल सकते दिल्ली में मुंबई में न्यूज में कथा में अन्य रस्तों से पैसे वो वेतन के लिए नौकरी ज्वाइन नहीं करते वतन के लिए नौकरी ज्वाइन करते और आप उनको ऐसी अभद्रता से बातें करेंगे वो देशद्रोही है जो सेना को अभद्रता से बातें करें तिरंगा पर अभद्रता से बातें करें देश के सम्मानीय व्यक्ति कोई भी हो हम अभद्रता चुने ही क्यों एक बात हम इस टेबल पे कहना चाह रहे बुरा ना मानना, और मानो भी तो हमें कौन सा आपके घर दोबारा आना है, वो आप ही जाएंगे तो आप करोगे क्या?
2: नहीं नहीं, आपको बार बार आना है
1: जी।
3: नहीं, क्या देशद्रोही वो लोग हैं बाबा बागेश्वर जो वंदे मातरम?
0: पहले अपनी बात तो कर ले जिससे पूरा मान सकते हैं।
1: हम इतना कहना चाह रहे, घटते संस्कार बढ़ते अपराध का परिणाम, घटते संस्कार बढ़ते अपराध का कारण है। संस्कार घट रहे हैं, लोग स्मार्ट हो रहे हैं, पर भावना ही
2: ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। ये तो वाकई संस्कार जब घटेंगे तो
1: अपराध बढ़ेंगे, स्वाभाविक।
0: क्यों घट रहे हैं? पर
1: अपराध घटने के पीछे चार पांच कारणों में से दो मुख्य कारण। पहला कारण है हमारी शिक्षा नीति, मैकाले की पद्धति, इस देश की शिक्षा नीति, क्योंकि हमारे देश की ताकत युवा। देश को आजाद किसने कराया? युवाओं ने, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बूढ़े थोड़ी गए इन लोगों ने, बहुत अद्भुत सब थे उसमें, पर मुख्य रूप से युवाओं की भूमिका। देश की रक्षा 28% लगभग जिम्मेदारी, देश की सिक्योरिटी में किसकी? यूथ की। सेना में 28% लगभग यूथ ही रहता है, तो इस जिम्मेदारी, देश की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास? युवा के पास। और देश का फ्यूचर कौन है? युवा। पर हम यदि शिक्षा नीति मैकाले पद्धति को हटाकर गुरुकुलम पद्धति करें, अकबर महान है ये ना पढ़ाकर रघुबर महान है ये पढ़ाया जाए।
0: शिक्षा नीति में मकौले मुक्त उसको करना है या पहले शिक्षा को पेपर लीक मुक्त करना है?
1: दोनों ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक है, दिन और रात दोनों आवश्यक है। तो हमें लगता है कि सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है और शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है।
3: क्योंकि आपने देशद्रोही होने का जिक्र किया, कौन लोग देशद्रोही, जो राष्ट्र गीत गाने से इनकार कर रहे हैं, वंदे मातरम खास तौर पे कह रहे हैं कि दो ही स्टैंजा होने चाहिए, उतने ही बजे या उतने ही गाएं, वो लोग कौन है?
1: बहन, हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं बांट सकते कि देशद्रोही कौन है। अपने मत की बात कह सकते हैं। इस देश में हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया, संसद सर्वोपरि है, इस देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया ने उस वंदे मातरम के बिल को पास किया। प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य हो गया कि उस कानून का पालन करें और उसका सम्मान रखें, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, व्यक्ति हो, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, जवान हो, किसान हो, सबकी जिम्मेवारी हो गई। हमारी भर जिम्मेवारी नहीं, सबकी हो गई। तो उसमें यदि कोई वंदे मातरम का फिर भी विरोध कर रहा कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसका मतलब वो संविधान विरोधी है। देशद्रोही तो नहीं कह सकते, पर संविधान विरोधी है ये तय। आप जब संविधान का नारा देते, संविधान की बात मानते, तो संविधान कहता है कि यदि कोई संसद में बिल पारित हो जाए तो वो लागू
2: कार्रवाई होनी चाहिए।
4: वंदे मातरम का क्योंकि जिक्र हो रहा है तो लगातार बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो देश से बढ़कर पार्टी को मानती है, आपकी क्या इस पर राय है, क्या लगता है?
1: हम राजनीति और पार्टियों पे बोलते नहीं है, पर एक लाइन में जवाब देना चाह रहे हैं। पार्टियों को नहीं, देश के लोगों को, जो हमें सुनते हैं। देखो, हमारी बातों से कई लोगों के लगेगा बाबा ये है, बाबा वो है, पार्टी समर्थक विरोधी, हाँ बाबा एक पार्टी का दो पर, बल्कि सूर्य चंद्रमा सबका है।
3: आप पर आरोप भी लगे थे बाबा कि आप किसी पार्टी द्वारा प्रायोजित हैं, आरोप तो आपने कैसे हैंडल करते हैं इतना क्रिटिसिज्म?
1: हम कुछ नहीं करते हैं, आरोप को हम इस दृष्टि से देखते हैं कि आरोप इस देश में सब पर लगाना सरल। अब आप पे भी आरोप है कि आपकी सीट को आपने चुरा लिया।
0: उनके सवाल का जवाब रह गया, आप एक लाइन में जवाब देने वाले हैं।
3: जवाब दीजिए।
2: नहीं, मेरी सीट छोड़ो यार।
3: सीट छोड़ देंगे।
1: जी, आपका प्रश्न क्या था?
4: मेरा प्रश्न यही था कि कांग्रेस को कहा जा रहा है कि देश से बढ़कर उनके लिए पार्टी है।
1: हम ये इस पे तो जवाब नहीं देंगे, इस पे जवाब हम देना चाह रहे हैं पूरे पार्टियों के दलों को। वर्तमान में दल कम दलदल ज्यादा हो गया। ये बात कह के आपको थोड़ा सा आश्चर्यचकित होगा, हमारा मंतव्य ये है इस बात के कहने का कि दलदल का अर्थ ये है कि आप दल के हितकारी कार्यों को करते रहो, कहते रहो, अपनी बात रखते रहो, लेकिन देश नेशन फर्स्ट, राष्ट्र फर्स्ट, उसके खिलाफ बिल्कुल मत जाओ। दूसरी बात, संसद में लड़ो, पर जब देश की बात आए तो एकजुट हो जाओ, अपनी पार्टी के भले के चक्कर में देश का नुकसान ना करो, चाहे वो कोई भी पार्टी।
0: आप पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आप जातियों का बंटवारा खत्म करके कहते हैं कि हिंदू एक हो रहो,
1: हाँ।
0: और आप इसके लिए आप पदयात्रा भी कर चुके हैं सब।
1: अब अभी हम रथ यात्रा भी करने वाले,
0: इसी के लिए कहां से जुड़ रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए ना वहां पर यूपी में इलेक्शन है, वहां पर हर एक अभी अभी अभी का जो एजेंडा चल रहा है उसमें सब ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण की बीजेपी से नाराज हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे कि बीएसपी के साथ जाएंगे, ये सब चल रहा है। तो आप जो करते हैं वो क्या पॉलिटिकल पार्टियां उस पर पानी डाल देती हैं?
1: उनके ही, ये हमें लगता है कि उनके ही गड्ढे खोदे हुए गए हैं, उसको भरने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस देश में जातिवाद और क्षेत्रवाद ना हो, राष्ट्रवाद हो। कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म हम चाहें।
0: पर हिंदू राष्ट्र,
1: हिंदू राष्ट्र का अर्थ मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है सबके साथ। अगर हिंदू, हाँ मुसलमान मुक्त होता तो फिर आपकी तरफ ही सबकी नजर जा रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब मुसलमान मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ईसाई मुक्त नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि वैचारक, हमें कागजों में हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम विचारों को परिवर्तन करना चाहते, और हिंदू कोई एक धर्म नहीं, जीवन शैली है। हिंदू का मतलब वसुदेव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं अहिंसा, हिंदू का मतलब व्यापार बाद में परिवार पहले, ये हिंदू राष्ट्र। और हमें नहीं लगता कि ये गलत है, ये तो सबकी मांग होनी चाहिए, इस देश के प्रत्येक नागरिक की मांग होनी चाहिए।
5: लेकिन आप एकजुट होने की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन उसी समय में एक जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था भी है हमारे देश में, उस पर आपकी क्या राय है?
1: उस पर क्या कह सकते हैं कि संविधान है, लॉ है और वो चल रहा है, तो संविधान और
5: उचित अनुचित आप क्या समझते हैं?
1: अनुचित तो ऐसा कुछ खास नहीं, बस इतना कह सकते हैं कि वास्तविक जो परेशान है उनको तो आरक्षण मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए।
3: जातिगत जनगणना होनी चाहिए आपके हिसाब से?
1: नहीं, नहीं जातिगत जनगणना क्यों होनी चाहिए, अमीर और गरीबों की जनगणना होनी चाहिए।
3: ये कभी मुखर तौर पर आपने अपनी किसी सभा में या
1: कई बार हमने बोला है, पर हमारी बात को समझा नहीं देश ने, और 10 साल बाद देश समझेगा ये तय है। हमारी एक ही चूक है कि हम टाइम के पहले बोल रहे हैं।
3: बाबा जी अपने राखी से पहले ही बहुत सारी राखियां पहनी
1: हैं, हमारी बहुत बहनें हैं,
3: बहुत सारी बहनें जहां जहां जा रहे हैं वहां पहले ही आपका रक्षाबंधन लग रहा है, मन चुका है।
1: अगर इंटरव्यू हो जाए तो आपकी श्रद्धा जगह तो आप
2: बहने
3: लेके आए नहीं, हम बांध देते
2: हैं। बहने तो आपकी बहुत हैं
1: जी,
2: गर्लफ्रेंड
1: ये तो राम राम राम राम। आपको लगता है कि हमारे जैसे आदमी ये सब झंझट पा रहे
2: हैं? शादी करेंगे कि नहीं बाबा?
1: हाँ घरवाली लाएंगे,
2: तो गर्लफ्रेंड से तो शादी करते हैं।
1: ना ना भैया, हमारे यहाँ संस्कारों में पद्धति है, माता पिता हैं हमारे यहाँ पर,
2: आज का आप जेंजी हैं ये तय हो गया
3: एक साल से,
1: और हर जेंजी से बड़े
2: हर जेंजी ये कहता है कि भाई पहले हम जानेंगे समझेंगे अपने जीवन साथी को, उसके बाद विवाह बंधन
1: समझना गर्लफ्रेंड बनाना नहीं होता है। जानना समझने का मतलब ये थोड़ी कि कोई आपको हाथ पकड़ा है तो आप पूरा हाथ ही दबा दो। जानना समझना किसी के बारे में, विचारों के बारे में।
2: शादी तो करेंगे ना?
1: शादी आपको क्या लगता है हम रड़ुआ मरे?
2: कब कब कर कब कर रहे
0: वो तो कहते हैं कि रिश्ते उनके घर आते रहते हैं,
1: बहुत जल्दी होगा। अभी हम फर्स्ट में, अभी प्रारंभ में जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उन पे हम बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करना है 2027 के दिसंबर में, फर्स्ट फेज में उसको चालू हमें करना है 2027 में, और हर वर्ष बेटियों का विवाह है वो संकल्प। अभी हमने एक नया प्रकल्प चालू किया धाम पर, वैदिक गुरुकुलम, 80 बच्चे मजदूरों के जिनके माता पिता मजदूर हैं उनके बच्चों का रहना खाना पुस्तक पढ़ाई लिखाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट वो चालू किया। तो उसमें केवल हम संस्कृत नहीं सिखाते, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हॉर्स राइडिंग, तीरंदाजी, सिंगिंग, पूरा वैदिक और सबसे हाईटेक गुरुकुलम। हम सबसे तो नहीं कह सकते, हाँ ठीक ठाक।
0: कोई ओलंपिक मेडल भी आएगा आपके?
1: अगर ये सफल होंगे तो निश्चित भगवान ने चाहा।
0: अच्छा महाराज जी, क्योंकि अभी जेंजी का वापस उसने जिक्र किया, एक सवाल रह गया था। कंगना रनौत ने उस समय गटर जेनरेशन कह दिया
1: जी,
0: स्वामी रामदेव ने इस पर अपनी टिप्पणी दी, आपकी क्या निजी राय है?
1: राजनेता
0: नहीं, राजनेता क्या, वो तो एक्ट्रेस है।
1: हाँ वो लेकिन सांसद है।
0: अच्छा ठीक है, अभी सांसद है लेकिन सांसद से ज्यादा समय तक एक्ट्रेस रही।
1: नहीं नहीं, अभी राजनीति,
0: स्वामी रामदेव पे बोलेंगे?
1: स्वामी जी तो हमारे आदर्श हैं
3: महाराज जी।
1: तो आप महात्माओं को लड़वाना चाहते हैं?
5: आपके आदर्श मतलब क्या, आप उनकी तरह आप भी मतलब वो हर क्षेत्र में आप जो है चले गए, बहुत बड़े व्यापारी भी, अच्छे व्यापारी भी बन गए हैं, देश को बहुत मतलब रोजगार भी दे रहे हैं, तो क्या आप भी उस दिशा
1: में? क्या चाहते हैं, महात्मा सिर्फ मांगते ही रहे, देने वाले दाता ना बने। देखो इस देश में हमारी आज से लेकर के अब तक के जितने भी प्रवचन के इंटरव्यूज या हमारे इंटरव्यू या कथा प्रवचन है सोशल मीडिया या मीडिया या यूट्यूब आदि पर प्रसारित, हमारी लाइव कथा प्रसारित टेलीकास्ट है, उन सबको आप सुनेंगे, हमने कभी माया छोड़ने के प्रवचन नहीं सुनाए, और हम माया छोड़ने के पक्ष में नहीं। आज 100 रुपया है डॉलर, 100 रुपया है, कल 200 हो जाएगा, आप सबको बाबा बना दोगे तो देश का हाल क्या होगा। हम देश का विकास चाहते, अर्थ से परमार्थ की यात्रा चाहते, अर्थ कमाओ पर परमार्थ में भी लगाओ। हम चाहते हैं दीनहीनों की भी मदद करो, धन कमाना बुरा नहीं है पर किसी का दिल दुखा करके कमाना, झूठ छल कपट पाखंड अंधविश्वास फैला कर कमाना महा बुरा है। तो हम चाहते हैं हर व्यक्ति बिजनेसमैन बने, हर व्यक्ति व्यापारी बने, हर व्यक्ति अर्थ कमाने के स्रोत निकाले, नया आविष्कार करे, नई नई चीजों का आविष्कार करके समाज के सामने प्रस्तुत करे, हर क्षेत्र में वो सर्वगुण संपन्न हो। और बिल्कुल होना चाहिए, हमें स्वामी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती कि सब में होना चाहिए, कोई बुराई नहीं। हाँ, धर्म का धंधा नहीं होनी चाहिए, धंधे का धर्म तो होता है,
0: धर्म का धंधा हो रहा है। अगर हम चंदे
1: कुछ लोग
0: की बात
1: कर भी रहे,
0: चढ़ावा मामले की बात करें अयोध्या,
1: वो तो बहुत, एक हनुमान भक्त होने के नाते, राम भक्त होने के नाते हम इतना कह सकते हैं कि रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था, उसकी लंका लग गई थी। SIT देश के कानून पर हमें भरोसा है, निश्चित है, दंड जिन्होंने अपराध किया उन्हें दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, भगवान भी उनको छोड़ेगा।
2: वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे,
1: नहीं वो तो जांच में बाहर आए,
2: वो कौन लोग हैं और धर्म का धंधा कैसे करते हैं, धर्म का धंधा क्या होता है?
1: धर्म का धंधा ये होता है कि हम भगवान के नाम पर, झूठ छल कपट के नाम पर, दिखावा भय दिखा करके, धर्म का चोला ओढ़ करके अपने पेट भरना, ये धर्म का धंधा है। आप कहेंगे आप तो नहीं ऐसा करते, हम कथा करते दक्षिणा मिलती है, हम प्रवचन करते दक्षिणा मिलती है, लेकिन हम मकान नहीं बनाते, अस्पताल बनाते, बेटियों के विवाह कराते हैं, हर दिन 10 से 15 हजार लोगों को निःशुल्क भंडारा कराते हैं। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र, वहाँ 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने विचार किया हमारे क्षेत्र में अस्पतालों में मंदिर अब तक बहुत हैं, हम मंदिर में अस्पताल देखना चाहते हैं।
3: महाराज जी, जब आपको
1: इसके विपरीत जो है वो धर्म का धंधा है।
3: जब आपको चंदा चोरी के बारे में पता चला, कितना आश्चर्य या कितना दुख आपको हुआ कि भगवान के दर पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और जो लोग उसमें थे वो काफी हद तक मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए थे, और उनको मतलब चिन्हित कर पाना भी काफी देर बाद संभव हो सका, तो ये कितना आपको मानसिक रूप से पीड़ा हुई?
1: प्रत्येक राम भक्त को जो पीड़ा हुई वही पीड़ा हमको, भगवान के सहारे जीने वाले हम लोग हैं, भगवान पर निष्ठा रखने वाले लोग हैं, हनुमान जी की सेवा टूटी फूटी जो बन जाती वो करते हैं, और कई लोगों ने अपने माताओं के गहने बेचकर, पत्नी के गहने बेचकर सामग्री को अर्पित किया, चरणों में समर्पित किया राम जी के चरणों में। जब ये घटना हुई तो ये बड़ी हृदय विदारक घटना थी, और सबसे विचित्र बात ये थी कि इस घटना के बाद भी कई लोग चुप रहे, तो दुख बहुत लगा, और हमने उस पर बयान भी दिया, अपनी बात रख सकते हैं वो रखें, अब हम देश का कानून तो है नहीं, पर सरकार ने, कानून ने बहुत अच्छा कार्य किया, वो नाम बाप बाहर आए, SIT की जाँच गठित हुई, SIT ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके जो जिन्होंने किया उन्होंने तो दंड मिलाई, जिन्होंने नहीं भी किया उन्हें भी अपराध बोध लगा,
3: बड़े लोगों को बचाया गया।
1: उस पूर्ण रूप से सही कह पाना सही नहीं हो सकता, पर कुछ हो भी सकता, ये भी कह,
3: इससे कैसे बचा जा सकता था, ये कुछ होता ही ना इस तरह की घटना, इसके लिए आप क्या
1: देखिए, इसके लिए सिस्टम के सुधार, हम सिस्टम में एक बात ये याद रखें, अब आप हमको न्यूज का हेड बना दो, हमारी न्यूज चलेगी हिंदू राष्ट्र, हमारी न्यूज चलेगी, अब इसीलिए तो कह रहे हैं आप हमको न्यूज का एड बनाओगे तो हमारी न्यूजों का तरीके ही अलग होगा,
0: मतलब सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट को वो जिम्मेदारी देनी चाहिए,
1: तो सबके अपने अपने रास्ते हैं। अब आप हमको बैठा दो कि अब आप जाओ जरा एडिटिंग देखो, हम एडिटिंग में जो है आपके प्रश्नों को सबसे लास्ट में कर देंगे, आपके प्रश्न को सबसे पहले,
3: शादी वाले प्रश्न।
5: लेकिन बाबा जी, उसमें आरोप ये लगा कि सरकार की भी नाकामी रही है, आपको लगता है कि इसमें सरकार नाकाम रही या फिर प्रबंधन की देरी हुई?
1: सरकार से जो देरी हुई वो चूक थी, जो कार्य आज करना चाहिए वो 10 दिन बाद मत करिए, आज ही कर दीजिए, क्योंकि गंगा में पानी जब बहुत बह जाता ना तो लौट के थोड़ी आता है, तो
0: ओवर कॉन्फिडेंस था कि कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, ये आरोप ही गलत लग रहा है,
1: ऐसा लोगों को लग रहा था, शायद सरकार को ये उस वक्त लग रहा था कि ये प्रोपोगंडा है, प्रायोजित है, या फिर सरकार इस विषय से बचना चाहती थी, पर बाद में जगी, पर जगी ये बेहतर है और बेहतर तरीके से जगी, उसके लिए हम वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर रहे हैं।
0: अच्छा, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाली बात आपने कही, तो योगी जी चूंकि एक
1: साधु है
0: इस वजह से वो ज्यादा न्याय की तरफ ध्यान देंगे वहां पर, इस मामले में?
1: उन्होंने दिया भी, हम जो एक न्यूज बीच में देख रहे थे, हम शायद बाहर थे, तो वो जब अयोध्या रामलला दर्शन करने गए तो वो बहुत लोगों को मिले तक नहीं, ऐसी कुछ न्यूज चल रही थी उसमें, उसमें चंपत राय जी को भी वो उस वक्त उन्होंने।
3: तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं?
1: नहीं ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज
3: पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी
1: यूट्यूब पर चलाते हैं,
3: आप चलाते हैं और फिर
1: जी उसमें आपको क्या लगता है
3: कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं?
1: एक्स हैंडल करते हैं,
3: एक्स हैंडल,
1: और इंस्टाग्राम करते हैं,
3: इंस्टाग्राम
0: खुद से करते हैं। आपका भी समय जाता है ऐसे रील
1: मिनट तो जाता है,
3: 30 मिनट 40 मिनट
1: न्यूज पूरी पढ़ने में, आज कहां क्या क्या किसने क्या क्या बयान दिया, कहां पर क्या चल रहा, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता है कि जैसे ही उतरो तुरंत माइक बताइए बाबा ये क्या, अब हमें वो माइक लगाने वाले आप ही लोग होते हो। अबे कह ले बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था, बोल नहीं पाए
2: बाबा। मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो मंत्र मुग्ध हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको देखता रहूंगा।
1: जी जी आप बहुत सज्जन,
2: आप बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं
1: जी,
2: लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, कोई शानदार आपने कुर्ता पहना है, कौन डिजाइन करता है?
1: हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं।
2: अच्छा,
1: लोगों की इच्छा है, हमारी प्रतिभावना जो जुड़े हैं।
2: ये भी कुर्ता किसी ने दिया है?
1: कितने
2: खुश हो रहे
1: हमारे खुद के कहा, उनका हृदय बड़ा आह्लादित होता कि गुरु जी ने पहन लिया।
2: तो आपका
1: तो चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एकाध श्रद्धा दिखाओ। आपको आपके आपको भी मन में ये आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता कोई महात्मा पहने,
0: वो तो कोट देंगे,
1: कोट ना दें, कोट कहा करें।
2: अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको,
1: बाहर में गया हम ले भी लेंगे, और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कैमरे पे, हम बोल कि अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े बड़े नहीं हो हमने देखे,
2: तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप?
1: नहीं नहीं, आप टी शर्ट दो हम पहन लेंगे,
2: टी शर्ट पहनेंगे।
1: अरे उसमें कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ वो ना पहनेंगे,
2: टी शर्ट के साथ जींस भी देंगे
1: ना, ना हम वो ना पहनेंगे पहले
5: ही। क्यों पहने? अच्छा तो है जींस पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कुछ?
1: अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए। सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में, डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है, उससे इंस्पायर होते हैं लोग कि हम स्पिरिचुअल हैं भैया, आप क्या चाहते हो।
3: महाराज जी, हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक, रास्ते में अवरोध होता है, पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हमने देखा कई, आपने भी देखे होंगे वीडियोस वायरल हुए जिसमें गंदगी फैलाई गई हरिद्वार के तटों पर, जहां पर बहुत टनों वेस्ट छोड़ा गया जो गंदे कपड़े थे, कैसे इस पर अंकुश और लगाम लगे कि हम आस्था को भी चोट ना पहुंचाएं? कांवड़
1: यात्रा बंद करवाने की बात
3: नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उस
1: ठीक
3: पर,
1: करने
3: उसको
1: की
3: उसको कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो जाए।
1: सजगता और सद्बुद्धि है, उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंके, कचरे को कूड़ेदान में ही डालें, और धर्म आस्था को सिर्फ इंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं, तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है, तो सब में सब प्रकार के होते हैं, पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में गंगा के किनारे रास्ते पर सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे।
0: अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं, ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए।
4: महाराज जी जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं ठीक है कुछ, लेकिन जेंजी कुछ युवा हैं जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था, और वो कह रही है हम जेंजी है, हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत दें? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी बात।
1: विवाद हर रास्ते हर हल, हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं, संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने। चार दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़े तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करना चाहिए।
0: अच्छा, एक और समस्या का समाधान हो गया है, वो है नक्सलवाद।
1: जी,
0: नक्सल मुक्त
1: तो
0: भारत
1: मुक्त तो हो गया भारत।
0: नहीं, पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दिमागी नक्सल से रहना है सावधान। उसके बाद एक कतार लग गई है नेताओं की जो कह रहे हैं कि हम भी हैं दिमागी नक्सल। क्या होता है दिमागी नक्सल?
1: हमको तो इस बारे में पता नहीं, प्रधानमंत्री जी ही इसका विश्लेषण और व्याख्या कर पाएंगे। इतना हम कह सकते हैं कि दो प्रकार की परिस्थितियों से चीजें होती हैं, एक वाहिक परिस्थिति, एक आंतरिक परिस्थिति। तो बाहर जो समस्या होती है कई बार बाहर की ठीक हो जाती है, अंदर की ठीक नहीं होती है। तो अंदर की समस्या ही बाहर प्रकट होती है, तो अंदर की समस्या को ठीक भी किया जाना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति हमारे पास आया, वो कहता है कि हमारे पेट में छिपकली चल रही, ये संभव नहीं। अब वो चल रही है, अब वो चिल्लाता है, रोता है, ये गई ये गई ये गई, तो बड़ा परेशान, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई। अब उसको समझाया जा रहा है भाई ऐसा संभव नहीं है, लॉजिक ही नहीं है कि छिपकली। तो पूछा कैसे, क्या हुआ? बोले हम सो रहे थे, मुंह खुला था, छिपकली घुस गई। ये कोई लॉजिक है भाई? लेकिन वो कह रहा है, अब कह रहा है, तो फिर उसको ठीक कैसे किया जाए? तो उसको फिर एक इंजेक्शन लगाया गया, झूठ मूठ का, पानी का।
0: अच्छा।
1: उसको बोतल चढ़ाई गई ग्लूकोज की, फिर एक मरी हुई छिपकली खुजवाई गई, फिर एक सनसी लाई गई, फिर उसके मुंह में वो जो है डाल रखी गई, और फिर निकाल, उस दिन से वो ठीक है।
0: छिपकली कहां से लाते हैं आइडिया?
1: और हमने उससे जो है 5,000 रुपया भी ले लिया, वो संतुष्ट भी हो गया। बाद में बता भी दिया
2: कि ऐसा से क्या
1: सब प्रोपोगंडा था।
3: किसी डॉक्टर को बता दीजिएगा ये कि अच्छा, पानी का इंजेक्शन
0: आजकल आप
3: लगे और 5,000
0: आजकल आप पर्ची निकालना छोड़ दिए हैं।
1: ना ना चला रहे हैं, बस धाम पर है अभी।
0: अच्छा, कथाओं में होता, बाकी जगह नहीं करता।
1: कथाओं में भी होता सब जगह, लेकिन व्यस्तता अन्य जगह ज्यादा बढ़ गई, कथाएं ज्यादा, विदेश यात्रा ज्यादा।
0: हाँ।
1: और पदयात्रा की तैयारी, कन्या विवाह की तैयारी, गुरुकुलम की तैयारी, कैंसर हॉस्पिटल की। पर्ची तो निकाले, वो तो जब तक जीना है तब तक, भगवान ने जो कृपा दे रखी है उसमें तो लगातार चला। अब आप लोग कम पर्ची दिखा रहे हैं।
0: हाँ।
1: ये कह सकते
3: महाराज जी, आप इतनी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब आप तुलना करते हैं भारत की और विदेश की, असीम और अपार संभावनाएं ऐसी जो भारत में, जिसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जो विदेश में नहीं भी है फिर भी उन लोगों ने उसे डेवलप कर दिया। मसलन दुबई एक रेत था, रेतीला वहां पर मैदान था, फिर भी इतना डेवलप्ड वो जगह बन गई है। ऐसी कौन सी संभावनाएं आपको हिंदुस्तान में भी दिखाई देती हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं?
1: भारत में सब कुछ, बस प्रस्तुतीकरण का खेल है। हमारी प्रस्तुतीकरण प्रेजेंटेशन ठीक नहीं, वो अपने पहाड़, खुदे हुए पहाड़ों को भी टूरिस्ट प्लेस बता रहे हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है। तो हमें लगता है भारत का प्रस्तुतीकरण ठीक होना चाहिए। एक, भारत की शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, भारत की स्वच्छता पर काम होना चाहिए। फर्स्ट, यदि भारत को ठीक करना है तो दो जगह सफाई होनी चाहिए, भारत की सड़कों पर और कोनों में और दिमागों में।
3: दिमाग की पहले फिर मेरे
0: दिमागों की सफाई कथा के साथ होगी।
1: नहीं,
0: बाकी सफाई सरकार को करनी है।
1: नहीं, वो दिमागी सफाई कथा से तो हम सिर्फ विचार दे सकते हैं।
0: हाँ।
1: स्वीकार तो आप करेंगे, स्वीकार तो लोग करेंगे, हम तो कह सकते हैं, मानना ना मानना अभिव्यक्ति की आजादी। इतना कह सकते हैं कि आप बेहतर जीना चाहते तो हमारे पास वही विचार हैं, और विचार सद्विचार बुरे विचारों को ठीक करते, पर कोई स्वीकार करे तब ना।
5: नई पीढ़ी आपको कितना सुनती है, मतलब आप भी कभी मतलब कुछ
1: ये डाटा तो आप ही ला सकते हैं। हमें कितना सुनती है, हमारे बारे में कह पाना बहुत मुश्किल होगा। हम नहीं कह सकते हम कितने अच्छे आदमी, हम आपके बारे में कह सकते।
0: ऐसा होता है कि अलग अलग पीढ़ी के लिए अलग भाषा आपको इस्तेमाल करनी है कि भाई, क्योंकि आजकल पीढ़ियों में ऐसा बांट दिया कि हर व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मैं कौन सी पीढ़ी, सबने पता किया एक एक करके कि भाई हम कौन सी।
1: आप कौन है?
2: जेन ज़ी।
0: जेन ज़ी।
6: आप यदि जेंजी हैं तो अल्फा बीटा
2: नहीं नहीं श्वेता और हम जेंजी हैं मैं बता दूं
6: आप यदि अपने
0: हम लोग 25 से एक साल ऊपर कभी नहीं होगा
2: कभी नहीं कभी नहीं
6: तो फिर हमको अल्फा बीटा ही घोषित करना पड़ेगा अपने आप को
0: उम्र तो दिमाग में होती है ना
6: अल्फा बीटा के बाद कौन सी आई
0: बीटा के बाद अभी तो बीटा चल रही है
6: अल्फा ज्यादा चल रहा
3: है ज्यादा भी अच्छा, बीटा के
0: बीटा पैदा हुआ है
3: हाँ। पैदा हुआ है
5: हाँ। उसके बाद अच्छा बीटा है
4: उसके बाद अभी टर्म
3: गामा गामा
4: गामा
3: डेल्टा थीटा ऐसे ही होता है ना
6: शायद गणित की ज्यामिति के सूत्र
3: महाराज जी आप एक आम जीवन से इस जीवन में कैसे परिवर्तित हुए कौन सी वो आदतें थी आपके अंदर जो आपने बदलाव किया और आप बाबा बागेश्वर बन गए
6: हम बचपन से ही उल्टे थे
3: उल्टे थे क्या उल्टे काम किए आपने
6: हमने कोई ऐसे उल्टे काम नहीं किए बहन बचपन से ही हमको किसी ने बाबा बनाया हम बने बनाए ही थे हमारा परिवार पूरा सामाजिक के साथ साथ धार्मिक में खूब सरोवर था हमारे ग्रैंडफादर हनुमान जी के परम भक्त उन पर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा थी और एनलाइटमेंट था उनको एनलाइटेड थे वो उनके चरणों में रहे हनुमान जी की सेवा बचपन से ही हमारे पिताजी माताजी हमारे दादाजी दादाजी के भी पिताजी परदादा तो हम जहाँ जिस गांव में हमारा जन्म हुआ वहाँ बालाजी का जो मंदिर है वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते ही आ रहे हैं तो वंशानुगत पूजा कर रहे हैं तो दादाजी वहाँ रहते थे तो दादाजी की हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई एक वहाँ का पीठपति या पीठाधीश्वर होता है तो दादाजी ने हम पर कृपा की गुरु ने हम पर दृष्टि डाली तो हम बचपन से ही धार्मिक धर्म के प्रति लगाव था ही परिवार का माहौल ही ऐसा था फिर दादाजी ने कृपा की तो गुरु अद्भुत मिल गए तो फिर जीवन परिवर्तित हो गया तो हम बाबा बने नहीं बने बनाए हुए हैं समानते
0: पर लेकिन आपकी बातों के साथ मतलब भले एक साल से आप कह रहे हैं कि चूक गए लेकिन आपको फिर भी इस नई पीढ़ी के ही का ही आप प्रतिनिधित्व एक तरीके से करते हैं जो सोशल मीडिया से लेकर और एक कथा वाचन तक सबको अपनी बातें अपने विचार सुना रहा है यात्राएं कर रहा है और आगे भविष्य के भारत के लिए एक उम्मीद बनाए हुए है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: बी आर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही गलतिस्तान भी बनता।

0: भारी बारिश मध्य प्रदेश के सतना में कैसा सैलाब लेकर आई है, वो इन तस्वीरों को देखकर ही समझा जा सकता है। प्रचंड वेग के साथ पानी आगे बढ़ रहा है और आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेता जा रहा है। ये तस्वीरें सतना के चित्रकूट धाम की हैं। लगातार हो रही बारिश से मंदाकिनी नदी उफान पर है। पानी घाट पर बने कई मंदिरों के भीतर तक पहुंच गया है। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। घाट डूब गए हैं और बारिश के बीच लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है।
1: पानी बहुत ही स्पीड से आ रहा है और हमको लगता है कि जो पिछली बार का पानी था उसको क्रॉस कर जाएगी। हर एक सेकंड में पानी इतनी स्पीड से बढ़ रहा है कि गंगा नदी जो दिख रही गंगा मंदिर ये पार कर चुकी है और प्रमोदन गेट जो है पीछे वाला उसको छूने वाली है।
0: मंदाकिनी नदी के तेज बहाव के चलते रामघाट, भरत घाट और लंका तिराहा पानी में डूब गए हैं। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि गलियों में नाव चलानी पड़ रही है ताकि लोगों को सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। चित्रकूट में करीब 200 दुकानों और सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुसने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। हालात को देखते हुए घाटों पर SDRF टीम की तैनाती की गई है। नदी के तेज बहाव के बीच लोगों से घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है।
2: आग्रह निवेदन है कि मां मंदाकिनी का जल स्तर निरंतर बढ़ रहा है, जिसमें सभी दुकानदार सभी नागरिकों से भी आग्रह निवेदन है कि आप लोग सेफ्टी जैकेट।
0: जिन इलाकों में पानी ज्यादा भरा हुआ है वहां रस्सियों के सहारे रास्ते को बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह का हादसा न हो।
3: वहाँ पे नाव लगा के और रस्सी लगा के रास्ता बंद कर दिया, आवागमन रोड टोटल बंद कर दिया है और यहाँ पे पुलिस के जवान हमने लगाए और आपका प्रयाग घाट होगा वहाँ पे भी जवान लगे हैं, SDRF की टीम वहाँ लगी है सुरक्षा व्यवस्था देखने। तो आरोग्य धाम है वहाँ पे भी रस्सी लगाकर पुल पे आवागमन बंद कर दिया है और जवान लगे हुए हैं।
0: लोगों को डर है कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा, मानसून का सितम नहीं थमा और नदी का जल स्तर अगर बढ़ता रहा तो मुसीबत कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: जयपुर के जिस स्कूल को लेकर ये सारा हंगामा हुआ, वहां हमारे संवाददाता शरद कुमार जब पहुंचे तो क्या माहौल था जयपुर के रामपुर का, वो स्कूल जहां हंगामा हुआ, आपको ग्राउंड रिपोर्ट की असली हकीकत देखनी चाहिए।
2: राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर कवरपुरा, जयपुर के इस सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इमारत कभी भी धस सकती है।
3: ये देखिए, ये रस्सी लगाकर स्कूल को पैक किया गया, इसलिए ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हम सब स्वच्छ भारत, एक ही सपना, भविष्य हो अपना, ये सब लिखा हुआ है। और ये राजकीय विद्यालय रामपुरा है, ये जो है आप देख रहे हैं, ये रस्सी है यहाँ पर, और इस रस्सी के जरिए यहाँ पर से रोका गया है। ये कि बिल्कुल अंदर से दिखाइए एक बार, ये जर्जर हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करके तबेले में शिफ्ट किया गया। इनका कहना था कि हमने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया था, वो 3 किलोमीटर दूर था। गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में व्यवस्था कीजिए, और उन्होंने ये पोस्टर भी लगा रखा है सीजेपी कार्यकर्ताओं से आने से पहले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जयपुर यहाँ से बगरू में 85 लाख रुपए के ये कामकाज हमने कराए हैं। विधायक बीजेपी ने इस जीर्ण शीर्ण स्कूल पे ऊपर पोस्टर लगा रखा है। ये बहुत सारे महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं, इनके बच्चे तो जाते होंगे स्कूल में। आप लोग यहीं रहते हैं गांव में?
4: गांव में रहे हैं सभी।
3: तो गांव के स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं?
4: देख रहे थे, टूट रही चना, पड़ रही चना।
3: तो इसको तो बननी चाहिए।
4: बहुंडी खोल मिला बाड़ा में,
3: बाड़ा में खोल रखा है।
4: हाँ, कजा अंडा बनावला जितना उंडी पड़ो।
2: जब आज तक की टीम सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत के पास तबेले में चल रहे विद्यालय की रिपोर्ट करने पहुंची, तो वहां जिला शिक्षा अधिकारी आ चुके थे। उनसे आज तक का सीधा सवाल,
3: ये बताइए इस तबेले से मुक्ति कब मिलेगी?
5: ये अजी तबेला नहीं, आप फिर वो आप तबेला तबेला बोले जा रहे हो। ये अपने ये व्यवस्था कर दी कि पास में जो भी कोई सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को पर शिफ्ट कर दे, सुरक्षा के लिए। यानी सबसे पहले सेफ्टी है बच्चे की, बच्चे की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए।
3: लोग तो कह रहे हैं 2.5 साल से कर,
5: कौन कह रहा है?
3: जो इसका मालिक है।
5: मालिक तो कुछ भी कहते हैं, सब 2.5 साल कहाँ होगी, जब जर्जरी आपने 1 साल पहले किया है तो 2.5 साल कैसे हो जाएंगे भाई साहब?
3: तो कब कब इनको बेहतर जगह?
5: बहुत जल्दी हो जाएगा। 1000 करोड़ का प्रस्ताव पूरे राजस्थान का भेजा हुआ है सर सेंट्रल केंद्र में, और जल्दी वो पैसा आने वाला है।
3: चाहिए बताइए, यहाँ गांव वालों को बताया गया है कि 14 अगस्त को 18 लाख रुपए डीएमएफटी फंड से आ गया है, और आप कह रहे हैं भारत सरकार से आएगा।
5: डीएमएफटी अलग फंड होता है, डीएमएफटी तो अपने कलेक्टर के पास होता है। उसमें क्या होता है कि एमएलए को एक अधिकार होता है, विधायक महोदय को, विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्र में काम करवा सकते हैं।
3: तो क्यों नहीं हो रहा है? वो तो हो सकता है
5: जी, पैसा आया थोड़ी है। जैसे आप एमएलए साहब आए, उन्होंने घोषणा कर दी साहब 12 लाख रुपए हम इस चीज को लिए निर्माण के लिए देंगे।
3: कितना दिन लगेगा?
5: अब इसमें 2-4 मिनट लगते ही है।
2: 10 मिनट की बातचीत में डीईओ साहब ने तमाम सियासी और अफसरशाही की पेचीदगियां बता दी, बस तारीख नहीं बता रहे थे। अगला सवाल तारीख पर था,
3: तो डेट पूछ रहा हूँ मैं। तो
5: डेट नहीं होती इसमें। अब जैसे बात सैंक्शन जो पैसा हुआ, अब काम 2-4 महीने तो काम में चालू महीने में लगेंगे, और 2-3 महीने में बनेगा, नींव खुदेगी, नींव खुदने के बाद उसका प्लेंथ लेवल पे आएगा, फिर इसमें छत पड़ेगी, फिर रंग रोगन होगा, अब फिर टाइम तो लगता ही। वैसा
3: जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि हम इन बच्चों को अभी जल्दी शिफ्ट कर देंगे इस यहाँ से। ये जो स्थिति है जहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप दिख रहे हैं कि चारा भी रखा हुआ है, और 2 कमरों में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और 2-4 महीने में स्कूल भी बन जाएगा।
2: रामपुरा कवरपुरा के स्कूल की बदहाली एक तरफ सरकारी व्यवस्था की वानगी पेश कर रही थी, तो इसी रामपुरा से लौटते वक्त आज तक की टीम की नजर पास के गांव खुसर के एक स्कूल पर पड़ी। स्कूल की इमारत चमक रही थी, बच्चे साफ सुथरी पोशाक में थे। आज तक की टीम को पता चला कि ये भी सरकारी स्कूल ही है।
3: राजस्थान में बहुत सारे जर्जर स्कूल आपने देखे होंगे, मगर रामपुरा कवरपुरा जहां पर पूरा विवाद चल रहा है स्कूल को तबेले में चलाए जाने को लेकर, वहां पर एक चमचमाती हुई बिल्डिंग बगल में ही स्कूल की है, जहां पर देखकर हम रुके और पता किए तो पता चला कि ये पूरा स्कूल जो है भामाशाहों के सहयोग से बनाया गया है। घुसते ही आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था दिखाई देगी, और ये पंखे देखिए, लाउडस्पीकर देखिए, बाथरूम देखिए, मंदिर, पेड़ पौधे सब यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि ये कोई सरकारी स्कूल नहीं बल्कि निजी स्कूल है, और ग्रामीण इलाके में ये स्कूल यहाँ पर चल रहा है। तो देख सकते हैं क्लासरूम में, यहाँ पर क्लासरूम में भी अगर आप जाएंगे तो हमने घूमकर देखा किस तरह से यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, कुर्सियाँ टेबल सब यहाँ पर नए दिखाई दे रहे हैं, और सारे के सारे गांव के बच्चे हैं। पढ़ाई कैसी होती है?
6: बहुत अच्छी होती है, हमारे सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हमारे स्कूल का रिजल्ट हम 6 सालों से

0: लगातार 100% रहा है और आगे भी रहेगा।
1: पिछली बार 95% 12th में बच्चे ने अचीव किए हैं और सब्जेक्ट ऐसे हैं कि 100 में से 100 नंबर।
2: ये गांव कौन सा है?
1: खुसर।
2: खुसर?
1: यस सर।
2: देखिए खुसर गांव है, नाम क्या था आपका?
0: अंजलि प्रजापति।
2: अंजलि बता रही थी यहां पर कि 100% रिजल्ट है इस स्कूल का, तो सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है बल्कि पढ़ाई भी काफी यहाँ पर अच्छी हो रही है, तभी इस तरह के रिजल्ट है। जो प्रिंसिपल साहब है उनसे भी हम बातचीत करते हैं, काफी यंग दिखाई दे रहे हैं प्रिंसिपल साहब, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम शंकर चौधरी सर।
2: शंकर जी, ये नई बिल्डिंग कैसे बनी है? राजस्थान में तो हर जगह जर्जर बिल्डिंग बनी हुई है।
3: सर, हमने राज्य सरकार के सहयोग से और हमारे शिक्षा मंत्री जी और विशेषकर हमारे MLA साहब ने हमें बहुत सारा सहयोग प्रदान किया। हमने भामाशाह के सहयोग से इस विद्यालय का निर्माण करवाया।
2: भामाशाह के दान लेकर?
3: यस, लेकिन जहां भी तकनीकी समस्या आती है हर एंगल पर हमारी राज्य सरकार साथ खड़ी थी सर।
2: तो थोड़ा सा ये पहले ये बिल्डिंग कैसी रही होगी?
3: सर पहले आप कल्पना नहीं कर सकते हैं सर, लेकिन कोशिश की हमने, जब से सरकार आई हमने प्रयास किया सर।
2: देखिए ये एक व्यक्ति परिवर्तन ला सकता है यहाँ अगर हमको दिखाई दिया। ठीक रामपुरा कमरपुरा जहाँ पर तवेले में स्कूल चल रहा है जिसका विवाद चल रहा है, और वहाँ पर इसके बगल में ही ये स्कूल है, खुसर गांव है। इनका कहना है कि ये स्कूल ही बहुत बुरी स्थिति में थी, मगर पूरी गर्मी को छुट्टियों में जो यहाँ के प्रिंसिपल थे वो घूम घूम कर जा कर लोगों से बातचीत करके भामाशाहों से पैसे लाकर इस तरह से यहाँ पर स्कूल बनाए हैं। अगर टीचर प्रिंसिपल चाहें तो लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं और इस तरह से शानदार स्कूल बनाया जा सकता है। ये खुसर गांव के स्कूल में आकर दिखाई दे रहा है। शरद कुमार, खुसर, जयपुर, आज तक।
4: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पियो आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक नहीं।
0: गुलटनिया और कलखनिया,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पीओ आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो गलत से कूद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक।
0: गुलटनिया और कलखनिया।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक बीजेपी मुख्यालय में अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ मोदी एट 25 कार्यक्रम पर चर्चा। जेन जी, वंदे मातरम और चुनावों की तैयारियों पर भी मंथन। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें। ड्रोन पर रोक, एबीवीपी ने रखा वंदे मातरम गायन। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज। मायावती बोली, माफी मांगी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष। केशव प्रसाद मौर्य ने भी हमलों की बौछार की। टीम सीजेपी की पिटाई पर छिड़ी एफआईआर की जंग। सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाया मारपीट का केस। विवाद के बाद तबेले से शिफ्ट हुआ स्कूल। और यूपी के कन्नौज में डीजे विवाद पर कांवड़िया पुलिस में झड़प के बाद बैकफुट पर आया प्रशासन। एडीएम ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। मौके पर ही एसएचओ को किया सस्पेंड।

लातूर के जिला परिषद स्कूल में निकले प्राइवेट स्कूल के बच्चे, स्कूल में संख्या बढ़ाकर दिखाने के चक्कर में स्टाफ का अनोखा कारनामा। सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जिला परिषद स्कूल का ऑडिट करते वक्त किया खुलासा, इंग्लिश स्कूल के बच्चों को ऑडिट के डर से स्कूल में लाकर बिठाया गया। लातूर में अभिजीत दीपके के स्कूल ऑडिट पर शिवसेना का हमला, का ऑडिट की जांच करने का किसने दिया हक, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बच्चों को तंग ना करें। जयपुर में सीजेपी की टीम से मारपीट मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर दर्ज कराई एफआईआर। सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के जयपुर हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। पुणे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, शैक्षणिक परिसर में नियमों के उल्लंघन और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने एनएसयूआई की कुछ छात्राओं को कॉलेज के अंदर रोक कर रखा था। यह खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता वहां इकट्ठा होने लगे। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात, फिलहाल हालात नियंत्रण में। रांची में पुतला दहन के दौरान भारी बवाल, अल्बर्टा एक्का चौक पर महिला अभ्यर्थियों के साथ मारपीट, आरोपित को दौड़ाकर पकड़ा। परीक्षाओं में अनियमितता और अदालती फैसले को लेकर विरोध जता रहे छात्रों और सत्ताधारी जेएमएम के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई। दिल्ली में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लोग जंतर मंतर के आसपास जुटे लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहां प्रदर्शन की अनुमति से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में सीमित संख्या के साथ प्रदर्शन की अनुमति थी। प्रदर्शनकारियों ने स्थगित किए जा चुके यूजीसी इक्विटी नियमों को लेकर भी नारे लगाए और सरकार से इस मुद्दे पर बदलाव की मांग की। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला। यूजीसी आरक्षण के खिलाफ जुटे सवर्ण समाज के लोगों को आरएएफ ने हिरासत में लिया। राहुल गांधी के पुणे दौरे से पहले सीओईपी इंजीनियरिंग कॉलेज में हंगामा, एवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़े, दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। योगी सरकार बाबू नेताओं को देगी बुलेट प्रूफ जैकेट, अखिलेश यादव स्वतंत्र देव का नाम शामिल। जापानी मेहमानों का वाराणसी दौरा, जापानी डेलीगेशन आज काशी की संस्कृति आध्यात्मिकता से होंगे रूबरू, गंगा आरती भी देखेंगे। मायावती का अखिलेश यादव पर हमला, का 5400 रुपया बना देना, यह कहना अमर्यादित अशोभनीय, अखिलेश को आरएलडी नेता और जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोली समाजवादी पार्टी की संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहें। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, का अखिलेश को जयंत चौधरी से माफी मांगनी चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर निशाना, बोले बीजेपी के साथ है अगड़ा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी। यूपी के कन्नौज में डीजे विवाद पर कांवड़िया पुलिस में झड़प के बाद बैकफुट पर आया प्रशासन, एडीएम ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, मौके पर एसएचओ सस्पेंड। संभल हिंसा में दुबई में बैठे शारिक साटा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, भारत लाने की कार्रवाई तेज। गोरखपुर में लैंडिंग के दौरान टेल इंपैक्ट के बाद विमान इंडिगो विमान लैंड कराया गया, जांच जारी है। सिलीगुड़ी में अमित शाह ने कहा बीजेपी सरकार पड़ोसी देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए कटिबद्ध, घुसपैठियों के लिए डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट की नीति पूरी तरह स्पष्ट है। मुंबई में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, मैकडॉनल्ड्स समेत 7 प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस निलंबित। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, होटल में जांच के दौरान मिली खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां। होटल के किचन में इस्तेमाल के लिए रखा पनीर मिला खराब, टॉयलेट के एंट्री गेट पर सब्जियां काटी जा रही थी। एफडीए की टीम ने होटल का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया, नियमों के उल्लंघन को लेकर होटल पर जुर्माना पहले भी लगा है। छत्रपति संभाजीनगर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, गायत्री मेवाड़ प्राइवेट लिमिटेड के एफएसएससीआई लाइसेंस निलंबित। अलीगढ़ के मलकान सिंह चिकित्सालय में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा, खाने की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर कैंटीन को सील किया। हापुड़ में मिलावटी मावे पर बड़ी कार्रवाई, एनसीआर में सप्लाई से पहले 700 किलो नकली मावा पकड़ा गया। कर्नाटक में पनीर के नाम पर बिकने वाली नॉन डेयरी पनीर पर 1 साल की रोक, 17 अगस्त से लागू होगा। चंडीगढ़ में मांगे पूरी न होने पर वित्त मंत्री हरपाल चीमा के आवास के बाहर ईटीटी शिक्षकों का प्रदर्शन, नारेबाजी भी की। चंडीगढ़ में अपनी विभिन्न मांगों जैसे वेतन और पद के विवाद और बहाली को लेकर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे।
निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया। युवा वकीलों ने फैसले का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह पहल के तहत आयोजित 3 दिन की स्पेशल लोक अदालत के पहले दिन किया 400 से ज्यादा मामलों का निपटारा। विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना है मकसद। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश। विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर कार्रवाई हुई। अधिकारियों कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर। बिना पुष्टि की गई पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। महाराष्ट्र में अब पुलिस फोर्स के साथ रह सकेंगे रिटायर हो चुके पुलिस डॉग्स। महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी। गृह विभाग उठाएगा खर्चा। बारिश और बादलों के बीच हुई दिल्ली एनसीआर की सुबह। रिमझिम बारिश से गर्मी में राहत। सुबह सुबह बारिश की फुहार से उमस में भी राहत। कई जगह ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम में भी मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार। एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में। दिल्ली एनसीआर सहित देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में भारी बारिश। आंधी की चेतावनी। चौबीस अगस्त तक हिमालय से लेकर मध्य भारत तक फुल स्पीड में रखेगा मानसून। आंधी और तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। सतर्क रहने की अपील। यूपी उत्तराखंड बिहार और पंजाब में मौसम रहेगा कूल कूल। मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चल सकती हवाएं। यूपी में राजधानी लखनऊ में हुई झमाझम बारिश। गर्मी और उमस से लोगों को राहत। यूपी के कई जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट। झांसी जालौन हमीरपुर और महोबा में मानसून दिखाएगा रंग। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर बड़ी सतर्कता। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने जेपी नड्डा से बैठक की। 12 घंटे की बारिश में डूबा रीवा देवदूत बनी एसडीआरएफ की टीम। झमाझम बारिश और उसके बाद रीवा शहर डूबता हुआ दिख रहा है। एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनी है। 1000 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। तमिलनाडु के त्रिवट्टियूर में हादसा। सीवर निर्माण के दौरान रेत में दबकर 37 साल के मजदूर की मौत। करनाल में मंदिरों में चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार। 4 किलो चांदी के मुकुट नकदी बरामद। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग में 10 से ज्यादा अवैध व्यवसायिक ढांचों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। जयपुर में तेज रफ्तार थार का कहर स्कूटी सवार बुजुर्ग को उड़ाया 50 मीटर तक घसीटा। नोएडा में काम करने वाले आईटी इंजीनियर की पीट पीट कर हत्या। ससुराल पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मोदी नगर में दिनदहाड़े महिला के कान से जमकर छीने 2 बदमाश। सीसीटीवी में कैद। लखनऊ में बारिश के बाद जलभराव। पार्क रोड पर एमएलए आवास के बाहर पानी भरा। फरीदकोट में एक छात्र चोर ने महज 1.5 मिनट में उड़ाए 1.5 लाख रुपए। सीसीटीवी में कैद हुआ। हमीरपुर में अपनी बनाई मिठाई खाने से दुकानदार ने इनकार किया। एसडीएम ने उठाकर सारी मिठाई नष्ट करवाई। रामगढ़ में फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में लगी भीषण आग। 3 इंजीनियर की मौत, 1 गंभीर। इटावा डेवलपमेंटर केस में मुख्य आरोपी एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। पत्नी सास की हत्या की। दिल्ली के हॉस्टल में 19 साल की नर्सिंग छात्रा ने आत्महत्या की। जांच जारी है। ओडिशा के बालंगीर में मानव बलि के शक में 40 साल के व्यक्ति की हत्या। 5 लोग गिरफ्तार। रुड़की में भीषण सड़क हादसा। 3 की मौत, 6 घायल। एक के बाद एक 4 मोटरसाइकिल आपस में टकराए। मंडी में स्कूटी सहित अनियंत्रित थार खेत में पलट गई। 8 ट्रेनी डॉक्टर घायल हो गए। छोटा उदयपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली महिला टीचर से नोडल अधिकारी का चार्ज लिया वापस। मामले पर उठे सवाल। नागपुर में तेज रफ्तार कार ने 5 साल की बच्ची को उछला। सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना। आई सामने बेटे के आईफोन दिलाने की जिद पर एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली।
पिता की डांट से नाराज बेटा सुसाइड करने पहाड़ पर चढ़ गया था, उसे बचाने की कोशिश में पिता और वो दोनों नीचे गिर गए, सदमे में मां ने भी छलांग लगा दी। दिल्ली के रायसीना रोड पर चलती कार में अचानक आग लगी, सड़क पर अफरा तफरी। कोडरमा में कस्तूरबा स्कूल की 300 छात्राओं का 8 किलोमीटर पैदल मार्च, खराब खाना प्रताड़ना बदहाल व्यवस्था के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गिर सोमनाथ में 60 फीट गहरे कुएं में मिला 5 साल के नर शेर का शव, टूटी जाली से गिरने की आशंका, जांच जारी। जामताड़ा के पिलर में आसपास बालू उठाव और भारी वाहनों की आवाजाही से नींव कमजोर होने का आरोप। प्रयागराज में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, दरोगा पर आरोप लगाए। कल कोलंबो में खेला जाएगा भारत श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, कई रिकॉर्ड टूटने का इंतजार। दो मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल में 53.33% पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर। इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरे कर सकते हैं टेस्ट में 3000 रन, 7 रन दूर हैं अभी। इसके अलावा टेस्ट में 50 छक्के लगाने से भी अभी 3 छक्के दूर हैं शुभमन गिल। टेस्ट 400 चौके पूरे करने से महज एक कदम दूर रविंद्र जडेजा, अभी उनके नाम 399 चौके हैं। नीरज चोपड़ा ने लॉजेंड डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो में दूसरा स्थान हासिल किया, पहले स्थान पर फिर श्रीलंका के रोमेश पथिरागे। नीरज ने दूसरे प्रयास में पिछले एक साल का सबसे बेहतर थ्रो फेंका, यह उनके सीजन का सबसे अच्छा थ्रो। सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही है फिल्म वेलकम टू जंगल, जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी। अक्षय कुमार, जैकलीन, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी और अर्षद वारसी समेत 30 से ज्यादा सितारों से सजी फिल्म। फिल्म द ग्रेट गैंग सुपर हीरो भी अब ओटीटी पर रिलीज, Zee5 पर हुई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जन नायकन Zee5 पर उपलब्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रिवी रिही शॉपिंग सेंटर पर हुए हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए कड़ी निंदा की, कहा वो जानवर है, बदला लिया जाएगा। ट्रंप ने कहा उन्हें नहीं लगता कि ईरान सही डील करने के लिए तैयार है, वॉशिंगटन इस टकराव में क्या होता है उस पर नजर रख रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी लागू करने की कोशिशों के तहत अमेरिकी सेना ने 68 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला। ईरान की नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान के कंट्रोल का दावा दोहराया। ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की धमकी पर विदेश मंत्री ने कहा ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से दी गई जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी का वही हश्र होगा। अमेरिका और कनाडा में ट्रेड डील पर जारी बातचीत के बीच ट्रंप ने कहा उम्मीद है कि कनाडा अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा। ट्रंप ने कहा अमेरिका में होने वाली ग्रोथ देश के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज को संभाल लेगी, अमेरिका का कुल कर्ज पहली बार $40 trillion के पार। अमेरिका न्याय विभाग और टिकटॉक के बीच $400 million का समझौता, यह समझौता उन आरोपों पर हुआ है जहां पर बच्चों की प्राइवेसी को लेकर की बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र ने अमीर देशों से कोलंबिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए $148 million देने की अपील की है। अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट इलाके में तेज बारिश और हवाओं के साथ तूफान ने दस्तक दी है।

0: नॉनस्टॉप 100 आपने देखा। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। दिल्ली के निहाल विहार से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि घर के अंदर ही ससुराल पक्ष के लोगों ने विनय कुमार गुप्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। मृतक विनय के ससुराल पक्ष के 6 लोग उसके घर पहुंचे और आरोप है कि विनय की मां जब पानी और नाश्ता लेने कमरे से बाहर गई तभी उनके बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंचे और गंभीर हालत में विनय को अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब मामले की खबर मिलते ही निहाल विहार थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ शुरू हो गई है। परिजनों ने घरेलू विवाद को हत्या की वजह बताया। हालांकि पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की तस्वीर स्पष्ट होगी। छोटा सा विवाद, उसके बाद ससुराल पक्ष निहाल के आते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं जिसके बाद जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है।
1: परिवार में कई सारे लोग हैं, हम मौसी बात करते हैं क्योंकि वही लेकर के गई थी। आप जब आप थी घर में?
2: मैं जब वो उसको नीचे लेके आ रहे थे ना तब आई थी। सीढ़ियों में था वो कि कोई उसको ऐसे कंधे में डाले हुए था, फिर उसको लाके इधर बाहर लेटा दिया। उसके बाद वो कह रहा मौसी मेरे को लेटा दो, मौसी मेरे को लेटा दो। फिर उसके मौसा, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों गाड़ी में उसको लेकर गए। रास्ते में वो बहुत झटपट आ रहा था, कह रहा मौसी मेरे को दिख नहीं रहा ऐसे आंखों के आगे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं उसके हाथ मसलने लग गई क्योंकि ठंडे हाथ हो रहे थे उसके। धीरे धीरे वो एकदम शांत हो गया। मेरा बेटा कहा बोल रहा मम्मी बेहोश हो गया भैया शायद। मैंने कहा कोई बात नहीं अभी डॉक्टर के जा रहे हैं ठीक हो जाए। डॉक्टर के पहुंचे तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया, देखते ही मना कर दिया। छोटा सा ना वो इतना हमारा, वही सहारा था हमारा, उसको आप सजा दिलवा दो।
0: दिल्ली के मंगोलपुरी चाकूबाजी की तस्वीरें सामने आई। आपसी रंजिश में गुट ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। चाकूबाजी के बाद आरोपित फरार हो गए। वीडियो में कुछ लोग चाकू डंडे लेकर भागते दिख रहे हैं दिल्ली के मंगोलपुरी में। और देखिए दिल्ली में नई बात नहीं है, दिल्ली में इससे पहले भी चाकूबाजी के कई मामले सामने आए हैं दिल्ली में चाकूबाजी के, जहां पर कई नाबालिग भी चाकूबाजी करते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा उम्र नजर नहीं आ रही, लेकिन यहां पर देखिए चाकूबाजी के आरोपित वारदात को अंजाम देते हैं और उसके बाद फरार हो रहे हैं। यहां पर दिल्ली के मंगोलपुरी में लोगों को डर लगता है ऐसी तंग बस्तियों में निकलने में कि ना जाने कौन कमर में चाकू फंसा के आया। अब ये देखिए वीडियो फुटेज, चाकूबाजी की वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और हाथों में डंडे भी हैं। ये मंगोलपुरी से वीडियो सामने आया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, खुलेआम चाकू चलते हैं। अब एक खबर जो कई तरह के सवाल खड़े करती है। कन्नौज में डीजे को लेकर कांवड़ियों और पुलिस के बीच विवाद हुआ। मामला हाथापाई से लेकर माफी और कोतवाल के इस्तीफे के ऐलान तक पहुंच गया। शुक्रवार देर रात हरदोई के बिलग्राम से कांवड़ियों का जत्था कन्नौज के गौरीशंकर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा था। इसी दौरान शहर के अंदर बहुत तेज आवाज में डीजे ले जाने को लेकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसी बात पर कांवड़िये भड़क गए और पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई। कांवड़ियों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। एसएचओ पहले समझाते रहे लेकिन उसके बाद जब नहीं माना तो फिर एडीएम वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और एसएचओ को सस्पेंड किया।
3: पूरी व्यवस्था को हटा दूंगा और उसके बाद जैसे कोई कैजुअलिटी होगी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस चालू करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ये देखिए सभी को हम सूचित कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। पिछली दिन की जो नीचे अंडरग्राउंड थी वो पाइप डालने के कारण खोल दी गई है, तो इसलिए 11,000 की लाइन ऊपर से जा रही है। जो डीजे की ऊंचाई कम होगी उसको हम परमिट करेंगे, अन्यथा कोई जो अगर किसी की जमानत होती है। अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर। लेकिन मैं, मेरी बात सुनिए और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है
4: कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
5: नहीं, आप सनातनी
6: तो सामने है।
7: भाई साहब हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं,
6: खिलाफ
7: बहुत हो गया 30 साल हम लोग यहाँ कांवर लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है
6: तो उनके खिलाफ।
7: एक मिनट भाई साहब एक मिनट, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपके हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवर लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवर लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवर वापस ले जाए।
8: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है वहाँ का
7: भाई साहब, ऐसे जूतों से स्वागत।
6: लेकिन कुछ लोग, एक दो लोग जिन्होंने
0: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
10: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
11: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
12: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां,
10: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA। अब मैं क्या ही बोलूं।
9: परिवार अटूट भरोसा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: पापा,
6: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: शादी का किचन मैं के जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
3: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: विमल बोलो जुबा केसरी।
4: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए एक महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, तीन छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, तीन चार छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, एक महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके FIR फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है। और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय के ब्रेक लगी हुई है।

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पियो आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद्द से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक नहीं।
0: गुलटनिया और कलखनिया

बीजेपी की नई रणनीति में जेन जी जेन अल्फा पर जोर। सीधा संवाद के देश भर में बनेगी खास टीम। नितिन नवीन की नई टीम की बैठक में वंदे मातरम पर भी प्रस्ताव। दो छंदों पर कांग्रेस की कड़ी निंदा। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज। कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें। ड्रोन पर रोक। एबीवीपी ने रखा वंदे मातरम गायन। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज। मायावती बोली माफी मांगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष केशव मौर्य ने भी हमलों की बौछार की। त्योहारों से पहले चीनी पर तीखी सियासत। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने 40% बड़ी महंगाई और आयात पर सरकार को घेरा। यूपी में योगी ने जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए। और टीम सीजेपी की पिटाई पछड़ी। एफआईआर की जंग। सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। विवाद के बाद तबेले से शिफ्ट हुआ स्कूल।

0: पहले एक बड़ी खबर आपको बताती है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक में वंदे मातरम और जेन जी पर खास चर्चा हुई। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने आज बड़ा सियासी दांव चला है। बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक में वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा को लेकर अहम प्रस्ताव पास किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले का कड़ा विरोध किया जिसमें 19 अगस्त 2026 को 1937 के प्रस्ताव को दोहराते हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो अंतरों के गायन की बात कही गई थी। बीजेपी का यह कहना है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, मां भारती के प्रति समर्पण, स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र और राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक है। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। पीयूष बताइए क्या हुआ आज इस बैठक में?
1: हिमांशु, बहुत बड़ी बैठक जो है वो बीजेपी मुख्यालय पर हुई जिसमें पहले राउंड की मीटिंग खत्म हो गई और अब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पहुंचे, लेकिन पहले राउंड की मीटिंग में बड़ा फैसला वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है, जिसके बारे में जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दी है। उन्होंने कहा कि 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस की कार्यसमिति में
0: हमारे साथ बने रहे। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी यहाँ पर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो नई टीम है और नए पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी, ये भी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नए बीजेपी पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलने जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन शाम के 7 बजे के लगभग बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी, मुलाकात होगी जो नए पदाधिकारी हैं जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई है आने वाले वक्त के मद्देनजर, तो उनसे प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। पीयूष,
1: मातरम को लेकर तो प्रस्ताव पारित किया ही गया है, लेकिन अब यह जानकारी भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री शाम 7 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और वहां पर नए पदाधिकारियों के साथ न सिर्फ मुलाकात करेंगे बल्कि उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाएंगे। ये जानकारी इस वक्त निकल के सामने आ रही है। ये पहली बैठक है हिमांशु सभी पदाधिकारियों की जब नितिन नवीन की टीम का ऐलान हुआ है, जिसमें नए चेहरों के साथ साथ कुछ पुराने चेहरों को भी जगह मिली है, लेकिन अब नया जोश, नया जुनून और नई सोच के साथ जो टीम आगे बढ़ी है, आगे आई है, उस टीम के साथ मुलाकात प्रधानमंत्री की हो सकती है। आज बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। दिन भर की ये बैठक है जो सुबह शुरू हुई, शाम 7 बजे तक ये चलेगी। अलग अलग प्रेजेंटेशंस होनी है, लेकिन एक राउंड की मीटिंग खत्म हो चुकी है जिसमें कुछ पदाधिकारी जो है वो वहां से निकल भी गए। अब नए जो राउंड 2 की जो मीटिंग है उसमें कुछ नेता पहुंचे जिसमें कई राज्यों के अध्यक्ष भी हैं और कुछ मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, जैसे युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC/ST मोर्चा, OBC मोर्चा, इनके अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन बड़ी बात ये निकल के आ रही है इस पूरी बैठक से मानशु कि बीजेपी ने वंदे मातरम को लेकर बड़ा प्रस्ताव पारित कर लिया है। 10 पॉइंट एजेंडे के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है। बीजेपी का साफ ये मानना है कि जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी ने पारित किया था जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 छंद गाने की बात कही है, उसका वो पुरजोर विरोध करेंगे, साथ साथ देश भर में लोगों के बीच जाएंगे और बताएंगे कि कैसे वंदे मातरम की मदद से अंग्रेजों को यहां से खदेड़ा गया था और ये पूरी एक राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। युवाओं के बीच वंदे मातरम की क्या खासियत है उसको लेकर भी बीजेपी जाएगी और लगातार लोगों के सामने बीजेपी वंदे मातरम के बारे में बात रखेगी। अलग अलग तरह के कार्यक्रम जो है वो बीजेपी के द्वारा कहे जाएंगे। एक बात जो महत्वपूर्ण इस पूरे रेजोल्यूशन में निकल के आई है हिमांशु, वो ये कि बीजेपी खास तौर पर युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता का एक अभियान चलाने जा रही है जिसमें 6 के 6 जो स्टैंजा है पूर्ण जो वंदे मातरम है उसके इतिहास को लेकर, साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी में वंदे मातरम को लेकर जो एक एक जुनून हो उसके बारे में कैंपेन बीजेपी चलाने जा रही है ताकि जन जागरण आगे आने वाले समय में इसको लेकर हो सके। साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से देशव्यापी अभियान बीजेपी चलाने जा रही है जिसके अंतर्गत वंदे मातरम का इतिहास, अर्थ, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत भारत के हर कोने तक पहुंचाने की बात अब भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में करने जा रही है। तो एक बड़ा फैसला, बड़ा रेजोल्यूशन बीजेपी ने लिया है अपनी इस बड़ी बैठक में। एक और बात जो इस रेजोल्यूशन में कही गई है कि महात्मा गांधी ने अपने ऐतिहासिक कथन में जन जन तक ये बात पहुंचाई थी और उन्होंने वंदे मातरम को साम्राज्यवाद विरोधी नारा दिया था और शुद्धतम एक राष्ट्रीय भावना से जुड़ा हुआ बताया था, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इस चीज को लोगों के बीच में बीजेपी लेकर जाएगी। तो बड़ा फैसला प्रस्ताव पार्टी के द्वारा पारित कर लिया गया है। एक राउंड की बैठक खत्म हो गई है, कुछ और अधिकारी अब पहुंचे हैं और आज इसी बैठक में जो पीएम नरेंद्र मोदी के 25 साल हो गए गवर्नेंस के उसको लेकर भी चर्चाएं होंगी। साथ साथ पार्टी एक रणनीति बनाने जा रही है कि कैसे और जन जन तक पहुंचा जाए, पार्टी की बातें लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इन सभी चीजों को लेकर लगातार रणनीतियां बनेंगी। दिन भर शाम 7 बजे के आसपास जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ना सिर्फ वो नए अधिकारियों के साथ फोटो खिंचाने जा रहे हैं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात भी उनके आगे रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, एक कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा उन पदाधिकारियों के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां इमरान एक बार फिर गए जेल और मुनीर खेल गए खेल। तो पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर क्या चल रहा है, मुनीर कौन सा गेम खेल रहे हैं? लंबे समय बाद इमरान खान के जेल से बाहर आने की खबर सुनकर बड़ी तादाद में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए। सड़कों पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी गईं, लेकिन इमरान समर्थकों के उत्साह पर कुछ ही घंटों में पानी फिर गया। अब सवाल यह कि जब 4 घंटे में ही इमरान फिट पाए गए तो किस आधार पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान का इलाज 16 सितंबर तक शिफा अस्पताल में कराया जाए। चलिए देखते हैं इस पूरे गेम के पीछे है क्या।
2: इमरान खान को 4 घंटे जेल से आजादी, फिर वही कैद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक, पाकिस्तान में फौज की धार। मुनीर की मिडनाइट नौटंकी, इमरान खान की बहने भड़की। मुनीर का पूरा प्लान हिट, अस्पताल में इमरान कैसे हुए फिट। इमरान समर्थकों ने फूल बिछाए, मुनीर ने जश्न पर फेरा पानी।
3: क्रॉस द बैरियर चले जाए, क्रॉस द बैरियर।
2: रात 1:05, रावलपिंडी का अध्याला जेल। अचानक सड़क पर हलचल तेज हुई, कड़ी सुरक्षा के बीच 20 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल की ओर बढ़ गया। सुरक्षा को पुख्त करने के लिए इनमें जैमर्स और अभेद सुरक्षा चक्र का इस्तेमाल किया गया। इस भारी सुरक्षा काफिले में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्बा खान और उनके निजी चिकित्सक डॉक्टर फैसल सुल्तान की गाड़ी को भी साथ रहने की अनुमति दी गई थी। जब ये काफिला शिफा अस्पताल पहुंचा तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एंट्री रूट्स पर कटीले तार लगा दिए गए थे और किसी भी बाहरी वाहन या मीडिया को पास आने की इजाजत नहीं थी।
3: मीडिया के भाइयों से गुजारिश होगी, ये DSNG लगाई हुई है, ये सारी खाली कर दे, ये चौक अक्रॉस द बैरियर लगे गए, वहाँ पे मीडिया पॉइंट बनाया हुआ है हमने, शाबाश।
2: उधर जिन रास्तों से इस काफिले को गुजरना था वहाँ इमरान समर्थक गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे थे।
4: उन तमाम रास्तों में जिन रास्तों से इमरान खान को लेकर जाना है, आज उन तमाम रास्तों में फूल ही फूल थे, आज फूलों की पत्तियां थी, आज लोगों की मोहब्बत थी और आज लोगों ने कहा कि फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये मंजर है, आपको अपडेट देंगे थोड़ी ही देर में, इमरान खान को शिफा लेकर आया जा रहा है।
2: इमरान खान को शिफा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनके पहुंचने से पहले तक मीडिया को हटा दिया गया था, लिहाजा इमरान खान की एक तस्वीर तक सामने नहीं आई। इस समय तक उनके समर्थक खुश थे कि आखिरकार उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला।
5: ये हम लोगों को सुनने को मिला कि खान साहब को अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा इलाज के लिए, बेहतर सहूलत के लिए, तो मुझे तो ये फैसला बड़ा खुशहाल लगा। हम इसका खैर मकदम करते हैं, जिन्होंने भी ये फैसला लिया है ये बहुत अच्छा है।
6: खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाने की बात है तो सच्ची बात है, मिक्स फीलिंग है, खुशी भी बहुत है और परेशानी भी बहुत है कि ये नौबत क्यों आई और इतनी देर से क्यों आई।
2: असली सस्पेंस इसके बाद शुरू हुआ, पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि इमरान खान को जेल से इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन इस खबर के कुछ ही देर बाद मामला पलट गया, जानकारी मिली कि इमरान खान को वापस अदियाला जेल भेज दिया गया है।
7: اسلام علیکم جی، شہزاد نواز آپ سے مخاطب ہوں اس وقت میں، شفا انٹرنیشنل کے باہر موجود ہوں اور تیز بارش یہاں پر ہو رہی ہے. تقریباً وقت ہو گئے 5:40 صبح کے اور رات بھر یہاں پر آپ نے دیکھا اسلام آباد پولیس یہاں پر تعینات رہی، پنجاب پولیس سے ابھی یہاں پر میڈیا کی کچھ گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان کو جو ہے وہ یہاں سے شفا سے جو ہے وہ پمز لے کے جایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پمز کے بعد عمران خان کو اڈیالہ دوبارہ منتقل کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سخت سیکورٹی تعینات تھی.
2: یہ خبر چونکانے والی تھی کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے عمران خان کو علاج کے لیے 16 ستمبر تک شفا اسپتال بھیجنے کا آدیش دیا تھا، لیکن عمران خان کو کچھ ہی گھنٹے بعد پھر سے جیل بھیج دیا گیا. پاکستان کے سوچنا منتری عطا اللہ تراد نے سوشل میڈیا ایکس پر 2 گھنٹے میں 2 پوسٹ کیے. پہلے پوسٹ میں لکھا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو دیکھتے ہوئے قیدی کو 20 اور 21 اگست کی رات کڑی سرکشا میں اسپتال لے جایا گیا. آپ کے ڈاکٹر، کارڈیولوجسٹ اور ایک فزیشین سمیت ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کی وسترت جانچ کی اور انہیں میڈیکلی فٹ گھوشت کیا. ان کی بہن عظما خان جانچ اور علاج کے دوران ان کے ساتھ رہیں. پوری جانچ کے بعد انہیں 21 اگست کی صبح 5 بجے کے قریب واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. انہوں نے کوئی ڈاکٹری رپورٹ ساجھا نہیں کی، یہ بھی نہیں بتایا کہ 4 گھنٹے میں ہی کیسے پوری جانچ ہو گئی اور ہوئی تو اس کی رپورٹ کہاں ہے. 2 گھنٹے بعد ایک اور پوسٹ لکھا اور یہ خلاصہ کیا کہ عمران کی جانچ شفا اسپتال میں نہیں بلکہ پیمز یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کی گئی. انہوں نے بتایا کہ شفا کے باہر پی ٹی آئی کارکرتاؤں کی بھیڑ کے چلتے سرکشا کی سمسیا تھی، اسی لیے انہیں پیمز لے جایا گیا جہاں شفا کے ڈاکٹر بھی موجود تھے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہی کرنا تھا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بھی دن 3 گھنٹے کے لیے عمران خان کی جانچ کرائی جا سکتی تھی. عمران خان کو پھر سے جیل بھیجنے کے قدم کی ان کی پارٹی کے چیئرمین گوہر علی خان نے کڑی آلوچنا کی ہے. گوہر علی خان نے کہا کہ وہ سیاسی سمسیا کا حل نکالنا چاہتے تھے، لیکن کوئی ہے جو یہ نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، سپریم کورٹ کا آدیش ایک دم صاف تھا اور اسے لاگو کیا جانا چاہیے تھا. شہباز سرکار نے اسے لاگو کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایسا نہیں کیا.
8: بڑی بدقسمتی ہے، جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی. کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے. ہم نے تو بڑی کوشش کی. سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا، اگر اس میں کوئی ابہام تھا تو ریویو کی جا سکتی تھی. سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا، اس لیے خان صاحب کو وہاں شفٹ ہونا اور وہاں رکھنا اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرنا یہ قانون کی مطابق، سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہونا لازم تھا. بڑی بدقسمتی ہے جو کچھ ہوا ہے.
2: اس پر عمران خان کی بہنوں نے پریس کانفرنس کی اور شہباز سرکار پر بے حد گمبھیر آروپ لگائے. عمران خان کی بہن عظما خان نے بتایا کہ عمران خان کی ایک آنکھ پر پٹی بندھی تھی، اس کے باوجود انہیں موبائل کی روشنی میں اندھیرے راستے پر تیزی سے چلا کر لایا گیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہاں سرکشا نہیں تھی. عظما خان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان نے بار بار ایک ہی بات کہی کہ ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے.
9: آنکھ کو جب انجیکشن لگایا تو ایک آنکھ بند تھی، پھر ہم اسی راستے سے سوچے میں کو، اور وہ تیز چلتے ہیں نا،
10: پٹی لگی ہوئی
9: اور وہ کیونکہ تیز چلتے ہیں میں کو آہستہ چلو، کیونکہ وہی ٹارچ کی بتی،
10: فون کی
9: بتی لے کے وہ دکھا رہے راستہ. مطلب یہ ایک اور کوئی سیکیورٹی نہیں، مطلب لوگ کھڑے تھے وہاں، میں دیکھ رہی تھی کونوں میں کھڑے اندھیرے میں تو جو بھی تھے، مگر یہ کہ یہ ایک ان کے اندھیرے میں میں کو آہستہ چلو، آنکھ پہ ایک پٹی ہے مگر ان کو اس طرح لے کے آئے.
2: خیبر پختونخوا میں عمران خان کی ہی پارٹی کی سرکار ہے اور پریس کانفرنس میں اس کے مکھیہ منتری سہیل افریدی بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو طے کرنا ہوگا کہ یا تو اس کے فیصلوں پر عمل کیا جائے یا پھر عدالتوں کو بند کر دیا جائے.
11: ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا، ججز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان میں یا عدالتیں بند ہوں گی، آپ تالے لگائیں گے، یا جو ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے توہین عدالت کی ہے، جنہوں نے آپ کے حکم نہیں مانے، ان پر آپ امپلیمنٹ کروائیں گے. اور جب تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پھر ہر پاکستانی کہے گا کہ نہ جو ہیں، اگر فرض کریں یہ طاقتور لوگ یہ عدلیہ اور ججز کے حکم نہیں مانتے تو پھر سب بغاوت کریں گے، سب بغاوت پر اتر آئیں گے، پاکستان جو ہے بنانا ریپبلک بن جائے گا. جنگل کا قانون ہے، جس کا جتنا زور ہے وہ کرے گا، جو جتنا طاقتور ہے اتنا ظلم کرے گا، اتنا آئین اور قانون کو پامال کرے گا. تو ججز کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا اور یہ میرے خیال میں آج ہی ان ججز کو فیصلہ کرنا چاہیے.
2: سوال یہی ہے کہ عمران خان کو صرف 4 گھنٹے میں ہی اسپتال سے واپس جیل کیوں بھیج دیا گیا؟ کیا عمران خان اور فوج کے بیچ کوئی سمجھوتا ہوا جو ٹوٹ گیا، या मुनीर इमरान के बाहर आने पर अवाम का रिएक्शन देखना चाहते थे। ऐसी तमाम अटकलें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन इमरान खान को अस्पताल ले जाने और उनका इलाज कराने के पीछे सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक मानी जा रही है, और वो वजह है इमरान खान की सलामती का संदेश देना। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका में बैठे एक पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत खान ने दावा किया था कि रावलपिंडी के तीन फौजी अफसरों ने दावा किया है कि इमरान खान को जेल में मार दिया गया है। इसके बाद उनकी पार्टी और उनकी बहनों ने अदियाला जेल का रुख कर लिया था। शहबाज सरकार के अलावा आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर जबरदस्त दबाव आ गया था। अब चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही सही, लेकिन आसिम मुनीर ने उन अफवाहों को खत्म कर दिया है जिनमें इमरान की सलामती को लेकर सवाल उठ रहे थे। माना जा रहा है कि चार घंटे की इस कवायद के पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। इमरान की जांच में किसी को कोई शक न हो, इसीलिए उनकी बहन उज्मा को भी पूरी जांच के दौरान साथ रखा गया। आज तक ब्यूरो।
0: 4.5 साल हो गए, लेकिन यूक्रेन और रूस की जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि धीरे धीरे और भीषण होती जा रही है। लेकिन इस बार कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बमबारी ने पूरे यूरोप समेत नेटो के कान खड़े कर दिए। नॉर्थ कोरिया ने पुतिन को एक ऐसा तोहफा दिया जिससे ज़ेलेंस्की की रातों की नींद उड़ गई।

अगस्त में क्यों बढ़ रहा रूस यूक्रेन में घमासान? क्यों मिसाइलें रोकने में यूक्रेन हो रहा नाकाम?

0: क्या नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों ने बदला गेम प्लान? क्यों अचानक मच रहा है चीन में कोहराम? उत्तर कोरिया की मिसाइलों से हमला, महायुद्ध भड़केगा।
1: इक्कीस दिन, छह बड़े हमले, इस महीने 50 से ज्यादा लोगों की अगस्त में मौत, इस महीने 80 से ज्यादा लोग घायल। साढ़े चार साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से किम जोंग हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। नॉर्थ कोरिया से विनाशकारी मिसाइलें आ रही हैं, नॉर्थ कोरिया से काम करने वाली ब्रिगेड आ रही है, नॉर्थ कोरिया से खतरनाक हथियार आ रहे हैं। बढ़ रहा है रूस का जोश, उड़ रहे यूक्रेन के होश। यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उनकी जमीन पर मौत का खेल खेल रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी।
2: Ви знаєте, що ми вже знаходили ракети Північної Кореї на території України. Вони вже завдавали удари, використовували це. Сьогодні це вже є визнаний факт. Південна Корея, безумовно, вони переживають. Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них всі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо, і також отримують досвід військовий, тобто північнокорейський солдат, офіцер тощо. І з цим досвідом, ну, вони точно не для мирних умов цей досвід готують. Тому Південна Корея повинна, на мій погляд, більш мати більш тісне співробітництво з Україною.
1: Юкрейн ки хуфія агенціо ке таза хуласе ке мутабик, Рус ке пас Норд Корея ки КН-23 ор КН-24 балістик місайл то пехле се ті. Аб КН-30 жесі винашкарі місайл бі мил гаї хай. Норд Корея се Рус ко лагатар мил рахе хатьяр, Юкрейн ки замін пар кахер барпа рахе хай. पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से नहीं लड़ सकता, ऊपर से नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक में दम कर रखा है। एंटी मिसाइल सिस्टम उसके पास है नहीं, पैट्रियट मिसाइलें वो कब से मांग रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें मिली नहीं है। गुरुवार की रात को भी उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए बल्कि वो इसे खरीदने के लिए तैयार हैं।
2: На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для патріотів – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо...
0: रूस के वोरोनिश में उत्तर कोरियाई मिसाइल यूनिट तैनात हो चुकी है और उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग लड़ चुके हैं। अब ये सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ जंग तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका के एकाधिकार को सीधे चुनौती देने की एक सोची समझी वैश्विक चाल है। किम जोंग अपने सैनिकों को केवल आधुनिक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल वॉरफेयर की लाइव ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे बल्कि बदले में मॉस्को से परमाणु और सैटेलाइट तकनीक हासिल कर पश्चिमी देशों की हर पाबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
3: और यहां वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: शादी का किचन महके जहां को

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: शादी का किचन महके जहाँ गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: प्रसिद्ध ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हैं, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो।
3: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है न्याय के

0: शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
3: एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
2: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए थे। आज तक के
4: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं, पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहन और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जाति अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: अक्षम टीम नितिन नवीन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पदाधिकारियों की पहली बैठक में जेन जी जेन अल्फा पर जोर। वंदे मातरम पर भी प्रस्ताव। दो छंदों पर कांग्रेस की कड़ी निंदा। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज। कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें। ड्रोन पर रोक। एबीवीपी ने रखा वंदे मातरम गायब। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज। मायावती बोली जयंत चौधरी से मांगे माफी। केशव मौर्य भी भड़के। अखिलेश बोले सच भी बोलना गलत हो गया। त्योहारों से पहले चीनी पर तीखी सियासत। खड़गे ने महंगाई पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे। योगी ने जमाखोरी रोकने के दिए निर्देश। और टीम सीजेपी की पिटाई पर छिड़ी एफआईआर की जंग। सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। विवाद के बाद तबेले से शिफ्ट हुआ स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। तो दो बज चुके हैं और दो बजे के बुलेटिन में बात चार बड़ी सियासी खबरों की करेंगे। पहली खबर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ बैठक में जुड़ी हुई है और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ नितिन नवीन की बैठक जारी है जिसमें संगठन के कामकाज और चुनावी तैयारियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इसके साथ बात पुणे में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम की भी करेंगे जिसके लेकर सियासी विवाद बढ़ता जा रहा है। साथ ही बुलेटिन में यूपी की राजनीति की भी चर्चा करेंगे जहां इशारों में जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। चर्चा समाजवादी पार्टी के पीडीए वाले नारे की भी करेंगे जिसे लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर हैं। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे पार्टी के नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पार्टी मुख्यालय में पीएम मोदी बीजेपी के नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और अभी तक जो जानकारी आ रही है उसके तहत यह स्पष्ट है कि जीत का मंत्र दिया जाएगा। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीयूष, इस मुलाकात से जुड़ी क्या जानकारी आपके पास आ पा रही है?
1: जी मानसू, एक बड़ी मुलाकात होने वाली जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। शाम 7 बजे के आसपास उनकी मुलाकात बीजेपी के सभी पद अधिकारियों के साथ होने वाली है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चाएं इन नए पदाधिकारियों की हुई है और आज अब बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग हो रही है जिसको एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। नए जो चेहरे आए हैं उनकी मुलाकात नितिन नवीन से हो रही है, उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। साथ साथ इस मुलाकात की अगर बात करें जो सुबह लगभग 10 बजे के आसपास शुरू हुई, उसका एक सेशन पूरा हो चुका है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब दूसरा सेशन चल रहा है, तो 10 बजे से शुरू होकर ये मुलाकात शाम 7 बजे तक चल सकती है और लगभग 7 बजे के आसपास ही प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं बीजेपी मुख्यालय। और जब वो वहां पर पहुंचेंगे तब उनकी मुलाकात नए अधिकारियों के साथ हो सकती है। कई युवा चेहरे इस नई टीम में आए हैं नितिन नवीन के और आज दिन भर नितिन नवीन इन युवा चेहरों को और पुराने जो एक्सपीरियंस्ड नेता हैं उनको जरूर जीत का मंत्र देने वाले। जिस तरह से माहौल पूरे देश में बना है जनजी को लेकर हो या वंदे मातरम को लेकर हो, जरूर इन सब पर चर्चा भी हुई है और बीजेपी ने एक 10 बिंदु प्रस्ताव वंदे मातरम को लेकर पारित भी कर लिया है। तो आगे आने वाले चुनाव में जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात जैसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है और उसके बाद सबसे बड़ा चुनाव 2029 लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनावों के बीच में भी कुछ चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव, उन सभी चीजों को लेकर नितिन नवीन अपनी बात रखेंगे। कैसे जो नए अधिकारी हैं, नई टीम है, वो लोगों के बीच में जाएं, बीजेपी का मैसेज लोगों तक।
0: अच्छा, दोबारा मैं आपसे जुड़ूंगा पीयूष, लेकिन अभी देखिए जो बैठक हुई है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे लिए चलते हैं।
2: वंदे मातरम का
0: देखिए नितिन नवीन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस अब क्योंकि नए पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं सुनते हैं।
3: हाँ, उसके प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। मैंने वंदे मातरम के लिए मंत्र इसलिए कहा क्योंकि इस मंत्र के मूल में देश है, इस मंत्र के मूल में देशभक्ति है। पहली बार भारत के इतिहास में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एनडीए की सरकार को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो एनडीए की सरकार का अगुवाई कर रहे हैं। पहली बार भारत के इतिहास में 15 अगस्त 2026 को संपूर्ण वंदे मातरम का 6 स्टैंजास जिसमें हैं, 6 पद जिसमें हैं, संपूर्ण वंदे मातरम का पठन, उसका गायन लाल किले के परिसर में हुआ। यह एक नया इतिहास बना। सूर्योदय के साथ हमने संपूर्ण वंदे मातरम को सुना, सराहा, नमन किया, तो सूर्य अस्त होते होते 15 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के कार्यालय में जो कुकृत्य हुआ उसको भी हमने देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनकी मौजूदगी में जब तिरंगा लहराया जा रहा था, फहराया जा रहा था, उस समय जब वंदे मातरम शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो सोनिया जी ने इशारों में 2 छंदों के बाद, 2 पदों के बाद, 2 स्टैंजास के बाद स्टॉप स्टॉप कहते हुए उन्हें देखा गया। कहीं ना कहीं उनके शीर्ष नेतृत्व में, खास करके सोनिया जी और राहुल जी में अफरा तफरी का माहौल था, मानो कुछ अपशब्दों का प्रयोग हो रहा हो। जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। हम सब जानते हैं 1937 में यह निर्णय क्यों लिया गया था। वंदे मातरम 1875 नवंबर 7 तारीख को लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, और वह दिन था अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया मतलब जो क्षय नहीं हो। यह एक ऐसा बीज मंत्र है देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने बिना सोचे, बिना जाने, केवल वंदे मातरम बोलते हुए उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया है भारत मां के ऊपर। 7 नवंबर 1875, जब उसका 100 साल की पूर्ति होती है 1975 में, देश में आपातकाल की परिस्थिति रहती है, उस समय इमरजेंसी चल रहा होता है कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में, हम 100 साल मना नहीं पा रहे हैं। 150वां साल मनाया जाता है, सदन के अंदर चर्चा की जाती है, शीतकालीन सत्र 2025 में 8 तारीख को लोकसभा में चर्चा होती है 11 घंटे से अधिक समय के लिए, और राज्यसभा में 9, 10 और 11 तारीख को चर्चा होती है 12 घंटे 50 मिनटों के लिए, और वंदे मातरम की विस्तृत जानकारी समस्त देशवासियों को दिया जाता है कि किस प्रकार वंदे मातरम का गायन होता था और किस प्रकार संपूर्ण वंदे मातरम आनंद मठ का हिस्सा होता था, और किस प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने 1906 में, क्योंकि वंदे मातरम लिखा गया था ऋषि बंकिम जी द्वारा, क्यों, क्योंकि 1905 में बंग भंग हो रहा था बंगाल के विभाजन को रोकने के लिए, बंग भंग को रोकने के लिए वंदे मातरम लिखा गया था। 1906 में बरिसाल में, जिस समय वंदे मातरम का उच्चारण करके नर और नारी निकले थे, उस समय ब्रिटिश सरकार ने उसे बैन किया कि कोई वंदे मातरम गा नहीं सकता है, मगर फिर भी बरिसाल में वंदे मातरम गाया गया, और उसके पश्चात 1907 में मैडम बिकाजी कामा ने वंदे मातरम लिखे हुए झंडे को भी फहराया। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। आप चिंता करके देखिए, ये छोटा विषय नहीं है, ये राजनीति का विषय नहीं है, यह विषय देश के विभाजन का है। याद करिए 1937 से पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय पंडित विष्णु दिगंबर जी गाने वाले थे वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम, मगर कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली वो वॉकआउट करते हैं कि मैं नहीं गाने दूंगा संपूर्ण वंदे मातरम। और 1923 के उस प्रकरण के बाद 1937 में पहली बार नेहरू जी के कहने पर वंदे मातरम को विभाजित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है, केवल एक हिस्सा ही गाया जाता है। परिणाम क्या हुआ? जो चिट्ठी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन्ना को लिखा था, वह स्पष्ट रूप से उस चिट्ठी को पढ़िएगा तो नेहरू जी, जिन्ना जी की जो डिमांड्स थी, 14 जिन्ना की डिमांड्स थे, उनके सामने घुटने टेकते हुए नेहरू जी कहते हैं, हमने मान तो लिया है, आप वंदे मातरम पर प्रतिबंध चाहते हैं, मान तो लिया है हमने, हम संपूर्ण वंदे मातरम का पठन नहीं करेंगे, कांग्रेस उसे नहीं गाएगी। मगर यही तुष्टिकरण की बीज, दिस सीड ऑफ अपीजमेंट विच वॉज सोड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द ईयर 1937 वॉज द सीड ऑफ पार्टीशन, यह विभाजन का बीज बनता है। और उस समय जिन ताकतों को शक्ति मिली, उन ताकतों ने देश को आगे चलकर विभाजित किया। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने शायद पढ़ा नहीं है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। मैं पढ़ना चाहूंगा महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था वंदे मातरम के लिए। महात्मा गांधी ऑन वंदे मातरम, नो मैटर व्हाट इट्स सोर्स वॉज एंड हाउ एंड व्हेन इट वॉज कंपोज्ड, इट हैज बिकम अ मोस्ट पावरफुल battle cry among Hindus and Muslims of Bengal during the partition days. It was anti-imperialistic cry. As a lad, when I knew nothing of Ananda Matha or even Bankim, its immortal author, Vande Matram, had gripped me. And when I heard it, sung it, it had enthralled me. I associated the purest national spirit with it. I repeat, I associated the purest national spirit with it. It never occurred to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. Unfortunately, we have fallen on evil days. Unfortunately, we have fallen on evil days. This is what Mahatma Gandhi said. Gandhi ji ne kaha, dukhad din aa gaye hain. Uske aage bhi pad deta hoon ek sentence Gandhi ji ka. And that was all pure gold. That was all. Wo che chand. That was all pure gold before has become base metal today. Jo pehle pure gold tha, ab wo base metal ban gaya hai. Yah Gandhi ji ka manna tha. Aur aaj Congress party ne jaan bujh kar tushtikaran ki rajniti ko badhaya hai. Yah koi rajnitik vishay nahi hai. Hum bhi isme piche nahi hatne wale hai. टू नेशन थ्योरी को 1937 के कांग्रेस रिजोल्यूशन ने बोया था, वहां आरंभ हुआ था, पुनः यह जो कोशिश की गई है, इस कोशिश को किसी भी कीमत पे हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। इतना ही नहीं, इस बार मॉनसून सत्र में आप सबको पता है, मॉनसून सत्र में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 पारित हुआ। क्यों पारित हुआ? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, नन अदर देन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके खुद का वाक्य था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जनगणमन दोनों को एक ही दृष्टिकोण से देखा जाएगा और दोनों को एक समान सम्मान प्राप्त होगा. दिस इज वॉट ही डिक्लेयर्ड ऑन 24 जनवरी 1950, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष. और उसके पश्चात धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और तमाम सांसदों को जिन्होंने खड़े होकर एक मत होकर कहा कि हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हैं और नेशनल ऑनर को इंसल्ट नहीं होने देंगे. जनगण मन के बराबर हम वंदे मातरम को खड़ा करेंगे. हां, किसी को बाध्य नहीं करेंगे, मगर जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वह दंडित होगा. आप चिंता करिए किस प्रकार से बाधित करने की कोशिश की गई वंदे मातरम को, वह भी कांग्रेस के मुख्यालय में. आप मुझे यह बताइए, आज देश से मैं पूछता हूं, पार्लियामेंट बड़ा है या सीडब्ल्यूसी बड़ी है? किसके आधार पर देश चलेगा? पार्लियामेंट में जो निर्णय होंगे उसके आधार पर देश चलेगा, या फिर सीडब्ल्यूसी की कमिटी में जो निर्णय लिए जाएंगे, जो रिजोल्यूशन लिए जाएंगे, उसके आधार पर देश चलेगा? जब पार्लियामेंट में नियम बनते हैं, जब पार्लियामेंट में कानून पारित होते हैं, उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग सीढ़ी में बैठे रहते हैं पार्लियामेंट में, वहां वेश बदल के आते हैं, वहां अपमानित करते हैं दूसरों को. कोई साधु बन के आता है, कोई साधुओं को पीटता है, वहां अपमान किया जाता है. जिस समय कानून पारित हो रहा होता है, आप कानून के विषय में कोई संबंध नहीं रखते हैं, वहां अंदर मौजूद नहीं रहते हैं, और सीडब्ल्यूसी में आप नया कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं. खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी. हां, हम जानते हैं इसी राहुल गांधी जी ने अपने एक बंद बैठक में, जिसको मीडिया के बंधुओं ने उजागर किया था, यह ऐलान किया था, हां हम मुसलमानों की पार्टी है. उन्होंने कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि देश को आप इस प्रकार वंदे मातरम के माध्यम से विभाजित करने की कोशिश करेंगे. और वंदे मातरम, जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है, यह हिंदू और मुसलमानों के बीच में विभाजन का तरीका नहीं है. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का. पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जो हमेशा कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम संपूर्ण रूप से गाया करते थे, 1938 पे हरिपुरा अधिवेशन में इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि आप संपूर्ण वंदे मातरम का पठन अलाउ नहीं कर रहे हैं. नेहरू जी के सामने मना कर दिया. और 15 अगस्त 1947, जब देश आजाद हुआ, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जो उस समय चेन्नई में होटल वुडलैंड में मौजूद थे, उन्हें फोन किया और उन्होंने, वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि आप वंदे मातरम गाइए ऑल इंडिया रेडियो में 6:30 बजे. उन्होंने कहा एक ही शर्त में गाऊंगा, अगर पूरा वंदे मातरम गाने का मुझे अनुमति मिलेगा. पूरा वंदे मातरम उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में 15 अगस्त 1947 को गाया. कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर मत विभाजन है. सी राजगोपालाचारी जी ने भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, आज हमारे रिजोल्यूशन में वो अंकित है, कि इस प्रकार से अगर जिन्ना की हर बात को मान ली जाएगी, इस प्रकार से अगर अपीजमेंट की हर बात को, तुष्टिकरण की हर बात को मान ली जाएगी और घुटने टेक दिए जाएंगे, तो वह दिन दूर नहीं जब देश सही दिशा में नहीं बढ़ेगा. और आज भी, आज इस प्रस्ताव में, आज इस रिजोल्यूशन में, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में, पहली पदाधिकारी की बैठक में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा. वंदे मातरम के विषय में लोगों को हम बताएंगे. वंदे मातरम को लेकर जिस प्रकार की कुलच्छित राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको लेकर हम आंदोलन खड़ा करेंगे. जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को एक एंटी इंपेरियलिस्टिक क्राई कहा था, उस विषय को हम जनता के सामने रखेंगे और जनता को दिखाएंगे कि आखिरकार ये जो कहावत है कि अगर सियार भी कभी बाघ या सिंह का चमड़ा धारण करके अपने आप को सिंह दिखाने की कोशिश करता है, एक ना एक दिन दैट स्किन फॉल्स अपार्ट, एक ना एक दिन उसके अंदर की असलियत सामने आ ही जाती है। राष्ट्रभक्ति का लबादा ओढ़ करके कांग्रेस पार्टी आखिर अपने आप को कब तक छुपाए रखेगी? आज राष्ट्रभक्ति का लबादा पूर्णतः कांग्रेस पार्टी के ऊपर से गिर चुका है और उसके अंदर की तुष्टिकरण की राजनीति आज पूरा देश देख रहा है। मगर
0: तो वंदे मातरम के मुद्दे पर कैसे घेराव किया जा रहा है कांग्रेस का, ये आपने अभी देखा। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: The new BE6 Sporter. In association with
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.
3: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है.
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता है.

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: The new BE6 Sporter.
1: ये न्याय का पहला कदम है, केस लॉज हुआ है। देखिए एक महीना हो गया, छर्रे शरीर में है, तीन छर्रे आंख में है, आंख से इनको दिखाई नहीं देता है, तीन चार छर्रे दिल के पास है, साफ दिख रहा है कि एक युवा के साथ अन्याय हुआ है। और तब भी आज सुबह 11:30 बजे हम यहाँ आए, एक महीने से ये घूम रहे हैं, 11:30 बजे आए, अभी 6:30 बज गए हैं, 7:45 हो गए, तब जाके FIR फाइल की। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है, कितने लोगों के शरीर में छर्रे होते हैं। ये न्यू दिल्ली बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिलता है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है, और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल ओके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। ये बेचारे जो पुलिस वाले हैं, ये चाहते थे FIR करना, वो वाले भी चाहते थे FIR करना, बट ऊपर से न्याय के ब्रेक लगी हुई है।

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पियो आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक नहीं।
0: गुलटनिया और कलखनिया

अच्छा, बीजेपी की नई टीम से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नितिन नवीन के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक में वंदे मातरम पर प्रस्ताव। दो छंदों पर कांग्रेस की कड़ी निंदा। जेन जी जेन अल्फा पर जोर। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज। कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें। ड्रोन पर रोक। एबीवीपी ने रखा वंदे मातरम गाया। अखिलेश के चवन्नी वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज। मायावती बोली जयंत चौधरी से माफी मांगी। केशव मौर्य भी बढ़के। अखिलेश बोले सच बोलना भी गलत हो गया। त्योहारों से पहले चीनी पर तीखी सियासत। खड़गे ने महंगाई पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे योगी ने जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए। और टीम सीजेपी की पिटाई पछड़ी। एफआईआर की जंग। सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का केस। विवाद के बाद तबेले से शिफ्ट हुआ स्कूल।

देखिए दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अब इस बुलेटिन के हिस्से में बात करेंगे हम बाढ़ की। जैसा आप समझ गए होंगे, देखिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक शहर शहर बाढ़ का कहर दिख रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना तमस बेलन उफान पर हैं, तो वहीं काशी में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। प्रयागराज से सटे एपी के एमपी के रीवा में तमस नदी तांडव कर रही है, तो वहीं चित्रकूट में भी छोटी नदियां इस वक्त उफान पर हैं। तो चलिए सबसे पहले बात प्रयागराज की। संगम नगरी प्रयागराज, गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं। सबसे बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में हैं, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है। गांव में एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम तैनात है, कई गांव का संपर्क टूट गया है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खम्भों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहाँ नाव चल रही है वहाँ जमीन थी और अब यहाँ मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गांव है समर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गाँवों में आपके हिसाब से।
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुँचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: वो यहाँ आना चाहते, तो उनको आप लोग ये बिस्किट और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात।
2: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बेटा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा? क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद तो सोचन ना चढ़ी पानी तो कहूँ गया नहीं तो आई गया भीतर घुसा है पानी अब के देख ले।
1: आपके गांव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचन ना आई तो रात में पहुँच गया।
4: दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर, जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, ये दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है। नहीं
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं। जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ है, अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे, शाम को भरे थे तो वही नहीं पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुँचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुँचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहाँ जाए। घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहाँ कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहाँ ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। और अब प्रयागराज शहर की बात करते हैं जहां गंगा जी और यमुना जी उफान पर हैं। संगम तट पर बने घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थीं, वहां अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा में जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नाग वासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है, ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना?
2: ये जी, पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन की कांवरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटीज के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वही अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। प्रयागराज के संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान जी के मंदिर तक गंगा जी का पानी पहुंच गया। लेटे हनुमान जी के भक्त मानते हैं कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने के लिए आती हैं, उन्हें स्नान करा के लौट जाती हैं। हालांकि अभी पानी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया है।
1: प्रयागराज में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जहां बाइक, स्कूटी, ई रिक्शे चलते थे, वहां अब नाव चल रही हैं। हमारी मौजूदगी इस वक्त संगम क्षेत्र में स्थित लेटे हुए हनुमान जी के पास है। हमें अगर आप देखेंगे जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं, तो घुटने तक जो है पानी यहां पहुंच चुका है। और अब यकीन माने ये कोई घाट नहीं है, ये नीचे हमारे ठीक सड़क है, और ये पानी जो है वो उधर से आ रहा है। और वहां जो जेटी लगा दी गई है, वो नदी की वजह से नहीं लगाई गई है, वो इस वजह से लगाई गई है जैसे कि उसके आगे पानी और ज्यादा गहरा है, यानी कि नदी जो है वो काफी आगे है। अब आपको मैं समझाऊं कैसे, ऐसे समझिए, कैमरामैन संदीप जो उधर पैन करिए जहां पिलर लगे हुए हैं, ये जो खंबे आप देख रहे हैं ना, जो आखिरी खंबा है वहां तक सड़क है, वहां तक घाट है, वहां के आगे गंगा शुरू होती है। जितने टोम्ब लगे हैं, जितने ये यहां पर आप वो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक के जो वो लगे हैं, ये सभी जो है अभी जलमग्न हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लें उस पिक्चर को देखकर कि पानी कहां तक आ पहुंचा है। अभी मैं आपको यहां जहां से रिपोर्ट कर रहा हूं, मुझे अगर देखें तो मैं खुद मेरे घुटने तक यहां पानी है, और मेरे नीचे एक सड़क है, प्रॉपर सड़क है, जब मैं पैर रख रहा हूं तो मुझे अंदाजा लग रहा है। अब अगली तस्वीर आपको दिखाऊंगा मंदिर की, पहले एक नाव की तस्वीर भी दिखा दें। ये देखिए हमारे ठीक बगल में यहाँ कई सारी नाव खड़ी हुई हैं, और यकीन माने ये सड़क जो है ये आवागमन के लिए थी। जैसा कि मैंने खंभों से एस्टैब्लिश करके आपको बताया, यहाँ पर नाव कभी नहीं आती है, लेकिन अब पानी जब आ गया है तो भाई कुछ तो चलेगा। पानी है तो गाड़ी नहीं चल सकती, तो यहाँ नाव ही चलने शुरू हो गई। यानी कि जहां पर कल तक या कुछ दिन पहले तक स्कूटर वगैरह चल रहे थे, वहां अब नाव चल रही। अब आपको मैं दिखाता हूँ हनुमान जी का मंदिर, ये हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। और ये कहा भी जाता है कि जब ये सीजन आता है उसमें माँ गंगा श्री हनुमान को स्नान करवाती हैं, और हनुमान जी लेटे हुए जहां पर स्थापित हैं वहां तक गंगा माँ पहुंचती हैं। तो उस दहलीज के बेहद करीब माँ गंगा आ चुकी है, यानी कि उस आखिरी खंबे से चलती हुई अब माँ गंगा का प्रवाह वहां तक है। अब वो जो है क्षेत्र वो हनुमान जी का मंदिर का है, और वहां ये पानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और सीधे स्पर्श करेगा लेटे हुए हनुमान जी की जो मूर्ति बनी है उसको स्पर्श करेगा। तो
0: प्रयागराज की हालात तो आपने देख लिए, अब आपको काशी लिए चलते हैं, बनारस की बात करते हैं, क्योंकि प्रयागराज से जब गंगा जी आगे बढ़ती हैं तो उसमें यमुना जी का प्रवाह शामिल हो चुका होता है, और यह धारा बनारस पहुंचकर विकराल रूप ले लेती है।
3: कुछ दिनों से गंगा में आई बाढ़ की वजह से बढ़ते जल स्तर के कारण लगातार जो ये चीजें हैं ये भी प्रभावित हो रही हैं, और इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के इस 80 घाट पर है, जो न केवल धार्मिक आध्यात्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे काशी की चौपाटी भी कही जाती है। रोज यहाँ हजारों लाखों की संख्या में आस्थावान श्रद्धालु आते हैं, साथ ही सावन का पावन माह चल रहा है तो यहाँ गंगा स्नान करते हैं, बाबा के जलाभिषेक के लिए जल भी ले जाते हैं। लेकिन देख सकते हैं हमारे ठीक सामने की ओर जो हवन कुंड है सुबह बनारस का, वे जलमग्न हो गया है, तो वहीं दाहिने तरफ जो 7 प्लेटफॉर्म आरती के बने हुए हैं वहां तक पानी पहुंच गया है। तो ठीक पीछे सुबह बनारस का जो मंच है, यहां पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हो गया है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा में बढ़ाव जारी है, माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिनों में चेतावनी बिंदु से तक गंगा का पानी आ जाएगा, तो खतरे के निशान तक भी अगले 3 से 4 दिनों में पहुंच जाएगा। हालांकि अभी चेतावनी बिंदु से गंगा 1.5 मीटर तो खतरे के निशान से 2.5 मीटर नीचे बह रही है। एहतियातन नौका संचालन पर पहले से ही रोक लगी हुई है, गलियों में और छतों पर चौदह महाशमशान मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर हो रहा है, तो छतों पर ही आरती भी हो रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ जल पुलिस और गोताखोर की टीम लगाई गई है, 46 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, तो 21 बाढ़ चौकियां भी हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर सुरक्षा के इंतजाम में कमी देखी जा रही है। लोग रिस्क उठाकर अभी भी बाढ़ के पानी में बड़े जल स्तर में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो जान जोखिम में डालकर यहाँ अभी भी लोग खतरा मोल ले रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर बाढ़ की रफ्तार ऐसी रही तो अगले 1 से 2 दिनों में चेतावनी बिंदु के बाद गंगा खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।
0: तो देखिए प्रयागराज और उसके आसपास के इलाके भी बाढ़ की चपेट में हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में तमस नदी ने तांडव मचा दिया, तो वहीं चित्रकूट में बरदाहा नदी डरा रही है लोगों को।
4: यूपी में गंगा और यमुना तो उफान पर हैं ही, लेकिन राज्य की छोटी छोटी नदियां भी इन दिनों कहर बरपा रही हैं। ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ यूपी का जिला चित्रकूट है, जहां बारिश के बाद बरदाहा नदी उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश का पानी जब मैदानी इलाकों में पहुंचा तो वो नदियां भी उफान पर आ गई, जिनमें पानी सिर्फ नाम मात्र का होता था। मानिकपुर में बहने वाली बरदाहा नदी के रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, खेत खलिहान डूब गए। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी बाढ़ राहत कार्यों में तैनात की गई हैं। नावों के जरिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें जरूरी दवाएं लोगों तक पहुंचा रही हैं।
5: 15 दिन से हो गए, स्कूल भी नहीं गए हैं, हो गए, यही परेशानी है, झेलना तो पड़ेगा।
6: खाना पीना आप लोग का दिनचर्या डेली की कैसे प्रभावित रहती है?
5: खाना पीना हो गया, बसर गुजर करना ही पड़ेगा, चाहे दाल खाओ चाहे रोटी खाओ, कुछ करना ही पड़ेगा, सब्जी भाजी कुछ मिल नहीं पाती।
7: अगले शुक्रवार को हुआ है, कल शुक्रवार हो जाएगा, 8 दिन हो जाएंगे, 8 दिन से लगातार यहाँ पे जल भराव है, यातायात बंद है, यूपी से हम आने जाने वालों की सारी समस्याएं है। यहाँ आधा दर्जन गाँव है, उनमें भी सारी समस्याएं हैं, जो मरीज हैं, महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं, उनको सबको आने जाने की समस्याएं हैं।
4: यूपी से सटे मध्य प्रदेश के जिलों में भी यही हाल है। ये रीवा है जहां मूसलाधार बारिश से मानो शहर में बाढ़ आ गई हो। शुक्रवार को रीवा में करीब 12 घंटे तक बारिश हुई, जिसके बाद जगह जगह जल भराव हो गया, नदी नाले उफान पर आ गए। कुछ ही घंटों में ऐसे हालात हो गए हैं, लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश करने लगे। स्थिति संभालने के लिए एसडीआरएफ की टीमों को उतारा गया। पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी रेस्क्यू अभियान में जुटे। बारिश की वजह से नालों का पानी कई बस्तियों में घुस गया। जान बचाने के लिए लोग झुग्गियों की छतों पर चढ़ गए थे।
8: एक टीम हमारी त्योथर में पड़ी है एनडीआरएफ की, जिसने बहुत सारा रेस्क्यू वहां पे किया हुआ है। एक टीम हमारी हवलदार अनुदेशक के मार्गदर्शन में गई थी। ऐसे करके हमने लगभग 1000 से ऊपर व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला है। इसमें हमें शासन प्रशासन का भी

0: स्थिति को, और बहुत ज्यादा हमें प्रेशराइज भी नहीं किया है, तो इस वजह से हम अपना काम अच्छे से कर पाए।
1: रीवा में सिर्फ शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके भी बाढ़ की चपेट में है। ग्रामीण अंचल में तमस नदी उफान पर है। तमस नदी की चपेट में रीवा के कई गांव आ गए। हालांकि अब धीरे धीरे तमस का पानी उतर रहा है। रीवा में 300 से अधिक गांव तमस नदी की चपेट में है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। आज तक ब्यूरो।
2: तो जब तक नदियों का रौद्र रूप शांत नहीं हो जाता, आप लोग सावधानी जरूर बरतिएगा। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
3: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
4: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पीवा आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लत से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक।
2: गुलटनिया और कलखनिया,
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
1: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
2: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पी आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक।
0: गुलटनिया और कलखनिया

0: ये है यूपी की मलिहाबाद रिजर्व सीट से बीजेपी की विधायक जय देवी कौशल और ये हैं जय देवी के पति और मोहनलालगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद कौशल किशोर। इस नेता दंपति ने खुद के साथ हुए जातिगत भेदभाव का बड़ा आरोप लगाया।
1: आज हमको समय मिला, मैं समय दे दिया था कि कल सुबह हम भैया यहाँ पे पूजन करेंगे, तो हम जब गए तो वहाँ सब पूरी व्यवस्था हुई, मगर मुझसे पूजा न करवाया गया और लोगों ने वहाँ बोले कि वो कमलेश कहने लगे कि विधायक जी आरती कर दीजिए, तो कहन की आरती घूम लीजिए पंडित जी, और आरती हो गई सभी लोगों की।
0: मामला समझिए, ये शिला पूजन था, पर्यटन विभाग का एक पत्थर रखा था, उस पर सीएम योगी, मंत्री धर्मवीर और खुद विधायक जी जय देवी का नाम लिखा था और इसी की पूजा हो रही थी। दरअसल विधायक जी ने जीतोड़ मेहनत करके काकोरी के शीतला माता मंदिर जीर्णोद्धार के लिए 78 लाख का फंड पास कराया। शिकायत ये है कि उन्हें नरियल तक नहीं फोड़ने दिया गया,
1: 5 ईंटा रख दिए गए और एक आए पंडित जी, वही सब पूरा काम किया, मैं खड़ी रही, मुझसे कुछ भी नहीं करवाया गया।
2: विधायक जी, क्या जातीय भेदभाव किया जा रहा है, कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं?
1: अब ऐसी बात तो है, तभी तो नहीं पूजा करने दिया, भेदभाव तो जरूर किया गया, इसीलिए नहीं पूजा करने दिया।
0: विधायक पत्नी के अपमान से पति कौशल किशोर भी आहत है। कहते हैं कि सुरक्षित सीट के विधायक होते हुए भी दो दो मंदिरों के लिए 1.5 करोड़ के फंड पास कराए, लेकिन उन्हें पूजा नहीं करने दी गई। यहाँ बता दें कि ये काकोरी का वो शीतला माता मंदिर है जहाँ मंदिर परिसर में पेशाब करने पर दलित के साथ पन्नू गुप्ता नाम के शख्स पर अत्याचार के आरोप लगे थे। उसी मंदिर में नेता दंपति ने अपने साथ हुए व्यवहार की शिकायत सोशल मीडिया पोस्ट पर की तो अखिलेश यादव को मौका मिल गया। अखिलेश यादव ने फौरन लिखा कि बीजेपी में पीडीए स्थान तो पा सकता है लेकिन सम्मान नहीं। अब चर्चा है कि इस मामले में भी पीडीए को उचित सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल सकता है। वैसे तथ्य ये भी है, विधायक जयदेवी 2022 के चुनाव सिर्फ 7,745 वोटों से जीत पाई थी, जबकि 2017 में जीत का अंतर 22,668 था। इसी तरह 2019 में 90,229 वोट से मोहनलालगंज सीट से जीत हासिल करने वाले कौशल किशोर 2024 में 70,292 वोट से हार चुके हैं। 2027 के लिए बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है, ऐसे में हर कमजोर कड़ी को असुरक्षा का खतरा लग रहा है। चर्चा है कि मौजूदा दलित अपमान विवाद के पीछे भी वही राजनीतिक असुरक्षा का मसला हो सकता है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

आज हम बीजेपी की नई टीम से मिलेंगे पीएम मोदी नितिन नवीन के पदाधिकारियों के साथ। पहली बैठक वंदे मातरम पर प्रस्ताव, कांग्रेस की कड़ी निंदा, जेन जी जेन अल्फा से संवाद पर जोर। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, ड्रोन पर रोक, एबीवीपी ने रखा वंदे मातरम गायन। अखिलेश के चवन्नी वाले बैन पर यूपी में सियासत तेज, मायावती बोले जयंत चौधरी से मांगे माफी, केशव प्रसाद मौर्य भी भड़के, अखिलेश बोले सच भी बोलना गलत हो गया। त्योहारों से पहले चीनी पर तीखी सियासत, खड़गे ने महंगाई पर सरकार को घेरा, अखिलेश ने कहा बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, योगी ने जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए। और टीम सीजेपी की पिटाई पर चिड़ी, एफआईआर की जंग, सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का केस, विवाद के बाद तबेले से शिफ्ट हुआ स्कूल।

बीजेपी पदाधिकारियों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम को होगी मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की। टीम पहली बैठक में वंदे मातरम और जेन जी पर चर्चा इसमें हुई। बीजेपी ने वंदे मातरम के सम्मान और इसके ऐतिहासिक विरासत की रक्षा को लेकर अहम प्रस्ताव पास किया। बीजेपी ने की कांग्रेस वर्किंग कमेटी के फैसले का विरोध। इसमें 19 अगस्त 2026 को 1937 के प्रस्ताव को दोहराते हुए वंदे मातरम के सिर्फ दो अंतरों के गायन की बात कही थी। बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, मां भारती के प्रति समर्पण, स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र और राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक है। बीजेपी ने देशभर में वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का फैसला लिया। खासतौर पर युवाओं के बीच इसके इतिहास, अर्थ और राष्ट्रीय महत्व को पहुंचाने पर जोर। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी से महिलाओं की एक आवाज और नीट यूजी यूपीएससी मुद्दों पर सीधी बातचीत। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान पुणे यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का वंदे मातरम कार्यक्रम। 5 बजे होगा आयोजन। दिल्ली में आरक्षण के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। लोग जंतर मंतर के आसपास जुटे और दिल्ली पुलिस ने यहां पर प्रदर्शन की अनुमति से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक रामलीला मैदान में सीमित संख्या के साथ प्रदर्शन की अनुमति थी। प्रदर्शनकारियों ने अब स्थगित किए जा चुके यूजीसी इक्विटी नियमों को लेकर भी नारे लगाए और सरकार से इस मुद्दे पर बदलाव की मांग की। लातूर के जिला परिषद स्कूलों में निकले प्राइवेट स्कूल के बच्चे और स्कूल में संख्या बढ़ाकर दिखाने के चक्कर में स्टाफ का यह अनोखा कारनामा। सीजेपी पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जिला परिषद स्कूल का ऑडिट करते समय किया खुलासा कि इंग्लिश स्कूल के बच्चों को ऑडिट के डर से स्कूल में लाकर बिठा दिया गया। लातूर में अभिजीत दीपके के स्कूल ऑडिट पर शिवसेना का हमला। कहा कि ऑडिट की जांच करने का हक किसने दिया, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बच्चों को तंग न करें। जयपुर में सीजेपी की टीम से मारपीट के मामले में दोनों ही पक्षों ने देर रात दर्ज करवाई एफआईआर। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जयपुर में हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया। मुंबई में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, मैकडॉनल्ड समेत 7 प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एफडीए की बड़ी कार्रवाई, होटल में जांच के दौरान मिली खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी गंभीर खामियां। होटल के किचन में इस्तेमाल के लिए रखा गया पनीर भी खराब मिला। टॉयलेट में एंट्री गेट पर सब्जियां काटी जा रही थी। एफडीए की टीम ने होटल का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। नियमों के उल्लंघन को लेकर होटल पर पहले भी जुर्माना लगाया जा चुका है। छत्रपति संभाजी नगर में एफडीए की कार्रवाई, गायत्री मेवाड़ प्राइवेट लिमिटेड का एफएसएससीआई लाइसेंस सस्पेंड। अलीगढ़ के मलखान सिंह चिकित्सालय में खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। खाने में गुणवत्ता खराब पाए जाने के बाद कैंटीन को सील कर दिया गया। हापुड़ में मिलावटी मावे पर बड़ी कार्रवाई, एनसीआर में सप्लाई से पहले 700 किलो नकली मावा पकड़ा गया। कर्नाटक में पनीर के नाम पर बिकने वाले नॉन डेयरी पनीर पर 1 साल की रोक 17 अगस्त से लागू हो गई। चंडीगढ़ में मांगे पूरी न होने पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के आवास के बाहर ईटीटी शिक्षकों का प्रदर्शन जमकर नारेबाजी। चंडीगढ़ में अपने विभिन्न मांगों जैसे वेतन और पद के विवाद और बहाली को लेकर शिक्षक कर रहे हैं प्रदर्शन। सीएम योगी ने चीनी उपलब्धता को लेकर समीक्षा की। चीनी मिलों में कुल 179.38 क्विंटल चीनी की उपलब्धता है और चीनी कालाबाजारियों पर कार्रवाई भी होगी। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान, 48 लाख किसानों को बांटे गए हैं 3,217 करोड़। सरकार ने किया बड़ा दावा, चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण कम उत्पादन है, इथेनॉल नहीं है। खड़गे ने उठाए 3 सवाल, लिखा कि मोदी सरकार की नीतियों से चीनी महंगे, देश में 9 साल के निचले स्तर पर स्टॉक आए। महाराष्ट्र के बाशे में चीनी के बाद अब गुड़ भी महंगा हो गया, 80 रुपए किलो तक दाम पहुंच गए। योगी सरकार 52 नेताओं को देगी बुलेट प्रूफ जैकेट, अखिलेश यादव, स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी शामिल। जापानी मेहमानों का वाराणसी का दौरा, जापानी प्रतिनिधिमंडल आज काशी के संस्कृति और आध्यात्मिकता से रूबरू होंगे।
मायावती का अखिलेश यादव पर हमला, कहा कि चवन्नी से रुपया बना देना ये कहना अमर्यादित है, अशोभनीय है। अखिलेश को आरएलडी नेता और जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। मायावती का अखिलेश यादव पर तीखा हमला, बोले कि समाजवादी पार्टी की संकीर्ण और जातिवादी राजनीति से सावधान रहे। कृष्णा प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, कहा कि अखिलेश यादव को जयंत चौधरी से माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव पर कृष्णा प्रसाद मौर्य का निशाना, कहा कि बीजेपी के साथ हैं अगड़ा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी। लखनऊ में जैन सी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। यूपी के कन्नौज में डीजे विवाद पर कांवड़िया पुलिस में झड़प के बाद बैकफुट पर आया प्रशासन, एडीएम ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, मौके पर ही एसएचओ सस्पेंड कर दिए। संभल हिंसा में दुबई में बैठे शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, भारत लाने की कार्रवाई तेज। गोरखपुर में लैंडिंग के दौरान तेल इंपैक्ट के बाद इंडिगो विमान करवा गया लैंड, अब जांच जारी है। निचली अदालतों में जज बनने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वकालत के अनुभव को 3 साल से घटाकर 1 साल किया, युवा वकीलों ने फैसले का किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान समारोह पहल के तहत आयोजित 3 दिन के स्पेशल लोक अदालत के पहले दिन 400 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया, विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना मकसद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने सोशल मीडिया को लेकर जारी किए निर्देश, विधानसभा और सचिवालय से जुड़ी भ्रामक सामग्री पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। अधिकारियों कर्मचारियों और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट पर भी नजर, बिना पुष्टि के पोस्ट या टिप्पणी पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। महाराष्ट्र में अब पुलिस फोर्स के साथ रह सकेंगे रिटायर हो चुके पुलिस डॉग्स, महाराष्ट्र सरकार ने दी मंजूरी, गृह विभाग उठाएगा खर्च। बारिश और बादलों के बीच में दिल्ली एनसीआर की सुबह झमाझम बारिश के साथ गर्मी से मिली राहत। सुबह सुबह बारिश की फुहार से उमस से राहत है, कई जगहों पर ट्रैफिक रफ्तार धीमी पड़ी दिखी। नोएडा गाजियाबाद गुरुग्राम में भी मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा में भी सुधार, एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली एनसीआर समेत देश के 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, के इलाकों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी। 24 अगस्त तक हिमालय से लेकर मध्य पूर्व तक फुल स्पीड में दिखेगा मानसून, आंधी और तेज हवाओं के साथ बारिश, सतर्क रहने की अपील भी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पंजाब में मौसम रहेगा कूल, और मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। लखनऊ में झमाझम बारिश, गर्मी उमस से लोगों को मिली राहत। यूपी के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा में मानसून दिखाएगा अपने रंग। दिल्ली में H1N1 और फ्लू को लेकर सतर्कता, दिल्ली सरकार ने बैठक भी की है और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। 12 घंटे की बारिश में डूबा रेवा, देवदूत बनी एसडीआरएफ की टीम, 1000 से ज्यादा लोगों की बचाई गई जान। तमिलनाडु के तिरुवोट्टियूर में हादसा हुआ, सीवर निर्माण के दौरान रेत में दबकर 37 साल के मजदूर की मौत। करनाल में मंदिरों में चोरी करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार, 4 किलो चांदी के मुकुट और नकदी भी बरामद। उज्जैन महाकाल मंदिर के पास बेगमबाग में 10 से ज्यादा अवैध व्यावसायिक ढांचों पर बुलडोजर कार्रवाई। जयपुर में तेज रफ्तार थार का गैर स्कूटी सवार बुजुर्ग को उड़ाया, 50 मीटर तक घसीटा गया। नोएडा में काम करने वाले आईटी इंजीनियर की पीट पीट कर हत्या, ससुराल पक्ष के 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मोदी नगर में दिन दहाड़े महिला के कान से झूम के छीने गए 2 बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। लखनऊ में बारिश के बाद जल भरा पार्क रोड पर, एमएलए आवासों के बाहर पानी भर गया। फरीदकोट में एक शातिर चोर ने महज 1.5 मिनट में 1.5 लाख रुपए उड़ाए, वारदात सीसीटीवी में कैद। हमीरपुर में अपनी ही बनाई गई मिठाई खाने से दुकानदार ने कर दिया इनकार, एसडीएम ने उठवाकर नष्ट करवा दी सारी मिठाई। रामगढ़ में फैक्ट्री के कंट्रोल रूम में भीषण आग, 3 इंजीनियरों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। इटावा में डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी एनकाउंटर के बाद हुआ गिरफ्तार, पत्नी सास की हत्या की थी। दिल्ली के हॉस्टल में 19 साल की नर्सिंग छात्रा ने खुदकुशी की और मामले की जांच कर रही पुलिस। ओडिशा के बोलंगीर में मानव बलि के शक में 40 साल के व्यक्ति की हत्या, 5 लोग गिरफ्तार। रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ, 3 युवकों की मौत, 6 लोग घायल, एक के बाद एक 4 मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। मंडी में स्कूटी समेत अनियंत्रित
थार, खेतों में पलट गए 8 ट्रेनी डॉक्टर इसमें घायल। छोटा उदयपुर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली महिला टीचर से नोडल अधिकारी का चार्ज वापस लिया गया, मामले पर उठे सवाल। नागपुर में तेज रफ्तार कार ने 5 साल की बच्ची को कुचल दिया, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से दिल दहला देने वाली घटना, बेटे के आईफोन दिलाने के जिद ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली। पिता की डांट से नाराज होकर बेटा सुसाइड करने के इरादे से पहाड़ पर पहुंचा था, उसे बचाने की कोशिश में पिता पहाड़ से नीचे गिरा, सदमे में मां ने भी छलांग लगा दी। कल कोलंबो में खेला जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच, इस मैच का इंतजार है और नए रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। 2 मैचों की सीरीज में भारत को पहले ही 1-0 से बढ़त है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल में 53.33 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर है टीम इंडिया। इस मैच में भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरे कर सकते हैं टेस्ट में 3000 रन और इस कीर्तिमान से महज 7 रन की दूरी पर है गिल, फिलहाल उनके नाम 2993 रन। और इसके अलावा टेस्ट में 50 छक्के भी पूरे कर सकते हैं गिल, कोलंबो में 3 छक्के लगाते ही ये उपलब्धि हासिल कर लेंगे, अभी 47 सिक्स है। टेस्ट में 400 चौके पूरे करने से महज 1 कदम दूर रविंद्र जडेजा, अभी उनके नाम है 399 चौके, साथ ही 49 कैच ले चुके हैं जडेजा और 1 कैच लेते ही टेस्ट मैचों में 50 कैच करेंगे पूरा। नीरज चोपड़ा ने लॉजेन डायमंड लीग में जैवलिन थ्रो में 88.05 मीटर के साथ दूसरा स्थान किया हासिल, श्रीलंका के रुमेश पाथिरागे ने खिताब जीता है। नीरज ने दूसरे प्रयास में पिछले साल का बेहतर थ्रो किया है और ये उनके इस सीजन का सबसे अच्छा थ्रो भी रहा। सिनेमा घरों के बाद ओटीटी पर दस्तक दे रही फिल्म वेलकम टू द जंगल जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी, अक्षय कुमार, जैकलीन, रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, अरशद वासी समेत 30 से ज्यादा सितारों से सजी ये फिल्म। जैकी श्रॉफ की फिल्म द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो भी अब ओटीटी पर होगी उपलब्ध और आज से Zee5 पर स्ट्रीम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और सुपरस्टार विजय की सबसे चर्चित फिल्म जननायक का ओटीटी पर भी स्ट्रीमिंग को तैयार है, आज से Zee5 पर उपलब्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी क्रीवी रिह शॉपिंग सेंटर में हुए हमले का कायरतापूर्ण उन्होंने बताते हुए निंदा की, कहा कि वो जानवर है, बदला लिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान सही डील करने के लिए तैयार है, वॉशिंगटन इस टकराव में क्या होता है उस पर नजर रख रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी लागू करने की कोशिशों के तहत अमेरिकी सेना ने 68 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदला। ईरान की नौसेना के कमांडर शहरम ईरामी ने होर्मुज स्ट्रेट पर तेहरान के कंट्रोल का दावा किया, कहा कि ईरानी सेना जल्द ही दुश्मन समुद्र में दुश्मन को बहुत बड़ा झटका देंगे। ईरान की अर्थव्यवस्था को तबाह करने की धमकी पर विदेश मंत्री अराक्ची ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की ओर से दी गई जबरदस्त आर्थिक कार्रवाई की धमकी का हश्र भी वही होगा। अमेरिका और कनाडा में ट्रेड डील पर जारी बातचीत के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि कनाडा अमेरिका के साथ ट्रेड डील करेगा, डील न होने पर ट्रंप ने कनाडा से आने वाले कई सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में होने वाली ग्रोथ देश के बढ़ते राष्ट्रीय खर्च को संभाल लेगी, अमेरिका का कुल खर्च पहली बार $40 trillion के पार। अमेरिकी न्याय विभाग और टिकटॉक के बीच में $400 million का समझौता, यह समझौता उन आरोपों को सुलझाने के लिए हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने अमीर देशों से कोलंबिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए $148 million दान देने की अपील की, कहा कि इस पैसे से 6,71,000 लोगों को स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा भी मुहैया करवाई जाएगी। नवार के नॉर्थ ईस्ट इलाके में तेज बारिश और हवाओं के साथ तूफान लॉन्ग आइलैंड के एक बीच को पूरी तरह से प्रभावित किया है।

0: और अब आपको बड़ी खबर देते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया। अब आरोप यह है कि घर के अंदर ही ससुराल पक्ष के लोगों ने विनय कुमार गुप्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह की है। मृतक विनय के ससुराल पक्ष के 6 लोग उसके घर पर पहुंचे थे। आरोप है कि विनय की मां जब पानी और नाश्ता लेने कमरे से बाहर गए, तभी उनके बेटे के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी पहुंचे और गंभीर हालत में विनय को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने विनय को मृत घोषित कर दिया। अब मामले की सूचना मिलते ही निहाल विहार थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने ससुराल पक्ष के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों ने घरेलू विवाद को हत्या की वजह बताया। हालांकि पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की पूरी तस्वीर साफ होगी।
1: हम मौसी से बात करते हैं क्योंकि वही लेकर के गई थी। आप थी घर में?
2: मैं जब वो उसको नीचे लेके आ रहे थे ना तब आई थी। सीढ़ियों में था वो, कोई उसको ऐसे कंधे में डाले हुए था, फिर उसको लाके इधर बाहर लेटा दिया। उसके बाद वो कह रहा मौसी मेरे को लेटा दो। फिर उसके मौसा, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों गाड़ी में उसको लेकर गए। रास्ते में वो बहुत झटपट आ रहा था, कह रहा मौसी मेरे को दिख नहीं रहा ऐसे आंखों के आगे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बाबू, अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं उसके हाथ मसलने लग गई क्योंकि ठंडे हाथ हो रहे थे उसके। धीरे धीरे वो एकदम शांत हो गया। मेरा बेटा का बोल रहा मम्मी बेहोश हो गया भैया शायद। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर के जा रहे हैं, ठीक हो जाए। डॉक्टर के पहुंचे तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया, देखते ही मना कर दिया। छोटा सा ना वो, इतना हमारा वही सहारा था हमारा, उसको आप सजा दिलवा दो।
0: दिल्ली के मंगोलपुरी में भी चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आपसी रंजिश में गुट ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया और तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई है, कैमरे में कैद हुई है। चाकूबाजी के बाद यह आरोपी फरार हो गया और वीडियो में कुछ लोग चाकू और डंडे लेकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, कितनी सेफ है देश की राजधानी दिल्ली, कितनी सेफ है यहां पर रहने वाले लोग, वो आप इस तस्वीर को देखिए। और कानून व्यवस्था की ताली बजाने वालों को भी यह तस्वीर देखनी चाहिए कि यह रियलिटी है देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर समृद्ध हर तरह का वर्ग रहता है, लेकिन वो कितने सुरक्षित है। हाथों में चाकू लिए हुए फिर रहे हैं, हाथों में डंडे लिए हुए फिर रहे हैं और चाकू बरसाए जा रहे हैं, चाकू घोपा जा रहा है। ये सब देश की राजधानी दिल्ली में, ये मंगोलपुरी इलाके में हुआ है। पुलिस कहां है? पुलिस का खौफ कहां है? पुलिस का डर कहां है? लॉ एंड ऑर्डर का डर कहां है? दूर दूर तक नहीं। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये गलियों में दौड़ते फिरते और दोपहर में, ऐसा भी नहीं कि रात का अंधेरा हो। ये आप ये तस्वीरें देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी उस गली में, बुजुर्ग भी उस गली में दिखाई दे रहे हैं और ये हाथों में डंडा और चाकू लिए हुए मारपीट करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। चाकूबाजी की गई है, आपसी रंजिश का मामला था। एक गुट ने दूसरे गुट पर चाकू से हमला कर दिया। अब आपको कन्नौज की घटना बताते हैं। कन्नौज में डीजे को लेकर कांवड़ियों और पुलिस के बीच में ऐसा विवाद हुआ है कि मामला हाथापाई से लेकर फिर माफी और कोतवाल के इस्तीफे के ऐलान तक पहुंच गया। शुक्रवार देर रात हरदोई के बेलग्राम से कांवड़ियों का जत्था कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा था। इस दौरान शहर के अंदर डीजे ले जाने को लेकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इसी बात पर कांवड़िया भड़क गए। पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हुई। इसके बाद कांवड़ियों ने सड़क पर बैठकर धरना दिया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, मामला बढ़ा, पुलिस सी बैकफुट पर आई, प्रशासन बैकफुट पर आया। एडीएम देवेंद्र सिंह ने कांवड़ियों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। एसएचओ को मौके पर ही सस्पेंड करने का ऐलान किया गया, जबकि कांवड़ियों से अभद्र व्यवहार के आरोपों के बीच कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी मैदान में ही नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद डीजे को शहर के अंदर जाने की भी अनुमति दी गई। कांवड़ियों ने अपना विरोध खत्म कर दिया। मौके पर डीएम और एसपी भी पहुंचे और आयोजकों से बातचीत की।
3: अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर। लेकिन मेरी बात सुनिए, और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
4: नहीं, आप सनातनी
3: दूसरी
4: तो सामने है
5: भाई साहब, हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं।
4: खिलाफ
5: बहुत हो गया, 30 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है। एक मिनट भाई साहब, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ आपके हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवर लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवर लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवर वापस लेके आए।
6: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है वहाँ,
5: भाई साहब ऐसे जूतों से स्वागत।
7: लेकिन कुछ लोग, एक दो लोग,
0: अब आप सोचेंगे कांवड़ का डीजे से क्या लेना, भक्ति का तेज आवाज से क्या ले देना, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ही बैकफुट पर आया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जयपुर की, जहां पर सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में एफआईआर हुई है। जयपुर के शिवदासपुर थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ ही और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। गांव वालों का कहना है कि जबरिया सीजेपी के लोग इस गांव में घुसे और मारपीट की गई, जबकि सीजेपी नेताओं का कहना है कि उनके ऊपर हमला किया गया। ये वो तस्वीरें कल की हैं जब ये हमला हुआ है, जब सीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। जयपुर के जिस स्कूल को लेकर ये सारा हंगामा बरपा है, वहां से हमारे संवाददाता शरद कुमार ने एक रिपोर्ट भेजी है। क्या माहौल है वहां पर, रियलिटी क्या है? जयपुर के रामपुरा का वो स्कूल है कैसा जिसे लेकर इतना हंगामा है, जो आपको देखनी ही चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है?
8: राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामपुर कवरपुरा, जयपुर के इस सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इमारत कभी भी धस सकती है।
9: ये देखिए, ये रस्सी लगाकर स्कूल को पैक किया गया, इसलिए ये कभी भी ध्वस्त हो सकता है। हम सब स्वच्छ भारत, एक ही सपना, भविष्य हो अपना, ये सब लिखा हुआ है। और ये राजकीय विद्यालय रामपुरा है, ये जो है आप देख रहे हैं, ये रस्सी है यहाँ पर, और इस रस्सी के जरिए यहाँ पर से रोका गया है। ये कि बिल्कुल अंदर से दिखाइए एक बार, ये जर्जर हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, जिसकी वजह से स्कूल को बंद करके तबेले में शिफ्ट किया गया। इनका कहना था कि हमने दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया था, वो 3 किलोमीटर दूर था। गांव वालों ने कहा कि हमारे गांव में व्यवस्था कीजिए, और उन्होंने ये पोस्टर भी लगा रखा है सीजेपी कार्यकर्ताओं से आने से पहले। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जयपुर यहाँ से बगरू में 85 लाख रुपए के ये कामकाज हमने कराए हैं। विधायक बीजेपी ने इस जीर्ण शीर्ण स्कूल पे ऊपर पोस्टर लगा रखा है। ये बहुत सारे महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं, इनके बच्चे तो जाते होंगे स्कूल में। आप लोग यहीं रहते हैं गांव में?
10: गांव में रहे हो सब।
9: तो गांव के स्कूल की स्थिति आप देख रहे हैं?
10: देख रहे थे, टूट रही चने, पड़ रही चने।
9: तो इसको तो बननी चाहिए,
10: बहुंडी खोल मिला बाड़ा में,
9: बाड़ा में खोल रखा है।
10: हाँ, अंडा बनावला जितना उंडी पटो।
8: जब आज तक की टीम सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत के पास तबेले में चल रहे विद्यालय की रिपोर्ट करने पहुंची, तो वहां जिला शिक्षा अधिकारी आ चुके थे। उनसे आज तक का सीधा सवाल,
9: ये बताइए इस तबेले से मुक्ति कब मिलेगी?
11: ये अजी तबेला नहीं, आप फिर बोले, आप तबेला तबेला बोले जा रहे हो। ये अपने ये व्यवस्था कर दी कि पास में जो भी कोई सुरक्षित जगह है वहाँ पर बच्चों को शिफ्ट कर दे सुरक्षा के लिए। यानी सबसे पहले सेफ्टी है बच्चे की, बच्चे की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए।
9: लोग तो कहेंगे 2.5 साल से कर,
11: कौन कह रहा है?
9: जो इसका मालिक है।
11: अब मालिक तो कुछ भी कहते, सब 2.5 साल कहाँ होगी, जब जर्जरी आपने 1 साल पहले किया है तो 2.5 साल कैसे हो जाएंगे भाई साहब?
9: तो कब इनको बेहतर जगह?
11: बहुत जल्दी हो जाएगा। 1000 करोड़ का प्रस्ताव पूरे राजस्थान का भेजा हुआ है सर सेंट्रल केंद्र में, और जल्दी वो पैसा आने वाला है।
9: अच्छा ही बताइए, यहाँ गांव वालों को बताया गया है कि 14 अगस्त को 18 लाख रुपए डीएमएफटी फंड से आ गया है, और आप कह रहे हैं भारत सरकार से आएगा।
11: डीएमएफटी अलग फंड होता है, डीएमएफटी तो अपने कलेक्टर के पास होता है। उसमें क्या होता है कि एमएलए को एक अधिकार होता है, विधायक महोदय को, विधायक महोदय अपने अपने क्षेत्र में काम करवा सकते हैं।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।

0: Papa.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया
1: है।
3: हां ओ ला भाई मेरा बैट,
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: बेटा चार्ज हुआ यार।
5: ओला बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: 今や、レッツゴー。 The new BE6 Sportec。The new BE6 Sportec。
1: In association with Hint, एक हिंट तो देते।
2: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
1: विमल बोलो जुबां केसरी।
3: B.R. अंबेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
4: अगर अंबेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट अलग स्टेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही दलितिस्तान भी बनता।
5: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी है।
6: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
5: आपको कितने लगेंगे?
7: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
8: If you've got a solution, we're listening. And our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that.
7: Ab milkar hawa badlenge.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा।

0: आज शाम बीजेपी की नई टीम से मिलेंगे पीएम मोदी। नितिन नवीन के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक। वंदे मातरम पर प्रस्ताव, कांग्रेस की कड़ी निंदा। जेन जी जेन अल्फा से संवाद पर जोर। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज। कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयू आईबीपी कार्यकर्ता। आज के प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें। ड्रोन पर रोक, एबीवीपी ने रखा वंदे मातरम का गायन। अखिलेश के जवानी वाले बैन पर यूपी में सियासत तेज। मायावती बोले, जयंत चौधरी से मांगे माफी। केशव मौर्य भी भड़के, अखिलेश बोले सच भी बोलना गलत हो गया। त्योहारों से पहले चीनी पर तीखी सियासत। खड़गे ने महंगाई पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। योगी ने जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए। और टीम सीजेपी की पिटाई पर छिड़ी एफआईआर की जंग। सीजेपी ने गांव वालों पर तो गांव वालों ने सीजेपी पर मारपीट का करवाया केस। विवाद के बाद तबेले से शिफ्ट हुआ स्कूल। और अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पार्टी के नए पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। पार्टी मुख्यालय में ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के नए पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आज शाम बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात का प्रोग्राम है और ये मुलाकात होनी है। पीएम मोदी जो नई जिम्मेदारियां सौंपी गए हैं उनके साथ संवाद करेंगे। नितिन नवीन की भी पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को मुलाकात करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अपनी नवनियुक्त टीम के साथ एक बैठक जारी है और तीन चरणों में ये अहम बैठक हो रही है। तो ये बड़ी खबर, आज तीन चरणों में बैठक है जिसका पहला चरण तो दोपहर 12 बजे तक चला जिसमें नए पदाधिकारियों का परिचय हुआ। नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक में वंदे मातरम और जेन जी पर खास चर्चा हुई। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी ने आज बड़ा सियासी दांव भी चला। बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक में वंदे मातरम के सम्मान और इसके ऐतिहासिक विरासत की रक्षा को लेकर अहम प्रस्ताव पास किया गया। बीजेपी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के उस फैसले का भी कड़ा विरोध किया है जिसमें 19 अगस्त 2026 को 1937 के प्रस्ताव को दोहराते हुए कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम के सिर्फ पहले दो अंतरों के गायन की बात कही गई थी। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, मां भारती के प्रति समर्पण, स्वतंत्रता संग्राम का मंत्र और राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक है। बीजेपी ने ऐलान किया कि वो पूरे वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा और विरासत की रक्षा करेगी। अब बीजेपी ने देश भर में वंदे मातरम को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का फैसला किया है। खासतौर पर युवाओं के बीच में इसके इतिहास, अर्थ और राष्ट्रीय महत्व को पहुंचाने की बात कही है।
1: जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था। मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की, बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे।
0: पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज। कार्यक्रम से पहले सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। जिस वक्त पुणे में राहुल गांधी का कार्यक्रम होना है उसी दौरान एबीवीपी ने भी बड़ा ऐलान किया है। उसी दौरान एबीवीपी ने पुणे में वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा। ऐसे में पुणे के कार्यक्रम से पहले सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। अब आज राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को संबोधित राहुल गांधी करेंगे और खास बात यह है कि पुणे का छात्रों का एक कार्यक्रम यानी कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम छात्राओं को डेडिकेट किया गया। राहुल के कार्यक्रम की तैयारियां भी की गई हैं।
2: गर्ल्स गट्स एंड ग्लोरीज, छात्रों की गूंज पुणे में हो रहा है 24 घंटे के भीतर। दिल्ली से राहुल गांधी अब एक अलग अभियान यहां पर छेड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये चौथी कड़ी है क्योंकि कोटा से शुरू हुई ये शुरुआत, कोटा, प्रयागराज, देहरादून और अब यहां पे पुणे में हो रही है। अपने आप में ये वो वक्त है जब बीजेपी शासित राज्यों में राहुल गांधी युवाओं की आउटरीच कर रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम अलग है। बैकग्राउंड पिंक है और सिर्फ महिला छात्राएं इस आयोजन में हिस्सा लेंगी। उससे पहले सियासी विवाद भी छिड़ गया है, तमाम जो वंदे मातरम को लेके एबीवीपी के छात्र उसी वक्त जब राहुल गांधी यहां पे होंगे इस ग्राउंड में उसी वक्त राहुल गांधी एबीवीपी के छात्र वंदे मातरम गा रहे होंगे पुणे यूनिवर्सिटी में। तो एक तरफ एनएसयूआई वर्सेस एबीवीपी में बवाल जो छिड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, उस पर देर रात आमने सामने दोनों आउटफिट्स नजर आए और एनएसयूआई पर एफआईआर भी हुई है। जाहिर है राहुल गांधी इन सब मसलों को कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे, तमाम छात्राएं भी होंगी और एक तरीके से ये दिखाने और बताने की कोशिश है कि राहुल गांधी छात्राओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के मुद्दों के साथ खड़े हैं। और सवाल सियासी नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिर आज भी महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों माना जाता है, छात्राओं के क्या मसले हैं और क्या वो खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। इसके साथ ही ये जताने की कोशिश है कि राहुल गांधी महिलाओं के मुद्दों को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर संवेदनशील है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मौसमी सिंह, पुणे आज तक।
0: हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए हैं। मौसमी, इससे पहले भी राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया है, लेकिन पुणे में होने वाला छात्रों की गूंज पहले के छात्रों की गूंज से क्या अलग होने वाला है, उसमें क्या अलग होगा और तैयारियां क्या हैं दूसरी तरफ एबीवीपी की भी?
2: जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक तरीके से हम देख रहे हैं कि तेजी पकड़ता हुआ दिख रहा है छात्रों की गूंज कार्यक्रम, और वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस को ये कॉन्फिडेंस आया है कि सिर्फ महिलाओं, महिला छात्रों के साथ वो ये पूरा प्रोग्राम कर सकती है। और बताया जा रहा है, कांग्रेस का दावा है कि 8 से 10 हजार छात्राएं जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी, जो सबसे ज्यादा गैदरिंग होगी अभी पिछले 1-2 साल में या मौजूदा सालों में। जिस तरीके से राहुल गांधी ना सिर्फ महिला छात्राओं से उनके एग्जाम और परीक्षाओं की बात करेंगे, लेकिन बात भेदभाव की भी होगी, जेंडर बायस की भी होगी। और लगातार इस अभियान को बुलंद करने के लिए पिछले 2 हफ्ते से सब कॉलेजेस में कांग्रेस के जो आउटफिट्स है वो जा रहे हैं, महिलाओं को, छात्राओं को एनरोल कर रहे हैं और तमाम कार्यक्रम गीत संगीत के भी होंगे। तो एक तरीके से एक रॉकस्टार इमेज जो आप कह सकते हैं राहुल गांधी की पेश करने की कोशिश, एक जेंजी से कनेक्ट वाली इमेज राहुल गांधी की पेश करने की कोशिश। आप देखिए कि उसमें पिंक शर्ट में राहुल गांधी पिछले प्रयागराज के कार्यक्रम में नजर आए थे और इस चौथी कड़ी में भी कुछ नया करने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। और रॉक बैंड्स भी आएंगे, गाना भी होगा और कविताएं भी होंगी, रैप सॉन्ग भी होगा। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं वो आउटरीच है वुमेन स्टूडेंट्स के साथ।
0: जी मौसमी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर सियासी तनाव के बीच में पुणे में होने वाले राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी सवाल उठाए।
3: छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितने कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना इस प्रकार का आदेश दिया गया है, उनका ही रजिस्ट्रेशन करके उनको ही वहां पर एंट्री मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये कार्यक्रम होने वाला है।
0: खबर में आगे बढ़ते हैं। इशारों में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर चवन्नी वाले अखिलेश यादव की टिप्पणी की सियासी जो सूरत बदलते जा रहे हैं, स्थिति से बवाल बढ़ता जा रहा है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बहाने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की कि चौधरी चरण सिंह का भी इसे उन्होंने अपमान बताया, साथ ही जयंत चौधरी से माफी मांगने की भी मांग। तो अखिलेश यादव की टिप्पणी थी और जो 5400 रुपया बना दिया गया ये टिप्पणी थी, उसके बाद से ही जो अखिलेश यादव है उनको घिरा जा रहा है। बीजेपी भी घिर रही है, एनडीए तो घिर ही रही है, मायावती भी घिरती दिखाई थी। और ये केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया है कि नेताओं की कमाई सपा बहादुर ने गवाई। ये 16 अन्य सच है, लेकिन इस छटपटाहट ने सपा बहादुर अखिलेश यादव का मनोबल ऐसा तोड़ा है कि अपनी जुबान से अगड़ा अगड़ा पिछड़ा और दलितों में किसी पर भी लाठी चला देते हैं। और अब केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। ये कृष्ण प्रसाद मौर्य का पोस्ट है। फिर वो आगे लिखते हैं कि सपा बहादुर को जयंत चौधरी से माफी मांगनी चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या टिप्पणी की थी जिस पर ये उत्तर प्रदेश में सियासी कोहराम छिड़ा है।
4: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 5400 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 5400 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हमलों के बाद से अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को अपने सहयोगी दलों को ज्यादा से ज्यादा सीटें देनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि कम सीटें देना चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह का अपमान होगा।
5: आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी है तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई, 30 की 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देते तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।
6: अखिलेश यादव जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद
7: किसी का पता ना आता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है।
8: जाट समाज को लेकर
7: नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
0: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के 54 वाले बयान के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती भी आरएलडी प्रमुख चौधरी जयंत चौधरी के समर्थन में आए हैं। मायावती ने कहा कि ऐसी टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव को जाट समाज से माफी मांगनी चाहिए। तो ये मायावती का पोस्ट है जिसमें वो जाट समाज से माफी मांगने की बात कर रही हैं। अखिलेश यादव को तो माफी मांगनी चाहिए, ये बीएसपी अध्यक्षा का पोस्ट है। और अब जयपुर से बड़ी खबर आपको देते हैं। सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में एफआईआर हुई है और जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ, और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। गांव वालों का कहना है कि जब यहां गांव में घुसे सीजेपी के लोग मारपीट की, जबकि सीजेपी नेताओं का कहना है कि उनके ऊपर हमला किया। ये घटना कल की है जहां सीजेपी नेताओं ने कैंपेन शुरू किया। उनके इस कैंपेन पर सवाल उठ रहे हैं कि वो बिना अनुमति के किसने उनको अथॉरिटी दी कि वो स्कूलों में जाएं और निरीक्षण करें, और यहां जब जयपुर के इस गांव में वो पहुंचना चाह रहे थे तो स्थानीय लोगों ने ही उनका विरोध कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि वो बीजेपी के लोग थे। बहरहाल गांव वाले भी एफआईआर करने के लिए आ गए, उन्होंने भी इनके खिलाफ एफआईआर कर दी और सीजेपी ने भी गांव वालों के खिलाफ।
9: ग्रामीण एक तरह से कहे कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में।
10: जयपुर में सीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला,
9: राका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी, गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं।
10: सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आई कॉकरोच जनता पार्टी की टीम को लात घूंसों से पीटा, किसी को पत्थरों से मारा, किसी पर लात घूंसे बरसाए।
9: देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं।
10: आखिर स्कूल के निरीक्षण से इतना गुस्सा क्यों है? अगर सीजेपी वाले स्कूल में पहुंच जाते, जांच पड़ताल कर लेते तो स्कूल या गांव वालों का क्या नुकसान हो जाता? सरकारी स्कूलों की हालत खराब है तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? स्कूल वर्ल्ड क्लास है तो निरीक्षण करने आए वॉलंटियर्स पर इस तरह जानलेवा हमला क्यों? पहले तस्वीरों को सीक्वेंस में देखिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर और जयपुर के रामपुरा गांव का ये प्राथमिक विद्यालय, इसी स्कूल की जांच पड़ताल के लिए कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कार्यकर्ता गांव में पहुंचे थे। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की अगुवाई में युवाओं का ये ग्रुप गांव में घुसा तो गांव वाले भी पहले से तैयार बैठे थे। गांव के लोगों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इसी में तू तू मैं हो गई। पहले गांव वाले सीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से उलझे और फिर गाली गलौज हुई।
9: दूसरी तरफ आशुतोष और रांका सहित पूरी टीम यहां पर मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ यहां पर आमने सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, लोग इनको भगा रहे हैं, आशुतोष रांका के साथ महिला कार्यकर्ता भी है, लेकिन यहां पर ग्रामीण एक तरह से कहे कि उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में और इनको यहाँ पर कार्यकर्ताओं को आशुतोष रांका के साथ ये मारपीट की तस्वीर आपको दिख रही होगी, गांव वाले उनको धक्का दे रहे हैं। ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है जो कि रामपुरा की है और रामपुरा में यहाँ पर ये देखिए लात घूंसों से इनकी पिटाई की जा रही है। ये देखिए एक एक की पिटाई कर रहे हैं, यहाँ पर गांव वाले पीछे भाग रहे हैं
11: और ये देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीरें देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ हाथ भी गिर चुका है।
10: गांव वाले सीजेपी कार्यकर्ताओं से उलझ गए, पहले धक्का मुक्की और फिर हमला कर दिया। सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा, हाथ में ईंट पत्थर रस्सी बेल्ट जो आया उसी से निहत्ते युवाओं पर ग्रामीण टूट पड़े। अचानक हुए हमले से सीजेपी वॉलंटियर संभल भी नहीं पाए। स्थिति ये हो गई कि कुछ कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटक के मारा गया। जिन गाड़ियों से सीजेपी के लोग

0: लोग गांव में घुसे थे, उन गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। भागते हुए कार्यकर्ताओं को गांव वालों ने पीछा करके पीटा। जो भी उनकी पकड़ में आया उसे इतना पीटा कि किसी का हाथ टूट गया, किसी के सिर में चोट लगी तो किसी के कपड़े फट गए। सवाल यह है कि स्कूल का निरीक्षण रोकने के लिए ग्रामीण इतने गुस्से में क्यों आ गए? गांव के सरकारी स्कूलों की हालत सुधरे, सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इससे भला किसी गांव या समाज को क्या दिक्कत हो सकती है? शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: अब रुकने शोर से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: सिर पर सिर ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हैं, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो।
3: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया। अब देखा जाएगा क्या होता है न्याय के।
4: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
5: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
6: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पियो आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक
4: नहीं। गुलटनिया और कलखनिया।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

घर का सपना हो या गाड़ी की चाहत, जेब पर पड़ने वाला ईएमआई का बोझ हर महीने मध्यम वर्ग की धड़कने बढ़ा देता है। रेपो रेट कम होने के बाद लोन के किस्तें कम होने का इंतजार महीनों तक चलता रहता है। हालांकि बैंक जितनी तेजी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने में करते हैं, उसी स्पीड से ब्याज दरों को घटाते नहीं है। लेकिन अब उम्मीद है कि रेपो रेट घटने के चंद महीनों में ही ईएमआई कम होने की राहत देने का सिस्टम जल्द लागू हो सकता है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नया नियम लाने जा रहा है, जिससे ब्याज दरों में कटौती का फायदा आम आदमी को जल्द मिलेगा। आरबीआई के ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक फ्लोटिंग रेट लोन का बेंचमार्क हर 3 महीने में अपडेट करना जरूरी होगा। फिलहाल पुराने MCLR लोन में रेट रिसेट का समय 6 महीने से 1 साल तक का है। राहत देने वाले इस नए फ्रेमवर्क को 1 अप्रैल 2027 से लागू करने की योजना है और पुराने लोन को 1 अप्रैल 2029 तक बिना एक्स्ट्रा चार्ज नए सिस्टम में शिफ्ट किया जाएगा। नए नियम का सीधा मकसद मॉनेटरी पॉलिसी का फायदा ग्राहकों तक तेजी से पहुंचाना है। इस बदलाव से आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 50 लाख रुपए के 20 साल वाले लोन पर अगर ब्याज दर 8.5% से घटकर 8.25% होती है, तो हर महीने की ईएमआई करीब 43,391 रुपए से घटकर 42,603 रुपए रह जाएगी, जिससे हर महीने करीब 788 रुपए की बचत होगी और साल में लगभग 9,500 रुपए बचेंगे। बैंकों में अलग अलग लोन सिस्टम के उलझन को खत्म करने के लिए आरबीआई ने ये गाइडलाइंस तैयार की है। नए नियमों में फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों तरह के लोन के लिए गाइडलाइंस तय की गई हैं। इसमें बैंकों को ब्याज दर तय करने के लिए साफ पॉलिसी बनानी होगी, जिससे क्रेडिट रिस्क और ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे कंपोनेंट्स 3 साल से पहले नहीं बदले जा सकेंगे। वहीं ब्याज की गणना डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के आधार पर महीने के हिसाब से होगी और 50,000 रुपए तक के स्मॉल वैल्यू लोन पर सालाना ब्याज दर की एक सीमा तय की जाएगी। अगर किसी बैंक का विलय या अधिग्रहण होता है तो भी ग्राहकों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। नया बैंक एग्रीमेंट बदलते समय ब्याज दर को मर्जर से पहले वाले रेट से ऊपर नहीं ले जाया जा सकता। आरबीआई ने इस ड्राफ्ट पर 11 सितंबर 2026 तक जनता और एक्सपर्ट्स से सुझाव मांगे हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद लोन लेने वाले को बैंकों के मौजूदा रवैये से बड़ी राहत मिलेगी। आदित्य केराणा, आज तक।

आज शाम बीजेपी की नई टीम से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नितिन नवीन की पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक। वंदे मातरम पर प्रस्ताव, कांग्रेस की कड़ी निंदा। और जेंजी और अल्फा से भी संवाद पर जोर। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज। कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता। आज के प्रोग्राम के लिए 30 शर्तें रखी गई, ड्रोन पर भी लगी है रोक। एबीवीपी ने रखे वंदे मातरम के गायन। अखिलेश यादव के 54 वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज। मायावती बोली, जयंत चौधरी से माफी मांगे। केशव मौर्य भी भड़के, अखिलेश यादव बोले सच भी बोलना गलत हो गया। त्योहारों से पहले चीन पर तीखी सियासत। खड़गे ने महंगाई पर सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। योगी ने जमाखोरी रोकने की दिए हैं निर्देश। टीम सीजेपी की पिटाई पर छिड़ी है एफआईआर की जंग। सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे पर दर्ज कराया है मारपीट का केस। विवादों के बाद तबेले में शिफ्ट हुआ स्कूल।

0: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पिछले 6 महीनों से ईरान और अमेरिका को युद्ध को शांत कराने की कोशिशें जारी है। हर मुल्क की नजर और कोशिशें इसी बात को लेकर है कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाली हो जाए, लेकिन तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के एक समझौते ने इस जंगी चिंगारी को और भड़का दिया है। और अब जंग की एक और रणभूमि तैयार की जा रही है, जिसमें सीधे इसराइल और तुर्की आमने सामने आ गए, लेकिन जंग की जमीन अब सीरिया ही होगी। पिछले 72 घंटों में जो खबरें मिल रही हैं, वो ये दिखा रही हैं, ये दर्शा रही हैं कि इसराइल अब अपने सातवें मोर्चा भी खोलने को तैयार है। आज रणभूमि में बात करेंगे इसी नए जंगी मोर्चे के बारे में, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि रणभूमि स्पेशल में आपके लिए क्या कुछ खास होने वाला है। आज हम आपको बताते हैं कि रणभूमि स्पेशल में आज कुछ ऐसी खबरें आपको बताएंगे जो आपको हैरान परेशान कर सकती हैं। रणभूमि स्पेशल में आज की पहली खबर, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इजराइल अब सीरिया पर हमला करने की तैयारियों में जुट चुका है। माना जा रहा है कि अगले कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में इजराइल सीरिया पर बड़ा हमला कर सकता है। रणभूमि स्पेशल में दूसरी खबर, आपको बताएंगे कि कैसे अब इजराइल सीरिया के बहाने सीधे तुर्की को निशाना बना सकता है, क्योंकि आमने सामने खड़े नेतन्याहू और अर्दोगन के बीच अब जुबानी जंग के बाद जमीनी जंग भी तैयार की जा रही है। रणभूमि स्पेशल में तीसरी खबर हम आपको बताएंगे रूस और यूक्रेन में, जहां पर विध्वंसक युद्ध की नई खबरें, नए अपडेट भी आपको बताएंगे। रणभूमि स्पेशल में हम आपको अगली खबर बताएंगे, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कैसे बढ़ गया, दोनों मुल्कों में एक दूसरे को धमकी दी। ट्रंप ने कहा है एक बार फिर से हॉर्मुज को अपना प्रांत बताया, वहीं अब ईरान के राष्ट्रपति पजिश्कियान ने भी कहा है कि किसी के आगे वो झुकने को नहीं राजामंदी होंगे। रणभूमि स्पेशल की आखिरी खबर में आपको बताएंगे कि कैसे खाड़ी समंदर में अमेरिका का नया एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज वॉशिंगटन अब पहुंच चुका है। इसके अलावा रणभूमि स्पेशल में हमारे साथ दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे सर भी हमारे साथ जुड़े होंगे। इनसे भी हम लगातार इस पूरे खबरों के बारे में विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन खबरों के पीछे की खबर क्या है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं युद्ध में एक और मोर्चे को लेकर। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध अभी शांत भी नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब इजरायली फोर्स लगातार तुर्की के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। माना जा रहा है कि सीरिया में एक और मोर्चा खुल सकता है, जिसमें तुर्की और इजरायली फोर्सेस आमने सामने लड़ेंगे। यानी अब इजरायल सातवें मोर्चे पर अपने युद्ध की तैयारियां कर चुका है और किसी भी पल इस नए युद्ध के ऐलान किया जा सकता है। आइए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: इसराइल ने खोला जंग का नया मोर्चा। दक्षिणी सीरिया में घुसी इसराइल की फौज, तुर्की को लेकर इसराइल और सीरिया आमने सामने। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने हड़कंप मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि तुर्की की यह सेना कई खतरनाक हथियारों के साथ सीरिया में अपना बेस लगातार मजबूत करती जा रही है। तुर्की से सैनिकों की टुकड़ियां सीरिया में भेजी जा रही हैं और इसराइल की सीमा तक सैन्य जमावड़ा हो चुका है। तुर्की से सीरिया जाने वाले सैन्य लाभ लश्कर की इन तस्वीरों की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन इतना तय है कि इसराइल की एक और सीमा पर जंग की आहट सुनाई देने लगी है। इधर इसराइल ने भी कमर कस ली है। वो जंग के नए मोर्चे पर अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और इसके लिए उसने अपनी स्क्वाड्रन 190 को सीरिया सीमा के करीब एयरबेस पर तैनात कर दिया है, ताकि हमले की सूरत में बिना देर गवाए पलटवार किया जा सके। ये सब कुछ महज अटकलें नहीं है। होती तो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी पुष्टि नहीं की जाती। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इससे पहले कि दुश्मन नुकसान करे, इसराइल सावधान है और अपनी सरहदों की सुरक्षा करने में सक्षम भी।
2: When your enemy tells you that he wants to destroy you, you should probably believe him. Prime Minister Netanyahu has also made something else very clear. Israel welcomes a return to the previous status quo. We are not looking for escalation. But neither Turkey nor any other country is going to threaten the state of Israel.
1: सीरियाई टीवी ने दावा किया है कि उसके अबू अल तुहूर एयरबेस के रनवे और एक स्टोरेज सेंटर पर इसराइल की ओर से 8 हवाई हमले किए गए थे, जबकि इसराइल ने सीरिया को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि वो तुर्की के सैनिकों को इस एयरबेस पर तैनात होने की इजाजत दे रहा है और इसका खामियाजा उसे हर हाल में भुगतना पड़ेगा। वैसे इसराइल ने दक्षिणी सीरिया के एक गांव अलबसारी में घुसकर तलाशी अभियान भी चलाया है। उसे शक है कि तुर्की के सैनिकों को इस पूरे इलाके में बसाया जा रहा है। उधर तुर्की ने कहा है कि वो इसराइल के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध करेगा। ईरान, लेबनान और गाजा में इसराइल की फौज पिछले काफी वक्त से युद्ध लड़ रहा है। अब सीरिया के साथ उसका टकराव विनाश का एक और मोर्चा खुलने का संकेत दे रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: आपने रिपोर्ट देखी और समझा कि आखिरकार साउथ सीरिया के इलाकों के अंदर कैसे घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर इसराइल से भी आ रही है, जहां पर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई थी। इस हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में सीरिया और तुर्की के बीच बड़ी टेंशन को लेकर चर्चाएं की गई। इस बैठक में तमाम सुरक्षा और खुफिया एजेंसी के आला अफसर भी मौजूद रहे और संभावित हमलों को लेकर IDF की कार्रवाई, उनकी तैयारियां, इसको लेकर योजनाओं पर चर्चा की गई और उम्मीद जताई गई कि इस मीटिंग के बाद नेतन्याहू सीरिया में बड़े एक्शन प्लान को मंजूरी दे सकते हैं और लगातार वहां पर अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी को लेकर भी बड़े अपडेट को लेकर उन्होंने चर्चा की है। और देखिए, एक बीच हम जहां आपको बता रहे हैं कि बड़ी बैठकें की जा रही है, वही इसराइल तुर्की की सेना पर जल्द ही बड़ा हमला कर सकते हैं और माना जा रहा है कि नाटो के आर्टिकल 5 को लेकर भी चर्चा की गई है, उसकी पॉसिबिलिटी भी देखी गई है कि कहीं ये जंग या फिर ये एक्शन आर्टिकल 5 को वॉलेट तो नहीं करते जो नाटो के हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एक नाटो मुल्क के ऊपर अटैक किया जाता है तो फिर सभी नाटो मुल्कों के ऊपर उसको अटैक माना जाएगा। लेकिन इस दौरान ये चर्चा की गई कि इसराइल ने नाटो के आर्टिकल 5 के नियमों की बारीकी से जांच की और उसके जानकारों ने इस नतीजे पर पहुंचे कि सामूहिक सुरक्षा समझौते में सीरिया में काम कर रही तुर्की की सेना पर वो लागू नहीं होता, जिससे पहले से हमला करने का रास्ता खुल जाता है। दरअसल किसी तीसरे मुल्क के अंदर अगर कोई नाटो की सेनाएं मौजूद रहती हैं, वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही होती है या फिर उनकी मौजूदगी होती है, तो उसको नाटो मुल्कों पर सीधे तौर पर अटैक नहीं माना जाएगा। इसी पॉसिबिलिटी, इन्हीं तर्कों के साथ इसराइल की इस मीटिंग में उनके विशेषज्ञ, उनकी लगातार सेनाएं आगे काम कर रही हैं। यानी एक और मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार इसराइल अभी कौन कौन से मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है या उसके ऑपरेशन चालू हैं। दरअसल आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय इसराइल की फोर्सेस कहां कहां पर मौजूद है और उनके ऑपरेशन कहां कहां चल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जंगी तैयारी, सबसे पहले बात कर लीजिए, एक तरीके से ईरान के खिलाफ लंबी जंग के लिए इसराइल बैठा हुआ है, लगातार उसके तैयारियां करता रहता है। हमने 2024 में, 25 में, 26 में हमने कई बार देखा कि ईरान को लेकर सीधे तौर पर इसराइल के प्रधानमंत्री ने साफ किया कि वो लंबी जंग लगातार ईरान के साथ लड़ते रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी जंग यानी 2023 के बाद जिस इस पूरे घटनाक्रम को बदला वो था ये गाजा पर हमले। यानी इसराइल लगातार, आप देखिए छोटा सा इसराइल है और कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई, युद्ध लड़ रहा है। सबसे पहला मोर्चा यानी दूसरा मोर्चा है हमास के खिलाफ लगातार, फिर लेबनन की सीमा पर यानी साउथ लेबनन के इलाकों में हिजबुल्लाह से लगातार अटैक कर रहा है। यानी ये तीसरा मोर्चा मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए तीन मोर्चे तो आपको बता दिए कि ईरान, लेबनान और गाजा में हमास के खिलाफ तीन मोर्चों पर लड़ाई जा रही है। लेकिन अब और मोर्चे कौन कौन से आ रहे हैं ये भी आप देखिए। शिया कम्युनिटी यानी शिया मलेशिया के खिलाफ लगातार सीरिया में लड़ाई, यानी हरे रंग का जो आप देख रहे हैं यह है सीरिया का इलाका और साउथ सीरिया के इलाकों में लगातार गोलान हाइट्स के इलाकों में या दूसरे इलाकों में जो शिया मिलिशिया है, जो यानी ईरान समर्थित मिलिशिया है, उनसे भी इस समय इसराइल लड़ रहा है। और इसके अलावा इराक के शिया मिलिशिया में आपको याद होगा कि सऊदी ने भी कई जगहों पर अटैक किए थे और इसराइल भी लगातार यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहता है। इनके खिलाफ सीधे तौर पर इराक में भी हमले करता रहता है। लेकिन छठा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है, वो है यमन में हूतियों के खिलाफ भी अटैक। दरअसल रेड सी का इलाका हो या फिर इन इलाकों के अंदर इसराइल के लिए सबसे बड़ा दिक्कत होती है हूती की तरफ से लगातार हो रहे अटैक और शायद इसी वजह से ये एक और बड़ा मोर्चा है। यानी आप देखिए कितने मोर्चों पर एक साथ इसराइल इस समय जंग लड़ रहा है और कभी कभी अगर आप देखें इस जंग के दायरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अब ये मिडिल ईस्ट की तरफ भी बढ़ गया था। ईरान ने सीधे तौर पर सऊदी और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक करने शुरू कर दिए, तो ये पूरे रीजन को अगर आप देखें, इस पूरे इलाके को अगर आप देखें, आप समझिए ये जंग का दायरा बढ़ता रह रहा है और इसराइल अभी इस समय कई मोर्चों पर सीधे जंग लड़ रहा है। यानी आप मानिए, अब आपको हमने LED स्क्रीन पर दिखाया कि आखिरकार कौन कौन से इलाकों में, कौन कौन सी जगहों पर इसराइल इस समय जंग लड़ा है। अब आपको LED स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करते हैं कि इसराइल सीरिया में तुर्की के खिलाफ मोर्चे पर कैसे खोल बैठा और अब सातवां मोर्चा कौन सा, यानी छह से सात मोर्चे इस समय इसराइल के लिए एक्टिव हैं, सातवां मोर्चा कौन सा? हमने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि ईरान का मोर्चा, गाजा के अंदर हमास के खिलाफ मोर्चा, इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा, फिर आपने शिया कम्युनिटी या फिर शिया मिलिशिया के खिलाफ सीरिया में, साउथ सीरिया के अंदर, फिर अब जो पांचवा मोर्चा जो आप देखें, आपने आपको इराक भी बता दिया, अब जो सातवां मोर्चा लगातार खोल रहा है वो खोल रहा है सीरिया के अंदर ही मौजूद तुर्की की फोर्सेस के खिलाफ। दरअसल ये जो इलाका है, ये ऊपरी इलाका जो अगर आप देखें, ये दरअसल नॉर्थ सीरिया का जो इलाका है, यहां पर तुर्की की फोर्सेस की या फिर आप कुर्द की बहुत ज्यादा मौजूदगी रहती है। हालांकि कुर्द को माना जाता है कि सीरिया और अमेरिका ही समर्थन करते हैं, लेकिन इन इलाकों के अंदर यहां पर तुर्की की मौजूदगी की वजह से अब एक और मोर्चा खोलने की तैयारी इस समय इसराइल की तरफ से की जा रही है। यानी आप देखिए इन तमाम नक्शे में आप समझिए कि इस समय इसराइल कैसे लगातार, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, लेबनान हो, गाजा हो, इसके अलावा जो सीरिया के अंदर दो मोर्चों पर, यहां तक कि आप यमन के अंदर, तमाम जगहों के ऊपर इस समय जंग लड़ रहा है। और ये एक नया मोर्चा है जो तुर्की के खिलाफ जल्द ही इसराइल खोल सकता है, क्योंकि इसराइल की फोर्सेज लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। अब आपके लिए एक और जानकारी जानना जरूरी है, आखिरकार ये घटनाक्रम कैसे बदला, क्यों इस समय इसराइल और तुर्की आमने सामने आ चुके हैं। तो आपको एक और बड़ी स्क्रीन पर, एक वॉल पर हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन सी जगह थी जिसके बाद दोनों की मौजूदगी या फिर दोनों के बीच टकराव बढ़ता चला गया। दरअसल अबू अल दोहार एयरबेस, यानी ये वो बेस है जो तुर्की से महज 70 किलोमीटर दूर है, और यहां पर तुर्की की सेनाओं की मौजूदगी, लगातार उनकी प्रेजेंस को लेकर इसराइल बहुत ज्यादा चिंता में आ गया। और अगर आप देखें इन्हीं इलाकों में, यानी साउथ सीरिया के इलाकों से उनकी फोर्सेस आगे मूव करने लगे। इससे अलावा उन्होंने लगातार इस बेस को अटैक भी किया, और ये कहा जाता है कि इसी के बाद तुर्की भी भड़क गया। तुर्की ने कहा कि हम वहां पे टेम्पररी बेसिस पे बैठे थे, लेकिन इसराइल का मानना था कि अब तुर्की धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ा रहा। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दरअसल तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी के उस लगातार गठजोड़ को बताया जा रहा है, जिसमें सीरिया भी उनके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। ये खबरें मिल रही थी कि सीरिया भी बहुत जल्दी उस पैक्ट का, उस समझौते का समर्थन करेगा, और उस समझौते में मक्का को आप कह सकते हैं कि समझौते के अंदर शामिल हो जाएगा, जिसके बाद ये घटनाक्रम इसराइल के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। और इसराइल ने इसी के बाद अब सीरिया के इन इलाकों में जहां पर तुर्की की फोर्सेस मौजूद हैं उनको पीछे धकेलना शुरू कर दिया, लेकिन तुर्की भी अब अपनी फोर्सेस के मैसिव डिप्लॉयमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये टकराव निश्चित तौर पर माना जा रहा है, और इसी के चलते अब बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी मीटिंगें भी कर रहे हैं। यानी तुर्की चारों तरफ से नेतन्याहू को घेरने के लिए तैयारियां कर रहा है। वहीं तुर्की की सरकार ने इंटरपोल के जरिए नेतन्याहू को और अन्य इजरायली अधिकारियों के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध भी किया है। तुर्की का आरोप है कि साल 2026 के मई महीने में गाजा में नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के काफिलों को इसराइल ने अटैक किया था, रोका था। और इस्तांबुल की एक अदालत ने इस मामले में प्रधानमंत्री नेतन्याहू समेत कई इजरायली अधिकारियों के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा भी चल रहा था। इन आरोपों में नरसंहार, यातना, मानव यातना, इसके अलावा कई गंभीर आरोप भी, अपराध भी शामिल किए गए, जिसके बाद ये कहा गया, अनुरोध किया गया तुर्की के हवाले से इंटरपोल को कि वो रेड कॉर्नर नोटिस नेतन्याहू के खिलाफ जारी कर दे। और देखिए ये घटनाक्रम क्यों इतनी तेजी से बदल रहा है, क्योंकि अब ये तुर्की बनाम इसराइल होता जा रहा है। अब इसराइल से भी जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एर्दोगान हमास के आतंकवादियों का समर्थन करते रहे हैं और साइप्रस के आधे हिस्से पर कब्जा किए बैठे हैं। देखिए अब वार पलटवार चल रहा है, तो साइप्रस का मुद्दा भी सामने आ गया। साइप्रस में तुर्की की मौजूदगी है, और इसी को लेकर इसराइल ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि साइप्रस के इलाकों में तुर्की की मौजूदगी है, आधे साइप्रस पर कब्जा करके तुर्की बैठा हुआ है। उन्होंने बड़ी संख्या में पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को जेल में डाल रखा है। अब ये इसराइल के खिलाफ अपनी आक्रामक नीति को सीरिया तक बढ़ाना चाहते हैं, और इसराइल ऐसा नहीं होने देगा। दरअसल अब ये उनके पीएमओ की तरफ से, यानी बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिस की तरफ से बयान आया कि देखिए साइप्रस में मौजूदगी और एर्दोगन के जो प्लान है वो लगातार इसराइल के लिए खतरा है, इसी वजह से इजरायली फोर्सेस वहां पर मौजूद है। इंडिकेट किया जा रहा है ये समझाने के लिए कि कैसे तुर्की लगातार अपने प्रभाव को, अपने खलीफा होने को बढ़ाता जा रहा है। और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान इस पर जुड़े हुए, हमारे साथ संजय सोई सर भी और हमारे साथ पांडे सर भी मौजूद हैं। संजय सोई सर, तुर्की का आना, या आप अगर घटनाक्रम को देखें कि जैसे ही पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच में पैक्ट होता है, लगातार हम खबर इजिप्ट की तरफ से भी सुने, फिर यह भी कहा गया कि सीरिया भी बहुत जल्दी इन्वॉल्व होगा, वैसे ही इजरायली फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं, लगातार इन एरियाज में अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उतर जाती हैं।
3: सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, इतने अच्छे तरह से आपने मैप के ऊपर पूरी चीज सादे शब्दों में समझाई, बहुत क्लैरिटी है उसमें। दूसरी बात यह कि देखिए, जो आपने आखिरी सेंटेंस बोला था अपने बयान में कि आज वो खलीफा होने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज में उनकी जो पूरी सोच है इस समय में तुर्की की, भले इकोनॉमिक कंडीशन वैसी ना हो कि वो रोटी खिला सके लोगों को, पर पूरा पैसा वो डिफेंस के ऊपर, आतंकवादी घटनाओं के लिए और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसराइल बिल्कुल ये समझ रहा है कि अगर जिस प्रकार से तुर्की वहां पर एयरबेस को मॉडर्न कर रहा था, उनको मिलिट्री सप्लाई दे रहा था, सीरिया की सरकार इस समय में तुर्की समर्थित है, और उसके दो कारण है कि उसको ताकत दे रहा था, उनको हथियार दे रहा था, साथ साथ में कोशिश करता कि कर्डिश जो उनके खिलाफ है उनके खिलाफ सीरिया के साथ मिलकर हो। दूसरी बात यह है कि लगातार दक्षिण की तरफ, सीरिया के दक्षिण की तरफ गोलन हाइट्स के पास है, उनकी तरफ उनका प्रभाव पड़ता जा रहा था, जो इसराइल को लग रहा था कि अभी मेरी सुरक्षा के लिए एक और खतरा खड़ा हो सकता है। पहले जैसे आपने इतने सारे मोर्चे गिनाए हैं, उसमें क्या एक और मोर्चा खड़ा हो जाएगा जो कि इसराइल के लिए ज्यादा बड़ा खतरा पैदा होता है, क्योंकि अभी सीरिया के अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि इसराइल का किसी प्रकार से भी मुकाबला कर सके, पर जिस प्रकार से टर्की उसको हथियार दे रहा है, आम कर रहा है, तो निश्चित तौर से इसराइल उसको पहले प्रियम्प्ट करके उस चीज को खत्म कर देना चाह रहा है, ताकि ये जो खतरा है बहुत बड़ा होने से पहले
0: बिल्कुल
3: ही इसको न्यूट्रलाइज किया जाए।
0: सर, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन पांडे भी हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, ये तुर्की कैसे भूल गया कि इसराइल जब इतने मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ सकता है तो ये नया मोर्चा भी खोल सकता है, और तुर्की खुद कुर्द से परेशान है उस इलाकों में लगातार, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है और उनको समर्थन है कुर्द को, इसराइल और अमेरिका दोनों का। तो क्या आपको लगता है कि सीरिया के इन इलाकों के अंदर तुर्की की मौजूदगी वहां पर रह पाएगी लंबे समय तक, अगर इसराइल की फोर्सेज उन इलाकों में इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हो?
4: जयहिंद, धन्यवाद संवाद में शामिल करने के लिए। निश्चित रूप से आपका कथन एकदम सही है कि इतने लंबे समय तक जो अर्डगन प्रयास कर रहे हैं तुर्की में अपना वर्चस्व हासिल करने का, नॉर्दर्न ईस्टर्न जो सीरिया है उसमें 5% ऑलरेडी टर्किश कंट्रोल एरिया हो गया है, वो वहां पर उनका वर्चस्व है। और अबू द अल देहर की जिसको एयरपोर्ट को वो एक्टिवेट कर रहे हैं, और 18-19 अगस्त को वहां पर 8 स्ट्राइक किए हैं इसराइल ने, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य था कि वहां पर वो मिलिट्री एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा था। और जो उसके पीछे लॉजिक दिया तुर्की ने, कहा कि उनके पास जो है 3.5 से लेकर 3.5 से 4.5 लाख जो है वो सीरियाई लोग आ चुके हैं, जबकि इसराइल जब अटैक कर रहा था, तो ऐसे में उनको उनको लौटाया जा रहा है, और भी अभी लोग हैं जो उनको वहां से लौटने हैं। तो जो टेररिज्म है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जो मिलिट्री एक्सपेंशन है, मिलिट्री रीबिल्डिंग है सीरिया की, जो सिक्योरिटी है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स सबको इसराइल टर्किश फोर्सेज जो है वो कंट्रोल कर रही है। महत्वपूर्ण ये है कि एकदम से जो है टर्की का ये तेजी क्यों दिखी उसके प्रयासों में, उसका मुख्य कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से रशिया समर्थक असद को दिसंबर 2024 में वहां से निकालने में सफल हुए, और उसमें कहा जा रहा है कि अर्दगन का बहुत बड़ा हाथ था, और अब जब सारा वहां बैठे हैं, सारा जो है वो पूर्णतः अमेरिका के और इसराइल विरोधी हैं, और वो उन्होंने खुली छूट दे रखी है अर्डगन को आने के लिए। जिस प्रकार से
0: बिल्कुल
4: मिलिट्री एक्सपेंशन हो रहा है वहां पर, निश्चित रूप से आप बताइए जो ये एयरपोर्ट जहां पर एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो फौजियों को और ज्यादा जमावड़ा हो रहा है, वो मात्र 180 मील है इसराइल से, तो वो अगर एयरपोर्ट कब्जा कर लेता है टर्की, तो वहां से निश्चित रूप से उनके लिए आसान होगा इसराइल पर अटैक करना और इसराइल
0: और
4: को
0: शायद
4: और
0: मुझे लगता है कि
4: परेशान
0: सर,
4: करना।
0: इसराइल पर अटैक करने से ज्यादा इस पूरे मिडिल ईस्ट के इन देशों के अंदर तुर्की की मौजूदगी, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि तुर्की हमेशा से इस इलाके में खलीफा, सबसे बड़ा मुल्क बनना चाहता है, रहनुमाई करना चाहता, और शायद इसी वजह से वो भी अपना धीरे धीरे विस्तार कर रहा, और शायद यही सबसे बड़ा कंसर्न इसराइल के लिए भी। आप बने रहिए सर हमारे साथ, दोनों आप खास मेहमान हमारे साथ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें सीरिया के विदेश मंत्री यानी उनकी तरफ से असद शिवानी की तरफ से कहा गया है कि हम मक्का समझौते के शामिल होने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। यह समझौता सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक संयुक्त रक्षा समझौते के तौर पर है। हालांकि हमने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि इसराइल के बढ़ते दबाव और कि सीरिया मक्का अलायंस का हिस्सा सीरिया बन सकता है। और यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बात की वजह से, इसी इनपुट के बाद ही इसराइल के फोर्सेस ने उस इलाके में बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया और इस इलाके में अपनी पैठ को और मजबूत करना शुरू कर दिया, और ये शायद इसी वजह से यह घटनाक्रम बहुत तेजी से इस इलाके में बदलता जा रहा है। संजय सोई सर, मुझे याद है कि पहली बार मुझे अगर विक्ट्री डे के परेड के अंदर इसराइल के प्रतिनिधि वहां पहुंचे थे, लगातार रूस और इसराइल के बीच में जो नजदीकियां बढ़ी थी, और मुझे यह भी याद है कि इसराइल ने रूस को बोला था कि आप टॉटस का एयरबेस नहीं छोड़िए, हम वहां पर आपकी मदद करेंगे, आप उस इलाके में बने रहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां पर इसराइल रूस को भी साधे हुए है, अमेरिका को भी साधे और लगातार इस पूरे इलाके में जंग भी लड़ रहा है, ऐसे में तुर्की की मौजूदगी, क्या तुर्की को वो समर्थन हासिल हो पाएगा जो तुर्की सोचकर इस इलाके में अपनी घुसपैठ कर रहा है, अपनी मजबूती कर रहा है कि वो देखिए इस इलाके में आसानी से घुस जाएगा और यहां पर अपनी मौजूदगी और मजबूत कर लेगा?
3: बिल्कुल, ऐसा है कि तुर्की की जो एर्डोगन का जो माइंड सेट है पूरा फंडामेंटलिस्ट है, वो जिसको कहना चाहिए रणनीतिक फंडामेंटलिस्ट है। एक जो बात वो मैंने पहले भी की, आपने भी कही कि वो खलीफा बनना चाहते हैं, इस पता नहीं क्या सपना देख रहे हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड को मुस्लिम नेटो बनाना चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की, अभी सीरिया को, इजिप्ट को, बाकी देशों को लेके अपनी एक प्रभुसत्ता स्थापित करना चाह रहे हैं, जो मेरे हिसाब से इसराइल और अमेरिका उस लेवल तक नहीं ले जाएंगे। इस समय में जैसा आपने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि टर्की जो है नेटो का हिस्सा है, मेरे हिसाब से कई बार मैंने देखा है कई बार नेटो को सिरदर्द भी लगता है, और दूसरी बात ईयू का हिस्सा नहीं है, परंतु नेटो का हिस्सा होने के कारण अगर डायरेक्ट जंग होती है टर्की के साथ तो फिर एक आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो सकता है। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर जो सीरिया के
0: सर
3: अंदर अगर
0: सर
3: लड़ाई होती
0: माफ
3: है
0: कीजिएगा, वक्त
3: तो
0: की
3: ये
0: कमी है, क्योंकि आपने नेटो का जिक्र किया हमारे साथ ग्रुप कैप्टन पांडे में। ग्रुप कैप्टन पांडे, जल्दी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम आर्टिकल 5 की बात करते हैं, लेकिन इसराइल ने कहा, इसराइल की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि अगर कोई तीसरा मुल्क है जहां पर आपकी मौजूदगी है नेटो के मेंबर की, तो वहां पर अगर अटैक होता है तो फिर उसे नेटो के आर्टिकल 5 का वॉयलेशन नहीं माना जाएगा।
4: शायद यही कारण है कि अटगर ये सोच रहे हैं कि आर्टिकल 5 उनको हेल्प करेगा और वो जो वर्चस्व हासिल करना चाहते हैं, एक जो सुन्नी लीडरशिप है उस इलाके के अंदर, वो चाहते हैं, सॉरी, शिया पावर की जो लीडरशिप है वो चाहते हैं हासिल करना, जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं। और आपने बहुत बढ़िया तरीके से उसको कवर किया कि नाटो का जो दबदबा है वो निश्चित रूप से है, लेकिन यहाँ प्रभावकारी नहीं होगा। और शायद जो मैका एग्रीमेंट के पीछे जो बताया जा रहा है, नर्व सेंटर जो था, वो शक्ति यही मानी जा रही थी कि शायद नाटो हेल्प करे जब टर्की युद्ध में किसी भी शामिल हो, चाहे पाकिस्तान के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ, किसी के साथ। हालांकि बांग्लादेश, इजिप्ट और अब सीरिया ये भी चाहते हैं कि उसमें शामिल होना, क्यों? एक ही बहुत बड़ा लॉजिक है कि इनके पास वो क्षमता नहीं है कि पूरे विश्व से लड़ाई कर सकें या कई मुल्कों से एक साथ लड़ सकें। उनके पास क्षमता, सोच रहे हैं कि नाटो जो कंट्रीज हैं, जो 32 देश हैं उनके अलावा, वो उनका साथ देंगे और वो जो वो हासिल कर पाएंगे जो चाहते करना। तो निश्चित रूप से उनके विचारधारा में अभी शायद सच्चाई जो वस्तुतः स्थिति है वो अभी उनको नहीं समझ में आई है, धीरे धीरे समझ में आएगा और फिर इसमें जो है ग्रिप जो है उसका लूज होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए सर हमारे साथ, क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन में भीषण होते हमलों को लेकर, और साथ ही बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है, जिसके बाद ईरान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि वो झुकने को तैयार नहीं, और वो भी लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। सब दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर
6: उधर,
7: करेक्ट करेक्ट,
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
1: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
2: ये है एक लेगेसी, मेरी शादी के।
3: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
4: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
3: आपको कितने लगेंगे?
5: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
6: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening. And our esteemed jury is going to judge that. The chief minister will adopt that.
5: अब मिलकर हवा बदलेंगे।
7: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
8: एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
7: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए। आज तक के

आज शाम बीजेपी की नई टीम से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नितिन नवीन की पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक। वंदे मातरम पर प्रस्ताव, कांग्रेस की कड़ी निंदा। और जेन जी और जेन अल्फा से भी संवाद पर जोर। पुणे में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज। कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता।

आज के प्रोग्राम के लिए 30 शर्तें रखी गई, ड्रोन पर लगी है रोक, एबीवीपी ने रखा वंदे मातरम गायन। अखिलेश यादव के 54 वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज, मायावती बोली जयंत चौधरी से माफी मांगे, केशव प्रसाद मौर्य भी भड़के, अखिलेश यादव बोले सच भी बोलना गलत हो गया। त्योहारों से पहले चीन पर तीखी सियासत, खड़गे ने महंगाई पर सरकार को घेरा, अखिलेश ने कहा बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, योगी ने जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए। टीम सीजेपी की पिटाई पर छिड़ी है एफआईआर पर जंग, सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराया मारपीट का केस, विवाद के बाद तबेले में शिफ्ट हुआ स्कूल।

अगस्त में क्यों बढ़ रहा रूस यूक्रेन में घमासान, क्यों मिसाइलें रोकने में यूक्रेन हो रहा नाकाम, क्या नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों ने बदला गेम प्लान, क्यों अचानक मच रहा है कीव में कोहराम, क्या युद्ध निपटाने की जल्दी में है रूस, या फिर पैट्रियट मिसाइलों की कमी से कमजोर हो गया यूक्रेन। कीव में मॉस्को तक हमलों की नई लहर ने क्यों बरपाया कहर, ऐसे ही ढेरों सवालों के साथ युद्ध जारी है। तबाही की तस्वीरें यूक्रेन से भी आ रही हैं और रूस से भी। साढ़े चार साल से चल रही इस जंग में नॉर्थ कोरिया के हथियारों की एंट्री ने यूक्रेन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

0: ब्रेक के बाद रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सालों से चल रहे रूस और यूक्रेन के जंग अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है, अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन दिन ब दिन ये और भीषण होता जा रहा है। यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोप के देश भी अब रूस पर सीधे वार करने की कोशिशें या फिर उसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रूस को नॉर्थ कोरिया का साथ भी मिलने लगा है। नॉर्थ कोरिया ने इससे पहले अपने सैनिक भेजे और अब एक विनाशकारी तोहफा भी भेजा है। नॉर्थ कोरिया ने पुतिन को एक ऐसा तोहफा दिया है जिसने जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ा दी है। तोहफा अब तक का सबसे जानलेवा तोहफा है। मिसाइलों की एक ऐसी होड़ में यूक्रेन लगातार पिछड़ता जा रहा है और नतीजा यह हो रहा है कि राजधानी पर लगातार बमबारी हो रही है और हम मचा हुआ है। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
1: इक्कीस दिन, छह बड़े हमले, इस महीने 50 से ज्यादा लोगों की अगस्त में मौत, इस महीने 80 से ज्यादा लोग घायल। साढ़े चार साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से किम जोंग हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। नॉर्थ कोरिया से विनाशकारी मिसाइलें आ रही हैं, नॉर्थ कोरिया से काम करने वाली ब्रिगेड आ रही है, नॉर्थ कोरिया से खतरनाक हथियार आ रहे हैं। बढ़ रहा है रूस का जोश, उड़ रहे यूक्रेन के होश। यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उनकी जमीन पर मौत का खेल खेल रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी।

0: Ви знаєте, що ми вже знаходили ракети Північної Кореї на території України. Вони вже завдавали удари, використовували це. Сьогодні це вже є визнаний факт. Південна Корея, безумовно, вони переживають, це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них всі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо, і також отримують досвід військовий, тобто північнокорейський солдат, офіцер. Тож, і з цим досвідом, ну, вони точно не для мирних умов цей досвід готують. Тому Південна Корея повинна, на мій погляд, більш мати більш тісне співробітництво з Україною.
1: Юкрейн кі хуфія агенцію ке таза хуласе ке мутабик, Рус ке пас Норд Корея кі КН-23 ор КН-24 балістик місайл то пехле се тій. अब KN-30 जैसी विनाशकारी मिसाइल भी मिल गई है। नॉर्थ कोरिया से रूस को लगातार मिल रहे हथियार यूक्रेन की जमीन पर कहर बरपा रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से नहीं लड़ सकता। ऊपर से नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक में दम कर रखा है। एंटी मिसाइल सिस्टम उसके पास है नहीं। पैट्रियट मिसाइलें वो कब से मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मिली नहीं है। गुरुवार की रात को भी उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए, बल्कि वो इसे खरीदने के लिए तैयार हैं।
0: На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для Петріотів – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо.
1: ये भीषण जंग कब रुकेगी किसी को नहीं पता। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन रिहायशी इलाकों पर तेज हो रहे हमले बेकसूरों की जान ले रहे हैं। अब दोनों ही देश सैन्य ठिकानों के साथ साथ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इमारतों पर बमबारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से नॉर्थ कोरिया के हथियारों की एंट्री ने जंग को और विनाशकारी बना दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: दरअसल रूस लगातार कीव और कीव के आसपास के इलाकों में बड़े हमले कर रहा है, और इसी से जुड़ी यूक्रेन से एक बड़ा अपडेट यह मिल रहा है कि क्रीवी रेह शहर के अंदर भी एक शॉपिंग सेंटर को रूस के ड्रोन्स ने अटैक किया है, उसको निशाना बनाया। इस हमले में एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें रूसी ड्रोन को क्रीवी रेह के अंदर शॉपिंग सेंटर पर हमला करते हुए देखा गया है। क्षेत्रीय गवर्नर और स्थानीय अधिकारियों ने इस हमले की पुष्टि भी की, और कहा जा रहा है कि अधिकारियों ने बताया कि इसमें रूसी ड्रोन ने शॉपिंग सेंटर पर हमले किए जिसमें 14 लोग मारे गए हैं और 120 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अभी रूस के हमले कीव के अलावा उनके महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल हब्स पर अटैक जारी है, और इसे एक बहुत महत्वपूर्ण यूक्रेन का इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। और देखिए तस्वीर, आप देख सकते हैं कि शॉपिंग सेंटर पर किस तरीके से ड्रोन गिरा और उसके बाद बड़े धमाके में तब्दील हो गया। 14 लोगों के मारे जाने की खबरें भी है और 120 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल ओडेसा और आप कह सकते हैं कि जो सदर्न इलाके हैं यूक्रेन के, जो कोस्टल इलाके हैं, यहां पर रूस की तरफ से ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं, और इनके पीछे का मकसद यह है कि जो यूक्रेन के इंडस्ट्रियल हब्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, उनको टारगेट किया जा सके। इससे पहले ब्लैक सी के अंदर भी कई यूक्रेन के फ्लीट्स को, उनके शिप्स को रूस ने टारगेट किया था, और वो उस रसद को, इंडस्ट्रियल हब्स को टारगेट कर रहा है जहां पर रूस यूक्रेन के ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट भी लगी हुई है। और देखिए यूक्रेन पर लगातार हमलों के बीच रूस की तरफ से एक बड़ा बयान भी आया। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रायाबकोव ने कहा है कि रूस यूक्रेन के शांति समझौते के बारे में नए विचारों को सुनने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में यह बेहद अहम हो जाता है कि अमेरिका यूक्रेन और यूरोप के फैसलों को किन हद तक प्रभावित कर पाता है। उनका कहना है कि यूक्रेन समझौते से जुड़ी कोई भी प्रस्ताव पुतिन द्वारा तय लक्ष्य और जमीनी हकीकत के अनुरूप होना चाहिए, यानी जमीनी स्तर पर जो रूस की मौजूदगी है या उनकी जो पकड़ है, उनकी जो इन्फ्लुएंस है, या फिर जिन इलाकों पर कब्जा करे बैठे हैं उनके अनुरूप ये नया समझौता होना चाहिए। दरअसल इन तमाम खबरों के बीच

0: रूस की ताकत बढ़ाने वाला है नॉर्थ कोरिया का नया तोहफा। अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते और समझाने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से रूस को पिछले 3 सालों में क्या क्या तोहफे दिए गए और आखिरकार रूस की मदद के लिए ना सिर्फ सैनिक बल्कि हथियार भी कैसे लगातार नॉर्थ कोरिया प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस को मिली है मदद। 2024 में नॉर्थ कोरिया के करीब 10,000 से 15,000 सैनिक कुर्स्क के इलाकों में पहुंच गए थे। कुर्स्क वही इलाका है, मैं आपको बता दूं, जहां पर जो स्पेशल फोर्सेस थी यूक्रेन की पहुंची थी और ये कहा जा रहा था कि वो एक रास्ता काटकर मॉस्को की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और ये बहुत बड़ा सरप्राइज था रूस के लिए और इसी वजह से रूस ने मदद मांगी। नॉर्थ कोरिया ने अपने 10,000 से 15,000 सोल्जर भेजे और इस इलाके को पूरी तरीके से यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेज से खाली कराया गया। अब जमीनी हथियारों से अलावा या फिर आप सैनिकों के अलावा कौन कौन से हथियार दिए गए, यह है KN-23 और KN-24। ये दरअसल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है और ये दोनों मिसाइल इससे पहले कई बार नॉर्थ कोरिया की तरफ से लगातार रूस को दी गई है और शायद इसी वजह से इस ताकत के बेसिस पर ही रूस ने बहुत हद तक अपनी जो किंजल मिसाइल है दूसरी मिसाइलों के जो प्रोडक्शन है उनको बहुत हद तक संभाला भी। अब जो नया तोहफा दिया गया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से वो है KN-30, यानी ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये लो रेंज के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी रेंज करीबन 1,000 किलोमीटर की है और ये नया तोहफा है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को बदल दिया है और माना जाता है कि इसी नए नॉर्थ कोरिया के नए तोहफे के बाद रूस अब यूक्रेन के अंदर लंबी दूरी तक वार कर सकता है। यानी ये तमाम चीजें आपने देखी और समझी कि आखिरकार ये नया तोहफे ने कैसे लगातार घटनाक्रम को बदल दिया है। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। संजय सोई सर, KN-30 का आना और खासतौर पर रूस को जमीनी तौर पर मदद करना नॉर्थ कोरिया की तरफ से, यूक्रेन कैसे लड़ पा रहा है आखिरकार? क्योंकि यूक्रेन के पास तो ना तो इस समय कोई डिफेंस सिस्टम्स हैं ना मिसाइलें हैं, कमी झेल रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन लड़ रहा है।
1: देखिए बिल्कुल सुमित, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। यूक्रेन के पास अपना कम है। देखिए इस समय में जब अमेरिका की मदद कम हुई तो यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड काफी हद तक साथ आए हैं और तकरीबन 90 बिलियन यूरो का उन्होंने मदद का प्लान किया है और रशिया ब्रिटेन ने 1.5 लाख ड्रोन्स 2026 में यूक्रेन को देने का वादा किया है। साथ साथ में जर्मनी और बाकी यूरोपियन यूनियन के देशों ने उनको एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक्स देने का वादा किया जो दे रहे हैं और ब्रिटेन का काफी हद तक 85,000 ड्रोन तो 2025 में दिए थे उन्होंने, जो बड़ी संख्या है जिसकी वजह से यूक्रेन लड़ पा रहा है। आप देखिए और यूक्रेन अपने भी जेट पावर ड्रोन बनाने शुरू कर दिए अभी उन्होंने, जो कि तकरीबन अभी जो रिफाइनरी पर अटैक है 900 किलोमीटर 600 किलोमीटर 1,000 किलोमीटर इतनी डीप अंदर जाके वो सफलतापूर्वक अटैक करने में सक्षम है। और रशिया के साथ इस समय में देखिए था ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना इनडायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है, डबल यूज टेक्नोलॉजी दे रहा है, डायरेक्ट कुछ नहीं दे रहा है लेकिन इनडायरेक्ट दे रहा है, मतलब पैसे की मदद हो रही है उससे खरीद रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने खुल के सामने आया है, सैनिक भेजे, मिसाइल दी। ईरान इस समय भी देने में सक्षम है क्योंकि उनकी अपनी लड़ाई चल रही है, चलो पहले वो भी ड्रोन दे रहा था शाहीन ड्रोन रशिया को, काफी बड़ी संख्या में उन्होंने सप्लाई की।
0: युद्ध में यही बात साबित होती है कि आपके साथ मजबूत अलायंस किसका है, किसके पास अपने हथियार है। ग्रुप कैप्टन पांडे, आप तो इन चीजों को समझते हैं, KN-30 की हम जब बात करते हैं, 23-24 की तो हमने बात कर ली, जब इस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात करते हैं, और क्या इसके आने से पूरा वॉर गेम जो है बदल जाएगा और रूस की ताकत में इससे कैसे इजाफा होने वाला है?
2: निश्चित रूप से, देखिए KN-30 जो है उनका लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल है और जो कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वो हैवी लोड ले आता है, यानी कि 2.5 टन का जो है वॉरहेड वो ले आता है। तो 2.5 टन 600 से 1000 किलोमीटर की दूरी में डिपेंडिंग ऑन पेलोड कैपेसिटी कितना उस पर लोड कर रहे हैं आप, वो आक्रमण कर सकता है, यानी कि आप डीप पेनिट्रेशन भी करेंगे और बहुत तगड़ी चोट पहुंचाएंगे। तो ऐसे टारगेट जिनको कि रशिया भेजने में कामयाब नहीं हो पाया या चाहता था भेजना, तो अब उनको वो उनको टारगेट कर सकता है। और कहा जा रहा है कि जो इनपुट्स हैं वो लगभग 50 ऐसी मिसाइल्स दी गई हैं, इसके पहले जिसका आपने जैसा आपने जिक्र किया था कि KN-23-24 150 दी गई थी और जो सैनिकों की संख्या जो 25,000 तक पहुंच चुकी थी, अब कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में शायद वो 50,000 तक सैनिक जो नॉर्थ कोरिया पहुंच जाएंगे और साथ में कोरिया ने उनको 400 ड्रोन भी देने का वादा किया। तो नॉर्थ कोरिया बहुत तेजी से और बहुत बहुत अधिक मात्रा में रशिया की हेल्प कर रहा है और वो मुख्य उद्देश्य यह है कि हालांकि रशिया की तरफ से अब आज कहा जा रहा है कि शांति वार्ता अगर हो और हमारे अनुरूप हो तो हम उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन देखना होगा कि जो जमीनी हकीकत है कि इस समय दोनों देश प्रभावित हो रहे हैं, दोनों देश दबाव में हैं कि किस प्रकार से लड़ाई को आगे जारी किया जाए, क्योंकि इतना लंबा समय बीत चुका है, उनकी जो जो खुद की सप्लाई लाइंस हैं और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। इवन
0: बिल्कुल
2: भारत से जो है उसको गैसोलीन और बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेने पड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में कितने दिन ये युद्ध कर पाए।

0: कि रशिया पुटिन चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो और
1: बिल्कुल
0: आगे हम उस
1: सर,
0: पर कर
1: सर
0: सकें।
1: चाहते
0: साथ
1: तो
0: में एक
1: दोनों
0: पॉइंट और
1: है,
0: जोड़ दूं गलती से,
1: बिल्कुल चाहते तो दोनों है, लेकिन दोनों आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं बातचीत के लिए। शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि देखिए ये कहां जाकर रुकेगा, 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं और अब भी एक दूसरे के ऊपर अटैक जा रही है, लगातार हथियारों की खेप नहीं आ रही, नए नए हथियार इसमें ट्राई एंड टेस्ट किए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सर इस इन तमाम युद्ध के बाद अब बात करते हैं ईरान और अमेरिका के महायुद्ध को लेकर भी, जिसमें कहने को तो सीज फायर चल रही है लेकिन हॉर्मूज को लेकर टेंशन लगातार बढ़ रही है। एक तरफ ट्रंप ने हॉर्मूज पर अमेरिका का हक जताने का मिशन शुरू कर दिया, वो लगातार इसको अपना नया प्रोविंस बता रहे, तो वहीं ईरान ने भी दो टूक कह दिया कि इस पर हमारा कंट्रोल था और हमारा ही कंट्रोल रहेगा, और अगर इस पर किसी ने भी अपना हक जताने की कोशिश की तो फिर बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान बैठा हुआ। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
2: अमेरिका ईरान के बीच धमकियों वाले बयान, हुर्मुज को लेकर और बढ़ा घमासान, सेनाएं तैयार महायुद्ध फिर छेड़ने के आसार। महीनों से जिन दो मुद्दों को लेकर अमेरिका और ईरान डील नहीं कर पा रहे हैं उनको लेकर तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। परमाणु मसले से पहले हुर्मुज का हल निकालने की तमाम कोशिशों पर अब पानी फिरता दिख रहा है। न तो अमेरिका हुर्मुज के समंदर से नाकेबंदी हटाने के लिए तैयार है और न ही ईरान जहाजों की आवाजाही पर किसी भी तरह से अपना नियंत्रण कम होने देना चाहता है। इस तनातनी की आग में घी डालने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने, जिसमें हुर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कह दी गई थी। एक बार फिर हुर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल की बात कहते हुए ट्रंप ने ईरान के सिर ही डील न होने देने का ठीकरा फोड़ दिया है।
3: No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money. They have no navy. They have no air force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region. Having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah.
2: बयानों की इस जंग में पीछे हटने के लिए ईरान भी तैयार नहीं है। पहले उसने ट्रंप के हुर्मुज वाले बयान पर दो टूक कह दिया था कि सोशल मीडिया पर लिखने या फिर चुनावी भाषण के जरिए ट्रंप का ये सपना पूरा नहीं हो सकता। अब उसके कमांडर अमेरिका को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं, ऐसा सबक कि इतिहास याद रखेगा। ईरान के नेवी कमांडर शहराम ईरानी ने कहा कि हम दुश्मन को देश की सरहदों को पार नहीं करने देंगे। आज तक ईरान की सशस्त्र सेनाओं की सतर्कता और तैयारी की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। हमारी जिम्मेदारियों में से एक ये है कि हम दुश्मन को ईरान की पवित्र जमीन के करीब आने से रोकें। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सशस्त्र सेनाओं की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज ईरानी राष्ट्र के बेटे समुद्र में मजबूती से डटे हुए हैं और दुश्मन को एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ईरानी कमांडर के सुर ऐसे ही तल्ख नहीं हुए हैं। ये जवाब है अमेरिका के उस वित्त मंत्रालय को, जिसने ईरान पर इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका और ईरान के बीच अब सिर्फ
1: यानी जमीन पर तो अब सीज फायर है, लेकिन जुबानी जंग अब भी लगातार जारी है। और अब डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपना अमेरिकी प्रोविंसेस बनाने और उस पर ऐलान करने का दावा भी कर रहे। चलिए रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
6: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
5: आपको कितने लगेंगे?
7: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
8: That's the QR code. If you've got a solution, we've listening. And our esteemed jury is going to judge that

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं, पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं, हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जाति अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: संभाजी नगर में लाइव सुसाइड, बेटे को बचाने में गिरा पिता, पति बेटे के गिरने के बाद मां ने भी लगाई छलांग। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के संभाजीनगर की है, जहां से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। किसी बात से नाराज 18 साल का कुणाल चांदवड़े सुसाइड करने इस पहाड़ी पर पहुंचा, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव वाले पहुंच गए और लड़के को समझाते रहे, लड़का मानने को तैयार नहीं था। करीब आने पर वो कूदने की धमकी दे रहा था। गांव वालों ने लड़के की खबर परिवार को दी। मम्मी पापा लड़के को बचाने भागते हुए पहुंचे। देखिए किस तरह माता पिता बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गांव वाले भी बच्चे को समझा रहे हैं। करीब 3 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कुणाल को समझाते समझाते माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नजदीक के गांव के सरपंच ने भी बच्चे को समझाने के लिए आईफोन देने का लालच दिया, लेकिन कुणाल को सुनने के मूड में नहीं था। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच जाती है। मामले की गंभीरता को समझते हुए दमकल कर्मियों ने लड़के को बचाने के लिए पहाड़ की तलहटी में बड़ा सुरक्षा जाल बिछाया था, लेकिन पहाड़ की चोटी पर खड़ा लड़का लगातार अपनी दिशा बदल रहा था। इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अब देखिए, लड़का चट्टान के कोने में खड़ा है। माता पिता तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही पिता करीब पहुंचता है, पिता और बेटे का बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों ही चट्टान से गिर जाते हैं। पति और बेटे को गिरता देख माँ भी पहाड़ी से छलांग लगा देती है और चंद सेकंड में पूरा परिवार खत्म हो जाता है।
2: फिलहाल मैं छत्रपति संभाजी नगर के तेज गांव में हूँ और

0: इस गांव में ये तकरीबन जो पहाड़ दिख रहा है जिसकी हाइट 200 से 300 फीट के आसपास है, आज सुबह देवले में रहने वाले एक जो 18 वर्षीय युवक था वो गुस्से से घर से निकला और इस पहाड़ के किनारे पर आकर ठहर गया और सुसाइड करने का प्रयत्न किया, जिसके बाद जो गांव के लोग थे वो इस पहाड़ पर जमा हो गए। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी।
1: गांव वाले भी हैरान हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने पूरे परिवार को खत्म होते देखा। हालांकि अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि बच्चे ने सुसाइड क्यों किया। गांव वालों का दावा है कि लड़का आईफोन की मांग कर रहा था, जिसे लेकर झगड़ा हुआ और मामला सुसाइड तक पहुंच गया।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

से मिलेंगे पीएम मोदी। नितिन नवीन के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक। वंदे मातरम पर प्रस्ताव, कांग्रेस की कड़ी निंदा। जेन जी जेन अल्फा से संवाद पर जोर। छात्रों की गूंज में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे राहुल गांधी। कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता। प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, एबीवीपी ने रखा वंदे मातरम।

0: अखिलेश के 54 वाले बैन पर यूपी में सियासत तेज। मायावती बोली जयंत चौधरी से माफी मांगे केशव प्रसाद मौर्य भी भड़के। अखिलेश बोले सच भी बोलना गलत हो गया। त्योहारों से पहले चीनी पर तीखी सियासत, खड़गे ने महंगाई पर सरकार को घेरा। अखिलेश ने भी कहा बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, योगी ने जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए। और टीम सीजेपी की पिटाई पर छिड़ी एफआईआर की जंग। सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाया मारपीट का केस। विवाद के बाद तबेले से शिफ्ट हुआ स्कूल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर वन शो दंगल। आज दिल्ली से पुणे तक सियासी दंगल का मैदान सजा है। कहते हैं सियासत में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और आज दिल्ली से पुणे तक दो तस्वीरें हैं, दो रणनीतियां हैं और दो सियासी रास्ते हैं। नवीन की तीन बैठकों में संगठन की नब्ज टटोली जा रही है, चुनावी रणनीति को धार दी जा रही है, राज्यों से लेकर जमीन तक पार्टी के पकड़ को मजबूत करने का खाका खींचा जा रहा है। देश के युवाओं का दिल जीतने और अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए मंथन किया जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो पुणे में छात्रों के बीच छात्रों की गूंज के जरिए युवा मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला रहे हैं। 17 जून को कोटा से शुरू हुआ अभियान देहरादून प्रयागराज होते हुए अब आज पुणे पहुंचा है। मंच भले ही अलग अलग लेकिन रणनीति के केंद्र में जेन जी है, नई पीढ़ी है, भारत का भविष्य संवारने वाला युवा है। आज दिल्ली में रणनीति लिखी जा रही है, पुणे में राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आज की युवा पीढ़ी किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा करती है, युवाओं को किस नेता में अपना भविष्य सुनहरा दिखा देता है, किस पार्टी में। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द बड़ी बहस होगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट।
1: सियासत में कुछ लड़ाइयां रणनीति की मेज पर लड़ी जाती हैं और कुछ जनता के बीच। आज दिल्ली से पुणे तक ऐसी ही दो तस्वीरें हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन एक के बाद एक रणनीतिक बैठकें कर रहे हैं। नई टीम, चुनावी तैयारी, संगठन का विस्तार और जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने की कवायद। वहीं पुणे में राहुल गांधी आज छात्राओं के बीच हैं। सवाल शिक्षा के हैं, भविष्य का है, अवसर का है, लेकिन निशाना साफ तौर पर सियासी है, यानी आज आमने सामने है नितिन नीति और राहुल नीति।
2: आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार, 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे।
1: नितिन नवीन की बैठक में चुनावी चौसर बिछाई गई, जेन जी यानी युवा पीढ़ी तक पहुंचने के लिए खास टीम बनाई गई है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा था कि वो युवाओं से सीधी बातचीत करें और विश्वविद्यालयों और सरकारी स्कूलों में जाकर उनसे संपर्क बढ़ाएं। जानकारी के मुताबिक जेन जी आउटरीच कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाली टीम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी और छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी भी टीम का हिस्सा हैं।
3: कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है।
1: नितिन नवीन के साथ पार्टी के पदाधिकारियों की भी बैठक हुई। बैठक में पार्टी ने युवा संवाद को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। पार्टी आने वाले दिनों में युवा संवाद को लेकर बड़े कार्यक्रम शुरू करेगी। देश भर के वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बनाई जाएगी। बैठक में युवाओं के साथ लगातार बातचीत और संपर्क बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। युवा संवाद के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों को तैयार करने की जिम्मेदारी बीजेपी के युवा मोर्चा को दी गई है। बीजेपी अब ये तय करने पर ध्यान दे रही है कि 14 साल और उससे ज्यादा उम्र के युवाओं तक कैसे पहुंचा जाए। वंदे मातरम का मुद्दा भी देश की सियासत में गरमाया हुआ है। बीजेपी ने आज वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के संबंध में एक अहम प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस को घेरने के लिए विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा ताकि 6 पदों वाले पूर्ण राष्ट्रीय गीत और उसके इतिहास को विस्मृति में न जाने दिया जाए और आने वाली पीढ़ियां समझ सकें कि वंदे मातरम के साथ भारत की स्वतंत्रता, संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र जागरण की कितनी गहरी स्मृतियां जुड़ी हैं। एक तरफ नितिन नवीन युवाओं के जरिए चुनावी चौसर बिछा रहे हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी युवाओं पर दांव लगा दिया है। आज राहुल गांधी के पास छात्रों का मुद्दा है, युवा संवाद है और सत्ता से सवाल पूछने की कोशिश। कोटा से शुरू हुआ राहुल गांधी का अभियान देहरादून, प्रयागराज और अब पुणे तक पहुंच चुका है। शुरुआत में यह अभियान नीट परीक्षा में पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी और सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की समस्याओं को लेकर शुरू किया गया था। बाद में इसमें शिक्षा से जुड़े दूसरे मुद्दों को भी शामिल किया गया। इनमें स्कूल की शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, महंगी पढ़ाई और देश में बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे शामिल हैं।
4: इस देश का मुद्दा क्या है? नौजवान, नौकरी, पेपर लीक, छात्रों पर हिंसा। इस देश का मुद्दा क्या है? अयोध्या में चंदा चोरी, घर घर से चंदा चोरी। इस देश का मुद्दा क्या है? एथनॉल, E20। इस देश का मुद्दा क्या है? चीन घुस रहा है अरुणाचल में। हम देश के मुद्दों की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी का मुद्दा क्या है? मेरे को 25 साल हो गए मेरे राजनीतिक सफर में। भैया करो अपना सफर, देश सफर कर रहा है आपकी सफर की वजह से।
1: ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन ज्यादा सक्रिय है, सवाल ये है कि किसकी रणनीति ज्यादा असर पैदा कर रही है। अब फैसला वक्त करेगा, नितिन नवीन की रणनीति भारी पड़ेगी या राहुल की गूंज राजनीतिक असर पैदा करेगी। आज की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब हम दंगल की शुरुआत करें, उससे पहले उन सवालों पर डालते हैं नजर जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी बहस रहेगी। केंद्रीय सवाल नंबर एक, युवाओं के बीच किस पार्टी का चलेगा सिक्का? प्रयास तो हर दल कर रहा है। सवाल एक ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या छात्रों की गूंज वोटों की गूंज बनेगी? और सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि युवा मुद्दों पर बीजेपी के प्लान में आखिर दम कितना है? खास मेहमान भी हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जुड़े हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डॉक्टर अनुराग भदौरिया, हमारे साथ एलजेपीआर से प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं और राजनीतिक विश्लेषक सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़े हैं। जेन जी जो जनरेशन है, ये सवाल पूछने वाली जनरेशन है और सवाल नहीं पूछते, पूछते कि आपने डिलीवर किया या नहीं किया। लेकिन के शर्मा जी, छात्रों की गूंज के बीच में जो ये युवा संवाद है, क्या लगता है आपको कितना असरदार होगा ये?
5: निश्चित तौर से राजीव जी, युवा देश के भविष्य हैं और युवाओं से संवाद यह बहुत आवश्यक भी है और इस बात को हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने बहुत पहले से ही समझा है और यही कारण रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा संवाद के कार्यक्रम, युवा नव मतदाता सम्मेलन, ऐसे तमाम योजनाओं को पिछले कई वर्षों से चला रही है। और जो हम तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान युवाओं का है। युवाओं ने अपना विश्वास व्यक्त किया माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में और तीसरी बार मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैं समझता हूं कि युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी उसे बड़ी गंभीरता से लेती है और इस देश का युवा राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है, उसकी राष्ट्रीय चेतना जागृत है, इसलिए वो इस बात को भी समझती है कि वंदे मातरम जो गीत है वो जिस राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, आज उसका जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी उसका अपमान कर रही है, जिस ढंग से उसका बहिष्कार कर रही है, निश्चित तौर से यह देश का युवा इसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश का युवा राष्ट्रीयता के प्रति उतना ही कटिबद्ध है, क्योंकि राष्ट्र है तो सब कुछ है, लेकिन राष्ट्र को यदि विभाजन करने की कोशिश की जाए, जैसे कांग्रेस पार्टी ने 1937 में वंदे मातरम गीत के दो टुकड़े किए, फिर देश के दो टुकड़े किए और अब आने वाले समय में वो पुनः चाहती है कि इस देश के कई टुकड़े हों, इसलिए इस देश का युवा, इस देश की एकता का प्रतीक, वो निश्चित रूप से वो देश की राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता को अक्षुण रखना चाहेगा, तो निश्चित तौर से वह देश में चेतना के प्रतीक जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके भी टुकड़े को, उसके भी जो दो टुकड़े करके कांग्रेस पार्टी जिसको अपना ये समझ रही है कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो इसका भी विरोध इस देश की युवा ही कर रहा है, इस देश की युवा ही करेगी और उसका खामियाजा निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी को।
0: सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, मैं चाहता हूं इस पर आप अब रिएक्ट करें कि आपकी देशभक्ति को ही उस संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि आप क्या वाकई देशभक्त हैं भी? आप छात्रों की गूंज तो कर रहे हैं, तो छात्रों की बात आप क्या करेंगे? आप तो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रीय गीत का अपमान कर रहे हैं।
2: राजीव भाई कहते हैं ना कि हार गए जेनजी के आगे, लाठी वाठी हंटर वंटर, और भारत फिर से एक हुआ है, गर्व है तुम पर जंतर मंतर। भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहना है कहें, भारतीय जनता पार्टी वाले नैरेटिव हार गए। आप देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, आपको झंडे की भी बात बताऊंगा, वंदे मातरम की भी। मैं पहले एक चीज सुन लीजिए राजीव भाई, आज तक पिछले 2014 से आज तक आप हमें एक कोई लाइन बता दो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वर्सेस राहुल गांधी। हमेशा यह रहता था कि मोदी शाह, मोदी जी की ये नीति, मोदी जी की वो नीति। आज भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव और परसेप्शन दोनों हार गई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि नरेंद्र मोदी जी वृद्ध हो गए। अब उन्होंने कहा कि नितिन नवीन वर्सेज राहुल गांधी, हम इसका स्वागत करते हैं। एक बात। दूसरी बात आप आ जाइए, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी युवाओं की बात करी, बड़े बड़े क्या नाम देश की बात करी। मैं आपको पहले तो वंदे मातरम पर ही बता दूं, मैं चुनौती देकर के, आदरणीय के शर्मा जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, मैं इनको कहता हूं कि 2014 में भारत का क्षेत्रफल कितना था वो बता दें, और 2026 में भारत का क्षेत्रफल आज कितना है वो बता दें। आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा कौन देशभक्त है और कौन सी पार्टी देशद्रोही है, कौन सी पार्टी चाय पिला करके झूला झूला करके अपने देश में अतिक्रमण करने देती है अरुणाचल प्रदेश में, गलवान में और लद्दाख में, और कौन सी पार्टी ऐसी है जो किसानों के साथ गद्दारी करके क्या नाम जो है यूएस ट्रेड डील करती है, जिसमें यूएस कहता है कि साहब हमारा किसान तो यहां पर 0% टैरिफ करेगा, और हिंदुस्तान का किसान अगर अपना प्रोड्यूस का अमेरिका बेचता है तो उसको 18% टैरिफ देना पड़ेगा। तो गद्दार कौन है, देश को तोड़ने वाला कौन है, इसके बारे में आपको दूसरी बात और बताता हूं। तो ये जो बात अभी के शर्मा जी कह रहे थे राष्ट्रगान के लिए और राष्ट्रगीत के लिए, तो जो चीज गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन चार लोगों ने मिलकर के तय की थी कि दो स्टेंजा गाए जाएंगे, वही हम गा रहे हैं और आगे भी गाएंगे। अंग्रेज हमको मारते थे इन लोगों की मुखबिरी
0: जी, आप तो संसद से कानून पारित हो गया ना, अंग्रेज हमें कानून बन गया है, उसका पालन नहीं करेंगे आप
2: तो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं सर, आप जवाब तो सारे हैं मेरे पास। हम संसद से पारित हर कानून को सर माथे पर रखते हैं, जहां जहां सरकारी कार्यक्रम होगा, जहां जहां राष्ट्रीय कार्यक्रम होंगे, हम पूरा वंदे मातरम गाएंगे, और जहां जहां हमारे अधिवेशन होंगे, जहां जहां हमारे कार्यक्रम होंगे, वहां हम दो स्टेंजा गाएंगे। ये बहुत क्लियर है, देश में जहां पे सरकारी कार्यक्रम हो रहे होंगे वहां पर 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम हम सब लोग गाएंगे, पूरा हिंदुस्तान गाएगा। लेकिन जहां पर हमारा अपना कार्यक्रम, जैसे हम गाते आए हैं 1937 से, वैसे हम गाते रहेंगे।
0: ठीक है,
2: इसमें भारतीय जनता पार्टी को अफगानिस्तान पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से अफगानिस्तान जा रही है, पाकिस्तान जा रही है, देश को तोड़ रही है, ये सारी बातें कर क्यों रही है? क्योंकि ये लोग जेनजी से हार गए।
0: ठीक है, ठीक है, इस पर के शर्मा जी रिएक्शन, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा कि वो क्लियर कर रहे हैं कांग्रेस के। ठीक है, कंप्लीट कर दीजिए,
2: सिर्फ 10 सेकंड सर जी। तो बात सबसे बड़ी ये है, आपसे बताएं राजीव भाई, कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव भी हार गई, परसेप्शन भी हार गई, इसलिए आज लोगों को नौकरी ना देनी पड़े, नल को, नील को, कोल को, भील को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, महिला को, नौजवान को, किसान को, अल्पसंख्यक को, अगर इनको इनका अधिकार ना देना पड़े, अडानी और अंबानी के सामने सारे देश के संसाधन गिरवी रख दें, नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो जाएं, और नरेंद्र मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के समय पीओके न ले, ये तो कह रहे थे कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने में पीओके आ जाएगा, कहां है पीओके?
0: ठीक है, के शर्मा जी, मतलब इसका आप जवाब दीजिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी वो बता रहे हैं, पूरा क्लियर है, हमारे कार्यक्रमों में हम दो स्टैंजा गाएंगे, सरकारी कार्यक्रम होंगे पूरा वंदे मातरम गाएंगे, लेकिन आप बताइए कि इस समय भारत का क्षेत्रफल कितना है?
5: नहीं नहीं, यही तो नियत में खोट है राजीव जी। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि आप हार गए, ये हार गए। लोकतंत्र में राजीव जी जनता जनार्दन होती है, और जो जनता की सोच होती है सरकार को उसी रूप में काम करना पड़ता है। लेकिन इस देश में ये भी उदाहरण है, 70 के दशक में यही छात्र आंदोलन इंदिरा गांधी की सरकार के अगेंस्ट खड़ी हुई। इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी और पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की। यह एक सोच है और एक दूसरी सोच है जो इस समय मोदी जी की सरकार ने दिखाया है। तो हम तानाशाह नहीं है कांग्रेस की तरह, और ना हम तानाशाही पर विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं तो जनता का सेवक हूं, और निश्चित रूप से जनता जनार्दन की भावना को स्वीकारना चाहिए। अब ये जो टाइटल है तो आपने दिया नितिन नवीन राहुल वर्सेस राहुल, ये तो हमारा तो टाइटल है नहीं, लेकिन आपने अपने डिबेट का हिस्सा इसको बनाया है तो मैं इसको क्या कहूं। लेकिन क्या है, कांग्रेस के लोगों की 90 हार देखते देखते, पिछले 20 साल से राहुल गांधी की असफलता को देखते देखते, उनको समझ नहीं आता कि मैं किस बात पर यह प्रशंसा कर रहे राहुल गांधी की। मुझे हंसी आती है, इतना राजनीतिक दिवालियापन कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हो गया है, कांग्रेस पार्टी का हो गया है। अरे आप जो नेता आपका 20 साल में जो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, उसको आप कहीं से सोच रहे हैं कि कहीं से कुछ मिल जाए कहीं से। और लेकिन मैं एक बात पूछता हूं, आपने तो बड़ी अच्छी बात कही, 1901 बात पूरी कर दूं, 1937 का हम रेजुलेशन मानेंगे साहब। प्रश्न यह है कि 1937 में कांग्रेस पार्टी को यह रेजुलेशन लाना क्यों पड़ा? किसके दबाव में उन्होंने वंदे मातरम के गीत को 6 छंदों से 2 छंद किया? उसके पहले तो 20 साल तक तो आप पूरा गाते थे साहब, पूरे 6 छंद गाते थे और कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाते थे। लेकिन जब 1923 में मोहम्मद जिन्ना ने कांग्रेस अधिवेशन में इसका विरोध किया और यह कहा कि यह पूरा नहीं गाया जाना चाहिए, गीत नहीं होना चाहिए, तब जाकर आपने 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए, मुसलमान के वोट के लिए आपने यह काम किया
4: जी।
5: और 1938 में इस बात का, राजपूत जी आपको एक उदाहरण भी दे देता हूं, 1938 में नेहरू जी का जो पत्राचार मोहम्मद जिन्ना के साथ हुआ, जिसमें जिन्ना के 14 मांगों के संदर्भ में नेहरू जी ने जो पत्र लिखे, उस पत्र का अध्ययन कीजिए।
6: ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, जी से 30 सेकंड में जवाब दीजिए, दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है क्योंकि तो आपकी तरफ सीधा टारगेट है। ठीक है
5: कि उस समय भी आप
6: सुरेंद्र जी सिर्फ 30 सेकंड, मैं फिर
5: आज भी आप मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यही आपकी नियत है जी।
4: जी पहली चीज तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से पहले आदरणीय के शर्मा जी को व्हाट्सएप नहीं वैसे पढ़ लिख करके आना चाहिए। जिन्ना ने कांग्रेस कब छोड़ी थी जरा बता दें, 1923 में छोड़ी थी, 20 में छोड़ी थी या 37 में छोड़ी थी, कब छोड़ी थी जिन्ना ने कांग्रेस? जब जिन्ना कांग्रेस में था ही नहीं। जिन्ना तो आपका वो है भाई पुरखा है, क्योंकि आप कहते हो, आरएसएस वाले कहते हैं कि गुजरात में के जो 100 सबसे बड़े सेनानी हैं उसमें पहले 10 में, पहले 10 लोगों के बीच में जिन्ना है। ये मैं नहीं कहता, आरएसएस कहती है कि जो गुजरात से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वो जिन्ना 10वें नंबर पर नहीं 8वें नंबर पर है, पहले नंबर पर महात्मा गांधी है, ये जिन्ना क्या नाम इसके अनुसार आरएसएस के अनुसार। तो जिन्ना तो भाई आपके पुरखे, नंबर एक। नंबर दो, वैचारिक दरिद्र इतना मत बनिए कि आप जनता के लिए बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, पैलेट गन चलवाई हमारे छात्रों के ऊपर, जो कह रहे हैं कि युवाओं का बड़ा ध्यान रखते हैं, पैलेट गन चलवा के युवाओं का ध्यान रखते हैं, लाठी मार के युवाओं का ध्यान रखते हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़ करके युवाओं का ध्यान रखते हैं, आप युवाओं को आतंकी और पाकिस्तानी अफगानिस्तानी कहकर के आप या क्या नाम युवाओं का ध्यान रखते हैं आप, या रात में 12 बजे नींद नहीं आ रही है तो वीडियो बना करके ध्यान रखते हैं युवाओं के लिए, किया क्या आपने? 29 लाख पद खाली है, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सब कुछ बेच करके आप अडानी और अंबानी के नौकर बनाते हैं युवाओं को, और उनको भी नौकरी नहीं मिलती है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं के दुश्मन हैं आप।
6: ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी बात है, मैं जवाब लूंगा क्योंकि शर्मा जी। लेकिन डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मतलब आपके पीटीए में जेन जी कहां है? बीजेपी भी कैंपेन चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, आपके पीटीए में कहां है जेन जी?
7: देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की हालत वो हो गई है, जैसे हम कहते हैं ना, वो हिंदू मुसलमान की बात करेगा, तुम एकता की बात करना। वो धर्म की बात करेंगे तुम हिंदुस्तान की बात करना, वो वंदे मातरम पे बंटवारे की बात करेंगे तुम छात्रों की एकता पे टिके रहना, छात्रों युवाओं के भविष्य ही नहीं बचेगा तो राष्ट्रगान कौन गाएगा। राष्ट्रगान गाने के लिए हमें युवाओं के राष्ट्रों के जो हमारे युवा हैं जो हमारे छात्र उनका भविष्य तो सुनिश्चित करना है। वो भविष्य अगर उनका सुनिश्चित नहीं होगा हमारे देश के लोगों का तो राष्ट्रगान गाएगा कौन। राष्ट्रगीत के लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रगीत की बात होती है भाई संविधान, हम लोग तो संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, ये उस पर राजनीति तो करते हैं। मैं तो आज सुबह देख रहा था, मैं इनसे पूछता हूं, मैं चैलेंज भी करता हूं आपको और आपके कैमरामैन भी निकल के जाएं, क्या इस देश के अंदर में जो हमारे जो किसान हैं, हमारे जो रेहड़ी वाले हैं, हमारे जो रिक्शे वाले हैं, हमारे जो मजदूर हैं, क्या वो पूरा हमारा राष्ट्रगीत गा सकते हैं? वंदे मातरम पूरा गा सकते हैं? क्या उनको संस्कृति आती है? क्या इतनी संस्कृत आती है कि पूरा गा लें वो? तो इसके मतलब अगर वो पूरा नहीं गा पाएंगे तो राष्ट्रभक्त नहीं है, तो रेहड़ी वाला किसान हमारा मजदूर कमजोर व्यक्ति काम करने वाला अगर वो नहीं गा पाएगा वंदे मातरम तो क्या इस देश का राष्ट्रभक्त नहीं कहलाएगा? या उसके आप नहीं उन सभी के ऊपर टैग लगा देंगे कि राष्ट्रभक्त नहीं है जो नहीं गा पाएगा? सवाल ये है कि इसके भाव को समझने की जरूरत है, जो हमारा वंदे मातरम गीत है उसके भाव को समझिए। यही शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान साहब,
6: ये जो कांग्रेस का भाव है जो भी सुरेंद्र जी ने बताया वो कितना उचित लगा है कि भाई हमारे कार्यक्रमों में हम दो स्टैंजा गाएंगे, सरकारी कार्यक्रमों में 6 गा देंगे, तो ये आपको कितना उचित लग रहा है संसद के? हाँ, इस पर भी मैं चाहता हूँ आप अपनी राय रखें।
7: बहुत देर बाद आप आए हैं, मैंने कहा ये चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, सुखदेव हो, ये सब अशफाकुल्लाह खान साहब हो, ये वंदे मातरम गाते गाते फांसी पे झूल गए ये सोच के कि हमारे जो आने वाला हमारे छात्र जो युवा है हमारा देश का भविष्य सुरक्षित होगा। वो इसलिए थोड़ी झूल गए थे कि आप उन्हीं छात्रों पे पैलेट गन चला गई हमारी सरकार, उन्हीं छात्रों के ऊपर AK-47 तान देगी, उन्हीं छात्रों को कील कांटी से वार कर देगी, वही हमारे किसानों के रास्ते में कील कांटी बिछा देगी, वही किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बोला जाएगा, इन्हीं किसानों के हमारे किसानों की मौतें हो जाएगी अपना अधिकार पाने के लिए, इन्हीं किसानों के खिलाफ आप काला बिल लेके आ जाएंगे, ऐसा तो उन्होंने नहीं सोचा था। वो तो फांसी पे इसलिए लटक गए थे कि मेरा देश आजाद होगा, भारत माता आजाद होगी, भारत माता में अगर पहली लाइन देखें सुजलाम सुफलाम मलज शीतलाम शुष्क श्यामलम मातरम वंदे मातरम क्या है? स्वच्छ पानी मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी। यहाँ इंदौर में कितने लोग गंदे पानी पी के कितने लोगों की मौतें हो गई, हवा में AQI कितना होता है जहरीलिया, आप बताइए। यहाँ फसल फूल, यहाँ जो फसल लहराती रहेगी, क्या फसल यहाँ पेड़ पौधे नहीं काटे जा रहे, जंगल नहीं काटे जा रहे, क्या किसी कंपनी को जंगल काट के नहीं दिया जा रहा है उसको इंडस्ट्री लगाने? मैं पूछना चाहता हूं क्या जो गाने का सार है, जो मूल भाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी समझती है कि सिर्फ उसमें राजनीति करना चाह रही है, सिर्फ उसमें राजनीतिक भाव देखती है कि नहीं इससे हमें राजनीतिक रोटी?
6: पॉइंट आ गया ठीक है अनुराग जी, ठीक है आपका पॉइंट आ गया, मैं केके शर्मा जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं, लेकिन धीरेन्द्र
8: एक छोटा सा जवाब दे
6: दीजिए।
8: मैं छोटा सा एक जवाब देता हूँ, एक छोटा सा जवाब देता हूँ राजीव जी, बस दो
6: बोलिए बोलिए जल्दी। हाँ
8: अभी अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि हम संविधान को, हाँ हम संविधान को मानते हैं। वंदे मातरम गीत गाने का जो नियम है वो ऑलरेडी संविधान का हिस्सा बन चुका है। अब ये यदि नहीं गाने की बात कर रहे हैं तो संविधान को कितना मानते हैं ये जनता विश्लेषण।
6: ठीक है मैं आ रहा हूं, ठीक है केके शर्मा जी मैं लौटूंगा आपके पास, देखिए दूसरे मेहमान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको पूरा समय दूंगा,
8: एक बात पूरी कर रहा हूं। ये कह रहे हैं रेहड़ी पटरी वाले नहीं गा पाएंगे मजदूर, मैं एक बात कह रहा हूं केवल केवल, तो क्या मैं बता रहा हूं उसी का उत्तर दे रहा
7: हूं, नहीं मानेंगे
8: मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं,
7: वो वंदे मातरम नहीं,
8: मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं
7: ना,
8: मैं
7: उत्तर दे रहा हूं, सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? अब वंदे मातरम को तो नहीं अपनाना चाहते, वंदे मातरम के सार को नहीं अपनाना चाहते, अब
6: राजीव जी हमने अनुराग जी आप कंप्लीट कर लेने एक सेंटेंस प्लीज, दूसरे मेहमान के पास भी जाऊंगा मैं अनुराग जी, आप फिर फॉर्म में आ गए आप अनुराग जी प्लीज, सिर्फ एक सेंटेंस में कंप्लीट करिएगा,
8: एक सेंटेंस बोल रहा हूं जी, एक सेंटेंस मैं बोल रहा हूं बस, मैं इतना कह रहा हूं ये ठीक प्रश्न
7: नहीं, कब सोचा था, कब सोचा था दलित को मोहित जाटव को आप मेरठ में था
8: लेकिन नहीं गा पाएंगे तो क्या वो अपमान कर सकते हैं क्या?
7: भाटी और यहाँ पे
8: जो सोनिया गांधी ने,
7: सुनो मोहित जाटव
8: जो सोनिया गांधी ने अपमान किया वंदे मातरम का, कोई देश का
6: नागरिक दोनों साथ में बोल रहे हैं कोई फायदा नहीं है बात करने की, दोनों की बात नहीं आ रही,
7: पार्टी एसएसपी ऑफिस में
6: मैं धीरेन्द्र जी, सिर्फ धीरेन्द्र जी को स्क्रीन पे किया,
7: ये आपका
6: धीरेन्द्र जी मतलब नौजवान सड़कों पर आया है, नौकरियां मीडिया है नहीं, पेपर लीक मुद्दा है, वो कह रहे हैं इथेनॉल है, E20 है, बहुत सारे मुद्दे हैं, और सरकार कह रही है वंदे मातरम गाओ। ये कैसे होगा? मतलब उनको, उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है।
9: बिल्कुल सही कहा है, और मैं कह रहा हूं कि सही बात है ना कि नौकरियां, पढ़ाई लिखाई, इस पर बात होनी ही चाहिए ना, लेकिन इससे भटकाने के लिए न जाने तरह तरह के, कभी संसद भवन के थाने के बाहर बैठ जाओ, बिहार में जब चुनाव आए तो बैलेट से चुनाव कराओ, उसके सहारे पर लग जाओ, उत्तर प्रदेश का चुनाव देखे नहीं कि अब पैलेट आ गया, बिहार में बैलेट बम और बिहार में उत्तर प्रदेश के लिए पैलेट गन। तो इस तरह की चीजों से छात्रों को आखिर हम क्या दे रहे हैं? सवाल यह है ना, सदन जब चल रहा था तो उसमें सुधार की बातें, आपकी राय आनी चाहिए थी, क्या नौकरियों के लिए सरकार कर रही है, सवाल अगर उनको पूछना था तो छात्रों के लिए ये पूछना चाहिए था ना कि आपने उनके शिक्षा के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था किया। सवाल ये
6: वो तो पूछ रहे हैं ना कि 29 लाख पद खाली क्यों हैं?
9: मैं बता रहा हूँ कि और ये जंतर मंतर की बात जो किया वो वहां से हार गए हम, और उस हार में हम खुद को जीत महसूस कर रहे हैं। अपने बच्चों के पास अगर उनकी सुनवाई की है तो ये मेरी जीत है। रांची की तरह सर फोड़ करके पत्रकारों पर हमने FIR नहीं किया है। लोकतंत्र अगर कहीं हम लोग आदर कर रहे हैं तो NDA की सरकार में कर रहे हैं। और युवाओं की जहां तक बात है तो खुद हमारे नेता चिराग पासवान जी युवा भी आ रही हैं, और छात्रों के बीच में, जेनजी के बीच में, खास करके दलित जेनजी के बीच में आज सबसे अगर देश में कोई लोकप्रिय है तो आदरणीय चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। हमारी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है युद्ध
10: को लेकर, मोहित जाटव को पीटा गया,
9: बीच में ना बोले, बीच में आप नहीं बोलिए ना,
10: आज निकली क्या दलितों के लिए आप जाटव
6: बीच में नहीं टोका था, प्लीज 30 सेकंड में कंप्लीट कर दिए, मैं आशुतोष जी फिर आपके पास आ
9: अनुराग,
6: ओनली 30 सेकंड
10: बताइए
6: अनुराग जी प्लीज।
10: आपने मेरठ में जो जाटव पीटा गया दलित का, वो व्यक्ति दलित समस्या वाले व्यक्ति को आपने बुला के SSP ऑफिस में पीट दिया, इसके खिलाफ आपकी आवाज निकली क्या?
6: अनुराग जी देखो, जेनजी ये भी डिबेट का ही तरीका पसंद नहीं करती है,
10: राजनीतिक प्रेम है,
6: जेनजी ये समझती है कि जिसका नंबर आए वही बोले, और आपके पास बहुत सारे तर्क होंगे मैं समझ रहा हूँ, बस जब आपका नंबर आ जाए तब एक साथ आप उन्हीं तर्कों को रखेंगे, एक ही बात को रिपीट ना करें अलग अलग सेंटेंसेस में। हाँ धीरे,
9: दूसरी बात, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ये तर्क देते तो, ये तर्क देते तो बहुत अच्छा लगता, ये कुतर्क करते हैं, और कुतर्क से जेनजी और युवा नफरत करते हैं,
10: समाज को पीटा जाए तो
9: किसान की बात नहीं करते हैं।
10: मैं उत्तर प्रदेश में नजर आता है, लेकिन आप
9: की हत्या हुई है उस पर मुस्लिम सादे रहते हैं।
6: ठीक है धीरेन जी, आपकी बात भी आ गई, मैं अनुराग भी आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आशुतोष आपके पास आना चाहता हूँ कि आप इस समय देश की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप अलग अलग चैनल पर बैठते हैं, डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सुन रहे हैं, उनके काम को आप देख रहे हैं, क्या ये लोग जेनजी को एक्चुअल में समझ पा रहे हैं?
11: नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो युवा के मन की भावनाओं को समझ रही हैं। वो वंदे मातरम भी गाना चाहता है, लेकिन वो कहता भाई हमारे हमारी परीक्षा ठीक करो, एजुकेशन को रिफॉर्म करो, वो ये कहता है कि हमारे लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराइए, उस पर कोई चर्चा हो ही नहीं रही, पूरी चर्चा को मोड़ के वंदे मातरम पे लाके खड़ा कर दिया गया, सीधी सी बात है। ये क्यों किया गया? आप क्यों नहीं, सरकार की तरफ से यह कहा जाता कि हम 6 महीने का ब्लूप्रिंट हमारे पास है, इस 6 महीने के अंदर हम शिक्षा के में जबरदस्त तरीके से सुधार करेंगे, ये 3 स्टेप जो हम करने जा रहे हैं, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही, चर्चा लाके खड़ी कर दी गई 1937 में, ये क्या है? इससे और जो बच्चे जा रहे हैं स्कूलों की समीक्षा करने के लिए उनको वहां पीटा जा रहा, उनके उनके हाथ पर तोड़े जा रहे हैं, ये क्या डिबेट है? आप मुझे बताइए, मैं बच्चे आपको अपराध तो नहीं कर रहे, अगर कहीं स्कूल अगर गलत तबेले में बन रहा है या कहीं दूसरी जगह पर है जो खतरनाक है, अगर कोई 10 बच्चे जाके अगर उसको ठीक करना चाहते हैं या उसके बारे में ऑडिट करना चाहते हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्यों हो सकती है?
6: नहीं, लेकिन फिर एक सवाल ये है ना कि उनको ऑडिट का अधिकार किसने दिया, और वो बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों जा रहे हैं, कि वो भी बहुत सिलेक्टिव है ना, उन पर भी पॉलिटिक्स करने का ही आरोप लग रहा है।
11: नहीं नहीं नहीं नहीं, देखो बच्चों के ऊपर पॉलिटिक्स का आरोप लगाना होता तो फिर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, या तो सरकार तय कर ले कि हमने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो लोग थे वो एंटी नेशनल थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स थे। मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी वो तो सरकार का काम कर रहा है ना, अगर वो जाके सरकार को बताना चाहता है कि आपके फला स्कूल के अंदर सुविधाएं नहीं है, तो वो सरकार के खिलाफ कैसे काम कर रहा। सरकार को तो उसको स्वागत करना चाहिए, सरकार को कहना चाहिए बहुत अच्छा आपने जो रिपोर्ट दी है, आपने हमारी आंखें खोली हैं और हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रहा। इसके बजाय उन बच्चों पर लाठियां चल रही हैं, उनको पीटा जा रहा, क्यों भाई? तो ये जंजी से जुड़ने की बात नहीं, जो देश के बुनियादी सवाल हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, जो शिक्षा का प्रश्न है उस पर डिबेट ना हो, इसलिए दूसरे मुद्दे उठाए खड़े किए जा रहे हैं। आज तक क्या भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि जो बच्चे वहां स्कूल का ऑडिट करने गए थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई? उल्टे वहां के शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे, सरकार में बैठा हुआ एक मंत्री हिंसा को बढ़ावा दे रहा, ऐसे मंत्री के खिलाफ तो FIR दर्ज होनी चाहिए। वो प्रोवोक कर रहा लोगों को, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा। तो मैं जो कहना चाहता हूं, जिनजी की मुख्य मुद्दे क्या है, वो शिक्षा पे चर्चा चाहते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहते हैं, इस पे कोई पार्टी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं दिखाई पड़ती। बेसिक सवाल ये है।
6: ठीक है, मैं इस पर केके शर्मा जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सूर्या मिथिल, आपकी भी राय आना जरूरी है कि जेन जी को लेकर आपका थॉट क्या है, और जो अब कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि क्या आप जेन जी की अहमियत समझ में आ रही है राजनीतिक दलों को?
10: धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। चार लाइनें सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने कही थी, मैं भी चार लाइनें ऐड कर देता हूं उनके साथ में। ना लाठी से डरे ना हंटर से झुके, माटी की खातिर कभी कदम ना रुके, गूंज रहा है आज भी उल गुलान का स्वर, गर्व है हर वीर बिसरा के वंशज पर। जिस प्रकार से झारखंड में लाठी भी खाई डंडे भी खाए, रात को उनकी लाइट काट दी गई, माताओं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, उनको ना तो कोई जुनैद भाई बिरयानी खिलाने आ रहा था और ना ही कोई विदेशों से उनको खाना पहुंचा रहा था, लेकिन उसके बाद भी मेरे उन वीर बिरसा मुंडा के वंशजों ने अपने संघर्ष से ना किसी गाली देकर, ना कोई बदतमीजी कर, ना कोई पत्थर चलाए बिना वहां पर सरकार को झुका लिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि जंतर मंतर जैसा जो भया हुआ है इस देश में, एक मॉडल तैयार हुआ पत्थरबाजी का, लाठी का, उसको हमें इंडोर्स करना चाहिए, पहली चीज।
6: तो फिर सरकार झुकी क्यों उनके आगे?
10: यहां पर अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नहीं देखिए, फिर यही परेशानी है सर, परेशानी यह है कि अगर सरकार ने अपने युवाओं के संग बात की, समन्वय बैठाया और उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने मांगा ना कि इस्तीफा चाहिए हमको, तो उन्होंने दिलवा दिया, बात खत्म, आप खुश हो जाइए। लेकिन मैं इससे इतर एक और विषय पे आना चाहता हूं। यहां पर अभी वंदे मातरम का एक छंद गाया हमारे जो सभा के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, मैं बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं 6 छंद पूरे वो याद करेंगे, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपको इन वंदे मातरम के 2 छंद या 1 छंद गाने से पहले अपने नेता आजम खान के उन शब्दों पे भी क्षमा याचना करनी चाहिए जिसमें उन्होंने भारत माता को डायन कहा था। हमारे भारत रत्न और देश के संविधान निर्माता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी को भूमाफिया कहा था, तब तो आपके मुंह में दही जम गया। आज वोटों की फसल यहां दिख रही है, काट सकते हैं, इसलिए आज आप वंदे मातरम गाने लग गए। उससे पहले भारत माता का कोई अपमान कर दे, देश के संविधान निर्माता कोई अपमान कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और बात यहां पर अभी जो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि
6: 20 सेकंड में कंक्लूड करिए,
10: जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हम तो सरकारी कार्यक्रम में हम 6 छंद खाएंगे लेकिन 2 छंद तो हम अपने पार्टी कार्यक्रम में गाएंगे। तो ढोंडियाल जी, मैं ये भारत का संविधान लेके आया हूं और मैं यहां पूछना चाहता हूं इनसे, सुरेंद्र सिंह राजपूत से, कि मुझे इसमें किसी एक अनुच्छेद में ये बता दीजिए जिसमें आपको ये अधिकार दिया गया हो कि आपके पास में अपनी कार्य समिति में पारित करके राष्ट्रगीत का अपमान करने का अधिकार है। आप चाहेंगे तो 2 छंद गाएंगे, आप चाहेंगे तो 6 छंद गाएंगे, ये बताइए। चंद्रशेखर आजाद, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर,
6: सुरेंद्र जी इस पर जवाब दीजिए, फिर केके शर्मा जी और अनुराग जी भी आपके पास भी आ रहे हैं।
10: प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान की आत्माएं आज जिस प्रकार से रो रही है
12: कि हमारे देश में जिसके लिए उन्होंने अपनी जान दी उसमें उनके राष्ट्रगीत
6: जिनको सवाल है। मैं आशुतोष आपके पास भी आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, सिर्फ सबसे 30-30 सेकंड में सब अपनी बात रखेंगे प्लीज। अब सुरेंद्र जी समय कम है ना, मैं सबके पास जाना चाह रहा हूँ। सुरेंद्र जी
13: अब ये जो भी मैथिल साहब है भारतीय जनता
12: कौन सा अनुच्छेद है
13: काहे को खाम खा के शर्मा जी को बुला लिया आप लोग। एक मिनट, दो बातें बड़ी। पहली चीज, जिस आदमी को ये नहीं पता कि जो राष्ट्रगान के और राष्ट्रगीत के, अरे चुप रहिए यार,
6: ये सूर्या जी ऐसे देखिए इंटरप्ट कोई बीच में ना करे, आपने सवाल पूछा तो जवाब तो सुनेंगे
13: जी। क्या क्या ये है, हाँ दो चीजें हैं बड़ी स्पष्ट है। इनके रहते भारतीय जनता पार्टी अब इस तरीके से भी प्रवक्ता भेजने लग गए और आप लोग इस तरीके से भी रखने लग गए, ये क्वेश्चनेबल बात है।
6: नहीं पर अगर उनका सवाल है तो उस सवाल को आप एक राजनीति से प्रेरित क्यों समझते हैं? सवाल है तो उसका जवाब दे दीजिए ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि हर सवाल का आपके पास, हाँ
13: मैं जवाब,
6: सवाल करने वाला इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सवाल इम्पोर्टेंट होना चाहिए
13: भाई, जवाब दे रहा हूँ लेकिन
12: बताइए संविधान।
13: नहीं नहीं, सवाल करने वाला भी इम्पोर्टेंट होता है चूंकि, क्योंकि पीछे से ये क्या बेवकूफी है भाई, जवाब नहीं लेना चाहते आप? संविधान की आपने सभा पढ़ी है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो क्या नाम बहस है उसमें पढ़ी है? आपको पता है कि क्यों दो छंद लगाए गए? संविधान की सभा में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। बकवास मत करिए, बीच में मत बोलिए। राजीव ढोंडियाल जी ऐसे कुकर्मी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतने देशद्रोही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतने देशद्रोही है संघ के लोग कि वहाँ पे संविधान सभा तो नहीं बात। 1920 में जो जिन्ना जो है चला गया, ये बकवास करता है आदमी।
6: सूर्य मैथिल जी देखिए,
13: बकवास सूर्य मैथिल जी शर्मा ने बैठा रखा है इस आदमी को।
6: नहीं नहीं, एक एक, एक जो जिसका नंबर आएगा वही बोले।
13: बकवास 10 सेकंड में भारतीय जनता पार्टी ने और आज तक ने बैठा रखा है।
6: सुरेंद्र जी उनके सवाल का आप जवाब दीजिए ना कि जो संसद से पारित कानून है आप 6 छंद क्यों नहीं गा रहे हैं? सिंपल उसका जवाब दीजिए बस, कि हम इतना गाएंगे अपने कार्यक्रम में सरकारी में दूसरा गाएंगे।
13: संविधान सभा की जो संविधान सभा की बहस तो एक बार बताइए ना, संविधान ने जिस चीज को अंगीकृत किया था मूल आधार पे कि 2 छंद गाए जाएंगे, उसके बाद आज हम तो कह रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रमों में हम 6 छंद गाएंगे।
12: हमारे व्यक्तिगत कार्यक्रमों में
13: क्या नाम, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान में अबे बकवास मत कर मूर्ख आदमी।
6: ठीक है सूर्या मैथिल जी, हो गया आप दोनों की बात आ गई। मैं के के शर्मा जी
13: मैं ऑफिशियल प्रोटेस्ट दर्ज कर रहा हूं आज तक से। और
8: देखिए मैंने इस पर उत्तर दे दिया
6: जी, मैं ऐसा तो नहीं है कि किसी को मतलब मैं बीच में किसी को कोई मेरे कहने पर बोल रहा है, मैं इंटरप्ट तो कर ही रहा हूं।
13: मेरी बात नहीं आने,
6: आपकी पूरी बात आई है जो आप
13: दलित प्रोटेस्ट है।
6: सुरेंद्र जी जो आप तर्क रख रहे हैं वो तर्क आपकी पूरी बात आ गई है।
13: भारतीय जनता पार्टी,
6: अब के शर्मा को सुन लेंगे,
13: भारतीय जनता पार्टी के ये चाटुकार, भारतीय जनता पार्टी के ये चाटुकार और भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारों को पूरा समय
8: गाली गलौज करने से कुछ नहीं।
6: वो भी हमारे उतने ही सम्माननीय अतिथि जितने आप है सुरेंद्र जी, आपको विचारों पर आपत्ति हो सकते हैं, उनके उनके अपने सवाल थे।
13: सूर्या मैथिल नाम का आदमी भारतीय जनता पार्टी का चाटुकार है और ये देशद्रोह की बात कर रहा है। ये समय नहीं पड़ेगा,
8: राजीव मेरा समय, बोलने दीजिए मुझे, बोलने दीजिए। देखिए मैं इतना ही कहता हूँ, जब तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते, तब गाली गलौज की भाषा आती है। कांग्रेस की पुरानी आदत है और कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय वही कर रहे हैं। मैं तो उस प्रश्न पर आ रहा हूँ जिस प्रश्न का को आशुतोष जी ने उठाया। आशुतोष, अरे भैया चुप रहो भाई, गाली गलौज के तुम जाने जाते हो, गाली गलौज के लिए जाने जाते हो सुरेंद्र राजपूत। अब एक मिनट, गाली गलौज बंद करो, गाली गलौज के लिए जाने जाते हो। राजीव जी मुझे बोलने
6: दीजिए, इंटरप्ट करें ना सुरेंद्र जी।
8: अरे भाई यार,
13: सुरेंद्र जी मेरी माँ को गाली देते हो
8: तुम्हारे,
13: अरे क्यों गाली गलौज के माही हो, मानो ना,
8: किस किस की माँ को
6: क्या दे दिया। मैं डिबेट को डिरेल नहीं होने दूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी से इतर जा। नहीं नहीं प्लीज, आप सब आप एक दूसरे इंटरप्ट न करें, सिर्फ के शर्मा जी की आवाज आ रही है बस। हाँ बोलिए के शर्मा।
8: मैं आशुतोष जी के एक प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। आशुतोष जी ने कहा कि बच्चे गए थे वहां पर स्कूल का ऑडिट करने। पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपके करोड़ों दर्शकों को कि वहां बच्चे नहीं गए थे। आशुतोष जी थोड़ा सा भ्रम फैलाने से बचा कीजिए, वो सीजेपी पार्टी के लोग गए थे, तिलचट्टा जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की लगभग अब तो घोषित हो चुका है वो बीटी में, जिस पार्टी से आप भी कभी संबंधित थे, अलग बात है आपको भगा दिया गया वहां से। वो तिलचट्टा जनता पार्टी के लोग थे, वो बच्चे नहीं थे, और उनका जिन्होंने विरोध किया वो उसी गांव के युवा जो वहां के हैं, बच्चे हैं, उन्होंने ही किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जी अपने गांव की व्यवस्था को बना सकते हैं, वहां इस तरह की पार्टी अराजक तत्व या किसी की आके इस तरह की गतिविधि वहां पर हमें मंजूर नहीं है। तो ये बात पहले रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, तो ये एक स्पष्टता है,
14: ठीक है।
8: दूसरी बात, दोनों की बातों को वहां की सरकार ने लिया है, दोनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। बस मैं एक जवाब और,
14: ठीक है, आशुतोष मैं आपके पास ही आ रहा हूं।
8: अभी बार बार भदौरिया एक चीज बार बार कह रहे थे, मैं वही समझाना चाहता हूं, मैं वही समझाना चाह रहा हूं कि ठीक है, देश के अन्य लोग पूरा नहीं गा पाएंगे या नहीं गा पाते होंगे, लेकिन सम्मान तो कर सकते हैं राजीव जी। आज कहीं भी हो वंदे मातरम गीत गाया जाएगा तो लोग सम्मान में खड़े होंगे ना, लेकिन 15 अगस्त के दिन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में सोनिया गांधी ने जिस तरह से अपमान किया और सारी विपक्षी पार्टियां उसके समर्थन में खड़ी हुई और जिस ढंग से उन्होंने अपमान किया, रोकने का प्रयास किया,
14: ठीक है,
8: क्या ये गलत नहीं था?
14: मैं इस पर
8: इनकी जो है,
14: ठीक है,
8: देश विरोधी मानसिकता,
14: आपके पॉइंट आ गए। मैं अनुराग आपके पास आऊंगा, लेकिन आशुतोष आपकी तरफ था कि वो बच्चे नहीं थे, वो एक पार्टी के ही अब एक तरीके से कार्यकर्ता थे और आम आदमी पार्टी की बी टीम बता रहे उन्हें जिन।
11: देखिए राहुल, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही कि मैं इस डिबेट में इनका जवाब क्यों दे रहा हूं। एक मिनट, क्योंकि मुझे लगता है आजादी के बाद की सबसे कमजोर सरकार इस वक्त है जो एंटी नेशनल आशुतोष रांका के साथ बैठ के।
8: साहब आप तो दस साल से मोदी जी का चश्मा पहन के बैठे हैं।
11: के शर्मा है जो टेलीविजन में माँ की गालियां देते हैं, ये इनसे सीखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इनको प्रवक्ता बना रखा है? मां के गाली देने की
8: बदतमीजी मत कर।
11: ये भाषा है।
8: तेरे पास तर्क नहीं है,
11: इसको समझाइए।
14: फिर हम टॉपिक पे रहेंगे ना आशुतोष, टॉपिक पे रहेंगे ना।
11: फिर मैं बता दूं, ये के शर्मा है जो टेलीविजन चैनल पर आकर मां की गालियां देता है।
8: छोड़ के भाग जाओ।
11: ये है वो आदमी।
8: मैं कह रहा हूं
14: एक दूसरे को हम प्रोवोक नहीं करेंगे। हम फिर टॉपिक पे नहीं रह सकते हैं। जेन जी है देश का युवा। हाँ, आप उस पर आइए।
11: मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। मैं फिर बोल दूं,
8: आशुतोष जवाब आदमी का नाम
14: के शर्मा जी, प्लीज
8: व्यक्ति का आरोप लगा रहे हो। आशुतोष जवाब नहीं दे पा रहे हो तुम।
11: फिर
8: तुम्हारे पास जवाब नहीं है।
14: राजीव
11: आप एंकर थे जब इस आदमी ने माँ की गाली दी थी। आप एंकर थे उस वक्त। आपने इंटरवीन किया था नहीं किया था?
14: बिल्कुल किया था आप, लेकिन वापस टॉपिक पर आए ना।
11: आपने किया था ना।
14: तो प्रेम शुक्ला जी थे।
11: ये लोगों को ज्ञान देने आया यहाँ पे। चलिए मैं ये कह रहा हूं, जिस आशुतोष रांका पे हमला हुआ उसके साथ जेपी नड्डा और दूसरे केंद्र के मंत्री बैठकर निगोशिएशन कर रहे थे, आज उस बच्चे को ये एंटी नेशनल बता रहे। इनके गुंडे जो है वो जाके उस बच्चे का हाथ पैर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का शिक्षा मंत्री कह रहा है कि अच्छा किया। यह है केंद्र की सरकार और यह है उसका चरित्र। यह देश के लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए।
14: ठीक है,
11: अगर कोई बच्चा जाता है, अगर कोई नागरिक इस देश का जाता है, वो किसी शिक्षा स्कूल के बारे में देखना चाहता है तो क्यों?
14: ठीक है,
11: इस बदतमीज आदमी को बोलिए कि बीच में बोलना बंद करिए।
14: ठीक है आशुतोष जी, मैं चूंकि सबके पास एक मिनट
8: का आरोप है, मुझे जवाब दे दीजिएगा इसका।
14: बोलिए के शर्मा जी।
8: पहली बात तो मैं आशुतोष जी को चैलेंज करता हूं कि वो मुझे यहां पर साबित करे कि मैंने किसी को माँ की गाली दी है।
14: वो प्रेम शुक्ला जी,
8: ये बदतमीज आदमी माफी मांगे इस चैनल में, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आशुतोष जैसा बदतमीज जो उत्तर नहीं दे पाता है तब दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाता है, ये इसकी सच्चाई है। और ये केवल केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित
14: वो प्रेम शुक्ला जी थे, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए मुझे लग रहा है।
11: नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, इसी
14: मैं व्यक्तिगत लड़ाई है, एक तरफ हम फिर मुद्दे पर आते हैं, और धीरेन्द्र जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, एक छोटे से रिएक्शन अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी सिर्फ 20-20 सेकंड में अपनी बात रखेंगे, समय बड़ा कम है, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचेंगे,
10: समय बर्बाद करवाते हैं आप, ये ठीक नहीं है। तो आवाज बंद करके हम लोग अपनी बात कहने आए ना, क्योंकि माँ की गाली देने आए ना, तू तड़ाक करने आए ना, तेरा मेरा करने आए। देखिये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति संस्कार के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि भाई ये बताइए स्कूल क्या सही चल रहे हैं। अब तो जैन अल्फा रोड पे आता है, कहता है हमारे स्कूल में पानी भर जा रहा है, हमें स्कूल तक जाने के रास्ते नहीं है, हमें मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो ठीक नहीं है, हमारे यहाँ खाने में सर्प यहाँ पे उसे नमक की जगह मिला दिया जाता है। सोचो आप, उनके 30-30 बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये अपनी जैन अल्फा अपने मांग कर रहा है, जैन जी तो मांग कर ही रहा था। तो आपसे जब सवाल पूछा जाता है आप वंदे मातरम की बात करते हो, वो बच्चे जिंदगी मौत से जूझने लगते हैं, उनमें सर्फ मिला देते हो आप नमक की जगह, और बात कर रहे हो वंदे मातरम का, बच्चे कैसे कहेंगे वंदे मातरम जब उनको उन बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। भाई आप स्कूल तो चलवा लो ठीक से, पानी भर जाता है स्कूल में,
14: ठीक है,
10: स्कूल में जाते हैं पैर डूब जाते हैं, बच्चे कह रहे हैं टीचर नहीं आते, बेंचेस नहीं है, स्कूल तबेले में चल रहा है, सोचो आप, और आप कह रहे हो वंदे मातरम करके
14: बच्चों का समय बड़ा कम है, लास्ट एक मिनट बचा, धीरेन्द्र जी
10: गाते रहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं
9: राजीव जी ये तीनों विपक्ष के प्रवक्ता सवाल बहुत अच्छे करते हैं। आशुतोष जी मैं आपकी भी बहुत कद्र करता हूँ, एक आध बार फिसलते हैं लेकिन आप जो सवाल सही होते हैं वो करते हैं, लेकिन सभी आप प्रवक्ताओं की बातें बहुत अच्छी रहती है, सवाल अच्छे होते हैं, आपके नेता आपका साथ नहीं देते हैं, जो सवाल आप देश के लिए टेलीविजन पर आकर करते हैं वही सवाल आपके नेता सदन के अंदर में आकर के नहीं करते हैं,
14: ठीक
9: है, कि हमें करना क्या है, यह सरकार जवाब देना चाहती है मेरे भाई,
14: लेकिन
9: सुनने देंगे इसलिए आप।
12: थैंक यू। देखिए असल में राजीव प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस को ना वंदे मातरम से परेशानी नहीं है, परेशानी जो है वो उनको अपने वोट बैंक से है। आपको याद होगा अभी 2026 में जो है असल में चुनाव हुए थे ना, आप बताइए 29 में से 26
13: हम लोग
12: जो एमएलए हैं एमएलए मुस्लिम थे, और इन लोगों ने जो 1937 में वंदे मातरम के
14: ये समय मुझे इतनी इजाजत दे रहे हैं, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन देश में अब जेन जी की बात होने लगी, हर दल कह रहा है कि हम अब जेन जी के साथ हैं, उनके साथ संवाद शुरू हो गया, अब जेन जी किसकी बात मानेंगे, खैर भविष्य के गर्भ में रलब दंगल में वक्त हो चला, एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
15: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
16: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
15: आपको कितने लगेंगे?
17: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का, आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
18: That's the QR code. If you've got a solution, we're listening. And our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that.
17: Ab milkar hawa badlenge.
19: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
4: ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: बी आर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
3: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।
4: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
5: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
4: आपको कितने लगेंगे?
6: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
7: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening. And our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that.
6: अब मिलकर हवा बदलेंगे।

0: जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा, 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की, बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे।
1: सिर पर सिर ये मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन करने की घोषणा करते हैं, मन बनाते हैं, लेकिन झारखंड की जनता अब उतना बेवकूफ नहीं है। झारखंड की जनता जानती है, इस देश की जनता जानती है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति है, वो गरीबी को जानते हैं, गरीबी की पीड़ा को जानते हैं, हर वो काम करते हैं जो गरीब के लिए भला हो।
2: मुझे लगता है कि शायद इसी का अंदेशा होगा जिसकी वजह से उस समय विलंब हो रहा था डिसीजन लेने में, और अब डिसीजन हुआ। तो ये भी बात सही है कि जिनकी नौकरी लग गई, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से कुछ नौकरियां वो सरकारी कर रहे थे, कोई रेलवे की नौकरी कर रहा था, सिर्फ अपने स्टेट में वापस आने के ये में उन्होंने यहाँ की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तो उनके साथ अन्याय हो रहा था शायद, इसीलिए माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया, अब देखा जाएगा क्या होता है न्याय के।
3: पागल तो बना दूंगा देश को, अभी तो बस पेश किया है। अभी बहुत बहुत है, बहुत है।
4: पागल बनाई बुका रे पत्थर की, पागल बनाई बुका।
5: उसमें सीधा है कि इनको जो रस्सी से छलांग नहीं मारते गुलटनिया, वो एक दो मरवा लो, गांजा पियो आदमी नहीं मार सकता। कलखनिया मारे वो लद से खुद गिर जाएगा, समझ लो इसको हटाओ फ्लाइट में जाने लायक नहीं।
3: गुलटनिया और कलखनिया,

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: दंगल के बाद अब आगे देखिए हल्ला बोल अंजना ओम कश्यप के साथ।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
0: प्रेजेंटेड बाय
3: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी नितिन नवीन के पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक। वंदे मातरम पर प्रस्ताव, कांग्रेस की कड़ी निंदा, जेन जी जेन अल्फा से संवाद पर जोर। छात्रों की गूंज में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे राहुल गांधी, कार्यक्रम से पहले भिड़े एनएसयूआई एबीवीपी कार्यकर्ता, प्रोग्राम के लिए 30 सख्त शर्तें, एबीवीपी ने रखा वंदे मातरम का गायन। अखिलेश के चवन्ने वाले बयान पर यूपी में सियासत तेज, मायावती बोली जयंत चौधरी से मांगे माफी, केशव प्रसाद मौर्य भी भड़के, अखिलेश बोले सच भी बोलना गलत हो गया। त्योहारों से पहले चीनी पर सियासत, खड़गे ने महंगाई पर सरकार को घेरा, अखिलेश यादव ने भी कहा कि बड़े लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने जमाखोरी रोकने के निर्देश दिए। और टीम सीजेपी की पिटाई पर छिड़ी एफआईआर की जंग, सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाया मारपीट का केस, विवाद के बाद तबीले से शिफ्ट हुआ स्कूल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज देश में वंदे मातरम भी एक मुद्दा बन गया है। सरकार ने बदलाव किए और अब ये सुनिश्चित हो गया है कानूनन, जो पहले से कानून था उसमें संशोधन करके, कि वंदे मातरम भी हर सरकारी कार्यक्रम में पहले गाया जाएगा और उसके सभी 6 स्टैंजा गाए जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि वो 2 ही स्टैंजा गाए। यही नहीं, अब तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये लगभग तय भी कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना मतलब सुक्खू साहब और इधर रेवंत रेड्डी, उनके कार्यक्रम में तो 15 अगस्त को पूरा संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया, लेकिन केरल में इसको पूरी तरह से नहीं गाया गया, बिल्कुल गाया ही नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ जब कांग्रेस मुख्यालय में गाया जा रहा था तो गाया तो पूरा गया, लेकिन कुछ इशारों वाला वीडियो है जो आपने भी जरूर देखा होगा, जिसमें अभी आरोप है बीजेपी का कि सोनिया गांधी मना कर रही थी पूरा मत गाओ, इधर से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं कुर्सी मंगाई जा रही थी। लेकिन इन सब विवाद के बीच अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि वो पहले की ही तरह 2 ही स्टैंजा गाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसीलिए खास मेहमान सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ जुड़ गए अभय दुबे जी। इन्हीं के साथ साथ 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर ओमजी उपाध्याय जो कि डायरेक्टर हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के, और शाताब चौहान जी जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के, कि आखिर कुछ लोगों को जो वंदे मातरम गाने पर ही पूरी तरह से विरोध है, क्योंकि अब तो ये मैंडेटरी कर दिया गया, हर सरकारी कार्यक्रम में आपको पहले गाना है, 15 अगस्त को भी लाल किले के प्राचीर से 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ये गाया गया था, तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिनको पूरी तरह से आपत्ति है इसको गाने पर, उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट।
1: वंदे मातरम पर आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस, क्या कांग्रेस ने किया वंदे मातरम का अपमान?
2: वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने स्वर्गीय बंकिम बाबू के इस अमर कृति का न केवल अपमान किया है, वो लाखों शहीदों का भी अपमान किया है जो वंदे मातरम का नारा लगाते लगाते देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए।
1: वंदे मातरम पर नहीं थम रहा सियासी घमासान।
3: ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं, हमारे सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ताएं गाते हैं, कोई वाद विवाद पर।
1: वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद गाने पर अड़ी कांग्रेस।
4: वंदे मातरम तो कांग्रेस गा ही रही, ये लोगों ने वो बात कभी और जो लंबा चौड़ा था, जिसे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद कहा था इतना लंबा ये नहीं होना चाहिए, तो वो उन्होंने जो है रोका था कि इतने बस गाया जाए, तो वो पद वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सच श्यामलम मातरम वंदे मातरम है, मातृभूमि की आराधना है, तो कांग्रेस हमेशा गाती रही, इन्होंने नया नया वंदे मातरम पकड़ा है।
1: क्या कांग्रेस का फैसला कानून के खिलाफ है?
5: भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद के पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति की जीवन अधिकारी है, यदि कोई इसके मानने से मना करता

0: देशभक्ति परवीन कवालिया इंसान की जिंदगी।
1: अब वंदे मातरम पर होगी चुनावी जंग।
2: अब आइए शुरुआत करते हैं सुधांशु जी, पहला प्रश्न आपसे यही है कि अब इनका तो क्लियर हो गया सर, इनका स्टैंड क्लियर है और ये कह रहे हैं कि जो फैसला इस देश में सामूहिक रूप से तमाम सबसे बड़े नेता, मतलब आप देख लीजिए कि एक एक करके जो जो उस फैसले में शामिल था उनका नाम लिया जाए तो ये सारे ऐसे नेता थे जिनके फैसले के बाद ये तय हुआ कि दो ही पैराग्राफ गाना है, तो ये कह रहे हैं तो ये बदलाव काहे किए यहाँ पे,
3: बिल्कुल
2: वो कह रहे हैं गलत है ये।
3: आपने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल चेहरे पर से नकाब हट गया कांग्रेस का। 1937 में ये जिद थी मुस्लिम लीग की कि पूरा वंदे मातरम नहीं गाएंगे, आज जिद है कांग्रेस की 89 साल के बाद कि हम नहीं गाएंगे। और देखिए अंजना जी, कभी कभी कहते हैं ना किसी की जिह्वा पे सरस्वती आ जाती है, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब ये कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई। और आप देखिए पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ है, खुद कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं मैं दिमागी नक्सल हूं, यानी माओवाद स्टैम्प, और अब खुद कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग की जीत थी वो मुझे करनी है। यानी अब आप उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस आधुनिक मुस्लिम लीग है और वो माओवादी भी हैं और मुस्लिम लीगी भी हैं। और यह मूल रूप से क्यों नहीं हो रहा, मैं उसका भी कारण बताना चाहता हूं, फिर हिस्टोरिकल विषय बाद में बताऊंगा। क्योंकि आज स्वतंत्र भारत में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस गठबंधन में, इसलिए केरल में नहीं गाया गया। भारत के इतिहास में पहली बार 5 मंत्री अगर मुस्लिम लीग के हैं तो आज हैं, और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने देश का विभाजन कराया था। और अगर कोई कहता है ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिससे आज कांग्रेस का गठबंधन है तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक जो मार्च 1949 में बनी, मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर जिन्ना की मुस्लिम लीग के आजादी से पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो इनको कायदे मिल्लत। अगर ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है तो ये कांग्रेस वो कांग्रेस भी नहीं है जो गांधी जी की कांग्रेस थी। ये तो 1978 में कांग्रेस आई के रूप में रजिस्टर हुई थी। अब हम उसकी बात करते हैं, ये 1937 में जो ये कहते हैं कि प्रस्ताव पारित किया था, तो पहली बात संविधान सम्मत संसद का कानून छोटा और पार्टी की कार्य समिति का प्रस्ताव बड़ा, यानी पार्टी देश से ऊपर। तो पहले भी कह चुके इंडिया इज इंदिरा, मतलब हम, अरे हम ही, जहां से हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो ये अहंकार को दर्शाता है। दूसरा,
2: पर 37 में वो कौन कौन से नेता थे, आप तो इतिहास जानते हैं, उनका नाम भी तो बताइए।
3: बहुत अच्छा, 37 में
2: आप उनके फैसले को नकारना चाहते
3: हैं, सबको साथ आप बता रहा हूं। ये भी कांग्रेस की अहंकारिता की पराकाष्ठा है। नेहरू ने, गांधी जी ने, पटेल सब उसमें शामिल थे, सुभाष बोस जी का उसमें कुछ मतभेद था, और जो
2: लेकिन वो भी थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी थे।
3: मैं जो कांग्रेस झूठ बोलती है, क्या राजन बाबू इसमें सहमत थे? नहीं। पुरुषोत्तम नाथ टंडन सहमत थे? नहीं। के एम मुंशी सहमत थे? नहीं। तमाम बड़े नेता सहमत, चलो मान लिया। उन सब ने कहा कि हम सबको, समाज को साथ में लेने के लिए काट देंगे वंदे मातरम। और क्या हुआ, 10 साल में देश कट गया। यानी इनकी मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए, जो गांधी नेहरू नहीं कर पाए कि हम काट के सबको साथ में ले लेंगे, वहां राहुल गांधी कहता हम कर लेंगे। मतलब इससे ज्यादा अजीबो गरीब हास्यास्पद तर्क, इसका मतलब वो अपने को गांधी से ऊपर मान रहे हैं, नेहरू से ऊपर मान रहे हैं कि गांधी नेहरू तो वंदे मातरम काट के देश को कटने से नहीं बचा पाए, मगर मैं बचा लूंगा। वास्तविकता में यह है कि आज यह कांग्रेस और किसी कारण से नहीं कर रही है, सिर्फ गांधी परिवार की अपनी सीट बचाए रखने क्योंकि आज गांधी परिवार की स्थिति यह है कि राहुल जी और सोनिया जी अगर समाजवादी पार्टी समर्थन न करे तो रायबरेली अमेठी नहीं जीत सकते। पिछले 25 सालों से सपा उनका समर्थन करती है, अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, और वायनाड जाके अगर मुस्लिम लीग का समर्थन ना हो तो ये वायनाड नहीं जीत सकते। राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन पे जीते थे, प्रियंका जी मुस्लिम लीग के समर्थन पे जीत रही हैं। इसलिए, और मैं एक फैक्ट और कह दूं जो लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ये 28 से 30 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव पारित हुआ, मगर लोगों को याद होना चाहिए कांग्रेस उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फरवरी 1937 में राज्यों में अपनी सरकार ब्रिटिश सरकार के अधीन बना चुकी थी। और मैं पूछना चाहता हूं कि तब ब्रिटिश सरकार के अधीन राज्य में आज तो संविधान की शपथ लेते, तब किसकी शपथ ली थी? क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति। और गवर्नर जो थे ब्रिटिश, उन्होंने शपथ दिलाई थी। यानी ब्रिटिश काल में ब्रिटिश क्राउन की सत्ता लेने के बाद, मुस्लिम लीग के आगे सरेंडर करने के बाद जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 21वीं सदी में संसद
2: आज पर तो आइए। सुधांशु जी, शर्मिला टैगोर जैसे लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ धर्म के लोगों को ये सही ना लगे।
3: तो ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, हैसियत हो तो कोई बोल के दिखाए। तमिलनाडु का जो सॉन्ग है वो क्या कहता है, तमिल थाई वज्रथू, तमिल माता को प्रणाम। किसने कहा विरोध बताइए। तेलंगाना का जो है वो जो स्टेट सॉन्ग है वो क्या बोलता है, पूछो भाई। कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, तीनों जगह बोल रहा हूं, कर्नाटक में क्या वो कहता है, वो वेद की भी बात कर रहा है, राम की भी बात कर रहा है, कृष्ण की भी बात कर रहा है। बोलो तमिल के बारे में, तमिल माता को प्रणाम नहीं करेंगे। ये है राजनीति।
2: ठीक है, यहीं से आप जवाब की शुरुआत कीजिए। और भारत में रहते हुए यह आजादी आपको कौन देता है कि आप इस देश के उस कानून का पालन ना करें जो देश में संसद से पास हुआ है? आप बाध्य नहीं है।
4: जिन्होंने कर रखी थी अंग्रेजों से साठ गांठ, वही पढ़ा रहे हैं आज हमको वंदे मातरम का पाठ। वंदे मातरम की आन बान शान में हमने अपने प्राणों को आहूत किया, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं तुम्हारे खानदान में। मैं तो बात कुछ और करना चाहता था, पर सुधांशु त्रिवेदी जी ने मुस्लिम लीग का पाठ पढ़ाना प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री जी, आप 150 वर्ष वंदे मातरम के मना रहे हैं, किस सन से? 1875 में बंकिम चंद्र जी ने कौन सा वंदे मातरम लिखा था? सिर्फ दो छंद। ये रिपोर्ट बताती है कि इतिहासकार की पुस्तक में प्रमाण सहित प्रकाशित किया कि सिर्फ दो छंद छापे थे उन्होंने। बाद में जब आनंद मठ प्रकाशित हुआ तब उसका विस्तार कविता का किया, तो 150 वर्ष उन दो छंदों के। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर पर आरोप लगा दिया कि टुकड़े कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस पत्र के माध्यम से पंडित नेहरू को, क्योंकि एक कमिटी बनाई थी और उन्हें उसका प्रधान बनाया था, तो वो लिखते हैं कि मैं ये स्वतंत्र रूप से स्वीकार करता हूं कि बंकिम के पूरे वंदे मातरम गीत को उसके संदर्भ सहित पढ़ने उसकी ऐसी व्याख्या की जा सकती है जिससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हो। ये कौन कह रहा है? ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं। लेकिन इससे निकला हुआ एक राष्ट्रगीत जो स्वतः ही केवल मूल कविता के दो पदों तक सीमित है, प्रचलित हो गया है। हम बार पूरी कविता को याद दिलाने के लिए बाध्य नहीं करता। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये दो पंक्तियां हमें, दो छंद हमें पढ़ने चाहिए वंदे मातरम के। आपने जिस कांग्रेस कार्य समिति का जिक्र किया, आपने 1937 का जिक्र किया, वो क्या लिखती है अपने प्रस्ताव में? वो लिखती है कि 1906 से हम वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं। और वो कहती कि रसूल साहब की अध्यक्षता में 1906 में जब बंगाल में हमारा अधिवेशन हो रहा था, तब बर्बरता पूर्वक बरतानिया हुकूमत के लोगों ने लाठी मारी, उनके सीने पर लगे वंदे मातरम के बैच निकाल करके फेंक दिए, बेहोश होने तक कार्यकर्ताओं को मारा। प्रधानमंत्री जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, भी विद्वान प्रवक्ता मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे, अरे पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल हक के साथ किसने सरकार बनाई? भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने प्रस्ताव पढ़ा, दिसंबर 1941 में बंगाल में उस फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई। क्या प्रस्ताव दिया था मुस्लिम लीग ने? मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव दिया था कि वंदे मातरम नहीं गाया जाए, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर ने सरकार बनाई। सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उसी मुस्लिम लीग के साथ सावरकर ने सरकार बनाई, और उस मुस्लिम लीग ने सिंध प्रांत में प्रस्ताव पढ़ा प्रधानमंत्री जी कि पृथक पाकिस्तान होगा, तब भी वो सरकार में शामिल रहे। ये प्रस्ताव कहां पढ़ा गया? ये मिंटो पार्क में पढ़ा गया, जिसको बाद में नाम इन्होंने मिनारे पाकिस्तान कहा। ये अटल बिहारी वाजपेयी मिनारे पाकिस्तान पर गए, जब पत्रकारों ने पूछा कि क्यों जाते हैं ऐसे स्थान पर जहां बंटवारे की बुनियाद रखी गई, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान के पत्रकारों की चिंता नहीं करता। आप विभाजन विभीषिका दिवस मनाते प्रधानमंत्री जी, और चुपचाप इमरान खान को प्रेम पत्र लिखते हैं कि ये विभाजन के दिवस की पूरे पाकिस्तान को 23 मार्च 1940 की शुभकामनाएं, एक बार नहीं दो दो बार प्रधानमंत्री जी आप पत्र लिखते हैं। इतना ही नहीं, क्या षड्यंत्र कर रहे थे, देश के लोगों क्यों जरूरी था इस पर संज्ञान लेना कांग्रेस पार्टी का? क्योंकि बर्तानिया हुकूमत के अधिकारी लगे थे कि हिंदू मुस्लिम में विभेद पैदा करके इस आजादी के आंदोलन को कमजोर कर दो। ये प्रमाण लेकर आया हूं, ये पूरी की पूरी 400 पन्नों की पुस्तक है। क्या कर रहे थे आपके नेता जानते हैं आप? आज जितनी हिंदू रियासतें थी, सावरकर एक के बाद एक उनसे संपर्क कर रहे थे, वो त्रावणकोर की रियासत हो, वो बड़ौदा की रियासत हो, और दूसरी तरफ जिन्ना।
2: एक मिनट
4: आखिरी बात
2: 26 पर तो आइए, आप कहते हैं बीजेपी वाले पीछे ले जाते हैं, आज आप वही कर रहे हैं।
4: एक मिनट,
2: अरे भाई कानून क्यों नहीं मानिएगा?
4: नहीं नहीं, उनकी आपने आखिरी
2: कानून क्यों नहीं,
4: आखिरी बात
2: बोल लीजिए।
4: देखिए ये प्रमाण मेरे पास हैं, जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी वही हिंदू महासभा कर रहे थे, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही सावरकर कर रहे थे। इस देश को खंड खंड कर देना चाहते हैं और आज भी यही कर रहे हैं। क्या गलत कहा हमने बताइए? हम इस बात के खिलाफ विरोधी नहीं है कि वंदे मातरम पूरा ना पढ़ा जाए, पढ़िए ना, कौन इनकार करता है। लेकिन ये बात अगर सिख समुदाय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, मेरे पास उसका प्रमाण पड़ा है, ये देखिए। सिख समुदाय ने कहा कि एक ओंकार हमारा मूल नारा है, एक ओंकार, हम नहीं पढ़ सकते। वो इनकार करते हैं कि इसमें अगर माँ दुर्गा की स्तुति है तो हम एकेश्वरवादी हैं, हमारा धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता। प्रधानमंत्री जी, क्या मुझे कोई मुस्लिम धर्म का आचरण करने के लिए बाध्य कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मैं मुस्लिम धर्म के अनुयायियों को कैसे कहूं कि देवी की स्तुति कर लो आप? हाँ, वंदे मातरम, माँ भारत माँ की स्तुति करने से इनकार नहीं है, इसीलिए तो वो दो छंद हमने रखे हैं। तो आप ये वैमनस्य का बीज इसलिए बो रहे हैं क्योंकि आपने पैलेट गन चलाई। राम मंदिर का चंदा चुराया प्रधानमंत्री जी, इसलिए देश की आंखों पर पर्दा डालना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए। वंदे मातरम का उद्घोष एक बार आपकी जुबां पर 47 के पहले होता तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाते, भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर अंग्रेजों के मुखबिर नहीं कहलाते। सरकार में होते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के 10 बिंदु के प्रस्ताव बरतानिया हुकूमत के गवर्नर को दिया, यह समूचे देश को मालूम। प्रधानमंत्री जी, आंखों में धूल मत झोंकिए, इस देश की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान दीजिए। इस देश में 1,00,000 स्कूल आपकी सत्ता की सरपरस्ती में 10 साल में बंद हो गए प्रधानमंत्री जी। 47% रिटेंशन रेट स्कूलों
2: ठीक है बाबा जी, चल मुझे पता था 26 पे आप नहीं बोलिएगा, 26 पे नहीं बोलिएगा, लेकिन अब बोलिए।
5: सुनिए, आपने कहा 1906 में वंदे मातरम गाया गया, सही है,
4: 1906 में अधिवेशन में ये रहा प्रस्ताव।
5: कांग्रेस को अपना इतिहास नहीं पता।
4: अरे साहब, अधिवेशन की जिसकी आपने बात की, जो 1937 के प्रस्ताव
2: बोल ले फिर बीच में
4: 1937
5: के, सुनिए आप
4: प्रस्ताव की जिसका आपने उल्लेख किया है
2: भाई, बारी बारी से। अरे आप तो ऐसे नहीं थे अभय जी, हाँ
5: सुनिए, आपके लाखों दर्शकों से जाके देखिए, इनको पता ही नहीं कांग्रेस का इतिहास। 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वो गाया गया, क्या चिल्लाने लगे भाई, क्या बदनीति है, अभी चिल्लाना शुरू कर दिया
2: जैसे। अरे गुरुजी, चिल्ला चिल्ली चिल्ला चिल्ली फिर चिल्लाने लगे बारी बारी, पूरा हो जाए
4: जिक्र आपने क्या उस प्रस्ताव को,
2: ठीक है अभय जी आप हाथ उठाइए ना, मैं जवाब लूंगी आपसे।
5: मैंने आपका शांति से सुना, अनाप शनाप जो बोला मैं बोल रहा हूँ, और लाखों दर्शकों से कहता हूँ जाके कोई फैक्ट चेक करे। 1896 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन, वहां पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की। वहां से लेकर 1924 तक कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। इवन 1924 के अधिवेशन में तो उस समय मोहम्मद अली जौहर ने उसकी अध्यक्षता की थी, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरा पूरा गाया। झूठ बोलते हैं सरासर ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं, 1896 से 1937 तक हर बार कांग्रेस पूरा गा रही थी, 37 में क्या हुआ जो काट दिया? अब मैं बताता हूं क्या हुआ। जिन्ना ने लेटर लिखा क्या आपको यह काटना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। और वो क्यों लिखा? आप एक के बाद एक सरेंडर कर रहे थे। 1905 में बंग बंग के बाद उस समय सारे हिंदू मुसलमान एक होकर वंदे मातरम गाते थे, मरिए कट्टरपंथियों के आगे झुके। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांग लिया, फिर उनकी हिम्मत और बढ़ी। फिर 1920 में इन्होंने कहा टर्की का खलीफा हट गया है तो अब हम टर्की के खलीफा के लिए आंदोलन करेंगे, और महात्मा गांधी ने अली प्रदत्त का समर्थन किया, उनकी हिम्मत और बढ़ गई। उसके बाद जिन्ना ने कहा मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, इसलिए हर फिल्म में वो मिस्टर गांधी बोलता है। फिर उसने कहा मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, कोई दर्शक जाके चेक करे, 6 अप्रैल 1938 को नेहरू ने जिन्ना को लेटर लिखा, और वो सेलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 1 वॉल्यूम 22 पेज नंबर 230-39 लिखा है। क्या शर्मनाक लेटर लिखा है, लिखते हमने वंदे मातरम हटा दिया है पॉइंट नंबर 9 पे। फिर उसके बाद लिखते हैं पॉइंट नंबर 12 पे, अगर आपको तिरंगे से आपत्ति है तो हम मुस्लिम लीग का भी झंडा उसको बराबर सम्मान देने को तैयार है। पॉइंट नंबर 7 पे लिखते हैं मुसलमानों को सरेआम गोकशी करने का अधिकार होगा। क्या गजब है, क्या सरेंडर ये नेहरू ने लिखा हुआ है। ये दिखाई पड़ता है कि 37 में आके आपके साथ क्या स्थिति हो गई थी। और मैं आज की बात करता हूं, अनाप शनाप क्या क्या बोलते हैं भाई साहब, विभाजन। अरे 16 अप्रैल 2025 जनरल आसिफ मुनीर का वीडियो जाके देखिए, क्या बोल रहा है वो, कहता हमने भारत का डिवीजन कराया क्योंकि हम ये मानते हैं कि हिंदू मुसलमान दो एक नहीं है। और आगे क्या बोलता है जो कांग्रेसियों के मुंह पे तमाचा है, वो कहता दुनिया में दो ही रियासतें जो थी वो कलमे की बुनियाद पे बनी, एक रियासत है मदीना, एक रियासत है पाकिस्तान। अरे भाई मुलजिम इकबालिया बयान कर रहा है, मगर ये हिंदू महासभा करने में लगे, तो याद दिलाना चाहता हूं भाई आपके लाखों दर्शक जाके देखें, दिसंबर 1887 और मार्च 1888 सर सैयद अहमद खान का लखनऊ और मेरठ में दिया गया बयान, जिसमें साफ वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम अलग है और हम तलवार से इसका निर्णय लेंगे, और पाकिस्तान भी उसका आधार उसको बोलता, अरे भाई तब तो सावरकर 2 साल के थे 4-5 साल के थे, हिंदू महासभा पैदा नहीं हुई थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके अंदर, और फिर झूठ बोलते हैं, अरे भाई प्रजा कृषक पार्टी 1941 में थी, वो बाद में 1946 में जाके फजलुल हक मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और लास्ट में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब ये सिख समाज को भी तोड़ने में लग गए, कहते हैं साहब उनसे मतलब नहीं, मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके अभी चेक करिए, महाराजा रणजीत सिंह का ध्वज है, उसमें आगे भैरव है, आगे देवी जी हैं, पीछे भैरव है, अगर गुरुदेव बताइए गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी दीवार लिखी कि नहीं, रामावतार लिखा कि नहीं, आज सिख समाज में चंद कट्टरपंथी लोगों के आगे, और मैं कोट कर रहा हूं जो महाराजा रणजीत सिंह जी की खुद की ऑटोबायोग्राफी है उम्मतुल तवारी, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जब उनका आखिरी समय आया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होगा और विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ होगा, और उनकी दोनों आंखें सीधे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति के ऊपर थी, और अंतिम में उनके साथ जो सोहन लाली थे उन्होंने कहा महाराज राम राम 3 बार बोलिए, और उन्होंने 2 बार बोला पर उन्होंने कहा 3री बार में उनकी सारी दृष्टियां भगवान के चरणों में थी, ये उनके समय का लिखा हुआ है। क्या कट्टरपंथियों के आगे कैसे भी देश को तोड़ लो भाई, एक लाइन में कहूंगा अंग्रेजों ने हमको बांटा फिर भी अपने देश की खातिर, इन्होंने हर परिवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर।
2: अबे जी ये सच्चाई है कि 1896 में कलकत्ता के सेशन में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने पूरा वंदे मातरम गाया था ना, हाँ, और आपके अनेकों मुस्लिम अध्यक्षों ने पूरा गाया है, उनको आपत्ति नहीं,
4: उससे इनकार नहीं किया,
2: किसको खुश करने के लिए
4: कहा, सिर्फ 1937 का जिक्र किया, इन्होंने बहुत पूरा एक पूरा का पूरा कलमा पढ़ा जिन्ना साहब के लिए,
5: कलमा जिन्ना पढ़ते हैं
4: जिन्ना साहब के नहीं, वो आप तो बड़े स्कॉलर, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा लगता है बड़े मुस्लिम स्कॉलर है, सब ज्ञान है उनको, एक प्रेम पत्र में भी बता देता हूँ, अभी जाइए लोगों भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट खोलिए, चलिए उस पर क्या लिखा है, एल के अडवाणी जी ये अध्यक्ष होते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष समूची भारतीय जनता पार्टी ने, जब जिन्ना की मजार पर गए तो अन्ना ने कहा उनके मकबरे पर, ऐसे कई लोग हैं जो इतिहास पर अमिट छाप छोड़ते हैं लेकिन इतिहास रचने वाले बहुत कम होते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे ही दुर्लभ व्यक्ति थे, हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ जब मातांगी हाजरा बर्तानिया हुकूमत की तामलुक जिले में 5 गोलियां खा रही थी 1942 के दिन, तब आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी
2: ने पॉलिटिक्स करते हैं, थोड़ा ऐसी भाषा में बात हो जो बच्चों को भी समझ,
4: बिल्कुल ठीक है, तो मैं
2: जब 1896 से लेकर ये लगातार पूरा गाया गया, आपके ही कई मुस्लिम अध्यक्षों ने भी गाया, किसकी नाराजगी पर 37 में ये कंसिडर हुआ कि भाई ये हिस्सा हटाना पड़ेगा, आप फैक्ट बता दीजिए, किसके कहने पर, किसके दबाव में,
4: कोई दबाव नहीं था,
2: तो फिर अचानक कैसे तो, आई ये बात, किसका तो, किसने ये कहा कि इसको छोटा करना जरूरी है,
4: ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कमेटी बनाई, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का
2: बाकायदा क्यों कमेटी बनाई,
4: पत्र लेकर आया हूँ,
2: कमेटी क्यों बनाई,
4: कमेटी इसलिए,
2: भाई पहला विरोध किसने किया,
4: अंजना जी
2: किसने विरोध किया,
4: सुनिए ना, आरएसएस तो कर नहीं सकता था भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस, क्यों, क्योंकि वो तो था ही नहीं स्वतंत्रता के आंदोलन में, तो कौन करेगा, तो जो दूसरे धर्म के अनुयायी थे उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा की स्तुति हमारे धर्म में हम नहीं कर सकते, जैसे अभी मैंने सिख समाज का सुनाया आपको, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि जो हम बाध्य करें, एक मिनट सुन लीजिए, क्यों हम बाध्य करें कि दूसरे धर्म के लोग स्तुति करें, वंदे मातरम का उद्घोष हमारी पार्टी ने लिखा 1937 में कि हमने अपने प्राणों को त्याग दिया, मैं आखिरी बात देश के लोगों से कहता हूं, किस मुंह से ये वंदे मातरम गाते हो, जब राम जी का चंदा चुराते हो, छात्रों पर गोलियां चलाते हो, किसानों को जीप से रौंदते जाते हो, भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुलाते हो, बैंक लुटेरों को विदेश भगाते हो, तुम किस मुंह से वंदे मातरम गाते हो, तुम भारत तुम गद्दार हो, भारत की वंदना के अधिकार नहीं हो, माँ की वंदना है शिक्षा के उत्थान में, माँ की वंदना है किसानों के सम्मान में, माँ की वंदना है मंदिर के दान में, हमने अपने प्राणों को आहूत किया है वंदे मातरम की आन बान शान में, एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं तुम्हारे खानदान में, एक भी स्वतंत्रता,
2: चंदा चोरी से लेकर जेन जी जेन अल्फा स्कूल कॉलेज पेपर लीक ऐसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए क्या इस मुद्दे को आपकी सरकार इतना तूल दे रही है और पार्टी भी,
3: मैं ये कहना चाहता हूँ मुझे पढ़ी हुई स्क्रिप्ट लेने की जरूरत नहीं है, और चैलेंज करके कहता हूँ कांग्रेस से, अगर आप इस लेवल तक किसी के धर्म की भावना की बात मानेंगे तो इस्लाम के हिसाब से पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत जायज है और वह है खलीफत, और बाकी सारी हुकूमतें नाजायज हैं और उसे नेस्तनाबूद करना दीनी फरीजा है। इसीलिए पूरी दुनिया में हर जगह संघर्ष होता है। वो लोग कहते हैं जदीद कौमी रियासत यानी मॉडर्न नेशन स्टेट एक कुफ्र है। बोलो किसी मौलाना से कहलवा दो खलीफत के अलावा कोई जायज है। इसलिए जब आप इस सीमा तक आएंगे तो उसका हश्र देश टूटने में ही होगा। मगर क्या करें, देश तोड़ के सत्ता का एक टुकड़ा मिला था, आज और तोड़ ताड़ के मिल जाए। और मैं एक चीज और कोट करना चाहता हूं, फिर मैं कोट कर रहा हूं हवा में नहीं, खुद जवाहरलाल नेहरू की आवाज में यह वीडियो अवेलेबल है। 1959 में लियो लॉर्ड मोस्टले को दिए गए अपने इंटरव्यू में लिखा, उनकी किताब में भी लिखा है, हमने विभाजन इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हम थक गए थे, अब हम और लड़ने की स्थिति में नहीं रहे थे, हम हमारा नेतृत्व तो बूढ़ा हो गया था, हम दोबारा जेल जाने को तैयार नहीं थे। कोई दर्शक जाए 59 लियो लॉर्ड मोस्टले को दिया गया इंटरव्यू और उस बुक में लिखा नेहरू की आवाज में, अरे शर्म आनी चाहिए आकर, ये डाइवर्ट वो डाइवर्ट और एक फैक्ट का जवाब नहीं देने जा रहे हैं। और मैं लास्ट में यह भी कहना चाहूंगा, जो हिस्से काटे गए वही देश का प्रतीक बताते हैं। तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी, जब आप दुर्गा दश प्रहर धारणी कहते हैं तो आपकी श्रद्धा कहां रुकती है? त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी से, आसाम में मां कामाख्या, कलकत्ता में मां काली, विंध्यवासिनी देवी, मां मुंबा देवी, मां कन्याकुमारी और उत्तर में वैष्णो देवी, पूरा देश एकाकार हो जाता है। तुम दुर्गा दश प्रहर क्या बताएं, ये विदेशी मानसिकता। अच्छा। हम तो एक देश थे नहीं, हम तो चर्चिल के अनुसार।
2: एक बार हिस्टोरियंस को भी लाने, 10 सेकंड में खत्म नहीं होता ना सर।
4: 10 सेकंड मां दुर्गा, इतनी श्रद्धा उमड़ पड़ी मां दुर्गा पर। तुम्हारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मां दुर्गा के बारे में क्या बोलता है दिलीप घोष, यहां कह भी नहीं सकता। वेस्ट बंगाल का क्या किया था तुमने उसका, और ये कह रहे थे बंटवारा, किताब निकालता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, जहां रहते थे ना, उस वहां से ये किताब बिकती थी, ये ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन, एचवी शेषाद्री, बंटवारे का खलनायक पटेल, सरदार पटेल को जब तक इन्होंने ओन नहीं किया था, असली में बंटवारे के खलनायक ये थे। सावरकर और जिन्ना की वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। गांधी तो अंत तक नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो, लेकिन इन दोनों ने संकल्प ले रखा था तो बटिया बंटवारा।
2: सरदार पटेल को लेकर अब इस किताब पर तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा।
3: फिर मुझे कोई किताब लेके आने की जरूरत नहीं, किसी ने दी होगी। अब सुनो मेरे भाई, गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने लिखा है कि जो बंटवारा हुआ वो कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के समर्थन पे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों बराबर के जो बैग में, पूरी बात सुनिए,
4: बुक आरएसएस
2: जवाब लूंगी आपसे। हाँ।
3: क्या तरीका है? और सुनो, अभी तो लोहिया जी को बोला है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, वो 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 साल बाद प्रकाशित हो, 1987 में प्रकाशित, उन्होंने सीधे सीधे लिखा कि कांग्रेस को दोषी माना जाएगा क्योंकि उसने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों बराबर के, तुम्हारे अध्यक्ष को कोट किया है। इसीलिए किताब लाने की जरूरत नहीं होती भाई साहब, दिमाग में रखा करिए। अब राहुल गांधी का दिमाग कहीं और से हैक्ड है, सोरस स्कूल ऑफ कॉन्स्पिरेसी थॉट से एग्रेसिव है, तो इसीलिए आकर आप देश को टुकड़े टुकड़े करने के चक्कर में लगे रहते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
4: मैं देश के लोगों से कहता हूं, किताब प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बर्थ ऑफ नेशन पढ़िएगा। पूरा खुलासा किया है सीपी पेपर्स में कि कैसे सावरकर इस हिंदुस्तान के राजाओं को कन्विंस करा रहे थे कि जो पटेल करना चाहते हैं यूनिफिकेशन, वो मत होने दीजिए, आप अपने अपने देशों की घोषणा पृथक से कीजिए, यही काम जिन्ना कर रहे थे। वो त्रावणकोर रियासत को दोनों चिट्ठी लिखते हैं, जिन्ना लिखता है कि आप आ जाइए मेरे पास, मैं आपका सहयोग करूंगा, अलग देश की घोषणा कर दीजिए, पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा। वही चिट्ठी उसी दिन सावरकर ने लिखी,
2: बाकी दोनों बस चेहरा देखने।
3: महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में मई 1920 में एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है द सावरकर ब्रदर्स, और उन्होंने कहा कि सावरकर ब्रदर्स ने बहुत देशभक्ति का काम किया, उसमें से एक विनायक दामोदर सावरकर से मुझे लंदन में मिलने का अवसर मिला, मेरी नजर में वो चतुर साहसी और देशभक्त हैं, और ब्रिटिश सरकार की बुराइयों को मुझसे पहले उन्होंने जान दिया था। गांधी ने सावरकर को कहा है मुझसे पहले जान दिया था। कोई किताब लाने की जरूरत नहीं भाई साहब। फिर ताकत कहता हूं, जाके देखो भाई, मई 1920 यंग इंडिया,
5: इसीलिए मैं कहता हूं ये सोरस स्कूल ऑफ थॉट से आए हुए पर्चों से
2: ओम जी, ओम जी,
5: ये पर्चा आप लोगों का आउट है,
6: ये 1947 का जून का
5: पर्चा लीक है भाई, पर्चा लीक है,
6: ये जून का पत्र है साहब। 27 साल बाद उनका हृदय बदल गया, सत्ता की भूख सताने लगी।
2: सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड पूरा संपूर्ण वंदे मातरम गाने के खिलाफ किसने विरोध जताया था, पॉलिटिकल लोगों की बात कर रही हूं।
7: देखिए 1923 में काकीनाडा अधिवेशन हुआ जिसमें मौलाना मोहम्मद अली उसको प्रेसाइड कर रहे थे और बहुत क्लियरली उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में शुरू में ही कहा कि साहब इसकी जो पंक्तियां हैं ये इस्लाम के विरुद्ध हैं, हमारी भावनाएं आहत होती हैं, इसको नहीं गाना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा अंजना जी कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, हर साल वंदे मातरम पूरा का पूरा बहुत 20 सालों तक उन्होंने गाया, वो माइक पे जाते हैं और कहते हैं साहब हाँ। ये खिलाफत की सभा नहीं है, ये किसी मस्जिद का जलसा नहीं है, और पूरा छयों छंद 300 पंक्तियां पूरा गाते हैं, सत्वर गाते हैं। ये 1923 काकीनाडा अधिवेशन बहुत क्लियर तरीके से। उसके बाद 1937 की अभी आदरणीय सुधांशु भैया ने जिस पत्र का जिक्र किया मैं उसके अलावा जब तैयारी हो रही थी इसकी 8 प्रांतों में प्रांतीय शासन, देखिए कारण केवल एक था 1937 में, क्षुद्र स्वार्थी तुष्टिकरण की राजनीति, अपीजमेंट की राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्योंकि उसके पहले क्यों नहीं ध्यान आया,
2: 1896 से होता है, 1896
7: से
5: समर्पण
7: 1896 से 1937 तक लगातार छयों छंद 300 पंक्तियां सस्वर हर कांग्रेस के अधिवेशन में दिसंबर महीने में गाई जा रही थी, कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। छिटपुट मतलब एकाध, जैसे अभी मैंने मौलाना मोहम्मद अली की बात की, एकाध छोटी मोटी आपत्तियों के अलावा कि ये साहब इसकी जो, लेकिन अचानक 37 में बुत परस्ती का हुआ खड़ा कर दिया गया।
5: वैसे एक लाइन और ऐड कर दूं, मोहम्मद अली जौहर उस समय कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे, मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष थे।
2: चलिए पूरा कीजिए।
7: 37 में जब इसकी तैयारी शुरू होती है, 26 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच कलकत्ता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है, जब इसकी तैयारी शुरू होती है 20 अप्रैल का लेटर है, पंडित नेहरू जी सुभाष चंद्र बोस को लेटर लिखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और उसमें लिखते हैं कि मैंने अभी अंग्रेजी वर्जन पढ़ा आनंद मठ का, वंदे मातरम को समझा पढ़ा, इसकी कुछ पंक्तियां मुस्लिमों को उद्वेलित कर सकती हैं, ये वो लिख रहे हैं। और उसके बाद 26 को पूरी तैयारी के साथ, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेना जी, अबे जी पूरी
6: आगे क्या परेशान होते हैं साहब,
7: परेशान क्या होने लगते हैं,
2: बात पूरा कर लीजिए,
7: मैं एकदम तथ्य दे रहा हूं, कहीं चेक कर लीजिए, किसी भी प्राइमरी सोर्स पे जाके चेक कीजिए जो इसके प्राइमरी सोर्सेज हैं, एक भी बात बिना तथ्य के नहीं कहूंगा। उसके बाद अचानक ये जाग जाता है उनमें, और फिर 26 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच ये सारी कहानी रची जाती है। 28 को ये फैसला होता है कि साहब केवल दो ही इसके छंद गाए जाएं, 29 को उनका भाषण होता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, वो एक घोषणा करते हैं कि गाए जाएं, और एक फिर कमेटी बना दी जाती है कि कुछ अन्य राष्ट्रगीत अगर चुनने हैं तो उसके लिए 4 लोगों की कमेटी है जिसको वो खुद हेड कर रहे थे, खुद चेयर कर रहे थे पंडित नेहरू। ये कहानी है। लेकिन ये जो जिस नाम पे ये 37 में किया जा रहा था, जैसा अभी आदरणीय सुधांशु जी ने कहा कि किया जा रहा था कि दोनों को मिला के चलना है, उसके बाद कहानी देखिए ना कि किस तरह से कितनी तेजी से हम विभाजन की ओर बढ़ते हैं, और विभाजन की जो विभेचिका है अंतिम 10 साल में जो उसकी कहानी
2: लिखी। शादाब चौहान जी, अब आप बताइए जल्दी से कि क्या मतलब, आपकी पार्टी तो खैर हमेशा ही इसके पूरे के खिलाफ रही है, लेकिन क्या नाराजगी है, क्योंकि बात देश की है, मतलब इसको धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत ही नहीं है।
8: नहीं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमारी पार्टी का स्टैंड यह है कि हम नेशनल सॉन्ग है, रेस्पेक्ट करते हैं, अगर कोई गाएगा तो हमें खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं है, सम्मान में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क का जो आईन है, भारत के संविधान, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, वर्शिप से शुरू होता है, वी द पीपल से शुरू होता है, दुर्गा माँ से या देवी से शुरू नहीं होता है। मैं भारत को देश मानता हूं, देवी नहीं मानता हूं, मैं माँ मान करके पूजा नहीं करता और मैं माँ की भी पूजा नहीं करता हूं। इस्लाम की बुनियाद जो है तौहीद है, यानी कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते। अगर मैं जय हिंद बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा हूं, मैं नेशनल एंथम बोल रहा हूं, या तमाम वो जो जिन्होंने मुजाहिदीन आजादी थे, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और नारा तकबीर का, अल्लाह अकबर का नारा लगा करके काले पानी की सजाएं काटी या देश के लिए कुर्बानी दी, क्या वो उनका नेशनलिज्म टेस्ट किया जाएगा? क्या मेजोरिटी फेथ को माइनॉरिटी पर इंपोज करना ही नेशनलिज्म का प्रूफ होगा। अगर मैं मेजोरिटी फेथ को मानूंगा तभी मैं नेशनलिस्ट कहलाऊंगा, ये तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ हो जाएगा। आर्टिकल 25 मुझे प्रोटेक्शन देता है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई पढ़ रहा है, अगर मैं बोलूं कि आप मत पढ़ना या मैं अपमान की बात करूं तो बात अलग है। मैं दुर्गा की पूजा क्यों करूंगा, मैं सम्मान करता हूं सभी धर्मों का, लेकिन मुझ पर इंपोज क्यों करेंगे। हम तो कहते हैं कि राजेंद्र जी ने जिस प्रकार से फैसला लिया तरीका गलत था, और उस समय भी कॉन्स्टेंट असेंबली की डिबेट में भी एक महिला सदस्य ने कहा था कि इसमें दुर्गा या देवी के नाम से देश प्रेम्बल की शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन वी द पीपल को डिसाइड किया, हमारे जो फॉरफादर्स जो नेशन कह लीजिए उन लोगों ने शुरू किया था। तो क्या आज सुधांशु जी से मैं सवाल कर रहा हूं, उन्होंने इतने सारे तर्क दिए हैं कि क्या आप 10 नाम लेने की स्थिति में हैं जो बताएं कि ये 10 लोग थे जो संघ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये वंदे मातरम गाते हुए देश के लिए प्राणों की आहुति दी थी, और आपका नेशनलिज्म 2014 में नहीं जागा, 2026 12 साल लग गए, और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट, आपको इतने साल लग गए ये जानने में कि पूरा पढ़ेंगे तो नेशनलिस्ट कहलाएंगे, आधा पढ़ेंगे तो नहीं कहलाएंगे। नहीं सर, मैं 0-1 भी नहीं गाने वाला हूं, 4 भी नहीं गाने वाला हूं, क्या मैं एंटी नेशनल हो जाऊंगा। कारगिल की लड़ाई वंदे मातरम से नहीं जीती गई थी सर, कारगिल की लड़ाई नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे से जीती गई थी। तो क्या मैं बोलूं कि आपको बोलना पड़ेगा? अब मैं बता रहा हूं सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा। अगर मैं गलत हूं, ये नारा नहीं लगाया अगर भारतीय सेना ने, तो जो आप कहिएगा मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं तथ्यों के आधार पर इस बात को कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं जिस व्यक्ति की जिस नारे से भावना उत्पन्न होती है देश के लिए हम उसका सम्मान करते हैं। जिहाद का फतवा दिया गया था अंग्रेजों के खिलाफ, तो आप क्या कहेंगे कि वो जिहाद गलत था? आप ये बोलना चाह रहे हैं जिस भी माध्यम से देश की भक्ति किसी व्यक्ति के अंदर आती है, देश की भावना का प्रेम आता है, उसको नारे लगाने में अगर कोई लगाता है हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हमसे थोप नहीं सकता। कोई भी परिस्थिति रहेगी, गन पॉइंट पे भी कहेंगे तो ना मैं भारत माता की जय बोलने वाला हूं, ना मैं वंदे मातरम गाने वाला हूं, ना मुझे कोई मजबूर कर सकता है। मैं अल्लाह की इबादत करता हूं, अपने देश से मोहब्बत करता हूं, जब जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए कार्य करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं।
2: अब बताइए क्या दिक्कत?
7: 10
2: बोले बोले आप ही बोलिए मुझे।
7: 10 नाम अभी इन्होंने कहा कि मुझे बता दीजिए। डॉक्टर केशव राव बलराम राव हेडगेवार 1921 में, आप सुन लीजिए, 10 नाम
8: प्राणों की आहुति कहा है,
7: 10 नाम सुन लीजिए
8: सर, सवाल का जवाब दीजिए, प्राणों की आहुति कहा है,
6: सुनाने दीजिए। हाँ, कौन से सन में?
7: वो भी सुन लीजिए,
6: कौन से सन में?
7: धैर्य से सुन लीजिए,
6: कौन से सन में? सन बताओ,
7: सन ही के साथ बता रहा हूँ प्रभु, सुनिए ये बताइए। 1921 में असहयोग आंदोलन
6: कांग्रेस ने, कांग्रेस ही थे।
8: कोई भी परिस्थिति रहेगी, गन पॉइंट पे भी कहेंगे तो ना मैं भारत माता की जय बोलने वाला हूँ, ना मैं वंदे मातरम गाने वाला हूँ, ना मुझे कोई मजबूर कर सकता है। मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, अपने देश से मोहब्बत करता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो देश के लिए कार्य करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ।
2: अब बताइए क्या दिक्कत?
7: 10
2: बोले बोले आप ही बोलिए मुझे।
7: 10 नाम अभी इन्होंने कहा कि मुझे बता दीजिए। डॉक्टर केशव राव बलराम राव हेडगेवार 1921 में, आप सुन लीजिए, 10 नाम
8: प्राणों की आहुति कहा,
7: 10 नाम सुन लीजिए
8: सर, सवाल का जवाब दीजिए, प्राणों की आहुति कहा है,
6: सुनाने दीजिए। हाँ, कौन से सन में?
7: वो भी सुन लीजिए,
6: कौन से सन में?
7: धैर्य से सुन लीजिए,
6: कौन से सन में? सन बताओ,
7: सन ही के साथ बता रहा हूँ प्रभु,
8: सुनिए
7: ये बताइए। 1921 में असहयोग आंदोलन
6: कांग्रेस ही थे, कांग्रेस ही थे, ये भी
8: पूरी, और जिस जोन के प्रेसिडेंट भी
7: नहीं, 20 में कांग्रेस से उनका मोह भंग हो चुका था, इसके बाद
6: अरे भाई हां, तो आरएसएस 25 में बना है, 25
2: बना रहा हूं। और ये बुक इतने लेट से क्यों आई? दयाल उपाध्याय, ठीक है, जवाब सुनते हैं, कृष्ण
6: अडवाणी थे, बता
5: रहा हूं भैया, मिल मिला रहे हैं,
6: सब जवान थे आजादी के आंदोलन।
2: हां, जवाब सुनिए फिर आप।
5: अब मैं इसका भी जवाब देता हूं, पहले फैक्ट के साथ। इन्होंने कहा कि सब जो थे आजादी के आंदोलन में शामिल थे, फिर किताब कोट कर रहा हूं, सर सैयद अहमद की किताब रिसाला ए असबाब बगावत ए हिंद, जिसमें वो साफ लिख रहे हैं कि अंग्रेजों के मुसलमान जो हैं वो उनके वफादार हैं, और जो 1857 में था वो हिंदुओं ने विद्रोह किया था, आप मुसलमानों की अंग्रेजों से कोई शत्रुता नहीं। अब दूसरा कोट कर रहा हूं, अपने अपने टर्न सर, एक मिनट चिल्लाइए नहीं, अब कोट कर रहा हूं, क्वीन विक्टोरिया का लेटर डेटेड 29/1894 फ्रॉम क्वीन ऑफ विक्टोरिया टू विक्टर ब्रूस वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, क्या लिखती है? द क्वीन इंप्रेस इंटायरली कंकर्स द नेसेसिटी एंड द विजडम ऑफ द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंपार्शियलिटी। आगे क्या लिखती है? बट शी कैन नॉट हेल्प एट द ब्राह्मिन्स आर दोज हु इंसाइट पीपल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड द मोहम्मडन्स आर द रियल सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल।
8: टीपू सुल्तान कौन थे?
5: क्वीन विक्टोरिया कौन थे?
8: बता दीजिए,
2: बारी बारी बारी बारी
5: शुरू कर दिया,
2: फिर देखिए हाथ उठाइए ना शादाब,
5: अब क्यों पे बात नहीं कर रहे, और बिल बिलाने का मौका मिलेगा। अब उन्होंने एक कहा,
2: बारी बारी
8: नाम बता दीजिए, जब बिल बिला
2: हाथ उठाइए,
6: ये सन भी बताओ,
5: एक मिनट
6: सन कब लिखा था? ये पढ़ रहे हैं ना आप?
5: हां सुनिए सुनिए,
6: दिमाग में
5: रहता है, पूरी बात 20 9 सितंबर 1894, सोर्सेज है पेज 427, लेटर्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया थर्ड सीरीज, सिलेक्शन फ्रॉम हर मैजेस्टीज करेस्पॉन्डेंसेज एंड जनरल बिटवीन द ईयर 1886 टू 1901, वॉल्यूम 2, एडिटेड बाय जॉर्ज अर्ल बकल। वो खुद कह रही है कि मुस्लिम समाज, इसीलिए इन्होंने
4: किया।

0: आपसे लूंगी।
1: अब जवाब आप ही को देना होगा। अब सुनिए, 1937 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के अंडर में शपथ ले ली और कह रहे स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे। अब सुनिए, 4 मार्च 1931 गांधी इरविन पैक्ट, और वहां से लेकर 1947 विद एन एक्सेप्शन ऑफ 42 एक आंदोलन हुआ तो बताओ। 42 के बाद 43, 44, 45, 46, 47 एक आंदोलन, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 एक आंदोलन, और 42 में जो हुआ, सुनो भारत छोड़ो भी बता रहा हूं, 14 जुलाई 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव, यह भी सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा, उसमें जानते क्या लिखा है कि हमें स्वराज की क्यों जरूरत है, चूंकि साम्राज्यवादी शक्तियां जैसे जापान और अन्य भारत के पूर्वी द्वार तक आई, अन्य कौन थे, ये थे सुभाष चंद्र बोस जी, उनसे लड़ने के लिए हमें स्वराज दे दिया जाए और हम ब्रिटिश सरकार के हित में हैं, ब्रिटिश सरकार की फौजों को अपने यहां स्टेशन करेंगे और इन साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ेंगे। ये 14 जुलाई 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, कोई आजकल पढ़ता नहीं आके आए बाएं साएं आके सब बोलना शुरू कर देते हैं, मैंने इतने रेफरेंसेस कोट किए, कोई जाके देख ले। इसलिए जो अंग्रेजों के साथ बैठे थे, मैं एक और बात कोट करना चाहता हूं, जो अंग्रेजों के साथ बैठ के शासन कर रहे थे, जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा स्थापित हुए, मैं एक फैक्ट और कोट कर दूं, 1910 में जब वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई तो उस समय 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई, उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष था विलियम वेडनबर्न, और जिस जन ने सजा सुनाई उसका नाम था गणेश चंद्रावरकर, और वो ब्रिटिश सरकार का जज कांग्रेस का अध्यक्ष रहा 1904 में। गजब है भाई साहब, कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का जज, कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, कांग्रेस सरकार का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का एमपी लेबर पार्टी का, और जिसको सजा दे रहा है वो लड़ नहीं रहे थे, और जो उनके पैरों के नीचे बैठे थे वो लड़ रहे थे। तो एक लाइन में कहूं, सारा क्रेडिट यही ले गए तो कहूंगा, नौरंगे सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे।
0: लीगल एक्शन लेंगे
1: क्या?
0: लीगल एक्शन होना चाहिए भाई, कानून का इन्होंने उल्लंघन किया है।
1: हाँ बिल्कुल, अगर जो
0: आपको डर है कि बैकलैश होगा अगर ऐसा किया तो,
1: बिल्कुल साफ इन्होंने कह दिया है संविधान में इनको भरोसा नहीं है और जो संवैधानिक प्रक्रिया होगी वो होगी।
2: अंजना जी
0: गाएंगे नहीं?
2: अरे बहुत बहुत सारे
0: नहीं गाएंगे,
2: इन्होंने बड़े न जाने कहां कहां
0: कानून संविधान संसद सब क्या
2: कहा, अभी तक तो कह रहे थे दिमाग में रहता है, पढ़ के नहीं बोलता हूँ, वो पढ़ रहे
1: हैं।
2: आपका आदर करता हूँ, विद्वान व्यक्ति, देश के लोगों गौर से सुनिए क्या कह रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने प्रोविंशियल स्टेट्स बनाई, कांग्रेस पार्टी ने क्राउन की शपथ ली, कांग्रेस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन में यह कह दिया कि पूर्ण स्वराज लेंगे, बर्तानिया हुकूमत में जितनी सरकारों में हम जीते थे वहां हमने त्याग दी। वहां क्या हुआ फिर जानते हैं आप? जहां हमने सत्ता छोड़ दी,
1: वह
2: सत्ता की भूख, अरे अब आप बीच में बोल,
1: चलो कोई,
2: वह सत्ता
1: बोलिए बोलिए बोलिए,
2: वह सत्ता की भूख मिटाने के लिए दो कौन आ गए, भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर। जब जहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार छोड़ी ना, वहां सरकार बनाई इन्होंने, एक फजलुल हक के साथ बनाई, दूसरी मुस्लिम लीग के साथ, दो प्रांतों में बनाई। किसकी शपथ ली, किसकी शपथ ली भाई साहब आपने? आपने कोई भारत 47 के बाद के संविधान की शपथ ली? वही क्राउन के तलवे चाट रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर के लोग, और कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे हिंदुस्तान के
0: अब
2: साथ।
0: सिर्फ दो लाइन का सबको टाइम मिलेगा, जल्दी से शायद आप जी,
2: आखिरी लाइन में जल्दी से देखिए, वंदे मातरम पढ़े लेकिन संस्थागत रूप से, ये संस्थाएं हैं, कांग्रेस पार्टी या भारत देश एक सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंबेडकर साहब ने ये 22 शपथ ली, क्या कहोगे उनको? अंबेडकर साहब ने शपथ ली, मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई आस्था नहीं, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा, मैं
1: राम कृष्ण,
2: सुनिए ना, अरे सुधांशु जी बीच में मत बोलिए, तो इनको क्या कहेंगे आप? तुष्टीकरण कर रहे थे क्या? अरे आस्था है भाई, हम आस्था का आदर करते हैं, अगर मुस्लिम धर्मावलंबी कहते हैं मां दुर्गा की स्तुति नहीं करेंगे तो आप बाध्य नहीं कर सकते, मुझे इस्लाम धर्म का आचरण करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, यही बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 25 से 29 तक तय किया, अबाध रूप से धर्म को
0: ठीक है। शादाब जी दो लाइन, सिर्फ दो लाइन, जल्दी जल्दी।
3: हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि नेशनलिज्म का टेस्ट कोई भी व्यक्ति क्यों देगा, उसको अपना नेशनलिज्म प्रूव करना है, देशभक्ति प्रूव करनी है, अलग प्रक्रिया, लेकिन आज 21वीं सदी में ये शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के विषयों को जेनजी और जैन अल्फा की बात करने की जगह ये वंदे मातरम में और 100 साल पहले उलझाकर ले जाना चाहते हैं। जो पहले नहीं गए वो बदला उतार रहे हैं, अरे भाई आप अपना बदला उतार लीजिए, लेकिन दूसरों पर क्यों थोपना चाहते हैं?
1: दो फैक्ट, दो फैक्ट, दो लाइन तो नहीं, दो फैक्ट। एक तो वीर सावरकर पे प्रश्न खड़े करने वाले उनके लेटर्स फ्रॉम अंडमान और माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, एक बार जरा जाके पढ़ लें और एक बार देख लें, जेल टर्म्स को एक बार कंपेयर करके देख लें।
4: कि जिस तरह से बेड़ियों में जकड़ा जाता था, उनको रस्सी बांटनी पड़ती थी, कोलू में बैल की जगह जुत के तेल निकालना पड़ता था, एक जेल कंडीशंस ये थी। और एक तरफ उस समय जो तथाकथित सरकटा के अपने जिनके लिए इलेक्ट्रिक सेवर मंगाया जा रहा था, ये हमारी नेशनल आर्काइव्स की फाइल में है। एक बस फैक्ट और कि 1 जुलाई 1939 का एक बार जाके आप हरिजन का लेख देख लीजिए कि उसमें गांधी जी क्या लिख रहे हैं, उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है ना, वो भी स्वीकार कर लिए। वो कहते हैं कि मैं बचपन से जब से इसको गा रहा हूं अपने पुराने समय से, मुझे कभी नहीं लगा कि ये केवल किसी हिंदुओं का 1 जुलाई 1949 हरिजन पढ़ लीजिए साहब,
2: किसको इंकार है, रेडियो पर
4: मुझे कभी नहीं लगा कि ये हिंदुओं का
0: जल्दी से सिर्फ
1: दो लाइन सुनिए, ये बहुत बोलना है। 19 जुलाई 1947 महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में जो कंप्लीट वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 88 में लिखा, उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स का जो यूनियन जैक है वो भारत के झंडे के एक तरफ होना चाहिए, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है और वो वॉलंटरी छोड़ के जा रहे हैं, और मैं आज भी भारत माता को सिंहवाहिनी दुर्गा मानकर यह पंक्ति कहना चाहता हूं कि मातु सिंहवाहिनी मैं द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे कि गीत लिखूं लेखुनी विकास पे वक्त पढ़ने पे बैरियोध से युद्ध ठान ले, तेरा हर रूप में अनूप मन भावन है किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देश द्रोहियों का, इसीलिए मां भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले।
0: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।

0: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं और नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनके साथ लगातार संवाद किया है और अब बीजेपी दफ्तर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। इस समय की तस्वीरें जब पीएम मोदी पहुंच रहे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनका स्वागत किया है। संगठनात्मक बदलाव किए गए हैं और नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी टीम का ऐलान किया है जिसमें कई बड़े बड़े नाम हैं। इसमें राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाए गए हैं, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, आईटी, हर जो है क्षेत्र में बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनके साथ संवाद करने वाले हैं। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। पीयूष, बीजेपी दफ्तर पीएम पहुंच गए हैं, क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या क्या संवाद का मुख्य केंद्र केंद्र में क्या रहेगा संवाद के?
1: ये देखिए, आज दिन भर जो है बीजेपी की कई बैठकें हुई है, तीन राउंड की बैठक हुई है जिसमें जो नए सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया गया है। नितिन नवीन ने अपनी बात रखी है, बीएल संतोष जो जनरल सेक्रेटरी संगठन के हैं उन्होंने अपनी बात रखी है और उसके बाद सभी जो नए पदाधिकारी हैं उनको पार्टी के बारे में जानकारी भी दी गई, विजन के बारे में बताया गया है। पहला राउंड जो मीटिंग रही उसमें वंदे मातरम पर बड़ी चर्चा हुई, उसके बाद दो राउंड और हुए। अब कहीं ना कहीं ये बैठक का समापन की ओर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां पर पहुंचे हैं। सुबह ये जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री जो है सभी इन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और वो मुलाकात फिलहाल बीजेपी एक्सटेंशन ऑफिस में चल रही है। ये पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री नितिन नवीन बीजेपी अध्यक्ष की नई टीम से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 7 महीनों में बहुत मंथन हुआ, कई नेताओं के नामों पर चर्चा हुई और टीम जब फाइनली अनाउंस हो गई है तो उनकी आज बैठक हुई और बैठक के बाद अब प्रधानमंत्री जो है अपनी बात, जीत का मंत्र साथ साथ जो विजन है उनका खुद का, उन सभी चीजों को लेके बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और ये बड़ी मुलाकात इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। नितिन नवीन ने आज जो है अपनी टीम को इंट्रोड्यूस भी किया और जरूर जब स्वागत हुआ, नितिन नवीन ने सब पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया तो उस स्वागत के दौरान जरूर जो है प्रधानमंत्री को नई टीम के बारे में अवगत भी कराया गया होगा, जो नए सदस्य हैं उनको मिलाया भी गया होगा और इस वक्त जो दावा सूत्रों के द्वारा से किया जा रहा है वो ये कि इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नए अधिकारियों के साथ तस्वीर भी खिंचवाएंगे, उनके साथ संवाद भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये मुलाकात फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में चल रही है। ये पहली बार प्रधानमंत्री की मुलाकात इस टीम के साथ हो रही है। इससे पहले इस टीम का ऐलान कुछ दिनों पहले हुआ था और आज सभी पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ थी जिसमें बीएल संतोष मौजूद थे, तरुण चुग थे, विनोद तावड़े थे और कई अलग अलग मुद्दों पर बात हुई। लेकिन इन सभी बातों के बीच में जो वंदे मातरम को लेकर 10-point रेजोल्यूशन बीजेपी ने अडॉप्ट किया है उसको लेकर खासा चर्चा हुई और इन सभी चर्चाओं के बाद अब प्रधानमंत्री इन सभी अधिकारियों से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये टीम की अगर हम बात करें तो पुराने चेहरे भी हैं और नए चेहरे भी हैं, तो एक मिक्स है, ये ब्लेंड है ओल्ड और न्यू गार्ड का।
0: पीयूष, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ अब संवाद करेंगे। आप रुकने, छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: बिजली का बिल पेड़
4: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिए।
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
5: इतना माही वे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
3: आगे आगे
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: Let's go. The new BE6 Sportage. Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.
9: Papa.
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया
10: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू?
12: चार्ज हुआ यार।
13: बैट किसका है?
14: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
1: B.R. अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है।
2: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Let's go.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: The new BE6 Sport Hack.
2: Hey Maya, let's go.
1: The new BE6 Sport Hack.
3: पैसे ज़्यादा कभी थे नहीं, लेकिन फिर भी पैसे की भूख इतनी थी नहीं। न्यूज़पेपर डिलीवरी करता था, फिर कुछ दुकानों में सफाई करता था, फिर दुकान में सेल्समैन बना। कॉलेज के सालों में एक बेटिंग शॉप में कैशियर था।
4: पर क्या इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट टेस्ट मैच, बहुत लंबी सोच चाहिए, बहुत ही लंबी अवधि में ही पैसा बनता है।
3: मुझे दुनिया में हर चीज़ चैलेंज करने में बहुत मज़ा आता है, राइट?
4: कॉफी कैन इन्वेस्टिंग,
3: हाँ जी।
4: इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे आपकी क्या मंशा थी?
3: इंडिया छोटा सा मार्केट है, दुनिया का 3%, सो मुझे लगा यार विदेश में निवेश तो सोचना चाहिए। एआई का प्रहार शुरू हो चुका है।
4: तो क्या मिडिल क्लास गरीबी की ओर जा रहा है, भारतीय मिडिल क्लास?
3: इस प्रकार का टेक्नोलॉजी घातक है दुनिया भर के मिडिल क्लास के लिए।
5: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
6: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
5: आपको कितने लगेंगे?
7: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
8: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening and our esteemed jury is going to judge that. The chief minister will adopt that.
7: अब मिलकर हवा बदलेंगे।
9: आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 की 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देते तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही है तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं और हम लोग निंदा करेंगे, उस समय निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।
10: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद
11: किसी का पतन आता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है।
12: जाट समाज को लेकर
11: नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया। तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडिया। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी। हम खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी की नई टीम के साथ पीएम मोदी की मुलाकात, पार्टी मुख्यालय में अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। वंदे मातरम पर प्रस्ताव पास, कांग्रेस की कड़ी निंदा। छात्रों की गूंज में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे राहुल गांधी, प्रोग्राम के लिए प्रशासन ने रखी 30 शर्तें। कार्यक्रम के खिलाफ एबीवीपी गाएगी वंदे मातरम। यूपी की सियासत में जुबानी जंग तेज, पीडीए पर सीएम योगी के तंज कसने पर अखिलेश ने बीजेपी की बताई नई परिभाषा, भाग जाओ पाकिस्तान। त्योहारों से पहले चीनी पर सियासत, खड़गे ने महंगाई पर अखिलेश सरकार को घेरा तो अखिलेश ने भी बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप, सीएम योगी ने जमाखोरी रोकने के दिए निर्देश। टीम सीजेपी की पिटाई पर छिड़ी एफआईआर की जंग, सीजेपी और गांव वालों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज करवाया मारपीट का केस, विवाद के बाद तबेले से शिफ्ट हुआ इसको। और अब शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की नई टीम के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज दिन भर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में बीजेपी की मैराथन बैठक चलती रही। नितिन नवीन की 3 बैठकों में संगठन के नब्ज टटोली जा रहे हैं, चुनावी रणनीति को धार दी जा रही है, राज्यों से लेकर जमीन तक पार्टी की पकड़ मजबूत करने का खाका खींचा जा रहा है। देश के युवाओं का दिल जीतने और अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए मंथन किया जा रहा है, जिसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। तो सुबह से सिलसिला चल रहा है, अलग अलग चरणों में ये चिंतन मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा। हमारे संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ऐश्वर्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या टिप्स दे रहे हैं नव नियुक्त पदाधिकारियों को?
1: देखिए, थोड़ा सा समय लगेगा आपको ये बताने के लिए कि आखिरकार अंदर टिप्स क्या दी गई, लेकिन हाँ ये बात सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिप्स जरूर देंगे। देखिए, खास तौर से संदीप पाठक जैसे लोग जो हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है जानना कि भारतीय जनता पार्टी आखिर काम किस तरीके से करती है और वो लोग भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से काम होता है उसमें अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों में क्या किया है, आप लोगों की जो कैपेबिलिटी है उसको आप लोग कैसे और बढ़ाइए और कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि आगे का जो रोड मैप है उसके ऊपर भी बातचीत हो। देखिए, अगर हम बात करें तो अगले आने वाले महीनों के अंदर एक बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर और उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही बड़ा चुनाव होगा पंजाब के अंदर। किस तरीके से ये लोग अपनी तैयारी करें, किस तरीके से कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऊपर से लेकर नीचे तक कि जेन जी जो है, जो यंग वोटर है, उसको किस तरीके से ये बताया जाए कि बीजेपी ने बीते 12 सालों में क्या किया है और बीजेपी आने वाले सालों में क्या क्या करेगी, इन सब चीजों के ऊपर विस्तार के अंदर आज बातचीत होगी। और पहली बार होगा ये कि हम देखेंगे जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है वो लोग आज पहली बार एक लंबे समय के बाद रूबरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। चाय भी होगी अंदर और चाय के साथ साथ चर्चा भी होगी कि किस तरीके से पार्टी को अब आगे जाना है।
0: लेकिन ऐश्वर्या, ये बताएं कि ये जो मैराथन बैठक हमें दिख रही है बीजेपी में, क्या पहले भी चूंकि पदाधिकारी आते रहे हैं तो क्या पहले भी इसी तरह का क्रम रहता है बीजेपी में, इसी तरह से बैठकें होती हैं, इस बार कुछ नया है?
1: देखिए, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में जब भी बैठकों का दौर होता है वो लंबा होता है क्योंकि एक एक चीज के ऊपर बारीकी से बात की जाती है और कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि वो लोगों को ये बताएं कि हम किस तरीके से काम करते आए। क्योंकि देखिए, जो पुराने लोग हैं उन लोगों को लगता है कि जो नए लोग हैं उनको ये बताने की जरूरत है, उनको जो कल्चर है उसको सिखाने की जरूरत है और उसी कल्चर को आगे लेके जो युवा है वो किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आप नए लोगों को टैप इन करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बेस है वो सॉलिड वोट बेस है। अब जरूरत है कि आप इस वोटर बेस को आगे कैसे बढ़ाएंगे और हर स्टेट की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, हर स्टेट का जो रोड मैप होता है वो अलग होता है, तो आप ये जो चुनौतियां हैं इनको किस यूनिक तरीके से टैकल करेंगे, किस तरीके से आगे आएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वो इंस्टाग्राम का वीडियो बनाया जिसमें 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए, तो कहीं ना कहीं इन तरीके की चीजों पे चर्चा जरूर हमें आज देखने को मिलेगी।
0: अब नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। थैंक यू सो मच आपका इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी की एक तरफ मैराथन बैठक, दूसरी तरफ छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं और राहुल गांधी पुणे पहुंचे हुए जहां पर वो छात्रों के साथ अब संवाद करेंगे। तो राहुल गांधी इससे पहले कोटा, प्रयागराज, देहरादून तमाम जगहों पर छात्राओं की गूंज कार्यक्रम कर चुके हैं और अब उन्होंने चुना है पुणे को और पुणे में यहां वो छात्राओं से विशेष रूप से बातचीत करने वाले हैं। इस पर खूब राजनीति भी आज हम देखने को मिली, जहां पर NSUI, ABVP उनका अपना जो है टसल देखने को मिला। ABVP ने वंदे मातरम गाने का ऐलान किया है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज पुणे से करने वाले हैं। कुछ देर के बाद वो विजुअल्स भी आएंगे जब राहुल गांधी संवाद करेंगे। राहुल गांधी यहां से क्या अलग बोलते हैं उस पर निगाह रहेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौसमी सिंह भी जुड़ेंगे, जिससे मैं पुणे गए हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन जिन जी तक पहुंचने का प्रयास है, अब जिन एल्फा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे युवा संवाद के जरिए बीजेपी प्रयास कर रहे हैं, उनकी प्राथमिकता दिख रही है अब जिन जी है, उसी प्रकार कांग्रेस की भी प्राथमिकताओं में अब जिन जी दिखाई देने लगा है। हमारे संवाददाता मौसमी समय पुणे से हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास चलते हैं। मौसमी, क्या तस्वीर है समय, कितनी देर बाद शुरू हो रहा है कार्यक्रम? लाउड म्यूजिक है जो आप देख सकते हैं, इसलिए शायद मेरी आवाज हमारे संवाददाता तक पहुंची नहीं है। हम दोबारा उनके पास चलेंगे। मौसमी, मेरी आवाज मिल रही हो? माहौल तो मैं देख ही पा रहा हूं कि बड़ी संख्या, पूरा खचाखच भरा हुआ है, लेकिन अगर आप बता सके राहुल गांधी कितनी देर बाद बोलेंगे? मौसमी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आप विजुअल्स तो दिखाए रहे हैं इस समय लाइव, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनसे कनेक्ट भी किया जाए ताकि हम वहां से उनके जरिए उस एनर्जी को महसूस कर सकें जो वहां पर इस समय गाने तो चल ही रहे हैं और संगीत के जरिए भी। अब और संगीत भी कैसा बज रहा है, जो यूथ को पसंद आता है उसी तरह के गाने बज रहे हैं और थिरकते हुए लोग, थिरकते हुए चेहरे तो आपको दिखाई देंगे और नाचते गाते हुए भी, और इसमें सिर्फ छात्राएं आपको दिखाई देंगे। मौसमी, आवाज मिल रही है?
2: समां बंधा हुआ है, उसमें आप देखिए कि हमारे पीछे आपको हजारों छात्राएं नजर आ जाएंगी। ये पहली बार है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स ओनली, विमेन ओनली प्रोग्राम जो है यहाँ पे राहुल गांधी ने अपने चौथे एडिशन में किया है। यहाँ पे सारे युवा यूथफुल गाने गाए जा रहे हैं, मंच बिल्कुल रॉकस्टार एक तरीके से परफॉर्मेंस की तरह सजा हुआ है, जहाँ पे राहुल गांधी थोड़ी देर में नजर आएंगे। कैमरामैन पवन आपको 360 डिग्री एक व्यू दिखा रहे हैं और ये जो चौथा एडिशन है पुणे में हो रहा है, बीजेपी के गढ़ और यहाँ पे NDA के गढ़ महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम। इतनी हजारों की भीड़, सैकड़ों की संख्या, कांग्रेस का कहना है कि 7-8 हजार छात्राओं से ज्यादा यहाँ पे आई है। आप देखिए जैसे ही गाना आता है हाथ ऊपर करके सभी छात्र यहाँ पे ताल से ताल मिलाते हुए नजर आते हैं, और सिर्फ छात्राएं नहीं, यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस की नेत्रियाँ हैं वो भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी।
0: तो मौसमी दिखा रही थी जो कि कॉन्सर्ट अभी ज्यादा लग रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी जब बोलेंगे तब आपको एक बार फिर से ले चलेंगे। लेकिन अब हम बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जुबानी जंग जारी है। योगी ने अखिलेश के PDA फॉर्मूले को पाकिस्तान से जोड़ा है, तो वहीं अब अखिलेश यादव ने बीजेपी की नई परिभाषा बताई है। इस बीच में आरक्षण पर भी अखिलेश यादव की तरफ से बड़ी टिप्पणी कि आरक्षण खत्म करने की एक साजिश चल रही है। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था, अखिलेश यादव ने बयान दिया कि आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। आपको यह भी बताते कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें डिप्टी सीएम जो है मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो मांग इनकी है वो हम केंद्र सरकार के सामने रखेंगे, जो भी उनकी बातें उनको रखा जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण खत्म करने के बीच में साजिश चल रही है। तो यूपी सियासत की बात हम करें, जहां पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में अब जुबानी जंग चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को पाकिस्तान से जोड़ा था, अब अखिलेश यादव ने बीजेपी की नई परिभाषा बताई है, क्या कहा है सुनिए।
3: अखिलेश यादव की PDA सियासत की योगी आदित्यनाथ ने अलग परिभाषा बताई, जिसमें पाकिस्तान की एंट्री हो गई।
4: क्रिकेट की तरह रिंग रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं, पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे।
3: जवाब में अखिलेश बीजेपी के पी का मतलब समझा रहे हैं।
5: पी का मतलब पाकिस्तान, अगर मैं यूं कहूं बीजेपी भाग जा पाकिस्तान, या यूं कहूं कि भाग जाओ पाकिस्तान, जो सिद्धांत है वो नहीं बदल सकता। पीडीए से घबराए हुए हैं इसीलिए पीडीए की परिभाषाएं बदल रहे हैं वो। जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना पीडीए आगे बढ़ेगा।
3: यूपी में 2027 के चुनाव का ऐसा खुमार है कि हर मुद्दे पर जुबानी जंग तेज है। कल योगी आदित्यनाथ ने जापान के जेन अल्फा यानी स्कूली छात्रों से मुलाकात की तो आज अखिलेश उस पर तंज करते नजर आए।
5: कल के वीडियो भी मैं देख रहा था, उस बच्चे ने थोड़ी भी रिसर्च की होती तो शायद वो मुख्यमंत्री जी के साथ इतनी हिम्मत नहीं कर पाता सेल्फी लेने की। खैर, इधर बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि कभी बच्चे गोदी में, कभी बच्चों को खिलाते हुए तस्वीरें आ रही हैं। अच्छी बात है, इसके बाद बहुत फुर्सत मिलेगी बच्चों से बातचीत करने की।
3: बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने कमर कस दी है। जहां सीएम योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे पर हमले और तंज का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के 54 वाले बैन पर भी चल रहे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।

0: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
1: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में 54 पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाए। मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
2: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं।
3: उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
1: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए तो उचित होगा।
4: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे।
1: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है तो अखिलेश यादव बीजेपी को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
4: तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें, और अगर 120 सीट नहीं दे पे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
1: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। अब बात करते हैं CJP के, जहां पर कल राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान चल रहा है। CJP ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, जिसके 24 घंटे बीत चुके हैं।
5: जयपुर में CJP की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। CJP ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने CJP नेताओं के खिलाफ FIR करवाई है। CJP अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
6: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं। आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
7: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे, पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
5: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थायी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
8: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी उसको अस्थायी तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको, ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
5: स्कूलों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर लाहौर से भी आई, जहाँ अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया, वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
9: इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए, नई प्लेट लाकर एक घंटे के लिए प्लेटें लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी, जिसकी ये फोटोज है।
5: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है, जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
10: और अब छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं। राहुल गांधी पुणे पहुंचे हुए हैं, लाइव तस्वीरें आ रही हैं जहां पर स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में हैं। इस बीच में वंदे मातरम का गायन चल रहा है।

0: मातरम का गायन इस समय चल रहा है, राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा है और ये एबीवीपी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज के साक्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो राष्ट्रीय गीत का लगातार अपमान कर रहे हैं और इस समय एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लिए हुए लाइव तस्वीरें इस समय आ रहे हैं, बड़ी संख्या में है और ये युवाओं की आवाज करके कार्यक्रम उन्होंने आज किया है। पुणे में राहुल गांधी का कुछ देर बाद वो कार्यक्रम होने वाला है जहां पर वो छात्राओं के साथ आज संवाद कर रहे हैं, छात्रों की गूंज छात्राओं के साथ। और आज दूसरी तरफ एबीवीपी, जहां कल टकराव भी देखने को मिला एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में, और एबीवीपी ने आज वंदे मातरम के गायन का ऐलान किया था और इस समय वो कार्यक्रम चल रहा है। ये समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए आप तमाम एबीवीपी कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। एक तरह की सब राजनीति शुरू हो गई है इस पर, क्योंकि राहुल गांधी पर भी आरोप लगाया जाता है बीजेपी की तरफ से, एबीवीपी की तरफ से। उन स्टेट्स में जाते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है और उन स्टेट्स में जहां पर उनकी या गठबंधन की सरकार है। और अब जब पुणे वो पहुंचे हैं तो पुणे में एबीवीपी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि वो जो है यहाँ वंदे मातरम का गायन करेंगे। और समय पुणे में हमारे संवाददाता मौसमी सिंह भी मौजूद है। मौसमी, हमने तस्वीर दिखाई एबीवीपी की जहां उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस जगह पर कुछ देर के बाद संवाद करने वाले, वहां से क्या इस समय तस्वीर आ रही है?
1: कवर कर रहे थे 24 घंटे या के भीतर ही राहुल गांधी, यही वो वक्त है जब वो पार्लियामेंट स्ट्रीट में नजर आ रहे थे। और अब 24 घंटे बाद यहाँ छात्राओं की गूंज में आप देखिए कि ये हुजूम जो नजर आ रहा है, किसी भी वक्त अब राहुल गांधी आ सकते हैं। अब देखिए राहुल गांधी का नाम लेने की बात हुई है, आइए देखें आप पोस्टर और बैनर जो लिए हुए हैं, मोबाइल कैमरे आप देखें तो हर हाथ में मोबाइल है। पूरी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग और राहुल गांधी जब आएंगे तो उसकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश है। ये वो तस्वीर है जिसको देख के जाहिर तौर पे कांग्रेस जरूर गदगद होगी, लेकिन ये राहुल गांधी का जो चौथा एडिशन है आप देखें, यहाँ पे आपको सिर्फ छात्राएं नजर आएंगी और आप मोबाइल के कैमरे की लाइट भी यहाँ पे ऑन होते हुए नजर आ रही है। लगभग सैकड़ों छात्राएं ना सिर्फ पुणे से बल्कि आसपास के इलाकों से भी, आसपास के जिलों से भी लाई गई हैं और एनरोल की गई हैं। यहाँ पे कई ऐसे हैं, ये राहुल की
0: और अब एक तस्वीर ये देखिए आप, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनियुक्त पदाधिकारियों से मुलाकात के बाद एक ग्रुप फोटो इस समय ली गई, जिसमें संगठन में जो बड़ी जिम्मेदारियां मिली है सबके साथ एक तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको आज मंत्र दिया है 2027 आने वाले तमाम चुनावों के लिए पार्टी कैसे काम करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसमें चेहरे भी हैं जिनको पहली बार मौका मिला है। तो उनके साथ संवाद आज चरणबद्ध तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यकर्ताओं के साथ, इन पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं और अब लास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करने के लिए पहुंचे। कुछ देर पहले वो बीजेपी के मुख्यालय में पहुंचे और अब ये ग्रुप फोटो जिसमें आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारियों को, सभी संगठन में अलग अलग जो पदों पर नए नियुक्त किए गए उनके सबके साथ एक ये ग्रुप फोटो, और कुछ देर बाद वो भी स्पष्ट हो जाएगा, पता चलेगा कि प्रधानमंत्री ने उनसे क्या संवाद किया है। लेकिन मुख्यतः फोकस जेन जी पर, जेन अल्फा तक, उन तक अपनी बात पहुंचाना, उनकी बातें भी सुनना, उन तक अपनी पार्टी के विचारों को भी रखना, क्या काम सरकार ने उनके लिए किया उनको रखना और रखने का तरीका क्या रहेगा, आपकी वो जो है वो जो मंत्र है वो बीजेपी के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया होगा। कुछ देर बाद क्लियर होगा कि उन्होंने और क्या क्या बातें कही हैं, लेकिन ये उस समय की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी पहुंचे थे मुख्यालय में, और अब एक तस्वीर भी आ गई जब वहां पदाधिकारियों के साथ उन्होंने नवीन टीम के साथ संवाद जो है ग्रुप फोटो ली है। ये वो तस्वीर है बीजेपी मुख्यालय की जहां तमाम पदाधिकारी हैं संगठन में जिनको अलग अलग भूमिकाएं दी गई हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। ये नितिन नवीन की नई टीम है, उस नई टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला इंटरेक्शन था उनके साथ, पहली उनकी ये मुलाकात थी। और नवीन टीम एक नए जोश के साथ स्वाभाविक है कि आई है, तो उस नई ऊर्जा को किस तरह से पार्टी इस्तेमाल करेगी, क्या कैसे काम आगे बढ़ाना है, कैसे आगे काम करना है। प्रधानमंत्री अपने विचार उनके साथ उन्होंने साझा किए होंगे, नितिन नवीन तो जो है लगातार उनके साथ चिंतन मंथन कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिले हैं, एक तरीके से शिष्टाचार भेंट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये पीएम का पहला उनके साथ संवाद और ये ग्रुप फोटो हुई है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारी, आप ठीक बैक में बड़ा सा पोस्टर भी देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज संवाद किया है नवीन टीम के साथ, जहां ये सबसे इंपॉर्टेंट वो जो जनरेशन जो बहुत ज्यादा ही सवाल पूछते हैं जेन जी, तो उन तक कैसे पहुंचना है। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे संवाददाता हमारे से जुड़ गए। ऐश्वर्या, ग्रुप फोटो आगे आमतौर पर ग्रुप फोटो तभी आते हैं जब संवाद वाद सब समाप्त हो जाता है, तो क्या क्या क्या मंत्र दिया पीएम ने?
2: देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बातचीत हुई, जो हमें समझ आता है उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि अब आप सबको एक साथ रह के हौसले के साथ आगे बढ़ना है। जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उनकी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो इलेक्शंस भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत क्रूशल है, चाहे वो कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की कि ये जो नए लोग हैं, ये जिस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी इन लोगों ने ज्वाइन किया, उनका जो उत्साह है वो बरकरार रहे और इसी उत्साह के साथ वो आगे भी
0: ठीक है। शुक्रिया, नजर बनाए रखें आप, लौटेंगे आपके पास, फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
4: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
3: आपको कितने लगेंगे?
5: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
6: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening and our esteemed jury is going to judge that. The chief minister will adopt that.
5: अब मिलकर हवा बदलेंगे।
7: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसे।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन भी कुदरती है, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लायन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: बिजली का बिल पेड तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिए।
1: कैसे?
0: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
1: पे। इत्ता माही वे।
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
4: टाटा
5: AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: क्लिनिक पे दैट इज द मोस्ट कॉमन यू नो सिम्टम। डॉक्टर बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हैं इस मौसम में, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, द स्किन गेट्स ग्रीजी बिकॉज ऑफ विच एक्ने फॉर्म इरप्शंस स्टार्ट। बार बार फेस वॉश नहीं करना है, दैट विल वॉश अवे ऑल द नेचुरल मॉइस्चर अदरवाइज।
3: कौन से स्किन को किस टाइप के प्रोडक्ट किस तरीके से चूज करना चाहिए?
2: विटामिन सी फॉर एन एक्ने प्रोन स्किन is not a good idea.
3: Hair treatments भी लोग बहुत करवाते हैं जिसकी वजह से hair बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। आपके हिसाब से इन treatments का क्या असर होता है बालों में?
2: We cannot be so strict. हम नहीं बोल सकते कि आप ये मत करना, ये तो obviously, but then you'll have to take care.
3: How to choose the serum according to your skin type.
4: बी आर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है?
5: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिन्ना की तरह कि हम सेपरेट इलेक्ट्रेट नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही दल्तिस्तान भी बनता।
6: दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी।
7: लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का,
6: आपको कितने लगेंगे?
8: हमने पॉल्यूशन की बहुत बात की, अब वक्त है सॉल्यूशन पे बात करने का। आइए जुड़ते हैं इंडिया टुडे और आज तक की पॉल्यूशन का सॉल्यूशन मुहिम के साथ।
9: There you go. Big round of applause. That's the QR code. If you've got a solution, we've listening. And our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that.
8: अब मिलकर हवा बदलेंगे।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

छात्रों की गूंज में शामिल होने के लिए पुणे पहुंचे राहुल गांधी। प्रोग्राम के लिए प्रशासन ने रखी 30 शर्तें। कार्यक्रम के समय बीजेपी और एबीवीपी कार्यकर्ता वंदे मातरम गाते देखे। यूपी की सियासत में जुबानी जंग तेज। पीडीए पर सीएम योगी के तंज कसने पर अखिलेश ने बीजेपी की बताई नई परिभाषा, कहा भाग जाओ पाकिस्तान। सिलीगुड़ी में गोरखा सांसदों के साथ अमित शाह की मुलाकात। बंगाल के सीएम शुभेंदु भी मौजूद। विकास के रोड मैप पर मंथन। हिमाचल के मंडी जिले के नागनाला इलाके में टूटा पहाड़, लैंडस्लाइड से जबरदस्त दहशत। कैमरे में कैद कुदरत का कोहराम।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: इतना माही वे।

0: आजकल मुश्किल ये कि सच बोल दो तो नाराज हो जा रहे हैं लोग। हम तो ये कहेंगे कि जितने भी सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी, उन सबको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाए। अगर हमने किसी को 30 दी हैं, तो उसको 3 गुना मिलनी चाहिए, 4 गुना मिलनी चाहिए। अब तो ठीक है, हम तो चाहते हैं कि भाई अगर हमने कोई बात कह दी है तो बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई, 30 के 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं देगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी का अपमान कर रहे हो आप, चौधरी अजीत सिंह जी का अपमान कर रहे हो। अगर उन्हें 120 सीटें नहीं मिल रही हैं, तो आप उनका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। और हम लोग निंदा करेंगे उस समय, निंदा प्रस्ताव पास करेंगे अगर 120 सीट नहीं मिलेंगी उन्हें तो।
1: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं। जाट समाज वीरता, स्वाभिमान, मेहनत, त्याग, किसान का संरक्षण है और ऐसे समाज को आप अपमानित कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी को नेताजी बनाने का काम किया और आज आप पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दोषपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। आपका जिससे गठबंधन हुआ, आपने उसको अपमानित करने का काम किया। 2017 में कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन हुआ, कांग्रेस ने कहा कि आप उसका फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद
2: किसी का पतन आता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है,
3: जाट समाज को लेकर
2: नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।

पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति का परिवार किया, कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या, बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न। यूपी की सियासत में जुबानी जंग तेज, पीडीए पर सीएम योगी के तंज कसने पर अखिलेश ने बीजेपी की बताई नई परिभाषा, कहा भाग जाओ पाकिस्तान। सिलीगुड़ी में गोरखा सांसदों के साथ अमित शाह की मुलाकात, बंगाल के सीएम शुभेंदु भी मौजूद, विकास के रूट मैप पर मंथन। हिमाचल में मंडी जिले के नागनाला इलाके में टूटा पहाड़, लैंडस्लाइड से जबरदस्त दहशत, कैमरे में कैद कुदरत का कोहराम।

0: क्या वो मंदिर विशालकाय जहाजों को खींच लेता था अपनी तरफ?
1: कोणार्क में बहुत कुछ ऐसा अभी भी है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है।
0: क्या उस मंदिर की चुंबक से जहाज भटक जाते थे रास्ता?
2: इसका अंदर एक 22 फुट वाला एक मूर्ति था जो सूर्यदेव के किरण के हिसाब से वो धीरे धीरे घूमता रहता था।
0: क्या उस मंदिर की चुंबक ने डुबो दिए कई जहाज?
2: फैमिली और 1200 कारीगर को जिंदा रखने के लिए समुद्र को कूद पड़ा था।
3: और पत्थर के अंदर से वो क्लैंप है, जॉइंट।
0: कोणार्क सूर्य मंदिर और समुन्दर का वो सैकड़ों साल पुराना रहस्य जो आज भी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अनसुलझी पहेली है।
1: ना बोलोगे कोई फुल प्रूफ आंसर ASI दे देगा या कोई दे देगा, मेरे जानने में संज्ञान में ये नहीं।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। एक मंदिर जिसमें आस्था सबकी है लेकिन पूजा कोई नहीं करता। एक मंदिर जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं लेकिन उसके गर्भगृह में जाना दशकों से मना है। क्या वाकई इस मंदिर में कोई चुंबकीय शक्ति, कोई मैग्नेटिक पावर थी? अगर थी तो वो कहां गायब हो गई? क्या है अद्भुत कोणार्क मंदिर के अविश्वसनीय इतिहास का वो अकल्पनीय सच जो सदियों से कोई नहीं जानता?

कोणार्क यानी सूर्य का कोना। सूर्य भगवान का एक ऐसा मंदिर जिसे कुछ लोग कहते हैं कि सदियों पहले मनवाया गया था, तो कुछ का मानना है कि ये मंदिर तो युगों पुराना है और इसकी आधारशिला द्वापर युग में ही रख दी गई थी। मान्यताएं कहती हैं कि कोणार्क समय की गति बताता था, लेकिन आज के कोणार्क मंदिर का हर पत्थर कहता प्रतीत होता है कि समय की गर्त में ही आज इसका हर सच दबा है।

0: क्या सच में 123 साल पहले अंग्रेजों ने कुछ ऐसा देख लिया था कि मंदिर का गर्भगृह बंद कर दिया?
1: जब भी अंग्रेजों लोग को लूटने के लिए उड़ीसा आए, उनका पानी जहाज का कंपास भी सही तरह से काम नहीं किया।
2: 1903 में लॉर्ड कर्जन ने ये मंदिर को चारों तरफ से सील करके रखा था।
0: क्या वाकई मंदिर की सुरक्षा के लिए लाखों टन रेत से इसे भर दिया गया, या कोई रहस्य इसके नीचे आज भी कैद है?
3: एक इंजीनियर था बिशन स्वरूप, उसने क्या किया, उसने देखा मंदिर ढह जाएगा, तो उसने ऊपर से एक छेद करके उस मंदिर में बालू भर्ती कर दी।
0: क्या सच में कभी मंदिर के शीर्ष पर लगा कई टन भारी चुंबक जहाजों को खींच लिया करता था?
3: कैसे 35 टन का एक सिंगल स्टोन ब्लॉक को ऊपर लेके गए, पहले तो उसको क्वारी से यहां तक कैसे लाए, ठीक है, उसकी भी अगर आप बोलोगे कोई फुल प्रूफ आंसर ASI दे देगा या कोई दे देगा, मेरे जानने में संज्ञान में ये नहीं है।
0: क्या मंदिर के गर्भगृह में कभी भगवान सूर्य की विशाल प्रतिमा बिना किसी सहारे हवा में तैरती थी?
1: इसका अंदर एक 22 फुट वाला एक मूर्ति था जो सूर्यदेव के किरण के हिसाब से वो धीरे धीरे घूमता रहता था।
4: मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया था और जिसके बीच सूर्य की मूर्ति रखी हुई थी।
0: क्या सदियों पहले 12 साल के एक बच्चे की मौत के साथ मंदिर का सबसे बड़ा राज भी दब गया?
1: 1200 फैमिली और 1200 कारीगर को जिंदा रखने के लिए समुद्र को कूद पड़ा था।
2: बच्चा मंदिर का ऊपर जाके यहाँ समुद्र से कूद के मर गया।
0: क्या वाकई इस मंदिर की नक्काशी सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक ऐसी मशीन है जो आज भी बिना किसी घड़ी के सटीक टाइम बताती है?
2: संडे उसी समय का 8:24।
0: और सबसे बड़ा सवाल ये कि आज तमाम आधुनिक मशीनों और तकनीक होने के बावजूद 123 साल बाद भी मंदिर के अंदर का सच बाहर क्यों नहीं आया?
3: कोणार्क की सारी कहानी लिखी नहीं गई है। मैंने जैसे आपको कहा, काफी सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब ढूंढने पर भी अभी तक नहीं मिलता है।
5: जो कोणार्क मंदिर है ये उड़ीसा के पुरी जिले में बसा हुआ है। ये मंदिर भारत की सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत नहीं है बल्कि इसकी जो संरचना है, इससे जुड़ा जो इतिहास है, इससे जुड़ी सदियों पुरानी जो मान्यताएं हैं, किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, इसे आध्यात्म और विज्ञान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। इस मंदिर की मान्यताएं पुराणों से जुड़ती हैं तो मध्यकाल के इतिहास में भी मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने एक श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की उपासना की और उनका मंदिर बनवाया। दावा किया जाता है कि कोणार्क मंदिर आज उसी स्थान पर है।
1: कृष्ण का पुत्र का नाम था सांब। सांब ने बहुत सुंदर था। सुंदर होने के बाद उसका मन में बहुत घमंड हो गया था। घमंड होने के बाद कुछ माताओं के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करने के बाद नारद मुनि ने देख लिया। नारद मुनि देख के जाके कृष्ण भगवान को बता दिया कि भगवान आपका बेटा कुछ गलत काम कर रहे। तो भगवान आके रंगे हाथ उनको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनका बेटा को अभिशाप दिया कि जिस शरीर से इतना गौर बौर घमंड कर रहे उस शरीर को कुष्ठ हो जाए, मतलब लेपर्सी। सारा विश्व में अभी तक इसके लिए दवाई निकला ही नहीं, लेकिन यहाँ पे दबाइए। फिर नारद मुनि मिलते हैं।
2: नारद बताया नदी और समुद्र संगम 1238 में ये जगह में नदी समुद्र मिलन था।
1: उस नदी से हर रोज स्नान करने से सूर्य देव का पहला किरण आपका शरीर का ऊपर गिरेगा तो आपको कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल सकता है।
5: दावा ये भी किया जाता है कि तब से यानी युगों पहले से वहाँ सूर्य देव की विधिवत पूजा हुआ करती थी।
6: पुरंदर केसर जो बनाए थे वो 200 साल बचा हुए थे, और नांगुला नरसिंह जो मंदिर बनाए थे 300 साल तक पूजा हुए थे।
5: तब मंदिर कैसा था, किस रूप में था, उसका कोई हिस्सा या आकृति आज के कोणार्क मंदिर से मिलता था या नहीं मिलता था, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता। कोणार्क मंदिर के प्रथम अस्तित्व का पन्ना खुलता है 1250 ईस्वी से। इतिहास में ये उल्लेख मिलता है कि गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था।
3: ये एक यूनिक मंदिर है क्योंकि हमें पता है सूर्य मंदिर भारत में इतने ज्यादा नहीं है और इतना बड़ा तो कहीं भी नहीं था। ठीक है, अब उस समय के राजा ने सोचा था मैं कुछ अलग हटके करूं। ठीक है, वो चाहता तो कोई शिव का मंदिर बना सकता था, उसी के कंटेम्प्रेरी 100 साल ऊपर नीचे बहुत मंदिर बने थे, भला इतने बड़े नहीं बने थे। कोणार्क की जो एक्सक्लूसिविटी है, जो अलगपन हुआ है, वो है जो उसका शेयर साइज नंबर वन, नंबर टू उसका लोकेशन।
5: मंदिर निर्माण आसान नहीं था क्योंकि एक तो समुद्रीय तट और दूसरे वहां घना जंगल था, पत्थर कैसे आते। इतिहास के इस सवाल का उत्तर भी इतिहास के ज्ञाताओं के पास ही मिलता है।
3: मंदिर बनाना की जो शैली थी वो सहज नहीं थी क्योंकि उसके आजू बाजू में कोई भी ऐसी क्वारी नहीं थी जहां इतने बड़े बड़े पत्थर वहां पर ट्रांसपोर्ट करना, उस टाइम तो ट्रक वगैरह होते नहीं थे। यहां तक कि उस मंदिर को बनाने के लिए एक छोटी सी नदी भी खोदी गई थी जिसको पत्थर बुहा कैनल बोलते हैं, वो बड़ी नदी थी क्योंकि जितने भी ये बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक आते थे जो 2, 4, 6, 7 टन तक के थे उसको फ्लोट करके लाया जाता था, तो उसको मंदिर से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर तक लाते थे, फिर हो सकता है हाथियों से उसे खींचकर मंदिर के साइड पे लेके जाते हैं। उस जगह में राजा ने क्यों बनाई उसका हमारे पास उत्तर नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो इस वजन का 30 टन 35 टन का जो हेडस्टोन होता है वो सिंगल स्टोन ब्लॉक है उसको ऊपर कैसे लेके गए, उस टाइम तो क्रेने होती नहीं थी। उस जमाने के बहुत बड़े बड़े ऐसे शिलाएं अभी भी नदी के इर्द गिर्द पड़ी हैं।
5: जानकार भी इस बात से हैरान है कि उस समय न तकनीक थी न मशीन, फिर बड़े बड़े पत्थर ऊंचाई तक कैसे ले जाए गए और कैसे ये अद्भुत मंदिर बन सका। मंदिर निर्माण को लेकर और भी कई अद्भुत कहानियां हैं जो पूरे विश्वास के साथ कही जाती हैं।
2: ये मंदिर को राजा नरसिंह का जब बनाया 1238 मसीह में,
1: उनका माता का नाम था कस्तूरी देवी। कस्तूरी देवी शादी होने का कई साल तक उनका गोद में बच्चा पैदा नहीं हुआ।
2: वो बताया था भगवान यदि मेरा बेटा हो जाएगा राजा हो जाएगा कोई सूरज मंदिर बनाएंगे।
1: तो पैदा होने के बाद वो धीरे धीरे राजा बड़ा होकर राजा के आसन पर बैठ जाते हैं। उनका माता कस्तूरी देवी बुलाता है, बेटे नरसिंह पास आओ।
2: जो कृष्ण भगवान बेटा शंभू को अभिशाप दिया था ये घर में अच्छा है, यहाँ से के सूरज मंदिर बेटा को ऑर्डर किया बनाने को।
1: इससे सूर्य मंदिर हमारा बचपन जवानी और बुढ़ापा तीन स्टेप, मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीन स्टेप।
2: तो 12 साल में चीज बनाना चाहिए, 40 करोड़ माँ ने बेटा को दिया, बेटा 1200 कारीगर को बुलाया।
1: राजा ने ऑर्डर किसको देते, शिवेश शांतरा उसका नाम था मंत्री का नाम, तो शिवेश शांतरा ने 1200 कारीगर को ढूंढ लिया, तो 1200 कारीगर इधर आ गए मंदिर बनाने के लिए।
2: 1200 कारीगर में इंजीनियर होता विश्व महाराणा प्रेसिडेंट, वो राजा से पैसा लाया था 12 साल कंडीशन करके।
1: ये मंदिर धीरे धीरे बनते गया लेकिन इसका 1200 कारीगर मंदिर बना दिया लेकिन इसका कलश किसी ने नहीं बिठा सका।
2: 3 नंबर वाला जो मेन मंदिर था इसके ऊपर जो मैग्नेट लगाने का वो मैग्नेट को 1200 कारीगर कोई लगा सकते नहीं।
1: जो कलश बिठा रहे थे वो समुद्र का अंदर गिर जाता था। राजा ने ऑर्डर दे दिया कल सुबह 12 साल हो जाएगा इसका कलश सही तरह से नहीं बिठाएंगे तो 1200 कारीगर का स्वर अलग कर देंगे।

0: माना जाता है कि मंदिर की दीवारें तो तैयार हो गई थी, लेकिन तेज समुद्री हवाओं के कारण शिखर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था और राजा की तरफ से निश्चित किया गया समय बीत रहा था, जिससे सभी शिल्पकार चिंतित थे।
1: वो जो इंजीनियर घर छोड़ के आया था, इंजीनियर कह के बेटा घर में था, बेटा को 12 साल हुआ था, बेटा का नाम होता धर्मपद।
2: उनका मम्मी को पूछता है, मम्मी हमारा पापा कहाँ है? ना पापा गए हैं गजपति लांगुरा नरसिंह देव का एक भव्य सूर्य मंदिर बनाने के लिए, ना मैं जाऊंगा देखने के लिए।
1: वो बेटा ने पिताजी के पास आया था मीट करने को, पिताजी को, पिताजी के साथ बेटा का जब मीट हो गया, पिताजी बेटा को सारा बात बताया, जे बेटा हम राजा से पैसा लाया 12 साल कंडीशन करके, ये सारा सामान बनाया, आज रात बाकी है, इसके ऊपर एक मैग्नेट लगाना का। वो 1200 कारीगर का दिमाग में आता नहीं, सुबह 1200 कारीगर को राजा मार डालेंगे।
2: तो बेटे ने तुरंत बोलता है, पिताजी मेरे को ऑर्डर दीजिए, इसका कलश सही तरह से बिठा सकता हूँ। 1200 कारीगर हंसने लगते हैं, जो कि जो काम 1200 कारीगर नहीं कर पाए तो कैसे करेगा?
1: ना पिताजी चिंता मत करिए, मैं इतना रास्ता आया है, आप यदि मेरे को चांस दे देंगे मैं उसको ठीक कर देंगे। वो पिताजी से ऑर्डर लेके बच्चा ने इसी के ऊपर मैग्नेट रात में फिटिंग किया था।
2: इसका ऊपर जो कलश बिठा रहे थे वो गिर जाता था, उस बच्चे ने क्या किया, इसका ऊपर पहले लोहा रखा, इसका ऊपर 53 टन का एक चुंबक रखा, इसका ऊपर कलश बिठा दिया, मंदिर कंप्लीट।
1: तो सुबह जब हो गया, 1200 कारीगर इसके पिताजी को डिमांड किया, जे बिशु ये बात राजा को मालूम होगा, कल रात में तुम्हारा बच्चा ये चीज बनाई है। तो राजा बोलेगा 1200 कारीगर 12 साल में जो काम नहीं किया, एक 12 साल का बच्चा 12 घंटा में किया, इसका जिंदगी में 12000 आदमी का काम करेगा।
2: फिर 1200 कारीगर का स्वर अलग कर देंगे।
1: वो 1200 कारीगर को बचाने के लिए और बात को छुपाने के लिए बच्चा मंदिर का ऊपर जाके यहाँ समुद्र से कूद के मर गया।
0: जानकारों के दावों के अनुसार मंदिर बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसी के साथ जुड़ गई 12 साल के बालक धर्मपाद के बलिदान की कथा।
3: कहा जाता है कि 12 साल के बालक धर्मपाद ने गणितीय सूझबूझ के साथ चुंबक का इस्तेमाल किया शिखर को स्थापित करने में। कई लोग आज भी ये दावा करते हैं कि मंदिर निर्माण में जो पत्थर लगे उनमें भी चुंबकीय तत्व थे और इसी वजह से मंदिर में जो सूर्य देव की प्रतिमा स्थापित हुई वो किसी समय बिना सहारे के हवा में तैरती थी।

0: क्या वाकई हवा में बिना सहारे तैरती थी कोणार्क मंदिर में सूर्य देव की प्रतिमा? क्या सैकड़ों वर्ष पहले ऐसी तकनीक संभव थी जो प्रतिमा को हवा में स्थापित कर सके? क्या चुंबक के सहारे तैयार हुआ था भगवान सूर्य देव का मंदिर और प्रतिमा? स्थानीय दावों और आस्थाओं के अनुसार जब मंदिर निर्माण हुआ तो उसमें भगवान सूर्य देव की प्रतिमा को ऐसे स्थापित किया गया कि वो हवा में तैरती हुई प्रतीत।
1: मुझे इतिहास से ज्यादा जो मुझे वैज्ञानिक लग रहा है, साइंटिफिक, कि यहाँ पे जो मैग्नेट वगैरह था उससे हमारी जो मूर्ति थी वो जमीन से उठ के थी, तो इससे ये पता चलता है कि हमारी जो चीजें पौराणिक है पीछे है वो खाली खाली मतलब अंधविश्वास से न रहते हुए हमारी मतलब साइंटिफिक भी था, हमारा धर्म भी साइंटिफिक था और इसमें बनाई हुई चीजें बहुत ही ज्ञानवान थी। आज तक ऐसी चीज ना हिंदुस्तान में है ना वर्ल्ड में है जिस चीज के बारे में यहाँ पे बताया जाता है।
2: कहा जाता है कि यहाँ सूर्य की मूर्ति थी जो मैग्नेटिक, ये से पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाया गया था और जिसके बीच सूर्य की मूर्ति रखी हुई थी।
0: सैकड़ों साल पहले मंदिर के निर्माता क्या वैज्ञानिक रूप से इतने सक्षम थे और क्या चुंबक का वो इस तरह से इस्तेमाल करना जानते थे? ये एक पहेली थी जो हमें सुलझानी थी।
3: 800 साल पुराने कोणार्क मंदिर में सूर्य देव की हवा में स्थित प्रतिमा का जैसा दावा किया जाता है वैसा ही दावा सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर भी किया जाता है। कहा जाता है कि अब से लगभग 1000 साल पहले तक सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग हवा में तैरता था, इसे लेविटेटिंग शिवलिंग कहा जाता था। तो क्या पहले के विद्वान मैग्नेट का यानी चुंबक का प्रयोग अच्छी तरीके से समझते थे?
0: कोणार्क मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सूर्य देव की प्रतिमा हवा में तैरती थी और इसके पीछे कारीगरों का मैकेनिज्म था। यही बात सोमनाथ मंदिर के प्राचीन शिवलिंग को लेकर भी सामने आई। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग अब से 1000 साल पहले तक 3 फीट ऊपर हवा में तैरता था। न शिवलिंग के नीचे कोई आधार, न शिवलिंग के ऊपर कोई जंजीर या रस्सी। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के हवा में स्थित होने की बात कही गई है। कई विद्वानों का भी ये मानना है कि अब से 1000 साल पहले तक शिवलिंग हवा में ही स्थिर रहता था।
4: इतिहास बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि अंगुष्ट प्रमाण था भगवान का जो स्वरूप, दिव्य स्वरूप था, कोई सपोर्ट नहीं था, ऊपर और नीचे कहीं सपोर्ट नहीं था,
5: और इसलिए इसको लेविटेटिंग शिवालिंगा कहा जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली 1026 एडी में महमूद गजनी के अटैक में महमूद गजनी ने उस शिवलिंग को गिरा के तोड़ दिया था।
0: आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवलिंग किसी ऐसे पत्थर से बना रहा होगा जिसमें कहीं न कहीं कोई धातु का अंश जरूर रहा होगा या कोई चुंबकीय विशेषता रही होगी। आमतौर पर ऐसे पत्थर अंतरिक्ष से आए माने जाते हैं। इन पत्थरों को मीटियोर कहते हैं।
5: जो ये शिवलिंगा था ये बेसिकली एक उल्का पिंड या मीटियोराइट का पीस था। इसका हमारे पास काफी एविडेंस है। सबसे ज्यादा एविडेंस है कि उनकी अपनी कथाओं में लिखा है कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई तो शिव जी ने आसमान को एक ब्राइट लाइट की तरह चीर दिया और ब्राइट लाइट चीर के उल्का पिंड ही आता है, यानी कि मीटियोराइट्स। निकल आयरन की काफी तादाद होती है, स्ट्रांगली मैग्नेटिक होते हैं, और क्योंकि जब वो नीचे गिरते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो इसके बारे में एक पुराना में भी लिखा है कि ये अंडे के साइज का था, ये नॉर्मल शिवलिंग से छोटा था, ये जो सोमनाथ का लेविटेटिंग शिवालिंगा था।
0: हालांकि सोमनाथ मंदिर से जुड़े कई विद्वान इस पर अलग मत रखते हैं, लेकिन हमारे सामने सवाल ये नहीं कि ये उसी शिवलिंग का हिस्सा है या नहीं। हमारे सामने प्रश्न ये है कि हजारों साल पहले वो कौन सा ज्ञान, तकनीक और शक्ति थी जिसने इसे संभव किया होगा।
5: श्री सोमनाथ मंदिर का जो शिवलिंग है वो हवा में तैरता था, ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ये अब करना बहुत आसान है, सुपरकंडक्टर से, लेविट्रॉन से, डायनामिक फीडबैक से। उस वक्त कुछ नहीं था, उस वक्त हमने इन चीजों के बगैर किया है।
0: इसका जवाब हमें चुंबकीय उत्तोलन या मैग्नेटिक लेविटेशन की थ्योरी बताती है। हालांकि वैज्ञानिकों की माने तो मैग्नेटिक लेविटेशन हासिल करना बहुत मुश्किल है और सोमनाथ से पहले इसका कहीं और सबूत दिखाई नहीं देता। शिवलिंग हवा में तभी ठहरा होगा जब इसके ऊपर और नीचे दोनों ओर शक्तिशाली मैग्नेट लगे होंगे, यानी मंदिर की छत पर और शिवलिंग के ठीक नीचे। दोनों चुंबक इतना बराबरी से फोर्स लगा रहे होंगे कि बीच में शिवलिंग अपनी जगह स्थिर हो गया होगा।
5: और इसको हवा में तैराने के लिए उन्होंने क्या किया था, हवा में कोई चीज जब भी तैरती है तो आप लोगों को लगे बहुत आसान है, ऊपर मैग्नेट लगा दो, नीचे मैग्नेट लगा दो, साइड में लगा दो, बैलेंस बना लो और बीच में तैरा लो, ये इम्पॉसिबल है। मॉडर्न साइंस के लिए भी इम्पॉसिबल है, उस समय भी इम्पॉसिबल था, एक चीज को छोड़ के जिसको जो उन्होंने भी यूज किया और जो मैं बताऊंगा।
0: फारसी इतिहासकार कजीवनी ने लिखा है कि 1205 में जब महमूद गजनवी ने हमला किया तो उसने अपने सैनिकों से हवा में स्थिर शिवलिंग के बारे में पूछा।
6: गजनवी के सैनिकों ने भाले से शिवलिंग के चारों तरफ घुमाकर देखा तो कोई रुकावट नहीं मिली। फिर किसी ने कहा कि छत में चुंबक और शिवलिंग में लोहा हो सकता है। महमूद के आदेश पर छत के कुछ पत्थर हटाए गए तो शिवलिंग झुकने लगा।
0: ब्रिटिश वैज्ञानिक सैमुअल अर्नशॉ की 1842 में अर्नशॉ थ्योरम प्रकाशित हुई। इस थ्योरम के अनुसार एक चुंबक दूसरे चुंबकों की मदद से हवा में कभी स्थिर नहीं ठहर सकता, या तो वो चुंबकों से चिपक जाएगा या फिर दाएं या बाएं निकल जाएगा। इसके लिए एक डायमैग्नेटिक पदार्थ इस्तेमाल करना होगा।
5: डायमैग्नेट्स क्या होते हैं? डायमैग्नेट्स नोन है, हमारा उस वक्त का मेटलर्जी बहुत एडवांस था, वो तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है, ये तो 10th सेंचुरी एडी का है, 1026 एडी में या 9th सेंचुरी में बना था ये, जबकि इंडियन मेटलर्जी तो 2nd सेंचुरी एडी से बहुत एडवांस है, जिंक यूज कर रहे थे। कुछ नहीं करना होता है, आपने ऊपर मैग्नेट लगा दिया, नीचे मैग्नेट, साइड पे मैग्नेट, और बीच में आपने बिस्मत की दो प्लेटें डाल दी। ऐसे बहुत से बच्चों के टॉयज भी मिलते हैं, बिस्मत डायमैग्नेटिक है। इसका आप लगा दीजिए कि एक आदमी लड़खड़ा रहा है और चार आदमी उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, जो ज्यादा खींचेगा वो उसकी तरफ चला जाएगा। ये नॉर्मल मैग्नेट के साथ उल्का पिंड है। और अगर आपने बिस्मत बीच में डाल दिया तो उसके बीच में दो दोस्त भी आ गए। बिस्मत दोस्त का काम करता है, वो जब आदमी गिरने लगेगा उसको संभाल के कम फोर्स वाले हिस्से में शिफ्ट कर देगा। बिस्मत का हमारे पास बहुत सॉलिड डाटा है श्री सोमनाथ मंदिर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि जगह जगह लिखा है कि सोमनाथ का मंदिर जो महमूद गजनी ने तोड़ा था, उस मंदिर की बात कर रहा हूं मैं, वो 56 टीक यानी कि लकड़ी के पिलर्स पे था जिनके ऊपर सीसा यानी लेड चढ़ाया हुआ था। और वो सीसा नहीं था, वो बिस्मत था। सीसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेड वैसे भी हिंदू कल्चर में हम यूज नहीं करते, हम चांदी यूज करेंगे, गोल्ड यूज करेंगे, इतना अमीर टेम्पल था हम तो गोल्ड से ढक सकते थे। स्पेसिफिकली सीसा क्यों चुना, यानी कि लेड क्यों चुना? उनके मुताबिक था वो बिस्मत, क्योंकि वो डायमैग्नेटिक है।
0: अद्भुत है कि जो शोध 1842 में सामने आई उसकी जानकारी आज से हजारों साल पहले कैसे थी? प्राचीन हिंदू कारीगरों को ये कैसे मालूम था कि सिर्फ चुंबकों की मदद से शिवलिंग को हवा में रोकना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि बिस्मत या ग्रेफाइट जैसे डायमैग्नेटिक पदार्थ भी इस्तेमाल करने होंगे? तो क्या मंदिर बनाने वालों ने बिस्मत का प्रयोग किया? लेकिन बिस्मत तो 1753 में खोजा गया, फिर उस समय क्या प्रयोग किया गया? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मानव इतिहास के कई पन्नों को मिटाया गया, कि दुनिया के जानने से सैकड़ों सदियों पहले भारत की भूमि पर ये ज्ञान मौजूद था? कोणार्क मंदिर के बारे में स्थानीय लोग आज भी यही कहते हैं कि मंदिर के शीर्ष पर लगा टनों वजनी चुंबक और पत्थरों को जोड़ने के लिए किया गया लोहे के इस्तेमाल से सूर्य देव की प्रतिमा हवा में स्थापित हो सकी।
3: मंदिर के निर्माण के लिए बाहर से जब बड़ी बड़ी शिलाएं लाई गईं, तो उन्हें आपस में जोड़ने के लिए आयरन लॉक सिस्टम का प्रयोग किया था। इसके लिए पत्थरों के बीच खांचे बनाए गए और उनमें पिघला हुआ लोहा भर दिया, जिसके कारण चट्टानों को एक दूसरे से मजबूती से जोड़ा जा सका।
7: अंदर में देखिए लोहा क्लैंप जॉइंट, वो अंदर से देखिए लोहा क्लैंप जॉइंट,
8: इसको मैग्नेटिक ऊपर हम कंट्रोल किया, ये साइन स्टोन को गरम करके लोहा निकाला, बाकी सारा पत्थर जितना खराब हो जाता सारा सॉल्ट हवा से।
7: ये मंदिर के अंदर लोहा बीम था, ये पत्थर को गर्म करके लोहा निकाल के उन लोगों को फिटिंग किया था। उसी समय में इंडस्ट्रिक फैक्ट्री कुछ नहीं था, सीमेंट का सामान कुछ नहीं था, ये लोहा को सारा अंदर में डाल के इसके ऊपर मैग्नेट कंट्रोल किया था, जैसा हमारा बॉडी को दिमाग कंट्रोल करते हैं। अंग्रेज लोग को जब दिमाग निकाल के ले लिया, बाकी जो फ्रेम है वो फ्रेम का सपोर्टिंग नहीं है।
3: सदियों पहले जब तकनीक नहीं थी तब इंसानों ने ऐसा कर दिखाया, तो ये भी अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय ही है और भारतीय कारीगरों की बुद्धिमत्ता का परिचायक है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इतनी ऊंचाई तक लोहा जड़ित भारी पत्थर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कहा जाता है कि रेत और मिट्टी के ढलान तैयार करके उनकी सतह चिकनी की गई और फिर पत्थर ऊपर खींचे गए, जैसा कि हजारों साल पहले मिस्र के पिरामिडों के निर्माण के समय किया गया था। यानी वाकई अद्भुत थी भारत की प्राचीन शिल्प कला और अविश्वसनीय रूप से विद्वान थे भारत के कारीगर। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी तक कोणार्क मंदिर उसी अवस्था में रहा जैसा उसका निर्माण हुआ था, लेकिन 16वीं शताब्दी में मंदिर पर हुए आक्रमण ने इसे तहस नहस कर दिया। धीरे धीरे मंदिर अपनी आध्यात्मिक चमक खोता चला गया। कुछ लोगों का मानना है कि धर्मपाद की आत्महत्या के कारण मंदिर में निर्माण के बाद भी पूजा नहीं हो सकी, तो कुछ लोगों का मानना है कि तब पूजा होती थी और इसी क्रम में शताब्दियां बीतती चली गईं। 16वीं शताब्दी के साथ कोणार्क मंदिर के इतिहास ने एक ऐसी करवट ली कि मंदिर का अस्तित्व ही लगभग नष्ट हो गया। अफगान के सुलेमान कर्रानी ने कलिंग पर आक्रमण किया तो राजा मुकुंददेव के पुत्र और सेनापति राजीव लोचन रॉय ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। तब सुलेमान कर्रानी ने एक लड़की को राजीव लोचन के पास भेजा। राजीव लोचन ने उससे विवाह कर लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। जब दोबारा वो अपने पिता के पास गए और वापस हिंदू धर्म में परिवर्तित होना चाहा, तो पिता ने अस्वीकार कर दिया और राजीव लोचन राय महमूद फार्मूली हो गए। राजीव लोचन ने इसके बाद मंदिरों पर आक्रमण शुरू किए, जिसमें सबसे भीषण हमला कोणार्क के सूर्य मंदिर पर किया। कहा जाता है कि फार्मूली ने मंदिर के अंदर स्थित सूर्यदेव की प्रतिमा को तोड़ दिया और शिखर को भी ध्वस्त कर दिया, जिससे मंदिर की संरचना कमजोर हो गई।
9: इसको मुसलमान आदमी आकर गिरा दिया, फिर नांगुला नरसिंह देव आकर वो सामना मंदिर जो है कोणार्क मंदिर इसको बनाए थे।
3: महमूद फार्मूली को काला पहाड़ कहा जाता था। उसके उजाड़ने के बाद मंदिर का वैभव धीरे धीरे नष्ट होता चला गया, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मंदिर की संरचना के ढहने के पीछे इसके शिखर पर लगी टनों वजनी चुंबक थी। दावा किया जाता है कि मंदिर के शिखर पर लगे चुंबक के कारण ये गुजरने वाले जहाजों के कंपास को बाधित करता था, इससे नेविगेशन संबंधी समस्याएं पैदा होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ही पुर्तगाल के जो नाविक थे उन्होंने चुंबक शिला को हटा दिया और इसके कारण मंदिर की मुख्य संरचना ढह गई, ऐसी मान्यता है। माना जाता है कि मंदिर का शिखर एक विशालकाय और कई टन वजनी चुंबक की मदद से स्थापित किया गया था, जिसके कारण समुद्र से निकलने वाले जहाजों के दिशा सूचक यंत्र भ्रमित हो जाते थे और वो भटक कर चट्टानों से टकरा कर डूब जाते थे।
10: वो ट्रेड करने के लिए आ रहे थे, लेकिन उनका कंपास ना अचानक से ना अब्रप्टली जो होता है ना मूव करने लगा, जिससे उनको लगा इधर कुछ गलत है, इधर काला जादू होता है। वो लोग राजा के पास गए, उन्होंने ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाली चीज थी उसको हटा दिया।
3: हालांकि इस मान्यता का कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन 16वीं शताब्दी के एक नाविक की डायरी में कोणार्क सूर्य मंदिर का उल्लेख अदृश्य शक्तियों द्वारा थामे हुए एक काले पत्थर के रूप में वर्णन किया गया है। 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर सत्येंद्र पात्रा ने भी कोणार्क मंदिर में चुंबक के दावों को लेकर खोज की थी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के कुछ हिस्सों में चुंबकीय अयस्क के निशान मौजूद हैं। दीवारों और ढांचे के अंदर खाली स्थान भी पाए गए जहां कभी चुंबकीय पत्थर लगाए गए होंगे।
11: उस मंदिर में और एक शैली थी, वहां हमारे पास लंबे लंबे अभी भी पड़े हैं आयरन ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जो जैसे जो आयरन पिलर कुतुब मीनार में है जो आज तक जंग नहीं खाया, तो ये जो पिलर भी चार पड़े हैं लंबे लंबे जो आयरन ब्लॉक्स हैं अभी भी पड़े हैं वहाँ पर, चार छः हैं, कुछ इसमें मंदिर के निर्माण में भी यूज किया गया था वहाँ पर, वहीं पर कास्टिंग करके, वो आज तक जंग नहीं खाए हैं, ठीक है।
3: डॉक्टर पात्रा की ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गर्भगृह के निकट खोजे गए कुछ गुप्त कक्षों से ऐसे संकेत मिले हैं कि वहां किसी अत्यंत उन्नत तंत्र को स्थापित किया गया हो सकता था। इन खोजों ने इस संभावना पर आगे की रिसर्च का रास्ता खोला है कि हवा में तैरती हुई प्रतिमा वास्तव में प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण थी, या फिर समय के साथ लोक कथाओं और जन विश्वासों ने उसे एक रहस्यमयी मिथक का रूप दे दिया।
7: जब भी अंग्रेजों को लूटने के लिए उड़ीसा आए, उनका पानी जहाज का कंपास भी सही तरह से काम नहीं किया, उन लोगों ने सोच में पड़ गई। जिस चुंबक को नष्ट करने के लिए डायनामाइट और बमिंग करके नष्ट कर दिया, नष्ट करने के बाद ये मंदिर नष्ट हो गया।
3: कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविकों को जब बार बार मंदिर के मैग्नेट के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ा तो उन्होंने उसे खींच कर हटा दिया, जिससे शिखर के साथ मंदिर की इमारत भी कमजोर हो गई। इस मंदिर का निर्माण जिस शैली में किया गया वो पूरी दुनिया में अद्भुत है। सूर्य देव को समर्पित मंदिर देखने पर यह लगता है जिसे 7 घोड़े सूरज के रथ को खींच रहे हों, और इसमें इस तरीके के जो 24 पहिए लगे हैं, जिस तरह समय की गणना ये बताते हैं, वो सैकड़ों वर्षों बाद भी अविश्वसनीय लगता है। सदियों के थपेड़े सहने के बाद कोणार्क मंदिर आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और उन्नत कारीगरी का प्रतीक बनकर खड़ा है। इसकी संरचना आज भी कई रहस्यों की परतें खोलती है जिनको लेकर देश दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च करते रहते हैं। मंदिर में भगवान सूर्य देव के 7 घोड़ों के रथ में 24 पहिए लगे हैं। इन पहियों में 8-8 मोटी अरी हैं और 8 पतली तीलियां भी हैं। इन अरियों के बीच गोल गोल 8-8 आकृतियां भी हैं।
8: ईस्ट होता ही है, ईस्ट से तो सूरज होगा निकलेंगे, सूरज का लाइट एक्सेल के ऊपर गिरेंगे। ये चक्कर का तो 9 फुट 10 इंच, ये चक्कर में 8 स्पोक है, 8 तिल को 24, हमारा रात दिन होता 24 घंटा, दिन 12 घंटा, रात 12 घंटा। सूरज पूरब से निकलेंगे पश्चिम को चलेंगे, आपका लाइट पश्चिम से पूरब को चलेंगे, एक्सिल का लाइट गिनने से आप दंडा डालेंगे, दंडा का लाइट वो साइड आधा बड़ा स्पोक में गिनने से मॉर्निंग 6, मिडिल में जो छोटा स्पोक 1.5 घंटा 7.5, इसके बाद 9, 10.5, 12, 3.5, 4.5, शाम का 6, 12 घंटा हो गया। बड़ा से बड़ा होता 3 घंटा, 8 स्पोक 24 घंटा, बीच में से 1.5 घंटा डिवाइड, बड़ा स्पोक से बड़ा स्पोक साइड में 60 डॉट, ईच बॉल 3 मिनट। आप बीच में ऐसे हाथ डालने से आपका लाइट इसी बॉल के ऊपर गिरेंगे, वो बॉल को काउंटिंग करने से कुछ टाइम मिलेंगे, ये होता संडे उसी समय का 8 स्पोक 24 घंटा।
3: 7 घोड़े 7 दिनों का प्रतीक है और 24 पहिए दिन और रात के 12 घंटे दर्शाते हैं। जो 8 मोटी अरियां हैं वो दिन और रात के 8 प्रहर का प्रतीक है, जो हर 3 घंटे के हिसाब से 24 घंटों के समय का वर्णन करते हैं। इसी तरह पतली तीलियां हर 1.5 घंटे के समय का प्रतीक है, जो एक एक अरी के अंदर 2 भागों में बटी है। माना जाता है कि सूर्य की परछाई के हिसाब से ये चक्र समय का सही समय बताता है।
12: जैसे कि बोलते हैं कि फर्स्ट सनराइज जो होता है, फर्स्ट सूर्य का किरण यहाँ पे आता
13: है। सूर्य भगवान का रथ चक्र इधर 14 चक्र में है ना, घड़ी का जैसा बोला ना, 1 मिनट का भी है और सेकंड का भी है और 1 घंटा का भी दिखा सकता है, उधर देख सकता हम लोग
12: जो चक्र है वहाँ, इसके वजह से ये फेमस है।
3: 8 मोटी अरियों के बीच जो 8 गोल छोटे चक्र हैं, उनमें जो आकृतियां हैं वो किसी भी व्यक्ति की किस समय क्या दिनचर्या होनी चाहिए उसका वर्णन करती है।
2: ये उस समय समय देखने के लिए मतलब कि सन का जो जितने सेट पड़ते हैं उसमें, और स्थापित कला के हिसाब से भी देखा जाए तो ये काफ़ी, ये शायद ये यहाँ की शैली है, गंधार शैली शायद इसमें आती है, ये जो ये कोणार्क है, और यूनेस्को में तो इसे मिला ही चुका है वर्ल्ड का।
14: ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के वास्तुकारों ने सूर्य घड़ी बनाने के लिए खगोल विज्ञान के अपने ज्ञान का उपयोग किया था और इसका डिजाइन जटिल गणितीय गणनाओं पर आधारित रखा था, जिसमें पृथ्वी के घूमने, सूर्य, चंद्रमा और सितारों की चाल को ध्यान में रखा गया है। यह पूरे दिन और पूरे वर्ष सूर्य की चाल के अनुसार है।
11: 100% एक्यूरेसी है। सर्टेनली उन लोग के पास नॉलेज था अलाइंट की, सूरज की पहली किरणें कहाँ पड़ेंगी और जब सूर्य उदय होगा, यू नो, उस टाइम ये क्या होगा। यस, ये आप कह सकते हैं कि बहुत उनके पास एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज काफ़ी हाईटेंड की थी। और अचंभे की बात यह है कि बिना उस टाइम टेलीस्कोप नहीं था, उस टाइम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं था, उस टाइम उनके पास कोई ऐसा नहीं था, पर वो अपने ही तरीके से उसको बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल करके।
14: कहा जाता है कि रथ की पहियों की सूर्य घड़ी का उपयोग विभिन्न धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों के लिए सटीक समय की गणना करने के लिए किया जाता था। यानी भारत का ज्ञान विज्ञान सदियों पहले कितना विकसित था, इसकी घोषणा भी कोणार्क मंदिर करता है। 1903 में मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। आगे चलकर इस मंदिर को खोला गया, लेकिन आज भी पर्यटक के तौर पर लोग वहां ज्यादा जाते हैं और एक धार्मिक स्थल के तौर पर कम। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मंदिर का पूरा सच सामने आएगा और इसके लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कोणार्क मंदिर का जब निर्माण हुआ तब उसके तीन मुख्य भाग थे, नाट्य मंडप, सभा मंडप जिसे जगमोहन कहा जाता था, और गर्भगृह। नाट्य मंडप के अवशेष बचे हैं। गर्भगृह कुछ दीवारों के अलावा गिर चुका है। जो दूर से अब भी दिखाई देता है वो है जगमोहन यानी सभा मंडप।
11: कोणार्क मंदिर जो आज आप देख रहे हैं ये सिर्फ 25% है, ठीक है, 75% वो टूट चुका है। जो मेन उसकी जो रेखा थी, जो मेन मंदिर था, वो गिर गया। वो तो बहुत मालूम नहीं उसका एग्जैक्ट हिस्ट्री है ना, वो गिर गया। और जो नाट्य मंडप था सामने, उसकी छत नहीं है, तो बस एक ही जो जगमोहन है बस वही है।
1: देख करके फील हुआ कि अब थोड़ा ये डैमेज होना शुरू हो गया है। पहले जब हम लोग आए थे 10-12 साल पहले तो बहुत अच्छा कंडीशन में था, बट इसका एज भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत सारा सपोर्ट वो लोग डाले हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर भी वो तो बहुत हेवी है स्ट्रक्चर।
14: कहा जाता है कि 1903 में ब्रिटिश हुकूमत ने मंदिर के शेष ढांचे को बचाने के लिए रेत और बालू से भरकर बंद कर दिया था, जिसके कारण गर्भगृह की दीवारों में लोहे, चुंबक के प्रयोग और हवा में तैरती सूर्य देव की मूर्ति से जुड़े रहस्य ही रह गए। एएसआई ने अब धीरे धीरे मंदिर के अंदर से 123 साल से जमा रेत को निकालना शुरू कर दिया है। दीवारों और ढांचे को नुकसान न पहुंचे इसके लिए बेहद सावधानी बरती जा रही है।
11: ओवर द इयर्स इतने सालों में वो जो इन्होंने छत तक बालू की भर्ती की थी वो कॉम्पैक्ट होकर नीचे हो गई है। बालू भी दिखते हैं, पत्थर बनता है। आज 25 साल हो गए हैं इन्होंने उसको एग्जामिन किया है। जो छत को बालू सपोर्ट कर रही थी वो अब तकरीबन 7 से 8 मीटर नीचे है, यानी वो किसी को सपोर्ट नहीं कर रही है। रादर एक्सपर्ट ने कहा है कि वो जो इतनी सारी वहाँ पर बाली भर्ती है वो साइड की दीवारों पर प्रेशर कर रही है। अब उन्होंने 1.5 साल पहले डिसीशन लिया है, अब बालू बाहर करने की उन्होंने प्रक्रिया आरम्भ की है और उसमें से जो अंदर भर्ती थी सारी सैंड उसको निकाल के उसके अंदर सपोर्ट देंगे।
14: इस प्रक्रिया में लेजर स्कैनिंग और रोबोटिक कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेजर तकनीक से गर्भगृह के अंदर के हर पत्थर को स्कैन किया जा रहा है, यानी जो सदियों से नहीं देखा जा सका वो अब देखा जा रहा है। कोणार्क मंदिर सिर्फ भारत की समृद्ध विरासत ही नहीं बल्कि एक विश्व धरोहर है, जिसकी घोषणा यूनेस्को ने भी की हुई है। कोणार्क मंदिर मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और जैसे जैसे इसका डिजिटल डेटा बाहर आता जाएगा सदियों से खड़े हर सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। कोणार्क मंदिर अभी आध्यात्मिक महत्व को बताता एक पर्यटन स्थल है, लेकिन विश्वास जताया जा रहा है कि गर्भगृह की ओर जाने से रोकने वाली पट्टी एक दिन हटेगी और लोग उसके आगे जाकर फिर से वैभवशाली सूर्य मंदिर को देख सकेंगे और तब शायद सदियों बाद फिर से पूजा का क्रम भी शुरू हो सके। हजारों साल की आस्था, सैकड़ों साल का इतिहास और एक सदी से अधिक समय बीत चुका, लेकिन मंदिर का सच आज भी पूर्ण रूप में किसी को नहीं पता। पर कहते हैं ना, सच को सात तालों के पीछे भी छुपा कर रख दो तब भी वो सामने आ ही जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी उस घड़ी की प्रतीक्षा है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। पंकज शर्मा, अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: और अब बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों नए दृष्टिकोण के बारे में होती हैं जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने आगे इस पोस्ट में लिखा कि पार्टी के साथियों और नए संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत रही। साथ ही साथ पीएम मोदी ने कुछ तस्वीरें भी इसमें शेयर की हैं जिसमें पीएम मोदी और नए पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं और पीएम मोदी ने इसमें यही लिखा कि इस बैठक का बिल्कुल मकसद वही था, नए आइडियाज नए विचार और नए पर्सपेक्टिव को समझना नए दृष्टिकोण को समझना जो पार्टी को मजबूत करे और लोगों के साथ और ज्यादा मजबूती के साथ पार्टी को जोड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अब ये मुलाकात हुई है। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। किसानों को उर्वरकों की निरंतरता और आसान आपूर्ति और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो खरीफ और रबी सीजन की तैयारियों की समीक्षा की गई है और इस बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। किसानों के जो है निरंतर और आसान आपूर्ति लगातार बनी हुई है और यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। तो ये उन्होंने मुलाकात की है और आगामी रबी और खरीफ के सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की। अधिकारियों के साथ वो बैठे और उर्वरक विभाग के सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल रहे। बात अब यूपी की करते हैं जहां पर एक और अखिलेश यादव हैं जो 54 वाला बयान देते हैं और उसके बाद से सियासत गर्मा गई है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले जो पुराने दल हैं वो अखिलेश यादव पर भड़के हुए हैं।
1: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में 54 पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
2: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं।
3: उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
0: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, वे उचित होगा।
4: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे।
0: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है तो अखिलेश यादव बीजेपी को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
4: तो 4 गुना कितनी हो गई, 30 के 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दे पे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
0: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। अब बात करते हैं चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेश से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं? सरकार इससे इनकार तो कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
5: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
4: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
6: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
5: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथेनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तो
4: चार्ज हुआ यार,
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए, सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी। वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
3: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
4: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: बिजली का बिल पेड तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
6: कैसे?
5: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
6: इतना माही वे।
7: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: very warm welcome to all of you. Being a Miss Gen Z on such a big cause. एक बार तालियों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. For coming here and choosing to be part of this. तो नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप. दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ एक समस्या भर नहीं है, एक सवाल भी है. देखिए, ये आखिर ये शो हम क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा प्रदूषण की बात की है, लेकिन प्रदूषण का हल कौन बताएगा? क्या हम उस हल का उस हिस्सा बन सकते हैं? सवाल ये है कि क्यों भारत की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन गई है? साल दर साल दिल्ली के वायु प्रदूषण का मसला टेलीविजन पर, अखबारों में, सुर्खियों में, विज्ञापनों में, हर जगह होता है. या तो पॉलिटिकल पार्टी अपना विज्ञापन देती है कि हमने ये बदल दिया, हमने वो बदल दिया, लेकिन हम सब मिलकर क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से हम, आपकी पीढ़ी और आपके बाद आने वाली पीढ़ी भी खुश होकर रह सके, खुली हवा में सांस ले सके. तो यही हमारी कोशिश है और इसी में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कैसे प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई को हम अधूरा छोड़ देंगे अगर हम सब इसका हिस्सा नहीं बनते हैं. आखिर इस पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है?
1: हम हर बार इसके बारे में बात करते हैं जैसे कोई नंबर है, कोई टिक मार्क है, कोई वेदर का ऐप है जो ये आ गया है, बट इसका टेंजिबल इम्पैक्ट कितना है?

0: हमारी लाइफ पर. क्या आपको पता है कि हमारी और आपकी लाइफ में से 8 साल कट गए हैं? सिर्फ हमने सिर्फ ये करा दिल्ली में और आपकी और मेरी जिंदगी के 8 साल कट गए. दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट द इश्यू ऑफ पोल्यूशन रियली इज. 8 years are gone just from breathing. It's the highest such loss recorded in any major city on the planet. सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सिर्फ एशिया की बात नहीं है, पूरे विश्व में इतना ज्यादा पोल्यूशन किसी और देश में नहीं है, किसी और सिटी में नहीं है. और हमने साल दर साल हम हर बार स्टोरीज करते हैं, हर बार हमारी रील्स वायरल होती हैं और जेन जी कहता है हाँ इस पर हमें काम करना चाहिए, पर हम हर बार आपस में भी न्यूज रूम में भी यही बातचीत कर रहे होते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है. हर साल वही इशू, हर साल वही मुद्दा, हर साल वही सवाल पॉलिटिशियन से, आखिर इसका सोल्यूशन क्या है. Which is why we are here in front of you today. Which is why today, Aaj Tak in India today, together, we've sort of gotten our forces together to bring this one issue to you. आखिरकार ये भी याद रखिए आप लोग, हाँ ताली बजा सकते हैं. Pollution एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ Gen Z को matter नहीं करता है, जो सिर्फ मुझे मैटर नहीं करता है, जो सिर्फ आप अमीर हैं या गरीब हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं फर्क नहीं पड़ता, आपका डॉक्टर कितना अच्छा है वो भी उससे भी फर्क नहीं पड़ता है. पोल्यूशन आपकी जिंदगी को बुरी तरह से बिगाड़ रहा है और इसमें अब कोई दो राय नहीं है.
1: एक वक्त था जब हम बच्चों को पढ़ाते थे कि भाई 6 ऋतुएं होती हैं, हाँ. लेकिन अब उसमें जुड़ गया है दिल्ली में पोल्यूशन ऋतु. तो तैयारी कर लीजिए, पहले से मास्क वास्क का इंतजाम करिए, घर में छिपके रहिए, हमेशा एयर प्योरीफायर चला कर रखिए. हमारी जिंदगी बदल गई है सिर्फ इस हवा की वजह से, तो इसको बदलने का वक्त आया कि हम क्या इस हवा को बदल सकते हैं.
0: सो हियर इज व्हाट वी आर डूइंग डिफरेंटली फॉर द नेक्स्ट 6 weeks. दिस इज नॉट अ स्टूडियो कॉन्वर्सेशन, दिस इज नॉट समथिंग दैट्स अंजना एंड आई विल डू हियर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज अ वर्किंग प्रोसेस. सॉल्यूशंस विल गेट पिच्ड फ्रॉम यू, दे विल गेट टेस्टेड इन द फील्ड बाय द गवर्नमेंट. The jury will inspect if your idea actually works. And then finally, on the 2nd of October, 6 weeks from now, the Delhi Chief Minister will stand here in front of you to say, you know what, let's get this idea going. So, आपको करना क्या है? आपको बनाना है एक वीडियो, जो आप सबको मुझे पता है काफी अच्छे से आता है. आपको एक वीडियो बनाना है, आपको उस वीडियो में बताना है कि आपका सोल्यूशन क्या है. अगर आपका सोल्यूशन वर्क करता है तो हमारी जूरी उसे एक्सेप्ट करेगी, उसे टेस्ट करेगी और उसके बाद एक काफी अच्छा प्राइज मनी भी है. बता दें इनको अंजना.
1: हाँ बता दीजिए क्योंकि अच्छे अच्छों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे. इट्स अ ह्यूज अमाउंट.
0: द प्राइज मनी फॉर नॉट जस्ट वन आइडिया और टू आइडियाज बट ऑल आइडियाज दैट गेट एक्सेप्टेड बाय द जूरी विल विन 50 लाख रुपीस.
1: हमने सोचा कि जब परेशानी इतनी बड़ी है तो उसमें आपको इंसेंटिव भी थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए ताकि पूरी ताकत झोंके और ये इंश्योर करें कि हम कुछ ना कुछ 2-3 तो अच्छे सॉल्यूशंस निकालें जिससे लॉन्ग टर्म में हमें फायदा हो. हम सिर्फ उसकी शिकायत ना करें बल्कि कोई सॉल्यूशन भी पहुंचे. दिल्ली आपकी, सॉल्यूशन आपका. आपको बस ये QR कोड जो हम अंत में आज लॉन्च करेंगे, मुख्यमंत्री दिल्ली की आने वाली हैं हमारे साथ यहां पर स्टेज में, वो QR कोड लॉन्च करेंगे जिसको स्कैन करके आप अपना सॉल्यूशन, अपना पिच भेज सकते हैं.
0: सो आर यू ऑल एक्साइटेड? यू हैव गॉट अ सॉल्यूशन.
1: But you have time. Warriors.
0: You've got some time. But let me tell you how exactly this is going to work. Like I explained in the beginning as well, there is already an innovation challenge that is underway. Delhi Sarkar already ye float kar chuki hai. इन्होंने दिल्ली से काफी सारे लोगों के सॉल्यूशंस मंगवाए. कुछ 200 से लगभग या 300 के लगभग सॉल्यूशंस उनके पास आए. उसमें से फिल्टर होके 22 ऑलरेडी आइडियाज फील्ड में प्लेस हो चुके हैं, मतलब टेस्टिंग फेज में पहुंच चुके हैं. तो आप सोच रहे होंगे आपका आइडिया कहां गया. आपका आइडिया है एक वाइल्ड कार्ड एंट्री. द सॉल्यूशन यू सेंड, इफ दैट टिक्स, यू गेट टू क्रूज स्ट्रेट इनटू दैट 22 लिस्ट ऑफ आइडियाज एंड दैट विल बी टेकन टू द ग्रैंड जूरी एंड देन दे डिसाइड हु विंस और हु डज नॉट. ऑलराइट, तो कैसे अप्लाई करना है, कहां पर जाकर अपना वीडियो भेजना है, वी वॉक यू थ्रू एवरी बिट ऑफ दैट एज द शो प्रोग्रेसेस. बट नाउ ऑन द प्रोग्राम लेट मी इनवाइट द मैन हुज ओन गवर्नमेंट्स रिपोर्ट कार्ड ऑन द इशू हैज बीन रिटन इन हेडलाइंस एंड हु हैज चोजन टू स्टैंड हियर एंड आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर मजिंदर सिंह सिरसा.
2: हेलो जी.
1: नमस्कार.
0: हेलो जी.
1: नमस्कार.
2: हमें बताते हैं, हम भी इस तरह के पहन रंग के पहन लेते हैं.
1: हमने सोचा कि आपको ऑड बना के रखना है.
2: धन्यवाद जी.
1: तो सिरसा साहब, सवालों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये हमने ये सोचा कि हमेशा पोल्यूशन को लेकर हम सबके अंदर एक निराशा है, हम चाहते हैं सोल्यूशन निकले. तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों ने 2-3 ऐसे कदम, क्योंकि अब आप लोग खुद ही आ रहे हैं इंटरव्यू देने, तो कुछ तो ऐसा किया होगा जिस पर आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्या किया है?
2: देखिए, पहले तो आपको ये सबको जानकारी है कि पोल्यूशन के 3 बड़े कारण हैं, व्हीकलर पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन जो डस्ट पोल्यूशन है, और तीसरा जो हमारे इतने लैंडफिल्स लैंड साइट्स थे जिनके ऊपर इतने कूड़े के ढेरों के टनों टन कूड़ा पड़ा था और आप रोज देखते थे वो पोल्यूशन. तो दिल्ली का चैलेंज है, दिल्ली के अंदर लाखों लोग रोज आते हैं और लाखों लाखों लोग यहाँ से रोज जाते हैं. दिल्ली दुनिया का अकेला ऐसा शहर है, मैं कुछ आपको जानकारी देने से पहले बताना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी, दुनिया का दिल्ली अकेला ऐसा शहर है, पूरी दुनिया का, दुनिया की अकेली ऐसी राजधानी है जिसके साथ कितने मेट्रो सिटीज के साथ और सिटीज साथ जुड़ती जाती हैं जिनका कॉमन एयर शेड है, सबको कॉमन रहने वाला है. अकेला ऐसा शहर है जो 55 किलोमीटर के इस शहर के अंदर 3.5 करोड़ लोग रहते हैं. ये दुनिया का अकेला ऐसा शहर है जहां जितना पूरे यूरोप के अंदर कूड़ा इकट्ठा होता है लगभग उतना कूड़ा रोज दिल्ली यहां से हटाता है. 14 से 15 हजार मैट्रिक टन कूड़ा केवल पूरे दिन के अंदर दिल्ली का लोकल म्यूनिसिपल वेस्ट है, और इसके अलावा जो लेगेसी वेस्ट है जो हमसे पिछले हमें देके गए हैं, कूड़े के पहाड़ बनाकर देके गए हैं, वो 35,000 मैट्रिक टन कूड़ा रोज हम हटाते हैं. 50,000 मैट्रिक टन कूड़ा अंजना जी, ये इसके बराबर है कि पूरे यूरोप का कूड़ा दिल्ली में से निकाला जा रहा हो, इसके बराबर आप कल्पना करके देखिए. फिर भी आपको कूड़े का कोई ट्रक नहीं दिखाई देता. ये मैनेजमेंट हमने आके पिछले 1.5 साल में खड़ी की है. सबसे बड़ा कारण यही है, हम जानते हैं 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ में से, मैं आपको बताना चाहता हूं, 202 एकड़ कूड़े के पहाड़ में से हम 70 एकड़ से ज्यादा जमीन रिक्लेम कर चुके हैं, 70 एकड़ का कूड़ा खत्म कर चुके हैं.
0: इम्पोर्टेंट है कि चैलेंज बहुत बड़ा है दिल्ली के लिए, इस बात में कोई दो राय नहीं, चैलेंज है, लेकिन हम आज सोल्यूशन की बात कर रहे हैं,
2: बहुत बड़ा.
0: और इस सोल्यूशन में आपको क्या लगता है कि किस तरह का पार्टिसिपेशन आप चाह रहे हैं लोगों से? हम ये कैंपेन जो कर रहे हैं इसमें हम जो लोगों से बोल रहे हैं कि वो आके अपनी एंट्रीज भेजें, आप सबसे पहले उनको क्या बताना चाहेंगे, कौन सी एक चीज है जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है?
2: तो देखिए, सबसे बड़ा काम जो और सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत वो है इनोवेशन के ऊपर आज, क्योंकि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि जो 3.5 करोड़ लोग हैं ये कम होंगे, ये बढ़ेंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि सड़कों के ऊपर से ट्रैफिक कम होगी और बढ़ेगी. ऐसा नहीं हो सकता कि कूड़ा म्यूनिसिपल वेस्ट हमारा कम होगा नहीं, और बढ़ने वाला है. तो फिर हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी साथ में निकाल कर लाने होंगे कि जब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कुछ भी कर रहे हों तब भी साइंस और इनोवेशन हमारी हेल्प कर रही हो उसको डायरेक्टली उसको नीचे लाने के लिए. ये ड्रास्टिक स्टेप्स जो हैं वो इनोवेशन से आ सकते हैं. जो रोजाना के काम है वो हम कर रहे हैं, लेकिन आप सुनिए, एवरेज एनुअल PM2.5 में -7.7% हो गया, -7% उसमें कमी आई है एनुअल साल का. उसी तरह एनुअल PM10 में 7.1% की कमी आई है. ये डेटा तो आपके पास रोज अभी निकाल के अभी निकल आएगा एक सेकंड में. एनुअल एवरेज AQA, अगर हम एवरेज AQA की बात करें पूरे साल का, तो उसमें 3.871 का कमी आई है. 3.87, ये पॉइंट से कम होने वाला, 1-1%, 2-2%, 3-3%, ऐसे ही कम होगा.
1: आज क्या बता रहा है आपका? गुड बता रहा है, बैड बता रहा है, क्या बता रहा है? जरा मैं भी अपना फोन में जरा देखा जाए.
2: हाँ नहीं, कोई बात नहीं,
1: मेरा मोबाइल आपका मोबाइल अलग
2: नहीं, मोबाइल नहीं है. देखिए ऐसा होता है, पहले आप समझ लीजिए, AQI है ना, ये खाली रॉ नहीं आता कभी भी, ये देखिए रोज का आता है. अभी का एग्जैक्ट कितना है? 108.
1: हाँ.
2: ये कितने बजे का आ रहा है? 4:06 पे. तो ऐसा
1: ये
2: होता
1: है, है. ये भी पुअर है.
0: WHO का तो 50 होना चाहिए.
1: ये भी पुअर है.
0: ये 50 होना चाहिए, और ये थिक ऑफ मॉनसून है, इस समय तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए समय। हाँ।
2: तो
0: बट मैं आपसे यही कहना चाह रही थी,
2: मेरे पास रोज का आता है, मैंने ये नहीं कहा कि रोज अच्छा आता है,
1: मैंने बस क्रॉस चेक किया कि आपका हमारा सेम बता रहा है नहीं बता रहा।
2: साफ हवा भी कैसे आएगी? अब मैं अंजना जी ये भी लाइन आपको जरूर बताना चाहता हूँ। तो बेटा आजकल आपके पास एआई का जमाना, बिना एआई के भी गूगल में सबको अवेलेबल था, तो अभी तक साफ शहर कौन से हो पाए हैं? इंग्लैंड क्या लंदन शहर अपनी हवा को साफ कर पाया है? चीन का बीजिंग अपने आप को साफ कर पाया है? आप पहले एक बार जाकर स्टडी करिएगा कि उनको कितने साल लगे। बीजिंग को 9 साल लगे हवा को साफ करने में, 9 साल। लंदन को 15 साल लगे अपनी हवा को साफ करने का, लेकिन हमें ना 9 लगेंगे ना 15 लगेंगे। मैं
0: आपको कितने लगेंगे आप एक बता दीजिए, इसी पर रील बनेगी,
2: बने
0: इसी पर रील बनेगी, बात
2: बिल्कुल बनाएंगे, हम खुद बनाकर चलाएंगे, हम वो रील को खुद बनाकर चलाएंगे।
1: तो टाइमलाइन
2: अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए पॉल्यूशन कैसे कम होगा, परसेंटेज वाइज 5%, 7%, 10% ऐसे होगा। शाम को हवा साफ हो जाएगी ऐसा असंभव है।
0: लेट्स टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस नाउ, लेट्स गो देयर प्लीज।
3: गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज वंशिका। सर आई वांटेड टू आस्क, लाइक यू हैव लॉन्च्ड अ कपल ऑफ पॉलिसीज अबाउट ईवी क्लाउड सीडिंग एज वी टॉक्ड हियर टुडे। मेरे को ये पूछना था, जैसे क्लाउड सीडिंग एक अच्छा इनिशिएटिव तो है, बट जैसे हम सबको आई थिंक पता है कि 3 गवर्नमेंट एजेंसीज ने बोला था कि यू नो क्लाउड सीडिंग इज नॉट सूटेबल फॉर दिल्ली उसके एनवायरनमेंट वगैरह के हिसाब से, फिर भी इतना बड़ा बजट एज यू सेड 3 करोड़ रुपए उसको अलॉट किया गया, इतना बड़ा बजट। सो डू यू थिंक इट वॉज द राइट मूव एंड क्या मेजर्स हो रहे हैं?
2: तो देखिए ऐसा है, जैसे आपने कहा ये खाली दिल्ली के अंदर क्लाउड सीडिंग हो इसके लिए बजट नहीं है। हमने पैसा एक IIT कानपुर को दिया है, वो हमारे इस पैसे से स्टडी कर रहे हैं। वो जरूरी नहीं है कि दिल्ली में एक दिन बरसात करानी पड़ सकती है और कभी भी ना करानी पड़े, लेकिन सोल्यूशन तो देश के पास होना ही चाहिए ना हर प्रॉब्लम का। तो वो दिल्ली सरकार का पैसा देश के एसेट्स में काम आए, तो दिल्ली की सरकार ने IIT, वो भी हमारी इंस्टीट्यूशन है, तो वो जितनी रिसर्च करेंगी, चाहे पैसा आपसे आए या किसी भी सरकार से जाकर रिसर्च करेंगी, तो ये कहना गलत होगा कि पैसा कहीं उसका मिसयूज हो गया या उसको कहीं और यूज हो सकता है।
1: ठीक है, 2-3 सवाल और इधर से लेते हैं।
3: क्या हम इंडस्ट्रीज को उतना लायबल ठहरा रहे हैं जैसे उन्हें जितना उन्हें ठहराना चाहिए? क्योंकि बीट नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्या हम उनको लायबल ठहरा रहे हैं? क्या हम स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं?
2: तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है अंजना जी, आपके ध्यान में भी ला दूं, दिल्ली में जो इंडस्ट्री चल रही थी अनऑथराइज्ड एरियाज में, ऐसी 12,000 इंडस्ट्रीज थी जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, हमारे डिपार्टमेंट भी नहीं पूछ रहे थे। क्यों नहीं पूछ रहे थे? वो कहते थे कि सर ये नॉन कन्फर्मिंग एरिया में है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है इसको बंद कर दो, तो सिंपली बंद करो, हम इसको चेक नहीं करेंगे पोल्यूशन है या नहीं है। तो हमने आकर एक कानून बनाकर उनको फोर्स किया, 12,000 इंडस्ट्री ऐसी, 12,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ऐसा हमने इंस्पेक्शन की, जिनमें से 8,000 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनका पोल्यूशन मापदंड ठीक किया जा सकता, उन्होंने ठीक किया। जिनमें से 1626 ऐसी हैं जिनका ठीक ही नहीं हो सकता था, उनको सील किया। और 560 या कुछ ऐसी थी जिनमें पानी भी साथ में गंदा था हवा के साथ साथ, वो 550 को भी सील किया।
1: किस इलाके में थी
2: ये? सारी आउटर दिल्ली में, जहां पे नॉन कन्फर्मिंग एरिया की इंडस्ट्रीज थी। और इसलिए बेटा हमने अब तक तकरीबन 2200 के आसपास ऐसी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करके सील किया है, बंद किया है, और 12,000 इंडस्ट्री को हमने आइडेंटिफाई किया है और 8,000 के पोल्यूशन मापदंड को ठीक कराने का काम किया। ये एक मैराथन जॉब था जो हमने पिछले 1.25 साल में पूरा किया।
3: हम पोल्यूशन का सोल्यूशन दिल्ली के सेंटर से ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आपने बोला कि NCR एक कनेक्टेड एयर शेड है, और हम अगर रोटी भी हम खाते हैं तो उसके सेंटर से नहीं लेते, हम कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो हम NCR पे काम क्यों नहीं कर रहे, हम दिल्ली की पेरिफेरी पे काम क्यों नहीं कर रहे, हम सिंक्रोनाइज्ड पॉलिसीज क्यों नहीं ला रहे हैं, और अगर ला रहे हैं तो उनका ग्राउंड लेवल पे इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो पा रहा? सर
2: बेटे ने सबसे अच्छी बात करी है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए, और उन्होंने एग्जाम्पल भी इतना अच्छा दिया। इसके ऊपर लगातार हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, वो लगातार सभी स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करते हैं, मैं उस सभी मीटिंग का हिस्सा होता हूं, और उस मीटिंग्स के अंदर ये पैरामीटर्स सारे फिक्स किए गए, फ्रेमवर्क्स को फिक्स किया गया है, हमारा क्या फ्रेमवर्क रहने वाला है, हर स्टेट्स को क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या क्या टाइमलाइंस हैं, उनको कब तक अपना कूड़ा खत्म करना है, कब तक उनको मैनुअल जो है क्लीनिंग खत्म करनी है, कैसे उन्होंने मैकेनिकल, कब तक कौन सी चीज लेकर आनी है, किस तरह से अपने स्टेट के अंदर वो ईवी को चार्जिंग स्टेशन लेके आएंगे, कैसे ईवी गाड़ियों के लिए। तो ये हमारा फ्रेमवर्क बना, इस पर काम चल रहा है, और इसकी बड़ी मॉनिटरिंग भी होती है, और लगातार निरंतर केंद्र सरकार इसके ऊपर चर्चा करती है और लगातार इस पर बैठकें कराती है। आती है और जब बैठक होती है उसके अंदर हम अपने सारे पीपीटीज लेके जाते हैं कि जो टारगेट्स दिए थे वो मीट हुए कि नहीं हुए। हाँ लेट होते हैं टारगेट, स्टेट्स के भी लेट होते हैं, लेकिन उनकी जानकारी उनसे ली जाती है और उनको आगे से कहा जाता है इस डेट तक पूरा करके दे। तो ये फ्रेमवर्क बना हुआ है, इस पर काम चल रहा है। जैसे आपने कहा टाइम लगेगा, सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन सोल्यूशन की 5-5, 3-3, 2-2, 4-4, 10-10% करके ही हम उसको ठीक कर पाएंगे।
1: अब चलते चलते आखिरी में बता दीजिए कि हमारा मकसद क्या, हम चाहते हैं बच्चे आए, नए नए इनोवेशन के साथ लोग आए, वो जरा बता दीजिए, समझा दीजिए।
0: व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मोस्ट फ्रॉम
2: दिस चैलेंज? पहले तो मैं आज तक का इंडिया टुडे ग्रुप का बहुत धन्यवाद करता हूँ, अंजना जी का भी और सोनल जी का भी, क्योंकि आपने एक हमारे इस इनिशिएटिव के साथ जुड़कर दिल्ली को पोल्यूशन का सोल्यूशन देने की कोशिश की है। जब तक हम इस तरह से हाथ मिलाकर नहीं चलेंगे तब तक इसका समाधान भी नहीं होगा। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि सभी टीवी चैनल्स को, अखबारों को इस तरह से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस हम ला सके। तो पोल्यूशन के सोल्यूशन में अब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री से भी आप एंट्री कर सकते हैं, ये आज के इस प्रोग्राम का कारण है। आप अपना सोल्यूशन लेके आए, अगर वो सोल्यूशन अप्रूव होता है तो अप्रूव हमने नहीं करना, उसके लिए भी IITs, NCLT ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एकजुट होकर, जिनका इन्होंने जजेस जिनको बनाया है वो स्टडी करेंगे, उनमें से अगर कोई कामयाब होता है तो उसको इनाम भी देंगे और उस प्रोडक्ट को हम दिल्ली के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। यह जो बड़ा काम का बेड़ा उठाया है वो आज तक इंडिया टुडे ग्रुप में उठाया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे पोल्यूशन के सोल्यूशन के लिए हमारे नौजवानों तक पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपसे भी जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल के आएगा जिसको दिल्ली में लाकर हम दिल्ली की हवा को और साफ कर पाएंगे। धन्यवाद।
0: ऑल राइट, ऑन दैट नोट, दिल्ली's एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर सिरसा, प्लीज एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। All right, so you heard the minister over there. Promises have been made, but it's now time to put them to test. Let's take this opportunity to introduce to you our esteemed jury. Let me start by bringing in, and please, huge round of applause, Manendra Agarwal, director for IIT Kanpur. He's a brilliant mathematician and also behind true innovation that happened.
1: और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वो चिंता करने के लिए जाने जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सोल्यूशन बताते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि चिंता तो हम सब कर सकते हैं पोल्यूशन पर, लेकिन हमने किया क्या? ऐसा ही कदम उठा रही हैं एक बेहद खास ज्यूरी मेंबर जो आज हमारे साथ जुड़ रही है। कलीपुरी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए वाइस चेयरपर्सन इंडिया टुडे ग्रुप की, जिन्होंने ये सोचा कि हमें सोल्यूशन की तरफ बढ़ना होगा। हम खबरें बताते हैं, हम पोल्यूशन में जो परेशानियां लोगों को हो रही है वो सब बताते हैं, लेकिन सोल्यूशन का हिस्सा बनने को तैयार है या नहीं है?
4: बिल्कुल, ऑलवेज। मैं शुद्ध दिल्ली वाली हूँ तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट दिस इज अ सिटी वी ऑल आर प्राउड ऑफ एंड दैट वी आर हैप्पी टू लिव इन, because it's a beautiful green city with so much history, and the only thing that lets us down I think is the air.
1: Absolutely.
4: Yeah. We can fix that, we're home.
1: Absolutely. Huge round of applause.
0: All right, next let me call upon stage somebody who's truly entrenched in this entire system of bringing you a solution. Let me call upon now Naresh Priyadarshini. He's from the Delhi Pollution Control Committee. Huge round of applause, please. He's seen more pollution ideas die down than that actually works. So I'm very interested to know what is it that will make it tick for him, because he's the one at the end of the day who's advising the government as well. Are you excited about this challenge, sir?
5: Absolutely, absolutely. So first of all, this is a great opportunity, and I think a very positive engagement of a media group for a social cause. Yes, the ideas should be linked to the problem. I think that is very important.
0: All right, and next with us, somebody who understands the pain of pollution more than anybody else. Let me bring up on somebody who sees patients with pollution-related problems every day in her clinic. And not just people like you and me who are trying to fight out, but little voices who cannot really understand the length to which the pollution is spoiling their health. Please call upon Dr. Neela Mohan, President for Indian Academy for Pediatrics. Ma'am, you see kids every day.
6: Yeah, that's true.
0: Parents ko bhi ye bahut advice deti hongi. And ek advice bahut suni jati hai ki Delhi chhod ke chale jao. Pollution se bachna hai to Delhi chhod ke chale jao.
6: Well,
0: is इस पूरे कैंपेन के बाद प्रोबेबली यू विल हैव अ डिफरेंट आंसर आई होप.
6: यस, आई विल से दैट देयर इज समबडी इंडिया टुडे एंड आज तक जब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो शायद सॉल्यूशन मिल जाएगा.
0: ऑल्सो जॉइनिंग अस इन अ लिटिल व्हाइल विल बी कपिल देव एंड ही इज समबडी हु इज नॉट जस्ट अ नोन यू नो स्पोर्ट्समैन समबडी वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ बट समबडी हु एक्चुअली इज द ओनर ऑफ द KDSC सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एज वेल सो डीपली इन्वेस्टेड इन द मैटर ही विल ऑल्सो बी जॉइनिंग अस इन जस्ट अ लिटिल व्हाइल. With that, let's get started.
1: KP, मेरा पहला सवाल आप ही से. My first question: What is the genesis of this whole thing that you thought we should do this? Why?
4: I think that I just got tired of covering the news on an yearly basis. We would always start in September, October, and start talking about pollution. And I think we made a big change to say, look, we're not just going to sit there and cover it, but we're going to start being part of the solution, and that's why we've committed to finding a solution for this pollution problem in Delhi since January, and we've kept the attention and focus there, and I'm so glad that Delhi government has sort of cooperated with the push that we've given them, and they have been working on it since January as well, because pollution, you see it more in September, October, November, but actually it's a problem even in the summer. We've got so used to it, we accept pollution of 300, 400 is completely normal. If you look at the AQI of other beautiful cities in the world, you'll see AQI 3, 2, 0. Like, okay, those are numbers that we have never seen. So our ambition should be that we can hit, you know, at least double digits on a regular basis. That would be quite good. And maybe then single sometime in the future.
1: Abhi itni barish mein toh it's around 108. So like a long way to go.
0: But let me bring in also Manindra Agarwal. Sir, you know, you have seen solutions being put forward in front of you for quite some time. What do you think they should be focusing on? Where do you think innovation lacks in becoming a reality?
7: Of course, the solution should work. It goes without saying. But more than that, or equally importantly, I would say, it needs to be a solution that works at scale and in a cost-effective way. If you miss any of these two, then you cannot implement the solution well. So that is the most important thing to keep in mind. Whatever solution one designs, I have seen so many solutions which look very good on paper, which look very good in lab level. But the moment you take them outside to actually on the ground to deploy, they fail.
0: Right. So, if I can bring in, you know, Nareesh ji as well. Nareesh ji, kitne challenges rahe pichle ek decade mein DPCC ke saamne? Humne saal bhar bahut stories kari, aapko bahut criticize kara, bahut sare sawal puche, bahut tough questions puche. Where do you get stuck? Why is it that the best minds in the country, or perhaps the world, which India is known for, we've not perhaps been able to crack that one thing that impacts all of us?
5: First correction I would like to say is that, yes, the biggest, I think, driving force which I see now, where DPCC and other similar entities within the ecosystem have been now delivering solutions, is the government mindset. You can't imagine the kind of hours or the kind of push. Like, for example, the chairman DPCC or the minister, Mr. Sirsa himself, or the member secretary, they even till it was 9 p.m. or 11 p.m. or whatever, they close things. Like, there is so much of drive to bring the solution to a reality. I think that has been a big change, which I've seen in the last 1 year. Yes, over the years, the kind of use of technology was limited, and you know, the kind of analytics and all those things, everyone was making effort, but somewhere, as Dr. Agarwal also mentioned, the implementability and finding the solution on the ground. We were always, I think initially, the approach was measuring and reporting. Now we are moving to a solution phase. I think that change has happened.
0: Yes.
5: We are measuring, reporting, and that's why the kind of approach or the kind of solutions are now coming are real. They are not cosmetic.
1: मैम, चूंकि आप बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं, यू इंटरेक्ट विद देयर पेरेंट्स,
8: What can you suggest to them? What can you suggest people? Like, everybody is checking the AQI and then they decide whether their children should go out to play or not. Ki bachcha khelne jaye, nahin jaye. Kya karein? As a doctor, aap kya bataein?
6: Right. So, I think I totally agree. Abhi time aa gaya. Agar aap mujhe izazat denge, to ise jan andolan banane ke liye. Jan andolan ka matlab hai ki it's not only the government and the industry, or it has to be everybody. So the doctors are also important, where I have to talk about advocacy. जैसे आप सिर्फ एक number नहीं बताना है, number के बाद क्या करना है, तो मुझे भी parents को क्या करना है बताना है. So we need certain general tips. और जब तक वो parent को ये नहीं समझ आएगा, it's not about me, that parent should become strong enough to go and ask school में, RWA में, community में, they should go around. And जब तक real story होती है ना, तो वो real story makes a big impact. Like we've seen in Punjab, जैसे वो जलाते हैं, तो it is in one of the villages, there was a real story, somebody died, pollution related, burning, and he or she could communicate to the village and the whole village stopped. So the Gurdwara people were involved. So I think such stories will make a difference.
8: And KP, from being a hard task master in our editorial meetings, to getting...
1: Don't tell the jury that, yeah, the jury will run away.
8: And like from years and years, you've been covering this pollution, you've been asking tough questions to all of us, all the people who sit there, to these people who want to innovate now, what would you say? How would you judge them?
4: No, I would say please work very hard, and if you've got some good ideas, please use the QR code and send them to us. Let us restore Delhi's legendary Sardi, you know, where you sat in the dhoop and you peeled santre. You know, that's what we want to take Delhi back to.
0: A huge round of applause again for our esteemed panel and the jury, which will be finally deciding who gets to win that solution for pollution. Thank you so much.
8: Thank you.

Right, so you understood what the campaign is all about. इन्हें जज कौन करेंगे, किस तरह से पूरा प्रोसेस होएगा. लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे द विन इन दिस कैंपेन इज दैट दिस गेट्स अडॉप्शन बाय द गवर्नमेंट. इट गेट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर विच डोंट बिलीव अस, बिलीव द पर्सन हु विल बी कमिंग ऑन स्टेज नेक्स्ट टू ब्रिंग यू दैट प्रॉमिस. विद दैट लेट मी इन्वाइट ऑन स्टेज माई कॉलीग अंजना कश्यप एंड द दिल्ली चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता.

0: पोल्यूशन का सोल्यूशन इस महामुहिम में जिसको आज तक इंडिया टुडे ग्रुप ने उठाया है, अब हमारे साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जुड़ गई हैं और ये जेन जी जो यहाँ पर है वो भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी सोल्यूशन हो। लेकिन एक सवाल पूछने से मुख्यमंत्री जी मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। ये बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम इतनी कॉन्फिडेंट है, खुद ही आ रही है पोल्यूशन पे इंटरव्यू देने दिल्ली में। क्या ऐसा किया है उन्होंने कि कुछ कमाल इस बार होने वाला है, क्या बदलेगा?
1: इंटरव्यू तो मैंने पिछले साल भी दिया था और आपके स्टूडियो में ही दिया था। तब हमारी सरकार 6 महीने पुरानी थी, आज हमारी सरकार 1.5 साल पुरानी है और इस लगभग 1.5 साल के हमारे टेन्योर में हमने उस हर सॉल्यूशन पे काम किया, हर उस समाधान को हमने आगे ले जाया कि जिसके कारण से जो दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान मिले और विशेष रूप से पॉल्यूशन को। तो हमारा काम, हमारी परफॉर्मेंस, हमारा साइंटिफिक रोड मैप जिसे हमने अडॉप्ट किया वो मेरे कॉन्फिडेंस का कारण है और मैं समझती हूँ कि दिल्ली एक सही दिशा में और सही हाथों में चल रही है।
0: रेखा जी देखिए, अब एक एक करके हर बिंदु पर आते हैं। अब व्हीक्युलर पोल्यूशन मतलब 60%, उसमें भी जो बाइक्स हैं, दो पहिया गाड़ियां हैं उनसे भी 40% पोल्यूशन। ईवी पॉलिसी पर आप जोर दे रही हैं कि ईवी पॉलिसी के जरिए, तो इसमें आपका प्लान क्या है? तीन चीजें इसमें जुड़ती हैं। एक तो ऑड इवन पहले होता था, पता चल रहा है कि 50% वर्क फ्रॉम होम आप मैंडेटरी कर देंगी सरकारी और प्राइवेट जगहों पर, तो गाड़ियां कम होंगी। और तीसरा ये ईवी पॉलिसी, ये क्या है और क्या वाकई आप दिल्ली की सड़कों को बिल्कुल पेट्रोल डीजल कार या दोपहिया वाहन मुक्त करना चाहती हैं, तो कब तक?
1: देखिए, आप दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए। ईवी पॉलिसी और दिल्ली को ईवी सिटी बनाना भारत की, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसमें हमने पूरी तरीके से जनता को इन्वॉल्व करके सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में लगातार बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हुए और उसके बाद में हमने पब्लिक डोमेन में भी उस पॉलिसी को रखा, सबके सजेशंस लेते हुए एक इंक्लूसिव पॉलिसी जिसमें कि हमने ना केवल सब्सिडी की बात की है बल्कि हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स दिए हैं, हमने ईवी इंफ्रा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और उसके साथ साथ बैटरीज का रिसाइकिलिंग वहां तक की भी प्लानिंग किया। इस पूरी की पूरी पॉलिसी में हमने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, वो इसलिए कि इसके बाद जो नए व्हीकल कोई व्यक्ति खरीदे वो ईवी के लिए मोटिवेट हो, उनको हम इंसेंटिवाइज करें कि आप ईवी खरीदे। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि दिल्ली से पेट्रोल और डीजल के व्हीकल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो दिल्ली में चल रहे हैं, जिनकी अभी लाइफ है, जो पीयूसी के पूरे जो पैरामीटर है उसको फॉलो कर रहे हैं, निश्चित रूप में वो अपनी लाइफ पूरी करेंगे और वो दिल्ली में चलेंगे। पर नया व्हीकल कोई खरीदे तो जरूर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में दिल्ली का नागरिक उस व्हीकल को खरीदे, उसमें ईवी को प्रेफर करे। सरकार उसके साथ है और हमारी ईवी पॉलिसी पूरा सपोर्ट करते हुए दिल्ली के हर नागरिक को एक एमिशन फ्री और क्लीन जो मोड ऑफ हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसकी ओर मूव करना चाहती है।
0: क्या ऑड इवन भी आप करेंगे और क्या ये 50% वर्क फ्रॉम होम हर दफ्तर में होगा और उसका ड्यूरेशन क्या होगा?
1: अंजना जी, ऑड इवन से मैं पूछना चाहती हूँ कि कितना फायदा मिला इससे पहले कि सरकार की ये नॉन सीरियसनेस थी जो कि ऐसे टेम्परेरी और टाइमिंग कुछ लेकर के आना कि भी ये ऑड इवन कर देंगे, ये खाली भ्रम था लोगों को ये दिखाना कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, पर ये सॉल्यूशन नहीं था, कभी भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो क्यों लगातार पॉल्यूशन सालों तक बढ़ता रहता? कोई सॉलिड स्टेप जो उठाने चाहिए थे किसी भी सरकार को, वो स्टेप कभी नहीं लिए गए। वर्क फ्रॉम होम इसलिए थोड़ा इफेक्टिव कहा जा सकता है कि आप सड़कों पे थोड़ा तो लोगों को आने से रोकें, वर्क फ्रॉम होम होगा, लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए मूव करें, लोग उससे उसको इस्तेमाल करें। और सरकार ने, हमारी सरकार ने पूरी तरीके से इसे ये माना है कि ये पूरा साल भर चलाने वाला काम है। पॉल्यूशन जो है कोई एक सीज़न का प्रॉब्लम नहीं है, एक सीज़न की आफत नहीं है कि इस सीज़न में आया आफत है और चलिए 2 महीने निकले तो ख़त्म हुई जान बची, ऐसा नहीं है। साल भर जब सरकारें काम करेगी तभी ये पॉल्यूशन कम होगा, ये 100% हमारी सरकार ने करके दिखाया है। लगातार इस 1.5 साल में हमने उन सभी स्टेप्स को लिया जो आने वाले समय में धीरे धीरे पॉल्यूशन को भी कर्व करेंगे और 360 डिग्री यानी हर तरफ से हमने पॉल्यूशन को घेरा है, फिर चाहे वो डस्ट मिटिगेशन हो, फिर वो वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो, वो प्लांटेशन हो, वो ईवी पॉलिसी हो, हर तरह से हमने कोशिश किया, और वो विंटर एक्शन प्लान भी जब हम पूरी तरीके से ये गाइडलाइन पहले से ही नोटिफाई कर दी हमने कि भाई नवंबर से लेके जनवरी माह तक आपको इन इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि दिल्ली तैयार रहे, सोसाइटी तैयार रहे उन नियमों के अनुसार दिल्ली को चलाने के लिए, और पॉल्यूशन जो है सिर्फ सरकार नहीं लोग भी मिलकर के इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन खोजेंगे और मिलकर के दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करेंगे।
0: तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए, इन जेंजी युवाओं को बताइए कि क्या मिशन है और हम क्या करना चाह रहे हैं इसके जरिए, कैसे इनोवेशन को हम आप प्रमोट करना चाह रहे हैं हम लोग, वो बताएं हमारे दर्शकों को।
1: देखिए, हम सब देश की राजधानी दिल्ली के नागरिक हैं, हर व्यक्ति अपने शहर से बड़ा प्यार करता है, और इसीलिए जब कोई भी प्रॉब्लम दिल्ली की ऐसी ध्यान में आती है तो हमें तकलीफ होती है, दिल में दर्द होता है कि भाई हमारे शहर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पॉल्यूशन पे सॉल्यूशन मुझे लगता है कि एक ऐसी ड्राइव है जहाँ पे पूरी दिल्ली, पूरा देश इस पॉल्यूशन की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपने सुझाव दे सकता है, इस ड्राइव का हिस्सा बन सकता है, और हमारी सरकार ने लगातार पॉल्यूशन को सॉल्यूशन देने के लिए काम किया। हमने हर एक एस्पेक्ट पे काम किया, हमने ईवी पॉलिसी लेके आने का काम किया, हमने अभी बहुत बड़ा एक मास प्लांटेशन ड्राइव जो शुरू किया, पहली बार दिल्ली में 70 लाख पेड़ पौधे लगाने का काम, 70 लाख डिजिटल पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के अलग अलग वर्ग, अलग अलग सोसाइटी और यंगस्टर्स ने, सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अपने लिए स्लॉट बुक कराया, पौधे लगाए, और ख़ास करके दिल्ली का जो रिज एरिया है पहली बार किसी सरकार ने आके उसे फॉरेस्ट नोटिफाई किया, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि आप सच में फॉरेस्ट को फॉरेस्ट के रूप में जानें और उसको अच्छे से डेवलप करें, तो ये भी काम करना।
0: कंस्ट्रक्शन का काम पर मैं ध्यान लाना, हमारे अनेकों हमारे रिपोर्टर्स गए स्टिंग ऑपरेशन, ब्लू शीट्स लगी होती है, पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, वो कौन सी इन्फोर्समेंट एजेंसी ये इंश्योर करेगी कि भाई ये ना हो, जब आप ग्रैप फोर लगा देते हैं उसके बाद भी काम चलता रहता है पीछे से।
1: ये सच में आदत थी लोगों की, पर आप लोगों ने अगर स्टिंग किया तो ये भी आपको ध्यान होगा कि गवर्नमेंट ने एक्शन भी पूरा लिया, और उस एक्शन के पीछे हमने वो सारे लीकेजेस जिसके कारण से कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट उसका बेनिफिट लेती थी और अपना काम करती थी। मैं ये मानती हूँ कि जिसे अपने शहर की परवाह नहीं है, जो सिर्फ अपनी चिंता कर रहा है, या जिसे मतलब अपने पड़ोसी की चिंता नहीं है, जो अपने लिए लगातार काम करता जा रहा है, उस पर चेक रखने का काम उतना ही आपका भी है जो एज ए चैनल, और उतना ही जनता का भी है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी कि ये जो गैप था इसे हमने खत्म किया है, हमने अपना डस्ट पोर्टल सेकंड शुरू किया है जिसमें 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर की जितनी प्रॉपर्टीज हैं जहां कंस्ट्रक्शन चल रही है वहां पे हमने डिजिटल कैमराज लगाए हैं जो हमारे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से शुरू हुए हैं, जो AI एनेबल्ड हैं, और पूरी तरीके से अगर वहाँ पे डस्ट पैरामीटर पे वो वहाँ पे कुछ भी होता है, अगर अलार्म बजता है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास भी आता है, उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के ओनर के पास भी जाता है, और तुरंत एजेंसीज एक्टिवेट हो जाती है और एक्शन लिया जाता है। तो ये पहली बार हुआ है कि AI ड्रिवन कैमराज के द्वारा सरकार ये डिजिटल मॉनिटरिंग कर रही है, और पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन को हमने डिजिटल मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स के साथ जोड़ा है, इससे पहले कभी ये नहीं हुआ था। तो ऐसे हर व्यक्ति जो उस समय कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा या कर रहा होगा वो पूरी तरीके से निगरानी में रहेगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा।
0: सरकारी कंस्ट्रक्शन का क्या होगा, कहीं मेट्रो का काम चल रहा है कहीं पर, अब आजकल तो दिल्ली में जब भी घर से निकलिए कुछ ना कुछ कहीं पर खुदाई हो जाती है, उसका क्या होगा, क्या उसको भी उस दौरान रोक पाएंगे?
1: बिल्कुल, हर नियम बराबर का सरकार पे भी लागू होता है, जनता पे भी लागू होता है। जैसे मैंने ईवी की बात कही, ईवी यदि हम लोगों को प्रपोज कर रहे हैं कि आप लीजिए, तो सरकार ने भी अपने लिए तय किया है कि हम जितने भी व्हीकल फ्यूचर में खरीदेंगे वो 100% ईवी ही खरीदेंगे, यहाँ तक कि हमारी जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स भी है उनको भी हमने ईवी खरीदने का ही
0: प्रेशर हो कि रेखा जी तो ईवी में चल रही हैं, पीछे उनके सिक्योरिटी वाले 10-15 गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल डीजल वाली।
1: देखिए, मैंने आपको कहा कि हम भविष्य में एक भी नई कार जो खरीदेंगे वो 100% ईवी होगी. तो पुरानी गाड़ियां जैसे हम लोगों की नहीं हटा रहे हैं तो इसलिए सरकार की भी चल रही है, और इसलिए नई गाड़ी जो भी खरीदेंगे वो ईवी खरीदेंगे. जैसे जनता का नियम वैसे हमारा नियम.
0: कृत्रिम बारिश की आपने बात की थी क्लाउड सीडिंग के जरिए. अब वो रोज होता था कि अब सिरसा से जी जा रहे हैं और अब तो विमान उड़ेगा और बारिश होगी और वो बादल कभी बरसे ही नहीं. क्या वजह रही? क्या इज इट अ फेल्ड प्रोजेक्ट, यानी एक ऐसा मिशन जो नहीं हो पाया, या उस मिशन पर अभी भी आप लोग कायम हैं? और कई विपक्ष ने भी, आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि 3 करोड़ खर्च कर दिए, बेकार गया.
1: मैं ये मानती हूँ कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो वो फेलियर नहीं होता है, वो आपके लिए एक चीज़ सिखा के जाता है. आज दिल्ली शहर के लिए उसके पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, आज आप भी तो पॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का कार्यक्रम कर रहे हैं. यानी कि यहाँ बैठे हुए जितने यंगस्टर्स हैं जो भी सॉल्यूशन हमें बताते हैं और हमें लगता है कि सॉल्यूशन से सच में 2% 10% कुछ भी पॉल्यूशन कम हो सकता है, तो हम तो उसे तैयार हैं अपनाने के लिए. ऐसे ही कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन, जब बहुत ही साइंटिफिकली अप्रूव्ड मेथड है जिसको कि आप बाकी देशों में भी इसको किया गया है और लोगों ने आर्टिफिशियल रेन के माध्यम से बहुत सारे सॉल्यूशन किए हैं. दिल्ली में भी हमने इसे ट्राई किया, तो मुझे लगता है कि ट्राई करना कोई गलती नहीं है. हमने पूरी अपनी उस मानसिकता के साथ कि पॉल्यूशन को सॉल्यूशन देना है, हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया और एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल भी हो सकता है, कई बार नहीं भी होता है.
0: चलते चलते एक आखिरी सवाल. आपको लगता है कई बार ऐसा मन में आता है कि भाई कोई भी एफर्ट कर लो, छोटा होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, पर ऐसा कुछ इनोवेशन या कुछ भी आपके सामने अभी तक आया है जो कि अनूठा है, जो आपको बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा हो?
1: बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने जो इनोवेशन चैलेंज किया था अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, IITs में जाकर के, और बहुत सारे यंगस्टर्स ने अपने स्टार्टअप्स दिखाए, अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाए कि इसके माध्यम से पॉल्यूशन पे काम किया जा सकता है, और उसमें से हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट उठाए, उसे दिल्ली शहर में इम्प्लीमेंट किया. और मुझे लगता है कि हर एक प्रोजेक्ट अपनी वर्किंग का कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर छोड़ता है, तो हम लगातार उन्हें अडॉप्ट कर रहे हैं, लगातार उस हर संभव प्रयास पे काम कर रहे हैं कि दिल्ली शहर की आबो हवा अच्छी हो, दिल्ली में रहने वाले लोगों का दिल खुश हो. इसके लिए हर उस सॉल्यूशन पे काम किया जा रहा है जो कि सरकार के सामने प्रेजेंट होता है, जो नए स्टार्टअप्स हमें दिखाई देते हैं. और इतना कह सकती हूँ कि ये दिल्ली शहर देश की राजधानी है. जब विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारी इस दिल्ली शहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम जिसमें केवल दिल्ली का हिस्सा नहीं है, दिल्ली NCR भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. हम दिल्ली के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम NCR के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, हम हर तरीके से इसके समाधान को खोज रहे हैं, और दिल्ली की जनता लगातार उसका प्रभाव देख रही है और भी देखेगी.
0: आपने दिल्ली की बात किया, आपने खुद ही कहा दिल्ली NCR, तो एक आखिरी सवाल मन में आ गया है जो कि बहुत जरूरी है शायद एड्रेस होना, क्योंकि पराली एक बड़ी वजह, और उसका जिस तरह से असर आता है वो हम सब भुगतते हैं. सांस लेना मुश्किल होता है, कई लोग इनहेलर्स पे चले गए हैं, कई लोगों की तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल जाते हैं. किस किस से बात हो रही है आपकी आज सही सही बता दीजिए. भगवंत मान जी से आपने बात की है कि क्या करना है, आपने नायब सिंह सैनी साहब से बात की है क्या करना है, राजस्थान में आपने शर्मा जी से बात की है क्या करना है, इधर योगी जी से बात की है क्या करना है,
1: हर एक मुख्यमंत्री से बात की है. और ओपन बर्निंग का कोई भी मोड हो, पराली हो, बाकी चीजें हो, दिल्ली में हो, NCR में हो, बाकी राज्यों में हो, वो हर एक चीज जो हमें इफेक्ट कर रही है वो ठीक होनी चाहिए. उसके लिए हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध है, हमने सबको इस समस्या के समाधान पे काम करने के लिए कहा है. नॉर्दर्न रीजन का जो मीटिंग पीछे हुआ था उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, हम सब ने मिलकर के एक कॉमन एजेंडा बनाया है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है जिस पे हर राज्य काम कर रहा है. और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी को एज इट इज़ हरियाणा ने अडॉप्ट किया है, तो हरियाणा भी अब ईवी पे जा रहा है, धीरे धीरे यूपी, राजस्थान, बाकी राज्य भी जाएंगे, पूरा देश इस ईवी पॉलिसी पे काम करेगा और हम सब अपनी आबोहवा बदल पाएंगे.
0: पंजाब का आपने नाम नहीं लिया, पराली पर क्या बात हुई है?
1: पंजाब की पराली भी खत्म होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस बात को समझेंगे और जरूर जो उनके ऊपर मोहपाश है उसमें से निकल के इस सीरियस नोट पे आएंगे।
0: वो तो सैनी जी भी करने से डरते हैं क्योंकि सबको लगता है कि किसानों की नाराजगी कौन मोल ले ले।
1: बिल्कुल सैनी साहब तो नहीं है, बीजेपी के हरियाणा में बहुत सारे ऐसे प्लांट बने हैं जो क्लीन फ्यूल पे जनरेट कर रहे हैं पराली से, और लगातार हरियाणा में, यूपी में, इवन पंजाब में भी कुछ ऐसे प्लांट खुले हैं, और मुझे लगता है कि उन सब का असर दिल्ली पे होने वाला है। दिल्ली के लिए इतना कह सकती हूँ कि ये माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है, तो हम दिए जलाते रहेंगे और लोगों को रोशन करते रहेंगे।
0: रेखा गुप्ता जी, आप काफ़ी अच्छी शायरी करती हैं, मुझे पता है बीच बीच में आप पहले से, लेकिन राजनीति की सख्ती कई बार इंसान को अलग बना देती है। उम्मीद है कि ये जो कोशिश है पोल्यूशन का सोल्यूशन वो सफल होगा, और अब QR कोड जो है हमारा है उसको लॉन्च करेंगे हम लोग। I'll request now to the jury also to join us on stage. Our esteemed jury, huge round of applause, please. So much talk, so much inspiration, and then all of it will start with this one QR code. And to unveil that, I'll request the Chief Minister to just be there. And there you go, Delhi with bated breath. There you go.
2: Big round of applause.
0: That's the QR code. If you've got a solution, we're listening. All you have to do is just scan that QR code, send us your pitch, and our esteemed jury is going to judge that. The Chief Minister will adopt that. With that, we're calling this entire campaign open.

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: मैं करता हूँ ना,
4: मैं करूँगा।
5: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
3: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
5: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टेज, डाइनिंग एंड मच मोर।
3: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
5: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर,
6: करेक्ट करेक्ट,
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: पीएम मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नए दृष्टिकोण के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को गहरा करना होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि पार्टी के साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। साथ ही पीएम ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। तो नई टीम के साथ ये प्रधानमंत्री की पहली मुलाकात। नितिन नवीन की नई टीम का कुछ दिनों पहले ऐलान हुआ और उसके बाद आज कई चरणों में मुलाकातें हुई हैं और चिंतन मंथन हुआ है। भविष्य की रणनीति भी बनाई गई है और फिर अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर अपने विचार उनके साथ साझा किए और उनका उनके विचारों को सुना है। ये पीएम ने अपने ट्वीट में भी ये बात लिखी है। तो संगठनात्मक बैठक का मकसद पार्टी को मजबूत करना होता है और टीम नितिन नवीन और इसमें कई नए चेहरे हैं, कई पुराने चेहरे इसमें हैं। तो यंग और ओल्ड मतलब एक्सपीरियंस्ड भी इसमें है और नवयुवकों की ऊर्जा का इस्तेमाल भी बीजेपी करना चाहती है। 2027 में कई स्टेट्स में चुनाव है, इसके साथ साथ आने वाले जितने भी चुनाव है उसके लिए पार्टी अपनी तैयारियां कर रही, क्योंकि अब समय बदलता दिखाई दे रहा है। जेन जी की काफी ज्यादा चर्चाएं हो रहे हैं तो पार्टी अपने आप को उसी हिसाब से तैयार भी करना चाह रही है। इधर पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति का उल्लेख भी किया और महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती हैं। आपको यह बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। समबडी विल से आवर इकोनॉमी, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था. सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी भी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए. अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई. अखिलेश यादव ने बयान दे दिया. अखिलेश यादव ने पोस्ट भी किया सोशल मीडिया पर कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक और गहरी साजिश है. आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं. बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा को कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं, कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले आरक्षण के अधिकार की हकमारी की लगातार की जा रही कोशिश के अलग अलग मुखौटे हैं. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी बयान दिया और उन्होंने भी जंतर मंतर प्रदर्शन को लेकर आपको जो कहा है सुनाते हैं.
2: ये आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है. आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है. आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है. अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया. इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन बोल चाल वेशभूषा सब अलग है, अपने तरीके से है.
0: आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की और बैठक के बाद जेपी नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है. किसानों को उर्वरकों की निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।

बीजेपी की नई टीम के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। पार्टी मुख्यालय में अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। वंदे मातरम पर प्रस्ताव में कांग्रेस की कड़ी निंदा की। पुणे में छात्रों की गूंज। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार। कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या। बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न।

मांग पर भड़के अखिलेश, कहा पीडीएस समाज के खिलाफ बीजेपी की साजिश। मंत्री चिराग पासवान बोले, रिजर्वेशन खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार। सिलीगुड़ी में गोरखा सांसदों के साथ अमित शाह की मुलाकात। बंगाल के सीएम शुभेंदु भी मौजूद, विकास के रोड मैप पर मंथन। अमेरिका और कनाडा में तेज हुई तकरार। ट्रंप के टैरिफ लगाने के जवाब में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाया टैक्स।

0: कवच हूं मैं, अरिका मैं ही हूं संहारक। थर थर कांपे शत्रु मुझसे, परम शक्ति का मैं धारक। भारत माता की जय। ऊर्जा मुझ में है अग्नित, लक्ष्य भेदी प्रण है मेरा। जल थल नभ में सर्वव्यापी, शौर्य ही कर्तव्य मेरा। वंदे मातरम।
1: अनमैन्ड सिस्टम्स, चाहे मिसाइल हो, ड्रोन हो, इनका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया।
2: रिमोट से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन।
3: आने वाले समय की जितनी भी लड़ाइयां होंगी उसमें ड्रोन्स जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे।
4: डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अब हमें महारत हासिल हो चुकी है। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री।
0: थर थर कांपे शत्रु मुझसे, परम शक्ति का मैं धारक। ऊर्जा मुझ में है अगणित,

0: आज जितने भी मिसाइल हमारे यहाँ बन रहे हैं, आई वुड से 85-90% इंडिजिनस है।
1: हमारी जो डिजाइन क्षमता है, जो हमारी टेस्टिंग क्षमता है, वो हमारी पूरी परिपक्व हो चुकी है।
2: सारा का सारा जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, आई थिंक इट्स ऑल मेक इन इंडिया।
3: हमारा जो सिस्टम है अमंगस्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं।
4: नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। वंदे मातरम में हम आपको हमेशा युद्ध भूमि में लेकर चलते हैं, जिसे आप पहचानते हैं, जिससे आप परिचित हैं, जिन सैनिकों को आपने देखा है। लेकिन इस बार के वंदे मातरम में हम आपको उस युद्ध भूमि में लिए चलेंगे जो वर्तमान की और भविष्य की युद्ध भूमि है। उन योद्धाओं से मिलाएंगे जो भविष्य के योद्धा हैं और जो भारत को विश्व की शक्ति बनाने के लिए अपने हाथों को जय जवान और जय विज्ञान के नारों के साथ मजबूत कर रहे हैं।
5: ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत का सुरक्षा कवच है।
6: आकाश मिसाइल का कैपेबिलिटी है, हम लोगों ने आप सिंदूर में देखा है। हम लोग एनिमी इसको जाम नहीं कर सकते या इसको सप्रेस नहीं कर सकते।
1: इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री एज फार एज द डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न।
5: ये सिर्फ निशाना नहीं लगाती, ये आधुनिक भारत का अमोघ अस्त्र है।
6: बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसका मतलब जब मिसाइल फायर करेंगे दुश्मन का जहाज बहुत दूर होगा, क्योंकि पास जाने से वो हमारा एयरक्राफ्ट एंगेज कर सकते हैं। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, तो बहुत दूर से लॉन्च करने वाले मिसाइल है।
5: ये केवल प्रतिरोध का प्रतीक नहीं, प्रतिकार का ब्रह्मास्त्र है।
7: ब्रह्मोस से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
0: हमारे जो एडवर्सरीज थे, जो एनिमीज थे, उनको रियली एक लेसन मिला कि आप हमारे साथ इस तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा पोटेंट वेपन है।
5: ये केवल समुद्र की गहराई नहीं नापती, ये पानी के अंदर दुश्मनों की औकात नापती है।
8: टारगेट को, जो पायलट को नजर नहीं आ रहा है उसको टारगेट करना है, तो कम से कम 40 किलोमीटर की रेंज की आपके पास में कोई मिसाइल होनी चाहिए।
5: ये सिर्फ हवा से जमीन पर वार नहीं करती, ये रौद्र रूप है रुद्र का।
6: एक बार हम मिसाइल लॉन्च करेंगे तो जरूर जाके वो जो टारगेट है उसको हिट करेगा।
5: ये केवल एक छोटा सा हथियार नहीं, पलक झपकते खत्म कर देता है दुश्मन का वजूद। ये है आधुनिक भारत के अत्याधुनिक मिसाइल शक्ति की तैयारी, जहां मेक इन इंडिया केवल नारा नहीं, भारत का जय घोष है।
0: आज जितने भी मिसाइल हमारे यहाँ बन रहे हैं, चाहे पृथ्वी हो, चाहे लेटेस्ट मिसाइल जैसे आपने देखा प्रलय मिसाइल हुआ, या रुद्रा मिसाइल हुआ, या अग्नि 5 मिसाइल हुआ, या इवन सबमरीन लॉन्च मिस्टर K4 मिसाइल है, K6 मिसाइल है, ये सब मिसाइल जितने भी हैं, या आकाश मिसाइल है, या LRSAM है, ये सब मिसाइल जो हैं, आई वुड से 85-90% इंडिजिनस है।
5: ये वो तैयारी है जिसमें स्क्रू से सॉफ्टवेयर तक आधुनिक होते भारत की छाप।
1: इंडिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है स्पेशली रिलेटेड टू डिफेंस, सो डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अब हमें महारत हासिल हो चुकी है।
5: आज की युद्ध भूमि में ये आने वाले कल की ताकत है, ये वो कर्मवीर हैं जो वर्तमान और भविष्य के युद्ध का स्वरूप भी तय कर रहे हैं और योद्धाओं का रूप भी।
0: इस समय हमारे देश में DRDO से जो वेपन्स या टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उनका जो प्रोडक्शन वैल्यू करंट प्रोडक्शन वैल्यू है वो 6.6 लाख करोड़ है।
7: DRDO अब हर तरह की मिसाइल जो भी हमारी आर्म फोर्सेस को चाहिए उन सब को बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम है।
5: आज वंदे मातरम में हम भारत के उन अमोघ अस्त्र की शक्ति से आपका परिचय कराएंगे जो वर्तमान के युद्ध में सबसे निर्णायक है, मिसाइल। और ये भी बताएंगे कि भारत एक मिसाइल शक्ति के रूप में दुनिया में कहां खड़ा है। सबसे पहले भारत की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस, जिसके नाम में ही ब्रह्म है। ब्रह्मोस केवल एक मिसाइल नहीं है, हिंदुस्तान का हौसला है और दुश्मन की हार है। आधुनिक भारत का सबसे अत्याधुनिक ब्रह्मास्त्र। इसकी 3 मैक की खौफनाक रफ्तार है, यानी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब यह चलती है तो दुश्मन को एयर रेड सायरन बजाने तक का मौका नहीं मिलता। इसकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 800 प्लस किलोमीटर तक है, जो कि ER वेरिएंट है। जिस तकनीक पर यह बनी है उसको कहते हैं फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ। निशाना चूकना और दुश्मन का बचना नामुमकिन। इसकी ताकत का हिसाब इस बात से पता चलता है कि यह मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाकर 5 मीटर की नीची उड़ान से रडार को चकमा देकर सीधे तबाही मचाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसे लॉन्च किया जा सकता है। जमीन, हवा, समुंदर, पनडुब्बी, हर जगह से यह तबाही ढाने में सक्षम है।

0: मई 2025, ऑपरेशन सिंदूर। जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने सीमा पार की तो भारत ने ब्रह्मोस का वो रूप दिखाया कि रावलपिंडी तक दहल गया। पाकिस्तानी पीएम और जनरल आसिम मुनीर को बंकर में छुपना पड़ा। सुखोई 30 एमकेआई से दागी गई एयर लॉन्च ब्रह्मोस ए दुश्मन के लिए बंकर बस्टर के साथ साथ मिथ बस्टर भी साबित हुई।
1: कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है।
0: ये पाकिस्तान की शान नूर खान एयरबेस है। सुखोई से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने 90 डिग्री के स्टीप डाइव अटैक से अंडरग्राउंड कमांड सेंटर और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को पाकिस्तान के घमंड के साथ नष्ट कर दिया।
2: अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है।
0: 5 मीटर से कम सीईपी की सटीकता के साथ पूरे मेड इन चाइना एयर डिफेंस को खंड खंड कर दिया।
3: जो ब्रह्मोस है इसको रोकना बहुत मुश्किल है, तो नूर खान में जो भी स्ट्रेटेजिक असेट्स थे, उनकी जो भी एंट्री थी, एग्जिट थी, अप्रोच रोड थी, या जो एयर स्ट्रिप होती है, हवाई पट्टी जिससे हवाई जहाज उड़ सकते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, तो उन सबको खत्म कर दिया गया। तो उसके कारण जो भी उनके असेट्स थे उस किराना हिल्स में, तो वो फिर बाहर निकल नहीं पाए, बल्कि मैं तो कहूंगा कि शायद उनको भी कुछ नुकसान हुआ होगा।
0: ये रहीम यार खान में तबाही की तस्वीरें हैं। दुश्मन के ड्रोन्स और रनवे को ऐसा उड़ाया कि महीनों तक वहां उड़ानों पर सन्नाटा छा गया।
1: पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया।
0: ब्रह्मोस की खासियत ये रही है कि उसको पाकिस्तान के रेडार पकड़ नहीं सके, लेकिन उससे हुई तबाही पाकिस्तान के आवाम ने अपनी आंखों से देखी। चीन का दिया HQ-9 और LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस की लो ऑल्टीट्यूड सी स्किमिंग तकनीक के आगे खिलौना बनकर रह गए।
3: ये एक स्टेल्थ मिसाइल है, कंपोजिट्स हैं इसमें और मेटल का काफी कम उपयोग हुआ है, तो ये जो दुश्मन के रडार में ये मिसाइल आती नहीं है। और दूसरी बात है कि इसकी जो स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो चाइनीज रडार थे वो इस मिसाइल को पकड़ नहीं पाए। और तीसरी बात क्या है कि इस मिसाइल के अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो लगा के रखा है, तो वो पाकिस्तानी जो राडार्स अगर पकड़ भी लेते तो उनको इस मिसाइल को जैम करना बहुत मुश्किल था।
0: आज ब्रह्मोस सिर्फ रक्षा कवच नहीं, भारत की आत्मनिर्भर ताकत का सबसे बड़ा चेहरा है। 85% स्वदेशी तकनीक से लैस ये मिसाइल अब दुनिया पर राज करने के लिए तैयार है। फिलीपींस साल 2024 में ही ब्रह्मोस को अपनी सुरक्षा में तैनात कर चुका है। इंडोनेशिया से करीब $450 मिलियन की डील फाइनल हो चुकी है। वियतनाम और यूएई $700 मिलियन की डील के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ब्रह्मोस की खरीदार देशों में सऊदी अरब, मिस्र, ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे दर्जनों मुल्क भारत की चौखट पर कतार में है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नए बनते वर्ल्ड ऑर्डर में ये ब्रह्मोस डिप्लोमेसी का नया आयाम है।
1: ब्रह्मोस का नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए।
3: इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है उसको देखते हुए बहुत सारे देश इन ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के लिए अब उत्सुक हैं। एक बात और है कि जब भी वॉर होती है तो वॉर में जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी टेस्टिंग होती है, तो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की टेस्टिंग हो गई, मतलब जहां पर दुश्मन के रडार भी हैं, दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइल्स भी हैं, जहां पर हमको कुछ मालूम नहीं है, हम पहली बार अटैक करने जा रहे हैं, तो वहां पर इस मिसाइल की टेस्टिंग हो गई। और इस मिसाइल की टेस्टिंग के बाद हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि 12-13 देश हैं जिन्होंने इस मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है।
0: चाहे हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 हो या लड़ाकू विमानों के लिए नई ब्रह्मोस एनजी, संदेश साफ है, नया भारत अब केवल रक्षा नहीं करता, दुश्मन के घर में घुसकर तबाही का हिसाब करता है। ब्रह्मोस की ताकत ही है जो पाकिस्तान लगातार अपनी सुरक्षा के लिए नए नए समझौते कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को और उसका साथ देने वाले मुल्कों को याद रखना चाहिए कि आतंकी सरपरस्ती केवल और केवल मौत का सौदा है।
3: ब्रह्मोस एनजी एक ब्रह्मोस के समान ही एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, और जैसा आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस को 1990 फिर 2000 इस बीच में विकसित किया गया था, तो अब नेक्स्ट जनरेशन में जो है बिल्कुल कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मटेरियल्स, लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और सब कुछ नया होगा इस मिसाइल में, और ब्रह्मोस एनजी उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से हमारी जो एक विंटेज ब्रह्मोस काम करती है।
0: आसमानी सरहदों की सुरक्षा करने वाली आकाश मिसाइल यानी आत्मनिर्भर भारत का वो जीता जागता सबूत जिसने दुश्मनों के हर वार को बेकार किया, हर हमले को नाकाम किया, हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। मेरे साथ में आप ये आकाश मिसाइल सिस्टम देख रहे हैं, ये केवल मिसाइल्स नहीं है बल्कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, प्रणाली है। आकाश पूरी तरीके से स्वदेशी है, इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये एक मध्यम दूरी की सैम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है। दुश्मन की तरफ से हवा में जो ड्रोन्स भेजे जाते हैं, मिसाइल्स दागी जाती हैं या किसी भी तरह का खतरा होता है, ये हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया। जब पाकिस्तान ने आसमान में ड्रोन्स की बरसात शुरू की तो भारत की तरफ से मोर्चा संभाला भारत में ही विकसित हुए एक रक्षक ने, एक ऐसा रक्षक जिसका निशाना जितना अचूक उसका वार उतना ही घातक। ऑपरेशन सिंदूर के इस स्वदेशी गेम चेंजर ने आकाश की सरहदों को दुश्मन के नापाक मंसूबों से पाक किया और बाआवाज़े बुलंद अपनी मौजूदगी का ऐलान किया, आकाश मिसाइल सिस्टम।
4: आकाश मिसाइल का जो उसका कैपेबिलिटी है, हम लोगों ने आप सिंदूर में देखा है। हम लोग आकाश मिसाइल पहले, अभी तो एक नहीं, अभी तो 3-4 वेरिएंट्स आ गए हैं। जो पहले था वो कमांड गाइड से चलते थे, उसको एनिमी इसको जाम नहीं कर सकते या इसको सप्रेस नहीं कर सकते। अभी इसलिए हम लोग इसका रिजल्ट तो देखा हम लोगों ने, जो अपना दुश्मन का जितना भी एफर्ट्स थे उन सबको आकाश मिसाइल ने उसको इनफेक्टिव कर दिया है। और अभी नया जो वर्शंस आ रहे हैं इसे कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगा।
0: दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से भारत के हवाई क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिशें तेज हुई। ड्रोन और मिसाइलों के जरिए लगातार हवाई हमले किए गए, लेकिन भारतीय आसमान की सुरक्षा के लिए आकाश मिसाइल सिस्टम मजबूती से सामने आया। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए खतरों को एक तरफ S-400 नाकाम कर रहा था, दूसरी तरफ उतनी ही परफेक्शन के साथ आकाश अपने काम पर लगा हुआ था। ये इस बात की गवाही देता है कि भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस क्षमता कितनी मजबूत हो चुकी है।
5: जो हमारे पास कैपेबिलिटीज अब आ गई हैं कि हम जो बैटलफील्ड में जिस टाइप की कंडीशंस होती हैं उनको हम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो हमारी लेबोरेटरी हो, चाहे वो हमारे टेस्टिंग ग्राउंड्स हो, तो हमारी जो डिजाइन क्षमता है, जो हमारी टेस्टिंग क्षमता है, वो हमारी पूरी परिपक्व हो चुकी है। एंड द वे द सिस्टम विल बी यूटिलाइज्ड इन बैटलफील्ड, वी कैन टेस्ट नाउ एंड वी कैन प्रूव द परफॉर्मेंस इन एक्चुअल बैटल कंडीशंस।
0: आकाश की रेंज 25 से 45 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे लक्ष्यों को इंटरसेप्ट कर सकता है। मिसाइल में करीब 60 किलो का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है। इसका डिजिटल फ्यूज लक्ष्य के बेहद करीब पहुंचने पर वॉरहेड को सक्रिय करता है। हर बार लक्ष्य को सीधे छूना जरूरी नहीं, बल्कि सही दूरी पर विस्फोट करके भी उसे नष्ट किया जा सकता है। आकाश की खासियत यह है कि उड़ान के दौरान लक्ष्य की जानकारी के आधार पर मिसाइल का रास्ता बदला जा सकता है, यानी उसे मिड कोर्स करेक्शन दिया जा सकता है। मिसाइल ही नहीं, भारत ड्रोन शक्ति के रूप में भी उभर रहा है। दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद, देखते रहिए वंदे मातरम।

0: The new BE6 Sporter.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
2: आगे आगे,
3: अरे उधर उधर,
2: करेक्ट करेक्ट,
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: बिजली का बिल पेड
6: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
6: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
3: इतना माही वे।
7: पापा।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तो।
10: चार्ज हुआ यार।
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
3: B.R. अम्बेडकर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल अपलिफ्टमेंट में वो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है।
4: अगर अम्बेडकर जिद पकड़ लेते जिंदा की तरह कि हम सेपरेट अलग ट्रेड नहीं छोड़ेंगे, तो जैसे पाकिस्तान बना है ना, ऐसे ही बल्तिस्तान भी बनता।

0: जापान के जेन अल्फा के साथ योगी आदित्यनाथ नई जनरेशन के स्टाइल में सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। पहले छात्र सेल्फी लेता है, फिर योगी खुद सेल्फी स्टिक पकड़कर सेल्फी लेने लगते हैं। तस्वीरें लखनऊ के सीएम आवास की, जहां एक डायलॉग विद का फ्यूचर कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ ने जापान से आए 13 छात्रों के साथ संवाद किया।
1: एक बच्चा लखनऊ के किसी गांव से आया है और दूसरा जापान के किसी गांव से। एक हिंदी बोलता है, दूसरा जापानी, पर दोनों के बीच में एक चीज समान रूप से है और वह है कि दोनों अभी अपने भविष्य की कहानी लिख रहे हैं।
0: छात्रों ने भी योगी आदित्यनाथ के साथ गाना गाया। कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को गिफ्ट दिया, तो वहीं छात्र भी मुख्यमंत्री के लिए खास तोहफा लाए। आज तक के

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: आकाश सुपरसोनिक यानी ध्वनि की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल है। ये मार्क 1.8 से मार्क 2.5 तक की रफ्तार से उड़ सकता है। आकाश की ताकत केवल इस मिसाइल में नहीं है बल्कि उसके रेडार और कमांड नेटवर्क में भी है। इसका रेडार एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 12 लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकता है। आकाश एक कंप्लीट इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें शामिल है लॉन्चर जो मिसाइल को लक्ष्य की ओर लॉन्च करता है, आकाश मिसाइलें जो हवाई खतरे को इंटरसेप्ट और नष्ट करती हैं, कंट्रोल सेंटर जो पूरे सिस्टम के ऑपरेशन को नियंत्रित करता है, मिशन गाइडेंस सिस्टम जो मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है, मल्टीफंक्शन फायर कंट्रोल रेडार जो लक्ष्य की पहचान, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है, आर्मिंग और एक्सप्लोजन सिस्टम जो सही समय पर मिसाइल के वॉरहेड को सक्रिय करता है, डिजिटल ऑटो पायलट जो उड़ान के दौरान मिसाइल को स्थिर और नियंत्रित रखने में मदद करता है, C4 सिस्टम यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसके साथ इसमें कई तरह के सपोर्टिंग ग्राउंड इक्विपमेंट भी होते हैं। मिसाइल और स्पेस वॉर के इस दौर में DRDO की रिसर्च और अनुसंधान का सबूत आकाश भारत को न्यू एज वॉरफेयर के लिए तैयार करता है। अस्त्र भारत में निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। नाग मिसाइल आसमान में भारत की ताकत को और बढ़ाती है। ये एक फायर एंड फुगेट प्रणाली है, यानी इसे लॉन्च करने के बाद मिसाइल खुद ही लक्ष्य का पीछा करती है और उसे नष्ट कर देती है। ये टैंक पर सटीक हमले करने के लिए डिजाइन की गई है। भारत अपनी रक्षा प्रणाली को लगातार सशक्त बना रहा है। ब्रह्मोस NG हल्की और फुर्तीली मिसाइल है जो दुश्मन को पल भर में नष्ट करने में सक्षम है। इसे फाइटर जेट से फायर किया जा सकता है। रुद्रम 2, 3, 4 मिसाइलें दुश्मन के रेडार सिस्टम को तबाह करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल आवाज से 5 गुना तेज है जो दुश्मन की सुरक्षा को ध्वस्त कर दे। युद्ध में ड्रोन आज सबसे कारगर हथियार बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में भी जो भारतीय ड्रोन्स रहे उनका बहुत महत्व रहा। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को धोखा देने, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए मानव रहित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, साथ ही हमले के लिए भी इनका उपयोग किया और पाकिस्तानी सेना फंस गई भारतीय ड्रोन्स के माया जाल। आज की जंग सिर्फ ताकत से नहीं तकनीक से जीती जाती है। भारत के पास वो तकनीकी ताकत है जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर दे। DRDO द्वारा विकसित किए गए ड्रोन भारत की शक्ति को और बढ़ाते हैं। रुस्तम 2 ड्रोन जो दिन और रात दोनों में उड़ान भर सकते हैं, भारत ड्रोन जो AI और नाइट विजन से लैस हैं, और त्रिनेत्र UAV जो बर्फीले मोर्चों से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में काम आता है। ये सब भारत को हर मोर्चे पर अपराजेय बनाते हैं। साथ ही भारत के पास है निशान, नेत्रा और लक्ष्य जैसी ड्रोन प्रणालियां। ये सीमाओं की निगरानी में तैनात हैं जो हमेशा दुश्मन पर नजर रखती है। भारत की सैन्य ताकत केवल निगरानी तक सीमित नहीं है बल्कि युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑपरेशन सिंदूर में नागास्त्र ड्रोन का इस्तेमाल आत्मघाती हमलावर के रूप में दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। स्काई स्ट्राइकर एक वर्टिकल UAV ऊंचाई से सटीक हमले करने में सक्षम है जिससे इसे ऑपरेशन के दौरान सटीक और प्रभावी हमलों के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा D4 एंटी ड्रोन सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया।
1: जब हम एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करते हैं तो एंटी ड्रोन सिस्टम में से 3 किलोमीटर से लेकर के 1 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, मतलब जैसे जैसे हम दुश्मन के ड्रोन्स को देखते हैं उनको इंटरसेप्ट करके उनको बर्बाद करने की जो काबिलियत और क्षमता हम लोग हासिल कर रहे हैं, और खास कर रहे थे कि जो D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ये जो भारत के अंदर बन रहा है, तो ये और उसके साथ साथ रेडार, उसके साथ साथ किस प्रकार से उसको ट्रैक करना, डिटेक्ट करना और उसको एंगेज करके उसको बर्बाद करना, तो सारा का सारा जो सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, आई थिंक इट्स ऑल मेक इन इंडिया।
2: मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स आर हेयर टू स्टे, यानी कि आने वाले समय की जितनी भी लड़ाइयां होंगी उसमें ड्रोन्स जो है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है उनका रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। ये बात जो है हमने अभी ऑप सिंदूर के टाइम भी देखी, जहां पे भारत के जो ड्रोन्स हैं कामिकाजी ड्रोन्स, उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जैसे बर्बाद किया। जो हैरप ड्रोन्स हैं जो इसराइल की मदद से भारत ने बनाए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में काफी बर्बादी की, काफी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को जो है उनको नेस्तनाबूद किया।
0: भविष्य के युद्ध के लिए लेजर आधारित हथियार भी तैयार किए जा रहे हैं जो नई दिशा और तकनीकी श्रेष्ठता का संकेत देते हैं। देश की संप्रभुता की असली ताकत है DRDO जैसी संस्थाएं, ब्रह्मोस की गूंज, पिनाका की वर्षा, आकाश तीर की उड़ान, ये सिर्फ हथियार नहीं आत्मविश्वास है हिंदुस्तान के। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया स्वदेशी तकनीक अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और विज्ञान उसका सबसे बड़ा हथियार।
3: हमारे हिसाब से द वे इंडिया इज गोइंग दिस जस्ट वन स्टेप टुडे द वे थिंग्स आर देयर यू कैन लुक फॉर 10 इयर्स डाउन द लाइन इंडिया मे बी द कंट्री व्हिच विल हैव द बेस्ट ऑफ द वेपन्स, बेस्ट ऑफ द मिसाइल्स, बेस्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड पीपल विल बी क्यूइंग इन लाइन टू बाय इट फ्रॉम इंडिया।
4: अभी हम आत्मनिर्भर हुए हैं 80% कह सकते हैं हमारे फंड्स के माध्यम से, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी हमें और आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने बहुत सारे कदम ऐसे लिए हैं कि जैसे मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अलावा IDDM के लिए भी एक इम्पोर्टेंस दी जा रही है मिनिस्ट्री में, उसके अलावा जो मिशंस गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, चाहे वो AI का मिशन हो, चाहे वो साइबर फिजिकल सिस्टम्स का मिशन हो, ये सब भी हमारे डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम्स के लिए फीड इन मिशंस होंगे।
0: जब देश अपने टैंकों से लेकर तारों तक की यात्रा खुद तय करता है तो वो केवल आत्मनिर्भर नहीं होता, भविष्य भी गढ़ता है। भारत अब रक्षक नहीं निर्माता है, एक राष्ट्र जो अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए मिसाल बन रहा है, यही है मेक इन इंडिया की असली ताकत। आजकल जो युद्ध का नया स्वरूप है उसमें ड्रोन्स की अहमियत हर कोई समझता है, आपका दुश्मन भी समझता है, यानी कि एंटी ड्रोन सिस्टम जो है उसकी भी अहमियत उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन केवल सर्वेलांस का काम नहीं करते बल्कि वो बन चुके हैं हथियार ले जाने वाले प्लेटफॉर्म, सस्ते अटैक हथियार, स्वॉर्म अटैक का हिस्सा और सरहद लांघने का माध्यम। क्योंकि दुश्मन सस्ते ड्रोन्स भेजता है इसीलिए उनको मार गिराने में महंगी मिसाइलें खर्च करना जायज नहीं, यही वो जगह है जहां प्राइवेट कंपनियों का रोल भी अहम हो जाता है।
5: क्या मायने रखते हैं कि आप मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल भारत की तरफ से उन सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए दे रहे हैं?
6: हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे थे। जितने भी फाइटर जेट्स उड़ रहे थे जिन्होंने उस टाइम पे पार्टिसिपेट किया उनमें हमारे डिस्प्ले सिस्टम्स, कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम्स लगे हुए थे, उनको हम ईगल आईज भी बोलते हैं एयरफोर्स की। अच्छा। क्योंकि उनके थ्रू ही आप देख पाते हो कि आपको क्या करना है, क्योंकि उसके बिना प्लेन उड़ नहीं सकता, बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन उन डिस्प्लेस पे आती है जो कि कॉकपिट्स में के थ्रू देखी जाती है, तो इसीलिए उनको आंखें भी कहा जाता है, तो ईगल आईज ऑफ द एयरफोर्स। एंड बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए और बहुत ही गर्व की बात है, हम बहुत इस बात से गर्व फील करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स उसमें यूज हो पाए और देश के लिए योगदान।
0: रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की जरूरत हुई तो न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट कंपनियां भी इसमें शामिल हुई। बदलते रक्षा उत्पादन के चलते आधुनिक हथियारों के विकास में अब भारतीय निजी कंपनियां भी उतर रही हैं।
7: हमने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रखी है डीआरडीओ ने, उसमें उसको बोलते हैं हम डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। उससे हम एक लेसर बीम को ड्रोन के अगेंस्ट में शूट करते हैं और उससे एक अटक में पूरा का ड्रोन खत्म हो जाता है। ये क्षमता इस समय डीआरडीओ ने डेवलप की है और ये प्रोडक्शन में है। 5 किलोमीटर दूर तक उड़ता हुआ ड्रोन 3 किलोमीटर की हाइट पे भी अगर है तो हमारा सिस्टम उसको एंगेज कर सकता है। इस क्षमता को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 10 किलोमीटर दूर तक हम ड्रोन को हाइट 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर भी हो तो उसको ख़त्म कर सकें।
0: एंटी ड्रोन सिस्टम एक मल्टी लेयर सेंसर सिस्टम है जो ड्रोन अटैक के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा देती है। इसके 6 मुख्य हिस्से, आरएफ बेस्ड ड्रोन डिटेक्टर, वीडियो बेस्ड ड्रोन आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग, रडार, डेटा फ्यूजन और कमांड सेंटर, ड्रोन आरएफ जैमर, हार्ड किल।
8: सबसे पहले इसको बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्रोन डिटेक्टर, जिसमें कि उसमें ये काबिलियत है कि वो तमाम फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है फ्रॉम 70 मेगाहर्ट्ज टू 12 गीगाहर्ट्ज। आज के तारीख में 12 गीगाहर्ट्ज है, जो हमने पहले सप्लाई किया है वो अप टू 6 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन जो अभी हम सप्लाई कर रहे हैं वो 12 गीगाहर्ट्ज तक ये पकड़ेगा फ्रीक्वेंसी। इसका जो काबिलियत है एक DJI फैंटम ड्रोन जो कि 26 dBm पावर से कम्युनिकेट करता है अपने हैंडलर के साथ, ये उसे 10 किलोमीटर के रेंज पर पकड़ लेता है।
5: अच्छा।
8: उसके अलावा हमारे पास एक्स बैंड डॉपलर इफेक्ट रडार है। ये एक्स बैंड डॉपलर इफेक्ट रडार उसी DJI फैंटम ड्रोन जिसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.02 मीटर स्क्वायर है उसको ये 5 किलोमीटर के रेंज पे पकड़ता है।
5: अच्छा।
8: अगर वो बड़ा ड्रोन है जैसे कि 1 मीटर स्क्वायर तो वो उसे 10 किलोमीटर पे पकड़ेगा। इसके अलावा डिटेक्शन के लिए हमारे पास एक और सिस्टम है जो इधर अभी डिप्लॉयड नहीं है, वो है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिस्टम EOIR ऑब्लिक थर्मल इमेजिंग सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है वो जो ड्रोन का के ऊपर फोकस करके उसको आइडेंटिफाई करता है। ये मेनली हार्ड किल के चाहिए। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास सिस्टम के साथ एक डाटा फ्यूजन एंड कमांड सेंटर होता है जो कंप्यूटर बेस्ड है, उस पर ये तमाम इनपुट्स को वो फ्यूज करके रिजल्ट निकालते हैं कि कौन सा दुश्मन का ड्रोन है। कई किस्म का नॉइस जैसे कि कोई पंछी उड़ रहा वगैरह वो उठाते जो है वो सबको वो आइडेंटिफाई कर लेता कि ये नहीं है। उसमें एक एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम नॉइस को निकालता है और सिर्फ थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है। एक बार थ्रेट आइडेंटिफाई हो जाए तो उसके पास ऑप्शन है सॉफ्ट किल या हार्ड किल। सॉफ्ट किल के लिए हमारे पास जैमर है, उसका ये मॉडल है। जो ये जैमर है ये एक फुल बैंड को जाम करता है, वो बैंड जो कि 70 मेगाहर्ट्ज और 12 गीगाहर्ट्ज के बीच में है। कई बैंड होते हैं, उसमें से एक बैंड को वो जाम करेगा कंप्लीट बैंड।
0: ये भी सच है कि युद्ध में खतरा केवल एक दो ड्रोन का नहीं होता बल्कि दुश्मन स्वॉर्म ड्रोन अटैक करता है, यानी सैकड़ों या हजारों ड्रोन से एक साथ हमला करना।
8: कई ड्रोन होते हैं ऑटोनोमस जिसको जैमिंग से हम नहीं रोक सकते, तो हमारे पास उसके लिए अलग अलग किस्म के हार्ड किल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है कामिकाजी ड्रोन। कामिकाजी ड्रोन जो के जाकर उसके बीच में जो स्वॉर्म ड्रोन आ रहा है उसके बीच में जाकर वो एक्सप्लोड करेगा, या इंटरसेप्टर ड्रोन जो जाकर हिट भी कर सकते हैं। फिर ये माइक्रो मिसाइल जो करंटली अंडर डेवलपमेंट है, ये एक MEK-2 प्रोजेक्ट है, तो इसमें जेन और कई दूसरे कंपनी भी अभी फिलहाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसको हम डेवलप करेंगे। और सबसे जरूरी है हमारा रिमोट कंट्रोल वेपन प्लेटफॉर्म। ये रिमोट कंट्रोल वेपन प्लेटफॉर्म के हमारे पास कई मॉडल है जिसमें कि हम अलग किस्म के वेपन माउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है 12.7 mm हेवी मशीन गन जो माउंट किया गया है, ये रिमोटली कंट्रोल होता है। एंटी ड्रोन सिस्टम से इसको टारगेट का एजिमुथ एलिवेशन रेंज दिया जाता है तो ये उसके ऊपर जाकर डायरेक्ट होता है।
5: मतलब ये पूरा एक सिस्टम है जो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड
8: है, बिल्कुल
5: के बावजूद। मतलब डिप्लॉयमेंट में क्या ये सारी चीजें एक साथ रहती?
8: नहीं, ये सारी चीजें एक साथ रहने की जरूरत नहीं है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम इंक्लूडिंग जैमर वो एक लोकेशन में होंगे। जो हार्ड किल सिस्टम्स हैं वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, अगर इसका 10 किलोमीटर का रेंज है या 8 किलोमीटर आगे लगा सकते हैं।
5: अच्छा, पर ये इंटीग्रेटेड है?
8: ये सब इंटीग्रेटेड होंगे।
5: इन्फॉर्मेशन इसका है, काम
8: इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगा सिक्योर कम्युनिकेशन के थ्रू और इसके पास जाएगा एजिमुथ एलिवेशन रेंज।
0: सरकारी R&D संस्थान तकनीक बना सकते हैं और प्राइवेट कंपनियां उस तकनीक को तेजी से जमीन पर उतार सकती हैं। यही वजह है कि रक्षा के क्षेत्र में आज DRDO, सुरक्षा बल, प्राइवेट कंपनियां और स्टार्टअप्स का गठजोड़ बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।
5: अपनी सरहद में दाखिल होता हुआ दुश्मन का कोई ड्रोन हो, कोई फाइटर जेट हो या फिर कोई मिसाइल हो जिसे इंटरसेप्ट करने की आवश्यकता है, फाइटर जेट्स या मिसाइल्स को मार गिराने का अनुभव जो है वो सीधा युद्ध की भूमि में होता है। तो उसकी प्रैक्टिस कैसे हो, उसका प्रशिक्षण कैसे हो, उसका जवाब होते हैं ये अत्याधुनिक सिम्युलेटर्स।
0: तकनीक तेजी से बदलती है और उससे कदम ताल करने के लिए हमारे सैनिकों का सबसे विश्वस्त साथी होते हैं ऐसे सिम्युलेटर। सिम्युलेटर केवल आक्रमण वाले हथियारों के लिए नहीं बल्कि बचाव वाली प्रणाली के लिए भी होते हैं। दुश्मनों के होश ठिकाने लगाने और भारतीय वायु रक्षा को अभेद्य बनाने के लिए बिना एक भी गोली चलाए असली दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की तकनीक होती है सिम्युलेटर। भयंकर तोपों से लेकर कंधे पर रखकर दागी जाने वाली घातक इग्ला और इग्ला एस मिसाइल सिस्टम तक अब हर हथियार की ट्रेनिंग सिम्युलेटर पर संभव है ताकि रणभूमि में जब भी जरूरत पड़े सैनिक हर दम तैयार हो।
5: सरहद की सुरक्षा अब केवल भूमि तक सीमित नहीं है और न ही थल सेना की भूमिका इन तारों तक सीमित है। खतरा अब आसमानों की ऊंचाइयों से भी आता है और इसीलिए लड़ाई का दायरा बहुत विस्तृत हो चुका है। भारत के पास कई वायु सुरक्षा उपकरण हैं जो अलग अलग प्रणालियों का हिस्सा हैं और उन्हीं में से एक है ये L-70।
9: यह L-70 एयर डिफेंस गन है। इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना लोहा साबित किया है। कुछ समय पहले भारत ने इसको स्वदेशी रूप से तैयार किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस इलाके से गुजरने वाले ड्रोन्स को इफेक्टिवली इंगेज किया है तथा बर्बाद किया है।
5: L-70 एक विश्वस्त एंटी एयरक्राफ्ट गन है जिसका जबरदस्त आधुनिकीकरण हुआ है। इसका उत्पादन अब भारत में होता है। ये अब एक सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें लक्ष्य को ऑटोमेटिक तरीके से हासिल किया जाता है। इसमें लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता है, इसमें डिजिटल डिस्प्ले है, ये रेडार से भी लैस है। सबसे बढ़कर ये युद्ध सिद्ध है। इसकी तीन बातें इसे ऐसे मोर्चों के लिए अहम बनाती हैं। पहला, इसकी मोबिलिटी, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। दूसरा, इसकी रगेडनेस, यानी ये टिकाऊ और मजबूत है। तीसरा, इसका क्विक सेटअप टाइम, यानी इसे बहुत तेजी से इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा सकता है। ये ड्रोन्स के विरुद्ध रोल के लिए तैयार किया गया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने अपनी काबिलियत दिखा दी है। इसका इस्तेमाल ऑप सिंदूर के समय किया हमने?
9: यस मैम।
5: क्या मतलब डे नाइट सब समय ये पूरी तरीके से?
10: जो भारत ने कुछ समय से पहले अपग्रेडिंग किया, इसी कारण से इसको डे नाइट दोनों समय टारगेट का एंगेज करने में मदद मिला।
5: तो एक तरह से ये हमारा स्वदेशी हथियार है।
10: स्वदेशी हथियार।
11: हालांकि हम आपको साथ ही ये भी बता दें कि भारत ने सरहद पर प्रलयंकारी एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं, जो दिन हो या रात हो दुश्मन की हर हरकत नाकाम करने के लिए तत्पर है। न केवल वर्तमान की शक्ति बल्कि निरंतर बदलती तकनीक। दुनिया से अगर भारत कदम ताल आज कर रहा है और एक महाशक्ति के रूप में लगातार अग्रसर है, तो इसके पीछे एक ही नारा है, जय जवान जय विज्ञान। अभी के लिए इतना ही, वंदे मातरम।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जिस प्रकार का भगदड़ मचा और जिस प्रकार के रिएक्शन पूरे देश में आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में आई और सबने कहा कि सोनिया जी स्टॉप नहीं कह रही थी, सोनिया जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगा रही थी। तो सभी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कुर्सी मंगाया जा रहा था, मगर 19 अगस्त 2026 आज से कुछ दिनों पहले CWC के मीटिंग में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पारित किया गया, जो रिजोल्यूशन 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर माह में कलकत्ता में पारित किया था। और वो रिजोल्यूशन था कि हम 6 छंदों के वंदे मातरम को नहीं मानेंगे, हम वंदे मातरम का विभाजन करेंगे, वंदे मातरम को काट छांट करके केवल 2 ही स्टैंजा 2 ही पद वंदे मातरम का गाएंगे। आज पुनः कांग्रेस पार्टी में सोनिया जी और राहुल जी का व्यवहार 15 अगस्त को जो व्यवहार रहा, और उसके बाद CWC में जो रिजोल्यूशन 1937 के रिजोल्यूशन को पुनः पारित किया, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पदाधिकारी बैठक में हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है कि यह जो विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल, कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर बंतर, परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन, 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और JNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी, कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है।
1: क्योंकि हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें? हमारा जो समय खराब हुआ है, जो हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल? हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाए और रिजल्ट प्राप्त हुए जाए हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है, हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।
0: छात्रों का कहना है कि GNM का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा है, तो वहीं BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खिंच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। छात्रों ने बताया कि

0: ग्वालियर में नर्सिंग छात्रों का हल्ला बोल, कटोरा ताल बना नर्सिंग का जंतर मंतर, परीक्षा रिजल्ट और स्कॉलरशिप को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन, 56 कॉलेजों के छात्रों के भविष्य पर सवाल। दिल्ली के बाद अब ग्वालियर में भी नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI के बैनर तले BSc और GNM नर्सिंग के छात्र कटोरा ताल स्थित फ्लैग मार्च पॉइंट पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। छात्रों ने आंदोलन स्थल को नर्सिंग का जंतर मंतर नाम दिया है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में देरी, कथित फर्जी कॉलेजों, कागजों पर फैकल्टी और स्कॉलरशिप अटकने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है।
1: क्योंकि हमारी परीक्षा 3 साल में कंप्लीट करा के हमें डिग्री मिलनी चाहिए थी, जो कि हमें 6 साल होने को कंप्लीट होने को आए, लेकिन हमें कोई डिग्री अभी तक प्राप्त नहीं है और इसके जिम्मेदार हमें आज तक नहीं पता चल रहा है। हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज है, कोई जवाब देने के लिए हमें रेडी नहीं है। यहाँ पे हम क्या करें, हमारा जो समय खराब हुआ है, जो हमें वापस कर सकते हैं हमारे 6 साल। हमारी यही मांग है जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाए और रिजल्ट प्राप्त हुए जाए हम लोगों को। सारे बच्चे परेशान है, या हम ये नहीं कहते, कोई भी बच्चा कहता हम गरीब घर से आए, पैसा हमारा है, हमारा टाइम है, तो हमें अपना हक चाहिए, ये हमारी मांगे हैं।
0: छात्रों का कहना है कि GNM का 3 साल का कोर्स 6 साल में भी पूरा नहीं हो रहा, तो वहीं BSc नर्सिंग का 4 साल का कोर्स 7 साल तक खिंच गया है। इतना समय बीतने के बाद भी डिग्री मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। छात्रों ने बताया कि साल 2020, 2021, 2022 के BSc और 2021-2022 के GNM के एग्जाम और रिजल्ट पिछले 3 साल से पेंडिंग पड़े हैं। इसके अलावा शहर में फर्जी कॉलेजों का बड़ा खेल चल रहा है। एक ही बिल्डिंग में नियमों को ताक पर रखकर 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी सिर्फ कागजों पर दिखाई जा रही है, जबकि हकीकत में मौजूद ही नहीं है। कई छात्रों की स्कॉलरशिप भी कॉलेज की गलती से अटक गई है। छात्रों की मांग है कि जिनके स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ की जाए। छात्रों का कहना है कि मामला सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। छात्रों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहला, सभी लंबित परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी किए जाएं। दूसरा, लंबित परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर शेड्यूल जारी हो। तीसरा, सभी पात्र छात्रों को बिना किसी शर्त के परीक्षा में बैठने दिया जाए, क्योंकि लापरवाही छात्रों की नहीं है। चौथा, कॉलेज की वजह से जिनकी स्कॉलरशिप रुकी है उनकी फीस माफ हो। छात्रों ने कहा कि ये लड़ाई किसी संस्था या व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने शिक्षा अधिकार के लिए। मांगे पूरी होने तक कटोरा ताल फ्लैग पॉइंट पर यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक।

0: बीजेपी की नई टीम के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। पार्टी मुख्यालय में अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। वंदे मातरम पर प्रस्ताव में कांग्रेस की कड़ी निंदा। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या। बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न। जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग पर भड़के अखिलेश, कहा पीडीएस समाज के खिलाफ बीजेपी की साजिश। मंत्री चिराग पासवान बोले रिजर्वेशन खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार। सिलीगुड़ी में गोरखा सांसदों के साथ अमित शाह की मुलाकात। बंगाल के सीएम शुभेंदु भी मौजूद। विकास के रोड मैप पर हुआ मंथन। अमेरिका और कनाडा में तकरार तेज। ट्रंप के टैरिफ लगाने के जवाब में कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स लगाया।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। टीवी स्क्रीन पर तुलसी बनकर घर घर में पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, बल्कि जीत और हार के बीच झूलती सियासत की कहानी है। कभी राहुल गांधी को हराकर अमेठी में जॉइंट किलर बन गई, तो कभी उसी अमेठी में हार कर सत्ता से बाहर हो गई, मंत्री पद गया, विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा, फिर भी स्मृति ईरानी ने हार नहीं मानी और अब बीजेपी ने उन्हें संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर साफ कर दिया कि उनकी सियासी पारी अभी खत्म नहीं हुई है। आज कहानी में बात स्मृति ईरानी के संघर्ष वापसी और नई भूमिका की पूरी दास्तान की।
1: जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, उन लोगों के मध्य में रहकर उनके सम्मान को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ताकि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता ये ना कहे कि अरे इनको तो पैराशूट किया गया है राजनीति में।
2: स्मृति जहाँ पहुँचती है वहाँ पर उनकी जुबान में बात करती है।
3: गुजरात थी, क्या थी, आए थे, कौन कौन थे,
4: ये ऊपर वाला है। यहाँ पे माँ, तीन बेटियाँ, नाना नानी, दो मासियाँ, एक मामा, एक साथ साल बिता दिया।
1: फर्श से अर्श तक और वापस कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ।
2: जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी जैसी एक ताकतवर मजबूत स्पोक्स पर्सन की जरूरत है, जो खास तौर से गांधी परिवार पर सीधा हमला कर सके।
1: तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नियत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफी होते हैं। 1 लाख परिवार ऐसे अमेठी में जिनके सर के ऊपर छत मात्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी सांसद हूं। मैंने वो किया जो शायद मेरी पार्टी में कोई ना कर पाया, जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को हराया। चार में मैं चांदनी चौक का चुनाव हारी थी, तब लोगों को लगा था खत्म। मैंने कहा आज जिन लोगों को ये खुशफहमी हो रही है, क्या पता 20 साल बाद वो फिर आए लौट कर सलाम करने के लिए।
0: स्मृति ईरानी की सियासत में वापसी तो हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर बीजेपी ने उन्हें संगठन में इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी क्यों दी है? क्या पार्टी एक बार फिर स्मृति ईरानी के राजनीतिक अनुभव, उनकी आक्रामक शैली और जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता पर भरोसा जता रही है, या फिर संगठन में उनकी नई भूमिका पीछे बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति है?
1: राज्यसभा के माध्यम से एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया, जिनके बारे में असम की जनता कहती थी कि ना वो आते हैं ना उनके माध्यम से असम का कल्याण होता है।
5: एलडीएफ यूडीएफ दोनों ही फ्लैग बेयरर्स बन चुके हैं इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन के।
6: कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही,
7: ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया।
8: हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए।
9: भ्रष्टाचार में लिप्त केजरीवाल का हारना, ये तो मुझे लगता है कि एक एक्सपेक्टेड आउटकम था।
10: हम भी अमेठी वाले, हम भी जानते हैं कांग्रेस पार्टी गरीब।
9: वो विक्टिम पॉलिटिक्स करेंगे और जनता की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे और जनता को समझ नहीं आएगा, तो मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी।
11: अगर आज जनता आक्रोशित है तो तृणमूल कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है।
12: सियासत की दुनिया की धाकड़ खिलाड़ी, नेता के तौर पर जुझारू, वक्ता के तौर पर बेबाक और तेवर ऐसे कि विरोधियों को जवाब देने पर मजबूर कर दे। स्मृति ईरानी, सवाल उठे, विरोध हुआ, आलोचनाएं हुई, लेकिन स्मृति ईरानी ने हर बार अपनी आवाज बुलंद रखी। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी मुकाबला हो या संसद में विपक्ष के सवालों का सामना, वो बीजेपी की तरफ से लगातार मुखर नजर आईं।
13: साइबर पोर्नोग्राफी से हमने बच्चों को बचाने का प्रयास किया, मोदी सरकार ने इस बिल को दोनों सदनों में पारित किया, तब राहुल जी नहीं बोले थे बच्चों के पक्ष में, नौजवानों के पक्ष में, बच्चों के पक्ष में। तो एक है हेडलाइन चीजें, एक है फोटो अच्छी आनी चाहिए कि मुझे उठाया पुलिस ने, मैं नरेंद्र मोदी के घर के बाहर था, लेकिन क्या हम पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं?
12: अमेठी की जीत ने यह दिखाया कि सियासत में बड़े नाम के सामने जमीन पर की गई मेहनत भी असर छोड़ती।
13: ये तो कब से कह रहे हैं, ये तो कहते थे कि चाय वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये तो डेज की कल्पना नहीं कर रहे थे। और मोदी इज डेज आर ओवर, ये बात तो कांग्रेस पार्टी पिछले 12-13 साल से बोल रही है और नरेंद्र मोदी ने अर्जुना जी बार बार कहा है, मोदी से बैर है लेकिन दुश्मनी देश से मत निकल, मोदी से बैर है तो अपमान वंदे मातरम का मत करो, मोदी से बैर है तो पैरामिलिट्री सर्विसेज का अपमान मत करो, मोदी से बैर है तो दिल्ली पुलिस पर आक्रमण हो इसका समर्थन मत करो, मोदी से बैर है तो जाकर एक यूनिवर्सिटी में भारत के टुकड़े होने का नारा मत दो।
12: सरकार के फैसले का बचाव करना हो, विपक्ष पर पलटवार करना हो या किसी मुद्दे पर बीजेपी का पक्ष जनता के सामने रखना हो, स्मृति ईरानी हर बार आगे खड़ी दिखाई देती है।
1: पाँच साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद 5 साल उनकी सेवा करूंगी, ऐसा आश्वासन भी दिया और वो जानते हैं कि एक बार जबान दी तो जबान रखूंगी।
12: नक्सलवाद पर सवाल हो, जंतर मंतर पर पुलिस के साथ टकराव का मुद्दा हो या विपक्ष का कोई बड़ा हमला, पार्टी की लाइन को सामने रखने में उनका अंदाज हमेशा बेबाक रहा है।
14: खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्होंने कभी अपने लिए राजनीति में कम से कम जगह तलाशने की कोशिश नहीं की, मैंने अपना काम किया और मेरे काम के चलते मुझे सराहना मिली और मेरी जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया। मैंने कभी जाकर अपने बड़ों से नहीं कहा कि अरे मेरे लिए कोई नया स्थान ढूंढो या मेरे लिए कुछ और जगह बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि राजनीति में अगर आज आप पर्सनल एम्बिशन से ना आए और केवल इस भाव से आए कि मुझे जो काम दिया गया है वो मैं करना चाहती हूँ, अगर वो काम मैंने जो मेरा जो दृष्टिकोण है राजनीति की और उससे मेल खाता है तो मुझे वो करना है। आई थिंक आज कम से कम मेरी पार्टी में हमें अपने काम के बलबूते पर आकर हमें अपनी जगह दी जाती है।
12: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद चेहरों में शुमार स्मृति ईरानी ने संगठन से लेकर सरकार तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाली, कभी संसद में, कभी चुनावी मैदान में तो कभी सड़कों पर। बीजेपी के लिए उनकी मौजूदगी लगातार दिखाई दी।
13: तो इन्हीं के सरकार के संरक्षण में यहाँ दिल्ली में यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया गया, तो अगर ये कहते हैं दिमागी नक्सल है तो मैं उसको काउंटर नहीं करूंगी। इन्होंने तो जश्न मनाया ना जो पैरामिलिट्री, आपको याद होगा, आप तो तब थी पत्रकार, तो अगर ये स्वीकार करते हैं कि ये है तो क्या मैं मना कर सकती हूँ? प्रधानमंत्री ने तो किसी विशेष का नाम नहीं लिया, कहा जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जो देश की प्रगति की गति को रोकना चाहते हैं, जो संविधान का हनन करते हैं, जो देश की सेना का अपमान करते हैं, यही है ना परिभाषा। अगर इस परिभाषा में चिदंबरम साहब अपने आप को सम्मिलित करना चाहते हैं तो इस स्वतंत्र राष्ट्र में क्या मैं चिदंबरम साहब को रोक सकती हूँ? अगर यही तमगा अरविंद केजरीवाल जी स्वेच्छा से शान से पहनना चाहते हैं तो मैं क्या रोक सकती हूँ? प्रधानमंत्री ने तो इन दोनों का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा देश विरोधी ताकतें, तो आपको अजीब नहीं लगता कि ये दोनों नेता अपने आप को देश विरोधी ताकत मानते हुए डिक्लेयर करते हैं अपने आप को?
12: संघर्ष से पहचान बनी, बेबाकी से आवाज मिली और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता ने सियासत में अलग मुकाम दिया। स्मृति ईरानी की कहानी उस नेता की कहानी है जो सवालों से बचने के बजाय उनका सामना करना पसंद करती है। आज कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्मृति ईरानी की वापसी संगठन में क्यों हुई है, क्या बंगाल चुनाव में मेहनत का इनाम मिला है या फिर यूपी चुनाव में स्मृति ईरानी की भूमिका बड़ी होने वाली है या फिर पंजाब चुनाव के लिए स्मृति ईरानी को चुना गया है। स्मृति ईरानी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। 8 राष्ट्रीय महासचिवों की इस टीम में स्मृति ईरानी इकलौती महिला है, यानी संदेश साफ है। अमेठी की हार के बाद भी बीजेपी के लिए स्मृति ईरानी की राजनीतिक उपयोगिता खत्म नहीं हुई थी। स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस सफर की कहानी है जिसमें एक टीवी कलाकार घर घर पहचानी जाने वाली तुलसी वीरानी बनी और फिर वही चेहरा बीजेपी की फायर ब्रांड नेताओं में शामिल हो गया।
1: राजनीति में मैं आक्रामक क्यों हूँ? तो जब जब असत्य से सामना होता है तो जिनके पास सत्य का प्रमाण होता है उनका आक्रामक होना स्वाभाविक है।
12: कभी राहुल गांधी को अमेठी में हराकर जॉइंट किलर बनी तो कभी खुद अमेठी में हारकर सत्ता से बाहर हो गई। कभी मोदी कैबिनेट की सबसे युवा मंत्रियों में शुमार हुई तो कभी मंत्री पद जाने के बाद फिर टीवी के पर्दे पर लौट आई। और करीब 26 महीने बाद स्मृति ईरानी की एक और वापसी हुई है। इस बार वापसी संसद या सरकार में नहीं बीजेपी के संगठन में हुई है।
2: पिछले कुछ दिनों से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रही। औपचारिक तौर पर नहीं था लेकिन अनौपचारिक तौर पर वो लगातार महिलाओं के लिए और पार्टी के जो और काम है उनको करती रही। अब जब 2029 के चुनाव और उससे पहले 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के आने वाले हैं तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को स्मृति ईरानी जैसी एक ताकतवर मजबूत स्पोक्स पर्सन की जरूरत है जो खास तौर से गांधी परिवार पर सीधा हमला कर सके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जरूरत के तौर पर देखता हूँ मैं स्मृति ईरानी की वापसी।
1: स्पष्ट थी पहले दिन से कि मुझे स्पष्ट रूप से जमीन से लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत करनी है। मैं बहुत ही क्लियर थी अपनी मंशा में कि मैं तुलसी वीरानी का पात्र करती हूँ, इसलिए मुझे आसान सी कोई डगर मिल जाएगी। मैं चाहती थी जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ उन लोगों के मध्य में रहकर उनके सम्मान को प्राप्त करना मेरे लिए बहुत जरूरी था।
12: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, यानी जिस नेता को अमेठी की हार के बाद राजनीतिक हाशिए पर जाने की अटकलों से जोड़ा जा रहा था वही अब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में अहम भूमिका निभाएंगी।
2: खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर ही ये एक बड़ा फेरबदल है। हालांकि ये नए अध्यक्ष नितिन नवीन साहब की नई टीम है और उसमें सबसे पावरफुल महामंत्री के तौर पे स्मृति को देखा जा सकता है और उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2024 के झटके से निकलना भी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार का जो पूरा रायबरेली अमेठी का हिस्सा भी है और महिलाओं का वोटर के लिए भी वो काम में आ सकती हैं, तो दोनों तरह की जिम्मेदारियाँ या दोनों तरह की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर शायद ये फैसला पार्टी ने किया होगा।
15: अमेठी वाला जब रिजल्ट आया उस दिन कुछ आंसू, कुछ
1: बिल्कुल
15: इमोशनल नहीं?
1: मैंने उस दिन, मेरे घर में प्रभु की कृपा से एक छोटा मंदिर है, माँ भगवती की वहाँ पर मूर्ति है, मैं अकेली ही व्यक्ति थी जो उस प्रांगण में मुस्कुरा के माँ को देखकर कह रही थी जो हुआ तूने अच्छा किया, और आसपास के लोगों को लगा कि मुझे सदमा पहुँचा है क्योंकि वो रो रहे थे।
12: स्मृति ईरानी की कहानी में हार और वापसी दोनों साथ साथ चलती रही। अमेठी की हार के बाद ये जरूर लगा था कि उनकी सक्रिय राजनीति का दायरा सीमित हो गया है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें संगठन में जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया है कि पार्टी अब भी उनकी राजनीतिक क्षमता और जनसंपर्क की ताकत पर भरोसा करती है।

0: यानी स्मृति ईरानी की सियासी पारी खत्म नहीं हुई बल्कि एक नए रोल के साथ फिर शुरू हुई है। अब नजर इस बात पर होगी कि संगठन की इस नई जिम्मेदारी में स्मृति ईरानी कितना असर छोड़ती हैं और क्या बीजेपी का ये दांव आने वाले चुनावों में गेम चेंजर साबित होता है।
1: टीवी के जरिए घर घर में लोकप्रिय तुलसी से लेकर बीजेपी की जायंट किलर नेता तक स्मृति ईरानी का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव हारने के बावजूद मोदी कैबिनेट में जगह मिली। 2019 में उसी अमेठी में राहुल गांधी को हराकर इतिहास रचा, लेकिन 2024 में फिर हार का सामना करना पड़ा। तो अब सवाल यह है कि क्या स्मृति ईरानी की नई जिम्मेदारी सिर्फ संगठन तक सीमित है या बीजेपी उन्हें 2029 के लिए बड़ी भूमिका में तैयार कर रही है।
2: मेरे लिए ज्यादा नुकसानदायक यह है कि जिस चीज में मैं बिलीफ रखती हूँ उसके लिए आवाज ना उठा।
3: ना सिर्फ अमेठी की जनता को बल्कि देश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।
4: इंडस्ट्री में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में उत्तीर्ण होना है तो आप गुजरात आए।
5: रेलवे में तो रेलवे का रैक उतरता है खाद का, लेकिन अमेठी के हिस्से में पूरा खाद नहीं आता।
6: मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
7: मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा।
0: 26 मई 2014 रायसीना हिल्स में जैसे जैसे शाम उतर रही थी, स्मृति जुबिन ईरानी की जिंदगी में एक नया सूरज उग रहा था। राजनीति की गलियों में करीब 11 साल का सफर और अब मंजिल थी देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक टीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट। जिस चेहरे को देश ने कभी टीवी स्क्रीन पर तुलसी के किरदार में देखा था, वही स्मृति ईरानी अब देश के लिए नीतियां बनाने वाली टीम का हिस्सा थी। यकीनन उस पल स्मृति ईरानी को अपने संघर्ष का हर वो लम्हा याद आया होगा जब शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो देश की कैबिनेट मंत्री बनेंगी।
8: एक परिवार संभाला, घर घर का हाउसहोल्ड नेम बनी, वहां से पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से वापस टीवी को फिर से टीवी पर जाना, तीन ऐसी बड़ी बातें जो आपकी जिंदगी को डिफाइन करती हूँ।
9: मुझे लगता है कि तीन शब्द अगर मेरे जीवन को डिफाइन करते हो तो एक है संघर्ष, दूसरा है समर्पण और तीसरा है संवाद। संघर्ष जिसका एक शायद आपने छोटा सा अंश देखा, संवाद जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चाहे कितना भी कर्कश हो सत्य, संवाद कभी छूटना नहीं चाहिए। और जहाँ तक समर्पण की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फर्श से अर्श तक और वापस कई उतार चढ़ाव देख चुकी हूँ। जब तक भगवान के प्रति समर्पण की भावना ना हो तब तक तपिश सहने की क्षमता इंसान में होती नहीं है। तो संघर्ष, समर्पण और संवाद, ये तीन।
0: कैबिनेट मंत्री बनने की कहानी आसान नहीं थी। कभी कैमरे के सामने एक्टिंग, कभी चुनावी मैदान, कभी हार और कभी पार्टी संगठन में लगातार खुद को साबित करने की चुनौती। स्मृति ईरानी ने ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया से आगे बढ़कर राजनीति की रपटीली राह पर चलने का फैसला किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके बाद संगठन में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती गई।
10: युद्ध में तो उतर गए, विजय हो इसका आशीर्वाद दीजिए।
11: घर में ये था कि भाई आपको सामाजिक सेवा करनी है तो आप संघ में सेवा दीजिए, राजनीति में जाने की क्या जरूरत है। तो मेरा ये विचार था कि मुझे पॉलिसी निर्धारण करने में भूमिका निभानी है, तो इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी।
0: स्मृति ईरानी को महाराष्ट्र बीजेपी यूथ विंग का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन उसी साल पार्टी ने उन्हें सीधे चुनावी मैदान में भी उतार दिया। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट और सामने थे कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल। मुकाबला आसान नहीं था। स्मृति ईरानी ने पूरी ताकत लगाई लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन ये हार स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर की मंजिल नहीं बनी बल्कि एक नई शुरुआत बन गई, क्योंकि पार्टी ने चुनाव हारने के बावजूद उनकी मेहनत और राजनीतिक सक्रियता को नजरअंदाज नहीं किया। उन्हें बीजेपी की केंद्रीय समिति में जगह मिली और संगठन में उनकी भूमिका आगे बढ़ती गई।
11: मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत कठिन परिश्रम से मैं गुजरी, एक कठिन दौर से गुजरी उस वक्त, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समझौते जो जिनकी अपेक्षा की जाती है एक पॉलिटिशियन से, वो मैंने समझौते नहीं किए। हार गई, लेकिन हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। जब बॉम्बे पहली बार आई थी तब भी मेरे हाथ में क्या था।
0: ये वो दौर था जब बीजेपी खुद एक बदलाव के दौर से गुजर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूर हो रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी के दौर के बाद पार्टी में नई पीढ़ी के नेताओं का उभार शुरू हो चुका था और स्मृति ईरानी इसी नई पीढ़ी के तेज तर्रार चेहरों में अपनी जगह बनाती जा रही थी।
11: कहीं ना कहीं मेरे संस्कार मिलते थे
12: क्या?
11: कहीं ना कहीं मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का काम, उनकी हिस्ट्री ने प्रभावित किया। मेरे साथ आज तक बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता काम कर चुके हैं, वो भी खासकर मेरे गाँव में, मैंने उनमें एक कहीं ना कहीं निष्ठा देखी है, लालच नहीं देखा कुछ पाने का।
0: युवा चेहरा, तेज तर्रार अंदाज, बेबाक भाषण और टीवी के जरिए लोगों के बीच पहले से बनी पहचान, स्मृति ईरानी की राजनीतिक पूंजी लगातार बढ़ रही थी। साल 2010 बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी और उसी साल उन्हें बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। 2010 में बीजेपी राष्ट्रीय सचिव, 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2011 में गुजरात से राज्यसभा सांसद। साल 2011 में स्मृति ईरानी राज्यसभा पहुंची।
13: ऐसी कामकाजी महिला जो अपने बच्चों को बंबई में छोड़कर दिल्ली आती है, जब तक मैं हाउस से बाहर जाकर फोन कर पूछ नहीं लेती बेटी घर है कि नहीं, तब तक मैं भी विचलित होकर यहाँ बैठती हूँ। वो माताएं भी विचलित होकर घर बैठती हैं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन जिन्हें चिंता है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से सुरक्षित घर लौटेगी या नहीं।
0: अब वो सिर्फ बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता नहीं थी बल्कि संसद के भीतर भी अपनी आवाज बुलंद कर रही थी। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक मुद्दों पर उनका आक्रामक अंदाज लगातार सुर्खियां बटोर रहा था।
14: शिक्षा के जितने भी आयाम, जितनी भी संस्थाने, जितने भी कदम भारत सरकार उठाएगी, ये मेरा दायित्व है कि वो सारे कदम संविधान की मर्यादा में ही उठाए जाएं। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। 18 से लेकर 2020 तक हमारे देश में बाल विवाह रोकने की संख्या 20 लाख विवाह रोके गए हैं, ऐसे रिसर्च हमको बतलाती है।
15: बोलो भारत माता की।
0: फिर आया साल 2014। बीजेपी की राजनीति में बड़ा बदलाव हो चुका था। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। उत्तर प्रदेश में पार्टी के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक थी अमेठी। कांग्रेस का मजबूत किला और सामने थे राहुल गांधी, और बीजेपी ने इस मुकाबले के लिए स्मृति ईरानी को चुना था। स्मृति ईरानी ने अमेठी को सिर्फ चुनावी सीट नहीं माना, उन्होंने इसे अपनी राजनीतिक चुनौती बना लिया। दिन रात प्रचार, गांव-गांव संपर्क, लोगों के बीच पहुंच और राहुल गांधी के खिलाफ लगातार आक्रामक अभियान।
16: लोगों को ये कहीं ना कहीं शक था, संदेह था कि ये गांधी परिवार का गढ़ है, जब प्रत्याशी के रूप में मेरी घोषणा हुई तब कुछ पत्रकारों ने मुझसे कहा कि आपने राहुल को ललकारा है। मैंने कहा नहीं भैया, अमेठी की जनता ने हमें पुकारा है।
0: अमेठी का मुकाबला पूरे देश की नजरों में था। नरेंद्र मोदी खुद अमेठी पहुंचे और स्मृति ईरानी के लिए प्रचार किया।
12: हम बदलाव नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं। और मेरा भरोसा मेरी एक छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, हर एक को अपनी बहन पे भरोसा होगा, मुझे इस मेरी बहन पे ज्यादा भरोसा।
0: स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, लेकिन इस हार में भी एक जीत छिपी थी। उन्होंने राहुल गांधी की जीत का अंतर काफी कम कर दिया था। 2009 में करीब 3,70,000 वोटों का अंतर था, जो 2014 में घटकर करीब 1,08,000 रह गया। और शायद बीजेपी ने इसी प्रदर्शन में आगे की कहानी पढ़ ली थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद 26 मई 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार में स्मृति ईरानी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली।
7: मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी।
0: यानी जिस महिला ने 2004 में कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव हारकर शुरुआत की थी, जिसने 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा और हार का सामना किया, वही स्मृति ईरानी अब भारत सरकार की कैबिनेट में बैठ रही थी।
11: सुबह फोन आया कि आपको शपथ लेनी है।
8: 2014 26 जून आपको सुबह में कॉल आया?
11: हाँ, मेरे को उससे पहले जानकारी भी नहीं थी। नहीं, और तब मुझे कहा गया, तो मैं परिवार के साथ थी। हमने कहा चलो गाड़ी निकालो, ड्राइव डाउन करो फटाफट। मैं ये सोची थी एक ही व्यक्ति है जो टाइम पे नहीं पहुँचे, और क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी इसलिए कपड़े वपड़े लो, बाकी लोग तो तैयारी करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो अगर आप देखें, मैंने एक साड़ी पहन रखी जिसमें कमल का फूल है, वो किसी कार्यकर्ता की धर्मपत्नी ने दी थी प्रचार के लिए। और जब ड्राइव डाउन कर रही थी शिमला से, तो पीयूष को मैंने फोन किया था, पीयूष गोयल को। पीयूष भाई देखो ना, एक बेटी को साथ आना है और हमारे पास पास नहीं है, तो आप मुझे एक पास देंगे क्या कि मेरा परिवार आके देख सके? तो उन्होंने कहा अरे तुम कैबिनेट मिनिस्टर बनने, तब पता चला मुझे
8: कि क्या चीज़ होती
11: है। तब भी नहीं पता था कि मुझे कैबिनेट में ला रहे हैं। तो पीयूष भाई ने नहीं बोला होता तो वहाँ राष्ट्रपति भवन पहुँच के सीट देख के पता चलता।
0: टीवी की दुनिया की तुलसी अब सत्ता के गलियारों की स्मृति ईरानी बन चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि अगले 5 साल में स्मृति ईरानी को सिर्फ मंत्रालय नहीं संभालना था, उन्हें अपनी राजनीतिक पहचान भी लगातार मजबूत करनी थी।
1: वक्त ही से ब्रेक का उछला है। ब्रेक के बाद देखिए आखिर स्मृति ईरानी ने दिल्ली से मुंबई कैसे सफर तय किया।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: स्मृति ईरानी की कहानी सिर्फ चुनावी नतीजों की कहानी नहीं है, बल्कि लगातार खुद को साबित करने की भी कहानी है। कभी सत्ता के केंद्र में रही, फिर चुनावी झटके ने उनकी राह जरूर बदली, लेकिन सक्रियता बनी रही। अलग अलग राज्यों में पार्टी के लिए मैदान संभालने से लेकर नए सियासी समीकरणों में अपनी जगह बनाने तक उन्होंने लगातार काम किया।
2: स्मृति ईरानी की सियासत की एक बड़ी ताकत है संवाद की कला। वो सिर्फ भाषण नहीं देती, जनता की भाषा में जनता से जुड़ना जानती है। हिंदी पर मजबूत पकड़,
3: ये जय श्री राम का नारा है, जय घोष है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी है ममता जी।
2: अंग्रेजी में बेहतरीन संवाद,
3: इक्वल राइट्स टू मेन एंड वुमेन टू एंटर इनटू मैट्रिमोनी।
2: संस्कृत का भी सदा हुआ ज्ञान,
4: एतो तताच एतादृशः ज्ञान वृद्धाः विद्वांसः भारतस्य ज्ञान निध्ययः सन्ति।
2: और जरूरत के मुताबिक बांग्ला और पंजाबी में भी लोगों से सीधे करें।
3: ए बाइडेन लोग के तुम्हें बांग्ला बोलते पड़ो, आमी वो बोलते पड़ी, हमारो दादू पड़ी एक है।
5: मेरी बंगाली सुन ली है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं मल्होत्रा हूँ देती यहाँ, तो चिंता ना करो।
2: यानी स्मृति ईरानी सिर्फ मुद्दों से नहीं, भाषा और संवाद के जरिए भी सियासत साधने का हुनर रखती हैं। स्मृति ईरानी का सियासी सफर एक ऐसा राजनीतिक सफर है जिसमें सत्ता का शिखर भी आया, विवादों का दौर भी आया, चुनावी जीत का जश्न भी आया और हार की कसक भी।
5: मेरे नाना बंगाली हैं, मेरी नानी जब भारत का विभाजन हुआ तब वो असम में आके धुबड़ी में बसी। मेरे दादाजी जो जब भारत का विभाजन हुआ तो वो आकर दिल्ली में बसे, फिर गए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में रहे। मेरी दादी महाराष्ट्र से हैं, मेरे पति गुजराती हैं, पारसी हैं, तो
6: कोई कोना छोड़ा नहीं है इन्होंने भारत का।
5: अभी तक तो कोई कोना छूटा नहीं है, क्योंकि एक बहू हमारे खानदान में दक्षिण भारत की भी है।
2: 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी और स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली थी। टीवी की दुनिया से राजनीति में आई स्मृति ईरानी देश की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन मंत्री पद के साथ ही विवादों ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। सबसे पहला बड़ा विवाद उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर हुआ। उनके 2004 और 2014 के चुनावी हलफनामों में शैक्षणिक योग्यता को लेकर अलग अलग जानकारी का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। स्मृति ईरानी ने इन आरोपों का जवाब दिया, लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आया जर्मन बनाम संस्कृत का विवाद। केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के तौर पर जर्मन की जगह संस्कृत को बढ़ावा देने के फैसले को लेकर स्मृति ईरानी विपक्ष के निशाने पर आ गई।
7: मैं बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग को उपलब्ध कराया है। साथ ही जो भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट पढ़ना चाहें, जो भी, मैं इसमें संस्कृत का मात्र उल्लेख नहीं कर रही हूँ, जो भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। उनके लिए अगर मान लीजिए एक छात्र को तमिल पढ़ना है तो उस एक छात्र के लिए एक टीचर उपलब्ध कराया जाएगा। जर्मन एक फॉरेन लैंग्वेज है जो फॉरेन लैंग्वेज के भांति पढ़ाई जा रही है, और मुझे लगता है कि जानबूझकर कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट की जा रही है क्योंकि मैंने प्रेस ब्रीफिंग में लगभग 4 दिन पहले लिखित रूप में सारे बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया था।
2: इसके बाद रोहित वेमुला का मामला सामने आया। वेमुला की आत्महत्या ने देश की राजनीति को हिला दिया। विपक्ष ने स्मृति ईरानी के मंत्रालय पर सवाल उठाए और फिर सामने आया जेएनयू का विवाद। जेएनयू में लगे कथित देश विरोधी नारों के मुद्दे पर स्मृति ईरानी विपक्ष के सीधे निशाने पर थीं, लेकिन स्मृति ईरानी का अंदाज भी बदला नहीं। वो लगातार जवाब देती रही, पलटवार करती रही और अपनी राजनीतिक पहचान को और मजबूत करती गई।
5: आपने जब तय कर लिया जिंदगी में तो हर चीज की कीमत होती है। इसकी कीमत ये कि आप पर हर दिन तोहमत लगाई जाएगी, इसकी कीमत ये कि आपको हर दिन लांछित किया जाएगा। लेकिन अगर आप अडिग हैं कि मुझे अपने देश में इतिहास बदलना है, अपने देश में कुछ लोगों का स्वभाव बदलना है, अपने देश में कुछ ऐसे मोड़ हैं जहां पर आकर कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो आपको इन चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा।
2: स्मृति ईरानी के राजनीतिक सफर में विवाद आते रहे। हर विवाद के बाद उनकी राजनीतिक मौजूदगी और ज्यादा दिखाई देने लगी। देश का कोई कोना है जहां चुनाव, वहां स्मृति ईरानी, क्योंकि स्मृति ईरानी कई भाषाओं में जनता को जोड़ने की कला जानती है।
5: ये संकेत है वाहेगुरु का कि इस बार मैं पंजाबी च चुनाव च गल करांगी, तुसी चिंता नहीं करो।
2: विवाद बढ़ा तो 2016 में उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हटाकर कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन विवाद साथ साथ चलते रहे। यानी 2014 से 2019 तक मंत्रालय बदले, विवाद बदले, लेकिन स्मृति ईरानी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। और फिर आया साल 2019, अमेठी। वही अमेठी जहां 2014 में वो राहुल गांधी से हार गई थी, लेकिन हार के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी को छोड़ा नहीं। पांच साल तक लगातार अमेठी में सक्रिय रही, गांव गांव गई, प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क किया।
8: पूरा परिवार एकजुट होकर बैठता है तो निर्णय लेता है कि दीदी गांव गांव जाएंगे।
2: महिलाओं के बीच पहुंची और एक एक वोट को अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश की। चुनाव के वक्त एक दिन में छोटी बड़ी 15-15 जनसभाएं तक की। 2014 में जहां स्मृति ईरानी को करीब 3 लाख वोट मिले थे, वहीं 2019 में उनका वोट बढ़कर करीब 4,69,000 पहुंच गया। और सबसे बड़ा उलटफेर ये हुआ कि राहुल गांधी की हार हो गई। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया।
5: तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नियत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफी होते हैं। तो इसीलिए जब मैं 19 में वहां से सांसद बनी, 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के घर बनवाए, 3.5 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री की योजना से जुड़वाया, पहला अमेठी का 200 बेड का अस्पताल बनवाया, अमेठी का पहला मेडिकल कॉलेज बनवाया, अमेठी की पहली पुलिस लाइन बनवाई।
2: जिस अमेठी को गांधी परिवार का भेद किला माना जाता था, उसी अमेठी में स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया और इसी जीत ने उन्हें बीजेपी का जॉइंट किलर बना दिया। 2019 के बाद उनका राजनीतिक कद और बढ़ा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली।
9: तक बच्चों और महिलाओं की बात है, अगर आप बजट की डिटेल्स पढ़ें, अक्रॉस मिनिस्ट्री महिलाओं पे और बच्चों पे जो वेलफेयर स्पेंड है सरकार का, वो आपको बढ़ता दिखेगा।
10: नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण योजना।
2: लेकिन 5 साल बाद जब चुनाव का वक्त आया तो इस बार अमेठी का मुकाबला आसान लग रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेठी की जमीन छोड़ दी थी। इस बार मुकाबला राहुल गांधी से नहीं था, कांग्रेस ने केएल शर्मा को मैदान में उतारा और नतीजा ये हुआ कि स्मृति ईरानी हार गई।
5: वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्वभाव का प्रतीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने ये चिंता की कि तुमने इतना काम किया और हार गई। लोग अगर ये लांछन लगाते कि भाई तूने कुछ नहीं किया इसलिए हरा दिया, तो मुझे ज्यादा दुख होता। तो आज मैं उस दुख के दायरे में नहीं हूँ, आज मुझे सुख की अनुभूति है कि आज 1 लाख परिवार ऐसे अमेठी में जिनके सर के ऊपर छत मात्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी सांसद थी।
2: अमेठी में करीब 1,67,000 वोटों से हार के साथ स्मृति ईरानी की सत्ता से विदाई भी हो गई, मंत्री पद भी गया और सरकार से दूरी बन गई। और राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे, क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक सितारा अब ढलने लगा है? लेकिन स्मृति ईरानी ने राजनीति नहीं छोड़ी। पहले बिहार चुनाव में नजर आई और फिर बंगाल चुनाव में। बंगाल में रैलियां, महिलाओं से संवाद और सबसे खास बांग्ला भाषा में लोगों से सीधा कनेक्ट।
11: के बोले छे মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চিত করবে কে বাইরের লোক কে বাড়ির কে বলেছে
12: ऐसा यार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं आप लोगों।
11: सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री क्यों घुसपैठियों का समर्थन करती हैं? सवाल ये उठता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्यों हिंदुस्तान का जो लीगल वोटर है उसका संरक्षण नहीं चाहती?
2: महिला सुरक्षा से लेकर आरजीकर कांड और ममता बनर्जी सरकार पर हमले तक स्मृति ईरानी ने बंगाल में बीजेपी के लिए आक्रामक प्रचार किया।
11: मैं कभी नहीं भूलूंगी कि एक जुडिशियल ऑफिसर एक महिला फोन कर हाईकोर्ट से अपील कर रही है कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना अगर मुझे कुछ हो गया। ये हालात है पश्चिम बंगाल में और अगर आज जनता आक्रोशित है तो तृणमूल कांग्रेस का डरना स्वाभाविक है।
2: यानी 2024 की हार के बाद जो नेता राजनीतिक नेपथ्य में जाती हुई दिखाई दे रही थी वो 2026 में फिर चुनावी मैदान में नजर आई और अब एक और वापसी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। 8 राष्ट्रीय महासचिवों में वो इकलौती महिला है। बीजेपी ने संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देकर साफ कर दिया कि स्मृति ईरानी की राजनीतिक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
1: स्मृति ईरानी की कहानी में कई ट्विस्ट हैं। उनके बयान और फैसले चर्चाओं में रहते हैं, पर उनकी कहानी एक ऐसे आम हिंदुस्तानी लड़की की कहानी है जिसने सपनों से समझौता नहीं किया, उनके लिए संघर्ष किया।
2: तुलसी, ये वो नाम है जिसने स्मृति ईरानी को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये वो किरदार था जो लोगों की जुबान पर था, जिसका जादू सिर चढ़कर बोलता था।

0: लेकिन यह शोहरत आसान ना थी। ऐसी कामयाबी हासिल करने से पहले स्मृति रानी को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। अपने माँ बाप की ख्वाहिश के खिलाफ वो मुंबई तो आ गई थी, लेकिन उनके पास ना काम था और ना ही पैसे।
1: जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू है थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है हंसी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है।
0: दिल्ली की गलियों में 50 साल पहले एक नन्ही सी लड़की पंख लगाकर दौड़ी थी। द्वारका का इलाका तब दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली से दूर ही था। पंजाबी पिता और बंगाली माँ की बिटिया स्मृति मल्होत्रा। स्मृति दिल्ली के इस होली चाइल्ड ऑक्सिलियम में पढ़ा करती थी। खेल में अच्छी थी और वो स्कूल की स्पोर्ट्स कैप्टन भी थी। इस स्कूल में उन्होंने 12वीं तक शिक्षा हासिल की।
2: वहाँ पे कुछ स्वयंसेवकों द्वारा एक छोटा सा स्कूल था। हाँ। टेंट वाला, वहाँ पढ़ती थी।
3: अच्छा।
2: सामने एक कॉन्वेंट स्कूल होता था, पक्की दीवार वाला।
3: हाँ।
2: और मेरी बड़ी इच्छा थी कि वहाँ पढ़ूं
3: कॉन्वेंट स्कूल,
2: लेकिन माँ ने कहा कि पैसे नहीं थे। तो माताजी जो है ताज मानसिंह, जो दिल्ली में है, वहाँ हाउसकीपर का काम करती थी। तो ताज में एक टाटा ग्रुप ने सुविधा दी थी कि जो बच्चे हैं जिन लोगों की नौकरियां हैं टाटा ग्रुप में और विशेषता ताज में, उनके बच्चों की स्कूली फीस अगर बच्चे 60% से फर्स्ट डिविजन लाते थे तो दी जाती थी। मैंने अम्मा से कहा कि भाई अगर मैं फर्स्ट डिविजन लाऊं तो फिर आपको नहीं मिलेगी मेरी फीस। तो उन्होंने कहा लेकिन वहाँ जाके आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो मैं हर दिन जाके स्कूल के बाहर खड़ी रहती थी। तो नंस परेशान हो गई थी, एक दिन कहा कि भाई क्या है हर दिन तुम यहाँ आ जाती हो। मैंने कहा आपके स्कूल में दाखिला कैसे होगा। तो उन्होंने कहा भाई एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लगता है नंस भी मुझे करीबन एक डेढ़ महीना वहाँ देख देख के परेशान थी। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास हुई और फिर छठी कक्षा में वहाँ गई।
0: स्मृति ने परिवार का हाथ पटाने के लिए पढ़ाई छोड़ी। खबरें तो यहाँ तक हैं कि 10वीं के बाद एक ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रमोशन के जरिए वो रोजाना 200 रुपए कमाया करती थी। लेकिन स्मृति कुछ बड़ा करना चाहती थी, कुछ ज्यादा हासिल करना चाहती थी। साधन की कमी थी पर वो चुनौती स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाई और मुंबई चली आई।
4: मेरे पास पैसों की कमी थी तो नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं भी, और पिताजी से लिया हुआ पैसा वो कर्ज चुकाना था उन्हें और अपने लिए एक फ्यूचर बनाना था। और स्ट्रगल के उस दौरान मैंने सोचा कि अब घर बैठे माता पिता से पैसे लेने के बजाय खुद जाकर बाहर कोई नौकरी ढूंढे। एक ही जगह मुझे नौकरी मिली, वो थी मैकडॉनल्ड्स, जहाँ पर मुझे आज भी याद है कि जब मैं गई तो मुझे लगा कि शायद कोई असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होगी। तो उन्होंने मुझे देख कर सिर्फ हाथ में एक झाड़ू थमाया, एक मॉप थमाया और कहा कि यहाँ से शुरुआत होगी।
0: 1998 में स्मृति ने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वो फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन आगे का रास्ता उन्हें कुछ कुछ समझ आने लगा। '98 में गायक मीका के साथ एक म्यूजिक एल्बम बोलियां में भी नजर आई। 2000 में स्मृति को टीवी सीरियल आतिश और हम हैं कल आज और हम में एक्टिंग करने का एक मौका मिला। 2002 में उलाला नाम के एक शो की एंकरिंग का मौका मिला, जहां एकता कपूर से मुलाकात हुई। और उसके बाद एकता कपूर ने स्मृति को क्योंकि सास भी कभी बहू थी में लीड रोल दिया।
2: मुझे रिसेप्शन पे देखा, एकता के साथ वो ऑफिस में बैठे थे। तो उन्होंने कहा ये लड़की जो भी इसको रोको, इसको चेहरा पढ़ते हैं शायद। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की जीवन में बहुत आगे जाएगी। और तब मैं मतलब बेडंगा से जींस फटाफट टी शर्ट झोला लेके कॉन्ट्रैक्ट नौकरी मांगने के लिए आई थी
3: रिसेप्शन पे।
2: हाँ,
3: क्योंकि सास बहू के लिए वो नहीं दे रही थी।
2: मैं किसी और कार्यक्रम घर एक बंदर करके चलता था सोनी टीवी पे, उसमें कोई थर्ड रंग का वो चाहिए था एक्टर, भीड़ भाड़ में खड़ा होने वाला, मैं वो थी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेने आई थी। जब एकता बाहर आई उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैंने कहा हे राम, अभी तो नौकरी मिली थी। ने फिर नया कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि आप ये किरदार करेंगे, आपको पता है मैं इतिहास रचने वाली हूँ।
0: स्मृति रानी ने तुलसी के किरदार के साथ पूरा इंसाफ करते हुए घर घर में अपनी पहचान बना ली थी। तुलसी के रोल के लिए स्मृति रानी को लगातार 5 साल तक बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर का इंडियन टेलीविजन अवार्ड मिला। चार बार इंडियन टेली अवार्ड और 8 बार स्टार परिवार अवार्ड से नवाजा गया।
5: उन्होंने मुझे फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा अगले दिन आ जाना अपना टेस्ट देना। अगले दिन गई तो चौकीदार अंदर घुसने ना दे बिल्डिंग के। तो मैंने कहा भाई साहब मैं एक्टर हूँ, उन्होंने कहा लगता तो है नहीं। फिर जब मैंने कुछ उनसे मिन्नत करके अंदर गई तो एकता कपूर की जो ऑफिस की क्रिएटिव हेड थी उन्होंने मेरा टेस्ट लेने से इनकार कर दिया, कहा आपकी शक्ल वैसी दिखती नहीं है। तो थोड़ा बहुत मिन्नतें हाथ पैर जोड़ते जोड़ते जोड़ते एक्टिंग की एक ऑडिशन दिया जिसमें फेल हो गई। फिर भी एकता अडिग रही कि नहीं तुलसी तो यही है।
0: संघर्ष की ये वो कहानी है जिसमें स्मृति ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई और टीवी इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड, एक नई मिसाल पेश की। लेकिन ये उनके करियर का अंजाम नहीं था, जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। टीवी की चमचमाती जिंदगी से निकलकर सियासत के मैदान में पहुंच गई।
6: फिलहाल कहानी मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने ये पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ and you get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women

0: गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
1: आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर। मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मुलाकात कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न।

0: रिजर्वेशन खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर। ट्रंप के नेले पर कनाडा का तहलका, अमेरिका के टैरिफ लगाने के जवाब में पीएम मार्क कार्ने ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाया टैक्स, 8 सितंबर से होंगे लागू। पीएम मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने ये पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको यह बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
0: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है, आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार हो रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के 54 वाले बयान पर भी हो रहे हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में 54 पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
4: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं।
5: उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
0: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, वे उचित होगा।
6: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे।
0: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है, तो अखिलेश यादव बीजेपी को आरएलडी की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
6: तो चार गुना कितनी हो गई, 30 के चार गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दे पे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
0: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार इसे इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
7: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
6: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
8: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
7: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथेनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
7: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
9: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं, आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थानी पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
10: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे, पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करे।
7: वही भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थायी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
11: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी उसको अस्थायी तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको ये कमरा है इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
7: स्कूलों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर लाखों से भी आई, जहां अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया, वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
12: इन्होंने यहां पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए, नई प्लेट लाकर एक घंटे के लिए ये प्लेटें लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी, जिसकी ये फोटोज है।
7: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है, जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं, नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम, प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में, जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खंभों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहां मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गांव है समर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गाँव में आपके
2: साथ। हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: वो यहाँ रहना चाहते, तो उनको आप लोग ये बिस्किट और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्थाएं सब उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात।
2: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बेटा मुसीबत है, क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: पानी का सर अब बहुत साल बाद तो सोचना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आ गया भीतर घुसा है पानी, अब के देख ले।
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर, जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यही दिक्कत हमका लोग का, ज्यादा दिक्कत है नहीं।
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं। देखा जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ है, अट्ठे यहाँ अट्ठे वहाँ पे, शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है, तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
6: प्रयागराज शहर में भी यही हाल है। गंगा यमुना उफान पर है, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्लों के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फापामाउ में जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नाग वासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां पर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है, ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना?
2: ये जी, पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन के कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटीज के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: अब बात कन्नौज से आए हंगामे की तस्वीर की। कन्नौज में कांवड़ यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा ड्रामा देखने को मिला, जहां डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
4: कन्नौज में कांवड़ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन और कांवड़ियों के बीच डीजे को लेकर विवाद हुआ और फिर हालात हंगामे में तब्दील हो गए। कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया और कांवड़ वापस लौटाने की चेतावनी दी।
5: कांवड़िया के साथ मारपीट की गई, वो भी कोतवाल की मौजूदगी में की।
4: हाई वोल्टेज हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोतवाल को खुलेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा।
6: शपथ के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
7: नहीं, आप सनातनी हैं।
4: उधर एडीएम को भी मामला शांत कराने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़े।
8: बोला बोला
9: तो सामने है,
10: हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं,
9: उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए,
10: हम लोग यहाँ कांवड़ लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है
9: तो उनके खिलाफ।
10: एक मिनट भाई साहब, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवड़ लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवड़ वापस लेंगे।
11: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है,
7: भाई साहब आए थे जूतों से स्वागत
11: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग
4: बहरहाल भारी हंगामे के बाद प्रशासन कांवड़ियों को शांत कराने में कामयाब रहा आज तक भी।
3: बिहार के रोहतास में चेनारी के करमचर डैम में मॉक ड्रिल की गए इसमें पटना एम्स से आए हुए लगभग 17 स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम एनडीआरएफ अग्निशमन विभाग ट्रैफिक पुलिस एचओईसी आपदा प्रबंधन विभाग स्थानीय प्रशासन और वॉलंटियर्स की टीम में शामिल हुए। बड़ा हादसा के समय ग्राउंड जीरो पर फुल स्केल हॉस्पिटल की सर्विस देने के उद्देश्य से ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। लाइफ सेविंग्स ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल का निर्माण जैसी तैयारियों को भी यहां पर परखा गया। ये वो तस्वीरें जब मॉक ड्रिल की गई और जब स्थितियां बिगड़ जाएं तो उस परिस्थितियों में कैसे बचाना है कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है कैसे तमाम चीजों को जो है इमरजेंसी के हिसाब से ठीक रखना है और उन इमरजेंसी के समय में वो काम कैसे करती हैं ये अपने आप को देखना भी है तो और लोगों को भी साथ साथ में जागरूक उन परिस्थितियों में कैसे करना है सब परखा गया देखा गया और इसमें विशेषज्ञों की टीम एनडीआरएफ सब मौजूद रहे।
12: ऑपरेशन इमरजेंसी सेंटर है सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मॉक एक्सरसाइज में ये दिखा रहे हैं कि अगर कुछ फ्यूचर में अगर हुआ डिजास्टर तो क्या गैप है उस गैप एनालिसिस को हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे और इसका जो मुख्य बिंदु है वो भीष्म क्यूब है। भीष्म क्यूब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हम लोगों को मिला हुआ सारे एम्स को उसमें एम्स पटना को भी मिला है तो हम लोग उस भीष्म क्यूब को क्विकली कैसे इंस्टॉल करते हैं विद इन 20-30 मिनट कहीं भी डिजास्टर होता है तो और किस तरह से लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग सर्जरी करके जान बचाते हैं और पैर जो काटना पड़ता है जो खून बहता है उसको रोक करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाते हैं जो डिजास्टर का मेन कंसेप्ट है टू सेव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्स उस कंसेप्ट में जितने स्टेक होल्डर हैं उनका कोऑर्डिनेट करके और इस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं जी।
3: तुर्की की सेना सीरिया में इतनी बड़ी तादाद में तैनात हो चुकी है कि इसराइल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इस खतरे को खत्म करने के लिए उसने सीरिया में घुसकर कार्रवाई शुरू कर दी है और जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है।
13: इसराइल ने खोला जंग का नया मोर्चा। दक्षिणी सीरिया में घुसी इसराइल की फौज तुर्की को लेकर इसराइल और सीरिया आमने सामने। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने हड़कंप मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि तुर्की की यह सेना कई खतरनाक हथियारों के साथ सीरिया में अपना बेस लगातार मजबूत करती जा रही है। तुर्की से सैनिकों की टुकड़ियां सीरिया में भेजी जा रही हैं और इसराइल की सीमा तक सैन्य जमावड़ा हो चुका है। तुर्की से सीरिया जाने वाले सैन्य लाभ लश्कर की इन तस्वीरों की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है लेकिन इतना तय है कि इसराइल की एक और सीमा पर जंग की आहट सुनाई देने लगी है। इधर इसराइल ने भी कमर कस ली है। वो जंग के नए मोर्चे पर अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और इसके लिए उसने अपनी स्क्वाड्रन 190 को सीरिया सीमा के करीब एयरबेस पर तैनात कर दिया है ताकि हमले की सूरत में बिना देर गवाए पलटवार किया जा सके। ये सब कुछ महज अटकलें नहीं है। होती तो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी पुष्टि नहीं की जाती। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इससे पहले कि दुश्मन नुकसान करे इसराइल सावधान है और अपनी सरहदों की सुरक्षा करने में सक्षम भी।
14: When your enemy tells you that he wants to destroy you, you should probably believe him. Prime Minister Netanyahu has also made something else very clear. Israel welcomes a return to the previous status quo. We are not looking for escalation. But neither Turkey nor any other country is going to threaten the state of Israel.
13: सीरियाई टीवी ने दावा किया है कि उसके अबू अल तुहूर एयरबेस के रनवे और एक स्टोरेज सेंटर पर इसराइल की ओर से 8 हवाई हमले किए गए थे, जबकि इसराइल ने सीरिया को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि वो तुर्की के सैनिकों को इस एयरबेस पर तैनात होने की इजाजत दे रहा है और इसका खामियाजा उसे हर हाल में भुगतना पड़ेगा। वैसे इसराइल ने दक्षिणी सीरिया के एक गांव अल बसारी में घुसकर तलाशी अभियान भी चलाया है। उसे शक है कि तुर्की के सैनिकों को इस पूरे इलाके में बसाया जा रहा है। उधर तुर्की ने कहा है कि वो इसराइल के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध करेगा। ईरान, लेबनान और गाजा में इसराइल की फौज पिछले काफी वक्त से युद्ध लड़ रहा है। अब सीरिया के साथ उसका टकराव विनाश का एक और मोर्चा खुलने का संकेत दे रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं, तो रूस के साथ नॉर्थ कोरिया के होने से हमले और विनाशकारी होते जा रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया ने पुतिन को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ गए हैं। अब यह तोहफा अब तक का सबसे जानलेवा तोहफा है। मिसाइलों की इस होड़ में यूक्रेन लगातार पिछड़ता जा रहा है और नतीजा यह है कि उसकी राजधानी पर बमबारी ने कोहराम मचा रखा है।

0: 21 दिन 6 बड़े हमले। इस महीने 50 से ज्यादा लोगों की अगस्त में मौत। इस महीने 80 से ज्यादा लोग घायल। साढ़े चार साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से किम जोंग हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। नॉर्थ कोरिया से विनाशकारी मिसाइलें आ रही हैं। नॉर्थ कोरिया से काम करने वाली ब्रिगेड आ रही है। नॉर्थ कोरिया से खतरनाक हथियार आ रहे हैं। बढ़ रहा है रूस का जोश, उड़ रहे यूक्रेन के होश। यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उनकी जमीन पर मौत का खेल खेल रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी।
1: Ви знаєте, що ми вже знаходили ракети Північної Кореї на території України. Вони вже завдавали удари, використовували це. Сьогодні це вже є визнаний факт. Південна Корея, безумовно, вони переживають. Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни. Буде отримувати ліцензії від Росії. Буде отримувати від них всі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо. І також отримують досвід військовий. Тобто північнокорейський солдат, офіцер тощо. І з цим досвідом, ну, вони точно не для мирних умов цей досвід готують. Тому Південна Корея повинна, на мій погляд, більш мати більш тісне співробітництво з Україною.
0: Україн ки хуфія агенцію ке таза хуласе ке мутабик, Рус ке пас Норд Корея ки KN-23 ор KN-24 балістик місайл то пехле се ті. Аб KN-30 жесі винашкарі місайл бі мил гаї хай. Норд Корея се Рус ко лагатар мил рахе хатьяр Україн ки замін пар пехер барпа рахе хай. पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से नहीं लड़ सकता। ऊपर से नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक पे दम कर रखा है। एंटी मिसाइल सिस्टम उसके पास है नहीं। पैट्रियट मिसाइलें वो कब से मांग रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें मिली नहीं है। गुरुवार की रात को भी उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए बल्कि वो इसे खरीदने के लिए तैयार हैं।
2: На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для патріотів – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо...
0: ये भीषण जंग कब रुकेगी किसी को नहीं पता। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन रिहायशी इलाकों पर तेज हो रहे हमले बेकसूरों की जान ले रहे हैं। अब दोनों ही देश सैन्य ठिकानों के साथ साथ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इमारतों पर बमबारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से नॉर्थ कोरिया के हथियारों की एंट्री ने जंग को और विनाशकारी बना दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: अब आती ईरान और अमेरिका के महायुद्ध की, जिसमें कहने को तो सीजफायर चल रहा है लेकिन होर्मुज को लेकर टेंशन लगातार बढ़ रही है। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज पर अमेरिका का हक जताने का मिशन शुरू कर दिया है तो ईरान ने भी दो टूक कह दिया कि इस पर हमारा कंट्रोल था, हमारा कंट्रोल है और रहेगा।
0: अमेरिका ईरान के बीच धमकियों वाले बयान, हुर्मुज को लेकर और बढ़ा घमासान, सेनाएं तैयार, महायुद्ध फिर छेड़ने के आसार। महीनों से जिन दो मुद्दों को लेकर अमेरिका और ईरान डील नहीं कर पा रहे हैं उनको लेकर तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। परमाणु मसले से पहले हॉर्मुज का हल निकालने की तमाम कोशिशों पर अब पानी फिरता दिख रहा है। न तो अमेरिका हॉर्मुज के समंदर से नाकेबंदी हटाने के लिए तैयार है और न ही ईरान जहाजों की आवाजाही पर किसी भी तरह से अपना नियंत्रण कम होने देना चाहता है। इस तनातनी की आग में घी डालने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने जिसमें हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कह दी गई थी। एक बार फिर हॉर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल की बात कहते हुए ट्रंप ने ईरान के सिर ही डील न होने देने का ठीकरा फोड़ दिया है।
4: They are not paying their soldiers, they're not paying their police, they have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens, and we have total control, as you know, of the border. We have total control, if you look at the blockade, we have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal. But they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah.
0: बयानों की इस जंग में पीछे हटने के लिए ईरान भी तैयार नहीं है। पहले उसने ट्रंप के हॉर्मुज वाले बयान पर दो टूक कह दिया था कि सोशल मीडिया पर लिखने या फिर चुनावी भाषण के जरिए ट्रंप का ये सपना पूरा नहीं हो सकता। अब उसके कमांडर अमेरिका को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं, ऐसा सबक कि इतिहास याद रखेगा। ईरान के नेवी कमांडर शहराम ईरानी ने कहा कि हम दुश्मन को देश की सरहदों को पार नहीं करने देंगे। आज तक ईरान की सशस्त्र सेनाओं की सतर्कता और तैयारी की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। हमारी जिम्मेदारियों में से एक ये है कि हम दुश्मन को ईरान की पवित्र जमीन के करीब आने से रोकें। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सशस्त्र सेनाओं की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज ईरानी राष्ट्र के बेटे समुद्र में मजबूती से डटे हुए हैं और दुश्मन को एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ईरानी कमांडर के ये सुर ऐसे ही तल्ख नहीं हुए हैं। ये जवाब है अमेरिका के उस वित्त मंत्रालय को जिसने ईरान पर इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका और ईरान के बीच अब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही टकराव नहीं है बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी ये तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ इतिहास की सबसे कड़ी पाबंदियां लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका तेहरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश करेगा और ईरान की सरकार पर दबाव बढ़ाएगा। बेसेंट ने संकेत दिया कि सोमवार को होने वाली एक बैठक में ईरान के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जाएगी। पिछले 5 महीनों के दौरान अमेरिका ईरान युद्ध ने सैन्य मोर्चे पर तो जो नुकसान किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर ईरान के साथ साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है। तेल के खेल से इसकी भरपाई करने की कोशिशें भी अभी तक नाकाम ही साबित हुई हैं। इन हालात में आने वाले दिनों में हमलों की एक और विनाशकारी लहर देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
3: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी हो रही है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
1: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में चवन्नी पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाए, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
2: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम भर रहे हैं।
3: उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोकदल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
0: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, वे उचित होगा।
4: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो BJP को घेरें।
0: BJP भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है तो अखिलेश यादव BJP को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
4: तो चार गुना कितनी हो गई, 30 के 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दे गए तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
0: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो।

0: मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने ये पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको यह बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होती है। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। समबडी विल से आवर इकोनॉमी, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार हो रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन बोल चाल वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
0: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के 54 वाले बयान पर भी हो रही है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में 54 पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।

0: समाज को एबीसीडी सिखाने का दम भर रहे हैं।
1: उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोकदल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
2: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अतिशर्मनाक है, तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, तो उचित होगा।
3: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है, और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरें।
2: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है, तो अखिलेश यादव बीजेपी को आरएलडी की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
3: तो चार गुना कितनी हो गई, 30 के 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें, और अगर 120 सीट नहीं दे गए तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
2: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार इसे इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
4: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
3: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी, और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
5: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
4: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथेनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की

0: भर्ती में मिलों में चीनी स्टॉक की जांच कर रही हैं। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
0: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
2: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं। आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
3: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे, पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
0: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थायी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
4: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी, उसको अस्थायी तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको, ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
0: स्कूलों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर नागपुर से भी आई, जहाँ अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया, वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
5: इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए,
6: नई प्लेट लाकर, एक घंटे के लिए ये प्लेटें लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी, जिसकी ये फोटोज है।
0: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है, जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम। प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा, यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं, और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में, जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खम्भों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहाँ नाव चल रही है वहाँ जमीन थी और अब यहाँ मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है समर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके हिसाब से?
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहां पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: मतलब वो यहां रहने तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह बांट
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं पूरे आपके क्षेत्र की बात?
2: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद तो सोचा ना चढ़ी पानी तो कहूँ गया नहीं तो आएगा भीतर घुसा है पानी अब देख ले।
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर कि जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में है, धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यही दिक्कत हमका लोग का, ज्यादा दिक्कत है नहीं।
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर? बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाया, जरा छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं देखा, जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ है, यहाँ अट्टे वहाँ पे शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है, तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
6: प्रयागराज शहर में भी यही हाल है। गंगा यमुना उफान पर है, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा मामुआ जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नागवासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है? ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना।
2: ये जी पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन के कांवरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटी के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुंबद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: अब आज कन्नौज से आए हंगामे की तस्वीर की। कन्नौज में कांवड़ यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा ड्रामा देखने को मिला, जहां डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
4: कन्नौज में कांवड़ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन और कांवड़ियों के बीच डीजे को लेकर विवाद हुआ और फिर हालात हंगामे में तब्दील हो गए। कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया और कांवड़ वापस लौट आने की चेतावनी दी।
5: कांवड़िया के साथ मारपीट की गई, वो भी कोतवाल की मौजूदगी में की।
4: हाई वोल्टेज हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोतवाल को खुलेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा।
6: सबक के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूं, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुनिए और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
7: आप सनातनी।
4: उधर एडीएम को भी मामला शांत कराने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़े।
8: बोला बोला वो
9: सामने है,
10: हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं।
9: उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए,
10: हम लोग यहाँ कांवर लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है
9: तो उनके खिलाफ कार्रवाई।
10: मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवर लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवर लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवर वापस
11: नहीं। हमने अपना पूरा स्वागत रखा है
10: वहाँ का, भाई साहब ऐसे जूतों में स्वागत।
7: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग
4: बहरहाल भारी हंगामे के बाद प्रशासन कांवड़ियों को शांत कराने में कामयाब रहा आज तक भी।
3: बिहार के रोहतास में चेनारी के करमचर डैम में मॉक ड्रिल की गई। इसमें पटना एम्स से आए हुए लगभग 70 स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम, एनडीआरएफ, अग्निशमन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, एचओईसी, आपदा प्रबंधन विभाग, स्थानीय प्रशासन और वॉलंटियर्स की टीमें शामिल हुई। बड़ा हादसा के समय ग्राउंड जीरो पर फुल स्केल हॉस्पिटल की सर्विस देने के उद्देश्य से ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। लाइफ सेविंग्स ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास, पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल का निर्माण जैसी तैयारियों को भी यहां पर परखा गया। ये वो तस्वीरें जब मॉक ड्रिल की गई और जब स्थितियां बिगड़ जाएं तो उस परिस्थितियों में कैसे बचाना है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कैसे तमाम चीजों को जो है इमरजेंसी के हिसाब से ठीक रखना है और उन इमरजेंसी के समय में वो काम कैसे करती हैं, ये अपने आप को देखना भी है तो और लोगों को भी साथ साथ में जागरूक उन परिस्थितियों में कैसे करना है, ये सब परखा गया, देखा गया और इसमें विशेषज्ञों की टीम, एनडीआरएफ सब मौजूद रहे।
11: ऑपरेशन इमरजेंसी सेंटर है, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मॉक एक्सरसाइज में ये दिखा रहे हैं कि अगर कुछ फ्यूचर में अगर हुआ डिजास्टर तो क्या गैप है, उस गैप एनालिसिस को हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। और इसका जो मुख्य बिंदु है वो भीष्म क्यूब है। भीष्म क्यूब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हम लोगों को मिला हुआ है, सारे एम्स को, उसमें एम्स पटना को भी मिला है। तो हम लोग उस भीष्म क्यूब को क्विकली कैसे इंस्टॉल करते हैं विद इन 20-30 मिनट कहीं भी डिजास्टर होता है तो, और किस तरह से लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग सर्जरी करके जान बचाते हैं और पैर जो काटना पड़ता है, जो खून बहता है उसको रोक करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाते हैं, जो डिजास्टर का मेन कंसेप्ट है टू सेव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्स, उस कंसेप्ट में जितने स्टेक होल्डर हैं उनका कोऑर्डिनेट करके और इस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं जी।
3: तुर्की की सेना सीरिया में इतनी बड़ी तादाद में तैनात हो चुकी है कि इजराइल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। इस खतरे को खत्म करने के लिए उसने सीरिया में घुसकर कार्रवाई शुरू कर दी है और जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है।
12: इसराइल ने खोला जंग का नया मोर्चा। दक्षिणी सीरिया में घुसी इसराइल की फौज, तुर्की को लेकर इसराइल और सीरिया आमने सामने। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों ने हड़कंप मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि तुर्की की ये सेना कई खतरनाक हथियारों के साथ सीरिया में अपना बेस लगातार मजबूत करती जा रही है। तुर्की से सैनिकों की टुकड़ियां सीरिया में भेजी जा रही हैं और इसराइल की सीमा तक सैन्य जमावड़ा हो चुका है। तुर्की से सीरिया जाने वाले सैन्य लाभ लश्कर की इन तस्वीरों की पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन इतना तय है कि इसराइल की एक और सीमा पर जंग की आहट सुनाई देने लगी है। इधर इसराइल ने भी कमर कस ली है, वो जंग के नए मोर्चे पर अपनी ताकतवर मौजूदगी दर्ज करा चुकी है और इसके लिए उसने अपनी स्क्वाड्रन 190 को सीरिया सीमा के करीब एयरबेस पर तैनात कर दिया है ताकि हमले की सूरत में बिना देर गवाए पलटवार किया जा सके। ये सब कुछ महज अटकलें नहीं है, होती तो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी पुष्टि नहीं की जाती। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इससे पहले कि दुश्मन नुकसान करे इसराइल सावधान है और अपनी सरहदों की सुरक्षा करने में सक्षम भी।
13: When your enemy tells you that he wants to destroy you, you should probably believe him. Prime Minister Netanyahu has also made something else very clear. Israel welcomes a return to the previous status quo. We are not looking for escalation. But neither Turkey nor any other country is going to threaten the state of Israel.
12: सीरियाई टीवी ने दावा किया है कि उसके अबू अल तुहूर एयरबेस के रनवे और एक स्टोरेज सेंटर पर इसराइल की ओर से 8 हवाई हमले किए गए थे, जबकि इसराइल ने सीरिया को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि वो तुर्की के सैनिकों को इस एयरबेस पर तैनात होने की इजाजत दे रहा है और इसका खामियाजा उसे हर हाल में भुगतना पड़ेगा। वैसे इसराइल ने दक्षिणी सीरिया के एक गांव अल बसारी में घुसकर तलाशी अभियान भी चलाया है। उसे शक है कि तुर्की के सैनिकों को इस पूरे इलाके में बसाया जा रहा है। उधर तुर्की ने कहा है कि वो इसराइल के प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध करेगा। ईरान, लेबनान और गाजा में इसराइल की फौज पिछले काफी वक्त से युद्ध लड़ रहा है। अब सीरिया के साथ उसका टकराव विनाश का एक और मोर्चा खुलने का संकेत दे रहा है। आज तक ब्यूरो।
3: यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं, तो रूस के साथ नॉर्थ कोरिया के होने से हमले और विनाशकारी होते जा रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया ने पुतिन को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ गई है। अब यह तोहफा अब तक का सबसे जानलेवा तोहफा है। मिसाइलों की इस होड़ में यूक्रेन लगातार पिछड़ता जा रहा है और नतीजा यह है कि उसकी राजधानी पर बमबारी ने कोहराम मचा रखा है।
14: इक्कीस दिन, 6 बड़े हमले, इस महीने 50 से ज्यादा लोगों की अगस्त में मौत, इस महीने 80 से ज्यादा लोग घायल। साढ़े चार साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से किम जोंग हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। नॉर्थ कोरिया से विनाशकारी मिसाइलें आ रही हैं, नॉर्थ कोरिया से काम करने वाली ब्रिगेड आ रही है, नॉर्थ कोरिया से खतरनाक हथियार आ रहे हैं। बढ़ रहा है रूस का जोश, उड़ रहे यूक्रेन के होश। यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उनकी जमीन पर मौत का खेल खेल रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी।
15: Ви знаєте, що ми вже знаходили ракети Північної Кореї на території України. Вони вже завдавали удари, використовували це. Сьогодні це вже є визнаний факт. Південна Корея, безумовно, вони переживають. Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримати ліцензії від Росії, буде отримувати від них всі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо і також отримують досвід військовий, тобто північнокорейський солдат, офіцер тощо. І з цим досвідом, ну, вони точно не для мирних умов цей досвід готують. Тому Південна Корея повинна, на мій погляд, більш мати більш тісне співробітництво з Україною.
14: Юкрейн кі хуфія агенціо кі таза хуласе кі мутабик, Рус кі пас Норд Корія кі КН-23 ор КН-24 балістик місайл то пехле се ті. Аб КН-30 жасі винашкарі місайл бі мил гай хай. Норд Корія се Рус ко лагатар мил рахе хатьяр Юкрейн кі замін пар кахер барпа рахе хай. पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से नहीं लड़ सकता, ऊपर से नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक में दम कर रखा है। एंटी मिसाइल सिस्टम उसके पास है नहीं, पैट्रियट मिसाइलें वो कब से मांग रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें मिली नहीं है। गुरुवार की रात को भी उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए बल्कि वो इसे खरीदने के लिए तैयार हैं।
15: На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для патріотів – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо.
14: ये भीषण जंग कब रुकेगी किसी को नहीं पता, इस युद्ध का अंजाम क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन रिहायशी इलाकों पर तेज हो रहे हमले बेकसूरों की जान ले रहे हैं। अब दोनों ही देश सैन्य ठिकानों के साथ साथ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इमारतों पर बमबारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से नॉर्थ कोरिया के हथियारों की एंट्री ने जंग को और विनाशकारी बना दिया है। आज तक ब्यूरो।
3: अब बात ईरान और अमेरिका के महायुद्ध की, जिसमें कहने को तो सीजफायर चल रहा है लेकिन होर्मुज को लेकर टेंशन लगातार बढ़ रही है। एक तरफ ट्रंप ने होर्मुज पर अमेरिका का हक जताने का मिशन शुरू कर दिया है, तो ईरान ने भी दो टू कह दिया कि इस पर हमारा कंट्रोल था, हमारा कंट्रोल है और रहेगा।
14: अमेरिका ईरान के बीच धमकियों वाले बयान, हुर्मुज को लेकर और बढ़ा घमासान, सेनाएं तैयार, महायुद्ध फिर छेड़ने के आसार। महीनों से जिन दो मुद्दों को लेकर अमेरिका और ईरान डील नहीं कर पा रहे हैं उनको लेकर तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। परमाणु मसले से पहले हुर्मुज का हल निकालने की तमाम कोशिशों पर अब पानी फिरता दिख रहा है। न तो अमेरिका हुर्मुज के समंदर से नाकेबंदी हटाने के लिए तैयार है और न ही ईरान जहाजों की आवाजाही पर किसी भी तरह से अपना नियंत्रण कम होने देना चाहता है। इस तनातनी की आग में घी डालने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान ने, जिसमें हुर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कह दी गई थी। एक बार फिर हुर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल की बात कहते हुए ट्रंप ने ईरान के सिर ही डील न होने देने का ठीकरा फोड़ दिया है।
16: No, not at all. It just means that we're seeing what happens. They have no money. They have no navy. They have no air force. They are not paying their soldiers. They're not paying their police. They have 350% inflation. So we're just going to sort of see what happens. And we have total control, as you know, of the border. We have total control. If you look at the blockade, we have total control of that entire region. Having to do with the Strait of Hormuz, and that means well into it, the land areas. So they would love to make a deal, but they're not ready to make the right deal, in my opinion. Yeah.
14: बयानों की इस जंग में पीछे हटने के लिए ईरान भी तैयार नहीं है। पहले उसने ट्रंप के हॉर्मुज वाले बयान पर दो टूक कह दिया था कि सोशल मीडिया पर लिखने या फिर चुनावी भाषण के जरिए ट्रंप का ये सपना पूरा नहीं हो सकता। अब उसके कमांडर अमेरिका को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं, ऐसा सबक कि इतिहास याद रखेगा। ईरान के नेवी कमांडर शहराम ईरानी ने कहा कि हम दुश्मन को देश की सरहदों को पार नहीं करने देंगे। आज तक ईरान की सशस्त्र सेनाओं की सतर्कता और तैयारी की वजह से दुश्मन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। हमारी जिम्मेदारियों में से एक ये है कि हम दुश्मन को ईरान की पवित्र जमीन के करीब आने से रोकें। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें सशस्त्र सेनाओं की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आज ईरानी राष्ट्र के बेटे समुद्र में मजबूती से डटे हुए हैं और दुश्मन को एक भी कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। ईरानी कमांडर के ये सुर ऐसे ही तल्ख नहीं हुए हैं। ये जवाब है अमेरिका के उस वित्त मंत्रालय को, जिसने ईरान पर इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका और ईरान के बीच अब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर ही टकराव नहीं है बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी ये तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ इतिहास की सबसे कड़ी पाबंदियां लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका तेहरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश करेगा और ईरान की सरकार पर दबाव बढ़ाएगा। बेसेंट ने संकेत दिया कि सोमवार को होने वाली एक बैठक में ईरान के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी जाएगी। पिछले 5 महीनों के दौरान अमेरिका ईरान युद्ध ने सैन्य मोर्चे पर तो जो नुकसान किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर ईरान के साथ साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है। तेल के खेल से इसकी भरपाई करने की कोशिशें भी अभी तक नाकाम ही साबित हुई हैं। इन हालात में आने वाले दिनों में हमलों की एक और विनाशकारी लहर देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।
3: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

मुलाकात कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न।

रिजर्वेशन खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर।

0: पर लगाया टैक्स 8 सितंबर से होंगे लागू। यह मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने यह पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगीत साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार हो रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
0: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी हो रहे हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में चवन्नी पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
4: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं।
5: उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
0: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए तो उचित होगा।
6: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरें।
0: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है तो अखिलेश यादव बीजेपी को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
6: तो चार गुना कितनी हो गई, 30 के चार गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें और अगर 120 सीट नहीं दे पे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
0: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं? सरकार इसे इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
7: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
6: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
8: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
7: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथेनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम। प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं, और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में, जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खंभों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहां मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है समर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके
2: साथ। हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहां पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: वो यहां आना चाहते तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं पूरे आपके क्षेत्र की बात,
2: पूरे क्षेत्र हमारे 2 नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: पानी का सर अब बहुत साल बाद तो सोचना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आ गया भीतर घुसा है पानी। अब देख ले
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर, जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में है, धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यही दिक्कत हमका लोग का, ज्यादा दिक्कत है नहीं।
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं। देखा जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़े अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे, शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है, तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
6: प्रयागराज शहर में भी यही हाल है। गंगा यमुना उफान पर है, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा में हुआ जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नागवासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है, ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना?
2: ये जी, पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन की कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटी के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: बात कन्नौज से आए हंगामे की तस्वीर की। कन्नौज में कावड़ यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा ड्रामा देखने को मिला, जहां डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
4: कन्नौज में कावड़ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन और कावड़ियों के बीच डीजे को लेकर विवाद हुआ और फिर हालात हंगामे में तब्दील हो गए। कावड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया और कावड़ वापस लौटाने की चेतावनी दी।
5: कावड़िया के साथ मारपीट की गई, वो भी कोतवाल की मौजूदगी में की।
4: हाई वोल्टेज हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोतवाल को खुलेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा।
6: सबक के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
7: नहीं, आप सनातनी।
4: उधर एडीएम को भी मामला शांत कराने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़े।
8: बोला बोला वो
9: सामने है
10: भाई, हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं,
9: उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए,
10: हम लोग यहां कावर लाए लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है,
9: तो उनके खिलाफ कार्रवाई
10: चाहिए। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहां कावर लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहां कावर लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहां से कावर वापस नहीं।
11: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है,
7: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग
4: बहरहाल भारी हंगामे के बाद प्रशासन कांवड़ियों को शांत कराने में कामयाब रहा आज तक भी।
3: बिहार के रोहतास में चेनारी के करमचर डैम में मॉक ड्रिल की गए। इसमें पटना एम्स से आए हुए लगभग 17 स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम, एनडीआरएफ, अग्निशमन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, एच

0: के उद्देश्य से ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। लाइफ सेविंग्स ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास, पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल का निर्माण जैसी तैयारियों को भी यहां पर परखा गया। ये वो तस्वीरें जब मॉक ड्रिल की गई और जब स्थितियां बिगड़ जाएं तो उस परिस्थितियों में कैसे बचाना है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कैसे तमाम चीजों को जो है इमरजेंसी के हिसाब से ठीक रखना है और उन इमरजेंसी के समय में वो काम कैसे करती हैं, ये अपने आप को देखना भी है तो, और लोगों को भी साथ साथ में जागरूक उन परिस्थितियों में कैसे करना है, सब परखा गया, देखा गया और इसमें विशेषज्ञों की टीम, NDRF सब मौजूद रहे।
1: ऑपरेशन इमरजेंसी सेंटर है, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मॉक एक्सरसाइज में ये दिखा रहे हैं कि अगर कुछ फ्यूचर में अगर हुआ डिजास्टर तो क्या गैप है, उस गैप एनालिसिस को हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। और इसका जो मुख्य बिंदु है वो भीष्म क्यूब है। भीष्म क्यूब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हम लोगों को मिला हुआ है, सारे एम्स को, उसमें एम्स पटना को भी मिला है। तो हम लोग उस भीष्म क्यूब को क्विकली कैसे इंस्टॉल करते हैं विद इन 20-30 मिनट कहीं भी डिजास्टर होता है तो, और किस तरह से लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग सर्जरी करके जान बचाते हैं और पैर जो काटना पड़ता है, जो खून बहता है उसको रोक करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाते हैं, जो डिजास्टर का मेन कंसेप्ट है टू सेव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्स, उस कंसेप्ट में जितने स्टेक होल्डर हैं उनका कोऑर्डिनेट करके और इस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं जी।
0: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फरुण हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

की मुलाकात, कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना, अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या, बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न।

देश मंत्री चिराग पासवान बोले, रिजर्वेशन खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर। ट्रंप के नेले पर कनाडा का तहलका, अमेरिका के टैरिफ लगाने के जवाब में पीएम मार्क कार्ने ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाया टैक्स, 8 सितंबर से होंगे लागू। ये मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने ये पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए

0: एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार उड़े कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है, आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था, उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
0: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी हो रहे हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की टिप्पणी ने यूपी में चवन्नी पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
4: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं।
5: उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
0: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, तो उचित होगा।
6: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे।
0: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है, तो अखिलेश यादव बीजेपी को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
6: तो चार गुना कितनी हो गई, 30 के चार गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें, और अगर 120 सीट नहीं दे पे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
0: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री JP नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद JP नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
7: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48 रुपए 18 पैसे प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55 रुपए 70 पैसे हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
6: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी, और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
2: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
7: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं? सरकार इसे इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है। अब बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
7: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
8: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं, आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नाकारा नाकाबिल भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
9: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
7: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
10: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी, उसको अस्थाई तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको, ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
7: स्कूलों के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर लाखों से भी आई, जहाँ अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया, वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
11: इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए, नई प्लेट लाकर, एक घंटे के लिए ये प्लेटें लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी, जिसकी ये फोटोज है।
7: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है, जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम, प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में, जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खंभों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहां मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है सबमर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके हिसाब से?
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहां पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: मतलब वो यहां रहने से, तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह बांट
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात?
2: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बेटा मुसीबत है, क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: पानी का सर अब बहुत साल बाद तो सोचल ना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आ गया भीतर घुसा है पानी, अब देख ले।
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना तो रात में पहुँच गया।
4: यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर कि जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ता में फंसे हैं, बीच रास्ते में है, धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यह दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है।
1: नहीं बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं देखा, जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे, शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है, तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
6: प्रयागराज शहर में भी यही हाल है। गंगा यमुना उफान पर है, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा मामुआ जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नागवासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है? ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना?
2: ये जी, पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन के कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटीज के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे हैं,
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: अब बात कन्नौज से आए हंगामे की तस्वीर की। कन्नौज में कावड़ यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा ड्रामा देखने को मिला, जहां डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
4: कन्नौज में कावड़ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन और कावड़ियों के बीच डीजे को लेकर विवाद हुआ और फिर हालात हंगामे में तब्दील हो गए। कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया और कांवड़ वापस लौटाने की चेतावनी दी।
5: कांवड़िया के साथ मारपीट की गई, वो भी कोतवाल की मौजूदगी में की।
4: हाई वोल्टेज हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोतवाल को खुलेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा।
6: सुकत के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुनिए और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
7: आप सनातनी।
4: उधर एडीएम को भी मामला शांत कराने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़े।
8: बोला बोला तो
9: सामने है
10: भाई, हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं।
9: खिलाफ कार्रवाई चाहिए,
10: साल हो गया कांवड़ लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है
9: तो उनके खिलाफ।
10: एक मिनट भाई साहब, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवड़ लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवड़ वापस लेंगे।
11: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है वहाँ का
10: भाई साहब, ऐसे जूतों से स्वागत।
7: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग
4: बहरहाल भारी हंगामे के बाद प्रशासन कांवड़ियों को शांत कराने में कामयाब रहा आज तक भी।
3: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

मुलाकात, कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना, अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या, बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न।

0: मंत्री चिराग पासवान बोले, रिजर्वेशन खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर। ट्रंप के नेले पर कनाडा का तहलका, अमेरिका के टैरिफ लगाने के जवाब में पीएम मार्क कार्ने ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाया टैक्स, 8 सितंबर से होंगे लागू। मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने ये पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको यह बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ and you get many answers when you ask this question. Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगीत साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार हो रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था, उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
0: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के 54 वाले बयान पर भी हो रहे हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में 54 पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
4: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं।
5: उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
0: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, वे उचित होगा।
6: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे।
0: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है। तो अखिलेश यादव बीजेपी को आरएलडी की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
6: तो चार गुना कितनी हो गई, 30 के चार गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दे गए तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
0: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपनी सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं? सरकार इसे इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
7: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
6: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
8: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
7: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथेनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
7: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
9: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं, आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थानी पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
10: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
7: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थायी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
11: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी उसको अस्थायी तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको ये कमरा है इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
7: स्कूलों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर लाहौर से भी आई जहां अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया वही दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
12: इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए,
13: नई प्लेट लाकर एक घंटे के लिए प्लेटें लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी जिसकी ये फोटोज है।
7: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं, नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम, प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खंभों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहां मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है सबमर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके हिसाब से?
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहां पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: मतलब वो यहां रहने तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं पूरे आपके क्षेत्र की बात?
2: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद तो सोचना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आएगा भीतर घुसा है पानी अब देख ले।
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मना सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर कि जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यह दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है।
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं
3: देखा,
1: जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ है यहाँ अट्टे वहाँ पे शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए। घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
6: प्रयागराज शहर में भी यही हाल है। गंगा यमुना उफान पर है, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा में हुआ जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नाग वासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां पर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है, ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना?
2: ये जी, पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन के कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटीज के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे हैं,
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: अब बात कन्नौज से आए हंगामे की तस्वीर की। कन्नौज में कावड़ यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा ड्रामा देखने को मिला, जहां डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
4: कन्नौज में कावड़ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन और कावड़ियों के बीच डीजे को लेकर विवाद हुआ और फिर हालात हंगामे में तब्दील हो गए। कावड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया और कावड़ वापस लौटाने की चेतावनी दी।
5: कावड़िया के साथ मारपीट की गई, वो भी कोतवाल की मौजूदगी में की।
4: हाई वोल्टेज हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोतवाल को खुलेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा।
6: सबक के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
7: आप सनातनी।
4: उधर एडीएम को भी मामला शांत कराने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़े।
8: बोला बोला वो
9: सामने है
10: भाई साहब, हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं,
9: उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए,
10: साल हो गया कांवर लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है
9: तो उनके खिलाफ कार्रवाई।
10: भाई साहब, भाई साहब, एक मिनट, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवर लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवर लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवर वापस नहीं,
11: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है वहाँ का।
10: भाई साहब, ऐसे जूतों से स्वागत,
7: लेकिन कुछ लोग, एक दो लोग
4: बहरहाल भारी हंगामे के बाद प्रशासन कांवड़ियों को शांत कराने में कामयाब रहा। आज तक भी
3: बिहार के रोहतास में चेनारी के करमचर डैम में मॉक ड्रिल की गई। इसमें पटना एम्स से आए हुए लगभग 70 स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम, एनडीआरएफ, अग्निशमन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, एचओईसी, आपदा प्रबंधन विभाग, स्थानीय प्रशासन और वॉलंटियर्स की टीमें शामिल हुई। बड़ा हादसा के समय ग्राउंड जीरो पर फुल

0: वो तस्वीरें जब मॉक ड्रिल की गई और जब स्थितियां बिगड़ जाएं तो उस परिस्थितियों में कैसे बचाना है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कैसे तमाम चीजों को जो है इमरजेंसी के हिसाब से ठीक रखना है और उन इमरजेंसी के समय में वो काम कैसे करती हैं, ये अपने आप को देखना भी है तो, और लोगों को भी साथ साथ में जागरूक उन परिस्थितियों में कैसे करना है, सब परखा गया, देखा गया और इसमें विशेषज्ञों की टीम, NDRF सब मौजूद रहे।
1: ऑपरेशन इमरजेंसी सेंटर है, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मॉक एक्सरसाइज में ये दिखा रहे हैं कि अगर कुछ फ्यूचर में अगर हुआ डिजास्टर तो क्या गैप है, उस गैप एनालिसिस को हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। और इसका जो मुख्य बिंदु है वो भीष्म क्यूब है। भीष्म क्यूब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हम लोगों को मिला हुआ, सारे एम्स को, उसमें एम्स पटना को भी मिला है। तो हम लोग उस भीष्म क्यूब को क्विकली कैसे इंस्टॉल करते हैं विद इन 20-30 मिनट कहीं भी डिजास्टर होता है तो, और किस तरह से लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग सर्जरी करके जान बचाते हैं और पैर जो काटना पड़ता है, जो खून बहता है उसको रोक करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाते हैं, जो डिजास्टर का मेन कंसेप्ट है टू सेव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्स, उस कंसेप्ट में जितने स्टेक होल्डर हैं उनका कोऑर्डिनेट करके और इस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं जी।
0: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

मुलाकात, कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद, पार्टी को मजबूत करना, अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या, बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न।

रिजर्वेशन खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर। ट्रंप के नेले पर कनाडा का तहलका, अमेरिका के टैरिफ लगाने के जवाब में पीएम मार्क कार्ने ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाया टैक्स, 8 सितंबर से होंगे लागू। ये मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने ये पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको यह बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुईं।

0: मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए, और ये जो आपके दिल में है जो डर है इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
1: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगीत साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार हो रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था, उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
1: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी हो रही है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
1: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में चवन्नी पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
4: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम भर रहे हैं।
5: उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
1: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, तो उचित होगा।
6: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो BJP को घेरें।
1: BJP भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है, तो अखिलेश यादव BJP को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
6: तो चार गुना कितनी हो गई, 30 के 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें, और अगर 120 सीट नहीं दे गए तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
1: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री JP नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद JP नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार इसे इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
7: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48 रुपए 18 पैसे प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55 रुपए 70 पैसे हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
6: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी, और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
2: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
7: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
7: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
8: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं, आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थानी पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा नाकाबिल भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
9: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
7: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
10: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी, उसको अस्थाई तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको, ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
7: स्कूलों के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर लाहौर से भी आई, जहाँ अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया, वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
11: इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए,
12: नई प्लेट लाकर, एक घंटे के लिए प्लेटें लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी, जिसकी ये फोटोज है।
7: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है, जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम। प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में, जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खंभों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहां मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है सबमर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो गाँव में आपके साथ।
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुँचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: मतलब वो यहाँ रहने से, तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात।
2: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद आया तो सोचना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं, अभी तरह घुसा है पानी, अब देख ले।
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मना सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर कि जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यह दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है। नहीं
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं। देखा जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ अटे यहाँ अटे वहाँ पे, शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए। घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है, तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे, बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
6: प्रयागराज शहर में भी यही हाल है। गंगा यमुना उफान पर है, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा मामुआ जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नागवासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है, ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना?
2: ये जी, पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन के कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटीज के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुंबद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: अब बात कन्नौज से आए हंगामे की तस्वीर की। कन्नौज में कावड़ यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा ड्रामा देखने को मिला, जहां डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
4: कन्नौज में कावड़ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन और कावड़ियों के बीच डीजे को लेकर विवाद हुआ और फिर हालात हंगामे में तब्दील हो गए। कावड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया और कावड़ वापस लौटाने की चेतावनी दी।
5: कावड़िया के साथ मारपीट की गई, वो भी कोतवाल की मौजूदगी में की।
4: हाई वोल्टेज हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोतवाल को खुलेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा।
6: संगत के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूं, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुनिए और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
7: आप सनातनी।
4: उधर एडीएम को भी मामला शांत कराने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़े।
8: बोला बोला तो
9: सामने है।
10: हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं,
9: खिलाफ कार्रवाई चाहिए,
10: हो लोग यहाँ कांवड़ लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है
9: तो उनके खिलाफ।
10: एक मिनट भाई साहब, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवड़ लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवड़ वापस लेंगे।
11: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है
10: भाई साहब, ऐसे जूतों में स्वागत।
7: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग।
4: बहरहाल भारी हंगामे के बाद प्रशासन कांवड़ियों को शांत कराने में कामयाब रहा। आज तक भी कांवड़ियों को शांत कराने में कामयाब रहा आज तक भी
3: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

मुलाकात कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न।

रिजर्वेशन खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर।

0: वाहनों पर लगाया टैक्स, 8 सितंबर से होंगे लागू। ये मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने यह पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीएस समाज के खिलाफ। आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीएस समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार हो रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था, उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
0: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी हो रहे हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में चवन्नी पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
4: अखिलेश यादव जी माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं।
5: उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
0: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए तो उचित होगा।
6: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरें।
0: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है तो अखिलेश यादव बीजेपी को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
6: तो चार गुना कितनी हो गई, 30 की चार गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दे पे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
0: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार इसे इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
7: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
6: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
8: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
7: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथेनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
7: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
9: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं, आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा नाकाबिल भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
10: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
7: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थायी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
11: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी उसको अस्थायी तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको ये कमरा है इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
7: स्कूलों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर नागपुर से भी आई जहाँ अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
12: इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए, नई प्लेट लाकर एक घंटे के लिए ये प्लेटें लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी जिसकी ये फोटोज है।
7: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम। प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खंभों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहां मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है समर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके हिसाब से?
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहां पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: मतलब वो यहां रहने से, तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: कितने बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं पूरे आपके क्षेत्र की बात?
2: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: पानी का सर अब बहुत साल बाद तो सोचा ना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आ गया भीतर घुसा है पानी। अब देख ले
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर, जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में है, धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यही दिक्कत हमका लोग का, ज्यादा दिक्कत है नहीं।
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाया, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
5: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं देखा, जैसी नाव पहुँच
6: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे, शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है, तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं, जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
7: प्रयागराज शहर में भी यही हाल है। गंगा यमुना उफान पर है, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा मामुआ जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नागवासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है? ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना।
2: ये जी पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन की कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटी के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: बात कन्नौज से आए हंगामे की तस्वीर की। कन्नौज में कावड़ यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा ड्रामा देखने को मिला, जहां डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
4: कन्नौज में कावड़ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन और कावड़ियों के बीच डीजे को लेकर विवाद हुआ और फिर हालात हंगामे में तब्दील हो गए। कावड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया और कावड़ वापस लौटाने की चेतावनी दी।
5: कावड़िया के साथ मारपीट की गई, वो भी कोतवाल की मौजूदगी में की।
4: हाई वोल्टेज हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोतवाल को खुलेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा।
6: सबक के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
7: आप सनातनी।
4: उधर एडीएम को भी मामला शांत कराने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़े।
8: बोला बोला वो
9: सामने है,
10: हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं,
9: उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए,
10: हम लोग यहाँ कावर लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है
9: तो उनके खिलाफ कार्रवाई
10: चाहिए। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कावर लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कावर लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कावर वापस
11: नहीं, हमने अपना पूरा स्वागत रखा है वहाँ का।
10: भाई साहब ऐसे जूतों से स्वागत,
7: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग
11: हम लोग निर्णय ले लेते हैं।

0: आरएफ अग्निशमन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, एचओईसी आपदा प्रबंधन विभाग, स्थानीय प्रशासन और वॉलंटियर्स की टीमें शामिल हुई। बड़े हादसा के समय ग्राउंड जीरो पर फुल स्केल हॉस्पिटल की सर्विस देने के उद्देश्य से ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। लाइफ सेविंग्स ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास, पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल का निर्माण जैसी तैयारियों को भी यहाँ पर परखा गया। ये वो तस्वीरें जब मॉक ड्रिल की गई और जब स्थितियां बिगड़ जाएं तो उस परिस्थितियों में कैसे बचाना है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कैसे तमाम चीजों को जो है इमरजेंसी के हिसाब से ठीक रखना है और उन इमरजेंसी के समय में वो काम कैसे करती हैं, ये अपने आप को देखना भी है तो, और लोगों को भी साथ साथ में जागरूक उन परिस्थितियों में कैसे करना है, सब परखा गया, देखा गया और इसमें विशेषज्ञों की टीम, एनडीआरएफ सब मौजूद रहे।
1: ऑपरेशन इमरजेंसी सेंटर है, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मॉक एक्सरसाइज में ये दिखा रहे हैं कि अगर कुछ फ्यूचर में अगर हुआ डिजास्टर तो क्या गैप है, उस गैप एनालिसिस को हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। और इसका जो मुख्य बिंदु है वो भीष्म क्यूब है। भीष्म क्यूब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हम लोगों को मिला हुआ, सारे एम्स को, उसमें एम्स पटना को भी मिला है। तो हम लोग उस भीष्म क्यूब को क्विकली कैसे इंस्टॉल करते हैं विद इन 20-30 मिनट कहीं भी डिजास्टर होता है तो, और किस तरह से लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग सर्जरी करके जान बचाते हैं और पैर जो काटना पड़ता है, जो खून बहता है उसको रोक करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाते हैं, जो डिजास्टर का मेन कंसेप्ट है टू सेव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्स, उस कंसेप्ट में जितने स्टेक होल्डर हैं उनका कोऑर्डिनेट करके और इस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं। जी,
0: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फरुण होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

मुलाकात कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न

वन बोले रिजर्वेशन खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर। ट्रंप के नेले पर कनाडा का तहलका, अमेरिका के टैरिफ लगाने के जवाब में पीएम मार्क कार्ने ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाया टैक्स, 8 सितंबर से होंगे लागू। मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने ये पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की।

0: पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार हो रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था, उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
0: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के 54 वाले बयान पर भी हो रही है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में 54 पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाए, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
4: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम भर रहे हैं।
5: उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
0: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए तो उचित होगा।
6: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो BJP को घेरें।
0: BJP भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है तो अखिलेश यादव BJP को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
6: तो 4 गुना कितनी हो गई, 30 के 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें और अगर 120 सीट नहीं दे गए तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
0: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री JP नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद JP नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं? सरकार इसे इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
7: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
6: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
2: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
7: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथेनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
7: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
8: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं, आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
9: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
7: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
10: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी, उसको अस्थाई तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको, ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
7: स्कूलों के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर लाहौर से भी आई, जहाँ अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया, वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
11: इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए,
12: नई प्लेट लाकर, एक घंटे के लिए ये प्लेटें लाई गई है, ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी, जिसकी ये फोटोज है।
7: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है, जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं, नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम, प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं, और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में, जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खम्भों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहां मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है समर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो गाँवों में आपके हिसाब से।
2: हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुँचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: मतलब वो यहाँ रहने तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: कितने बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं, पूरे आपके क्षेत्र की बात?
2: पूरे क्षेत्र हमारे 6 दो नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद तो सोचना चढ़ी पानी तो कहूँ गया नहीं तो आएगा भीतर घुसा है पानी अब देख ले।
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मना सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: यहाँ दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर कि जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यह दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है। नहीं
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं। देखा जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ है अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे, शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए। घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
6: प्रयागराज शहर में भी यही हाल है। गंगा यमुना उफान पर है, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूब चुके हैं। रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा मामुआ जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नागवासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है? ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना।
2: ये जी पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन के कांवरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटी के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: अब बात कन्नौज से आए हंगामे की तस्वीर की। कन्नौज में कांवड़ यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा ड्रामा देखने को मिला, जहां डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
4: कन्नौज में कांवड़ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन और कांवड़ियों के बीच डीजे को लेकर विवाद हुआ और फिर हालात हंगामे में तब्दील हो गए। कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया और कांवड़ वापस लौट आने की चेतावनी दी।
5: कांवड़िया के साथ मारपीट की गई, वो भी कोतवाल की मौजूदगी में की।
4: हाई वोल्टेज हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोतवाल को खुलेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा।
6: सुगत के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूं, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुनिए और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
7: आप सनातनी हैं।
4: उधर एडीएम को भी मामला शांत कराने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़े।
8: बोला बोला तो
9: सामने है,
10: हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं।
9: खिलाफ कार्रवाई चाहिए,
10: हम लोग यहाँ काम आए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है
9: तो उनके खिलाफ कार्रवाई।
10: मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवर लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवर लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवर वापस।
11: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है,
7: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग
4: बहरहाल भारी हंगामे के बाद प्रशासन कांवड़ियों को शांत कराने में कामयाब रहा आज तक भी।
3: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

मुलाकात कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न। जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग पर भड़के अखिलेश कहा पीडीए समाज के खिलाफ साजिश मंत्री चिराग पासवान बोले रिजर्वेशन खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर।

0: उत्पादों पर लगाया टैक्स 8 सितंबर से होंगे लागू। ये मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने ये पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होती है। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। समबडी विल से आवर इकोनॉमी, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
0: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार हो रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है, आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन बोल चाल वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
0: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के 54 वाले बयान पर भी हो रही है, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
0: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में 54 पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
4: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं।
5: उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको 54 से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
0: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको 54 से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए तो उचित होगा।
6: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे।
0: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है तो अखिलेश यादव बीजेपी को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
6: तो 4 गुना कितनी हो गई, 30 के 4 गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दे पे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
0: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं? सरकार इसे इनकार कर रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
7: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
6: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी, और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
8: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
7: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथेनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
7: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
9: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं, आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थानी पूरे देश के इतिहास में सबसे नाकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
10: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
7: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
11: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी, उसको अस्थाई तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको ये कमरा है इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
7: स्कूलों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर लाहौर से भी आई जहां अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
12: इन्होंने यहां पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए नई प्लेट लाकर एक घंटे के लिए ये प्लेट लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी जिसकी ये फोटोज है।
7: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम। प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के 12 तहसील में जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खम्भों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहाँ नाव चल रही है वहाँ जमीन थी और अब यहाँ मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है समर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके
2: साथ। हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुँचा है, सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: मतलब वो यहाँ रहने तो उनको आप लोग ये बिस्किट और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं पूरे आपके क्षेत्र की बात,
2: पूरे क्षेत्र हमारे 2 नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बेटा मुसीबत है, क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद तो सोचा ना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आ गया भीतर घुसा है पानी, अब देख ले।
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर, जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में है, धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, यही दिक्कत हमका लोग का, ज्यादा दिक्कत है नहीं।
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाया, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
5: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं। देखा जैसी नाव पहुँच
6: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे, शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो। जब चारों तरफ पानी ही पानी हो तो इंसान जाना भी चाहे तो कहां जाए, घरों के सामने पानी कई फीट तक भर चुका है, तो छत ही वो सुरक्षित ठिकाना लग रही है जहां कम से कम जान बची रहेगी।
1: आप समझ लीजिए हम उस प्रयागराज में हैं जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त जो है उस जगह पर हैं जहां ये एपिसेंटर है बाढ़ का। हम कहीं शहरी इलाके या घाट से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम एपिसेंटर गांव जहां फंसे हैं वहां इस तरह के मासूम बच्चे और उनकी माएं भी इंतजार में हैं मदद की। मदद पहुंच भी रही है, वो उम्मीद ये कर रहे हैं पानी घटे बाढ़ की समस्या भी घटे।
0: सैलाब में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की नाव डूबते को तिनके का सहारा जैसी लग रही है। समर श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
7: बिहार के रोहतास में चेनारी के करमचर डैम में मॉक ड्रिल की गए। इसमें पटना एम्स से आए हुए लगभग 17 स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीम, एनडीआरएफ, अग्निशमन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, एचओईसी, आपदा प्रबंधन विभाग, स्थानीय प्रशासन और वॉलंटियर्स की टीमें शामिल हुई। बड़ा हादसा के समय ग्राउंड जीरो पर फुल स्केल हॉस्पिटल की सर्विस देने के उद्देश्य से ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई। लाइफ सेविंग्स ऑपरेशन का पूर्वाभ्यास, पोर्टेबल मिनी हॉस्पिटल का निर्माण जैसी तैयारियों को भी यहां पर परखा गया। ये वो तस्वीरें जब मॉक ड्रिल की गई और जब स्थितियां बिगड़ जाएं तो उस परिस्थितियों में कैसे बचाना है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कैसे तमाम चीजों को जो है इमरजेंसी के हिसाब से ठीक रखना है और उन इमरजेंसी के समय में वो काम कैसे करती हैं, ये अपने आप को देखना भी है तो, और लोगों को भी साथ साथ में जागरूक उन परिस्थितियों में कैसे करना है, सब परखा गया, देखा गया और इसमें विशेषज्ञों की टीम, एनडीआरएफ सब मौजूद रहे।
8: ऑपरेशन इमरजेंसी सेंटर है, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मॉक एक्सरसाइज में ये दिखा रहे हैं कि अगर कुछ फ्यूचर में अगर हुआ डिजास्टर तो क्या गैप है, उस गैप एनालिसिस को हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। और इसका जो मुख्य बिंदु है वो भीष्म क्यूब है। भीष्म क्यूब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हम लोगों को मिला हुआ, सारे एम्स को, उसमें एम्स पटना को भी मिला है। तो हम लोग उस भीष्म क्यूब को क्विकली कैसे इंस्टॉल करते हैं विद इन 20-30 मिनट कहीं भी डिजास्टर होता है तो, और किस तरह से लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग सर्जरी करके जान बचाते हैं और पैर जो काटना पड़ता है, जो खून बहता है उसको रोक करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाते हैं, जो डिजास्टर का मेन कंसेप्ट है टू सेव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम बाय यूटिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्स, उस कंसेप्ट में जितने स्टेक होल्डर हैं उनका कोऑर्डिनेट करके और इस चीज़ को हम लोग देखना चाहते हैं। जी,
7: यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोपीय देश हैं तो रूस के साथ नॉर्थ कोरिया के होने से हमले और विनाशकारी होते जा रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया ने पुतिन को एक ऐसा तोहफा दिया है जिससे जेलेंस्की की रातों की नींद उड़ गए हैं। अब यह तोहफा अब तक का सबसे जानलेवा तोहफा है। मिसाइलों की इस होड़ में यूक्रेन लगातार पिछड़ता जा रहा है और नतीजा यह है कि उसकी राजधानी पर बमबारी ने कोहराम मचा रखा है।
9: इक्कीस दिन, 6 बड़े हमले, इस महीने 50 से ज्यादा लोगों की अगस्त में मौत, इस महीने 80 से ज्यादा लोग घायल। साढ़े 4 साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से किम जोंग हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। नॉर्थ कोरिया से विनाशकारी मिसाइलें आ रही हैं, नॉर्थ कोरिया से काम करने वाली ब्रिगेड आ रही है, नॉर्थ कोरिया से खतरनाक हथियार आ रहे हैं, बढ़ रहा है रूस का जोश, उड़ रहे यूक्रेन के होश। यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उनकी जमीन पर मौत का खेल खेल रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी।
10: Ви знаєте, що ми вже знаходили ракети Північної Кореї на території України. Вони вже завдавали удари, використовували це. Сьогодні це вже є визнаний факт. Південна Корея, безумовно, вони переживають. Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни. Буде отримувати ліцензії від Росії. Буде отримувати від них всі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо. І також отримують досвід військовий. Тобто північнокорейський солдат, офіцер тож. І з цим досвідом, ну, вони точно не для мирних умов цей досвід готують. Тому Південна Корея повинна, на мій погляд, більш мати більш тісне співробітництво з Україною.
9: Юкрейн кі хуфія агенціюю ке таза хуласе ке мутабик, Рус ке пас Норт Корея кі КН-23 ор КН-24 балістик місайл то пехле се ті. Аб КН-30 жасі винашкарі місайл бі мил гаї хай. Норт Корея се Рус ко лагатар

0: नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक में दम कर रखा है। एंटी मिसाइल सिस्टम उसके पास है नहीं। पैट्रियट मिसाइलें वो कब से मांग रहे हैं लेकिन अभी तक उन्हें मिली नहीं है। गुरुवार की रात को भी उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें कोई तोहफा नहीं चाहिए बल्कि वो इसे खरीदने के लिए तैयार हैं।
1: На жаль, з балістикою найскладніше зараз. Якщо відсоток збиття крилатих ракет в цьому ударі близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для патріотів – це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери. На всіх рівнях ми доводимо до них і нашу потребу, і те, що ми знаємо, що цю нашу потребу партнери можуть заповнити. Ми говоримо не про подарунки, це про готовність України купувати зброю. Важливо...
0: ये भीषण जंग कब रुकेगी किसी को नहीं पता। इस युद्ध का अंजाम क्या होगा ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन रिहायशी इलाकों पर तेज हो रहे हमले बेकसूरों की जान ले रहे हैं। अब दोनों ही देश सैन्य ठिकानों के साथ साथ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी इमारतों पर बमबारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऊपर से नॉर्थ कोरिया के हथियारों की एंट्री ने जंग को और विनाशकारी बना दिया है। आज तक ब्यूरो।
2: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।

मुलाकात, कहा संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना, अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार, कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या, बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न।

0: रिजर्वेशन खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर। ट्रंप के नेले पर कनाडा का तहलका, अमेरिका के टैरिफ लगाने के जवाब में पीएम मार्क कार्ने ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाया टैक्स, 8 सितंबर से होंगे लागू। ये मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने यह पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको यह बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां

0: लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना, कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। मेनी टाइम्स पीपल आस्क मी व्हाट इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ एंड यू गेट मेनी आंसर्स व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन। Somebody will say our economy, somebody will say our military, somebody will say our medical system, somebody might even say our people, but I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset, and that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest asset.
1: दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ था। सवर्ण समाज और बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी और कहा था कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होनी चाहिए बल्कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। अब इस विरोध प्रदर्शन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हुई है। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीडीए समाज के खिलाफ एक गहरी साजिश है। आरक्षण पीडीए का अधिकार है, किसी की इच्छा का विषय नहीं है। बीजेपी और उनके संगी साथी समय समय पर जिस तरह कभी समीक्षा तो कभी सुधार जैसे अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर आरक्षण का विरोध करते हैं या कभी क्रीमी लेयर की बात करते हैं या आरक्षण त्यागने की सलाह देते हैं, वो सदियों से शोषित वंचित लोगों को मिले हुए आरक्षण के अधिकार के हकमारी की लगातार हो रही कोशिशों के अलग अलग मुखौटे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं।
2: आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है और इसके पीछे की सोच ऐसे समाज से आने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की रही है जिनके साथ किसी ना किसी कारणवश भेदभाव हुआ है। अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट है, ये वो कास्ट हैं जो संविधान में स्केड्यूल की गई हैं, जिनका आधार छुआछूत था, उनको आधार बनाया, उनको स्केड्यूल किया गया और उन कास्ट को आपने आरक्षण देने का काम किया। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ये वो कास्ट हैं, ये वो ट्राइब्स हैं जिनको स्केड्यूल किया गया है, जिनका रहन सहन, बोल चाल, वेशभूषा सब अलग है अपने तरीके।
1: यूपी में एक सियासत अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान पर भी हो रहे हैं, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के गठबंधन वाले पुराने दल भड़के हुए हैं।
3: जाने कहां कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए।
1: जयंत चौधरी पर अखिलेश यादव की इस टिप्पणी ने यूपी में चवन्नी पर घमासान तेज कर दिया। सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम लेकर बोल देते, कोई बात नहीं थी। जाट समाज को टारगेट करना और कहना ABCD हमने सिखाई, मैं इस अहंकार को देख चुका हूँ करीब से और मानता हूँ ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है।
4: अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी पर ओछी टिप्पणी करते हुए आप चौधरी परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही आप पूरे जाट समाज को ABCD सिखाने का दम्भ भर रहे हैं।
5: उन्होंने जाट समाज ही नहीं, सभी समाज पर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया, तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोक दल भी की, बहुजन समाज पार्टी की, उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है।
1: मायावती ने भी अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा की। ये सार्वजनिक बयान देना कि हमने इनको चवन्नी से रुपया बना दिया है, ये कहना पूर्णतः अमर्यादित, अशोभनीय और अति शर्मनाक है तथा इस प्रकार के अहंकारी व अलोकतांत्रिक बयानबाजी के लिए उन्हें उस पार्टी से व उनके नेता से ही नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का अपमान करने हेतु पूरे जाट समाज से भी अविलंब माफी मांगनी चाहिए, वे उचित होगा।
6: समाजवादी पार्टी जब साथ लेकर के चलती है तो साथ निभाती है और हमेशा समाजवादियों ने साथ निभाया है। मैं तमाम दलों से कहूंगा जो समाजवादियों को घेर रहे हैं वो बीजेपी को घेरे।
1: बीजेपी भी अखिलेश यादव की टिप्पणी पर सवाल खड़े कर रही है तो अखिलेश यादव बीजेपी को RLD की सीटें बढ़ाने की सलाह दे रही हैं। अब केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी पर घटिया बयान देकर अपनी उसी छटपटाहट को उजागर कर दिया, जबकि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी का सैफई परिवार पर इतना कर्ज है कि सपा बहादुर उसे चुका नहीं सकते। सपा बहादुर को श्री जयंत चौधरी जी से तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
6: तो चार गुना कितनी हो गई, 30 के चार गुना कितना हो गया, 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें, और अगर 120 सीट नहीं दे पे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो।
1: बहरहाल यूपी चुनावों से पहले हर पार्टी अपने सियासी पिच पर बैटिंग कर रही है, जहां अपने एजेंडे के हिसाब से मुद्दों को हवा दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। आज दिल्ली में केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री JP नड्डा ने उर्वरक विभाग के सचिव और विभाग के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खरीफ और आगामी रबी सीजन के लिए विभाग की तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक के बाद JP नड्डा ने पोस्ट करके लिखा कि देश में खाद की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है, किसानों को उर्वरक के निरंतर और आसान आपूर्ति और समय पर ही उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बात चीनी की, जिसके बढ़ते दामों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार अब चीनी को विदेशों से आयात करने का ऐलान कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार इसे इनकार कर रही है लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहा है।
7: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम मिठास को फीका कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने में चीनी की कीमत 15% से ज्यादा बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 20 जुलाई को 48.18 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 20 अगस्त को 55.70 रुपए हो गई, जिसे लेकर अब सियासत तेज है।
6: चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है, आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी। और एक हिसाब किताब लगाओ कि अगर आपका गुलाब जामुन कितना महंगा हो गया होगा, रसगुल्ला कितना महंगा हो गया होगा, बर्फी कितनी महंगी हो गई है।
2: चीनी के बढ़े हुए दाम यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। सरकार के भीतर इसको लेकर चर्चा हो रही है कि कैसे जल्द से जल्द इसको नियंत्रित किया जाए। जितना प्रोडक्शन अपेक्षित था उसकी बनिस्पत इस बार इतना ना होना एक कारण रहा है।
7: उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चीनी के बढ़ते दामों को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वहीं इस संकट को एथनॉल से भी जोड़ा। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है, पहले चीनी का उत्पादन घटा, फिर स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर पहुंचा, अब विदेश से चीनी आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गन्ने को पेट्रोल में मिलाने के लिए एथनॉल में झोंक रहे हैं। हालांकि सरकार ने एथेनॉल की वजह से चीनी के दाम बढ़ने की अटकलों से इनकार किया है। सरकार का कहना है कि एथेनॉल में चीनी का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन चीनी की बढ़ती कीमतें सरकार के लिए भी टेंशन बनी हुई है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हैं। देश भर में चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है। 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। जमाखोरी और कृत्रिम कमी की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें मिलों में चीनी स्टॉक की जाँच कर रही है। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बिना किसी ड्यूटी के आयात की जाएगी। गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें 10 लाख टन से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। उधर चीनी की कालाबाजारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बात कांग्रेस जनता पार्टी की, जहां राजस्थान में हुए हंगामे के बाद एक एक्शन को लेकर घमासान जारी है। सीजेपी ने राजस्थान सरकार को दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया हुआ है।
7: जयपुर में सीजेपी की टीम पर हुए हमले पर अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जयपुर के शिवदासपुरा थाने में मुकदमा लिखा गया है। सीजेपी ने गांव वालों के खिलाफ और गांव वालों ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर करवाई है। सीजेपी अब राजस्थान के शिक्षा मंत्री पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं सरकार बच्चों के मुद्दे पर सियासत न करने की बात कह रही है।
8: अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं, आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया।
9: शिक्षा के मंदिर पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर बच्चों पे, पढ़ाई पे गलत इफेक्ट पड़ता है, संस्कारों में गलत धारणा बनती है, इसलिए बच्चों के सामने, बच्चों के बीच में राजनीति नहीं करें।
7: वहीं भैंसों के तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को अस्थाई तौर पर शिफ्ट कर दिया गया है।
10: जो स्कूल एक भैंसे के तबेले में चल रही थी, उसको अस्थाई तौर पर ग्रामीणों के सहयोग से एक घर के अंदर शिफ्ट किया गया है। फिलहाल वो स्कूल शिफ्ट करने के बाद इस घर के प्रांगण में चल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर छांव को देखते हुए फिर इसको, ये कमरा है, इस कमरे में यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा।
7: स्कूलों के खिलाफ कांग्रेस जनता पार्टी के हंगामे की एक तस्वीर नागपुर से भी आई, जहाँ अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि उनके दौरे से पहले स्कूल को ठीक किया गया, वहीं दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर बैठा दिया गया।
11: इन्होंने यहाँ पर दूसरे स्कूल से बच्चे लाकर बिठा दिए,
12: नई प्लेट लाकर, एक घंटे के लिए प्लेट लाई गई है ताकि मीडिया के सामने दिखाई दे। ये पूरे देश के सामने ये बहुत बड़ा स्कैम है कि स्कूल को अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने तो कल रातों रात स्कूल की सफाई शुरू कर दी, जिसकी ये फोटोज है।
7: बहरहाल सीजेपी प्राथमिक स्कूलों को लेकर अब मैदान पर उतरी है, जिसे लेकर लगातार घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो।
1: अब बाढ़ से मची तबाही के मैदानी इलाकों में अब बाढ़ के हालात बने हुए हैं, नदियां उफान पर हैं। आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाएंगे हम, प्रयागराज की भी बात करेंगे। प्रयागराज में गंगा यमुना के अलावा छोटी छोटी नदियां भी उफान पर हैं, और सबसे ज्यादा बुरे हालात यमुना पार के बारा तहसील में, जहां पर बाढ़ का पानी लोगों के घरों को डुबो रहा है।

0: संगम नगरी प्रयागराज इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। शहर से करीब 50 किलोमीटर मध्य प्रदेश बॉर्डर से सटा 12 तहसील के कई गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। 12 में बाढ़ का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। निचले इलाकों में बाढ़ की वजह से वो डूबने की कगार पर आ गए, लेकिन सैलाब के सितम के बीच एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ पीड़ितों के लिए देवदूत बन गई। यूपी सरकार भी लगातार राहत और राशन सामग्री पहुंचा रही है, जिससे बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे। देखिए कैसे सैलाब ने इस गांव को अपने चपेट में ले लिया है। पेड़ों के केवल ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं और बिजली के खंभों का भी सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है। जहां नाव चल रही है वहां जमीन थी और अब यहां मानो नदी उफान मार रही है। प्रयागराज के 12 की एसडीएम शिखा शंखवार भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहीं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को बिस्किट और कुछ खाने पीने का सामान बांटा। उन्होंने बताया लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है।
1: आप लोग लगातार यहाँ पर ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इतने साल बाद यहाँ बाढ़ आई है, क्या रीजन है, क्या लगता है?
2: जैसा कि ग्रामीण वासियों के द्वारा ही बताया गया था कि 1997 में पिछली बार यहाँ पर इस तरह का जलभराव हुआ था। जो अभी जानकारी के अनुसार ये प्राप्त हो रहा है कि वर्षा का पानी प्लस टोन रिवर में बांध के पानी से छोड़े जाने की वजह से उसका लेवल सडन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम समय में यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज किया है, जिसकी वजह से दो तीन जो गाँव है समर्ज हो गए हैं, जिसमें जो आबादी प्रभावित क्षेत्र थे उन सभी को खाली करा करके हमने अपने
1: आबादी प्रभावित होगी इन दो तीन गांवों में आपके
2: साथ। हमने कल रात में करीब 100+ लोगों को रेस्क्यू किया है और कुछ लोग यहां पर हैं जिनको जो अभी पानी अंदर तक नहीं पहुंचा है सुरक्षित हैं, जो नहीं जाना चाहते
1: वो यहां रहने तो उनको आप लोग ये बिस्किट्स और राशन वगैरह
2: वितरण करा रहे हैं। टाइमली जो जो व्यवस्था है सब उनको यहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
1: बोट्स लगे हैं एनडीआरएफ एसडीआरएफ और रेल पुलिस के इस एरिया में पूरे, मतलब नॉट जस्ट ये गाँव की बात नहीं पूरे आपके क्षेत्र की बात,
2: पूरे क्षेत्र हमारे 2 नाव लगे हैं, 2 मोटर बोट लगे हैं और 2 एनडीआरएफ के।
0: ऐसी बाढ़ तो गांव वालों ने कई साल बाद देखी है। लोग बताते हैं कि इस क्षेत्र में भीषण बाढ़ 1997 के बाद आई, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पानी इतना ऊपर आ जाएगा।
1: ये देखिए तमाम लोग हैं, बड़ा मुसीबत है। क्या लग रहा है बाढ़ और कब का पानी कम डाउन होगा, क्या लग रहा है आपको अभी पानी का?
3: सर अब बहुत साल बाद तो सोचा ना चढ़ी पानी तो कहूँ गए नहीं तो आएगा अभी तेरे घुसा है पानी अब देख ले।
1: आपके गाँव में बाढ़ कब आई?
3: 97 में बूढ़ा रहा ऐसे अधिक
1: 97 में आई थी।
3: हाँ।
1: तो आपको लगा कि भाई बाढ़ यहाँ नहीं आएगी तो आप लोग यहाँ से नहीं निकले?
3: अब जैसे घर बना रहा तो मैंने सोचना आई तो रात में पहुँच गया।
4: दिक्कत ज्यादा वही नहीं सर, जाने आने कोई रास्ता ही नहीं है, हम लोग रास्ते में फंसे हैं, बीच रास्ते में हैं। धारा देखिए घर में पानी चढ़ा हुआ है, ये दिक्कत हमका लोग का ज्यादा दिक्कत है। नहीं
1: बिजली तो आ ही नहीं रही होगी
4: सर, बिजली नहीं आ रही है।
1: उस विजुअल को दिखाएं जरा, छोटा सा बच्चा सामने दिखाइए सीढ़ी से कैसे नीचे उतर रहा है। अब आप लोग मतलब छत पे ही सब कुछ हो रहा है?
4: पूरा
1: छत पे ही रहते हैं देखा, जैसी नाव पहुँच
5: बूढ़ है पानी के नहीं है, बम्बा भी बूढ़ अट्टे यहाँ अट्टे वहाँ पे शाम को भरे थे तो वही मनाई पी रहे हैं।
0: एनडीआरएफ की टीम दिन रात लोगों को सुरक्षित स्थान पहुंचा रही है। इसके अलावा बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाओं को मेडिकल हेल्प भी पहुंचाई जा रही है। एक समय था जब भीषण गर्मी में लोग बारिश की दुआ मांग रहे थे, आज वही लोग कह रहे हैं कि हे इंद्र देवता अब बस करो।
6: प्रयागराज शहर में भी यही हाल है, गंगा यमुना उफान पर है, संगम तट पर बने हुए घाट पानी में डूब चुके हैं, रिवर बैंक रोड पर जहां गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चल रही है।

0: प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे शहर में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 9 लाख क्यूसेक पानी आने से शहरी मोहल्लों में भी पानी घुसने लगा, जिससे प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रयागराज में घाटों के किनारे भी सब कुछ डूबा डूबा दिख रहा है। गंगा और यमुना में आ रहे 9 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी से हाहाकार मच गया। इससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है। कुंभ क्षेत्र का अरेल घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। लोगों को सैलाब से बचाने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। गंगा और यमुना का जलस्तर 81 मीटर के ऊपर होने पर कई मोहल्ले के घरों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को आश्रय स्थल में शरण लेनी पड़ रही है। अब देखिए 21 अगस्त दोपहर 2 बजे तक कहां कितना जलस्तर दर्ज किया गया। फाफा मामुआ जलस्तर 80.77 मीटर, छतनाग में दोनों नदियों का जलस्तर 80.03 मीटर, यमुना का नैनी में जलस्तर 80.42 मीटर, खतरे का निशान 84.73 मीटर। जलस्तर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बड़े हनुमान जी का महास्नान हो सकता है। वैसे 21 अगस्त को ही गंगा का पानी बड़े हनुमान जी मंदिर की चार दीवारी तक पहुंच गया था। प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर को लेकर मान्यता है कि हर साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान कराने आती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर अब केवल संगम क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शहर की पहचान बन चुके नाग वासुकी रोड, जिसे संगम नगरी का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, अब जलमग्न हो चुका है। दारागंज का रिवर फ्रंट डूब गया है। यहाँ सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं, लेकिन अब सड़क पर पानी भरने से लोग घरों में कैद हैं। जिन सड़कों पर रोज गाड़ियां फर्राटा भरती थी, अब वहां नाव चल रही हैं। श्रद्धालु सड़क पर भरे पानी में ही स्नान करने को मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ ने संगम स्थल का स्वरूप बदल दिया।
1: तो प्रयागराज में बाढ़ है, आप लोग के लिए कितनी दिक्कत है, ऑफिस जाना, घर आना, वापस पानी भर जाना?
2: ये जी, पानी तो बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, और वन वे भी एक्चुअली सावन की कावरियों की वजह से तो ट्रैफिक बहुत इशू रहता है।
1: मतलब जैसे अभी मैंने देखा बारिश बहुत थी, तो जगह जगह पानी यहाँ भर गया था, घुटने घुटने तक पानी था। तो स्कूटीज के तो टायर भी छोटे हैं, कैसे आप लोग यहाँ से?
2: तो सर इधर से हमारा रास्ता नहीं, हम तो सीधे
1: घुमा के मतलब डाइवर्ट करते हैं रोड।
0: जहाँ पहले संगम 2 से 2.5 किलोमीटर भीतर होता था, वहीं अब आरती स्थल के पास ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट के गुम्बद पानी में समा गए। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गईं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। हालांकि अभी दोनों नदियों ने खतरे के निशान को पार नहीं किया। समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक।
3: अब बात कन्नौज से आए हंगामे की तस्वीर की। कन्नौज में कावड़ यात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा ड्रामा देखने को मिला, जहां डीजे को लेकर विवाद बढ़ा और फिर पुलिस प्रशासन को बैकफुट पर आना पड़ा।
4: कन्नौज में कावड़ के कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस प्रशासन और कावड़ियों के बीच डीजे को लेकर विवाद हुआ और फिर हालात हंगामे में तब्दील हो गए। कांवड़ियों ने पुलिस प्रशासन पर मारपीट का आरोप लगाया और कांवड़ वापस लौटाने की चेतावनी दी।
5: कांवड़िया के साथ मारपीट की गई, वो भी कोतवाल की मौजूदगी में की।
4: हाई वोल्टेज हंगामे के बीच पुलिस प्रशासन बैकफुट पर आ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि कोतवाल को खुलेआम इस्तीफे का ऐलान करना पड़ा।
6: सबक के साथ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अगर मैंने कोई गलती की है तो मेरा सर और आपका जूता बराबर, लेकिन मैं मेरी बात सुनिए और मैं आपको कह रहा हूँ, अगर किसी को ये शक है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, तो जो व्यक्ति मुझसे बड़ा सनातनी हो, मैं यही सिद्ध करता हूँ कौन ज्यादा बड़ा सनातनी।
7: नहीं, आप सनातनी।
4: उधर एडीएम को भी मामला शांत कराने के लिए हाथ पांव जोड़ने पड़े।
8: बोला बोला तो
9: सामने है,
10: हम भी हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा चाहते हैं।
9: खिलाफ कार्रवाई चाहिए,
10: साल हो गए कांवड़ लाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाहता है
9: तो उनके खिलाफ कार्रवाई।
10: मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि 30 साल हम लोग यहाँ कांवड़ लेके आए, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हम लोग भविष्य में यहाँ कांवड़ लेके आए, तो भाई साहब हम लोग यहाँ से कांवड़ वापस लेंगे।
11: हमने अपना पूरा स्वागत रखा है
10: वहाँ का, भाई साहब आए थे, जूतों से स्वागत।
7: लेकिन कुछ लोग एक दो लोग
4: बहरहाल भारी हंगामे के बाद प्रशासन कांवड़ियों को शांत कराने में कामयाब रहा आज तक भी।
3: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।

0: कपूर के प्रयोग से मन की चिंताएं दूर हो सकती हैं? क्या कपूर का प्रयोग करके मन को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या आज के दिन भगवान कृष्ण की कृपा से संतान का वरदान मिल सकता है? क्या है कपूर की महिमा और क्या है सावन की एकादशी का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

मुलाकात का संगठन की बैठकों में नए विचारों का मकसद पार्टी को मजबूत करना अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर किया वार कहा इसमें महिलाओं की गलत व्याख्या बोले देश में महिलाओं के साथ तीन तरीके का उत्पीड़न

0: मंत्री चिराग पासवान बोले, रिजर्वेशन खैरात नहीं संवैधानिक अधिकार। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हालात बिगड़े, जम्मू कश्मीर की नदियां उफान पर, शिमला कांगड़ा हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर। ट्रंप के नेले पर कनाडा का तहलका, अमेरिका के टैरिफ लगाने के जवाब में पीएम मार्क कार्ने ने अमेरिकी उत्पादों पर लगाया टैक्स, 8 सितंबर से होंगे लागू। मोदी ने आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की नई टीम से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है, संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और नजरिए के बारे में होती हैं, जिनका मकसद पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को और गहरा करना होता है। पीएम मोदी ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि पार्टी के नए साथियों और नई संगठनात्मक टीम के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। पीएम ने ये पोस्ट तो किया ही, साथ ही साथ तस्वीरें साझा की। पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने देश की महिलाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया। राहुल गांधी ने कहा कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई।
1: तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भगवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप